भीड़ में हर बार नई नई संविधाएं डाली, जिससे अशांति की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। इतिहास के इस बिंदु को हम खोजें कि जहां से मनुष्य ने सर्वप्रथम अशांति के बीज बोए, जो आज महावट वृक्ष की भांति पूरी तरह फैलकर अपने नीचे एक घने अंधकार की सृष्टि कर डाली है, जहां हाथ से हाथ नहीं सूझता और उनके नीचे किसी भी तरह की शांति पौध को उगने पनपने की संभावनाएं भी पूरी तरह समाप्त कर दी है। अशांति की इन अद्भुत शाखाओं ने अब हर ओर विस्तार पा लिया है। इससे मनुष्य विकल है, पृथ्वी विकल है, उस पर बसने वाले प्राणी ही नहीं बल्कि कहें वनस्पति जगत तक विकल है। इन सभी विकलताओं के पीछे है तो वह है घनी अशांति। साथियों, मनुष्य जाति ने ही जिस अशांति को जन्म दिया, उसने मात्र मानव मन मस्तिष्क को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि अपने आसपास को, सारे समाज को ही अशांति सौंप दी। आज कहीं किसी को सांत्वना नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने कंधों पर अशांति का भारी बोझ ढोने को विवश है। तो मित्रों, आज के अधिकांश संचार माध्यम अशांति की लहरें उगल रहे हैं। यही नहीं, साहित्य भी, जिसकी भूमिका है मनुष्य को विश्वास और आस्था देना, वह भी अशांति और विक्षोभ की स्थिति पैदा करने का अपराध करने लगा है। अन्य संचार माध्यम, सिनेमा, टीवी आदि भी इसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इस खेल को सभी देख और सुन रहे हैं। यह सब अशांति और हिंसा के संदेशवाहक बनते जा रहे हैं। इन स्थितियों के बीच अब सब सोचें, मनुष्य का मन कैसे शांत रह सकता है? वह कहां सुस्थिरता पाएगा? यह अशांति का दौर आज इसलिए है कि मनुष्य समाज के हर बड़े भाग ने जीवन में भौतिकता को अधिक से अधिक स्थान देना शुरू कर दिया है। प्रभु आराधन, जो मनुष्य के मन को शांति, आंतरिक सुख सुखद चिंतन और जीवन में आस्था विश्वास की सृष्टि करता है, लोगों ने उसे भुला देने का सीधे पाप किया है। याद रखें, अगर आप किसी अच्छाई को त्यागते हैं तो निश्चित बुराई प्रवेश करेगी ही। अगर मन में आस्था और भक्ति नहीं है तो निश्चित उस मन में अनास्था होगी और अनास्था अशांति, क्रोध और असंतोष का कारण बनेगी ही। ईर्ष्या और द्वेष का जन्म होगा ही। मन अनेक विचारों से भरेगा ही, जैसे कोई तूफान किसी भी जलाशय को, किसी भी वृक्ष को, वन को उद्वेलित करता है। ठीक वैसा ही गति मन की होती है, वह भी उद्वेलित और मथित कर दिया जाता है। फिर उस मन में यह क्षमता नहीं होती कि वह उस अशांति को, उस आवेग को रोके कैसे। हम इससे कैसे मुक्त रहें? अनेक मनीषियों ने, चिंतकों ने और संतजनों ने इसका सही मार्ग भी बताया है। तो इसी संदर्भ में कहा गया है दोस्तों, मनुष्य का मन शुद्ध न हो, अशुद्ध रहे, शांत रहे, ताकि बाहरी अशांति रहते हुए भी मनुष्य उससे मुक्त रह सके, क्योंकि ऐसा करना ही शांति का सच्चा स्रोत है। मित्रों, पश्चिम जगत में एक प्रसिद्ध संत मनीषी हुए हैं। उन्होंने मनुष्य को शांत और अशुद्ध रहने का संदेश दिया है, जो आज के इस अशांत युग में हमारा सहज मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने कहा था, हृदय को शांत रखो, दुनिया की किसी भी चीज से उसे उद्विग्न न होने दो। हर चीज का अंत होता है। सभी परिस्थितियों में, भले ही वह कितनी ही विकट क्यों न हो, हमें विशुद्ध रहने के बजाय आनंदित ही होना चाहिए, ताकि हम उस सर्वाधिक हितकारी चीज आत्मा की शांति और अक्षुब्धता को खो न बैठें। आगे उन्होंने कहा, यदि सारी दुनिया और उसकी सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दी गई हों, तो भी उसके लिए अशांत होना व्यर्थ है, क्योंकि वह अशांति व्यक्ति का हित नहीं अपितु हानि ही अधिक करेगी। तब चीजों को अक्षुब्ध और शांत भाव से सहना
आत्मा को अनेक वरदानों से भरने के अलावा हमें अपनी विपदाओं के बीच भी उनके प्रति सही निर्णय करने और समुचित उपचार करने योग्य बनाता है। क्या ये महिमामय संत वचन आज के यानी वर्तमान अशांत युग में हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं? याद रखें, ऐसे ही चिंतक मनीषी संतजनों के वचनों की दिव्य ज्योति हमें उजाला देती है, जीवन मार्ग को सही रूप में प्रकाशित करती है, ताकि हम अपने सही मार्ग से भटके नहीं। अगर हम अपने सही मार्ग से भटक भी जाएं, तो वे हमें सही मार्ग की सही दिशा में प्रेरित कर ही देंगे। बस आवश्यकता है उन वचनों के अनुपालन की। लेकिन आज का एक सामाजिक सत्य यह भी है दोस्तों, कि इस धरती पर ऐसे भी कुटिल तत्व हैं जो हर कहीं अशांति को जन्म देकर अपने को लाभान्वित पाते हैं। आज यह इसलिए भी संभव है कि दुनिया एक नगर आंगन में परिवर्तित हो गई है। मनुष्य का मन उद्वेलित करने वाली सूचनाएं हर कहीं सहज पहुंच जाती है और उनसे अशांत लहरें उठने लगती हैं। उससे मानव मन सहज उद्वेलित हो उठते हैं, वे सब अपने में अशांति अनुभव करने लगते हैं। एक सच यह भी है कि विज्ञान ने मनुष्य के हित में भूमिका निभाई है, पर कई दुख भी उसने पैदा किए हैं। मानव मन में अशांति पैदा करने की भूमिका का भी उसने निर्वाह किया है। हम इसे भी माने कि कुछ इंसानों के मन ही जैसे अशांत रहने के लिए बने हैं। ऐसे व्यक्ति दूर से ही नजर आते हैं कि वे अपने आप में कितने अशांत, कितने व्यथित हैं। सच तो यह है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति मन को अशांति देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जो अपने आप को हर जगह असमर्थ पाते हैं,

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन हो शांत शांति विश्वासी, एवं इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है हमारा मॉनसून। लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता बोरेकर।

पर्यावरण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है हमारा मानसून। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता हैं समता बोरेकर। श्रोता साथियों, बारिश की बूंदे हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को संगीत से भर देती है, जिसकी राग और ताल पर हमारी ये दुनिया थिरक उठती है। और न सिर्फ थिरकती है, बल्कि मानसून किसी कुशल चित्रकार की तरह धरती पर खूबसूरत रंगीन नजारों की पेंटिंग भी करता है। मानसून के चटकीले रंग ने मानव मन और मस्तिष्क पर अपना जो असर छोड़ा है, वो कल्पना से परे है। वैज्ञानिक, लेखक, कवि, चित्रकार, गीतकार या संगीतकार हो, या फिर राजा, रंग, जनता या सरकार, इनमें से ऐसा कोई नहीं जो मानसून के जादू से बचा हो। दोस्तों, यह मानसून भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में कृषि का आधार है। लेकिन दोस्तों, पहले ये तो बताइए कि यह मानसून शब्द आया कहाँ से? इस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई। अरब के समुद्री व्यापारी समुद्र की ओर या उसके विपरीत चलने वाली हवाओं को मौसम कहा करते थे। यही मौसम आगे चलकर मानसून कहा जाने लगा। श्रोता साथियों, यह मानसून वास्तव में पृथ्वी पर सबसे बड़ी जलवायु संरचना है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भूगोल पर इसका विस्तार लगभग 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। यह मानसून मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण विकसित रूप से मिलता है, लेकिन अमेरिका, मैक्सिको के पश्चिमी भागों तक इसके तार जुड़े हुए हैं। श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हम सभी मानसून पर निर्भर होते हैं। मानसून के कारण ही अच्छी वर्षा और अच्छा कृषि उत्पादन होता है। और तो और, यदि इस मानसून चक्र के आने में जरा सी देरी या जल्दी हो जाए, तब भी हम प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे पर्यावरण की उचित और सुचारू गति भी इसी मानसून चक्र से प्रभावित होती है। हमारी प्रकृति और पर्यावरण को लय ताल में बांधने वाले इस मानसून चक्र को आखिर समझा कैसे जाए? दरअसल साथियों, यह मानसून चक्र धरती और समुद्री जल के ऊपर वर्ष भर पड़ने वाली ऊष्मा के फलस्वरूप होने वाले तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, ताप के अंतर पर। इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा दोस्तों कि जलीय एवं स्थलीय भागों में सौर विकिरण को धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। स्थल भाग की तुलना में सूर्य की ऊष्मा समुद्री जल को अधिक देर से गर्म कर पाती है। देखिए दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि बरसात का मौसम गर्मियों के बाद आता है। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में गर्मियों में मानसून का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। जाड़े के पश्चात अप्रैल मई में सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी पाकर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलीय भाग, जहां एक ओर तो खूब गर्म हो जाता है, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर की विशाल जलराशि अपेक्षाकृत ठंडी होती है। अब श्रोता साथियों, होता यह है कि स्थलीय भाग की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण वहां निम्न दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तापमान के अंतर और निम्न दबाव की स्थिति के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और फिर यहां से उच्च दाब वाली शीतल समुद्री हवाएं अपने साथ भारी नमी लिए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर भारत के पश्चिम में सह्याद्री और उत्तर में हिमालय पर्वत जैसी रुकावट के कारण ये मानसूनी हवाएं ऊपर उठती है और फिर वहां की ठंडक के कारण संघनित हो जाती है। संघनित होकर वर्षा की बूंदों में ये हवाएं बदल जाती हैं। दोस्तों, ये मानसूनी हवाएं हवा के बहने की दिशा के अनुसार दो तरह की होती हैं, दक्षिण पूर्वी मानसून और उत्तरी पश्चिमी मानसून। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बनी मानसूनी हवाएं आगे बढ़ने पर केरल के निकट पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत के मेघालय में गारो खासो की पहाड़ियों से टकराकर 2500 मिलीमीटर से भी ज्यादा वर्षा करती है दोस्तों।
और दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी शाखा पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार, भूटान और नेपाल में वर्षा करती है। इसी तरह छोटा साथियों, दक्षिण पूर्वी मानसून शाखा आगे बढ़कर गंगा के मैदानी हिस्से से नमी लेती है और फिर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में वर्षा करती है। ये दक्षिण पूर्वी मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसकी नमी धीरे धीरे कम होने लगती है और साथ ही साथ साथियों, वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है। सितंबर के लगभग अंत तक यह स्थिति उलट जाती है दोस्तों, और फिर ये हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते समय ये यहां पर फिर से नमी से भर जाती है। उत्तरी पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये मानसूनी हवाएं लौटते समय भारत के तमिलनाडु, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में वर्षा करती है। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसे होती है बारिश। श्रोता साथियों, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही होती है ना, तब इस क्रम में पृथ्वी का एक हिस्सा कुछ समय के लिए सूर्य से कुछ दूर चला जाता है और एक हिस्सा सूर्य के एकदम सामने आ जाता है। इसे ही सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर दो काल्पनिक रेखाएं हैं, पहली है कर्क रेखा और दूसरी है मकर रेखा। सूर्य के उत्तरायण के समय सूर्य कर्क रेखा पर होता है और दक्षिणायन के समय मकर रेखा पर। पृथ्वी पर इसी परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल और शीतकाल का आगमन होता है। आप ये तो जान ही गए होंगे ना दोस्तों कि हवा की दिशा और वायु का दबाव ही मानसून के मुख्य घटक है। ग्रीष्मकाल में 21 मार्च से सूर्य का उत्तरायण होना शुरू होता है और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। दोस्तों, इस कारण मध्य एशिया का भूभाग काफी गर्म हो जाता है और यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, यानी निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरीय भाग पर ठंड के कारण उच्च वायुदाब होता है और फिर यहाँ से हवाएं निम्न दबाव की ओर बहने लगती है। श्रोता साथियों, देखिए हमारी ये प्रकृति और पर्यावरण कितना व्यवस्थित और संतुलित तरीके से कार्य करते हैं। नियत समय पर मौसम बदलते हैं, नियत समय पर बारिश हो जाती है ना? मुझे तो ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको मैं ये बताती हूँ कि मानसून के कारण होने वाली वर्षा भी तीन प्रकार की होती है, चक्रीय मानसूनी वर्षा, पर्वतीय मानसूनी वर्षा और संवहनीय मानसूनी वर्षा। खैर दोस्तों, ये वर्षा भले ही किसी भी प्रकार की हो, लेकिन हमारे पर्यावरण के साथ साथ हमारे मन मयूर को भी तो भिगो देती है ना? बारिश की पहली बूंदों के साथ ही हमारी ये धरती साज श्रृंगार में लग जाती है। नई नई कोपलों, नए अंकुरों का जन्म होता है। गर्मी से तपती धरती पर जब मानसूनी बादलों की छांव पड़ती है तो मयूरों के साथ साथ पेड़ पौधे भी नृत्य करने लगते हैं। ये सारा पर्यावरण ही संगीतमय हो जाता है। बिल्कुल आज के मशहूर शायर गुलजार के इस नज्म की तरह कि मीठा है कोसा है, बारिश का बोसा है ना दोस्तों? तो आइए ना इस बारिश और मानसून का मजा उठाते हैं और गाते हैं कि बरसो रे मेघा मेघा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हमारा मॉनसून। लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता थी समता बोरेकर। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ग्लोरिया गांगले को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य सेहत। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा ये है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वो सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार

0: करो।
1: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास ईशा की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों, अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम के पिछले अंक से आगे चलेंगे जिसका शीर्षक था जीवन में उत्साह। साथियों पिछले स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार से हम कुछ प्रयत्न ऐसे करें जिससे पूरे जीवन भर हमें उत्साह और खुशी ये सारे तत्व मिलते रहें। वाकई इन तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम स्वयं को स्वस्थ रखने में कर सकते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य से हमें वापस खुशी ही मिलती है। तो साथियों ये चक्र चलता रहे इसके लिए हम लोगों ने पिछले अंक में ये भी बातचीत की थी कि यदि हम अपने स्वास्थ्य को सुधारें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने असंतुलित भोजन को संतुलित भोजन की ओर ले आएं और व्यायाम को भी जीवन में सम्मिलित करें। ये सारी चीजें अचानक न करके हम धीरे धीरे करें। इसके अलावा हमें जो ढेर सारा जल सेवन करना चाहिए उससे हमें जो फायदे मिलते हैं वो वाकई हमें शारीरिक ऊर्जा से भर देते हैं। साथ ही वक्त की पाबंदी के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। ये तो सही है साथियों कि हम जीवन में जितने नियमित होते जाते हैं, किसी भी नियम को रोजाना उसका अनुपालन करना, उसके अनुसार चलना, ये हमें आत्मविश्वास से भर देता है। और जब हम स्वयं नियमित होते हैं तब किसी भी अन्य व्यक्ति को इस संबंध में कहते हुए हमारे मन में आत्मविश्वास होता है। यही आत्मविश्वास हमें फिर से एक नई ऊर्जा देता है, नई खुशियां और उत्साह देता है। तो साथियों एक नियमितता यदि आपके जीवन में हो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति, तो उसके कितने सारे फायदे आपको जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर मिलते रहते हैं। अब बात चली है आत्मविश्वास की, तो हम में से कई साथियों को जो कि स्वस्थ होना चाहते हैं, आत्मविश्वासी होना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को लेकर थोड़ी सी हीन भावना होती है। कई बार हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि उनका रंग उतना उजला नहीं है जितना कि सबका है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कद सामान्य से थोड़ा कम है या फिर कद सामान्य से जरा ज्यादा ही ऊंचा है। कई को अपनी शारीरिक यष्टि अच्छी नहीं लगती, वे या तो बेडौल होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं। सामाजिक रूप से उन्हें ऐसा लगता है कि वे स्वीकार्य नहीं हैं, उन्हें सामान्य तरीके से नहीं लिया जाता है। लेकिन साथियों ये भी एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य है कि आप स्वयं को जितने अच्छे तरीके से पसंद करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से समाज आपको पसंद करेगा। आप यदि बार बार सभी के सामने अपने गहरे या दबे हुए रंग की चर्चा करेंगे तो सभी को ये चीज लगने लगेगी कि हाँ वाकई इसका रंग दबा हुआ है और शायद इसके मन में इस चीज को लेकर हीन भावना है। ऐसे में बाकी सभी का व्यवहार आपके प्रति सामान्य नहीं रहेगा और आपके मन में ये धारणा पुख्ता हो जाएगी कि आपका दबा हुआ रंग ही आपकी प्रत्येक असफलता के लिए कारणीभूत है। तो सबसे पहले यदि आप में आत्मविश्वास है तो उसी आत्मविश्वास के साथ ईश्वर ने आपको जो भी दिया है, जैसा भी शरीर दिया है, जैसा भी स्वास्थ्य दिया है, उसे सबसे पहले स्वयं प्रेम से और आत्मविश्वास से स्वीकार करें। मान लें कि आप आत्मविश्वासी हैं, आपको जिस भी प्रकार का रंग मिला है, जैसा भी शरीर मिला है, आप उसे पाकर खुश हैं। आप यदि उसे पाकर खुश हैं तो बाकी और कोई प्रसन्न कैसे नहीं होगा। सबसे पहली बात आपको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। स्वयं को व्यवस्थित रखने से आप सभी के समक्ष आत्मविश्वास से जा सकेंगे। अपने उम्दा वस्त्रों का चयन सही तरीके से करें। इसके साथ ही विशेषज्ञों से ये सलाह लें कि आप किस प्रकार से और ज्यादा अच्छे और ज्यादा सलीकेदार दिख सकते हैं। इसके साथ ही साथियों आत्मविश्वास जब आपका बढ़ता है तब आप स्वयं को सक्रिय भी महसूस करते हैं। कई बार आपका बेडौल शरीर आपको निष्क्रिय कर देता है लेकिन किसी नए काम को करने का उत्साह आप में सक्रियता ले आता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें रोजाना के तनाव की, आप ये कारण बता सकते हैं कि रोजाना के जीवन में इतने काम होते हैं, इतने तनाव होते हैं कि हम इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते। लेकिन रोजाना के तनाव को झेलना और समय से पहले अपने पूरी ऊर्जा को समाप्त कर देना, इसके स्थान पर रोजाना के काम में से थोड़ा थोड़ा सा समय निकालकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाना, ये ज्यादा सही होता है। इसलिए आपको अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय, वो भी नियमित रूप से, आप चाहें तो इसकी एक दिनचर्या बना सकते हैं, एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बना सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन 2 घंटे आपको स्वयं के लिए रखने हैं।
फिर इस दौरान आपको अपने मित्रों से या तो बातचीत कर लेनी है, आपको अपनी पसंद की चीजों की खरीदारी करनी है, अपनी पसंदीदा पुस्तक पढ़नी है, चित्र बनाने हैं, गाना गाना है, कोई वाद्य बजाना है, मूर्तिकला करनी है, जो भी आप करना चाहें, ये सारी चीजें आपको एक नया उत्साह देती हैं। इसके साथ ही यदि जीवन में उत्साह चाहिए तो सकारात्मक सोच तो होनी ही चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं इस तथ्य को कि हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं, कुछ उसी प्रकार का व्यवहार भी हमारा होता जाता है। यदि हमारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है और हम घबरा जाते हैं, तब हमारा स्वभाव हमेशा के लिए यही हो जाता है कि कोई भी विपत्ति हमें डरा सकती है। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचें, तो उस विपत्ति में से भी ढेरों क्षमताएं बाहर लाने की आपकी स्वयं की क्षमता बाहर आती है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे सामने तनाव इतने हैं कि हम आगे इन विपत्तियों का सामना कैसे करेंगे। इसीलिए साथियों, जब तक सकारात्मक सोच आपके साथ में है, आपको कोई भी अपने स्थान से हिला नहीं सकता। आपको रोजाना इस चीज को लेकर स्वयं को विश्वास दिलाना होगा कि आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य आप रोजाना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरा करने वाले हैं। यही तो वो सकारात्मक सोच, यही वो उमंग और यही वो खुशी होती है साथियों, जो आपको एक सही स्वास्थ्य देने में मदद करती है। ऐसा स्वास्थ्य जिसमें ढेर सारी उमंगें और ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा उत्साह छुपा होता है। साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको जीवन में उत्साह चाहिए, तो आपको नहीं कहना होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जी हां, ये सच है कि नहीं या फिर नकार देना, ये भी जीवन में तनाव को घटाने का एक बहुत बड़ा साधन है। हमारी जो महिलाएं बहनें होती हैं, उनमें कई बार ये आदत होती है कि वे काम को ओढ़ लेती हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी वे बिना किसी के दिए हुए स्वयं ही ग्रहण कर लेती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का काम उनका अपना काम हो जाता है, और जब तक परिवार के सभी सदस्यों का काम सही तरीके से नहीं होता, वे स्वयं को संपूर्ण नहीं मानती, सफल नहीं मानती, या फिर वे संतुष्ट ही नहीं होती। ऐसे में उनका स्वयं का अस्तित्व कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिए आपको किसी को ना कहना भी आना चाहिए। हमेशा ही आपके मन के विरुद्ध कोई कुछ कहता रहे और आप मर्यादावश उसको हाँ कहते रहें, इससे आपके मन के विपरीत बातें होती हैं, आपका मन उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाता और आपके मन में ग्रंथियां बनने लगती हैं। जब भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, तब आपके मन की ग्रंथियां खुलकर आपके सामने आती हैं और आप वास्तव में जो अच्छा और संतुलित व्यवहार करना चाहते हैं, जो कि आपके अस्तित्व का अंश है, वो आप नहीं कर पाते। साथियों, यदि जीवन में उत्साह को बनाए रखना है, तब आपके सामने बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप स्वयं कौन से तरीके को अपनाना चाहते हैं। इसमें से कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि हमने पिछले अंक में भी बातचीत की थी, आपको सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको अपने आसपास के व्यक्तियों का व्यवहार या फिर परिस्थिति यदि पसंद नहीं है, तब सभी को बदलने के स्थान पर छोटे मोटे बदलाव यदि स्वयं में करके देखें, तो शायद आपको बेहतर परिणाम सामने आएंगे और ये चीज दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको रचनात्मक कार्य भी करना चाहिए। जिस भी प्रकार की सृजनात्मक या फिर रचनात्मक कार्य जो आपको खुशी देते हैं, उन्हें करते रहने से जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार रहता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसके चलते आपके जीवन में उत्साह और ऊर्जा का एक भंडार बना रहेगा या फिर आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, उसे कहते हैं अरोमा थेरेपी। साथियों, अरोमा थेरेपी अर्थात सुगंध की मदद से किया जाने वाला इलाज, ये थेरेपी खासकर तनाव को दूर भगाने और आपको ऊर्जा से भर देने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं, तब आप सचमुच ये जान सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की सुगंध और उनका असर आपके मूड को बदल देता है, आपके तनाव को एकदम कम कर देता है और आप उस तनाव की धुंध से परे बहुत कुछ सोच पाते हैं। अरोमा थेरेपी में कई प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, कई प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। यदि घरेलू इलाज आप इसका करना चाहें,
तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जब भी आप स्नान का पानी अपने सामने रखें तब उसमें ऑरेंज या लैवेंडर, पेपरमिंट या फिर इसी प्रकार की उत्साह भर देने वाली सुगंध की कुछ बूंदें डाल दें और उस जल से आप स्नान करें। आप ये चीज महसूस करेंगे कि किस प्रकार से उस सुगंध के चलते आपका पूरा तनाव धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। हम सभी ये चीज महसूस करते हैं साथियों कि जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं तब जैसे हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। हमें कई बार नई उत्साह, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग, ये सारी चीजें एक साथ एक स्नान से मिल जाती हैं। तो इसके महत्व को अनदेखा नहीं करें। तनाव दूर भगाने के लिए रोजाना आपको अपने स्वभाव से संबंधित अभ्यास तो करना ही है कि आपको सकारात्मक सोच बनाकर रखना है, आपको स्वयं को सकारात्मक रूप से या धनात्मक रूप से बदलने की कोशिश करनी है, अच्छे तरीके से अपने व्यवहार को रखना है, परिस्थितियों को और लोगों को बदलने के स्थान पर खुद को बदलना है। लेकिन ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि अरोमाथेरेपी, इसमें सुगंध के जरिए आप स्वयं के मूड को बदल सकते हैं। जब आपका मूड बदलेगा तब आपको ये महसूस होगा कि जो तनाव था वो कितना बेकार का तनाव था। वो तनाव आपको सिर्फ तकलीफें दे सकता था, आपकी ऊर्जा को खर्च कर सकता था, लेकिन आपको दे कुछ नहीं सकता था। यदि आप नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहते हैं तब ये चीजें आपके स्वभाव में आने लगती हैं। आपको इन चीजों का बोध होने लगता है कि तनाव करने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान होता है हमारे अपने प्रयत्नों से। तो हम जो ऊर्जा तनाव के रूप में खर्च करते हैं उस ऊर्जा को अपने प्रयत्नों में लगाएं तो वाकई तनाव होगा ही नहीं। इसके साथ ही साथियों, यदि आप सही तरीके से नींद लेते हैं, आप सही तरीके से श्वास संबंधी क्रियाओं को पूरा करते हैं तो ये भी आपके तनाव को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथियों, श्वास संबंधी क्रियाएं जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्राणायाम यदि किया जाए, दिन में नियमित एक समय निकाला जाए और उसमें प्राणायाम किया जाए, उसके साथ ही नींद को पूरा स्थान अपने जीवन में दे, थकान को स्वयं पर हावी ना होने दे, तो जीवन में उत्साह हमेशा बना रहेगा। तो साथियों, यहीं पर हम संपन्न करते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम के इस अंक को और अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रम के प्रश्न की। तो आज का हमारा कार्यक्रम का प्रश्न है, सुगंध की मदद से किए जाने वाले इलाज को क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार और सुने, सुगंध की मदद से किए जाने वाले इलाज को

साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत,

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से rva मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य सेहत। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा ये है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वो सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों, अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम के पिछले अंक से आगे चलेंगे जिसका शीर्षक था जीवन में उत्साह। साथियों पिछले स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार से हम कुछ प्रयत्न ऐसे करें जिससे पूरे जीवन भर हमें उत्साह और खुशी ये सारे तत्व मिलते रहें। वाकई इन तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम स्वयं को स्वस्थ रखने में कर सकते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य से हमें वापस खुशी ही मिलती है। तो साथियों ये चक्र चलता रहे इसके लिए हम लोगों ने पिछले अंक में ये भी बातचीत की थी कि यदि हम अपने स्वास्थ्य को सुधारें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने असंतुलित भोजन को संतुलित भोजन की ओर ले आएं और व्यायाम को भी जीवन में सम्मिलित करें, ये सारी चीजें अचानक न करके हम धीरे धीरे करें। इसके अलावा हमें जो ढेर सारा जल सेवन करना चाहिए उससे हमें जो फायदे मिलते हैं वो वाकई हमें शारीरिक ऊर्जा से भर देते हैं। साथ ही वक्त की पाबंदी के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। ये तो सही है साथियों कि हम जीवन में जितने नियमित होते जाते हैं, किसी भी नियम को रोजाना उसका अनुपालन करना, उसके अनुसार चलना, ये हमें आत्मविश्वास से भर देता है। और जब हम स्वयं नियमित होते हैं तब किसी भी अन्य व्यक्ति को इस संबंध में कहते हुए हमारे मन में आत्मविश्वास होता है। यही आत्मविश्वास हमें फिर से एक नई ऊर्जा देता है, नई खुशियां और उत्साह देता है। तो साथियों एक नियमितता यदि आपके जीवन में हो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति, तो उसके कितने सारे फायदे आपको जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर मिलते रहते हैं। अब बात चली है आत्मविश्वास की, तो हम में से कई साथियों को जो कि स्वस्थ होना चाहते हैं, आत्मविश्वासी होना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को लेकर थोड़ी सी हीन भावना होती है। कई बार हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि उनका रंग उतना उजला नहीं है जितना कि सबका है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कद सामान्य से थोड़ा कम है या फिर कद सामान्य से जरा ज्यादा ही ऊंचा है। कई को अपनी शारीरिक यष्टि अच्छी नहीं लगती, वे या तो बेडौल होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं। सामाजिक रूप से उन्हें ऐसा लगता है कि वे स्वीकार्य नहीं हैं, उन्हें सामान्य तरीके से नहीं लिया जाता है। लेकिन साथियों ये भी एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य है कि आप स्वयं को जितने अच्छे तरीके से पसंद करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से समाज आपको पसंद करेगा। आप यदि बार बार सभी के सामने अपने गहरे या दबे हुए रंग की चर्चा करेंगे तो सभी को ये चीज लगने लगेगी कि हाँ वाकई इसका रंग दबा हुआ है और शायद इसके मन में इस चीज को लेकर हीन भावना है। ऐसे में बाकी सभी का व्यवहार आपके प्रति सामान्य नहीं रहेगा और आपके मन में ये धारणा पुख्ता हो जाएगी कि आपका दबा हुआ रंग ही आपकी प्रत्येक असफलता के लिए कारणीभूत है। तो सबसे पहले यदि आप में आत्मविश्वास है तो उसी आत्मविश्वास के साथ ईश्वर ने आपको जो भी दिया है, जैसा भी शरीर दिया है, जैसा भी स्वास्थ्य दिया है, उसे सबसे पहले स्वयं प्रेम से और आत्मविश्वास से स्वीकार करें। मान लें कि आप आत्मविश्वासी हैं, आपको जिस भी प्रकार का रंग मिला है, जैसा भी शरीर मिला है, आप उसे पाकर खुश हैं। आप यदि उसे पाकर खुश हैं तो बाकी और कोई प्रसन्न कैसे नहीं होगा। सबसे पहली बात आपको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। स्वयं को व्यवस्थित रखने से आप सभी के समक्ष आत्मविश्वास से जा सकेंगे। अपने उम्दा वस्त्रों का चयन सही तरीके से करें। इसके साथ ही विशेषज्ञों से ये सलाह लें कि आप किस प्रकार से और ज्यादा अच्छे और ज्यादा सलीकेदार दिख सकते हैं। इसके साथ ही साथियों आत्मविश्वास जब आपका बढ़ता है तब आप स्वयं को सक्रिय भी महसूस करते हैं। कई बार आपका बेडौल शरीर आपको निष्क्रिय कर देता है लेकिन किसी नए काम को करने का उत्साह आप में सक्रियता ले आता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें रोजाना के तनाव की, आप ये कारण बता सकते हैं कि रोजाना के जीवन में इतने काम होते हैं, इतने तनाव होते हैं कि हम इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते। लेकिन रोजाना के तनाव को झेलना और समय से पहले अपने पूरी ऊर्जा को समाप्त कर देना, इसके स्थान पर रोजाना के काम में से थोड़ा थोड़ा सा समय निकालकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाना, ये ज्यादा सही होता है। इसलिए आपको अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय, वो भी नियमित रूप से, आप चाहें तो इसकी एक दिनचर्या बना सकते हैं, एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बना सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन 2 घंटे आपको स्वयं के लिए रखने हैं।
फिर इस दौरान आपको अपने मित्रों से या तो बातचीत कर लेनी है, आपको अपनी पसंद की चीजों की खरीदारी करनी है, अपनी पसंदीदा पुस्तक पढ़नी है, चित्र बनाने हैं, गाना गाना है, कोई वाद्य बजाना है, मूर्तिकला करनी है, जो भी आप करना चाहें, ये सारी चीजें आपको एक नया उत्साह देती हैं। इसके साथ ही यदि जीवन में उत्साह चाहिए तो सकारात्मक सोच तो होनी ही चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं इस तथ्य को कि हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं कुछ उसी प्रकार का व्यवहार भी हमारा होता जाता है। यदि हमारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है और हम घबरा जाते हैं, तब हमारा स्वभाव हमेशा के लिए यही हो जाता है कि कोई भी विपत्ति हमें डरा सकती है। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचे तो उस विपत्ति में से भी ढेरों क्षमताएं बाहर लाने की आपकी स्वयं की क्षमता बाहर आती है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे सामने तनाव इतने हैं कि हम आगे इन विपत्तियों का सामना कैसे करेंगे। इसीलिए साथियों, जब तक सकारात्मक सोच आपके साथ में है, आपको कोई भी अपने स्थान से हिला नहीं सकता। आपको रोजाना इस चीज को लेकर स्वयं को विश्वास दिलाना होगा कि आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य आप रोजाना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरा करने वाले हैं। यही तो वो सकारात्मक सोच, यही वो उमंग और यही वो खुशी होती है साथियों, जो आपको एक सही स्वास्थ्य देने में मदद करती है। ऐसा स्वास्थ्य जिसमें ढेर सारी उमंगे और ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा उत्साह छुपा होता है। साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको जीवन में उत्साह चाहिए तो आपको नहीं कहना होगा, आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जी हां, ये सच है कि नहीं या फिर नकार देना, ये भी जीवन में तनाव को घटाने का एक बहुत बड़ा साधन है। हमारी जो महिलाएं बहनें होती हैं, उनमें कई बार ये आदत होती है कि वे काम को ओढ़ लेती हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी वे बिना किसी के दिए हुए स्वयं ही ग्रहण कर लेती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का काम उनका अपना काम हो जाता है और जब तक परिवार के सभी सदस्यों का काम सही तरीके से नहीं होता, वे स्वयं को संपूर्ण नहीं मानती, सफल नहीं मानती या फिर वे संतुष्ट ही नहीं होती। ऐसे में उनका स्वयं का अस्तित्व कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिए आपको किसी को ना कहना भी आना चाहिए। हमेशा ही आपके मन के विरुद्ध कोई कुछ कहता रहे और आप मर्यादावश उसको हाँ कहते रहें, इससे आपके मन के विपरीत बातें होती हैं। आपका मन उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाता और आपके मन में ग्रंथियां बनने लगती हैं। जब भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, तब आपके मन की ग्रंथियां खुलकर आपके सामने आती हैं और आप वास्तव में जो अच्छा और संतुलित व्यवहार करना चाहते हैं, जो कि आपके अस्तित्व का अंश है, वो आप नहीं कर पाते। साथियों, यदि जीवन में उत्साह को बनाए रखना है, तब आपके सामने बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप स्वयं कौन से तरीके को अपनाना चाहते हैं। इसमें से कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि हमने पिछले अंक में भी बातचीत की थी, आपको सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको अपने आसपास के व्यक्तियों का व्यवहार या फिर परिस्थिति यदि पसंद नहीं है, तब सभी को बदलने के स्थान पर छोटे मोटे बदलाव यदि स्वयं में करके देखें, तो शायद आपको बेहतर परिणाम सामने आएंगे और ये चीज दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको रचनात्मक कार्य भी करना चाहिए। जिस भी प्रकार की सृजनात्मक या फिर रचनात्मक कार्य जो आपको खुशी देते हैं, उन्हें करते रहने से जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार रहता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसके चलते आपके जीवन में उत्साह और ऊर्जा का एक भंडार बना रहेगा या फिर आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, उसे कहते हैं अरोमा थेरेपी। साथियों, अरोमा थेरेपी अर्थात सुगंध की मदद से किया जाने वाला इलाज, ये थेरेपी खासकर तनाव को दूर भगाने और आपको ऊर्जा से भर देने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं, तब आप सचमुच ये जान सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की सुगंध और उनका असर आपके मूड को बदल देता है, आपके तनाव को एकदम कम कर देता है और आप उस तनाव की धुंध से परे बहुत कुछ सोच पाते हैं। अरोमा थेरेपी में कई प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, कई प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। यदि घरेलू इलाज आप इसका करना चाहें,
तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जब भी आप स्नान का पानी अपने सामने रखें, तब उसमें ऑरेंज या लैवेंडर, पेपरमिंट या फिर इसी प्रकार की उत्साह भर देने वाली सुगंध की कुछ बूंदें डाल दें और उस जल से आप स्नान करें। आप ये चीज महसूस करेंगे कि किस प्रकार से उस सुगंध के चलते आपका पूरा तनाव धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। हम सभी ये चीज महसूस करते हैं साथियों कि जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं तब जैसे हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। हमें कई बार नई उत्साह, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग, ये सारी चीजें एक साथ एक स्नान से मिल जाती हैं। तो इसके महत्व को अनदेखा नहीं करें। तनाव दूर भगाने के लिए रोजाना आपको अपने स्वभाव से संबंधित अभ्यास तो करना ही है कि आपको सकारात्मक सोच बनाकर रखना है, आपको स्वयं को सकारात्मक रूप से या धनात्मक रूप से बदलने की कोशिश करनी है, अच्छे तरीके से अपने व्यवहार को रखना है, परिस्थितियों को और लोगों को बदलने के स्थान पर खुद को बदलना है। लेकिन ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अरोमाथेरेपी, इसमें सुगंध के जरिए आप स्वयं के मूड को बदल सकते हैं। जब आपका मूड बदलेगा तब आपको ये महसूस होगा कि जो तनाव था वो कितना बेकार का तनाव था। वो तनाव आपको सिर्फ तकलीफें दे सकता था, आपकी ऊर्जा को खर्च कर सकता था, लेकिन आपको दे कुछ नहीं सकता था। यदि आप नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहते हैं तब ये चीजें आपके स्वभाव में आने लगती हैं। आपको इन चीजों का बोध होने लगता है कि तनाव करने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान होता है हमारे अपने प्रयत्नों से। तो हम जो ऊर्जा तनाव के रूप में खर्च करते हैं उस ऊर्जा को अपने प्रयत्नों में लगाएं तो वाकई तनाव होगा ही नहीं। इसके साथ ही साथियों, यदि आप सही तरीके से नींद लेते हैं, आप सही तरीके से श्वास संबंधी क्रियाओं को पूरा करते हैं तो ये भी आपके तनाव को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथियों, श्वास संबंधी क्रियाएं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्राणायाम यदि किया जाए, दिन में नियमित एक समय निकाला जाए और उसमें प्राणायाम किया जाए, उसके साथ ही नींद को पूरा स्थान अपने जीवन में दे, थकान को स्वयं पर हावी ना होने दे, तो जीवन में उत्साह हमेशा बना रहेगा। तो साथियों, यहीं पर हम संपन्न करते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम के इस अंक को और अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रम के प्रश्न की। तो आज का हमारा कार्यक्रम का प्रश्न है, सुगंध की मदद से किए जाने वाले इलाज को क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार और सुने, सुगंध की मदद से किए जाने वाले इलाज को।

साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत,

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rvahindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं।

बैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए RVA हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का, आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

तहे दिल से धन्यवाद और सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की सभा शुरू करने से पहले मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। होते ही सवेरा चिड़िया चहकी, फूल खिले और कलियां महकी, गुनगुन करता भौरा आया, भौर का उसने गीत सुनाया, पंख फैलाए तितलियां उड़ती, इधर कभी उधर को मुड़ती, नींद में खोई दुनिया जागी, रोज के अपने काम को भागी, देर तलक कुछ लोग है सोते, सुबह का सुंदर दृश्य है खोते, ठंडी ठंडी पवन बहे जो, स्वस्थ रहोगे यही कहे वो, ताजी ताजे सांस भरो तुम, अपना आलस और करो तुम। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो आइए साथियों, हम भी आलस न करते हुए समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला कार्यक्रम है वह है कृषि जगत। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: शायद आपको याद होगा कि ये पिछले कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे थे सरकार के द्वारा किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराई जाएगी इसके बारे में।
1: हाँ हाँ,
0: यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी होगा मुखिया जी कि एक एकड़ जमीन के लिए कितनी मात्रा में बीज किसानों को दी जाएगी और उस पर कितना अनुदान मिलेगा।
1: देखिए वीरेंद्र जी, एक एकड़ जमीन के लिए 30 किलो चने के बीज के लिए 4850 रुपए खर्च करने होंगे।
0: जी,
1: यानी एक एकड़ जमीन के लिए 30 किलो बीज और उसके लिए खर्च करने होंगे 4850 रुपए।
0: जी जी,
1: इसमें 2680 रुपए का अनुदान मिलेगा।
0: अच्छा,
1: हाँ, यानी कि लगभग आधे पैसे वापस हो जाएंगे
0: जी
1: अकाउंट में। वहीं मसूर के 16 किलो बीज के लिए 3750 रुपए लगेंगे, इनमें किसानों को 2680 रुपए अनुदान मिलेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: यानी कि दो तिहाई अनुदान लगभग
0: जी।
1: इसी प्रकार गेहूं के बीज प्रति एकड़ 40 किलो के लिए 2100 रुपए व्यय करने पर 1980 रुपए वापस मिल जाएंगे
0: जी,
1: यानी ज्यादातर पैसा वापस आ जाएगा।
0: हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी। एक बात यह भी बता ही दीजिए कि क्या किसानों को मौसम के अनुरूप उपचारित बीज भी उपलब्ध कराया जाए।

0: इस तरह की ये कोई योजना है सरकार के पास?
1: हाँ वीरेंद्र भाई, हमारी किसान सलाहकार से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि किसानों को मौसम के अनुरूप उपचारित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। जल जमाव को लेकर टाल में फसलों की बुआई में काफी विलंब हुआ है
0: जी।
1: कई इलाके खेती योग्य नहीं है, ऐसे में गेहूं, चना और मटर की खेती फायदेमंद साबित होगी।
0: खैर कुछ भी हो, सरकार की एक अच्छी पहल इसे कही जाएगी। शायद ऐसा करने से रबी फसल के अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहूलियत होगी और टाल क्षेत्र के किसानों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। आजकल एक बात की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है मुखिया जी, और वह है नोटबंदी की चर्चा। हर तरफ हो रही है।
1: हाँ।
0: कई लोग इसके फायदे गिनने और गिनाने में लगे हुए हैं, तो कई लोग इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं मानते। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने भी इसे नुकसान ही माना है और इससे होने वाले नुकसान की ओर इशारा भी किया है संसद में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका कृषि पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना आपको दिखाई देती है, क्योंकि अभी जैसा देख रहे हैं रबी का मौसम है और किसानों को बीज खाद की खरीदारी भी करनी है।
1: अब देखिए, लंबी लाइन है, थोड़ी परेशानी है, लेकिन नकदी उपलब्ध है। एटीएम से, बैंक की शाखा से आपको इतनी नकदी मिल सकती है कि रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से चलाई जा सके। फिर वे दुकानें भी हैं जहां क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान किया जा सकता है। ऐसे दुकानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान किया जा सकता है। लेकिन ये सारा नजारा शहरों का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हो सकता है कि कई ऐसे कस्बे भी हों जहां लोगों के सामने भुगतान के ये वैकल्पिक तरीके पहुंच चुके हों, लेकिन उसे लेकर समस्या बहुत ज्यादा आड़े न आती हो।
0: मुखिया जी, ये बातें तो बिल्कुल सही है कि जहां तक वैकल्पिक व्यवस्था है वहीं पर रोज मारामारी हो रही है, तो गांव की बात ही दिगर है। कई गांव में तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल, हो सकता है
0: इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की बात करना ही बेमानी होगी, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है।
1: तो यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे गांव में ऐसा नहीं हो पाया है। हमारे गांव के लोग अब भी भुगतान के आधुनिक विकल्पों से अनजान हैं।
0: जी,
1: वे बैंकिंग व्यवस्था से भी बहुत दूर हैं।
0: बिल्कुल,
1: ज्यादातर गांवों में एटीएम नहीं है और बैंक शाखाएं भी बहुत कम ही संख्या में हैं। और जहां ग्रामीण और सहकारी बैंक हैं, वहां अभी तक पुराने नोट बदलने की व्यवस्था ही नहीं पहुंची है।
0: बिल्कुल,
1: वहां अगर किसी के पास 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट हैं तो उन्हें बदलवाने के लिए हो सकता है कि कई मील लंबा सफर तय करना पड़े। इसके अलावा दूसरी मुश्किलें भी हैं।
0: दूसरी बात यह है मुखिया जी कि यह समस्या ऐसे समय में आई है जब खेतों में रबी फसल बोई जानी है और इसके लिए किसानों को बीज, रासायनिक खाद खरीदनी है। इससे चुके तो पूरा सीजन ही हाथ से निकल जाएगा। इसे लेकर चिंता के स्वर पिछले 2 सप्ताह से पूरे देश में सुनाई दे रहा है।
1: हाँ, तो ऐसे में सरकार का एक फैसला आया है जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान अब पुराने नोटों से अपने लिए बीज खरीद सकेंगे।
0: जी,
1: जाहिर है कि सरकार को भी ये समझ में आ गई है कि ये मामला किसानों की निजी समस्या नहीं है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा से भी मामला जुड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हालांकि किसानों को मिली ये राहत महत्वपूर्ण भले है, लेकिन बहुत बड़ी राहत नहीं है। इससे परेशानी बहुत ज्यादा घटने वाली नहीं है।
0: ऐसा क्यों मुखिया जी? इस फैसले के बावजूद किसानों की समस्याएं क्यों ज्यों की त्यों बनी रहेगी?
1: सरकार की यह घोषणा के अनुसार किसानों को ये छूट केंद्र सरकार के विक्रय केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालय से बीज खरीदने पर ही मिल सकेगी।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसका अर्थ है कि ये सुविधा भी देश में सभी जगहों के सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाएगी।
0: अच्छा।
1: रबी की बुआई का समय निकला जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए इस राहत को सभी किसानों तक पहुंचाया जाना जरूरी है। उम्मीद है कि ये काम जल्द ही होगा। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। बीजों की खरीद पर किए गए इस फैसले को उर्वरकों की खरीद तक ले जाना भी जरूरी है।
0: किसानों की समस्या के बारे में और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही दिक्कत के बारे में या सरकार की इस नीति के बारे में आपका नजरिया किस तरह का है मुखिया जी?
1: देखिए, किसानों की यह समस्या हमारी कृषि और ग्रामीण नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। 8 साल पहले देश में एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी।
0: जी जी।
1: उसका मकसद था किसानों को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और फसल की बुआई के समय उन्हें आसान शर्तों पर उधार उपलब्ध कराना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रिजर्व बैंक और नाबार्ड की मदद से शुरू की गई यह योजना अगर ठीक से लागू हो गई होती तो शायद किसानों के सामने नकदी का यह संकट इस तरह से नहीं आता जैसे कि आज है।
1: बिल्कुल, महानगर के लोगों की तरह ही किसान भी प्लास्टिक मनी से बीज और उर्वरक खरीद रहे होते। इसी तरह मौजूदा सरकार ने 2 साल पहले जन धन खाता शुरू की थी
0: जी।
1: जिसका मकसद देश की लगभग पूरी आबादी को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था।
0: तो क्या ऐसा माना जाए मुखिया जी कि इन योजनाओं से किसानों को वर्तमान समय में लाभ मिलने की उम्मीद है? खाद बीज की खरीद के लिए नोटबंदी जैसी समस्याओं से मुकाबला करने में अब हमारे किसान, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के किसान सक्षम हो गए हैं।
1: बेशक, इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने खाते भी खुलवाए, खासकर किसानों ने, क्योंकि उनकी उर्वरक सब्सिडी सीधे इन्हीं खातों में आनी थी
0: जी।
1: लेकिन मौजूदा संकट बताता है कि ये खाते इसके आगे जाकर किसान को नकदी का भुगतान व्यवस्था से जोड़ने में नाकाम रहे हैं।
0: बिल्कुल, अभी तक तो ये ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि ये सभी के सभी किसान बैंकिंग की प्रणाली जो है आधुनिक प्रणाली उससे जुड़ नहीं पाए हैं। नकद की कमी के कारण फसलों की बुआई पर कितना असर पड़ने की संभावना नजर आती है इन दिनों? किन फसलों पर इसका सीधा सीधा असर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है मुखिया जी।
1: हाँ, ये बात तो सही है कि अचानक बड़े नोट के चलन से बाहर किए जाने का खेतीबाड़ी पर बुरा असर पड़ा है
0: जी।
1: बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड में रबी की फसलों और नकदी फसलों की बुआई काफी धीमी हो गई है। नकदी न होने के कारण किसान खाद बीज नहीं खरीद पा रहे हैं।
0: ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं रहने के कारण झारखंड के क्षेत्र में 50% आलू के दाम गिर गए हैं।
1: हाँ,
0: साथ ही साथ 2000 के नए नोट से खरीदारी जो है बहुत मुश्किल हो गई है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। झारखंड का ही आंकड़ा है कि गेहूं, तरबूज, सरसों, पालक समेत सब्जी के बीजों की बिक्री छोटे नोट की कमी के कारण 70% तक कम हो गई है
0: जी।
1: इसका सबसे अधिक असर नकदी फसलों की खेती पर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि बैंकों से नोट सीमित मात्रा में मिल रहे हैं, पैसा नहीं होने से बीज बाजार में बिक्री गिर गई है।
0: अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां किस फसल पर अधिक मार पड़ने की संभावना है, खास करके नोटबंदी की, और किस तरह से परेशानी वहां के किसान झेल रहे हैं?
1: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर गेहूं और आलू की बुआई पर पड़ा है।
0: अच्छा।
1: सहकारी बैंकों में पुराने नोट नहीं बदले जा रहे हैं। 42% क्षेत्रों में ही गेहूं की बुआई हो सकी है और आलू की 80% बुआई हो पाई है, जबकि अब तक इसे पूरा हो जाना चाहिए था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: किसानों के सामने जो मुख्य समस्या है वो ये है कि जुताई के लिए ट्रैक्टर मालिक 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं ले रहे हैं। खाद बीज गोदामों और निजी दुकानों में भी पुराने नोट नहीं लिए जा रहे हैं। बैंकों में लाइन लगाने के बाद भी 1000 रूपये दिए जा रहे हैं। ग्रामीण शाखाओं में नई करेंसी पहुंची ही नहीं है। इसी प्रकार बहुत तरह की दिक्कतें किसानों के सामने आ रही हैं। तो बिहार के किसान किस तरह नोटबंदी से परेशान हैं, इस बात की पर हम आगे भी चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर चर्चा करना बहुत जरूरी है मुखिया जी कि बिहार के किसान किस तरह से नोटबंदी की परेशानी से जूझ रहे हैं और उनकी फसलों का नोटबंदी की समस्या से क्या हाल होगा, किस तरह से वे आगे की खेती कर पाएंगे, इसके बारे में अगले कार्यक्रम में आपसे जरूर हम चर्चा करेंगे। इस सुंदर जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी।
0: पिछले कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे खास करके छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में। ऐसा श्याम जी, ज्यादातर मामलों में आदिवासियों की जमीनें आखिर कैसे दूसरों की या फिर सरकारी तंत्रों की भेंट चढ़ जाती है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है।
1: देखिए, ज्यादातर मामलों में आदिवासियों की जमीनें अधिग्रहित कर ली जाती हैं और उन्हें इसका पता तब चलता है जब रेंजर अफसर या फॉरेस्ट गार्ड उस पर अपना अधिकार जमाने पहुंचते हैं।
0: जी जी।
1: इस स्थिति में आदिवासी समूहों को विस्थापन, पुनर्स्थापन, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण समेत अन्य कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परियोजना निर्माण के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा है।
0: जी बिल्कुल।
1: दामोदर घाटी परियोजना के दौरान विस्थापित हुई आबादी अभी भी पुनर्वास और मुआवजे की लड़ाई लड़ रही है।
0: एक बात यह बताइए कपूर जी कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले सत्र में जो कैंपा बिल पास किया गया,
2: जी
0: कैंपा बिल, आखिर उसका क्या हुआ, वो किस तरह से आदिवासियों को तबाह करने वाला है?
2: केंद्र सरकार द्वारा पिछले सत्र में कंपनसेटरी ऑफर सेशन एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो कैंपा बिल के नाम से प्रचलित है, पास किया गया। नए कानून का मकसद उद्योग और कारखानों के लिए काटे गए जंगलों के बदले नए पेड़ लगाकर कमजोर होते वनों को स्वस्थ व सघन बनाना है।
0: जी जी।
2: इसके लिए कंपनियों द्वारा वन भूमि के इस्तेमाल के बदले मुआवजे के तौर पर कंपनसेटरी ऑफर सेशन फंड में पैसा जमा किए जाने का प्रावधान है।
0: अजीब बात है श्याम जी, एक तरफ सरकार उद्योगों के लिए वनों की कटाई को प्रोत्साहित कर रही है तो दूसरी ओर नए जंगल बसाने की योजना बना रही है। यह किस तरह की नीति है?
1: लेकिन समस्या यह है कि कानून के लागू हो जाने से वनों की अंधाधुंध कटाई को प्रोत्साहन मिलेगा।
0: जी जी।
1: जिसका प्रतिकूल असर वहां के निवासियों पर पड़ना तय है। इस फंड का 90% हिस्सा राज्यों और 10% केंद्र के पास होगा। इस कोष पर ग्राम सभाओं और स्थानीय प्रतिनिधियों का सीधा असर नहीं होने की वजह से नौकरशाहों व वन विभाग द्वारा धन के दुरुपयोग की आशंका भी बनती है।
0: सुप्रीम कोर्ट का एक और नया फैसला है जो कुछ कुछ इसी से संबंधित है श्याम जी, और वह है सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण रोकने का। कहा जा रहा है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है।
1: हाँ वीरेंद्र जी, मुझे भी ऐसा सुनने को मिला है, लेकिन इससे किस तरह की समस्याओं से हमें निजात मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है।
0: जी जी।
1: कहीं इसका भी हाल छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जैसा न हो, जैसा इसी बात का डर सता रहा है।
0: अच्छा अच्छा।
1: आज आदिवासी समुदाय अपने ही घर में अपने को बेगाना महसूस कर रहे हैं।
2: नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो शायद हमारे शहरों, कस्बों और गांवों की एक बड़ी समस्या को काफी हद तक हल कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर किसी किस्म के अवैध निर्माण की मंजूरी न दें।
0: प्रश्न यह उठता है श्याम जी कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर में इस तरह के फैसले क्यों लेने पड़े, इसकी खास वजह क्या हो सकती है?
1: यह फैसला केरल सरकार के फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दी।
0: जी।
1: केरल सरकार ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक आइलैंड में किसी नेता की मूर्ति लगाने का फैसला किया था।
0: अच्छा।
1: सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को तो इससे रोक ही दिया, साथ ही सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस तरह की मंजूरी न दें।
0: इस तरह के आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले भी दिए जा चुके हैं कपूर साहब।
2: जी हाँ वीरेंद्र जी, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले सरकारों से कह चुका है कि वे सार्वजनिक स्थानों से धार्मिक स्थलों सहित तमाम अवैध निर्माण हटाएं। इस फैसले पर अमल करना स्थानीय प्रशासन पर निर्भर करेगा।
0: सुप्रीम कोर्ट के इस पहल से किस तरह के परिणाम आने की उम्मीद जगती है श्याम जी?
1: हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इससे काफी सारे अवैध निर्माण रुक सकेंगे।
0: जी।
1: पिछले लंबे दौर में सार्वजनिक स्थानों का बहुत नुकसान हुआ है। सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण कोई नई समस्या नहीं है। लोग अतिक्रमण करने के लिए सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, मूर्ति लगाने के नाम पर हो या किसी और नाम पर।
0: सार्वजनिक स्थानों का अभिप्राय क्या है कपूर साहब? हम किसे सार्वजनिक स्थानों की श्रेणी में रखते हैं?
2: देखिए वीरेंद्र जी, सार्वजनिक स्थान वे होते हैं जिन पर व्यक्ति विशेष की मिल्कियत नहीं होती है और वे सबके लिए उपयोगी होते हैं।
0: जी,
2: यह सार्वजनिक स्थान किसी शहर के लिए फेफड़ों का काम करते हैं तो कभी रक्त वाहिनियों का। दिक्कत यह है कि जिन जगहों की निजी मिल्कियत नहीं होती उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता।
0: तो आखिर इन सार्वजनिक स्थानों पर तो गरीब गुरवा लोग कब्जा नहीं करते, और जो कब्जा जमाते हैं वे कौन लोग हैं और कब्जा जमाने की उनकी तरकीब क्या है?
1: कभी प्रशासन तो कभी रसूखदार स्वार्थी तत्व उन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। कब्जा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी समाज या समूह के भावनात्मक मुद्दे को उससे जोड़ दिया जाए।
0: जी,
1: चाहे वह मुद्दा धार्मिक हो या राजनीतिक। अगर किसी जगह पर कोई धार्मिक स्थल बना दिया जाए या किसी समूह या जाति के नेता की मूर्ति खड़ी कर दी जाए तो फिर उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तब वो उस समूह की भावनाओं या उनकी इज्जत का सवाल हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं श्याम जी। हमारे शहर में सैकड़ों ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जहां पर मंदिर के नाम पर, देवी देवताओं की मूर्ति के नाम पर, नेताओं की मूर्ति के नाम पर अतिक्रमण लगातार होता चला आ रहा है। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की भी तो मिलीभगत होती है ना?
2: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह से कई मैदान और बागीचे गायब हुए और सड़कों के बीच में तमाम नेताओं की मूर्तियां जनता का मार्गदर्शन करने के लिए खड़ी हो गईं।
0: श्याम जी, एक बात जो याद आ रही है वो यह है कि ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे
2: जी
0: की मृत्यु के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका स्मारक बनाने की मांग पिछले दिनों शिवसेना कर रही थी और उस पर काफी वो अड़ भी गई थी।
1: अच्छा हुआ कि न्यायिक हस्तक्षेप व प्रशासनिक सूझबूझ से मुंबई का ये ऐतिहासिक मैदान ठाकरे का स्मारक नहीं बन पाया।
0: जी जी,
1: इस मैदान से कई ऐतिहासिक स्मृतियां जुड़ी हैं। यहां नामी क्रिकेटरों ने क्रिकेट के शुरुआती सबक सीखे हैं।
0: लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि भारत में जिस गति से शहरीकरण का दौर चल रहा है उससे शहरों में धीरे धीरे जमीन का अकाल पड़ता जा रहा है। आखिर इस समस्या से कैसे निपटा जाए यह भी आज के दौर में एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है कपूर साहब।
1: देखिए मैं बताता हूँ, भारत का जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे इन समस्याओं को गंभीरता से देखने की जरूरत है। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब भारत की बहुसंख्यक आबादी शहरों में बसेगी।
0: जी बिल्कुल,
1: मानव सभ्यता की ये स्वाभाविक गति है कि लोग गांवों से आकर शहरों में बसते हैं।
0: तो क्या शहरीकरण से लोगों को फायदा होता है या फिर सिर्फ समस्या ही खड़ी होती है कपूर साहब?
2: देखिए वीरेंद्र जी, शहरीकरण से कई फायदे हैं लेकिन उसके साथ समस्याएं भी खड़ी होंगी। इनमें सार्वजनिक और खुली जगहों की रक्षा भी एक समस्या है। शहरों की खूबसूरती को बढ़ाना जरूरी है और हम मानते भी हैं कि ज्यादातर अवैध निर्माण किसी जगह की खूबसूरती को बिगाड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि बहुत ही भयानक परिणाम इसका भुगतने को सबको मिलता है।
0: सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा की जिम्मेवारी क्या केवल राज्य सरकार या आम पब्लिक का ही कर्तव्य बनता है, या वह इन सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा करे, उसकी देखभाल करे, क्या इसके लिए प्रशासन कहीं से भी जिम्मेवार नहीं है?
1: सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा करना सरकार का तो काम है ही
0: जी,
1: लेकिन समाज को भी उनका सम्मान करना सीखना होगा।
0: बिल्कुल,
1: जैसे जैसे शहर बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे सार्वजनिक स्थलों की जरूरत बढ़ती जा रही है। एक छोटे कस्बे में सड़क पर कोई असुविधा हो तो उससे कुछ दिक्कत होती है, लेकिन किसी महानगर की सड़क पर जरा व्यवधान लाखों का कामकाज बिगाड़ सकता है।
0: जी जी,
1: कानून का पालन करना सरकार जनता सबकी जिम्मेदारी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े ये कोई अच्छी बात नहीं है।
0: सुप्रीम कोर्ट के दूसरे अहम पहल के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कपूर साहब, कि अपराध का विशेषाधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अपराध और सजा के मामले में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के लिए क्या अलग अलग मापदंड होने चाहिए?
2: देखिए दरअसल बात यह है कि जैसे जैसे भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के आचरण और उनके विशेषाधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं।
0: आखिर ऐसा क्यों? जब तक राजनेता या जनप्रतिनिधि इस तरह के गलत कदम उठाते फिरेंगे तो उन पर सवाल खड़े होंगे ही। जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। श्याम जी,
1: ये आम तौर पर एक स्वीकृत तथ्य है कि लोकतंत्र में सभी नागरिक बराबर होते हैं
0: जी।
1: ऐसे में सामंती जमाने के समान विशेषाधिकारों का क्या मतलब? ये भी देखा गया है कि ऐसे विशेषाधिकार आम नागरिकों के हक के खिलाफ होते हैं, यानी जैसे जैसे विशेषाधिकार बढ़ते हैं वैसे वैसे आम नागरिकों के जायज हक मिलने में दिक्कतें आने लगती हैं।
0: इस सुंदर जानकारी के लिए कपूर साहब और श्याम जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कानूनी सलाह के अगले कार्यक्रम में हम कुछ और कानून की पेचीदगियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
2: जी। आपको भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार डॉक्टर LD सुब्रमण्यम, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट आज का शीर्षक हमने रखा है भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार डॉक्टर एलडी सुब्रमण्यम। इस संदर्भ में हम एक बात कहना चाहेंगे कि पिछले 20 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया था, तो उसी के संदर्भ में आज का हमारा ये आलेख आप सबके लिए। साथियों, संगीत विधा का विकास ग्रामीण अंचलों से होता हुआ जब कस्बों, नगरों और शहरों तक हुआ, मानव जब धीरे धीरे सुसंस्कार और सभ्य बनने लगा, तो शास्त्रीय और सुगम संगीत ने भी विस्तार पाया। आज के आलेख में हम शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में विश्वविख्यात वायलिन वादक डॉक्टर एलडी सुब्रमण्यम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वैसे वायलिन का आगमन भारत में जर्मनी और अन्य कुछ पश्चिम के शहरों से हुआ और इस वाद्य ने उत्तर भारत और खासकर के दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत तथा फिल्म संगीत में भी अपना खास स्थान बना लिया है। साथियों, वायलिन एक छोटा वाद्य होता है जो बो यानी गज से बजाया जाता है। इसी जाति का कुछ बड़ा वाद्य वायोला और लगभग 4 से 5 फीट तक लंबा वाद्य चेलो कहलाता है। इसके तार भी मोटे और बड़ी तांत के होते हैं और इसे हाथ से लय या ताल देने में काम में लाया जाता है। हाँ, तो हम बात करेंगे वायलिन, जिसे बेला भी कहते हैं, उसके अत्यंत प्रतिभाशाली कलाकार डॉक्टर एलबी सुब्रमण्यम की। खास या बेहद खास ये है कि वे कलाकार के साथ मेडिकल डॉक्टर भी हैं। उनके बचपन और किशोर उम्र का कुल जमा किस्सा ये है कि माता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी और पिता वायलिन बजाने की शिक्षा दे रहे थे। इसी बीच एक दिन एक जर्मन मित्र उनके घर आए, एलडी को वायलिन पर अभ्यास करते देखा तो एकदम से बोल उठे, भाई इसे तो मैं जर्मनी ले जाऊंगा। मां ने कहा, अभी नहीं, पहले मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करेगा। तो बात वहीं रुक गई। खैर, डॉक्टरी की पढ़ाई पास करने के बाद ही वे कैलिफोर्निया में पश्चिम संगीत में मास्टर्स डिग्री लेने चले गए और तब से साथियों आज तक उनकी उंगलियां वायलिन पर जैसे हम सबको सम्मोहित कर रही हैं, हिप्नोटाइज कर देती हैं, और संगीत से जुड़े अन्य कई उल्लेखनीय काम एलडी कर चुके हैं और कर रहे हैं। पद्म भूषण और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलंकरणों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और विख्यात सिने पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति उनकी जीवन संगिनी है। तो हमने हमारे इस आलेख का शीर्षक शुरू में ये दिया है कि भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार। तो अब सुनिए एलडी के द्वारा संगीत के क्षेत्र में, खास करके भारत और पश्चिम के संगीत में, उन्होंने जो अमूल्य योगदान दिया है उसके बारे में। 150 से भी ज्यादा बैले, जिन्हें नृत्य नाटिका कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा और एकल वायलिन वादन की रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की हैं। सलाम बॉम्बे, मिसिसिपी मसाला, इन फिल्मों का संगीत निर्देशन, पीटर ब्रुक के साथ महाभारत के निर्माण के संगीत सलाहकार, फ्रांस के विख्यात वायलिन वादक स्टीफन ग्रेपली और महान वायलिन वादक यहूदी मेन्युहेन से प्रेरणा लेते रहे हैं। वर्ष 1983 में विश्वविख्यात पश्चिम संगीत कंपोजर बाक और बार्क को आदरांजलि देने के लिए अपने वायलिन के साथ वेस्टर्न बांसुरी की जुगलबंदी की यादगार संगीत सभा में एलडी ने वायलिन बजाई। न्यूयॉर्क
फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा और विश्वविख्यात भारतीय मूल के कंपोजर जुबीन मेहता के साथ एक अनूठी संगीत रचना रिकॉर्ड की। इसका नाम है फैंटेसी ऑन वैदिक चैंट्स। विख्यात किरोव बैले ग्रुप के साथ शांतिप्रिय नाम से एक भव्य संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बर्लिन ओपेरा की ग्लोबल सिम्फनी 28 देशों से एक साथ प्रसारित की गई थी और इसमें एलडी सुब्रमण्यम भी थे। तो श्रोताओं, ये है भारत और पश्चिम के संगीत का एक सुरीला सफर, एक सुरीला मिश्रण। भारत में तो एलडी अपने वॉयलिन वादन का जादू बिखेर ही चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वे चमके हैं और निरंतर नूतन संगीत प्रयोग कर रहे हैं। साथियों, ऐसे सभी संगीतीय कार्यक्रमों को आजकल जानते हैं क्या कहते हैं? आजकल कहते हैं इसे फ्यूजन संगीत। अब इस फ्यूजन संगीत के प्रयोग से एक तरह की हलचल शुरू हो गई। शास्त्रीय संगीत की शुद्ध परंपरा और लीक से हटकर क्या इस बदलाव को स्वीकार करना सही है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एलडी ने कहा, सामान्य रूप से यह बदलाव कोई नई बात तो है नहीं। जैसे अपने देश में सितार और सरोद की जुगलबंदी होती है, वैसे ही हम वॉयलिन और अमेरिकन बेंजो, गिटार और ट्रम्पेट की जुगलबंदी करते हैं। अब ऐसे प्रयोग में बात केवल इतनी सी है कि जब जब अलग अलग टोन, स्वर और प्रकृति के वाद्यों और देशों के संगीत को एक साथ बजाया जाता है, तो इस प्रस्तुति में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी की भी छवि बिगड़ने नहीं पाए, उसका मूल स्वरूप बना रहे। वास्तव में जब कोई काम फैशन की तरह कलाकार, जी हाँ, उसको फैशन मानने लगे फ्यूजन संगीत को, तो फैशन की तरह अगर कोई कलाकार सतही अंदाज पर और निम्न स्तर पर जब करने लगता है, लो स्टैंडर्ड, तो फिर वो फ्यूजन संगीत नहीं रहता, बल्कि वो फ्यूजन संगीत जो इतना लोकप्रिय हो रहा है उसको बिगाड़ता ही है। और ये हो रहा है, खास करके कुछ फिल्म संगीत में यही किया जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता पाने और उस आधार पर खूब सारा धन कमाना ही फ्यूजन संगीत को आलोचित कर रहा है। सफल फ्यूजन संगीत के लिए तो ये बेहद जरूरी है कि कलाकार, चाहे वो पश्चिम का हो, चाहे वो भारत का हो या किसी भी देश का हो, उसको भारतीय और अपने देश की संगीत शैलियों की पूरी और बहुत गहरी समझ होनी ही चाहिए। अगर वो समझ नहीं है तो फिर जुगलबंदी नहीं होगी। तो आज के हमारे इस आलेख में, जैसा कि हमने कहा कि भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार मिलकर के आज जो संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च कोटि पर ले जा रहे हैं, उसी में एक हमारे भारत के कलाकार हैं एलडी सुब्रमण्यम। और शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, वॉयलिन पर तो वे लाजवाब बजाते ही हैं, लेकिन वो पश्चिम संगीत के भी जाने माने कलाकार हैं और उन्होंने हमारे भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और अपार लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भविष्य में भी वो यही कर रहे हैं। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार डॉक्टर एलडी सुब्रमण्यम, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा। दोस्तों, आप सभी ने स्वतंत्र कुमार जी की बातें सुनी और मैं समझता हूँ कि आप सभी को इनकी बातें अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में, और इसके लेखक और निर्देशक है संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: प्रस्तुत है नाटक स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में। इसके लेखक और निर्देशक हैं संदीप दुबे।
1: एक बस पौने एक बजे गुजरती है और दूसरी एक बजे। क्यों बाबा, पहले कोई बस गई?
2: जरूर गई होगी साहब, हमारे सामने नहीं गई, आधे घंटे से बैठे।
1: आ जाएगी, आ जाएगी,
2: जगह गर्म है, टाट बिछा दे।
1: नहीं,
2: बस भी क्या सवारी है साहब, बड़े बड़े बाबू पीछे दौड़ते पर जगह नहीं मिलती। आपको कहाँ जाना है साहब, हम तो लॉर्ड साहब के दफ्तर जा रहे हैं, आप ना जाइए।
1: सुदामा नगर
2: लगते तो वही है, दो रुपए सुदामा नगर उतरो, चाहे लॉर्ड साहब के दफ्तर। उस दिन कोई कह रहा था किराए घटने वाले,
1: पता नहीं।
2: बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए। अच्छा अच्छा, पतलून के कारण बैठा नहीं जाता। हाँ साहब, सरकारी पहनावा है।
0: क्यों जी, बस बस चली गई क्या?
1: अभी आने वाली होगी।
0: ओहो, शुक्र है। पता है मैं 2 किलोमीटर से दौड़ी आ रही हूँ। अरे शहर में फिर दंगा हो गया है।
1: क्या फिर दंगा हो गया?
2: आजादी जो मिल गई थी आज के दिन, दंगा, ये तो सरेआम बात है।
0: आपको नहीं मालूम? अरे शहर में 2 गुटों में झगड़ा हो गया था, खून खराबा जारी है, और देखते ही देखते सारे के सारे बाजार वीरान हो गए। मैं भी तो बाजार गई थी अपने बच्चे के साथ।
3: मम्मी मम्मी कॉल रिंग।
0: बेटा घर जलकर पीना, इतनी तेज धूप, ऊपर से ये सारा दंगा फसाद, अब बस भी जाने कब आएगी? आप कितनी देर से खड़े हैं?
1: 5-7 मिनट हो गए।
2: हमें भी बैठे आधा घंटा हो गया। क्यों साहब, लॉर्ड साहब का दफ्तर कितने बजे बंद होता है?
1: डैम ब्लडी,
2: कितने बजे कहा था? सरकारी पुलिस समझ में नहीं आती।
3: मम्मी मम्मी लाल बोतल।
2: लाल बोतल? बच्चा लाल बोतल का मतलब नहीं समझता। मैम साहब, मैम साहब क्या बजा है?
0: इडियट।

0: बेवकूफी की बातें मत करो, यूँ ये समय मजाक करने का है क्या?
1: मेरी समझ में नहीं आता कि तू क्यों मोहन का पक्ष लेती है। जब भी शहर में दंगे होते हैं वो घर बैठकर मधुबाला से गीत लिखता है। मैं भी मान लूँ जो तू कविता के पंखों पर बैठकर घर तक पहुँच जाए।
2: मैम साहब, आपके पास घड़ी है?
1: 10:15 है।
3: और मेरी घड़ी में 1:10 हुए हैं, ये रेडियो टाइम है।
1: बस तो आज आने में नहीं आती। आप तिलक नगर जाएंगी?
4: हाई कोर्ट,
1: हमें भी वही बस पकड़नी है।
2: क्यों जी, लाट साहब के दफ्तर सब बसें जाती हैं क्या? जाती होंगी, बड़े लाट का दफ्तर है ना।
1: क्यों जी, ये गोली की आवाज है।
5: गोली की आवाज?
1: जरा जरा ध्यान से सुनिए, सारे शहर में दंगा हो रहा है, आपको नहीं मालूम?
5: हमने सुना है, केवल बाजार में ही झगड़ा हुआ है।
1: जी नहीं, शहर में जोर का दंगा हो रहा है। मुझे तो ये गोली की आवाज रहती है, लेकिन लेकिन ये गोली इस तरफ क्यों चल रही है?
5: सरूत चल, लौट चले।
6: चलो चलो, भागो
0: भागो यहाँ से।
1: सुनिए सुनिए, शोर भी तो इधर ही आ रहा है
3: और लोग भागते हुए भी आ रहे हैं। चलिए चलिए, पिछली गली में छुप जाते हैं।
5: चल चल पप्पू, जल्दी चल चल, मेरी भी जान लेगा क्या तू?
4: मम्मी मम्मी,
5: ये क्या है?
4: पैर में जूता कटता है।
5: अरे उतार कर हाथ में ले ले बेटा, जल्दी कर जल्दी।
4: मम्मी, एक जूता तो पीछे ही रह गया।
5: अब क्या करना है सरोज, चल चल गली में हम भी छिप जाए।
0: अरे तू कॉलेज में तो बड़ी एथलीट बनती थी, अब तुझ दिल क्यों हो गई?
5: तू दौड़ पहले।
0: ठहर, मैं कार रोकती हूँ, रुक जा।
5: सरोज जल्दी देख, सारी दुनिया भाग रही है।
0: इधर क्या बात है भाई साहब?
1: सरोज,
0: एक और कार आ रही है। भाई साहब, आप हमें घर तक पहुंचा सकते हैं? सुना है दंगा हो रहा है, हम दोनों यहाँ अकेली हैं। अभी तो कोई बस भी नहीं आ रही है यहाँ पर।
7: हाँ, आपको कहाँ जाना है?
5: हाईकोर्ट जाना है।
7: पर हम तो मॉडल टाउन जा रहे हैं।
0: क्या हर्ज है, हम उधर से होकर ही जा सकते हैं, यहाँ हमारी जान को खतरा है।
7: हाँ, तो आ जाइए आप, आ जाइए।
1: आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना?
7: कोई बात नहीं, इंसान की जान खतरे में छोड़ जाना पाप है। पीछे बैठ जाइए और आप इधर।
1: जी बड़ी मेहरबानी, आ जाओ सरोज। हाँ,
2: बाबूजी बाबूजी।
7: क्यों, क्या है?
2: हमें लाट साहब के दफ्तर जाना है।
7: सीधी सड़क जाती है, आगे से बाएं मुड़कर पूछ लेना, लाट साहब के दफ्तर।
2: वाह रे दीदी माया, एक जवानी उधर है मियाँ जी। अरे क्या ढूंढ रहे, कहाँ हो रहा दंगा?
7: ये शहर में कहती है।
2: इधर लोग क्यों सर भाग रहे हैं?
7: कुछ ठीक मालूम नहीं है, पता नहीं भाग रहे हैं।
2: पर आप भी तो भाग रहे हैं।
7: मियाँ और सब भागने वाले कोई बेवकूफ थोड़ी है, कोई खतरे की बात हुई तभी भाग रहे। अरे भाग लिए
2: मियाँ जी, उधर से आए कोई कोई बस तो नहीं आ रही है?
7: ये मियाँ बस की बात कर रहे हो, पीछे आप देख लो।
8: आज तो बड़ी मुश्किल से जाना पड़े।
7: तो आप भी भागने वालों में से ही हैं?
8: जी नहीं, मैं लंच के लिए घर जा रहा था, मेरा घर सुदामा नगर में है।
7: हमें भी वहीं जाना है मियाँ, यही। अब क्या करें, माल रोड पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, एक काम करते माल रोड से निकल चलते।
4: मम्मी ये देख चाकू।
5: अरे चल भी पप्पू, आज तू मेरी जान ही लेगा, चल फेंक उसे वहीं पर।
8: अरे घबराइए नहीं, दंगा खत्म हो गया है।
5: गोली तो चल रही थी।
9: ये वह गोली नहीं, मुनादी थी।
5: मुनादी?
9: हाँ।
5: मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे इधर चल बेटा, बस आ रही होगी, चल जल्दी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में, और इसके लेखक और निर्देशक थे संदीप दुबे। दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो विविधतास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन www.hindi.rviritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी प्रिय श्रोताओं, स्वीकार करें मेरा सह स्नेह नमस्कार, यानी कि आपकी रेडियो दोस्त ज्योति गुजर का। हो जाइए तैयार और दिन खुशनुमा बनाइए रेडियो वरिदास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन के, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। श्रोताओं, आज है मंगलवार और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आप सबका मंगलमय हो। साथियों, अभी की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। दोस्तों, अभी की सभा को शुरू करने से पहले आइए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें आज इतना सुंदर सा दिन देखने को दिया और हम पर हमेशा अपनी आशीष और कृपा रखते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात के तहत वार्ता। अभी की सभा में नुपुर दीक्षित जी मुलाकात कराएगी प्रोफेसर बेला सचदेव जी से, तो आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम।

0: मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर बीला सचदेव जी, जो अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से समाज के अलग अलग तबकों को बहुत सारा फायदा पहुंचा रही हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी सी कोशिशें बड़े बड़े बदलाव लेकर आती हैं। बेला जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू नूपुर।
0: सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि बेला जी पिछले 13 सालों से दृष्टिहीन छात्राओं के हित में बहुत सा काम कर रही हैं और उनकी कोशिशों की बदौलत आज इस शहर में कई छात्राएं जो देख नहीं सकती उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है। और केवल उच्च शिक्षा हासिल नहीं की, वे आज सब अपना अपना काम कर रही हैं। तो मैम, आप मैं चाहूंगी कि आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को कि किस तरह से हम उन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करवा सकते हैं जिन्हें प्रकृति ने देखने की शक्ति नहीं दी।
1: नूपुर जी, मैं पहले 13 साल से इन ब्लाइंड लड़कियों के साथ जुड़ी हुई हूँ। पहले तो इनके हॉस्टल्स में जाती थी, इनके साथ मधुर इनके संगीत सुनती थी और धीरे धीरे फिर जब इनके साथ इंटरेक्शन करो तो इनकी प्रॉब्लम भी समझ में आने लगती है, नीड भी समझ में आने लगती है। तो पहले तो हायर एजुकेशन में कॉलेज में, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो इनकी एजुकेशन के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। पहले तो हमारे कॉलेज में एक या दो ब्लाइंड लड़कियां एजुकेशन के लिए आती थी। इनके साथ जो एक मुख्य प्रॉब्लम होती है कि इनका मैटर, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चियों के साथ हायर एजुकेशन लेते हैं, इनके लिए अलग से इनके लिए कोई मैटर ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं है। तो ये क्योंकि सामान्य लड़कियों के साथ एजुकेशन लेते हैं तो इनके मैटर की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इनके लिए मैटर रिकॉर्डिंग करने शुरुआत की। दूसरी एग्जाम में इनके लिए राइटर, क्योंकि ये खुद तो लिख नहीं पाती है, एग्जाम में इनके लिए राइटर की जरूरत होती है। पहले तो क्या होता था, एक दो लड़कियां ब्लाइंड लड़कियां आती थी तो या तो इनकी सिस्टर्स या कोई परिचित है इनकी हेल्प करती थी, मैं भी कई बार इनका खुद मैटर रिकॉर्ड करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। पहले पिछले साल ही 16 लड़कियां हमारे कॉलेज में पढ़ती थी ब्लाइंड लड़कियां, इस साल 20 ब्लाइंड लड़कियां हैं जिसमें से 16 तो अंडर ग्रेजुएशन लेवल

0: उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है और चार लड़कियां पीजी लेवल कर रही हैं, उसमें एक आध दो लड़कियां पॉलिटिकल साइंस में हैं, एक दो लड़कियां हिस्ट्री में एमए कर रही हैं। तो इन लड़कियों के लिए अब क्योंकि हम इतना इन लड़कियों के लिए इतना मैटर रिकॉर्ड नहीं कर पाते और हर लेवल पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर प्रीवियस और फाइनल सब स्तर पर ये लड़कियां हैं
1: जी, तो हम नॉर्मल बच्चियों की तरह ये किताब पढ़कर याद नहीं कर सकते
0: तो इनके लिए मैटर रिकॉर्डिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इन लड़कियों की रिकॉर्डिंग करने के लिए एक हेल्पलाइन सेल तैयार की हमारे कॉलेज में। ये उसमें काफी 40-50 लड़कियों ने अपना नाम दर्ज करवाया है और ये लड़कियां इन लड़कियों का मैटर कैसेट्स में रिकॉर्ड करती हैं, ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड करती हैं। फिर ये लड़कियां जो ब्लाइंड लड़कियां हैं सुनकर अपना मैटर को याद करती हैं, याद करने के बाद ये अपना मैटर अपने ब्रेल लिपि में नोट्स बनाती हैं और इस तरीके से मैटर को याद करती हैं।
1: ये तो काफी अच्छी शुरुआत की बेला जी आपने। और वाकई में एमए और बीए में पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, राजनीति, इसमें काफी लंबे विषय होते हैं और बहुत सारा पढ़ना होता है। तो इस तरह रिकॉर्डिंग के जरिए एक तरफ छात्राओं को दूसरों की मदद करने का मौका मिल रहा है और दूसरी ओर इन छात्राओं को रिकॉर्डेड कैसेट्स मिल रही हैं। मैम, एक कैसेट का खर्चा शायद 40 रुपए होता होगा, तो इतनी सारी कैसेट्स किस तरह से आप लोग इकट्ठा करती हैं? क्या बच्ची इन छात्राओं के माता पिता स्वयं आपको कैसेट्स देते?
0: नहीं, कुछ तो हमारा क्या है, मैंने हमारे ही स्टाफ से, क्योंकि जनरली जो कैसेट्स होती हैं दोबारा अपन तो रिकॉर्ड करवाते नहीं है, तो कई हमारे स्टाफ के लोगों ने पुरानी कैसेट्स दी हैं जो अच्छी कंडीशन में, तो उस पर दोबारा मैटर रिकॉर्ड हो जाता है। इस साल ही करीबन 70-80 कैसेट्स हमारे स्टाफ ने दी है। दूसरा, कई ऐसे क्लब वाले हैं जैसे लास्ट प्रेरणा क्लब है, लाइनेस क्लब ऑफ इंदौर सिटी ने इस साल एक टेप रिकॉर्डर भी दिया है और कैसेट्स भी दिए, तो इस तरीके से हम उनका रिकॉर्डिंग करते हैं।
1: यानी कि बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो मदद मिलने लगती है।
0: बिल्कुल। और दूसरा, इनको क्योंकि नोट्स बनाने के लिए शीट्स की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा मोटे कागज की जरूरत पड़ती है और एक 4 रुपए की शायद 6 शीट्स आती हैं, और तो इनके लिए क्योंकि मोटे कागज की जरूरत होती है और वो शीट्स यदि बाजार से लेना जाए तो 4 रुपए की 6 शीट्स आती हैं, तो ये इनके ऊपर काफी खर्चा भी आता है। तो हमारे यहाँ कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जो साइंस डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, जहाँ मोटी प्रैक्टिकल फाइल भी बनती है और मोटा कागज यूज होता है, कई वहाँ पे पोस्टर्स भी बनवाए जाते हैं, तो ये एक बार एग्जाम के बाद तो ये फालतू हो जाते
1: जी
0: हैं,
1: रद्दी में चले जाते हैं।
0: तो इन शीट्स का हम दोबारा इनको देते हैं, काट कर देती हैं हमारी लड़कियां और इस पर ये नोट्स बनाती हैं।
1: यानी कि
0: तो
1: कागज भी बचा रहे हैं,
0: कागज भी बचाते हैं। साल में काफी सारी शीट्स निकल जाती हैं चारों डिपार्टमेंट से, तो वो शीट्स हम इन लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों, कई बार हमारे आसपास ही छोटी छोटी सी समस्याओं के ढेर सारे समाधान मौजूद होते हैं पर हम उन समाधानों की तरफ देखते ही नहीं है। अब देखिए, इस ब्लाइंड हेल्पलाइन सेल को ही देखिए, एक तरफ बच्चियों की हेल्प हो रही है, दूसरी तरफ लड़कियां सोशल वर्क के लिए आगे आ रही हैं और तीसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी पहल हो रही है।
0: जी बिल्कुल।
1: मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि केवल कॉलेज में पढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में तो प्रोफेसर्स भी हैं मदद करने के लिए या सहपाठी भी हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत सारे दूसरे पहलू होते हैं, जैसे घर से निकलकर कॉलेज तक आने का रास्ता, कॉलेज किस तरह आना है, कॉलेज में अपनी क्लास तक कैसे पहुंचना है, कहां बैठना है, कौन सी क्लास अटेंड करनी, ये सारी चीजों में दृष्टिहीन छात्राएं किस तरह से मैनेज कर पाती हैं, कैसे करती हैं वो ये सब?
0: मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर एक कोई वीकनेस देता है तो दूसरे सेंसेस को ये इतना स्ट्रांग बना देता है। तो ये कुछ लड़कियां इसमें ऐसी भी होती हैं, पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है, मतलब उनकी स्लाइटली विजन होती है, तो वो लड़कियां एक दूसरे का सहारा लेके, क्योंकि हमारे यहाँ 20 लड़कियां पढ़ती हैं, तो एक दूसरे का सहारा लेके इस तरीके से ये कॉलेज में आती हैं। वैसे इनको लाने के लिए तो इनकी बस है, इंस्टीट्यूट से आती है, महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ से, तो ये बस में आती है। और लेकिन क्लासरूम तक आने के लिए कई बार जो नॉर्मल गर्ल्स हैं वो इनकी हेल्प भी करती है और जो दूसरी जो पार्शियल ब्लाइंडनेस है वो इनकी हेल्प करती हैं इस तरीके से, एक दूसरे यहाँ तक ये तो बाहर भी चली जाती है और ये करती हैं।
1: जी, क्या पढ़ाई करने के बाद इनके लिए नौकरी करना आसान होता है? क्या इन्हें नौकरियां मिलती हैं, नियोक्ता इन्हें चुनते हैं अपने यहाँ पर नौकरी के लिए?
0: इनके लिए क्या है, सर्विस में तो प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक कि प्राइवेट जो सेक्टर है उनमें तो इनको बिल्कुल भी स्थान नहीं मिलता है या नौकरी इनके लिए समझिए नगण्य ही है, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट में इनको कुछ कुछ एक आध परसेंटेज रिजर्व होती सीट्स होती है इनके लिए, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में है, स्कूली टीचिंग में, हमारी कई यहाँ की जो पढ़ी हुई लड़कियां हैं अब जॉब कर रही हैं, कुछ एक आध कॉलेज में प्रोफेसर है, दो तीन लड़कियां, कई लड़कियां स्कूल्स में टीचर हैं, पढ़ा रही हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में 1% करीबन रिजर्वेशन इनके लिए होता है।
1: मैम चूंकि हम लोग एक बहुत बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं, जहां हर किस्म की मदद करने के लिए बहुत सारे क्लब, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं मौजूद होती हैं, मान लीजिए दूर दराज के किसी गांव में एक छोटे से सरकारी स्कूल में एक दृष्टिहीन छात्रा पढ़ने आती है, तो ऐसे में कोई शिक्षक यदि दिल से उसका भला करना चाहे तो उस बच्ची को पढ़ाने के लिए शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या वो करे कि वो बच्ची की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके?
0: देखिए आजकल समाज कल्याण बोर्ड की तरफ से इंटरनेशनल कई एनजीओज हैं, नेशनल एनजीओज हैं, स्टेट लेवल पर एनजीओज हैं से, और ऐसे कई गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं जो कि इनकी हेल्प करने के लिए, इनके लिए प्राइवेट स्कूल्स हैं
1: जी।
0: गांव में तो इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन शहरों में काफी हॉस्टल्स भी हैं और फैसिलिटीज भी उनको दी जाती है, ब्रेल मेथड में इनको सिखाया भी जाता है, तो उनके लिए ये कि संदेश है कि उनको मतलब हायर एजुकेशन के लिए, स्कूल इनकी शिक्षा के लिए शहरों में भेजना चाहिए
1: जी। मतलब यदि गांव में सुविधा नहीं हो पा रही है पढ़ाने की, तो थोड़ा सा दिल मजबूत करके
0: शहरों में इनको भेजना चाहिए। शहरों में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं इनके लिए, जैसे अब यहाँ पर भी प्रकाश नगर में बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए महेश दृष्टिहीन, जहाँ पर करीबन 147 गर्ल्स यहाँ पर है, और पूरे एमपी से यहाँ पे गर्ल्स पढ़ने के लिए आती है और छोटे छोटे गाँव से पढ़ने के लिए आती है, तो अपने यहाँ भेज सकते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे ब्रेल लिपि में सिखाते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं इनको
1: जी। तो आपने कंप्यूटर की बात कही, आजकल जमाना कंप्यूटर के ऊपर दौड़ रहा है, यानी कि यदि आपको कहीं पर भी नौकरी करनी है तो कंप्यूटर आपके लिए एक अनिवार्यता बन जाता है, तो दृष्टिहीन बच्चों को हम किस तरह से कंप्यूटर सिखा सकते हैं?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आजकल इनके लिए है ना कंप्यूटर्स है और जॉब्स में सॉफ्टवेयर है
1: जी,
0: स्पोकन सॉफ्टवेयर है जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, मतलब वो कंप्यूटर बोलता है जो भी आप टाइप कर रहे हो, तो वहाँ उसमें ये लड़कियां, हमारी कई लड़कियां कंप्यूटर सीख रही हैं, और मैंने पिछले साल ही इनके लिए ये स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, वहाँ पे तो ब्रेल मेथड में कंप्यूटर भी है, वहाँ पर मैं इनको लेके गई थी और वहाँ 8-10 लड़कियों ने कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम सीखा भी था, और अब हमारी कई ऐसी ब्लाइंड लड़कियां हैं जो कंप्यूटर ऑपरेट कर लेती हैं, अपना रिज्यूम बना लेती हैं, यहाँ तक कि नेट भी ऑपरेट कर लेती हैं आसानी से, सीख हिंदी कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों में टाइप कर लेती है, अपना बायोडाटा फाइल रिज्यूम बनाना नेट देखना सब कर लेती है।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, मेरे ख्याल से जिन परिवारों में अभी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं या किशोर हैं जो किसी वजह से देख नहीं सकते, तो उन्हें काफी संबल मिलेगा आपकी बातें सुनकर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात के अंतर्गत वार्ता, जिसमें हमारी आरबीए की शान नुपुर दीक्षित जी ने प्रोफेसर बेला सचदेव जी से मुलाकात कराई। मित्रों, आगे की कुछ और बातें और जानकारी अब हम सुनेंगे अगली सभा में। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, कार्यक्रम युवा विकास में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, कार्यक्रम युवा विकास में रूबरू होंगे माइकल हॉजिस जी और उनकी वार्ता का शीर्षक है आदर्श बाराती।

0: युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है बातचीत आदर्श बाराती। लेखक और प्रस्तुतकर्ता माइकल हॉजिस। बातचीत में भाग ले रही हैं अपर्णा सिंह और माइकल हॉजिस।
1: युवा श्रोता साथियों को अपर्णा सिंह और
0: माइकल हॉजिस का नमस्कार।
1: तो माइकल जी, अपने युवा साथियों को हम बताते चले कि आज हम उनके लिए किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, ताकि वे हमारी बातचीत को तन्मय होकर सुन सकें। तो अपर्णा जी, सभी को पता है कि सभी लोग अपने त्योहार को खुशी खुशी और उल्लास के साथ मनाने के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। फिर उस त्योहार की खुशी और उल्लास आने वाले अगले त्योहार या अगले वर्ष उसी त्योहार तक उनके मन में एक उमंग जगाए रखते हैं और एक सुखद स्मृति के रूप में अपनी एक क्या कहते हैं छाप भी छोड़ जाते हैं।
1: लेकिन हमारी एक परंपरा ऐसी भी होती है जिसे व्यक्ति जीवन भर के लिए भूल नहीं पाता है और परंपरा को पूरा करने के उस अवसर को जीवन भर के लिए अपनी सुखद और कभी न भूलने वाली स्मृतियों के रूप में संजोकर रखना चाहता है और संजोकर रखता भी है। माइकल जी,
0: जी अपर्णा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारी उस परंपरा का नाम है विवाह।
1: जी हाँ,
0: विवाह या शादी किसी भी व्यक्ति के जीवन में सचमुच कभी न भूलने वाला एक अवसर ही होता है जिसका इंतजार हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रहता है।
1: माइकल जी, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि विवाह संपन्न होने का एक ऐसा अवसर होता है जिसमें आपके जाने बूझे और मिलने वाले लोगों के साथ साथ कुछ नितांत अपरिचित तो कुछ थोड़े बहुत परिचित लोग भी शामिल होते हैं।
0: जी जरूर।
1: और माइकल जी, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे माहौल में कभी कभी सब कुछ शांति से निपट जाता है और कभी तो जरा सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती।
0: जी जी।
1: और ऐसे में पूरा खुशी का माहौल और उल्लास का माहौल कसैला सा हो जाता है।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, इसीलिए विवाह जैसे वातावरण में संयम, समझदारी और एक दूसरे से स्थिति से सामंजस्य जैसे व्यवहारों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, जिस कारण विवाह जैसी क्रिया को निर्विघ्न रूप से यानी बिना किसी रुकावट के हंसी खुशी के माहौल में ही संपन्न किया जा सके।
1: बिल्कुल माइकल जी, इसलिए आज हम अपने युवा साथियों से इसी विषय पर अपनी बातचीत के द्वारा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विवाह जैसे आयोजन में भी युवा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर चाहे वे किसी कार्य में संलग्न हों, किसी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हों या फिर वे किसी बारात में बाराती की भूमिका में ही क्यों न शामिल हो जाएं।
0: जी बिल्कुल। तो जब भी कहीं से किसी विवाह में विवाह समारोह में आने का निमंत्रण मिले तो सबसे पहले इस बात को निश्चित कर लें कि आपको बारात में भी जाने का निमंत्रण है या फिर केवल विवाह भोज में ही पधारने का निमंत्रण है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कई लोग विवाह भोज के निमंत्रण को ही बारात में जाने का निमंत्रण समझ बैठते हैं और ऐसे में बिन बुलाए बाराती बनकर हंसी का पात्र बन बैठते हैं।
1: माइकल जी, आपने एक अहम बात बताई है। वाकई कुछ लोग ऐसा करते हैं और दूसरों की नजर में अपने आप को मजाक बना लेते हैं और दूसरों को अपने ऊपर हंसने का अवसर दे बैठते हैं ऐसे में।
0: अपर्णा जी, इसके बाद आता है वो अवसर जब वाकई में आपको बारात में जाने के लिए निमंत्रित किया गया हो।
1: जी,
0: इस स्थिति में आप अपनी सुविधा अनुसार बारात में जाने की योजना बनाएं। सुविधा अनुसार का मेरा मतलब ये है अपर्णा जी कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं
1: जी हाँ,
0: तो अपने काम और अपनी बाकी बची हुई छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए ही अवकाश के लिए आवेदन करें तो ही ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपका अवकाश आवेदन स्वीकार किया जा रहा हो तो ठीक, अन्यथा आप आवेदन के लिए अपने अधिकारी से बहस या किसी प्रकार का विवाद न करें।
1: जी हाँ।
0: ये आपकी नौकरी में आपके भविष्य के लिए ठीक होगा।
1: और माइकल जी, यदि हमारे युवा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वे अपनी पढ़ाई को विघ्न न पहुंचाते हुए ही बारात में जाने की योजना बनाएं। अपने कार्य से या पढ़ाई से अवकाश इस तरह का लें कि बारात के साथ वापस आने के बाद आप एक दिन भरपूर आराम कर लें और बारात तथा सफर की पूरी थकान उतार सकें, क्योंकि अधिकतर लोगों को बारात में जाने पर थकान हो ही जाती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर आखिर घर होता है और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए।
0: जी हाँ अपर्णा जी, इससे फायदा ये होगा कि आप दूसरे दिन अपने कार्य पर या अपने स्कूल कॉलेज तरोताजा होकर जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: जिससे आप अपना पूरा मन अपने काम और अपनी पढ़ाई में लगा सकेंगे। क्या कहना है अपर्णा जी?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपसे इसीलिए मैं पूरी तरह सहमत मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ माइकल जी, वरना बारात से आते ही कार्य पर या कॉलेज जाने वाले अलसाए से रहते हैं और अपने बारात से आते ही कार्य पर या कॉलेज आने का रोना रोते रहते हैं। और माइकल जी, इसके बाद बारी आती है बारात में जाने की तैयारी करने की।
0: और अपर्णा जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही जरूरी और एक खास बात है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि साधारणता क्या होता है कि लोग सोचते हैं बारात में तो जाना ही है, बस दो जोड़ी कपड़ा रखो और निकल पड़ो।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे ही युवाओं की ऐसी सोच ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल भी ठीक नहीं है माइकल जी, क्योंकि आप कहीं शहर ही में तो जा नहीं रहे हैं अगर बारात में जा रहे हैं तो, बल्कि आप दूसरे और पराए शहर जा रहे हैं जहां आपको अपने घर जैसी सुविधाएं तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं। और इसलिए स्वयं बाराती पूर्व से ही अपनी सुविधा जुटाने का प्रयास कर लें तो मेरे ख्याल से उन्हें बारात में किसी प्रकार से मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: जी हाँ, और इसके लिए पहले तो वे अपने साथ कम से कम और केवल जरूरी काम आने वाली चीजें ही रखें।
1: जी हाँ,
0: जैसे एक जोड़ी स्लीपर, दो जोड़ कपड़े, एक चादर, और युवा अपना शेविंग सेट, ब्रश, टूथपेस्ट, कंघी तेल वगैरह आदि।
1: जी हाँ,
0: और युवतियों को चाहिए कि अपने मेकअप का सामान आदि भी वे रख लें ताकि उन्हें वहां जाने पर ये चीजें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े,
1: माइकल जी,
0: ना होना पड़े।
1: और इसके अलावा यदि कोई दवाइयां वगैरह, जैसे अगर किसी की तबीयत खराब है वगैरह, तो आप ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अपने साथ इसलिए रखना चाहिए क्योंकि दवाई ले जाने से उसकी जरूरत
0: पड़ती ही रहती है
1: क्योंकि वहां पर तबीयत भी खराब हो सकती है। जहां आप बाराती बनकर जा रहे हैं वहां आपको ये दवाइयां न मिले, ऐसा भी हो सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़े रखते समय मौसम का भी ध्यान अवश्य रखें और मौसम के अनुरूप ही अपने जरूरी कपड़े आप रखें।
0: पन्ना जी, अब जो सबसे जरूरी और सबसे खास बात है वो ये कि बाराती बनकर जाने से पूर्व आगे सामने आने वाली किसी भी अव्यवस्था के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लें।
1: जी हाँ।
0: वरना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भी जरा सी असुविधा से युवा हताश हो जाएं।
1: जी हाँ।
0: और आनंद और आमोद प्रमोद का समय तनाव और कुंठा में ही भी,
1: और अक्सर ऐसा देखा गया है माइकल जी कि बारात में अक्सर ऐसा होता है कि तनाव और कुंठा लोगों में आ जाती है क्योंकि सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती
0: हैं। बिल्कुल, तो इस वजह से वो बारात आपके लिए कड़वी स्मृतियों का एक ढेर मात्र बनकर न रह जाए और भविष्य में आप कहीं भी किसी की भी बारात में बाराती बनकर जाने से तौबा कर लें, ऐसा ना हो।
1: आपने एक बहुत अच्छी बात कही है माइकल जी, क्योंकि बारात जैसे एक बड़े और जिम्मेदार आयोजन में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी या तो रह जाती है या फिर स्थितिवश पैदा हो जाती है। इसलिए जाने से पूर्व अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लेने का लाभ ये होगा कि आप परिस्थितियों के अनुसार अपना उनसे सामंजस्य से बैठा पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और ये कह सकते हैं कि वातावरण का भरपूर आनंद भी उठा पाएंगे।
0: जी अपर्णा जी, और बस के या ट्रेन के तय स्थान और तय समय के अनुसार ही सही जगह पर सही समय पर पहुंचे, वरना आपके देर से पहुंचने पर बारात के निर्धारित समय पर निकलने का कार्यक्रम अव्यवस्थित हो सकता है और उसका दोष अप्रत्याशित रूप से आप पर भी लगाया जा सकता है।
1: और माइकल जी, आपने बिल्कुल ये बात सही कही है क्योंकि कुछ लोग अपना महत्व जताने और बताने के लिए सही समय पर न पहुंचकर लोगों से अपना इंतजार करवाते हैं। उनकी ये मानसिकता उन्हें लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी बनाती है।
0: जी, और समय पर पहुंचने के बाद आपका ये फर्ज बनता है कि आप आपके लिए निर्धारित किए गए स्थान पर ही अपना आसन जमाएं। अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि हो सकता है आप अपनी मर्जी से जहाँ बैठ जाएं वो जगह किसी और के लिए आरक्षित की गई हो।
1: और माइकल जी, वैसे तो बारात के आयोजकों द्वारा सभी बारातियों का एक दूसरे से सामान्यतः परिचय तो कराया ही जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी कारणवश आप परिचय से वंचित रह जाएं तो इस बात को अन्यथा न लें आप, क्योंकि स्वयं ही आपको ऐसे में करना चाहिए कि आगे बढ़कर शालीनता से अपना परिचय देकर अन्यों से उनका परिचय प्राप्त करना चाहिए।
0: अपर्णा जी, किसी भी बारात का रास्ता लंबा हो या छोटा, बाराती सारे रास्ते हंसी मजाक करते ही जाते हैं और सभी मजाक के हल्के फुल्के मूड में रहते हैं, विशेषकर युवा। इसलिए युवाओं को ऐसे समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और वातावरण को जीवंत और हल्का फुल्का बनाए रखने में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए, तभी तो वे अपने युवा होने को सार्थक कर पाएंगे।
1: माइकल जी, लेकिन यहाँ भी हमारे युवाओं को एक बात का ध्यान रखना होगा कि वे किसी से भी भरपूर हंसी मजाक करें,
0: जी
1: जैसा कि आपने कहा, लेकिन शालीनता की सीमा में रहकर।
0: बिल्कुल।
1: और उन्हें इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा, वरना अशालीनता का बाण किसी को भी आहत कर सकता है और सफर का मजा ही नहीं बारात के बाकी का मजा भी किरकिरा कर सकता है।
0: इसके बाद आयोजकों की ओर से चाय नाश्ते या खाने आदि की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन किसी कारण यदि इस व्यवस्था में थोड़ी देर हो जाए या कोई कमी रह जाए तो उस पर हल्ला करने के बजाय शांत रहना चाहिए।
1: ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हल्का फुल्का वातावरण बनाए रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए।
0: उसके लिए ये जरूरी है क्योंकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी और के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था है, हमारा घर नहीं है।
1: और माइकल जी, इसके अलावा नाश्ता खाना आदि के लिए किसी प्रकार की जल्दबाजी भी न तो करना चाहिए और न ही दिखाना चाहिए, वरना इससे लोगों को आपके बारे में आपकी राय कायम करने का मौका मिल जाएगा और आपको देखकर लोग आंखों ही आंखों में आपके बारे में बातें करने लगेंगे।
0: जी अपर्णा जी, बारात के निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद भी युवा अपनी शालीनता को बनाए रखें। यदि बारात आपके मित्र की ही है तो बेवजह उसके सामने अपने स्वागत की या किसी और चीज की कमी का रोना न रोएं, न ही उससे की गई व्यवस्था के प्रति किसी भी तरह से भड़काएं या उकसाएं। लड़की वालों के यहाँ के किसी भी व्यक्ति पर बेवजह अपना रौब कायम करने का प्रयास न करें,
1: जो कि अक्सर देखा गया है कि ऐसा होता है, बाराती ऐसा करते हैं।
0: इससे भले ही आपका रौब जमे या न जमे, किंतु बारात में शामिल लोगों का चरित्र वधु पक्ष के लोगों को जरूर समझ में आ जाए।
1: और माइकल जी, घर में भी आपको जो चीज न मिलती हो ऐसी चीजों की फरमाइश कर वधु पक्ष को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें आप लोगों की व्यवस्था करने के अलावा और भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और अलग काम भी करने रहते हैं, इसलिए उन्हें बेकार ही परेशान करने का किसी भी प्रकार से प्रयास नहीं करना चाहिए युवाओं को।
0: एक बात और अपर्णा जी, वधु पक्ष के सभी लोगों से भी बारातियों का परिचय कराया जाता है। यदि आप इस परिचय से वंचित हो जाते हैं तो मुंह न फुलाएं, क्योंकि विवाह होने से लेकर विदाई तक वैसे भी घराती और बाराती सभी एक दूसरे से परिचित हो ही जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: रही बात मुंह फुलाने की, तो ऐसे मुंह फुलाने वालों से सभी लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा माइकल जी, वैसे भी जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाने वाले को कोई भी नहीं पूछता है, क्योंकि उन्हें भी यही डर लगा रहता है कि न जाने किस बात पर उनसे भी मुंह न फुला ले कोई। वैसे भी ऐसे आयोजन या समारोह में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी को मनाता फिरे।
0: जी बिल्कुल। और अपर्णा जी, इसके उलट हंसी मजाक करने वाले और वातावरण को उल्लासमय बनाने वाले को सभी पूछते हैं।
1: बिल्कुल पूछते
0: सभी
1: हैं।
0: उसका साथ और उसकी निकटता चाहते हैं। विवाह समारोह भी एक हंसी मजाक और आनंद तथा उल्लास भरा कार्यक्रम होता है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए इस कार्यक्रम में जितना हंसी मजाक, जितना आनंद उल्लास होता है, उतनी ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है।
1: माइकल जी, क्योंकि इससे कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्तियों का भरपूर मनोरंजन होता है और यही तो वे क्षण, वे लम्हे होते हैं जब ये प्रत्येक शामिल व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित होकर आजीवन मधुर स्मृतियों में बदल जाते हैं।
0: जी अपर्णा जी, जैसा कि इस कार्यक्रम के आरंभ में भी हम बता चुके हैं कि अव्यवस्थाओं के लिए हमें स्वयं को पूर्व से ही तैयार रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: इससे लाभ ये होता है कि ऐसे में यदि आपको साबुन, पानी, स्नानघर, शौचालय और सोने ठहरने आदि में किसी बात की कमी होती है तो आपको इनसे सामंजस्यता बैठाने में सरलता पेश आती है।
1: जी बिल्कुल। और आप ऐसी अव्यवस्थाओं को मन से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप इन सब के लिए पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे,
0: इसलिए आपको इन सब का सामना करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती क्योंकि इसके लिए आप पहले से तैयार थे।
1: जी बिल्कुल। और आप ऐसे में अव्यवस्थाओं को मन से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप इन सब के लिए पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे, इसलिए आपको इन सब का सामना करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले से तैयार थे इन सब बातों के लिए।
0: अपर्णा जी, विवाह के समय यदि वर और वधु पक्ष के बीच यदि किसी बात पर कोई विवाद हो जाए तो युवाओं को तैश में आने की बजाय चुप रहना और तटस्थ रहना चाहिए। उन्हें बड़े बूढ़ों को बात करने देना चाहिए और जहां तक हो सके दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए।
1: सही कहा माइकल जी आपने, उन्हें किसी भी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल या फिर कुछ ही देर में दोनों पक्षों को सहमत होते देर नहीं लगेगी और ऐसे में आप बेकार ही मध्यस्थ की भूमिका निभाकर बुरे बनकर रह जाएंगे। इसलिए या तो चुप ही रहें ऐसे में या फिर समझौता कराने का प्रयास करते रहें।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, विषय हल्का हो चाहे गंभीर हो, पहले तो तटस्थ ही रहना चाहिए और यदि बीच में बोलना ही पड़ जाए तो समझौता ही कराने का प्रयास करना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि वधु और वर पक्ष दोनों ही आपकी दूरदर्शिता और समझदारी के कायल होंगे और आपकी समझदारी की प्रतिक्रिया के परिणाम सबको देखने मिलेंगे। दोनों ही पक्ष आपकी तारीफ करेंगे। इसीलिए ऐसे समय पर अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन करने के स्थान पर समझदारी से काम लेना चाहिए।
1: बारात के लौटते समय भी माइकल जी हंसी मजाक का ही माहौल होता है
0: जी, जी,
1: और क्योंकि परिवार के एक नए सदस्य के रूप में वधू साथ होती है। और आशा है हमारे युवा साथियों ने हमारी आज की बातचीत को भी ध्यानपूर्वक सुना होगा और वे उस पर अमल भी करेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था आदर्श बाराती, और लेखक व प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजसी। और साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथ ही वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का और कार्यक्रम युग संचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, भारतीय डाक प्रणाली का जो उन्नत और परिष्कृत स्वरूप आज हमारे सामने है, वह हजारों सालों के लंबे सफर की देन है। अंग्रेजों ने 150 साल पहले अलग अलग हिस्सों में अपने तरीके से चल रही डाक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने की जो पहल की, उसने भारतीय डाक को एक नया रूप और रंग दिया। पर अंग्रेजों की डाक प्रणाली उनके सामरिक और व्यापारिक हितों पर केंद्रित थी। भारत की आजादी के बाद हमारी डाक प्रणाली को आम आदमी की जरूरतों को केंद्र में रखकर विकसित करने का नया दौर शुरू हुआ। नियोजित विकास प्रक्रिया ने ही भारतीय डाक को दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन डाक प्रणाली बनाया है। राष्ट्र निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। आम आदमी डाकघरों और पोस्टमैन पर अगाध भरोसा करता है। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद इतना जन विश्वास कोई और संस्था नहीं अर्जित कर सकी है। यह स्थिति कुछ सालों में नहीं बनी है, इसके पीछे वर्षों का श्रम और सेवा छिपी है। साथियों, आज इसी विषय पर कार्यक्रम युग संचार में आपसे चर्चा करेगी आप सभी की चहेती अंतरा गरबड़े जी और लेखक है स्वर्गीय कृष्णकांत दुबे जी, और उनकी वार्ता का शीर्षक है भारतीय डाक सेवाएं।
1: युग संचार के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता भारतीय डाक सेवाएं। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु। मित्रों, कुछ समय पहले की बात है, एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसे पढ़ सुनकर अच्छा लगा कि भारतीय डाक सेवाओं में उसकी व्यवस्था में शासन द्वारा विशेष सुधार किया जा रहा है। उसे आधुनिक स्वरूप तो दिया ही जाएगा, उसे आकर्षक भी बनाया जाएगा। और ये सब इसलिए कि भारतीय जनमानस ने कभी भारत की शासकीय डाक व्यवस्था के प्रति अपनी असीम आस्थाएं व्यक्त की थी, लेकिन अब उस आस्था में भारी अंतर आ चुका है। उसके प्रति अब उनकी दूसरी ही दृष्टि अपना ली गई है, क्योंकि शासकीय डाक सेवाएं उतनी सक्रिय नहीं रह गई जितनी पहले कभी थी। जनता फिर इस दिशा में आकर्षित हो, वो सेवा फिर चुस्त दुरुस्त बने, अब इसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित ही जनता को खुशी होगी। शासकीय डाकघर फिर चहल पहल के नई गतिविधियों के केंद्र होंगे, और अगर ये होता है तो एक सामान्य जन को प्रसन्नता ही होगी। साथियों, वैसे भारतीय डाक व्यवस्था का अपना एक विशेष इतिहास रहा है, एक विशेष परंपरा और एक विशेष कार्य प्रणाली रही है, जो पहले कभी काफी सराही गई थी। ये डाक व्यवस्था इस धरती पर सदियों सदियों से जारी है, पर हम इस बात को नहीं भुला सकते कि इस व्यवस्था को एक खास रूप विदेशी हुकूमत के समय में ही मिला। पश्चिमी मुल्कों में जो व्यवस्था लागू थी उसे भारत में स्थापित किया गया था, जिसका कि अपना एक विशेष रूप और विशेष व्यवस्था थी। साथियों, उस युग में व्यवस्थित डाकघरों की स्थापनाएं की गईं, डाक लाने ले जाने की व्यवस्था को एक विशेष रूप दिया गया, या यूं कहें कि उसे व्यवस्थित और एक रूपता दी गई तो भी शायद गलत नहीं होगा। आगे जैसे जैसे युग में परिवर्तन आया, उसी के अनुरूप उसे व्यवस्था दी गई और विस्तार दिया गया ताकि वो सुचारू रूप ग्रहण कर सके। साथियों, सब जानते हैं कि प्राचीन युग में भारतीय डाक व्यवस्था का मूल आधार मनुष्यों के कंधे या पशुपीठ थी। उस समय तेज गति से चलने वाले इंसान, जिन्हें हरकारे कहा जाता था, तथा तेज गति से चलने वाले अश्व यानी घोड़े, ऊंट, रथ अथवा घोड़ा गाड़ियां पत्र संदेश, चिट्ठियां और अन्य पत्र आदि लाने ले जाने का काम करते थे। जिन्हें कभी कभी कई कई अवरोधों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन विदेशी हुकूमत के समय उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए डाकघरों का निर्माण, उसके साथ उन्होंने एक व्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत नई व्यवस्थाएं भी बनाई और साथियों हजारों लाखों कर्मचारी उससे जुड़े और काम करने लगे और तब डाक प्रणाली नए रूप में विकास पाने लगी। जी हाँ, इस संदर्भ में एक बात और याद आती है कि डाक सेवाओं में डाक टिकट का आज भी कितना महत्व है। इसे सभी लोग जानते भी हैं और पहचानते भी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में डाक टिकट का प्रचलन आज से कोई 156 वर्ष पूर्व हुआ था और वो समय था सन 1852 का। और साथियों, जो विवरण प्राप्त हैं उनमें ये बताया गया है कि सबसे पहले उस समय के सिंध प्रांत में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी और उसके बाद सन 1854 में सारे भारत में डाक टिकट का प्रचलन हुआ। तब जो दो पैसे, एक आना, दो आना और चार आना मूल्य के डाक टिकट थे, तब भारत में इन सिक्कों का ही प्रचलन था। इसके साथ आप ये भी जान लें कि एक समय ये डाक टिकट सीधे इंग्लैंड से ही छप कर आते थे, लेकिन सन 1931, हाँ साथियों, सन 1931 में ये ही डाक टिकट भारत में छपने लगे और इस तरह उस युग में पोस्ट कार्ड का भी चलन शुरू हुआ। इन व्यवस्थाओं ने कम खर्च लागत में इस डाक व्यवस्था के जरिए सूचना समाचारों का आदान प्रदान करना बहुत आसान बना दिया और साथियों इसके बाद इस सुविधा विस्तार ने बड़े पैमाने पर फैलाव किया और इस डाक व्यवस्था के जरिए रजिस्ट्री के साथ मनी ऑर्डर भी सहजता से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने लगे और इस तरह रुपए पैसों के लेन देन में ही सहजता आने लगी थी। और इसके साथ जब देश में टेलीग्राफ की सुविधा आई तो ये दोनों विभाग कई जगह एक साथ काम करने लगे। इससे इन विभागों का नाम ही डाक तार विभाग हो गया। तब इसका एक विस्तृत संजाल देश में जगह जगह व्याप्त किया गया। इसके साथ ही एक बात और भी हुई, जब देश में रेलवे लाइंस पर ही विस्तार पाने लगी तो देश के अनेक भाग उससे जुड़े। इसी तरह देश में सड़कें बनी, उन पर मोटर वाहन दौड़ने लगे, डाक व्यवस्था में तेजी भी आने लगी और उसकी सेवाओं में गतिशीलता आने लगी। साथियों, जब हवाई यात्राएं शुरू हुई तो उनसे भी डाक को लाने ले जाने की व्यवस्था हुई और भारत दुनिया से जुड़ गया। लगा कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, मानव विश्व मानवता से जुड़ गया हो। साथियों, जब भारत ने आजादी पाई, देश ने योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया तो उसके तहत डाक तार व्यवस्था का भी खूब विस्तार शहरों में, कस्बों में, गांवों और दूर दराज के अंचलों में डाक तार घर स्थापित हुए और उनकी सेवाएं भी विस्तार पाने लगी। लेकिन वैज्ञानिक विकास ने इसमें कई कई और विधाएं भी जोड़ी जिससे समाचार सूचनाएं तीव्र गति से भेजी जाने लगी। टेलीफोन सेवाएं तो आजादी के पूर्व ही स्थापित हो चुकी थी, लेकिन आजादी के बाद तो उसमें तीव्र गति से विकास हुआ। जगह जगह टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हुए, टेलीफोन सेवाओं से पूरा देश जुड़ गया। उस समय के कई समाचार पत्रों, व्यापारी संस्थाओं तथा कुछ अन्य संस्थानों ने भी टेलीप्रिंटर सेवाएं लेना शुरू की। विगत कुछ दशकों में तो संचार क्षेत्र में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि ने दस्तक दी और जिस गति से इन सब ने विस्तार पाया वो अपने आप में निश्चित ही अद्भुत रहा। साथियों, आकाश में स्थापित उपग्रहों ने संचार क्रांति को जगतव्यापी बना दिया। आज आधी भारतीय आबादी के हाथों में मोबाइल है जो हर कभी टुनटुनाते और संदेश देते लेते रहते हैं। अब तो ये यंत्र अपने में कई कई संभावनाएं समेटे जा रहा है। अलावा इन सब के स्पीड पोस्ट का प्रचलन भी बढ़ा है, उससे संचार व्यवस्था ने खासी गति ग्रहण की है और इसी भांति देश की कई महत्वपूर्ण कंपनियों ने अपनी अपनी कुरियर एजेंसियों को प्रारंभ कर दिया है जो जल्द से जल्द पत्र सूचनाएं आदि भेजने का काम द्रुत गति से अंजाम देती हैं। कहने का मतलब यही है कि मोबाइल, ईमेल और कुरियर की चकाचौंध लगातार बढ़ती जा रही है। और साथियों, इन सब की वजह से देश ने संचार क्रांति में अपने कदम लगातार आगे बढ़ाए हैं, लेकिन शासकीय डाक विभाग कई विसंगतियों से घिरता नजर आ रहा है। यही नहीं, उसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह की छायाएं घिरती जा रही हैं। और अब भारतीय डाक सेवा में एक नई चेतना का संचार दिखाई देगा। ये कुछ हो जाए भली बात, इससे जनसामान्य को कुछ तो सुख होगा ही। इससे भी पहले एटो नाम से एक परियोजना प्रकाश में आई है, उसने इस दिशा में कुछ भली संभावनाएं दी हैं। इसके अंतर्गत देश के कोई 1.5 लाख डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथियों, इस बात को भी नहीं भूला जाना चाहिए कि भारत में 1.5 लाख डाकघर अस्तित्व में हैं, और इनमें से कोई 1,40,000 डाकघर ग्रामीण अंचलों में हैं। सच पूछा जाए तो आज भी गांवों में संचार माध्यमों में इन्हीं डाकघरों का ही महत्वपूर्ण सहारा है और इन्हीं की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंकड़े बताते हैं कि साल भर में इन डाकघरों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए से अधिक के मनी ऑर्डर और कोई 17 करोड़ की बचत योजनाओं का कारोबार होता है। इसलिए इस बात को स्वीकारा जाना चाहिए कि ग्रामीण अंचलों में आज भी डाकघरों की उतनी ही महत्ता बनी हुई है। डाक विभाग में कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, इसलिए उसमें शिथिलता आना स्वाभाविक है। नहीं मालूम क्यों हो रहा है ऐसा। देखें, भारत सरकार आगे अपने डाक विभाग को किस नए रूप से सज्जित करने जा रही है। क्या ऐसा कुछ होगा? ये प्रश्न तो है ही, लेकिन लगता है उत्तर संदेहास्पद ही होगा जब तक कि ये योजना सही आकार न ग्रहण कर ले। और साथियों, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था भारतीय डाक सेवाएं, और जिसके लेखक थे स्वर्गीय कृष्णकांत दुबे जी और प्रस्तुतकर्ता थी अंतरा करपड़े जी। साथी, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। और इसी भक्ति गीत के साथ अब आप अपने रेडियो दोस्त ज्योति को अनुमति दीजिए, और मैं आमंत्रित करती हूँ विवेक जी को। मिलती हूँ कुछ समय बाद कुछ नए कार्यक्रमों के साथ एक नई सभा में। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है धर्म का वास्ता मानवता से और आतंक का राजनीति से, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर मैनुअल परेरा।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए। सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है धर्म का वास्ता मानवता से और आतंक का राजनीति से। प्रिय श्रोता मित्रों, फादर मैनुअल परेरा का नमस्कार। राम पुनिया जी, जो कि आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित हैं, वे लिखते हैं, दिनांक 13 जुलाई 2011 को मुंबई में हुए आतंकी बम विस्फोटों के बाद से हमारे देश में घृणा फैलाने व समाज को बांटने वाली ताकतें एक बार फिर अपना सिर उठा रही हैं। धार्मिक राष्ट्रवाद के पैरोकार अपना पुराना राग एक बार फिर अलापने लगे हैं। वे धर्म, विशेषकर के इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हिंदुओं को एक होना होगा, हिंदू पार्टी को समर्थन देना होगा, मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना होगा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। स्वामी का कहना है कि आतंकवाद दरअसल हिंदू धर्म पर इस्लामिक हमला है और इस्लाम भारत पर काबिज होना चाहता है, अतः यह जरूरी है कि आम हिंदुओं की मानसिकता हिंदुवादी बनाई जाए, अयोध्या व वाराणसी में भव्य मंदिरों का निर्माण हो, संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द किया जाए और हिंदुओं के दूसरे धर्म को अपनाने पर प्रतिबंध हो। परंतु हिंदू धर्म अपनाने के इच्छुक गैर हिंदुओं पर कोई रोक न हो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना जरूरी है और उतना ही जरूरी है मुसलमानों को मताधिकार से वंचित किया जाना। यह लेख मूलतः आरएसएस के एजेंडे को ही प्रतिबिंबित करता है, यद्यपि इसकी भाषा अत्यंत कटु व आक्रामक है। अपने गठन से लेकर आज तक आरएसएस ने देश में केवल और केवल घृणा फैलाई है। लगभग पिछले 100 सालों से हिंदू धर्म संघ की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार रहा है। लगभग पिछले 100 सालों से हिंदू धर्म संघ की राजनीतिक विचारधारा का मूल धारा रहा है। आरएसएस को अपने इस अभियान में अमरीकी दुष्प्रचार से भी मदद मिल रही है। 9/11 के बाद से अमरीका ने एक नए शब्द इस्लामिक आतंकवाद को गढ़ा और पूरी दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने का जबरदस्त अभियान चलाया। आतंकवाद सैकड़ों साल पुराना है, परंतु अलकायदा के अस्तित्व में आने के बाद से यह वैश्विक स्तर पर चर्चा और बहस का विषय बन गया है। अलकायदा और तालिबान के लड़कों को अमेरिका द्वारा स्थापित किए गए मदरसों में प्रशिक्षण मिला। पिछली सदी के आखिरी 3 दशकों में पश्चिम एशिया के तेल संसाधनों पर कब्जा अमेरिकी सामरिक रणनीति का महत्वपूर्ण अंग रहा है। अमेरिकी सरकार ने पश्चिम एशिया के देशों पर हमले करने के लिए कई बहाने गढ़े। सच तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इसराइल के निर्माण के बीज बोए ही इसलिए थे ताकि पश्चिम एशिया पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए उसे इस क्षेत्र में एक वफादार पिट्टू उपलब्ध रहे। पश्चिम एशिया में मुसलमानों का बहुमत है। इन देशों में से कुछ के तानाशाहों और शेखों ने अमेरिका

से हाथ मिला लिया। कैसी विडंबना है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में से एक के दोस्त पश्चिम एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों पर राज कर रहे निर्दयी तनाशाह हैं। अब अमेरिका हमेशा से ऐसे मौकों की तलाश में रहा जिनका इस्तेमाल वह दुनिया के विभिन्न देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कर सके। तेल उत्पादक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने के लिए ही अमेरिका ने ईरान की प्रजातांत्रिक मुसारिक सरकार का तख्ता पलटा। मुसारिक सरकार तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण करना चाह रही थी और इससे अमेरिका और इंग्लैंड की तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसके कुछ वर्षों बाद सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। रूस के विरुद्ध युद्ध में झोंकने के लिए जुनूनी मुस्लिम युवकों की जरूरत थी और इसलिए पाकिस्तान में मदरसे स्थापित किए गए। इन मदरसों में मुस्लिम युवकों के दिमाग में यह भरा गया कि हर गैर मुस्लिम काफिर है और काफिरों को मारना जिहाद है, जबकि सच यह है कि इस्लाम में काफिर का अर्थ होता है सच को छिपाने वाला और अपनी पूरी ताकत से किसी लक्ष्य को पाने का यत्न जिहाद कहलाता है। भारत में अंग्रेज शासकों की फूट डालो और राज करो की नीति व इतिहास को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले से ही आपसी शंका व घृणा का भाव था। इस्लाम के बारे में पश्चिमी दुष्प्रचार ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने हिंदू धर्म के नाम पर जो तर्क दिए हैं वे अत्यंत बहुधा और आधारहीन हैं। भारत में किए गए अधिकतर आतंकी हमले किसी एक समुदाय को निशाना बनाकर नहीं किए गए थे। इसके कुछ अपवाद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और असीमानंद द्वारा मस्जिदों या ऐसे स्थानों पर किए गए बम विस्फोट जहां मुसलमान बड़ी संख्या में इकट्ठे थे। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला 11/9/2001 को न्यूयॉर्क में हुआ था और इसमें सभी धर्मों और देशों के नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान में अलकायदा द्वारा मारे गए लोगों की संख्या हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों में जरूर होगी। यह मान्यता मूर्खतापूर्ण है कि मुस्लिम शासकों ने भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए देश पर कब्जा किया था। भारत में सम्राट अशोका को छोड़कर किसी राजा ने धर्म प्रचार नहीं किया, केवल अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वह भी शांतिपूर्ण तरीकों से। भारत में इस्लाम को फैलाई सूफी संतों ने और हिंदू धर्म के निष्ठुर जाति तथा प्रजा के चंगुल से निकालने के लिए दलितों ने बड़ी संख्या में इस्लाम को गले लगाया। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि हिंदुओं को मारकर और ढेर सारे बच्चे पैदा कर मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। पिछले 60 सालों में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों के प्रतिशत में मात्र 0.8 की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में आदिवासियों का प्रतिशत 7.5 से बढ़कर 8.5 हो गया है। इन दोनों समुदायों की आबादी की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर के पीछे गरीबी और अशिक्षा है, न कि अपने समुदाय की आबादी बढ़ाने का कोई सोचा समझा षड्यंत्र। सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत से ही जन्मी है यह मान्यता कि सभी आतंकी मुसलमान होते हैं। यह मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता कि अमेरिका द्वारा स्थापित किए गए मदरसों में मुस्लिम युवकों को निर्दयता से निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत में हुए आतंकी हमलों के बाद पकड़े गए अधिकांश मुस्लिम युवक अंत में निर्दोष साबित हुए। यह सोचना भी गलत है कि भारत में आतंकी हमलों में केवल हिंदू मारे जाते हैं। 26/11/2008 के आतंकी हमलों में मारे गए मुसलमानों का प्रतिशत आबादी में उनके प्रतिशत से कहीं अधिक था। हालिया 13/7/11 हमले में भी दोनों समुदायों के लोग मारे गए। यह कहना कि आतंकवाद की समस्या का हल हिंदुओं में एकता स्थापित करना और हिंदू पार्टी को समर्थन देना है, राजनीतिक प्रचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
भारत ने अपनी इच्छा से धर्मनिरपेक्ष राज्य बने रहना स्वीकार किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर इस्लामिक या हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों को खारिज किया था। हम यह नहीं भूल सकते कि हेमंत केरकेर की सूक्ष्म जांच के फलस्वरूप प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर असीमानंद से आरएसएस के एक प्रमुख नेता इंद्रेश कुमार के आतंकवादी हमलों में शामिल होने के अकाट्य सबूत सामने आए हैं। इस्लाम के नाम पर लोगों के दिमागों में जहर भरने का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति कर रही है, जिसका लक्ष्य अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति है। हमारे देश में हिंदुत्व की विचारधारा की पोशाक वे शक्तियां हैं जो हमारे देश के बहुवादी एवं प्रजातांत्रिक चरित्र का गला घोटना चाहती है। बहुवाद व प्रजातंत्र हमारे स्वतंत्रता संग्राम की थाती है। आतंकवादी हमलों का बदला लेने या पाकिस्तान पर हमला करने की बातें शुद्ध पागलपन है, और ऐसा कोई भी कदम भारतीय उपमहाद्वीप को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। किसी एक समुदाय पर आतंकवाद का पोशाक होने का आरोप लगाना गलत है। कुछ असीमानंदों और दयानंदों के कारण पूरा हिंदू समुदाय आतंकवादी नहीं हो जाता। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था धर्म का वास्ता मानवता से और आतंक का राजनीति से। इसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर मैनुअल परेरा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है आइए मेकओवर करें।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता, आइए मेकओवर करें। जी हाँ बहनों, चलिए अपना मेकओवर करें। लेकिन आपने क्या सोचा कि मेकओवर करने का अर्थ सिर्फ चेहरे का हुलिया बदलना या फिर अपने पहनावे में कोई फर्क करना, रंगों के चुनाव को बदलना या फिर बालों की स्टाइल को बदलना है? जी नहीं बहनों, मेकओवर करने का अर्थ है अपनी सोच में और अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना, अच्छे विचारों को सिर्फ सोचना नहीं उन्हें अमल में लाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको किसी किस्म के बदलाव की जरूरत है? बहनों, अमूमन बदलाव के विषय में हम तब सोचते हैं जब हमारे मन में कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं या फिर कुछ ऐसे वाक्य हमारे साथ होते हैं जैसे हम किसी की नई सोच को अचानक इसलिए नकारने लगते हैं क्योंकि अब तक हमने वैसा क्यों नहीं सोचा। वाकई यदि आप किसी ढांचे में ढल चुकी हैं या फिर किसी सांचे में आपकी सोच रह गई है, उसके आगे नहीं जाती, तब किसी भी नई प्रकार की सोच यदि कोई व्यक्ति आपके सामने लेकर आता है, उसे समझने या सुनने से पहले ही आप उसे नकारने लगती हैं। तब जरूर सोचिए, आपको आपकी सोच को बदलाव की जरूरत है। दूसरी बात, परिवार में हमारी प्रतिक्रिया सभी को पहले से मालूम होने लगती है। बहनों, कई बार होता है ये कि लंबे समय तक आप परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपने आप में अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं करती, आपके द्वारा किसी भी घटना को, दुर्घटना को, किसी आयोजन को किस प्रकार से लिया जाता है, ये बात परिवारजनों में सभी को मालूम होती है। ऐसे में किसी भी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सभी को मालूम होता है और आपके व्यक्तित्व में कोई नवीनता नहीं रह जाती और कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जिसे आपके व्यक्तित्व की विशेषता कहा जाए। इसके आगे आपको एक समान ही तोहफे हर साल मिलने लगते हैं। बहनों, जब आपका व्यवहार एक समान रहता है, आपकी पसंद सभी को मालूम होती है और सभी के मन में ये विश्वास हो जाता है कि ये महिला इस विषय से अथवा इस सीमा से आगे अपनी सोच में, अपने व्यक्तित्व में या अपने व्यवहार में नहीं जाएगी, ऐसे में आपको लेकर सबकी सोच भी एक प्रकार के सांचे में ढल जाती है। यदि आपको हर साल एक प्रकार के तोहफे मिल रहे हैं, तब ये सोचिए कि सभी आपको एक समान रूप में ही ले रहे हैं और सभी को मालूम है कि आपका व्यक्तित्व एक सांचे में ढल चुका है और अब जरूरत है मेकओवर की। जी हाँ, दिमागी मेकओवर की। बहनों, कभी कभी हम आध्यात्मिक होने लगते हैं और कभी कभी अति सांसारिक। जी हाँ, ये सोच भी खतरनाक है। यदि आप अपने पति, बच्चों, अपने पूरे परिवार के बीच बैठी हैं, तो आपको संसार बड़ा भला लगने लगता है। वहीं यदि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया या आपसे कोई भूल हो गई, तो भूल होना मनुष्य का स्वभाव है, इस प्रकार के आध्यात्मिक विचार आपके मन में आने लगते हैं। इसका अर्थ है कि आपका व्यक्तित्व अपने सही सोच को नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है। ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि आपकी सही सोच क्या है, आपकी सही विचारधारा क्या है, और इस समय भी जरूरत है मेकओवर की। हमारे किसी शौक को समय बिताने का साधन समझा जाने लगता है। अब उदाहरण के लिए, मेरी एक सहेली है, उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और ऐसे में अब उसे समय मिला है कि वो अपने पहले के शौक को, जो संगीत का था, वो सितार बहुत अच्छा बजाया करती थी, उसको वो फिर से लागू करे। उसने अपने घर के पास ही एक सितार वादक के घर जाकर सितार सीखना शुरू किया। अब उसे ये लगा कि सभी की ओर से प्रतिक्रियाएं कुछ इस प्रकार की आएंगी कि अब आप इस कला को अपना रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबने उन्हें ये कहना शुरू किया कि अब तो आपके पास समय ही समय है, आप समय काटने के लिए सितार क्यों न बजाएं या फिर कोई किताब ही क्यों न पढ़ें, क्या फर्क पड़ता है। बहनों, इस प्रकार के विचार सभी के मन में यदि है, ये समय है बदलाव का, ये समय है मेकओवर का। और हम अपनी तुलना जब बार बार सभी से करने लगे, तब ये भी समय है मेकओवर का। बहनों, इसके अलावा भी अनेक कारण हैं जिनके चलते बदलाव की इच्छा भी मन में आना स्वाभाविक होती है। अब सबसे पहले तो होता यह है कि हमारे मन में सबसे पहला विचार ये आता है कि हम बदलना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा वर्तमान स्वरूप सही नहीं है। बस यहीं पर मन में अवसाद घर कर जाता है। बहनों, हम रिश्तों की पड़ताल करेंगे तो उदाहरण स्वरूप ये पाएंगे कि जब घर में नई देवरानी आ जाती है ना, तब जेठानी जरा ज्यादा सजने संवरने लगती है।
इसका मतलब है उसके मन में असुरक्षा की भावना आ जाती है कि जो व्यक्तित्व मेरा अब तक रहा उसी के समान या उससे थोड़ा और ऊंचा व्यक्तित्व यदि घर में आ गया है तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। इस प्रकार की असुरक्षा की भावना आपके मन में होना गलत है। अब हम ये देखें कि हमारी निरीक्षण वृत्ति कितनी सबल होती है। तो बहनों, यदि मेकओवर की बात आपके मन में है, आप अपने विचारों को और अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप अपने मन से इन बातों को निकाल दीजिए कि मेकओवर सिर्फ शारीरिक बदलाव है। जी नहीं, आपको अपने वस्त्रों में, आपकी केश सज्जा में या फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर आप मेकओवर नहीं करेंगे। उससे सिर्फ आपका ऊपरी स्वरूप बदलेगा, आपके मस्तिष्क में जो विचार हैं, जिनके व्यवहारों से आपको जाना जाता है, उन्हें बदलना वाकई मेकओवर है। इससे सभी का ध्यान आपके बदले स्वरूप पर जाएगा और आपके व्यक्तित्व के दोष छुपेंगे। बिल्कुल नहीं बहनों, आपके शरीर पर ध्यान जाएगा जरूर, यदि उसमें बदलाव है तो वो सभी को अच्छे लगेंगे जरूर, लेकिन जो आपके व्यक्तित्व के दोष हैं वो बिल्कुल नहीं छुपेंगे मेकओवर से। इसमें दिमागी कसरत जरा भी नहीं है। जी नहीं, इसमें दिमागी कसरत ही है जिसके चलते आप अपना मेकओवर करेंगी। आप रातों रात प्रसिद्ध हो जाएंगी या ये बोरियत भगाने का तरीका है? जी नहीं बहनों, मेकओवर आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने का तरीका है। ये बहुत सम्माननीय तरीका है जिसे व्यक्तित्व विकास का एक भाग कहा जाता है। दरअसल मेकओवर का प्रचलन विदेशों से आया हुआ माना जाता है, लेकिन इसका चलन हमारी संस्कृति में भी काफी पुराना है। यदि संयुक्त परिवार की ही बात देखें तो जीवन में एक के बाद एक बदलाव आया करते थे जो नारी को संपूर्ण कर दिया करते थे। उसके जन्म के कुछ ही वर्षों के बाद वो किसी की बड़ी दीदी, किसी की मौसी, किसी की छोटी बहन, बेटी, बहन, बुआ और विवाह के बाद तो असीमित रिश्तों को निभाते हुए इतनी व्यस्त और सुखी होती थी कि वर्तमान के मेकओवर प्रकार के लिए उसके पास सोचने का भी समय नहीं रहता था। आजकल के जीवन में व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो जीवन में घटनाओं की कमी है। जन्म लेने के बाद के 20 वर्ष एक छात्रा के रूप में एक स्त्री ढल जाती है। इस दौरान शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। इसके बाद विवाह, नौकरी, संतान का होना, इन घटनाक्रमों के बाद उसका जीवन फिर 25 सालों के लिए ठहर जाता है और इसी के चलते जरूरत महसूस होने लगी है मेकओवर की। तो चलिए आपको ये बताएं बहुत संक्षेप में कि सही सही मेकओवर क्या है और इससे आपको क्या लाभ मिल सकते हैं। बहनों, एक सही मेकओवर का अर्थ है आधुनिक हो जाना, अपने पहनावे के साथ साथ विचारों से भी। मेकओवर के लिए कोई उम्र नहीं होती। पुरातन पंथी सास के साथ रही हुई बहू यदि अपनी प्रौढ़ावस्था में अपनी बहू को सहर्ष नौकरी करने के लिए हाँ कहती है तो ये हुआ सबसे सकारात्मक मेकओवर। बहनों, कहने का अर्थ ये है कि आप भी मेकओवर करें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था आइए मेकओवर करें। सहेलियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी आरवीए कलाकार के द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक लगी होगी और आप इन सभी बातों का लाभ भी लेंगी। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भंवर कुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। आइए मित्रों, अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है क्रोध को अपने पर हावी न होने दे, और इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है स्वर्गीय इंदु संतोष जी।

कार्यक्रम प्रस्तुत है मन दर्पण। इसके अंतर्गत वार्ता सुनिए, क्रोध को अपने पर हावी न होने दें। लेखिका और वाचिका इंदु संतोष। एक व्यक्ति के मकान के ऊपर भी एक मकान था, मतलब डबल मंजिल था। गर्मी के दिन थे और वो व्यक्ति अपने घर में उसका घर ठंडा रहे इसलिए कूलर चलाता था। उसका कूलर बेहद पुराना था और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जब उसको चलाता तो नीचे रहने वाले व्यक्ति और उसके परिवार वाले परेशान हो जाते थे। वो कूलर बहुत शोर करता था। एक दिन नीचे रहने वाले मकान के उस व्यक्ति से कहा कि आपका कूलर रात दिन में इतना शोर करता है कि हमारा आराम करना मुश्किल हो जाता है। बेहतर ये है कि आप उस कूलर को या तो किसी मैकेनिक को बताएं या नया खरीद लें। हम सभी आस पड़ोसी आपके उस कूलर से बहुत परेशान हैं। बस इतना सुनना था कि कूलर वाला व्यक्ति आस पड़ोसी पर भड़क पड़े और झगड़ा करने लगे। क्रोध में आकर न जाने क्या क्या बकबक करते रहे। आस पड़ोसी समझ गए इस व्यक्ति से जीत पाना कठिन है। जीवन में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति में आत्म संयम का अपना एक ही विशेष महत्व है। आत्म संयम न होने के कारण नष्ट हुए व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनमें ऊंची महत्वाकांक्षा थी, योग्यता थी, उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी। वे व्यक्ति होनहार थे। सभी को उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता था, लेकिन उनमें अपने को वश में रख पाने की सामर्थ्य न थी, इसलिए उनका जीवन व्यर्थ हो गया। आप प्रतिदिन समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं कि किसी ने क्रोध में आकर किसी को गोली मार दी या चाकू से घायल कर दिया या मार डाला। इतना ही नहीं, कुछ बड़े और नामी गिरामी लोग भी अनायास क्षणिक क्रोध के कारण बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। ऐसे वो क्षणिक आवेश में आत्म संयम की हीनता के कारण कर बैठते हैं और इस कार्य का उन्हें मूल्य भी चुकाना पड़ता है, बहुत कड़ा और बहुत बड़ा। क्रोध के कारण मनुष्य का खून खौल उठता है। क्रोध का एक झोंका आया और मनुष्य अपने ऊंचे पद से गिरा, या कोई ऊंचा पद मिलने वाला हो और वो अवसर टल गया। क्रोध के आवेशपूर्ण एक क्षण में मनुष्य अपने वर्षों के काम, श्रम या अनुभव के फल को, परिणाम को व्यर्थ कर देता है। वर्षों का श्रम एक पल में बेकार हो जाता है। आप में से कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनका जीवन क्रोधी स्वभाव के कारण बिगड़ गया। क्रोध से उन्हें क्या हानि होगी इसकी वो चिंता नहीं करते। वे अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते और न कहने योग्य बात भी दूसरे व्यक्ति को कहते रहते हैं, क्योंकि वे क्रोध में पागल से हो जाते हैं। क्रोध के आवेश में आप अपनी बात, अपने विचार और अपना मन जबरदस्ती दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर लादना चाहते हैं। एक योग्य व्यापारी था, उसकी सारी साख धीरे धीरे नष्ट हो गई। कारण यही था कि वो अपने ग्राहकों को अपने विचार बताना चाहता था। अपने विचार, अपना मत बताने की झोंक में वो क्रोध में आ जाता था और आगा पीछा सोचे बिना जो मुंह में आ जाता था बक देता था, गालियां तक देने लगता था, बिना किसी कारण
या तर्क के क्रोध में आ जाता था। परिणाम ये हुआ कि उसके ग्राहक टूटने लगे, उसके अपने कर्मचारी तक डरते और उससे दूर रहते। धीरे धीरे उसका काम इतना बिगड़ा कि वो दिवालिया होने की नौबत तक पहुंच गया। सारी की सारी साख जो उसने अपनी मेहनत से बनाई थी, उसके क्रोधपूर्ण और अकड़ू व्यवहार के कारण मिट्टी में मिल गई। अनेक व्यक्ति क्रोध में मनुष्य नहीं रह जाते, राक्षस बन जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जब क्रोध में आ जाता था तो उसके सामने जो चीज आ जाती उसे फेंक कर तोड़ देता था। वो प्रायः सभी से गाली गलौज पर उतर आता। जो उसे शांत करना चाहते वे भी उसके क्रोध के शिकार बन जाते। क्रोध के आवेश में उसकी आंखें लाल अंगार से जलने लगती और परिचित व्यक्ति दूर भाग जाते। वैसे वो चेतन मन से किसी पर क्रोध नहीं करना चाहता था। क्रोध का उबाल उतर जाने पर वो निढाल और बेबस हो जाता। हालांकि वो स्वस्थ व्यक्ति था, उसके विचार स्वस्थ थे, वो अच्छा सोचता था, लेकिन कमी थी तो यही कि किसी को पता नहीं चल पाता कि वो कब, किस पर, किस बात पर भड़क उठेगा। यही कारण था कि लोग उससे कतराते थे और यही उसकी अवनति का कारण बन गया। क्रोध की आंधी आने पर मनुष्य पागल हो जाता है, क्रोध रूपी राक्षस के अधीन हो जाता है। एक महिला क्रोध में अपने को संभाल नहीं पाती थी। क्रोध की आंधी गुजर जाने पर उसके शरीर में शक्ति नहीं रहती थी और वो कमजोरी महसूस करने लगती थी। क्रोध के एक झोंके के बाद उसे संभलने में कई दिन लग जाते थे। क्रोध करते रहने से उसका स्वास्थ्य गिरता चला गया। एक समय वो भी आ गया जब उसने बिस्तर पकड़ लिया। जब मस्तिष्क में क्रोध भरता है तो मस्तिष्क के तंतुओं में विषैली प्रतिक्रिया आरंभ होती है। चरित्र का उत्तम निष्कर्ष आत्म संयम है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया वो सबको प्रभावित कर सकता है, सबको वश में भी कर सकता है। मैं एक परिवार को जानती हूँ। परिवार के सभी सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसी क्रोध के कारण उन्होंने अपने घर को नरक बना लिया है। जब क्रोध का दौरा पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक दूसरे को काट खाएंगे। पल भर में उनकी शक्लें बदल जाती हैं। पल में ऐसा दिखता है जैसे राक्षस आपस में लड़ रहे हों। इस प्रकार आपस के लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर आक्षेप चढ़ाना, एक दूसरे की निंदा करना, आरोप लगाना क्रोध के कारण ही होता है। अतः सफलता और सुख समृद्धि के लिए आप अपने क्रोध को त्यागें। क्रोध का बड़े से बड़ा कारण उपस्थित होने पर भी जो व्यक्ति संयम से रहता है, शांत रहता है, वही श्रेष्ठ है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था क्रोध को अपने पर हावी न होने दें, और इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता थी स्वर्गीय इंदु संतोष जी। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता जिसका शीर्षक है भूमिगत जल। इस वार्ता की लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता खानचंदानी।

पर्यावरण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है भूमिगत जल। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता खानचंदन। श्रोता साथियों, गर्मियों का मौसम अपनी वही सारी समस्याओं और परेशानियों को लेकर हाजिर है और हम भी अपनी सारी झुंझलाहटों तनाव के साथ बुझे बुझे से उसकी आगवानी में तत्पर है। पर्यावरण और प्रकृति ने जब हर कदम पे हमारा साथ निभाया है तो फिर ये अब कैसा बैर है जो हमें हमारा ही पर्यावरण एक एक बूंद को तरसा रहा है। दोस्तों, जैसे कि ये पंक्तियां बयां करती है कि बादल इतना बरस रहे हैं, फिर भी पौधे तरस रहे हैं। यही चमन को अचरज भारी, पानी कहाँ चला जाता है। दोस्तों, आखिर कहाँ है पानी, बादल कहाँ चले जाते हैं, गर्मी का पारा बढ़ते बढ़ते कहाँ थमेगा? क्या ये सवाल मात्र सोचकर भूल जाने के लिए है? बस इन सवालों पर विचार करके कुछ देर चिंतित होकर ही हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं क्या? नहीं दोस्तों, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। खैर, इसके पहले आपको पानी की उपलब्धता तो समझनी होगी ना। श्रोताओं, सतह के जल स्रोतों यानी नदियों, तालाबों, झीलों की हालत तो हम अपनी आंखों से देखकर महसूस कर सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, लेकिन ग्लेशियरों से पिघलकर सागर में मिल जाने वाली सरिताओं, तालाबों, झीलों के परे भी पीने योग्य पानी की एक दुनिया है जिसका उपयोग तो हम खूब जमकर करते हैं लेकिन उसकी स्थिति से हम परिचित नहीं। ये दुनिया है भूमिगत जल की। दोस्तों, उपयोगिता की दृष्टि से यह भूमिगत जल सतह पर उपलब्ध जल संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के लगभग 80% गांव कृषि एवं पेयजल के लिए भूमिगत जल पर ही निर्भर हैं। और आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि पूरे विश्व में भूमिगत जल अपना अस्तित्व बड़ी तेजी से समेट रहा है। विकासशील देशों में स्थिति तो यह है कि यह जलस्तर लगभग 3 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से कम हो रहा है। और दोस्तों, केंद्रीय भूजल बोर्ड के अन्वेषणों के अनुसार भारत के भूमिगत जल स्तर में 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष औसत की दर से कमी हो रही है, जो कि हमारी भीमकाय जनसंख्या की जरूरतों को देखते हुए बड़ी गहरी चिंता का विषय है। श्रोता साथियों, धरती की ऊपरी सतह जिसे मृदा कहते हैं, उसकी अनेक सतहों के नीचे चट्टानों के छिद्रों या दरारों में छिपा है आज का सबसे कीमती खजाना भूमिगत जल, जिसके सिमटते ही मनुष्य यानी कि हम डायनासोर्स के जैसे विलुप्त हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा सरल करके बताती हूँ। आप यूं कीजिए, एक घड़ा पानी कच्ची जमीन पर उड़ेल दीजिए। क्या हुआ, मिट्टी ने पानी सोख लिया ना। यही सोख लिया जाना ही बारिश के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाने का पहला पड़ाव होता है। बारिश के पानी को मिट्टी अपनी क्षमताओं और गुणों के अनुरूप पहले तो स्वयं सोख लेती है और फिर जब वह तृप्त हो जाती है तो इसी रास्ते पानी उन चट्टानों तक पहुंचने लगता है जो मृदा की परतों के नीचे स्थित होती है। लेकिन दोस्तों, ना तो हर प्रकार की मिट्टी पानी को इन जल ग्रहण करने वाली चट्टानों तक पहुंचाने में समर्थ होती है और ना ही हर प्रकार की चट्टाने पानी को ग्रहण कर पाती है। आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा अवसादी चट्टाने जैसे बलुआ चट्टाने अधिक जलधारक होती है। कठोर चट्टानों में जल संग्रहण कर सकने योग्य छिद्र ही नहीं होते। जिन भूमिगत चट्टानों में छिद्र अथवा दरारें होती हैं, उनमें यह पानी न केवल संकलित होता है बल्कि एक छिद्र से दूसरे छिद्र में होते हुए गतिशील भी होता है और ऊंचे से निचले स्थल की ओर प्रवाहित होने जैसा सामान्य नियम भी पालन करता है। मृदा से चट्टानों तक पहुंचने की प्रक्रिया में पानी छोटे बड़े छिद्रों से छनता हुआ संग्रहित होता है, इसीलिए स्वच्छ भी होता चला जाता है। श्रोता साथियों, वर्षा के जल और सतही जल में भी आपसी संबंध होता है। जानना चाहेंगे, चलिए बताती हूँ। नदियों में बहने वाला जल केवल वर्षा से प्राप्त जल अथवा ग्लेशियर से पिघलकर बहता हुआ पानी ही नहीं होता। नदी अपने जल में भूमिगत जल का भी योगदान लेती है और उसे योगदान देती भी है। ताल, झील और बांधों के इर्द गिर्द भूमिगत जल की सहज सुलभता का कारण भी यही है कि ठहरे हुए जल स्रोत आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी इन भूमिगत जल संग्रहालयों को प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार धरती पर पाए जाने वाले जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत एक दूसरे की सहायता पर निर्भर होते हैं। यदि वर्षा का जल संग्रहित करके चट्टानों तक पहुंचाया जाए तो भूमिगत जलाशयों को भरा जा सकता है।
दोस्तों, प्रकृति अपने सामान्य क्रम में यह कार्य खुद ही कर रही है, लेकिन आज जब यह समस्या विकराल है तो दोस्तों हमें भी अभियान बनाकर यह कार्य करना आवश्यक हो गया है। यह समस्या इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि मृदा अपने भौतिक रासायनिक गुणों के अनुरूप ही सतही जल या वर्षा के जल को ग्रहण कर सकती है। दोस्तों, तेजी से बहते हुए जल का थोड़ा सा हिस्सा ही जमीन के भीतर पहुंच पाता है, जबकि ठहरे हुए पानी का बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे भूमिगत जलाशयों तक पहुंच जाता है। श्रोता साथियों, वर्षा का ज्यादातर पानी सतह की सामान्य ढालों से होता हुआ नदियों में मिलकर सागर में होम हो जाता है। वर्षा का यह बहुमूल्य शुद्ध जल यदि भूमि के भीतर पहुंच सके तो बैंकिंग प्रणाली की तरह यह कारगर होता है, यानी कि जमा करने पर ब्याज का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। भूमिगत जल मानसून के बाद भी मृदा की नमी बनाए रखकर अपना ब्याज निरंतर अदा करते रहता है। कुएं और नलकूप जैसे साधनों द्वारा खेती के काम आता रहता है और हमारी प्यास बुझाता है। दोस्तों, क्योंकि खेत प्यासे नहीं रह सकते, जीव जानवर प्यासे नहीं रह सकते, इंसान प्यासे नहीं रह सकते और कल कारखाने भी चलते हैं, इसीलिए भूमिगत जल को बोरिंग जैसे माध्यमों से बाहर निकालकर उपयोग करने की आवश्यकता तो लगातार बनी ही रहती है। लेकिन साथियों, जरा सोचिए, जिस स्रोत का दोहन किया जा रहा हो उस स्रोत को वापस भूमि में पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। वैसे ही जैसे बैंक से पैसा निकालने के लिए पहले उसमें पैसे जमा कराने होते हैं, अगर पैसे जमा ही नहीं करोगे तो फिर निकलेगा क्या? उपलब्धता से अधिक उपयोग की स्थिति में यह स्रोत, जिन्हें तकनीकी भाषा में एक्वीफायर यानी भूमिगत जलाशय कहा जाता है, पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं या इनकी जल संग्रह क्षमता कम हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में अनगिनत फैक्ट्रियों कारखानों के दूषित रसायनों को जमीन पर बहा दिए जाने से, विभिन्न रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को जमीन में दफना दिए जाने से और सफाई व संक्रमण की रोकथाम के लिए कीटनाशकों के प्रयोग से भूमिगत जलाशयों के प्रदूषित होने की समस्या भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, यदि एक बार यह जल प्रदूषित हो गया तो फिर बहुत बड़े जलाशय को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये भूमिगत जलाशय बड़े हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब जब जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो प्रकृति अपने सीमित संसाधनों के बावजूद स्वयं को मिटाकर हमें बचाने में लगी है। तो क्या हमारी भी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने आप के ही लिए, स्वयं के लिए भूमिगत जल संसाधनों को बढ़ाने में हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण का सहयोग करें? जिस जिम्मेदारी की बात मैंने शुरुआत में की थी, उसे निभाने की, पूरा करने की तरकीबें भी मैं आपको बताती हूँ। हम अपने कुछ निजी प्रयासों से भूमिगत जल का संरक्षण कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि सरकार और वैज्ञानिकों ने तो इस दिशा में काफी प्रयोग और प्रयास किए भी हैं, लेकिन हम खुद भी अपने स्तर पर कुछ तो कर ही सकते हैं। जैसे बारिश के मौसम में छत पर गिरे पानी को सीधे जमीन के भीतर पहुंचाने की व्यवस्था बना दी जाए, अपने आंगन को कच्चा रखने की पुरानी परंपराओं का पालन किया जाए और कम से कम एक वृक्ष तो जरूर लगाएं। तो दोस्तों, हम पानी संग्रहण में पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, अंत में एक बेहद बेहद जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, और वो बात ये है कि पानी का उपयोग कम से कम करें और बिना वजह नल को खुला ना छोड़ें। अगर आप बस इतना भर ही करने का संकल्प ले लें तो प्रकृति की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था भूमिगत जल और जिसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता थी संता खान चंदानी। साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो विविधतास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rviritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

प्रभु का वचन कहता है, दूसरों पर दोष लगाने की आदत मत डालो, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों को नापा है। श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक सुनते हैं, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: छठा दिन है। पिछले 5 दिन प्रभु ने धरती, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, चांद, सितारे, सूरज, जीव जंतु और पक्षी बनाने में लगाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इतनी सुंदरता के बाद भी अभी दुनिया अधूरी थी। कारण ये कि जिसे दुनिया का शासक बनाया जाना था वो अब तक अस्तित्व में ही नहीं आया था। पृथ्वी पर के पेड़ पौधे फलों से भरे थे, मगर उनका आनंद उठाता कौन? जमीन में फसल उगाता कौन? तब प्रभु ने धरती से मिट्टी लेकर मानव को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण फूंक दिए, जिससे वो सजीव हो उठा। प्रभु ने उसे अमर आत्मा दी, उसे नाम दिया आदम।
1: कितनी सुंदर, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, मगर आप कौन हैं?
2: मैं इस दुनिया का रचयिता हूँ।
1: यानी आपने ये सारी दुनिया बनाई है?
2: हाँ।
1: सच, बहुत सुंदर है, बहुत खूब। आप हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु हैं?
2: हाँ, मैं प्रभु हूँ।
0: प्रभु आदम की इस खुशी को देख मुस्कुरा पड़े। फिर प्रभु ने पूर्व की ओर अदन में एक बाग बनाया, सब प्रकार के वृक्ष लगाए जो न सिर्फ सुंदर थे, उनके फल भी स्वादिष्ट थे। ईश्वर ने मनुष्य को उस वाटिका में रख दिया, जिससे वो उसका मजा भी लूटे, खेतीबाड़ी भी करे और देखरेख भी। अदन की वाटिका में और वृक्षों के बीच एक वृक्ष और भी था, और वो था जीवन वृक्ष, जो कि भले बुरे का ज्ञान कराता था। प्रभु मनुष्य को लिए अदन बाग में घूम रहे थे। एक पेड़ के फल देखकर आदम कह उठा,
1: कितना सुंदर फल है, आइए प्रभु हम ये फल खाएं।
2: नहीं आदम, ये फल खाने के लिए नहीं है।
1: क्यों?
2: ये जीवन वृक्ष है, भले बुरे का ज्ञान कराता है। जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे,
1: और अगर नहीं खाया
2: तो तुम कभी नहीं मरोगे।
0: प्रभु की ये बातें सुन मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैं सोचता था ये सारे फल खाने के लिए हैं, मगर ये क्या? मैंने तो उसी दिन ठान ली कि मैं उस वृक्ष की ओर देखूंगा भी नहीं। मैं उस वृक्ष के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने देखा प्रभु सारे प्राणियों को लेकर मनुष्य के पास आ रहे हैं कि वो उन्हें नाम दे। मनुष्य ने सारे पक्षियों, घरेलू पशुओं को नाम दिया। प्रभु ने देखा कि एकाएक मनुष्य उदास हो गया है। मनुष्य की उदासी ईश्वर से नहीं देखी गई। वे उसके सामने से उठकर कुछ सोचते हुए से लगे। मैं भी परेशान हो गया, आखिर बात क्या है?

0: चाहती तो मैं आपसे कुछ पूछूं?
1: हाँ हाँ पूछो, क्या बात है?
0: ये मनुष्य एकाएक उदास क्यों हो गया? क्या आपने इसे उस पेड़ का फल खाने से मना किया था इसलिए?
1: नहीं, इसे अकेला रहना खलता है, इसलिए मैं इसके लिए एक सहयोगी बनाऊंगा जिससे वो उसके साथ अपने दुख सुख बांट सके।

0: तब ईश्वर ने तब मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वो सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाली और उस जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने उस आदमी से निकाली हुई पसली से एक सुंदर स्त्री को गढ़ा और उसे आदमी के पास ले गया।
1: ये तो मेरे समान है, मेरी हड्डियों की हड्डी। प्रभु, इसका नाम क्या है?
2: तुम इसे नाम दो।
1: इसका नाम हेवा रखता हूँ।
2: हेवा, ये आदम है। जाओ, प्रेम से रहो, ये सारी दुनिया तुम्हारी है।
1: आओ हेवा, हम दोनों दूर तक घुमाएं।

0: धरती पर सारी सुंदरता पूर्ण हो चुकी थी। सचमुच सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सुंदर से सुंदर थी और इन सब में चार चांद लगा देते थे नर और नारी, यानी वे दो पहले इंसान। ईश्वर उन दोनों को देख खुशी से फूले न समाए।
1: फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरण करने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ, वे तुम्हारा भोजन होंगे। मैं सब जंगली जानवरों, आकाश के सब पक्षियों, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए हरियाली देता हूँ। ये मेरा इस पृथ्वी के लिए वरदान है।
0: इस तरह छठा दिन समाप्त हुआ। ईश्वर ने अपनी बनाई सारी सृष्टि पर नजर डाली। उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आकाश और पृथ्वी की एक एक वस्तु अनुपम सुंदरता लिए हुए थी। सातवें दिन ईश्वर ने विश्राम किया और उसे आशीर्वाद देते हुए पवित्र माना। सातवें दिन उनका सृष्टि रचना का एक महान काम समाप्त हुआ था। एक सपना पूरा हुआ था। अपने स्वप्न को हकीकत में बदलकर न सिर्फ वे खुश थे, संतुष्ट भी। आदम और हेवा की लीला से तो वे बहुत ही खुश थे। इन दोनों नर व नारी को ईश्वर के द्वारा अमरत्व का वरदान प्राप्त था कि वे जब तक ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे तब तक नहीं मरेंगे। एक मुख्य बात ये थी कि अब तक आदम और हेवा को भले बुरे का ज्ञान नहीं था। वे दोनों निर्वस्त्र थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा या शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता था। वक्त गुजरता गया और अदनबाग में आदम और हेवा का प्रेम एक दूसरे के लिए बढ़ता गया।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप मेरे साथ यानी कि आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वेरितस एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं वक्त के साथ साथ हम भी हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। साथियों, कार्यक्रम स्वास्थ्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है बच्चों में मोटापा या फिर बाल्यकाल स्थूलता। साथियों बाल्यकाल स्थूलता या फिर बच्चों में मोटापा ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में उपस्थित अतिरिक्त वसा बच्चे के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चूंकि प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक वसा के मापन की विधियां कठिन है, मोटापे या फिर स्थूलता का निदान अक्सर बीएमआई पर आधारित होता है। हम सभी देख सकते हैं हमारे आसपास बच्चों में स्थूलता या मोटापे की स्थिति बढ़ती जा रही है, और हम ये सभी जानते हैं कि मोटापा वाकई चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में खतरे की घंटी होता है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए आज हम ये देखें कि बच्चों में मोटापा किन कारणों से होता है और आखिर वो कैसे किस प्रकार के निदान हैं जिनके चलते हम बचपन को मोटापे की चपेट से बचा सकते हैं, बचपन को एक हंसता खेलता स्वरूप दे सकते हैं। साथियों हम सभी ने देखा होगा कि यदि हमें अपने आसपास स्थूलता से पीड़ित कोई बच्चा दिखाई देता है तो हम उसे मोटा या स्थूल नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि इसका वजन थोड़ा ज्यादा है या फिर ये ओवरवेट है, क्योंकि ये सुनने में कम बुरा लगता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जो विचार हम बड़े करते हैं वो विचार बच्चों के उनके दोस्त या उनके हमउम्र बिल्कुल नहीं करते। यही कारण होता है कि मोटापे या स्थूलता से ग्रस्त बच्चों में सबसे पहली समस्या ये होती है कि वे आमतौर पर बहुत भावुक होते हैं या फिर वे मनोवैज्ञानिक रूप से समस्याग्रस्त रहते हैं। साथियों होता अक्सर यही है कि एक समूह में खेलते हुए बच्चों में जो काम सारे बच्चे कर सकते हैं, जिस खेल में सारे बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, उस खेल में सामान्य रूप से स्थूलता से ग्रस्त बच्चे हिस्सा नहीं ले पाते। यदि वे हिस्सा लेते भी हैं तो शायद वे अपनी ओर से सामान्य खेलकूद उसका प्रदर्शन नहीं कर पाते। यही वो समय होता है जब बच्चों को एक प्रकार की ग्रंथि उनके मन में पलने लगती है और उन्हें ये लगने लगता है कि वे सामान्य से कुछ अलग हैं, और यही कारण उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकता है। इसके चलते बच्चे न केवल समाज से कट जाते हैं, उनके मन में एक हीनता का बोध हमेशा पनपने लगता है। तो चलिए अब हम देखें कि यदि बच्चों में मोटापा है तो उससे उन्हें और क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। साथियों बच्चों में मोटापा जीवन भर के लिए खतरनाक विकार भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, निद्रा रोग, कैंसर और अन्य ढेर सारी संबंधित समस्याएं। इसके अलावा कुछ अन्य विकार भी मोटापे के कारण आते हैं, जैसे यकृत रोग, यौवन का जल्दी आरंभ होना या फिर लड़कियों में मासिक धर्म का जल्दी शुरू होना, आहार के विकार जैसे एनोरेक्सिया और बुलिमिया, त्वचा में संक्रमण और अस्थमा तथा श्वसन से संबंधित अन्य समस्याएं। साथियों अध्ययनों से ये मालूम पड़ा है कि अधिक वजन वाले बच्चों में वयस्क होने पर भी अधिक वजन बने रहने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा भी पाया गया है कि किशोरावस्था के दौरान अधिक स्थूलता के कारण वयस्क अवस्था में मृत्यु की दर ज्यादा होती है। मोटे बच्चों को अक्सर उनके साथी भी चिढ़ाते हैं, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि यदि परिवार में कोई इस प्रकार का बच्चा है जिसका वजन ज्यादा है तब परिवारजनों द्वारा भी उस बच्चे के साथ सामान्य के स्थान पर भेदभाव भरा व्यवहार किया जाता है। ऐसा करने से उन बच्चों के आत्मविश्वास में तो कमी आती ही है, वे अपने आत्मसम्मान को भी कम महसूस करते हैं। और जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जो मोटापे से संबंधित नहीं है वो भी इन बच्चों में आ जाती है, उसे कहते हैं अवसाद। साथियों एक अध्ययन में ये पाया गया है कि स्थूलता से पीड़ित बच्चों में कैरोटिड धमनियां समय से पहले विकसित हो जाती हैं। स्थूलता से पीड़ित बच्चों में कैरोटिड धमनियां समय से पहले इतनी विकसित हो जाती हैं साथियों जितनी कि एक 30 वर्ष के वयस्क की उम्र में विकसित होनी चाहिए, और साथ ही उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बहुत असामान्य होता है। साथियों यदि अब हम कारण देखें तो सबसे पहले मोटापे का कारण तो आहार से ही जोड़ा जाता है, और बच्चों के साथ में यदि हम खाने की आदतों को लेकर प्रभाव निर्धारित करने चले तो हमें विशेषज्ञों की ओर से राय सुनने को मिलती है कि बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ यदि आप
आहार प्रबंधन करना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में वे मोटापे के कारण होने वाली बीमारियों से कम और आहार प्रबंधन के कारण उन्हें जो पोषण की कमी मिलेगी उसके कारण ज्यादा बीमार पड़ेंगे। लेकिन साथियों, यदि हम आहार संबंधी बात को अपने सामने लाए भी तो ये देख सकते हैं कि बच्चों को मोटापा बढ़ाने वाली चीजें यानी अत्यधिक कैलोरी युक्त पेय और खाद्य पदार्थ बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप ही सोचिए, चीनी से भरी हुई सॉफ्ट ड्रिंक का उपभोग बच्चों में मोटापे में बहुत ज्यादा योगदान देता है। एक अध्ययन के अनुसार यदि हम देखें तो प्रतिदिन यदि एक अतिरिक्त सॉफ्ट ड्रिंक पिया जाए तो स्थूलता की संभावना 1.6 गुना तक बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथियों, बच्चों में स्नैक्स के साथ या फिर फास्ट फूड के साथ जो संबंध होता है या जो प्रेम उन्हें होता है वो तो जग जाहिर है। बहुत सारे कैलोरी से युक्त और तैयार स्नैक्स बच्चों को बहुत आसानी से हर जगह मिल जाते हैं और इसी के चलते बच्चों में स्थूलता भी बढ़ती जा रही है। कई देशों में तो इस प्रकार के कानून बन चुके हैं कि आहार जो कि फास्ट फूड की श्रेणी में आते हैं या फिर स्नैक्स की श्रेणी में आते हैं, जिसमें असंतृप्त और संतृप्त दोनों प्रकार के वसा जो कि शरीर में मोटापे को बढ़ाते हैं, इनकी मात्रा यदि सामान्य से ज्यादा हो तो उनकी बिक्री एक सीमित सीमा तक तय कर दी जाती है। इसके साथ ही साथियों, यदि हम बात करें तो परिवार में एक प्रकार का वातावरण वो भी मोटापे के लिए जिम्मेदार होता है। यदि परिवार की बात करें तो इन दिनों माता और पिता दोनों को ही स्वावलंबी होना जरूरी है। जी हाँ, यही कारण होता है कि माता पिता दोनों मिलकर बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं और यही कारण है कि बच्चों को यदि वे सही समय नहीं दे पाते हैं तो उसकी पूर्ति किसी न किसी प्रकार से उनकी जिद पूरी करने के लिए या फिर उनकी मनचाही चीजें दिलाने को लेकर सप्ताहांत में होती है। हम सभी देख सकते हैं शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन सप्ताहांत के समय अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर फास्ट फूड रेस्तरां में लेकर जाते उनके माता पिता, उनके चेहरे पर एक प्रकार का संतोष होता है और बच्चों के चेहरे पर भी। लेकिन यदि इस चीज के पुनरावृत्ति बार बार होने लगे तो इसका सीधा संबंध होता है वयस्क होने के बाद बच्चे के शरीर में मोटापा होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही वर्तमान में यदि हम प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ में मोटापे को जोड़कर देखें तो ये भी एक कारण हम देख सकते हैं, मान सकते हैं। लंबे समय तक बैठकर टीवी देखना, आजकल हम एक दृश्य प्रत्येक घर में देख सकते हैं कि नन्हा बच्चा यदि खाना खाने में परेशान कर रहा है तो उसे उठाकर टेलीविजन के सामने बिठा दिया जाता है। टेलीविजन के सामने बैठाते बराबर बच्चे का भोजन के साथ और स्वाद के साथ जो संपर्क होना चाहिए वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे सिर्फ अपनी आंखों के सामने चलते हुए कार्टून के चित्र नजर आते हैं और वो यंत्रवत किसी मशीन की भांति भोजन करता है। बच्चों के माता पिता इस चीज को देखकर बड़े खुश होते हैं कि टेलीविजन देखते हुए बच्चा बहुत अच्छे से खाना खा रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी जो स्वाद इंद्रिय है उसका संबंध भोजन के साथ में कहीं से कहीं तक नहीं बन पाता। ऐसे में बच्चा सिर्फ पेट भरने के लिए एक मशीन की भांति खाता जाता है, उसे इस चीज का एहसास तक नहीं होता कि उसका पेट भर चुका है या फिर उसे कोई चीज पसंद आ रही है। उसकी स्वाद ग्रंथियां भी बहुत अच्छे से विकसित नहीं होती। यही कारण होता है कि वही नन्हा 3-4 साल का बच्चा जब 8, 9, 10, 11, 12 वर्ष का होता है तब उसे घर का भोजन बिल्कुल भी नहीं सुहाता और तब टीवी के सामने बड़े मान मनोबल से अपने नन्हे बच्चे को लेकर बैठने वाली माताएं परेशान होती हैं और बच्चे जब रेस्तरां में जाकर जंक फूड खाते हैं, बीमार पड़ते हैं पोषण की कमी के कारण, उनकी माता को ये सुनना पड़ता है कि वे बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तब वाकई ये लगता है कि यदि थोड़ी सी मेहनत उन्हें स्वाद के साथ परिचित करवाने में या फिर थोड़ा सा समय उनके पालन पोषण में दिया गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो साथियों, बच्चों में स्थूलता वाकई वर्तमान में एक गंभीर समस्या है और बहुत सारे कारक ऐसे हैं जिन्हें लेकर हमें एक साथ चलना होगा, जिन्हें हमें स्वीकार करना होगा कि इन स्थानों पर हम लोग वाकई गलत हैं। हमें अपनी जीवन शैली में और अपनी सोच में बदलाव लाना होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संसार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए आपने हमारे कार्यक्रम की वार्ता तो सुनी ही होगी और ऐसे ही सुनते रहिए सत्य स्वर जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, इस समय आप रेडियो वरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। और अब हम सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संसार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे बच्चों, आपका इंतजार करने का समय अब खत्म हुआ और आप सभी लोगों का स्वागत है कार्यक्रम बाल जगत में। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है चोर विद्वान और प्रस्तुत करता है मर्लिन जेकब।

प्यारे बाल मित्रों, आपकी बहन मर्लिन का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है चोर विद्वान। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। एक शहर में पंडित तोताराम जैसा विद्वान रहता था, किंतु दुख की बात यह थी कि उस बेचारे के पास केवल विद्या ही विद्या थी। घर में केवल गरीबी थी, वह दो समय की रोटी के लिए भी चिंतित थे। भूखा भी इंसान कब तक रह सकता है, दुख भी कब तक सह सकता है। मित्र संबंधी उसे देखते ही इसीलिए आंखें फेर लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि यह भूखा उनसे कुछ न कुछ मांगेगा। इतने सारे दुख सहन करने के पश्चात वह करता भी तो क्या करता। अब तो उसके सामने दो रास्ते ही थे, या तो वह आत्महत्या कर ले या फिर चोर बन जाए। मरने से तो चोर बनना ही अच्छा है, क्योंकि आत्महत्या तो वैसा ही पाप है। यही सोचकर वह विद्वान पंडित चोर बन गया। चोरी करना भी पाप है, मगर भूखे मरना तो उससे भी बड़ा पाप है। अब बेचारा पंडित चोरी करके अपना पेट पालने लगा। चोर बनते ही जैसे उसके दिन फिर गए। खूब पेट भरकर खाता, बल्कि उन सबको खिलाता जो भी भूखे नजर आते। साधु संतों को बुलाकर भोजन करवाता। एक बार उस चोर पंडित ने चार ब्राह्मणों को कुछ कीमती चीजें बेचते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा कि इनको कैसे लूटा जाए, कोई ऐसा ढंग निकालूं जिससे यह सब कुछ उसके कब्जे में आ जाए। थोड़ी देर सोचने पश्चात वह उनके पास पहुंचा और बड़े बड़े श्लोक बोलने लगा। उसे इस प्रकार श्लोक बोलते देखकर ब्राह्मण बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, भाई तुम तो बहुत विद्वान ब्राह्मण हो, क्या हमारे साथ नौकरी करोगे? किसी ने ठीक ही कहा है, अत्यंत शर्मिली नारी उल्टा होती है। खारा पानी ठंडा होता है, मीठी बातें करने वाला प्राणी खतरनाक होता है। उन चार ब्राह्मणों ने अपनी कीमती सामान बेचकर और बहुत सा कीमती सामान खरीदा, ताकि उसे दूसरे शहर में जाकर बेचकर वह धन कमाए। वह चोर पंडित उनका नौकर बनकर इन ब्राह्मणों के साथ ही चलने लगा। उसके मन में तो पाप था ही, वह सोच रहा था कि इनका सारा माल कैसे छीन लूं। क्या ना मैं इन्हें जहर देकर मार डालूं और इनका माल लेकर गायब हो जाऊं। मगर जैसे ही वह यह सोच रहा था और वे सब चलते चलते एक गांव के करीब पहुंचे, तो वहां पर बैठे एक नाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आओ आओ, देखो बड़े धनी पंडित आए हैं, इनका माल लूट लो। उस नाई की आवाज सुनते ही बहुत से लोग लाठियां भाले लिए दौड़ आए। सबके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शिकार मोटा है, जाने ना पाए। सब चोरों ने मिलकर इन ब्राह्मणों को घेर लिया। इनमें से एक मोटा सा आकर बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है वह निकाल दो, नहीं तो याद रखो हम तुम्हें आदमी की चमड़ी उधेड़ कर उसके शरीर में से सब कुछ निकाल देते हैं। देखो सरकार, हमारे पास धन नहीं है, तुम चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो, चारों ब्राह्मणों ने कहा। ओ मूर्ख ब्राह्मणों, आज तक तुम्हारी बातें झूठ नहीं निकली। यदि तुम धन निकालकर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देंगे। उनकी यह बात सुनकर पांचवा चोर ब्राह्मण सोचने लगा कि यही मौका है अपने पापों को धोने का। मैं यदि इन ब्राह्मणों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं, तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। मौत तो हर इंसान की आती है। यह सोचकर वह ब्राह्मण उन चोरों से बोला, देखो भाई, यदि तुम्हें संदेह है कि हमारे पास बहुत धन है, तो सबसे पहले मेरे शरीर की तलाशी लो। यदि तुम्हें मेरे पास धन ना मिले तो मेरे शरीर के टुकड़े करके फेंक देना और इन्हें छोड़ देना, क्योंकि फिर तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे। उस ब्राह्मण की बात सुनते ही उन चोरों ने उसकी तलाशी ली।
जब उसकी तलाशी ली तब उसे कुछ न मिला तो उसके शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाले। मगर उसने भी कमाल की कुर्बानी दी कि शरीर के टुकड़े होते समय उफ तक न की। अब तो चोरों को विश्वास हो गया कि इनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो ब्राह्मण अपनी जान नहीं दे सकता था। उस ब्राह्मण ने केवल सच को सिद्ध करने के लिए ही अपनी जान दी है। शेष चारों ब्राह्मणों को इशारा करते हुए डाकुओं का सरदार बोला, जाओ भाई, अब तुम जाओ, हमारी ही भूल थी कि हमने आप पर विश्वास नहीं किया। अब इसकी हत्या करने के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि तुम लोग सच्चे हो। ब्राह्मण तो बचकर चले गए, मगर उस नौकर के त्याग को वे सदा ही याद रखेंगे जिसने अपनी जान गंवाकर उन्हें बचा लिया था।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत, जिसका शीर्षक था चोर विद्वान और प्रस्तुतकर्ता थी मर्लिन जेकब। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? आइए अब हम सुनते हैं एक बाल गीत और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्यारे श्रोताओं और बच्चों, अभी आप सुन रहे थे एक बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। बच्चों, एक कहानी सुन के किसका मन भरता है, आइए अब हम सुनते हैं एक और कहानी जिसका शीर्षक है गलती और प्रस्तुत करता है ईशान खापड़े।

लूडो को खेलना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि अगले 2-3 महीने में उसके फाइनल पेपर होने वाले थे, लेकिन वह फिर भी पढ़ने के बजाय खेलने में ही मन लगाता था। जो भी बच्चा पढ़ रहा होता वह उसे भी कहता, अरे तुम अभी से क्यों पढ़ रहे हो, अभी तो पेपर होने में 2 महीने बाकी हैं। उसका मानना था कि पेपर से कुछ दिन पहले पढ़कर आसानी से पास हुआ जा सकता है। वह सोचता था कि जब हम स्कूल में पढ़ते ही हैं, तो फिर घर पर पढ़ने की क्या जरूरत है। एक दिन वह शाम के समय अपने दोस्त नीलेश के घर गया। नीलेश उस समय पढ़ाई कर रहा था। गुड्डू बोला, अरे नील, यह क्या तू पढ़ रहा है? मैंने सोचा था कि हम कंप्यूटर पर गेम खेलेंगे, चल खेलते हैं। नहीं गुड्डू, अगले महीने पेपर है, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम भी घर जाकर पढ़ाई करो, पेपर के बाद हम खूब खेलेंगे, नीलेश ने कहा। तू ऐसा बोल रहा है कि जैसे कल ही पेपर हो। तुझे नहीं खेलना तो मत खेल, पर मैं तो खेलूंगा, कहकर गुड्डू वहां से चला गया। गुड्डू इस प्रकार अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता रहा। उसके पेपर शुरू होने में सिर्फ 10 दिन रह गए थे। अब उसने पढ़ना शुरू किया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पढ़ाई कहां से शुरू करे, क्योंकि उसने पहले से कुछ नहीं पढ़ा था। उसने पेपर की चिंता में खाना पीना और यहाँ तक कि सोना भी छोड़ दिया। खाना रखे रखे ठंडा हो जाता, लेकिन वह अपना पाठ रटता रहा। पेपर की चिंता के मारे उसके दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा था। पेपर शुरू हुए, वह जब पेपर देखता तो उसे लगता कि उसे सब आता है, परंतु जब करने बैठता तो सन रह जाता। वह अपने पेपरों से बहुत निराश हुआ। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। वह फेल हो गया था। वह अपना रिजल्ट लेकर स्कूल के बाहर स्थित पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया और शाम तक वहीं बैठा रहा। शाम के समय जब नीलेश उधर से होकर गुजरा तो अचानक उसकी नजर गुड्डू पर पड़ गई। वह उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, गुड्डू क्या हुआ, तू घर क्यों नहीं गया? मैं फेल हो गया, गुड्डू ने सिसकते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम अगली बार कड़ी मेहनत करना और अच्छे नंबरों से पास होना। तुम्हारा पढ़ाई करने का तरीका गलत था। पेपर के ठीक पहले पढ़ने से हम भ्रमित हो जाते हैं। अब तुम शुरू से मेहनत करना और देखना तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे, नीलेश ने गुड्डू को धीरज बंधाते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो नीलेश, मैंने शुरू से पढ़ाई की होती तो मैं फेल ना होता, गुड्डू सुबकते हुए बोला। अच्छा चल अब घर जा, आंटी अंकल परेशान हो रहे होंगे, नीलेश ने कहा। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मम्मी पापा से क्या कहूंगा, गुड्डू रोते हुए बोला। गुड्डू रो मत, तू उनसे माफी मांग लेना और कहना कि आगे से मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, देखना वे तुझे जरूर माफ कर देंगे, नीलेश ने उसे समझाया। हाँ बेटा, हमने तुम्हें माफ किया, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, यही तुम्हारी सजा है, यह गुड्डू के पापा की आवाज थी। पापा को देखकर गुड्डू उनसे लिपटकर रोने लगा। उन्होंने उसे चुप कराया। अंकल आप यहाँ कैसे, नीलेश बोला। बेटा जब गुड्डू घर नहीं आया तो मैं उसे ढूंढने चला आया, इसकी बड़ी फिक्र हो रही थी, गुड्डू के पापा ने बताया। पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे मम्मी और पापा मिले, गुड्डू बोला। सो तो है, तुम्हारे पास अच्छे मम्मी पापा ही नहीं बल्कि नीलेश जैसा अच्छा दोस्त भी है, पापा ने हंसते हुए कहा। हाँ, गुड्डू ने नीलेश के गले लगते हुए कहा। फिर वह पापा के साथ घर लौट आया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत, जिसका शीर्षक था गलती और प्रस्तुत करता थे ईशान खापड़े। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। श्रोताओं, अभी कितना समय हो रहा है क्या आपको पता भी है? आपसे बात करके और कार्यक्रमों को सुन के मैं तो समय ही भूल जाती हूँ। अब अनुमति दीजिए मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त ज्योति को, और जाने से पहले सुनिए एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक जी को कि बिना समय व्यर्थ करे जल्दी से आए और ढेर सारे नए कार्यक्रमों से आपको मिलन कराए। साथ ही अब मैं चलती हूँ, स्वीकार करे ढेर सारा प्यार और नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुंबकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के

0: लेकिन पिछले कुछ महीनों से सुनने को मिल रहा है कि बिहार में कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली अनुदान की राशि में कटौती की गई है। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है मुखिया जी?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, सरकार ने जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि कम की है
0: जी,
1: उनमें ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, लेजर, लेवलर, रोटावेटर और जीरो सीड ड्रिल मशीन शामिल हैं।
0: जी जी।
1: हालांकि पंपसेट और सिंचाई पाइप पर पहले की ही तरह अनुदान मिलता रहेगा।
0: अच्छा।
1: इन पर मिलने वाली अनुदान राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुदान का उद्देश्य ये था कि किसान आधुनिक यंत्रों के उपयोग के प्रति जागरूक हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वे इन्हें चलन में ले लें जिससे खेती सुगम हो और कम खर्च में उत्पादकता भी बढ़े। बजट में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का हिस्सा अलग अलग है।
0: एक अच्छी बात भी सुनने को मिली है मुखिया जी कि बिहार में गाय भैंस के लिए 7 बैंक लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं और वो भी सब्सिडी पर। क्या यह बात सही है मुखिया जी?
1: बिल्कुल सही है। सरकार की मंशा श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने की है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाने की ओर सरकारें बढ़ रही हैं, साथ ही पशुपालन को भी बढ़ावा देना चाहती है।
0: जी जी।
1: इसी बात को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने 7 बैंकों को चिन्हित किया है जो गाय भैंस खरीदने के लिए लोन देंगे और वाजिब सब्सिडी भी मुहैया कराएंगे।
0: इस वर्ष से नवंबर में ही ठंड ने दस्तक दे दी है मुखिया जी।
1: हाँ।
0: और जानकारों का कहना है कि यह खेतिहरों के लिए शुभ संकेत है। किस तरह के बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा है?
1: खरीफ में तो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन इस बार रबी में किसानों के घर भर जाने की उम्मीद है।
0: जी जी।
1: उत्पादन का लक्ष्य पाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार बैठी है, तो किसानों के साथ इस बार मौसम भी दिख रहा है। इसकी वानगी खरीफ मौसम में हथिया नक्षत्र में हुई वर्षा में भी देखने को मिल गई थी।
0: तो क्या यह सब कुछ हथिया नक्षत्र में हुई वर्षा का ही परिणाम है जो रबी के लिए मौसम अनुकूल हुआ है?
1: देखिए, वर्षों बाद हथिया नक्षत्र में 4 दिनों की झपसी से जमीन में काफी नमी आ गई।
0: जी।
1: तभी यह अंदाजा हो गया कि गेहूं की बुआई आसान होगी।
0: अच्छा अच्छा।
1: इधर नवंबर से ही शुरू हुई ठंड ने किसानों के दिल बाग बाग कर दिए हैं।
0: जी।
1: कृषि वैज्ञानिक भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, पर उनके अनुसार दलहनी फसलों को लाही से बचाने के लिए उपाय जरूर करने होंगे।
0: जी हाँ, बिल्कुल। लाही का प्रकोप तो खास करके जब नमी ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा होती है तो ज्यादा पड़ता है, तो उससे तो बचाव करना ही होगा हमारे किसान भाइयों को। सरकार ने इस वर्ष रबी का उत्पादन लक्ष्य क्या निर्धारित किया है मुखिया जी, और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किस तरह के कदम उठाए जाने की योजना बन रही है?
1: सरकार ने इस वर्ष रबी में 80 लाख टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।
0: जी।
1: उत्पादकता बढ़ाकर 3100 किलो प्रति हेक्टेयर करना है। इसके लिए विभाग ने गेहूं बुआई कतार में करने के लिए किसानों को जागरूक किया है। वर्षा की कमी के कारण खरीफ मौसम में इस वर्ष कई जिलों में समय पर रोपनी नहीं हो सकी थी।
0: जी जी।
1: हालांकि बाद में मौसम अनुकूल हुआ तो किसानों ने खेती में जान लगा दी। विभाग ने इसकी भरपाई रबी मौसम में करने की तैयारी की है।
0: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह की तैयारी करने की योजना सरकार बना रही है?
1: सरकार ने 2016-17 के लिए जो लक्ष्य तय किया है,
0: हाँ,
1: उनमें रबी और गर्मा फसलों का उत्पादन 1.32 करोड़ टन कराना है।
0: अच्छा।
1: यानी 1.5 टन से कुछ कम।
0: जी।
1: 1.5 करोड़ टन से।
0: जी।
1: है ना?
0: हाँ।
1: साथ ही सभी योजनाओं में खेतों तक अभियान चलाने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों को भी किसानों की पीठ पर सरकारी योजनाओं के साथ खड़े रहने का निर्देश दिया गया है।
0: जी।
1: गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और कीटनाशक की व्यवस्था के साथ समय पर रबी फसलों की बुआई कराने की जिम्मेदारी विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दी गई है।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि हमारा जो बिहार का मोकामा का टाल क्षेत्र है वो रबी उत्पादन में काफी अग्रणी माना जाता है।
1: हाँ।
0: इस क्षेत्र के लिए इस वर्ष क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है?
1: इस वर्ष मोकामा टाल के किसानों के लिए विदेशी मटर वरदान साबित होगा। मटर की GS10 प्रभेद न्यूजीलैंड से मंगाई गई है।
0: अच्छा।
1: जिसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर

0: से 15 दिसंबर तक है।
1: जी जी।
0: जल जमाव को लेकर टाल के अधिकांश खेतों में दलहनी फसलों की बुआई नहीं हो सकी है।
1: जी बिल्कुल।
0: ऐसे में किसान विकल्प के तौर पर इस प्रभेद को लगा सकते हैं। किसान सलाहकार दीपक कुमार ने जानकारी दी कि मौसम व टाल की स्थिति के अनुरूप ये प्रभेद मंगाया गया है। अच्छी उपज देने वाला GS10 प्रभेद 3 महीने में तैयार होता है। सामान्य मटर की अपेक्षा इसमें 1 महीने का समय अधिक लगता है, लेकिन सामान्य मटर से इसकी उत्पादकता दोगुनी हो जाती है।
1: ये तो अच्छी बात है मुखिया जी कि सामान्य मटर से इसकी उत्पादकता दोगुनी है।
0: हाँ।
1: यह जो बीज विदेश से मंगाया गया है, इसको क्या किसानों को अनुदानित दर पर मुहैया कराए जाने की योजना है?
0: BAO ने बताया कि GS10 प्रभेद अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है। किसान को 1 एकड़ के लिए 32 किलो बीज मिलेंगे।
1: अच्छा, 1 एकड़ के लिए 32 किलो।
0: हाँ, इसके लिए 7,040 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि बाद में किसानों के बैंक खाते में 3,200 रुपए अनुदान की राशि वापस मिल जाएगी।
1: अच्छा अच्छा, एक बात यह भी बताइए कि ये मटर का नया प्रभेद जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं GS10, इसकी विशेष खासियत क्या है?
0: अगर इसके खासियत की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि GS10 प्रभेद का उत्पादन 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ है।
1: अच्छा।
0: इसकी एक फली में 9 से 12 दाने लगते हैं। दाने का आकार भी बड़ा होता है। बाजार में इस प्रभेद की मांग भी अधिक है। किसान इच्छानुसार हरा मटर भी बाजारों में बेच सकते हैं।
1: जी जी।
0: इसकी खेती में किसानों को अधिक मेहनत की भी जरूरत नहीं है, जबकि साधारण मटर की उत्पादन क्षमता अधिकतम 25 क्विंटल तक होती है।
1: अच्छा।
0: वही ये 60 दिनों में भी तैयार हो जाता है, जबकि टाल में एक ही फसल लगाया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मुखिया जी, टाल में एक ही फसल लगाया जाता है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोकामा टाल क्षेत्र के किसानों पर इस बार दोहरी मार पड़ रही है। कारण यह है कि दलहन की बुआई गीली मिट्टी में होने से बीज की मात्रा और जुताई की लागत बढ़ गई है।
0: ये बात भी सही है कि टाल की गीली मिट्टी में ही दलहन की बुआई होने से किसानों को दोहरी मार पड़ रही है।
1: जी।
0: इससे बीज की मात्रा के साथ जुताई की लागत भी बढ़ गई है। हालांकि अनुदानित दर पर मिल रहे बीज से किसानों को राहत जरूर मिली है। किसानों का मानना है कि ठंड में थोड़ा इजाफा हुआ तो दलहन लगाना बेकार साबित होगा।
1: अच्छा अच्छा।
0: पहले ही मसूर लगाने की अवधि से 1 माह की देरी हो चुकी है।
1: बिल्कुल।
0: अन्य दलहनी फसलों की बुआई का समय भी नहीं बचा है, जबकि ज्यादा नमी की वजह से अधिकांश खेत जुताई के लायक नहीं है। किसान जल्दबाजी के चक्कर में बुआई कर रहे हैं।
1: इस मामले में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं,
0: हाँ।
1: इस मामले में कृषि विभाग के सलाहकारों का या फिर विशेषज्ञों का क्या कहना है? वे लोग इस हालात को किस तरह से देखते हैं? क्या नुकसान होगा या फिर हमारे किसान भाइयों को फायदा होने वाला है?
0: किसान सलाहकारों ने जानकारी दी है कि अधिक नमी से बीजों का अंकुरण प्रभावित हो सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: वहीं खेतों से अवांछित घास भी नष्ट नहीं होंगे। जल्दबाजी के चक्कर में घाटे का सौदा हो सकता है, इसके लिए किसानों को आवश्यक सलाह दी गई है।
1: अच्छा।
0: किसान नेता अरविंद जी ने बताया कि टाल में अधिक समय तक जल जमाव को लेकर आंशिक रूप से ही दलहन की खेती हो सकेगी।
1: जी जी।
0: अधिकतर किसान गेहूं की फसल लगाने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन बाद में किसानों को पटवन में समस्या होगी। इस संबंध में BAO ने कहा कि टाल की जमीन वह समय के अनुरूप मसूर, चना और गेहूं का बीज उपलब्ध कराया गया है। गेहूं का प्रभेद HD2967 और 550 लगाने पर अधिक पटवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्नत प्रभेद यूपी से भी मंगाया जा रहा है।
1: ऐसा कहा जा रहा है मुखिया जी कि टाल के किसानों को अनुदानित दर पर बीज मिलेगी। और किसान सलाहकार खेती से जुड़ी जानकारी भी देंगे।
0: हाँ।
1: अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है।
0: देखिए, मोकामा टाल के किसानों को अनुदानित दर पर बीज मिलेगी, ये बात तो तय है।
1: जी।
0: प्रखंड कृषि कार्यालय में मसूर, चना और गेहूं का बीज उपलब्ध कराया गया है। किसान सलाहकार बीज वितरण के दौरान किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी भी देंगे। ये जानकारी सरकार की तरफ से मुहैया कराने की बात कही जा रही है। बीज खरीदने के बाद अनुदान की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी।
1: जी,
0: किसानों को अनुदान के लिए बैंक पासबुक, पहचान पत्र और राजस्व की रसीद देनी होगी।
1: किसानों को अनुदानित दर पर बीज मुहैया कराने की योजना सरकार की ओर से चल रही है, ये काफी अच्छी बात है मुखिया जी। अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अनुदानित दर पर बीज जो उपलब्ध कराई जाएगी, उसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ करना होगा और उसके एवज में यानी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र के रूप में उनको क्या क्या देना होगा। इस सुंदर जानकारी के लिए मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे तो खेती किसानी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें होगी। अभी हम लोग चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। आपका भी धन्यवाद।
0: और पिछले कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्याम जी और कपूर साहब आप दोनों से कि अतिक्रमण का जो मामला है, खास करके शहरीकरण के बढ़ते दौर में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम आया है। सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देनी पड़ रही है। ये सारा जो गड़बड़ झाला है, इसके लिए आखिर सुप्रीम कोर्ट को सामने क्यों आना पड़ा, कैसे ये बखेड़ा खड़ा हुआ, इसकी पृष्ठभूमि आखिर क्या है?
1: देखिए वीरेंद्र जी, विख्यात संविधान विशेषज्ञ फली एस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट में जन प्रतिनिधियों के एक ऐसे विशेषाधिकार पर सवाल खड़ा किया जो उनके मुताबिक संवैधानिक भावना के खिलाफ है।
0: अच्छा,
1: सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार से जवाब तलब किया है। नरीमन ये इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी नागरिक को ऐसे किसी अपराध में दोषी पाया गया है जिससे 2 साल की सजा का प्रावधान है तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई सांसद या विधायक दोषी करार दिया जाता है, अगर वह फैसले के खिलाफ अपील करता है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती।
0: नरीमन जी ने निहायत एक गंभीर प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा है, क्योंकि संविधान की नजर में भारत के सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या फिर आम नागरिक। श्याम जी,
2: हाँ, नरीमन जी ने जो प्रश्न उठाया है उसमें यह साफ झलकता है कि अपराध और सजा के मामले में एक आम नागरिक के लिए अलग प्रावधान है और सांसदों और विधायकों के लिए अलग।
0: बिल्कुल,
2: किसी भी आरोप में अदालत से दोषी करार दिए जाने पर आम नागरिक को दोषी माना जाएगा, लेकिन एक सांसद और विधायक को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह ऊपरी अदालत में अपील पर है।
0: लेकिन हमको नहीं लगता कपूर जी कि ऐसे मामलों में संसद में कोई सार्थक पहल संभव है, क्योंकि कोई भी अपने पैर पर भदा कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगा?
1: देखिए, नरीमन जी का भी यही कहना है कि संसद में इस मामले में कदम उठाने की उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि आधे लोकसभा सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं
0: जी।
1: ये एक व्यवहारिक दिक्कत है कि इतने जन प्रतिनिधि गंभीर अपराध के आरोपों से घिरे हैं कि अगर उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाए तो संसद और विधानसभाओं का कामकाज ही खतरे में पड़ जाएगा। सरकार का कहना है कि लगभग ऐसे ही तर्क के बूते 2005 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने इस विरोधाभास को जायज बताया था। सवाल ये है कि जिन लोगों पर गंभीर अपराध के आरोप हैं उन्हें कानून बनाने का काम कैसे सौंपा जा सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इस समस्या की छाया संसद व विधानसभाओं में अराजकता, अपशब्द व हिंसा के रूप में देखने को मिलती है।
0: जब हिंसा की बात उठी रही है तो इसी संदर्भ में मैं ये जानना चाहूंगा कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं, चाहे वो यौन हिंसा हो या किसी भी प्रकार की हिंसा, जो घटने के बजाय आए दिन बढ़ती ही जा रही है, जो एक सभ्य समाज के लिए काफी चिंता का विषय है क्या?
2: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र भाई, कानून के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी न होने से सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। पिछले दिनों यौन हिंसा के खिलाफ जिस तरह से लोगों में आक्रोश देखा गया उसने पूरे जनमानस को झकझोर कर रख दिया। जब तक दोषियों को भयभीत करने वाला कानून हमारे यहाँ नहीं बनता तब तक इस तरह के माहौल बने रहेंगे।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषियों को भयभीत करने वाला दंड देने के लिए पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने का वक्त आ गया है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, कोर्ट का मानना है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन से ही समाज में अपराध कम हो सकता है।
0: फैसलों को आने में भी काफी देरी होती है जिससे मामला उलझ जाता है और बहुत सारे साक्ष्य जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हद तो यहाँ तक हो जाती है कि अपराधी सबूत के अभाव में सीधे बचकर निकल जाते हैं।
1: सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कानून की पेचीदगियों और उलझाऊ प्रक्रियाओं को कठोर दंड देने के रास्ते में बाधा बताया है
0: जी,
1: ऐसे में निचली अदालतों की स्थिति को सहज ही समझा जा सकता है, जो पहले से ही 2.5 करोड़ मुकदमों के बोझ से दबी है और जिनके पास एक पल भी सोचने का वक्त नहीं है।
0: महिलाओं पर हो रही विभिन्न तरह की हिंसाएं जो है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए हैं कपूर साहब।
1: जी हाँ, आपका कहना सही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2 दिन पूर्व दिए एक फैसले में कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की बिगड़ती स्थिति को काबू करने के लिए देश में कठोर कानून बने हैं, इसके बावजूद विवाहितों को आए दिन जलाया जा रहा है, उन पर क्रूरता हो रही है, आत्महत्या, यौन उत्पीड़न, रेप और विवाहितों द्वारा आत्महत्या के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
0: श्याम जी, इससे तो साफ जाहिर होता है कि लोगों में कानून का भय रहा ही नहीं, लोग बेखौफ हो गए हैं और जब चाहे जहां चाहे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
2: सचमुच इन सब से साफ जाहिर होता है कि लोगों में दंड का भय नहीं रह गया है। ऐसे में एक ही रास्ता है कि पूरे सिस्टम को ओवरहॉल किया जाए, ताकि दोषियों को ऐसा दंड दिया जा सके जिससे उनमें डर पैदा हो।
0: मौजूदा व्यवस्था में अदालतें किस प्रक्रिया के तहत अपना काम करती हैं?
1: देखिए वीरेंद्र जी, मौजूदा व्यवस्था में अदालतें कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पर चलती हैं। कानून में हर अपराध के लिए एक दंड है, जिसे तभी दिया जा सकता है जब पुलिस अपराध को संदेह से परे साबित कर दे। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अदालतों पर लागू हैं, उनका पालन न करने पर अभियुक्त साफ बरी हो जाता है।
0: वो कौन सी प्रक्रिया है श्याम जी, जिसका अगर अदालत पालन नहीं करेंगे तो अभियुक्त साफ बरी हो जाता है? ये जानना खास करके आम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
2: देखिए, सीआरपीसी की धारा 313 का बयान एक ऐसी प्रक्रिया है।
0: अच्छा,
2: ये बयान मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जज स्वयं लेता है। ऐसे सैकड़ों केस हैं जिनमें इस बयान के न लेने पर ऊपर की अदालतों से अभियुक्त बरी हो जाते हैं।
0: हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है वह भी तो कम उबाऊ नहीं है कपूर साहब।
1: जी सही,
0: काफी वक्त जाया होता है तब जाकर न्याय मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है। पूरी प्रक्रिया के बारे में सिलसिलेवार आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, कोई भी घटना होने पर पहले पुलिस में मामला दर्ज होता है
0: जी,
1: फिर जांच होती है, जरूरी हुआ तो उसकी निगरानी भी की जाती है, उसके बाद कोर्ट में वकील जीरा करते हैं जिनके आधार पर अदालत फैसला सुनाती है।
0: अभी जो इस तरह की मांग की जा रही है कि यौन हिंसा या महिला हिंसा के खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाए जिससे लोगों में भय हो, हालांकि इस कदम के बारे में पूर्व न्यायाधीश जेएस वर्मा ने काफी कुछ सुझाव सरकार को दिए थे
1: जी,
0: और उस पर सरकार कितना अमल कर पाई है ये तो कहना मुश्किल है। इससे पहले इस तरह की पहल हमारी सरकार के द्वारा की गई या नहीं की गई, और फिर कोर्ट ने क्यों इस तरह के सुझाव दिए हैं, श्याम जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब कोर्ट ने कानून निर्माताओं को आगाह किया है। इससे पूर्व 30 नवंबर को भी अदालत ने संसद से छेड़छाड़ के मामले में कड़ा कानून बनाने को कहा था
0: जी।
2: कोर्ट का कहना था कि प्रभावी कानून न होने के कारण छेड़छाड़ की शिकायतें आईपीसी की धारा 294 और 509 के तहत दर्ज की जाती हैं, लेकिन इन धाराओं में ये सिद्ध करना मुश्किल होता है कि अभियुक्त ने कब कोई गाना गाया या कोई वस्तु दिखाई या सीटी बजाई या आवाज निकाली या कब वह महिला के निजी क्षेत्र में जबरन आ गया।
0: यह बात भी बार बार उठाई जाती है कि ऐसे मामलों में काफी जटिल होता है बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करना, क्योंकि यह मसला सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ा होता है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या यह सही है कपूर साहब?
1: कानून और सामाजिक समझ या आकांक्षा में अक्सर सामंजस्य नहीं होता। कई बार कानून काफी आगे की सोच लेकर बनते हैं और समाज की तात्कालिक समझ से दूर हो जाते हैं। कई बार कानून पुरानी दकियानुषी सोच से बंधा रहता है, जबकि समाज की समझ काफी आगे बढ़ चुकी होती है। ये टकराहट बिल्कुल अलग अलग तरह से सामने आती हैं।
0: समाज की सोच और कानून की बनावट को आप बलात्कार की घटनाओं से कैसे जोड़कर देखते हैं श्याम जी?
2: हाँ,
0: यह किस बुनियाद पर खड़ी है, ये विशेष रूप से जानना जरूरी है।
2: वीरेंद्र जी, आपने ठीक कहा। अब बलात्कार की घटना को ही लें, इसके लिए बनाए गए प्रावधानों में एक अवधारणा ये थी कि अगर बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर हो गया तो भारतीय परंपरा यानी कुप्रथा के तहत उसे और उसके परिवार को ताउम्र बदनामी का दंश झेलना पड़ेगा।
0: जी जी।
2: न तो उस परिवार में शादियां होंगी और न ही उन्हें सामान्य जीवन में अच्छी नजरों से देखा जाएगा।
0: इसके कोई उदाहरण हमारे सामने रखना चाहेंगे कपूर साहब, जो हमारे देश में घटित हुई हो?
1: देखिए, केरल की एक पीड़ित महिला ने हाल ही में ये बताया कि उसके परिजन उससे मिलने तक नहीं आते, उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है।
0: कुछ वर्ष पहले दिल्ली में जो बलात्कार की घटनाएं हुई उससे भी तो इस तरह का माहौल बना था
1: जी,
0: कि सरकार के विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट के सामने आवाज बुलंद किया जाए कि वह ऐसा कानून बनाए ताकि बलात्कारियों के साथ सख्ती से निपटा जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे श्याम जी?
2: देखिए, हाँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि पिछले महीने दिल्ली में हुए बलात्कार कांड के बाद कुछ लोग बलात्कार पीड़िता की छवि को कलंक से निकालकर वीरांगना के रूप में स्थापित करना चाहते
0: हैं। जी जी बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाह रहा
2: हूँ। बलात्कार के दोषियों के लिए बन रहे कानून का नामकरण उस लड़की के नाम पर करने की बात को केंद्रीय मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता का नाम उजागर न करने का कानून इसमें मुख्य बाधा है।
0: बिल्कुल, पीड़िता का नाम उजागर करने से समाज की जो ताना बाना है कपूर साहब
1: जी,
0: वह काफी बाधित होता है, क्योंकि हमारा समाज उतना सभ्य नहीं हुआ है
1: जी।
0: परिजन पदाधिकारी या न्यायाधीश किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो बलात्कार के पीड़ित महिला का नाम उजागर कर सके।
1: भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केवल 3 व्यक्तियों को बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने का अधिकार है।
0: अच्छा।
1: पहला स्वयं पीड़िता को, दूसरा थानेदार या जांच अधिकारी, वो भी तब जब ऐसा करना उसकी सदस्यता के तहत जांच के लिए जरूरी हो, और तीसरा पीड़िता के सबसे नजदीकी रिश्तेदार को।
0: मीडिया का इस मामले में क्या कोई अधिकार नहीं बनता?
2: मीडिया या किसी अन्य को किसी भी कीमत पर नाम उजागर करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली के बलात्कार कांड तथा ऐसे ज्यादातर मामलों में मीडिया ने हमेशा ही इसका ख्याल रखा है।
0: कपूर साहब और श्याम जी, इस विषय पर आगे भी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। इस सुंदर जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपको भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल।

व्यक्ति विशिष्ट वार्ता सुनिए, ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, जिन्हें हिंदी के सुविख्यात ऐतिहासिककार उपन्यासकार के रूप में जाना और पहचाना जाता है। दोस्तों, वर्मा जी ने अनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक सामाजिक उपन्यास, कथा कहानियां, नाटक आदि की भी रचना की है। परंतु इन्हें ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली तो इनके लिखे ऐतिहासिक उपन्यासों के कारण। ऐतिहासिक उपन्यासों के कारण ही वृंदावन लाल वर्मा की तुलना अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार वाल्टर स्कॉट से किया जाता है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। वैसे हमारे देश में अनेक ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार हुए हैं, जैसे कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जिनका उपन्यास है वैशाली की नगरवधु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा, यशपाल की दिव्या आदि अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। परंतु वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा को इन्होंने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। एक ओर इन्होंने जहां अनेक विस्मित एवं धुंधलके प्रसंगों को नवजीवन प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर तथ्य एवं कल्पना, ऐतिहासिकता और अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। इसीलिए हिंदी लेखकों में वृंदावन लाल वर्मा काफी मशहूर हैं। साथियों, हिंदी लेखक इनकी ऐतिहासिक रचना से बहुत प्रभावित रहे हैं। ऐसे ख्याति प्राप्त वृंदावन लाल वर्मा का जन्म झांसी के मऊ रानीपुर नामक कस्बे में 9 जनवरी 1889 में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था बाबू अयोध्या प्रसाद, जो झांसी रजिस्ट्रार कानूनगो थे। इनकी माता का नाम था सौरानी देवी, जो एक वैष्णव भक्त थीं। वृंदावन लाल जी के परदादा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ दीवान थे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। बचपन में इनकी दादी रानी लक्ष्मीबाई के रोचक किस्से सुनाया करती थीं। इन्हीं कथा कहानियों को सुन सुनकर वृंदावन लाल वर्मा बड़े हुए। इन सब का उनके बालपन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, तभी तो वे इनके जरिए इतिहास तथा वीर पुरुषों की ओर आकर्षित हुए। यूं कहें दोस्तों कि ऐतिहासिक उपन्यासों की नींव यहीं से पड़ी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ललितपुर में हुई। पढ़ाई के प्रति इनकी रुचि बचपन से थी। नवीं कक्षा तक आते आते इन्होंने बाबू देवकी नंदन की चंद्रकांता संतति उपन्यास पूरी तरह से पढ़ डाली थी। बाद में आगरा आकर बीए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। इसके पश्चात वर्मा जी ने झांसी में वकालत शुरू की। इन्हीं दिनों वकालत के कामों से समय निकालकर साहित्य, इतिहास, पुरातत्व आदि का पठन पाठन करते थे। धीरे धीरे वे साहित्य साधना में लीन होते गए। धीरे धीरे इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। वृंदावन लाल वर्मा कई वर्षों तक झांसी नगर की नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद तो साहित्य साधना में वे इतने मशगूल हो गए कि एक दिन वकालत भी छोड़ दी और पूरी तरह लेखन कार्य में लग गए। दोस्तों, ऐतिहासिक उपन्यास की रचना इतिहास के आधार पर की जाती है। किसी देश प्रदेश के इतिहास के किसी एक काल की घटना एवं पात्रों को लेकर उपन्यास का रूप दिया जाता है। इतिहास में किसी देश, जाति अथवा व्यक्ति आदि की गतिविधियों का कालक्रम अनुसार वर्णन किया जाता है, पर उपन्यासकार प्राप्त तथ्यों से अपनी रुचि एवं दृष्टिकोण के अनुरूप निष्कर्ष निकालते हैं। यही वजह है कि ऐतिहासिक उपन्यास की दृष्टि से उपन्यास की रचना में लेखक का अपना दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्मा की विशेषता रही है कि उनकी उपन्यास कला केवल कथा का अनुसरण मात्र नहीं है, जागरूक विचारक होने के कारण इतिहास की प्रस्तुति उनका अपना दृष्टिकोण भी विशिष्ट बना रहा। दृष्टिकोण का यही अनूठापन उनकी कला की विशेषता रही है। टूटी हुई इतिहास की कड़ियों को वर्मा जी ऐसे जोड़ते हैं कि जोड़ का कड़ी
पता ही नहीं चलता, न इतिहास पर आंच आती है। दोस्तों, बुंदेलखंड उनकी कर्मस्थली रही है और यहीं की संस्कृति एवं उनका इतिहास उनके उपन्यास का आधार बनी। इनकी खासियत यह भी रही है दोस्तों कि इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में वातावरण की सृष्टि अत्यंत संतुलित, स्वाभाविक और प्रभावी बन पड़ी है। इनके कई उपन्यासों में बुंदेलखंड के जनजीवन एवं प्राकृतिक सूक्ष्मा का स्वाभाविक वर्णन मिलता है। वृंदावन लाल वर्मा जी एक विख्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार ही नहीं, वरन वे एक अच्छे निशानेबाज और शिकारी भी थे। उन्हें बुंदेलखंड के जंगलों का चप्पा चप्पा ज्ञात था, तभी तो वे वन की खूबसूरती को अपने उपन्यास में उतार पाए। बुंदेलखंड के ज्ञान एवं अनुभवों के दम पर इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों में सजीव वातावरण प्रस्तुत किया है। दोस्तों, यूं तो वर्मा जी शुरू से ही अत्यंत लोकप्रिय जनसेवक और जीवनव्यापी साहित्य साधक रहे हैं। इतिहास के मामलों में इनकी अपनी मान्यताएं रही हैं, इनके अपने सिद्धांत रहे हैं। इन्होंने अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा प्रतिपादित मतों, सिद्धांतों एवं व्याख्यानों को भ्रामक माना है। इतिहास की सच्ची खोज की लालसा एवं इच्छा ने वर्मा जी के सामने एक नई राह प्रस्तुत की। वर्मा जी में सबसे खास एवं महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि वे आम जनता की शक्ति पर विश्वास रखते थे। वृंदावन लाल वर्मा का ये अपना नजरिया था दोस्तों कि वे सोचा करते थे कि आम साधारण जनता ही शक्ति के मुख्य स्रोत हैं। वही एक लेखक की ताकत होते हैं। साधारण जनों के माध्यम से ही उन्होंने अपने पात्रों का चयन किया था जो बिल्कुल स्वाभाविक एवं प्राकृतिक लगते थे। साथ ही यही पात्र अदम्य जीवन शक्ति, स्वाभिमान एवं संघर्ष से सदैव अजय बने रहे। मध्ययुगीन बुंदेलखंड के इतिहास को अंकित करते समय इन्होंने राजा महाराजाओं का स्तुतिगान न कर सामान्य जीवन के विभिन्न चरित्रों की अपराजेय शक्ति का अंकन अधिक गहराई से किया है। दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में उनके साहित्य लेखन में इतना वजन था कि लेखक के अलावा आम जनता भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इनके प्रभावशील लेखन कार्य के लिए इन्हें आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि देकर सम्मानित भी किया। ऐसे विशिष्ट व महान लेखक का देहांत 25 फरवरी 1969 को हुआ। वर्मा जी बड़े सशक्त लेखक थे, खासकर इतिहास को उन्होंने अपने तन मन में रचा बसा लिया था। ऐतिहासिक पात्रों के साथ ही साथ अपने कल्पित पात्रों के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक हलचल के साथ तत्कालिक सामाजिक जीवन के ऐसे सशक्त एवं प्रभावी चित्र अंकित किए हैं कि सामाजिक स्थितियां सच्चाई के साथ सामने उभरती नजर आती हैं। वहीं जनमानस की अपराजेय जीवन शक्ति रेखाचित्र की तरह रेखांकित है। उन्होंने अपने उपन्यास में राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक समस्याओं का भी जिक्र किया है। तो दोस्तों, निश्चय ही वृंदावन लाल वर्मा जी यथार्थ एवं कल्पना का सुंदर समन्वय करने में सिद्धहस्त हैं। उनकी इसी विशेषता के कारण उनकी उपन्यास कला संपूर्णता को प्राप्त करती है। आंचलिक एवं स्वाभाविक प्रकृति चित्रण ने वृंदावन लाल वर्मा को उच्च कोटि का कथाशिल्पी बना दिया है। हिंदी जगत के ऐसे सुविख्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा कभी भुलाए नहीं जा सकते अपने कथा साहित्य के जरिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में भाग दो, और इसके लेखक और निर्देशक हैं संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: अरे चुस्ती अब भी ठुमक ठुमक कर चल रही है। जब भी तुझे साथ लेकर निकलता हूँ कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। पिछली बार आंधी आई थी, अब क्या दंगा हो गया।
1: मैंने कब कहा था जी कि मुझे बाजार दिखाने ले चलो? आप ही कहते थे कि शरीफ आदमी बिना बीवी को साथ दिए नहीं जाता। न चलूं तो गंवार अनपढ़ और चलूं तो मुसीबत।
0: अब चुप भी कर, राह चलते झगड़ने लगती है।
1: ओ, मैं तो कहती थी जी तांगा कर लो, मुनादी वाले कह रहे थे जल्दी से घरों में पहुंच जाओ।
0: तेरे तो कान बोलते हैं, मुनादी वाले कह रहे थे कि भागो नहीं, शहर में अमन होता जा रहा है, कुछ सुना भी है?
2: सरदार जी कहाँ सुनी आपने मुनादी?
0: जी पास से नहीं, दूर से आवाज आ रही थी।
3: आवाज? अरे आपने ठीक से नहीं सुनी, वो कह रहे थे कि मेवा मंडी।
0: ओए मेवा मंडी नहीं, अकबरी मंडी।
3: मियाँ अकबरी मंडी में कई आदमी आग में जल गए, पता है कुछ?
0: ओए आदमी नहीं, कई मकान आग में जल गए।
3: हाँ दोनों बातें होंगी,
2: पर वह ऐसी मुनादी तो कर ही नहीं सकते, यह कानूनन अपराध है।
0: तो कोई और बात होगी, मुनादी हो जरूर रही थी।
1: आज बस बस कोई नहीं जाएगी, कहीं से तांगा वांगा कर लो।
0: तांगा वाला है कहाँ, इधर सड़क खाली उधर भी।
3: अरे आधे घंटे से कोई तांगा नहीं है।
4: बाबा बाबा वो दो लड़कियाँ कैसे चली गई?
3: मोटर में चढ़ कर चली गई।
4: तीन नंबर की बस भी चली गई क्या?
3: बस नहीं, छोटी मोटर आई थी, बाबू उनको बैठा कर ले गए।
4: वो कोई उनकी जान पहचान वाले थे क्या?
3: थे तो नहीं, अब जाते जाते हो गए होंगे।
4: मुझे तो वो लड़कियाँ देखने में ही वैसी लगती थी।
3: हाँ बिल्कुल सही, पढ़े लिखे लोग ही पढ़े लिखे को पहचानते हैं।
0: लो मुरादी सुनो।
5: सुनिए साहबान, बहुकम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर, फतेहपुर रामगढ़ इलाकों में फसादत की वजह से आज दोपहर 2 बजे से कल सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू ऑर्डर जारी रहेगा।
4: आज 12 बजे से?
2: कहिए सुनने तो दीजिए।
5: अंदरून शहर, ग्वाल मंडी और ठंडी रोड, इनके अलावा रामनगर, संत नगर, सुदामा नगर, हाई कोर्ट।
2: सुदामा नगर?
4: हाई कोर्ट में भी लग गया?
3: सुनिए सुनिए मियाँ,
5: मल्हारगंज और रेड क्रॉस से नीचे माल रोड, इन सब इलाकों में आज 2 बजे से।
4: 2 बजे से?
2: यह तो बिल्कुल अंधेरा है।
1: तो फिर घर कैसे पहुँचोगे? कहती थी तांगा ले लो।
4: गले पड़ गया कमबख्त, ये कह रहा था बाजार देखूंगा, देख ले बाजार और खरीद ले तेरी बोतल।
2: अरे अरे जरा आगे तो सुनिए, आगे सुनने दो।
3: क्यों जी, लाट साहब के दफ्तर तो नहीं?
2: लग गया, लाट साहब का दफ्तर भी लग गया।
4: अब क्या होगा, अब बस नहीं आएगी।
2: अरे वो देखो पुलिस वाला आ रहा है, चलो उसी से कुछ पूछते हैं। अरे अरे दरोगा जी।
6: अरे दरोगा साहब,
2: आप लोग यहाँ क्यों जमा है? पता नहीं कर्फ्यू का समय हो रहा है।
6: अरे जनाब हम लोग बस की राह देख रहे, सब सुदामा नगर की सवारी।
4: नहीं नहीं हमें हाईकोर्ट जाना है।
7: अरे हम यतीम खाने जाएंगे
3: और हम लाट साहब के दफ्तर उतरेंगे।
8: अरे भाई मेरे जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, सर्विस बंद कर दी गई है, मुसीबत में फंस जाओगे, जाओ।
4: क्या और देख ले बाजार की रौनक।
8: चले जाओ जल्दी, नहीं तो 2 बजे तक गिरफ्तार कर लिए जाओगे।
3: क्यों हुजूर, भिखारियों को भी छूट नहीं?
8: सरकारी कानून है ये, किसी को छूट नहीं है।
3: आवारा जानवर घूम लेते हैं सरकार, हम लोगों का कुछ तो ख्याल होना चाहिए और आजादी।
8: जाओ जाओ निकल जाओ यहाँ से, 4 आदमी से ज्यादा जमा नहीं हो सकते।
3: अरे क्यों मियाँ, क्या करें हम? हाँ?
2: मैं भी आपसे यही पूछने वाला था, अब तो पैदल भी नहीं पहुँच सकते।
4: ऐसे खतरे में पैदल कैसे जाया जा सकता है, मेरे साथ तो बच्चा भी है और सामान भी है।
9: मम्मी मम्मी।
4: हाँ?
9: सामान मैं उठा लेता हूँ, आप मुझे उठा लो।
2: लीजिए एक टैक्सी आ रही है।
8: ओए आप लोग जाना चाहते हैं? अरे जाना चाहते हैं कि नहीं?
4: हाँ हाँ जाना तो है।
8: हाँ तो पुलिस वाले साहब ने हमको कहकर भेजा है, वो जाना हो तो जल्दी कीजिए, जल्दी पीछे बैठो।
2: हाँ जाना है सर। बैठो ना।
6: पहले आप बैठो।
4: बैठिए ना, बैठिए बहन
1: जी, पहले आप लोग बैठिए।
3: अभी बैठने का क्या झगड़ा, अभी पहले बैठे जाते हैं।
8: जल्दी करो भाई, और 25 रुपए किराया एडवांस देना जी।
10: कितने रुपए किलोमीटर?
6: कितने रुपए घंटा?
11: घंटे किलोमीटर का हिसाब नहीं है, कोई चढ़ना हो तो चलो, वक्त हो रहा है जी।
10: एक 4500 हो भी गया।
6: ये आप रुपए लाए क्या? मेरी जेब में तो 2 रुपए ही आए भैया।
3: मेरा बटुआ तो कोर्ट में ही रह गया।
10: भाभी जी आपके पास?
1: जी मैं अपना किराया दे सकती हूँ।
6: ये कुल कितने रुपए हुए भैया?
11: 2 और 2, 5 और 9, 8 रुपए।
6: 8 रुपए?
11: ओए उतर जाओ जी, ओए बाबा जी उतरो नीचे, 8 रुपए में टैक्सी में जाएंगे।
3: अरे क्यों क्यों उतर जाऊँ?
11: ओए बैठ गए, घाट में पैसे भी है कि नहीं है?
3: एक सवारी के कितने पैसे?
6: एक सवारी?
11: ओए एक सवारी 2 सवारी नहीं है, 17 रुपए और चाहिए। तो आप बस का इंतजार करो, थोड़ी देर में पुलिस की लॉरी आकर ले जाएगी। उतरो उतरो, गाड़ी खाली करो, उतरो।
3: अरे अरे आप तो डर लिए आज। ठहर, अरे ठहर भैया, देख मैंने,
6: अरे देख तो भैया,
3: अरे अरे आंटी के सब धरा लिए, जितनी भीख मांग मांग कर इकट्ठा किए था सब धरा लिए। अरे अरे अरे इस भिखारी पर तो बड़े नोट है।
10: वाह, अरे छोटे सिक्के, अरे बेशुमार।
3: हो जाएंगे भाई, पैसे की चिंता न कर, तू तो गाड़ी चला। देखा, तभी तो इस आर्थिक मंदी में भी हम शान से डटे रहे, गिरे नहीं।
10: अरे सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो,
12: हटा लिया गया है, अब कर्फ्यू सिर्फ परेड मैदान क्षेत्र में ही जारी रहेगा।
10: अरे भाई सुनो, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? फिर कोई बवाल हो गया क्या?
12: हालात नियंत्रण में होते देख शहर के 5 क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, अब कर्फ्यू सिर्फ परेड मैदान क्षेत्र में ही जारी रहेगा।
6: अरे क्या कहते हो मियाँ, बस का इंतजार और कर ले।

स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में। अभी हमने सुना ये नाटक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे संदीप दुबे, सुमित मालवीय, अपर्णा सिंह, अंतरा करवड़े, सिरिल जमरे और मास्टर संकल्प।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में भाग दो, और इसके लेखक और निर्देशक थे संदीप दुबे। साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रम को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ज्योति और इस समय आप रेडियो वरिता से एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। और अभी की सभा की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युक्त संचार। श्रोताओं, वक्त न जाया करते हुए आइए पिता परमेश्वर के आदर में एक भक्ति गीत सुने। आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोताओं, कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली सभा में प्रोफेसर बेला सचदेव जी से बातचीत अधूरी रह गई थी, तो आइए साथियों, अब हम सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात के अंतर्गत वार्ता अंक द्वितीय, जिसमें नुपुर दीक्षित जी बात करेगी प्रोफेसर बेला सचदेव जी से।

0: दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या इन लोगों से कॉलेजों में या स्कूलों में कोई अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है? चूंकि ये सामान्य बच्चों से अलग है, तो क्या इनको जो सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं उसके बदले में इन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता कोई शुल्क। हमारा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यहाँ पे तो फीस भी नॉमिनल लगती है, और जो एससी एसटी है उनके लिए तो और भी कम फीस लगती है, और इनके लिए अलग से ऐसा कोई शुल्क नहीं लेते हैं।
0: जी, तो अगर आपके आसपास भी कोई बच्ची है या कोई बच्चा है जो इस समस्या से गुजर रहा है, तो आप निश्चिंत होकर उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि सरकार या कोई भी स्कूल या कॉलेज इनसे किसी किस्म का अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता।
1: और साथ साथ इनको तो कई स्कॉलरशिप मिलती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग इनके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली से, वो नेशनल इंटरनेशनल एनजीओ है, वो भी हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देती है, स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप अलग मिलती है, नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप अलग मिलती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप, और गवर्नमेंट इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं देते हैं।
0: तो मेरे ख्याल से जो भी लोग इस समस्या को अपने आसपास देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: फिर बहुत सारी मदद और बहुत सारी संभावनाएं नजर आने लगेंगी। बेला जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपको इस काम के प्रति रुचि कैसे हुई, आपने किस तरह से इसकी शुरुआत की?
1: 13 साल पहले मेरी साथ एक ट्रेजेडी घटित हुई थी और मैं काफी दुखी थी, अपसेट थी, तब मैंने इनके इंस्टीट्यूट में जाना शुरू किया था, जो महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इधर है बॉम्बे हॉस्पिटल के पास।

0: वहाँ हर वीक में जाती थी, कुछ खाना बना के लेके जाती थी, इनको सर्व करती थी, और फिर खाना खाने के बाद या इनसे भजन सुनती थी, इनसे छोटी छोटी कविताएं सुनती थी। और तब मुझे लगा कि इनके पास देखो आंखें नहीं होते हुए भी ये कितनी लड़कियां प्रसन्न है, और इन लड़कियों ने मुझे जीने की प्रेरणा दी। आज से 13 साल पहले मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, मेरी बच्ची थी जो कि 3.5 साल की थी, उसकी डेथ हो गई। तो मैं बहुत ज्यादा मोरली इमोशनली बहुत ज्यादा दुखी थी, तो मुझे एक सपोर्ट की भी जरूरत थी। तब मैंने ब्लाइंड स्कूल में जाना शुरू किया था, मैं दृष्टिहीन कल्याण संघ जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल के पास है, वहाँ हर वीक में जाती थी, हर संडे को जाती थी, बाकी दिन तो मेरे वर्किंग रहते हैं, वहाँ जाती थी, कुछ खाना बना के भी लेके जाती थी, इनको सर्व करती थी खाना, इनसे छोटी छोटी भजन सुनती थी, कविताएं सुनती थी। तो इनको, और मैंने देखा कि इनको आंखें नहीं होते हुए भी ये लड़कियां कितनी प्रसन्न है, और इनको देख के फिर मुझे अपना दुख छोटा नजर आने लगा। तो ये लड़कियां तो मेरे लिए जीने की एक प्रेरणा है, मेरे लिए एक मतलब इन्होंने मुझे जीना सिखाया इन लड़कियों ने, और इनको देख के मैं अपने दुख को भूल गई। और दूसरा मुझे एक लगता है कि ये जो मैंने हेल्पलाइन सेल शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि मानव सेवा ईश्वर सेवा से भी बहुत बड़ी है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम किसी मानव की सेवा करते हैं तो ये बहुत सीधा ईश्वर को पहुंचती है। तो मेरा हेल्पलाइन सेल बनाने का जो उद्देश्य था ये भी कि हम छात्राएं जुड़े, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सेवा की भावना होती है, लेकिन उसको प्रस्फुटित करने की और प्रेरित करने की जरूरत होती है। और मैंने देखा कि कई लड़कियों को में सेवा का बीज है, और इस तरीके से वो लड़कियों में सेवा का बीज बढ़ता है,
1: उनको भी आगे बढ़कर किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है।
0: और हमारे साथ कई ऐसी लड़कियां जुड़ी हुई हैं जो कि आप पास आउट होके भी वो इस संस्था से, मतलब मेरे से जुड़ी हुई हैं, और बोलती हैं कि कोई भी मैटर इनके लिए रिकॉर्डिंग करने की जरूरत हो या कुछ हो तो हेल्प करने की, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ।
1: आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कई बार हमारी छोटी छोटी सी कोशिशें बहुत बड़े बड़े बदलाव लाती है, इसलिए जिंदगी में जब भी मौका मिले एक छोटी सी कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए।
0: अभी कई लड़कियों के हमारे यहाँ पेरेंट्स के भी मैसेजेस आते हैं कि है ना, आपने ये काम शुरू करके बहुत अच्छा किया, उनके पेरेंट्स से भी अच्छे संदेश आ रहे हैं।
1: बेला जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: अभी जैसे कि अपन देख रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या काफी कुछ हो रही है, लड़कियों का अनुपात बहुत कम होता जा रहा है, कई स्टेट्स में जैसे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, वहां तो 1000 लड़कों के ऊपर 747 करीबन लड़कियां हैं, यानी रेशो बहुत कम हो रहा है। तो मैंने ही कन्या भ्रूण हत्या पर एक छोटी सी कविता लिखी है
1: जी।
0: वो मैं बोलना चाह रही
1: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर सुनाइए।
0: गर्भ की गहराई में छिपी अजन्मी कली पुकार दी है, हे माँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे भी सपने हैं, अरमान हैं, मेरी कल्पनाओं को अंतरिक्ष में उड़ान भरने दो, हे माँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
1: बहुत बहुत अच्छी कविता आपने कही, सही बात है। एक नन्ही सी परी जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है, उसे मारने के बारे में हम सोच भी कैसे सकते हैं। तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आज की ये मुलाकात आपको बहुत पसंद आई होगी। अब अपनी दोस्त नूपुर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात के अंतर्गत वार्ता, जिसमें नुपुर दीक्षित जी ने प्रोफेसर बेला सचदेव जी से मुलाकात कराई। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को, जिन्होंने हम सभी को सुरक्षित संभालकर इस सुंदर सी ईश्वर द्वारा रचित इस दुनिया में रखा है। और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोताओं, घड़ी की सुइयों के मुताबिक अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम से रूबरू होने का। हमारा अगला कार्यक्रम है युवा विकास। दोस्तों, अभी की सभा में आज एक नहीं बल्कि दो दो प्रतिभाशाली कलाकार आपसे रूबरू होंगे और उनकी वार्ता का शीर्षक है अपने व्यवसाय से स्वावलंबन, और प्रस्तुत करता है अंतरा करपड़े और आस्था उपमन्यु जी।

0: साथियों नमस्कार। युवा और विकास कार्यक्रम में आज मैं हूं अंतरा करवडे
1: और मैं हूं आस्था उपमन्यु।
0: और आस्था और मैं हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के युवा और विकास के लिए विषय अपने व्यवसाय से स्वावलंबन। आस्था, आज हमारे युवा साथियों से हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो अपना व्यवसाय चला करके स्वावलंबन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम साथियों वर्तमान में यदि बाजार की स्थिति को देखते हैं, अनेक युवा शेयर ब्रोकरों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: और नौकरी में तनाव झेलते हुए युवाओं का प्रतिशत भी कम नहीं है। ऐसे में हम सभी को ये चीज सोचने पर मजबूर होना पड़ा है, या फिर हम सभी को परिस्थिति को देखते हुए ये चीज सोचनी ही चाहिए कि स्वावलंबी होने के लिए नौकरी या फिर इस प्रकार के व्यवसाय के स्थान पर यदि हम स्वयं का उद्यम रखें, उससे हम यदि स्वावलंबी हों तो हमारी किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी परिस्थिति पर निर्भरता कम हो जाती है। और इस प्रकार के स्वावलंबन में जो स्वतंत्रता मिलती है, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक चीज हम और भी कह सकते हैं कि केवल अपने व्यवसाय की अगर हम बात न करें, जैसे कई ऐसे भी युवा हैं जो किसी और कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी स्वावलंबन हो जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है जो किसी अपना खुद का व्यवसाय करने वाले युवा के लिए होता है।
0: बिल्कुल। आस्था, यदि हम वैश्विक स्थिति को देखें
1: जी,
0: तो ये कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वावलंबी जल्दी से जल्दी होना चाहता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, वो स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो जो सबसे सरल तरीका है और जो सबसे कारगर तरीका है वो है व्यावसायिक शिक्षा लेने का।
1: बिल्कुल।
0: तकनीकी शिक्षा भी हमें परिपूर्ण जरूर बनाती है, लेकिन स्वावलंबन की बात आती है तो सबसे पहले उसे व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। और स्वावलंबी होने के लिए साथियों ये जरूरी नहीं है कि डिग्री लेने के बाद आप नौकरी करने ही जाएं। साधारणतः ये समय होता है जब हम सभी वही सोच लेते हैं जैसा कि हमारे साथ में चल रहा कोई व्यक्ति सोचता है या फिर हमारे समाज का चलन होता है। यदि आपके साथ के कुछ व्यक्ति डिग्री पाने के बाद नौकरी के बारे में सोचते हैं, कहीं कहीं साक्षात्कार देने के बारे में सोचते हैं, तो आप भी कुछ उसी प्रकार का सोच सकते हैं।
1: लेकिन क्या आपको यहाँ ये नहीं लगता कि आज के समय में, मतलब पहले की बनिस्बत आज के युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं वो काफी हद तक बढ़ गई हैं?
0: जी, अपेक्षाएं तो बिल्कुल बढ़ी हैं और अपेक्षाएं बढ़नी चाहिए। आज तक मुझे लगता है यदि अपेक्षाएं व्यक्ति की बढ़ती है तो वो तब बढ़ती है जब उस व्यक्ति में अपेक्षाओं को पूर्ण करने की क्षमता होती है। यदि आपने कोई सपना देखा है तो बिना किसी नींव के सपने का भी धरातल खड़ा नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: तो यदि आपने कोई सपना देखा है, यदि आप ऊंची सोच रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यदि हमारे युवा साथी हमारी पहले की पीढ़ी की बनिस्बत और आगे सोच रहे हैं, अपने आप को किसी ऐसे मुकाम पर रखकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं जो उसे वो हासिल कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और यही बात यदि हम उद्यमिता को लेकर, व्यवसाय को लेकर के लागू करना चाहे, तो ये कहा जाता है यदि आप नौकरी में अपने आप को नौकरी के द्वारा स्वावलंबी बनाते हैं तो आप 2, 2, 4, 2, 6 इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन व्यवसाय होता है उसे गुणा कहते हैं। व्यवसाय में गुणात्मक आपका विकास होता है, लेकिन नौकरी में आपका विकास धनात्मक होता है। तो मेहनत आपको दोनों में एक जैसी ही करनी है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: ये बहुत ही खूब बात कही आपने यहाँ पर। मतलब युवा अगर कहीं और जाकर नौकरी करते हैं तो शायद उनकी अपेक्षाओं को पूरा होने में या उनके सपनों को यूं कहा जाए पूरा होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जो जिस धरातल पर उनके सपने खड़े होते हैं वो शायद डगमगाने लगता है आगे जाकर कहीं। खैर, इसके अलावा हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता साथियों को आप बताएं कि स्वावलंबी जो उद्यमी ताकि आपने बात की है उसके बारे में आप युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगे।
0: देखिए, स्वावलंबी उद्यमी जितने भी हैं और उनकी जितनी भी संख्या इस समय हम देखते हैं, तो बहुत छोटे तबके से लगा करके बहुत ऊंचे स्तर तक स्वावलंबी उद्यमी सफल हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो यदि हम ये बात करें कि कोई त्योहार जब आता है, साथी गौर करें, जब भी कोई त्योहार आता है तब हम देखते हैं कुछ बहुत हमें जो उपयोग की वस्तुएं होती है, दीपावली के दिए हुए या फिर करवा चौथ के करवे हुए, इन सबके कुछ विशेष बाजार हो जाते हैं जो सजते हैं। वो चीजें कौन लाता है बाजार में? उसके लिए कोई कंपनी नहीं होती, उसके लिए कोई उत्पादक नहीं होता, लेकिन ये होते हैं वो युवा उद्यमी जो बाजार की नब्ज को पहचानते हैं, समय से आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि किस समय बाजार को किस चीज की जरूरत होगी। उस जरूरत को वो उस समय पर बाजार में उपलब्ध करवाते हैं, मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं जो कि ग्राहक खुशी खुशी देता है और वो लाभ कमाते हैं।
1: बिल्कुल। और अंतरा जी, ऐसे ही स्वावलंबी युवा उद्यमी जो होते हैं वही हम कह सकते हैं कि आगे एक सफलता का मूल धरातल खड़ा कर देते हैं।
0: बिल्कुल। अच्छा, यदि हम उद्यमिता की बात करें तो उद्यमिता होती है समय से आगे चलने की बात। जैसा कि मैंने कहा, आपको बाजार के वर्तमान चलन को देखकर के ये देखना होता है कि आगे के समय में क्या होने वाला है, और यदि हम भारत के बड़े बड़े प्रबंधन संस्थानों की भी बात करें
1: जी,
0: तो ये चलन देखने में आया है, ये हमने देखा है कि निवेश करने में जब सक्षमता नहीं होती है जब कुछ विद्यार्थियों में, तब वे अपनी डिग्री को पूरा करने के बाद 3 या 4 सालों तक किसी संस्थान में नौकरी करते हैं, उस संस्थान में नौकरी करके अनुभव प्राप्त करते हैं और उस समय में एक पूंजी भी बना लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जब 4 या 5 सालों के बाद वो चारों पांचों विद्यार्थी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब उनके पास पूंजी भी है और अनुभव भी है, उस पूंजी को लगा करके वे अपना स्वयं का व्यवसाय बनाते हैं,
1: आखिरकार
0: जी करते हैं, बहुत अच्छे से उसे चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो साथियों, सिर्फ नौकरी ही अपना जीवन का ध्येय न बना करके व्यवसाय जैसे बहुत सारे विकल्प आपके समक्ष उपस्थित हैं, उनके विषय में आप जरूर सोचें।
1: बिल्कुल। और युवा साथियों, हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि सेवा का क्षेत्र जो है वो काफी विस्तृत है। इसमें आप वस्त्रों से संबंध सेवाओं के साथ ही संचार, भाषा, संगीत, कला आदि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अपना आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, और वो भी बतौर एक स्वावलंबी उद्यमी।
0: बिल्कुल। आस्था ने जैसे कहा कि यदि आप सेवा के क्षेत्र में भी जाना चाहें, तो साथियों मैं इस विषय में थोड़ा सा और भी आपको बताना चाहूंगी कि खासकर यदि हम महिलाओं की बात लें तो सेवा के क्षेत्र में महिलाओं को सबसे अच्छा माना जाता है, और वैसे भी महिलाओं को बहुत अच्छा प्रबंधक भी माना जाता है, यदि मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि वे घर का प्रबंधन बहुत पुराने समय से करती आ रही हैं और बहुत बेहतर करती आ रही हैं। तो जो हमारी महिला युवा साथी हमें सुन रही हैं, तो वो इस चीज पर ज्यादा गौर करें कि यदि आप सेवा के क्षेत्र में, आप ब्यूटी पार्लर चला सकती हैं, आप भोजन के परिरक्षण का उद्यम कर सकती हैं, आप सेवा के क्षेत्र में अपने आसपास की महिलाओं को रोजगार देने का भी उद्यम कर सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो जिसे हम नाम देते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का।
1: बिल्कुल। और एक यहां पर यह भी बात कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि घर को साजने संभालने की जो एक बात होती है, महिला पुरानी पीढ़ियों से करती आ रही है, महिला का कार्य कहा जाता है उसे, उसी तरह आज का भी समय भले ही बदल रहा है
0: जी,
1: लेकिन महिलाओं में वो जो एक मैनेजिंग पावर जिसे हम कहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: वो
0: बिल्कुल,
1: कमी नहीं आई है, वो और बढ़ा ही है महिलाओं में। मतलब शायद जितने कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ हमारे युवा साथी नहीं कर पाते हैं, उससे दुगने उत्साह के साथ महिलाएं उस कार्यक्षेत्र में बढ़ पाती हैं।
0: और आज मैं थोड़ा सा विषय से अलग हटकर के भी सभी साथियों को एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगी। साथियों, यदि हम पिछले बहुत लंबे समय तक झांक कर देखें और आज के समय तक लौट कर आए, तो जो बदलाव आया है वो सिर्फ महिलाओं में आया है। पहले के समय में पुरुष नौकरी किया करते थे, महिलाएं घर संभाला करती थी। आज के जमाने में पुरुष भी नौकरी करते हैं, महिलाएं भी नौकरी करती हैं, साथ में महिलाएं घर भी संभालती हैं। तो बदलाव पुरुषों में नहीं आया, पुरुषों ने घर संभालना नहीं शुरू किया, लेकिन औरतों
1: ने
0: नौकरी करना जरूर
1: शुरू
0: किया। ये बहुत सकारात्मक एक संदेश जाता है इससे पूरे समाज में। और इसी के साथ यदि हम विषय पर लौटे तो उद्यमियों की संख्या यदि देखें तो 50% उद्यमी इस वक्त महिलाएं हैं। हम विषय के बहुत ज्यादा गहराई में जाकर ना सोचे या हम किसी एक विशेष उद्यम को लेकर के ना सोचे, लेकिन प्रत्येक यदि हम कुल मिलाकर उद्यमियों की संख्या को देखेंगे तो 50% महिलाएं हैं। और बहुत सारे क्षेत्र में जैसे वस्त्र हैं या मसाले हैं या हम परिरक्षित भोजन की बात करते हैं जो कि भारत की विशेषता है, उसमें महिलाओं का प्रतिशत 50% से भी अधिक है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
1: अंतरा जी, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि यहां हमारे युवा ये जानना चाहेंगे कि ये जो कला और भोजन या वस्त्र से संबंधित आपने बात कही, उसके अलावा संचार की भी हमने बात की थी, मैं जानना चाहूंगी कि आज का जो वक्त बदल रहा है जिसे हम इंटरनेट युग भी कहने लगे हैं, तो इस युग में आने के बाद स्वावलंबी उद्यमी कैसे हमारे युवा उस और आगे बढ़ सकते हैं?
0: देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। हमारे प्रत्येक युवा इन दिनों नेट सर्फ करता है, प्रत्येक युवा का अपना ईमेल अकाउंट है, वो किसी न किसी साइट पर रोजाना जाता है। इंटरनेट की शक्ति से कोई भी अपरिचित नहीं है, और इसी शक्ति ने बहुत सारे नए नए रोजगार भी पैदा किए हैं। इस समय यदि हम फ्रीलांसिंग के फील्ड को देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी मार्केटिंग कर सकता है, उसे किसी को भी अपने लिए रखने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे लिए विपणन कीजिए, आप मेरे लिए विज्ञापन कीजिए। आप किसी विशिष्ट साइट पर जाकर जो भी सेवाएं आप दे रहे हैं उसका मार्केटिंग कीजिए और इस प्रकार से अपने व्यवसाय को बढ़ाइए। इसके साथ ही इन दिनों एक बहुत अच्छा व्यवसाय जो कि जिसका मैं उदाहरण देना चाहूंगी मेरे साथियों को,
1: बिल्कुल
0: ऐसा, वो है डोमेन प्रॉपर्टी का बिजनेस। यदि हम जिस तरीके से कोई व्यक्ति जमीन जायदाद उसे किराए पर लेने देने या लीज पर लेने देने का एक जो भौतिक रूप से एक व्यवसाय होता है उसके लिए एक प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है, लेकिन यदि हम इंटरनेट के क्षेत्र में जाते हैं तो प्रत्येक वेबसाइट का नाम ये एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। हो सकता है आने वाले समय में कोई कंपनी अपने नाम से एक वेबसाइट बनाना चाहे, बाजार की उस पकड़ को यदि आप अभी समझ लें, उस प्रकार के किसी नामों को आप रजिस्टर करवा लें और वो नाम फिर आपकी संपत्ति हो जाते हैं। इसे कहते हैं जिस तरीके से व्यक्ति प्रॉपर्टी में निवेश करता है, एक साथ फ्लैट या जमीन खरीद कर रखता है और बाद में मुंह मांगे दामों पर बेचता है। तो साथियों उसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर से आप डोमेन नेम खरीद कर रख सकते हैं, आने वाले समय में वो आपकी संपत्ति है, आप उन्हें मुंह मांगे दामों पर बेचिए। बहुत से उदाहरण हैं इस समय विदेशों में हैं जिन्होंने इससे अपनी जिंदगी बना ली है।
1: बहुत ही खूब बात बताई है आपने अंतरा जी हमारे युवा साथियों को। और इसके अलावा हम यहां ये भी बात करना चाहेंगे कि जैसे संगीत और कला क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो अगर हमारे युवा साथियों में कोई प्रतिभा है तो वो उस प्रतिभा को भी अपने मतलब उद्यमी होने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही कहा आस्था आपने। हमारे साथी जो भाषा में प्रवीण हैं, इन दिनों तो क्षेत्रीय भाषाओं में सब कुछ काम हो रहा है। आपको कई बार हम विभिन्न प्रकार के साक्षात्कारों और उदाहरणों से साथियों ये भी बता चुके हैं कि अब अंग्रेजी आना ही सफलता का द्योतक नहीं रहा। यदि आप क्षेत्रीय भाषा में भी प्रवीणता रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। बस बात यह है कि आपको क्षेत्रीय भाषा में भी शुद्धि के साथ में वो भाषा आनी चाहिए। और आज तक यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जैसा तो इन दिनों रोजगार का क्षेत्र ही नहीं है कोई, क्योंकि लेकिन तकलीफ ये होती है कि इन दिनों वो व्यक्ति बड़ी शान से हिंदी बोलता है जिसे अंग्रेजी भी आती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शान हमारी तब है साथियों जब आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है, सिर्फ हिंदी आती है और उस हिंदी को ही आप शान से बोलें, तब हिंदी भाषा में भी रोजगार बहुत सारे हैं। यदि आप भाषा में प्रवीण हैं, आप अनुवादन का काम कर सकते हैं फ्रीलांसिंग बेसिस पर। आप किसी के भी किसी भी कंपनी में किसी प्रकार की नौकरी नहीं करेंगे, आप स्वयं अपने क्लाइंट्स ढूंढते हैं, उनके लिए आप अनुवादन का काम करते हैं। जिस तरीके से हम आपके लिए अपनी आवाज के द्वारा हमारे विचार आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी प्रकार से वॉइस ओवर का काम होता है जिसे आप अपनी भाषा पर पकड़ और आवाज पर जब आपकी पकड़ हो जाती है, आपका नियंत्रण हो जाता है, छोटा छोटा प्रशिक्षण लेकर के आप अपने आप को प्रवीण बना सकते हैं और बन सकते हैं वॉइस ओवर के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी शख्सियत। इसके अलावा आस्था में यदि आपको बताऊं संगीत के क्षेत्र में भी यदि आपकी रुचि है तो आप क्लासेस चलाकर उद्यमी बन सकते हैं। म्यूजिक कंपोजर्स की इन दिनों बहुत मांग होती है। आप अपनी वेबसाइट बना करके अपनी जो कंपोजिशंस है, जो भी आपने धुनें बनाई हैं, उन्हें वेबसाइट पर डाल सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना होगा और इस तरीके से आप एक फ्रीलांसर के बतौर आप अपनी कंपनी बना करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अंतरा जी, मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सही प्रबंधन से किसी भी व्यवसाय में हमारे युवा सफलता पा सकते हैं।
0: बिल्कुल, प्रबंधन तो बिल्कुल जरूरी है।
1: और आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम बात करें बड़े व्यवसायों की तो इसमें आप हमारे युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगी कि अपनी तैयारी से बाजार में उतरें और आगे जो ऋण की एक उन्हें समस्या सामने आती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए यदि हम ऋण की बात करें तो इन दिनों ये चीज जिसे कहा जाता है सबसे अच्छा अवसर है, सबसे स्वर्ण अवसर है, क्योंकि जब हम पहले के जमाने की और आज के जमाने की जब बार बार तुलना करते हैं तो जो एक सकारात्मकता आई है वो सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र में आई है, ऋण के क्षेत्र में आई है। पहले आपको बहुत लंबा समय लगता था कि आप ऋण के लिए आवेदन करें, फिर बहुत सारी औपचारिकताओं के बाद जितना चाहिए उससे आवश्यकता से बहुत कम इस प्रकार का कुछ ऋण आपको मिलता था जो आपको व्यवसाय चलाने में बहुत कम होता था।
1: मतलब हमारे युवा साथी ये समझ लें कि यदि उनमें इच्छा शक्ति है तो सभी राहें कुल मिलाकर आसान है।
0: और आज की हम तारीख में देखें तो आपको बैंकों से फोन आते हैं कि आपको ऋण चाहिए। तो साथियों ये बहुत अच्छी बात है यदि आप व्यवसाय चलाना चाहते हैं, बैंक तैयार है आपको ऋण देने के लिए। तैयारी आप कीजिए कि आपका प्रकल्प जिसे कहते हैं आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो इतनी आकर्षक बनाए किसी भी व्यवसाय को करने के लिए कि आपको बैंक के द्वारा ऋण बहुत जल्दी से दिया जा सके। और जैसा कि आस्था ने कहा यदि इच्छा शक्ति है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अच्छी बनेगी, इच्छा शक्ति है तो
1: जाहिर
0: भी अच्छा मिलेगा।
1: और अंतरा जी यहां ये भी कहना चाहेंगे कि एक जो नौकरी का समय होता है कि यदि कोई युवा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एक नौकरी करता है तो उसको एक समय का बंधन होता है, लेकिन जब आप स्वावलंबी उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे तो शायद ये बंधन आप अपने हिसाब से ढाल सकेंगे, आपको क्या लगता है?
0: बिल्कुल। और आस्था जैसे कि हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने जा रहा है, एक जो आधारभूत अंतर हम देखते हैं साथियों नौकरी करने में और स्वावलंबी उद्यमी होने में वो ये कि नौकरी आप करते हैं और व्यवसाय को आप जीते हैं। जब भी आप नौकरी करते हैं तब कुछ घंटों के लिए आप किसी के नौकर होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, लेकिन यदि आप स्वावलंबी उद्यमी हैं आप अपने काम को 2400 घंटे अपने आप से अलग नहीं कर सकते, आप प्रतिपल विकास करते हैं। और ये तो तय है कि 15 घंटे या फिर 8 घंटे किसी काम को देना या 24 घंटे किसी काम को देना तो विकास किस में कितना होना है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था अपने व्यवसाय से स्वावलंबन, और प्रस्तुतकर्ता थे अंतरा करपड़े और आस्था उपमन्यु जी। श्रोताओं, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे, तो छोड़ ये आंसू उठो खड़ा, मंसिल की ओर अब कदम बढ़ा, हासिल कर एक मुकाम नया, पन्ना इतिहास में जोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे, उठना है तुझे नहीं गिरना है, जो गिरा तो फिर से उठना है, अब रुकना नहीं एक पल तुझको, बस हर पल आगे बढ़ना है, राहों में मिलेंगे तूफान गई, मुश्किलों के होंगे वार गई, इन सब से तुझे ना डरना है, तू लक्ष्य पे अपने जोर दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तू रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे। साथियों, हिम्मत रखिए और कभी हार ना मानिए, और सुनते रहिए आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। और आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, कार्यक्रम युग संचार में आप सभी का स्वागत है। भारत के संचार माध्यम के अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आदि है। अधिकांश मीडिया निजी हाथों में है और बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। श्रोताओं, भारत में 70,000 से अधिक समाचार पत्र है, 690 उपग्रह चैनल हैं, जिनमें से 80 समाचार चैनल हैं। साथियों, कार्यक्रम युग संचार में अभी की वार्ता का शीर्षक है मीडिया के विभिन्न आयामों का विस्तार और लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता है स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी।
1: हमारे सभी श्रोता मित्रों, स्वतंत्र कुमार ओझा का प्रणाम स्वीकार कीजिए। युग संचार कार्यक्रम का विषय हमने आज रखा है मीडिया के विभिन्न आयामों का विस्तार। साथियों, आज के युग में, क्योंकि लोग इसे नया जमाना कहते हैं, इसलिए आज के युग में इंटरनेट, मोबाइल, ये जो माध्यम है, ये प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा अनूठा अजूबा उपहार लेकर उपस्थित हो रहे हैं जिन्हें देख सुनकर के ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। और इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि मीडिया की भूमिका बेहद व्यापक होती चली जा रही है। अब देखिए ना, अभी कल शाम की ही बात है, हम दफ्तर से लौटकर ड्राइंग रूम में श्रीमती जी के साथ चाय पी रहे थे कि सक्सेना साहब अपनी पत्नी सहित तशरीफ लाए। हमने उठकर के अगवानी की, उन्हें बिठाया, बातचीत शुरू हुई। बातचीत के बाद उन्होंने अपने बैग में से एक निमंत्रण पत्र हमें दिया। हमने उसे खोला, पढ़ा और हैरत से पूछा, अरे भाई वाह, आपके बेटे राहुल की शादी है और वो भी इतनी जल्दी, ये कैसे हो गया ये रिश्ता इतनी जल्दी? सक्सेना साहब थोड़े हंसे और बोले, अमां, ये रिश्ता हमने नहीं, इंटरनेट ने किया है और इसका सूत्रधार राहुल स्वयं है। अच्छा, वो कैसे? अरे भाई, सीधे सी बात है, उसने इंटरनेट पर अपना विज्ञापन चित्र, योग्यता आदि का पूरा बायोडाटा दिया, ब्यौरा दिया और एक हफ्ते में ही लड़की वालों का उत्तर इंटरनेट पर ही आ गया। बस बात बन गई, पसंद हो गई, रिश्ता तय हो गया। तो श्रोताओं, ये जो एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया, उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये मैट्रिमोनियल कॉलम यानी कि वैवाहिक विज्ञापन अखबारों में तो अमूमन हर अखबार में रोजाना छपता ही रहा है, आज भी छपता है। अब इसी को इंटरनेट ने और अधिक गति प्रदान कर दी है, यानी अब मीडिया भी रिश्ते तय कराने में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। और ये सिलसिला हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अधिकतर एशियाई और अन्य देशों में भी जीवन साथी तलाशने का एक बेहद भरोसेमंद जरिया बन चुका है। इस प्रसंग के बारे में ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि आज की तारीख में शहरों, महानगरों में होने वाले हर वैवाहिक रिश्ते यानी शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को इंटरनेट ही संपन्न करवा रहा है। प्राप्त आंकड़े ये बताते हैं कि हर चौथी शादी इसी इंटरनेट के माध्यम से तय हो रही है। अब आप देख लीजिए, और आज जब ये हालत है तो आने वाले सालों में ये कयास लगाया जा रहा है कि तब हर दूसरी शादी ये मीडिया ही तय करवाए। तो अब जरा विचार करें, पहले क्या हालत थी, पहले क्या स्थिति थी इसके पहले। अरे साहब, रिश्तों को तय कराने के लिए खास करके लड़कियों के माता पिता को कितना कितना कितना भटकना घूमना पड़ता था। ये वैसे आज भी छोटे गांवों, कस्बों, नगरों में चल रहा है, लेकिन बहुत भटकना पड़ता था लड़की के माता पिता को। लेकिन संचार क्रांति जैसे जैसे ही विस्तार पाएगी, ये काम आसान होगा, ऐसी उम्मीद हमें करनी चाहिए। इस मुद्दे पर एक बात ये भी उभर कर सामने आती है कि इस चेंज का, इस बदलाव का कारण ये बदलते हालात तो हैं ही, लेकिन बड़ा कारण है शहरीकरण संस्कृति का विस्तार। आजादी के समय देश में शहरी आबादी संभवतः 9 से 10% रही होगी, लेकिन आज शहरी आबादी देश की कुल आबादी की लगभग 40 से 45% तक पहुंच चुकी है। यह तथ्य सर्वेक्षण बता रहे हैं। जनगणना विशेषज्ञों का मानना है कि ये शहरीकरण लगातार बढ़ता ही जाएगा। 10-15 वर्षों में शहरों और ग्रामों का प्रतिशत 50-50 हो जाएगा, 50-50, और भविष्य में तो ये आशंका जताई जा रही है कि शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से ज्यादा हो जाएगी। अब हालात तब क्या होंगे, इस बाबत आज तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि स्थितियां और बदलाव कुछ इस रूप में होना चाहिए जिससे हमारे ग्रामीण अंचल और हमारी अपनी संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने पाए और मीडिया की भूमिका से इन क्षेत्रों को भी शहरों के समान ही फायदा मिले। आइए फिर से यही विवाह के रिश्तों की बात करें, इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले रिश्ते तय कराने की जो पारंपरिक स्टाइल होती थी, गतिविधियां होती थी, जैसे रिश्तेदारों, पंडितों, नाइयों आदि की मदद लेना ही पड़ती थी, भैया जरा बताना कोई लड़का हो तो। वैसा अब नहीं है, विशेषकर शहरी आबादियों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाएं केवल घरेलू ही नहीं रह गई हैं, बाहर भी काम करती हैं, इसलिए जीवन शैली में बदलाव आया है, एकल परिवारों की तादाद बढ़ी है। तो इन हालात में रिश्ते तय कराने की पारंपरिक व्यवस्था को अपनाने के लिए किसी के पास भी फुर्सत नहीं होगी पहले जैसा होता था। इसी कारण मीडिया, अखबार और अब इंटरनेट की सूचनाओं पर निर्भरता और साथ ही विश्वसनीयता भी बढ़ने लगी है। ये स्थिति भारत में ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस जैसे देशों में भी, जो पारंपरिक और परिजनों के द्वारा रिश्ते तय कराते थे, वहां भी मीडिया पर निर्भरता बढ़ी है। कुछ ऐसी ही स्थितियां अन्य देशों की भी हैं। इसके अलावा आज विश्व भर में हर देश के मूल के लोग बसे हुए हैं। तो अंत में चलते चलते हम यही कहेंगे कि मीडिया क्रांति के कारण भी शादी आदि कार्यक्रम भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, और विशेष बात यह है कि इस चेंज से, इस बदलाव से आज की युवा पीढ़ी जो है हमारी, वो बड़ी इम्प्रेस्ड है, बहुत प्रभावित है, और युवा पीढ़ी संवेदनशील भी होती है। तो ये पीढ़ी महज भावुकता या पारंपरिकता के आधार पर शादी करने से कतराते भी हैं और परहेज भी करते हैं। अब इंटरनेट है, अपनी मर्जी से पसंद करो, शादी करो। तो अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि अखबार, टेलीविजन, इंटरनेट आदि संचार के सशक्त माध्यमों ने रिश्तों के चयन को काफी हद तक आसान बना दिया है। निश्चय ही आज के युग संचार में मीडिया के विभिन्न आयामों का आश्चर्यजनक और लोकप्रिय विस्तार हुआ है। तो इस लोकप्रिय विस्तार को हमें आज के युग को देखते हुए भाई इसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, और स्वीकार के साथ इसका स्वागत भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि रिश्ते जो हैं और खासकर के वैवाहिक रिश्ते जो हैं वो जीवन भर का एक साथ होता है स्त्री और पुरुष के बीच में, और अगर इन रिश्तों का बदलते माहौल को देखते हुए सही ढंग से चयन न किया जाए तो थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसे रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो जैसा कि आज हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल मीडिया है, क्या है मीडिया यानी कि संचार का एक प्रमुख स्तंभ है, इसमें SMS है, मोबाइल है, अखबार है, टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो इन सब का सहारा तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे इनसे ही एक नए जमाने की, नए माहौल की शुरुआत होगी।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था मीडिया के विभिन्न आयामों का विस्तार, और लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, रोज सुबह को सूरज आकर सबको सदा जगाता है, शाम हुई लाली फैलाकर अपने घर को जाता है, दिन भर खुद को जला जलाकर यह प्रकाश फैलाता है। उसका जीना ही जीना है जो काम सभी को आता है। दोस्तों, अभी की सभा का समय यही समाप्त होता है। हो सके तो कमरे से बाहर निकलिए, ताजा हवा लीजिए, ताकि आपकी आंखों को भी कुछ नया और सुकून भरा देखने को मिले। और सुकून से रहना है तो सुनते रहिए आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वरिदास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। और आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक पीटर जी को, और उनके आने से पहले सुनिए यह भक्ति गीत। और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दीजिए अनुमति, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो ये साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है सांप्रदायिकता और संस्कृति। प्रस्तुत करता है फादर हरमन मंडोड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है सांप्रदायिकता और संस्कृति। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार। सांप्रदायिकता अपने को संस्कृति के रक्षक के तौर पर प्रस्तुत करती है जबकि वास्तव में वह संस्कृति को नष्ट कर रही होती है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता दंभ व जातीय गौरव सांप्रदायिकता के साथ आराम से जुड़े हैं। सांप्रदायिकता के असली चरित्र को समझने के लिए उसके सांस्कृतिक खोल को समझना और इस खोल के साथ उसके संबंधों को समझना निहायत जरूरी है। संस्कृति में लोगों के रहन सहन खान पान मनोरंजन रुचियां स्वभाव गीत नृत्य सोच विचार आदर्श मूल्य भाषा बोली सब कुछ शामिल होता है। जो जीवन में होता है उस सबको मिलाकर ही संस्कृति बनती है। किसी विशेष क्षेत्र

जीवन की सबसे जरूरी व सर्वोच्च पहचान रखने पर जोर देती है। इसलिए हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति जैसी शब्दावली का निर्माण किया गया है। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता और संस्कृति लेख में इस पर गहराई से विचार करते हुए लिखा है कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलने शायद लज्जा आती है, इसलिए वह गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर रोब जमाता फिरता था, संस्कृति की खाल ओढ़कर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, उसी प्रकार मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। यह भूल गए हैं कि अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। मगर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोए चले जाते हैं। हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं। आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है, लेकिन ईसाई संस्कृति और मुस्लिम या हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू मूर्ति पूजक है तो क्या मुसलमान कब्र पूजक और स्थान पूजक नहीं है? ताजी को शरबत और शेरिनी कौन चढ़ाता है? मस्जिद को खुदा का घर कौन समझता है? अगर मुसलमानों में एक संप्रदाय ऐसा है जो बड़े से बड़े पैगंबरों के सामने सिर झुकाना भी कुफ्र समझता है, तो हिंदुओं में भी एक संप्रदाय ऐसा है जो देवताओं को पत्थर के टुकड़े और नदियों को पानी की धारा और धर्मग्रंथों को गपोड़े समझता है। यहाँ तो हमें दोनों संस्कृतियों में कोई अंतर नहीं दिखता। मित्रों, धर्म के आधार पर संस्कृति की पहचान करना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता की विचारधारा संस्कृति और धर्म को एक दूसरे के पर्याय के तौर पर प्रयोग करके भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है, जबकि धर्म संस्कृति का एक अंश मात्र है। बहुत सी चीजों के समुच्चय योग से संस्कृति बनती है, धर्म भी उसमें एक तत्व है, धर्म संस्कृति का एक अंग है। धर्म में सिर्फ आध्यात्मिक विचार, आत्मा परमात्मा, परलोक, पूजा, उपासना आदि ही आते हैं। सांप्रदायिक शक्तियां संस्कृति के सभी तत्वों के ऊपर धर्म को रखती है। मित्रों, संस्कृति को धर्म के साथ जोड़कर सांप्रदायिक विचारधारा एक बात और जोड़ती है कि एक धर्म के मानने वाले लोगों की संस्कृति एक होती है, उनके हित एक जैसे होते हैं। ऐसा स्थापित करने के बाद फिर वे एक कदम आगे रखकर कहते हैं कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से टकराती है, दो धर्मों के व दो संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर नहीं रह सकते, अतः संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे पीछे लग जाओ। इसी आधार पर सांप्रदायिक लोग जनता को इस बात का झांसा देकर रखती है कि वह संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जबकि वे सांस्कृतिक मूल्यों यानी मिलजुल कर रहने, एक दूसरे का सहयोग करने, एक दूसरे का आदर करने को नष्ट कर रहे होते हैं। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि समान धर्मवानों की संस्कृति भी समान होगी। भारत के ईसाई व इंग्लैंड के ईसाई का, भारत के मुसलमान व अरब देशों के मुसलमानों का, भारत के हिंदू व नेपाल के हिंदुओं का, पंजाब के हिंदू और तमिलनाडु के हिंदू का, असम के हिंदू व कश्मीर के हिंदू का धर्म तो एक ही है, लेकिन उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग अलग है। न उनके खान पान एक जैसे हैं, न रहन सहन, न भाषा बोली में समानता है, न रुचि स्वभाव में। इसके विपरीत अलग अलग धर्मों को मानने वालों की संस्कृति एक जैसी होती है, क्योंकि संस्कृति का संबंध क्षेत्र से है। कश्मीर के हिंदू व मुसलमानों का धर्म अलग अलग होते हुए भी उनकी बोली, खान पान, रुचि स्वभाव में समानता है। तमिलनाडु के हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति लगभग एक जैसी है। धर्म के आधार पर संस्कृति की पहचान अवैज्ञानिक तो है ही, सांप्रदायिकरण की कोशिश है। मित्रों, एक संस्कृति या पवित्र संस्कृति जैसी कोई चीज नहीं है। संसार के एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों से काफी कुछ ग्रहण किया है।

आदान प्रदान से ही समाज का विकास हुआ है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहां विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर बसे, वहां तो ऐसी कुछ शुद्ध संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहां शक, कुषाण, पठान, अफगान, तुर्क, मुगल आए, जो विभिन्न प्रदेशों के रहने वाले थे। वे अपने साथ कुछ खान पान की आदतें, कुछ पहनने के कपड़ों का ढंग, कुछ पूजा विधान, कुछ विचार व काम करने के नए तरीके भी लेकर आए, जिनका भारतीय समाज पर गहरा असर पड़ा। कितनी खाने की वस्तुएं व पकाने का ढंग इस तरह यहाँ के जीवन में शामिल हो गई कि कोई यह नहीं कह सकता कि ये बाहर की चीजें हैं। ये यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई है। भाषा संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष है। उसी प्रकार मित्रों, भाषा संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की उत्पत्ति के साथ ही मानव जाति का सांस्कृतिक विकास हुआ है। भाषा के माध्यम से ही सामाजिक व्यक्तिगत जीवन के कार्य चलते हैं। भाषा में ही मनोरंजन करते हैं, हंसते रोते हैं, सुख दुख की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा बोली में व्यवहार करने वाले लोगों की रुचियों स्वभाव की भावभूमि एक ही होती है, लेकिन सांप्रदायिकता की विचारधारा भाषा को धर्म के आधार पर पहचान देकर उसका सांप्रदायिकरण करने की कुचेष्टा करती है। जैसे हिंदी को हिंदुओं की भाषा मानना, पंजाबी को सिखों की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानना। सांप्रदायिक लोगों के लिए भाषा भी दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत फैलाने का औजार है। देखा जाए तो हिंदी और उर्दू तो जुड़वा बहनों की तरह है, जो एक ही क्षेत्र से, एक ही मानस से पैदा हुई है। अमीर खुसरो को कौन सी भाषा का कवि कहा जाए? यदि हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं से उर्दू के शब्दों को निकाल दिया जाए तो वह कैसी रचनाएं बचेगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अतः मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति समृद्ध संस्कृति है। इसकी महानता हम बनाए रखें, न कि इसे विघटन का कारण बनाएं। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था सांप्रदायिकता और संस्कृति। प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है बेटी को विवादों में न फंसाएं। लेखक है माइकल हॉजेस और प्रस्तुत करता है अपर्णा सिंह।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है बेटी को विवादों में न फंसाएं। लेखक माइकल हॉजेस, प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। श्रोता साथियों, रीता ने अपनी बेटी मीना के कॉलेज से आते ही उसे दादी के घर जाने के लिए ये कहकर उकसाया कि आज तेरी दादी के यहां तेरी चाची अपने मायके से आने वाली है, तू जरा बहाने से जाकर देख और मुझे आकर बताना कि तेरी दादी की लाडली बहू अपने मायके से क्या लाई है। तेरी दादी बहुत बड़ाई करती है अपनी छोटी बहू की, जरा मैं भी तो देखूं उनकी लाडली बहू कितने पानी में है। रीता को ये सब जानने की जरूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि पहले वो भी अपनी सास के पास ही रहा करती थी, लेकिन किसी मनमुटाव के कारण अब वो अपनी सास से अलग रहने लगी थी। सास छोटी बहू की प्रशंसा करती थकती नहीं थी, वैसे छोटी बहू प्रशंसा के लायक भी थी। रीता की बेटी मीना भी इस तरह की जासूसी में बहुत कुशल थी क्योंकि मां ने उसे उसके बचपन से ही इस तरह के काम में निपुण बना दिया था। मां जब भी उसे इस तरह का कार्य करने को कहती तब मीना दौड़ी दौड़ी जाती थी और आकर मां को पूरी बात बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। आज भी कुछ वैसा ही था। मीना को भेजकर उसकी मां ने चाहा था कि एक झपकी ले ले, लेकिन जब हृदय में जलन की आग धधक रही थी तो किसे नींद आ पाती। यही हाल रीता का भी था। जब मीना ने वापस आकर रीता की आशा के अनुरूप ही सब कुछ बताया तो उसकी जलन कुछ और बढ़ गई। श्रोता साथियों, सुना आपने किस तरह से कुछ मायें अपनी बेटियों से जासूसी कराती हैं। अपने स्वार्थ की खातिर वे अपनी बेटियों को पोल खुल जाने के बाद उत्पन्न होने वाली विवाद की स्थिति में झोंकने से भी नहीं डरती। वे इस बात की परवाह भी नहीं करती कि वे सही कर रही हैं या गलत। उनकी इस तरह की हरकत का उनकी बेटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शेक्सपियर के कथनानुसार स्त्री का दूसरा नाम जलन है। संसार में शायद ही ऐसी कोई स्त्री हो जिसमें ईर्ष्या की भावना न हो। स्वाभाविक रूप से हर स्त्री में ये भावना होती है, किसी में कम तो किसी में अधिक। पड़ोसन, सहेली, सहकर्मी, सास, नंद, देवरानी, जेठानी या अन्य कोई भी महिला, उनकी जलन या ईर्ष्या का केंद्र हो सकती है। व्यवहारिक होने के नाते उन्हें मां पर तो मीठा बोलना और होना ही पड़ता है, इसलिए सामने तो वे अच्छी बनी रहती है लेकिन मन में ईर्ष्या रखती हैं और समय पड़ने पर इस तरह के कार्य अपनी बेटी से कराती रहती हैं। वे बेटी को ही माध्यम इसलिए बनाती हैं क्योंकि बेटी ही अपनी मां की हमदर्द होती है। इसलिए बेटियों के आगे मां अपने मन की बात और ईर्ष्या को जताना बुरा नहीं मानती। यही कारण है कि वे अपनी बेटियों से जासूसी कराने में भी नहीं हिचकिचाती। बेटी के माध्यम से वे अपनी प्रतिद्वंदी की सारी खबरें मालूम करती रहती हैं। यही नहीं, यहां तक भी देखा गया है कि जब मां की कोई सहेली आती है तो वे अपनी बेटी के सामने ही सहेली से अपनी प्रतिद्वंदी की बुराई करने लगती हैं। उस समय या तो वे ये भूल जाती हैं या फिर इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं कि उनकी बेटी भी पास में ही बैठी है। फिर होता यह है कि बेटी को जो बात पता नहीं होनी चाहिए थी वो भी पता हो जाती है, जिससे बाद में कभी बात का बतंगड़ भी बन जाता है। यही कारण है कि अपनी बेटी को विवादों में फंसने या फंसाने से बचाना चाहिए। इससे मां और बेटी दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि मां अपनी बेटी से जासूसी जैसे काम करवाती है और उस काम की पोल खुल जाती है तो मां के साथ साथ उसकी बेटी भी सबकी नजरों में गिर जाती है, तब की तब देखी जाएगी। ऐसा सोचकर भी ऐसी मां निश्चिंत ना रहे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अभी तो उनकी बेटी ऐसे कामों में रुचि ले रही है लेकिन कल बेटी अपने किसी जरूरत के समय पर मां को ब्लैकमेल भी कर सकती है। साथ ही साथ कभी आज्ञा मानने से इनकार भी कर सकती है और खरी खोटी सुना भी सकती है। ये भी हो सकता है कि बात ठीक से उसके समझ में ना आए और वो मां को इज्जत देना भी बंद कर दे। ये भी हो सकता है कि बेटी के मन में अपनी मां की छवि लड़ाकू और ईर्ष्यालु नारी की छवि बनकर रह जाए। फिर ऐसे में उसका अपनी मां का आदर करने का प्रश्न ही नहीं उठता, साथ ही वो अपनी मां की उपेक्षा भी करने लगे। प्रश्न ये भी उठता है कि बेटी मां के विषय में क्या सोचेगी या इससे मां और बेटी के पारस्परिक संबंधों में क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यदि इस प्रश्न को अनदेखा भी कर दिया जाए तो भी अपनी बेटी को ऐसे किसी भी विवाद में फंसाना गलत है,
भविष्य में ये बात उसके जीवन में जहर घोल सकती है। जब माँ की पड़ोसन, देवरानी, जिठानी, सहेली, परिचिता या सास आदि को जब ये पता चलेगा कि उनके प्रति माँ अपनी बेटी के मन में जहर घोलती है, तो वे लोग माँ के साथ साथ बेटी को भी अपने से दूर रखने लगेंगे और उसकी उपेक्षा करने लगेंगे। इसका सीधा परिणाम ये निकलेगा कि बेटी उन लोगों से पहले जो प्यार पा रही थी और अपनापन उनसे मिल रहा था उसे, अब वो भी सब खत्म हो जाएगा, अब वो सब नहीं मिलेगा। प्यार और ममता की जंजीर एक ही झटके में सब टूट जाएगी। परिवार में भी कई बार मनमुटाव और कुछ कहासुनी की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उसे किसी भी हालत में संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में माँ को सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जवान पुत्री उनके आसपास ना हो, और यदि ऐसी उत्पन्न स्थिति के समय वो आसपास या पास में हो, तो उसे तुरंत अपनी सहेली के यहाँ या वहां से कहीं दूर कुछ समय के लिए या विवाद शांत हो जाने तक उसे भेज देना चाहिए। इससे होगा ये कि वो बेकार के विवाद से भी दूर रहेगी और न ही वो विवाद का कोई हिस्सा बन पाएगी। वैसे भी बड़ों की किसी बात में, विशेषकर विवाद में, बच्चों या छोटों का दखल कोई पसंद नहीं करता, बल्कि उनका दखल कभी कभी बात को और भी बिगाड़ सकता है। बच्चे भले ही जवान हो जाएं, लेकिन बड़ों की नजर में वे सदा बच्चे ही रहेंगे। चूंकि हमारी संस्कृति में वैसे भी बेटी को पराया धन माना जाता है, इसलिए कभी कभी किसी विवाद में उसका बीच में बोलना या पढ़ना संबंधियों को सहन नहीं होता। चूंकि बेटे भावी पुरुष होते हैं और ताकतवर होते हैं, इसलिए किसी विवाद में उनके पढ़ने या बोलने के लिए परिवार की मूक स्वीकृति रहती ही है। वैसे भी झगड़े परिवार के हों या बाहर के, उन्हें बेटे या बाप ही निपटाते हैं। स्त्री को तो उसकी रचना काल से ही प्रेम, ममता, त्याग और शांति की मूर्त रूप माना गया है। श्रोता साथियों, इसलिए माँ को अपनी बेटी के सुखद भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उसकी एक मिलनसार और अपनापन वाली छवि बनाते हुए उसकी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। माँ अपनी बेटी के मन में ये बात भी बिठा दे कि वो स्वयं भी अपने आप को विवादों से दूर ही रखे। अतः ये जरूरी है कि माँ अपनी बेटी को किसी भी तरह के विवादों से दूर रखे और इन्हें बचाए, क्योंकि विवादों से किसी का भला नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। इसलिए बेटी को घर और बाहर के विवादों से दूर ही रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था बेटी को विवादों में न फंसाएं। लेखक थे माइकल हॉजेस और प्रस्तुतकर्ता थी अपर्णा सिंह। दोस्तों, आइए आप सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुत थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है मन दर्पण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है क्षमा या सॉरी। प्रस्तुत करता है संदीप दुबे।

क्षमा या सॉरी। लीजिए सुनिए ये वार्ता मन दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत। वार्ताकार हैं संदीप दुबे। श्रोताओं, क्षमा सिर्फ दो अक्षर का नाम है, लेकिन शब्द की व्याख्या की जाए तो शब्दकोश भी छोटा पड़ जाए। क्षमा, जिसे अंग्रेजी में सॉरी के नाम से संबोधित किया जाता है, और सॉरी का मतलब आज के युग की हर गलती, हर प्रायश्चित की एक ही दवा। वो छोटी से छोटी गलती एवं वो बड़े से बड़ा कृत्य जिसके घटित होने के बाद आत्मा गिलानी, दुख व पश्चाताप से व्यथित हो जाए और मन अपनी गलती को स्वीकारना चाहे, तब जो भाव आते हैं वही क्षमा कहलाता है। पर श्रोताओं, अब वो मन या आत्मा कहां है जिन्हें अपनी करनी पर सोच भी होती है या पछतावा भी? अब तो लोग चोरी उस पर सीना चोरी के पक्षधर ज्यादा है, आंखें खोलकर चलना जैसे मुहावरे हकीकत बनते जा रहे हैं। दोस्तों, छोटा बड़े से, बड़ा छोटे से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, मालिक कर्मचारी से, अमीर गरीब से क्षमा मांगने में अपने को शर्मिंदा समझता है। पर क्या त्रुटि सिर्फ छोटों के द्वारा ही होती है? फिर बड़े छोटों से क्षमा मांगने में संकोच क्यों करते हैं? यह एक सोचनीय प्रश्न है। दरअसल क्षमा की भावना जिस व्यक्ति के अंतर्मन में आ जाती है, यह स्पष्ट है कि वह अपनी गलती का आभास कराके सामने वाले व्यक्ति से सारे मतभेद भुलाकर नए संबंध बनाने को आतुर है, और ऐसे व्यक्ति ही क्षमा याचक एवं उनकी वाणी क्षमा वाणी कहलाती है। श्रोताओ, जैन धर्म में एक ऐसा त्योहार होता है जिस दिन हर बड़ा छोटा एक दूसरे से वर्ष भर हुई जानी अनजानी भूलों के लिए एक दूसरे से क्षमा प्रार्थना कर पुराने मतभेदों को भुलाकर एक नए रिश्ते को जन्म देता है, और जैन धर्म में इस त्योहार को क्षमा वाणी के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, मुझे याद है जब मैं छोटा था तब अपने पिताजी को सभी बड़ों के पैरों में नतमस्तक होता देखता था। चरण छूना, फिर चरणों में अपना सिर रख देना एक परंपरा थी, जो कि सही मायने में नतमस्तक की परिभाषा थी। धीरे धीरे समय ने करवट ली और पैर छूने में लोगों को संकोच होने लगी। चरण स्पर्श से बात घुटनों के स्पर्श तक सिमट कर रह गई, और धीरे धीरे बाय हाय जैसे पाश्चात्य शब्दों में दबकर क्षमा नाम का विचार ओझल हो गया। श्रोताओ, पहले समय में सिर चरणों में स्पर्श को सोता ही झुक जाया करता था, पर आज बच्चों को याद दिलाना पड़ता है कि बेटा, पैर छुओ, यह तुम्हारे अंकल हैं, क्योंकि अब ना तो पहले जैसे चरण हैं और ना पहले जैसे शीश। दोस्तों, क्षमा मांगने वाला व क्षमा करने वाला दोनों की स्थिति एक दूसरे की नजर में सम्माननीय होती है। दोनों की भावना आगे संबंध निरंतर रखने की होती है। दोनों सारे मतभेद भुलाकर नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, और इसी से संबंध प्रगाढ़ होते हैं। क्षमा प्राप्ति के बाद दोषी को अपने आप को निर्दोष साबित करने का एक मौका और मिल जाता है, एवं किसी कारणवश आई हुई संबंधों की दरार को क्षमा नाम का छोटा सा शब्द हमेशा के लिए पाट देता है और संबंधों में मिठास आ जाती है। तो अब तय आपको करना है श्रोताओं, कि सामने वाले को सॉरी कहेंगे या क्षमा। दोस्तों, क्षमा क्रोध का विपरीत शब्द है। क्रोधी को क्षमा करके ही शांत किया जा सकता है। क्षमा करने के बाद मन शांत होता है, वहीं क्रोध करने से शरीर की शक्ति तो क्षय होती ही है, साथ ही मन भी दुखी हो जाता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। महाभारत के महानायक श्री कृष्ण से जब अर्जुन पूछते हैं कि वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को अपराध या पाप करने पर विवश करती है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, कामना और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं समस्त पापों के मूल हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में क्रोध का जन्म काम या इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने से होता है,
जिस प्रकार दूध का रूपांतर दही में हो जाता है, उसी प्रकार इच्छा ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है। क्रोध का निवास स्थान स्थूल शरीर में नहीं, लिंग शरीर में है, किंतु जैसे पानी घड़े के छिद्रों से रिसता है, उसी प्रकार यह भी स्थूल शरीर में प्रकट होता है। श्रोताओ, बात सच है, क्रोधावेश में मनुष्य हत्या करता है, भावुकता व उद्वेग से वह पागल सा हो जाता है। क्रोध आ जाने पर मनुष्य अपने मुंह से क्या क्या नहीं बोलता। एक कटु शब्द, तीखा और चरपरा अंत में युद्ध व मारपीट की नौबत ले लेता है। हाँ, क्रोध तभी सार्थक माना जा सकता है जब इससे किसी प्रकार की प्रशंसा होती हो, किसी की जीवन रक्षा होती हो, सत्य की विजय होती हो, कोई आनंद आता हो, तो क्रोध स्वागत के योग्य कहा जाता है। पर यहां तो क्रोध करने से जड़ता आती है। क्रोधी चिल्लाता नहीं, ऐलान करता है कि वह निराश हो चुका है। तो दोस्तों, क्रोध का मूल कारण खोजने पर हमें इसके तह में केवल अज्ञान और अहंकार ही मिलेगा। प्रतिपक्ष भावना से क्रोध पर पूर्ण विजय पाई जा सकती है। अतः क्षमा, प्रेम, शांति, करुणा और मित्र आदि भाव का अपने में विकास करना चाहिए। आपका क्रोध आपके वश में आ सकता है या नहीं, यह जानने के लिए परीक्षण करें। क्रोध से बचने के लिए जब क्रोध आने लगे तो 1 से 10 तक गिनती गिनिए, और अगर क्रोध आ ही जाए तो 1 से 100 तक। क्रोध क्यों आ रहा है, इसके संबंध में तर्क कीजिए और उसे अपने मन में से धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। फिर देखिए क्रोध आपके मन दर्पण में कैसे प्रवेश करेगा। दोस्तों, क्षमा और क्रोध दोनों पर नियंत्रण या अनियंत्रण हमारे ऊपर ही निर्भर है। हम चाहें अपने अंदर क्षमा भाव भी ला सकते हैं और चाहें तो क्रोध भी, पर यह हमको सोचना है कि किसको अपनाकर हम दुनिया में अपने आप को याद किया जाना पसंद करेंगे। करीब 100 साल पहले एक आदमी ने सुबह के अखबार में जब अपना नाम उठावनी वाले कॉलम में देखा तो वह हैरान रह गया। अखबार वालों ने गलत फहमी की वजह से उसका नाम छाप दिया था। उसे पढ़कर वह पहले तो हक्का बक्का रह गया, क्या मैं जिंदा हूं या नहीं, उसने सोचा। थोड़ा संभलने पर उसके मन में विचार आया कि देखूं लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा है। उसके बारे में लिखा गया था, डायनामाइट का बादशाह मर गया, और वह मौत का सौदागर था। इस व्यक्ति ने डायनामाइट की खोज की थी। अखबार में अपने लिए इस्तेमाल किए गए मौत का सौदागर विशेषण को पढ़कर उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे इसी तरह याद किया जाएगा। उसने फैसला किया कि वह हरगिज नहीं चाहेगा कि लोग उसे इस तरह याद करें। उस दिन से उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो श्रोताओ, ये हमें तय करना है कि हमें किस रूप में जाना जाए। कुछ लोगों का कहना है कि इंसान के व्यक्तित्व के गुण जन्मजात होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर हमें मालूम हो कि क्या बदलने की जरूरत है, तो व्यवहार बदलने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी भी वक्त बदलाव ला सकते हैं। तो श्रोताओ, तमाम तरह की माफियों का वह असर नहीं होता है जितना जबरदस्त प्रभाव मुझे माफ करना, आई एम सॉरी का होता है। सीधे शब्दों में मांगी गई माफी का गहरा प्रभाव पड़ता है। माफी मांगने में कोई मूल्यहीनता की बात नहीं है। क्रोध और लालच को त्याग कर, आपसी मतभेद को भुलाकर, एक दूसरे की गले मिले

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था क्षमा या सॉरी, एवं प्रस्तुतकर्ता थे संदीप दुबे। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारे समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है औद्योगिक अवशिष्टों का पर्यावरण पर बढ़ता प्रभाव। वार्ता के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता, औद्योगिक अवशिष्टों का पर्यावरण पर बढ़ता प्रभाव। प्रस्तुत है भाग एक, इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, पृथ्वी पर मानव जन्म के साथ ही उसकी दैनिक जरूरतें और सुविधाएं भी फलीभूत होती रही हैं। मानव सभ्यता के दिनोंदिन विकास के साथ साथ मानव सभ्यता में और उसके विकास की आवश्यकताओं में भी दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, चाहे वह दैनिक सुख सुविधाओं से संबंधित हो या फिर शरीर को स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों से संबंधित आवश्यकताएं हों। मानव को अपनी प्रत्येक जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रियाओं से भी निरंतर गुजरना ही पड़ता है, जिसका परिणाम होता है उद्योगों की स्थापना, जैसे मिल, कारखाने और बड़े अस्पताल या नर्सिंग होम्स आदि। उद्योगों की स्थापना न केवल शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक विश्राम यानी कि मनोरंजन के लिए भी आवश्यक है। उद्योग जितने इन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं, उतने ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक हैं। उद्योगों से इनके अलावा यह भी लाभ है कि ये व्यक्ति के रोजगार की पूर्ति के माध्यम और साधन भी बन गए हैं। इसलिए आज उद्योगों, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स का अपना एक अलग ही महत्व है। वर्तमान में ये मानव विकास की पहचान भी बन गए हैं। एक ओर जहां उद्योगों, अस्पतालों तथा मशीनों आदि से व्यक्ति के जीवन का निरंतर द्रुत गति से विकास हो रहा है, व्यक्ति को उनका विशिष्ट लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं उद्योगों और अस्पताल आदि के कारण व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण का सामना भी करना पड़ रहा है। अपने द्रुत गति से हो रहे जीवन के विकास की उसे पर्यावरण प्रदूषण के रूप में भारी कीमत भी चुकाना पड़ रही है। इस कीमत को चुकाने के लिए कोई और नहीं बल्कि व्यक्ति और केवल व्यक्ति ही जिम्मेदार है, जो अपने जीवन के विकास और सुख सुविधाओं के लिए दायरा तो बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उनसे उत्पन्न होने वाली हानियों अर्थात प्रदूषण के लिए सतर्कता से आंखें मूंदा बैठा है। अपने विकास की अंधी दौड़ में वह इसके दूसरे पक्ष यानी कि पर्यावरण को अनदेखा किए जा रहा है। वर्तमान समय में पूर्व की अपेक्षा आज उद्योगों की बाढ़ सी आई हुई है, जहां ये उद्योग व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का निर्माण करते हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इन उद्योगों और अस्पतालों से निकलने वाला अवशिष्ट यानी कि कचरा पर्यावरण को रात दिन दूषित किए जा रहा है। यह पर्यावरण पर दूषित वातावरण का ही प्रभाव है कि अब व्यक्ति के द्रुत गति से हो रहे विकास में नित नई बीमारियां उसके स्वास्थ्य में बाधा बनकर आ खड़ी हो रही हैं। उद्योगों से निकलता धुआं, मशीनों का शोर, फैक्ट्रियों का दूषित जल तथा चारों ओर गंदगी के रूप में फैला कचरा, ये सब मिलकर कामगारों की बस्ती में उनके समस्त परिजनों को और अन्य रहवासियों को नित नई बीमारियों की सौगात प्रदान करते रहते हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित भी करते रहते हैं। पूर्व में अधिकांश उद्योगों की स्थापना भीड़भाड़ और शोरगुल से बचने के लिए शहरों से बाहर या शहरी हिस्सों के किनारों पर की जाती रही है, लेकिन कतिपय स्वार्थी उद्योगपतियों ने अब शहर के बीचों बीच में भी अपने घरेलू या छोटे मोटे उद्योग स्थापित कर लिए हैं। इसका सीधा परिणाम यह निकला कि इन घरेलू उद्योग या कारखानों की वजह से शहर के लोग अब सीधे सीधे प्रदूषित पर्यावरण में रहने के लिए मजबूर हैं और मजबूर हैं अपने स्वास्थ्य की न चाहते हुए भी बलि देने के लिए। जब से शहरों और कस्बों में बहुतायत की संख्या में नर्सिंग होम खुले हैं, तब से शहरवासियों का स्वास्थ्य और भी अधिक प्रभावित होने लगा है। विडंबना तो यही है कि जो अस्पताल या नर्सिंग होम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं अस्पताल और नर्सिंग होम लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी साबित
हो रहे हैं। हालांकि जन सामान्य इस सच्चाई से परिचित नहीं है, उन्हें तो लगता है कि अस्पताल और नर्सिंग होम केवल उनकी भलाई और सेहत की उचित देखभाल के लिए ही स्थापित किए गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। यह सिक्के का एक पहलू और अधूरा सच ही है। पूरा सच और सिक्के का दूसरा पहलू तो बुद्धिजीवी और जागरूक नागरिक ही जानते हैं। श्रोता साथियों, वर्तमान में पूर्व की अपेक्षा उद्योगों की बाढ़ सी आई हुई है, जहां ये उद्योग व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का निर्माण करते हैं या अस्पतालों में उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं इन उद्योगों और अस्पतालों से निकलने वाले कचरे की गंदगी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का एक साधन बनती जा रही है। त्रासदी तो यही है कि लोग जाने अनजाने इस गंदगी को नजरअंदाज कर जिए जा रहे हैं, उन्हें इस गंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। ये महज इसे सरकार की जिम्मेदारी मानकर निश्चित होकर अपना जीवन जिए जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि गंदगी के बारे में सोचना और उसे हटाना केवल सरकार का ही काम है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस गंदगी के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, लेकिन जब उनकी आवाज भ्रष्टाचार के नगाड़ों के शोर में दब जाती है तो वे भी चुपचाप बैठ जाते हैं। वे अपनी आवाज को लगातार बुलंद करने का कोई भी प्रयास नहीं करते। श्रोता साथियों, वर्तमान में कई लघु उद्योगों की इकाइयां नगरों, शहरों और कस्बों में चल रही हैं। इन लघु उद्योगों से निकलने वाले कचरों को अक्सर इन्हीं फैक्ट्रियों के आसपास ही डाल दिया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। यही हाल नगरों तथा शहरों आदि में अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स का भी है। अस्पतालों में होने वाली शल्य क्रियाओं में निकलने वाले अवशिष्ट, जैसे घाव की बदली हुई पट्टियां हों, शरीर का कोई बेकार अंग हो अथवा मानव शरीर का कोई बेकार मांसपिंड हो, गंदे पानी की निकासी हो या फिर किसी भी प्रकार का कचरा, कुछ निजी अस्पताल या नर्सिंग होम्स इन सब अवशिष्ट का व्यवस्थित रूप से कार्य निष्पादन करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं या फिर जानबूझकर उचित व्यवस्था करने में लापरवाही बरतते हुए देखे जा सकते हैं। यही नहीं, जनता से पूरा पैसा वसूलने के बाद भी अस्पताल के भीतर भी गंदगी का संपूर्ण साम्राज्य देखा जा सकता है। किसी भी अस्पताल के भीतर गंदगी होना तो पर्यावरण के प्रति और भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि यदि स्वास्थ्य लाभ करने के स्थान पर ही उसके विपरीत परिस्थितियां होंगी तो फिर उस स्थान पर रहकर स्वास्थ्य लाभ की आशा और संभावना कैसे व्यक्त की जा सकती है। उस गंदगी भरे स्थान पर तो केवल और केवल एक ही आशा और संभावना व्यक्त की जा सकती है, बीमार के और भी संक्रमित होकर और बीमार होने की। उसके स्वास्थ्य लाभ की वहां आशा करना तो रेगिस्तान में जल स्रोत की आशा करने जैसा है। कितनी हैरानी और विरोधाभासी बात है कि जहां बीमार व्यक्ति शुल्क चुकाकर स्वास्थ्य लाभ लेने की कामना के साथ आता है, वहां उसे गंदगी, संक्रमण और प्रदूषण से दोचार होना पड़ता है। श्रोता साथियों, समय पूरा होने के कारण आपसे आज्ञा चाहूंगा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था औद्योगिक अवशिष्टों का पर्यावरण पर बढ़ता प्रभाव। वार्ता के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ज्योति और इस समय आप रेडियो वरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और अंत में बाल जगत। श्रोताओं, परमेश्वर से मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा, खोजते रहो तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई जो मांगता ही रहता है प्राप्त करता है, जो खोजता है पा जाता है, और जो खटखटाता ही रहता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। तुम में से ऐसा पिता कौन सा है जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे और वह उसे पत्थर दे, या जब वह उससे मछली मांगे तो वह उसे सांप दे दे? बताओ, क्या कोई देगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। इसीलिए यदि चाहे तुम बुरे ही क्यों न हो, जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं, तो निश्चय ही स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परमपिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। दोस्तों, कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक, और यह प्रस्तुति है सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: मैं इस सारी दुनिया के रखवाले प्रभु का दूत हूँ। दूत यानी संदेश वाहक, उस प्रभु का जिसने बड़ी मेहनत और प्यार से इस दुनिया की सृष्टि की थी। उस रचना के बाद से मैं और मेरे साथी हमेशा से सर्वशक्तिमान प्रभु और इस सारी दुनिया पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, दुनिया का बदलता हुआ रूप देखा, ईश्वर का आग के समान उबलता क्रोध और फिर उन्हीं लोगों पर उफनती नदी के समान उमड़ता प्यार भी देखा। मैंने महसूस किया कि ईश्वर का प्यार सचमुच महान है, कोई भी प्यार के इस बंधन को तोड़ नहीं सकता। ईश्वर दुनिया पर उसके लोगों की गलतियों की वजह से नाराज भी होते हैं, तो वहीं उन्हें खुशियां सौंप कर अपना प्यार भी दिखाते हैं। सृष्टि की रचना से अब तक मैंने हर पल, हर मिनट और हर वर्ष को अपने सामने से गुजरते देखा है, और आज से मेरे द्वारा आपको एक एक दिन, एक एक पल का हाल पता चलेगा। तो चलें इस दुनिया के पहले दिन की ओर। उस रोज मैंने प्रभु को बड़ा ही चिंतित, परेशान और कुछ गंभीर देखा। वे कुछ सोच रहे थे, लेकिन सोचते सोचते उनके चेहरे पर खुशी की किरणें भी फूट पड़ती थीं। तभी मुझे देख वो कहने लगे,
1: सुनो, तुम मेरी गंभीरता और खुशी का कारण नहीं पूछोगे?
0: चाहता तो था कि पूछूं, पर फिर मैंने सोचा आप जरूर कोई अच्छी बात ही सोच रहे होंगे, इसलिए मैंने बाधा डालना उचित न समझा। वैसे प्रभु, क्या मैं आपकी खुशी का कारण जान सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हीं से तो कह सकता हूँ, और कौन है यहाँ तुम्हारे सिवा?
0: तो कहिए प्रभु, क्या बात है?
1: बहुत दिनों से मैं एक बात पर विचार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सृष्टि करूँ।
0: दुनिया? वो क्या है, कैसी होगी वो
1: दुनिया? वो जिसमें धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे, फल फूल, पशु पक्षी, नदी, समुद्र, पर्वत और इन सब पर अधिकार होगा इंसान का।
0: धन्य है प्रभु आप, सचमुच आपका ये विचार मुझे भी अच्छा लगा। मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। अब तो बस मैं भी दुनिया को देखने के लिए बेचैन हूँ।
1: आओ, हम ये काम अभी शुरू करते हैं।

0: ज्ञान था, घना अंधकार छाया हुआ था। ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसे ही प्रभु ने अंधकार में फैले पानी की ओर अपना ज्योतिर्मय चेहरा घुमाया, सारा पानी ज्योति से जगमगा उठा। प्रभु को अपने चेहरे का ये प्रतिबिंब इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे नाम दिया रोशनी का। इस प्रकाश को प्रभु ने अंधकार से अलग कर दिया और नाम दिया दिन। अंधकार का नाम उन्होंने रखा रात। इस तरह से पहला दिन समाप्त हुआ। दूसरे दिन ईश्वर ने पृथ्वी पर फैले पानी को आदेश दिया कि पानी के बीचों बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे। उनका इतना कहना था कि पानी दो भागों में बट गया। ईश्वर ने ऊपर के पानी को नाम दिया आकाश। तीसरे दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु नीचे तो पानी ही पानी है, इंसान पेड़ पर्वत और सब जीव जंतु क्या पानी पर ही रहेंगे?
1: तुम चिंता क्यों करते हो?

0: मैं सबको अपनी अपनी जगह रखूंगा, बस तुम देखते जाओ।
1: उस दिन प्रभु ने पृथ्वी के सारे पानी को आदेश दिया कि वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाए और जमीन दिखाई पड़े। उनके ऐसा कहते ही जमीन दिखाई पड़ी, जिसका नाम उन्होंने पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र। तब ईश्वर ने ये कहकर एक और आदेश दिया,
0: हरियाली लहला उठो, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाओ, इस पृथ्वी को सुंदर फूलों और फलों से भर दो।
1: प्रभु के इतना कहते ही पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी। हर कहीं बीज पैदा करने वाले पेड़ पौधे और फल। इसके बाद ईश्वर को लगा कि इस भयंकर अंधेरे से तो इंसान डरेगा। फिर क्या था, चौथे दिन
0: दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में तारे हैं, जिनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें।
1: ईश्वर ने आकाश में लाखों तारे बनाए। इन्हीं तारों में दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा तारा भी था। बड़े तारे को उन्होंने नाम दिया सूरज का और छोटा तारा कहलाया चांद। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया कि वो पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात पर नियंत्रण रखें। अभी चार ही दिन हुए थे और दुनिया अपने उजाड़ रूप से सुंदर अस्तित्व में आ रही थी। अब तक जो कुछ अंधकार में था प्रकाश की किरणों से निखरने लगा था। पांचवे दिन ईश्वर ने ढेरों ढेर जीव जंतुओं की रचना की, पक्षियों को बनाया और उनकी चहचहाहट, पानी में तैरते सुंदर जीव जंतु जो उनकी अपनी ही रचना थी देखकर वे खुशी से झूम उठे।
0: फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए, ये तुम्हें मेरा आशीर्वाद है।
1: प्रभु का आशीर्वाद पाकर पक्षी खुली हवा में सांस लेने लगे, जीव जंतु विचरण करने लगे, लेकिन अभी दुनिया अधूरी थी। एक और महत्वपूर्ण जीव वास्तव में सृष्टि के सरताज की तो रचना की जानी अभी बाकी ही थी। मैं भी इस जीव को देखने का इच्छुक था। छठवें दिन प्रभु मुझसे कहने लगे,
0: अब हम मनुष्य बनाएंगे जो हमारे स्वरूप होगा और जो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, जमीन पर रेंगने वाले सभी जीव जंतुओं पर शासन करेगा।
1: तो प्रभु फिर

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। और आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

मित्रों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथ ही इस समय आप आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वरिता एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम के बारे में एक कविता के द्वारा संकेत देना चाहूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बताती हूँ एक बात महान, पौष्टिक भोजन देता है जीवन दान, करता है स्वस्थ शरीर प्रदान, है इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान, उसी ने दिया है हमें जीवन का वरदान, देखो न व्यर्थ हो उसका ये दान, स्वस्थ शरीर और उत्साही मन से है जीवन महान, लो मेरी बात मान, पौष्टिक भोजन है प्राण समान, उसको तो उच्च सम्मान। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या है। श्रोता, आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य में हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों इन दिनों जब बारिश का मौसम सभी को भिगो रहा है, हमारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें स्वास्थ्य की समस्याओं ने घेर कर रखा होगा। बारिश के दिनों में खासकर उम्र दराज लोगों को जो समस्या होती है वो है जोड़ों में दर्द की, या फिर इसे कहते हैं आर्थराइटिस। जी हाँ, आज के स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम आर्थराइटिस के विषय में ही जानकारी लेंगे। आखिर आर्थराइटिस होता क्या है, हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, या फिर यदि आपको आर्थराइटिस है तब आप आर्थराइटिस के साथ ही स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो साथियों, बारिश के मौसम में जहां हवा में नमी ज्यादा हो जाती है, उस नमी का प्रभाव भी हमारे शरीर के जोड़ों पर, हमारे शरीर की हड्डियों पर पड़ता है। हम सभी ये मान लेते हैं कि बारिश का मौसम मुख्यतः संक्रामक रोगों का मौसम है, लेकिन अक्सर हवा में होने वाली नमी के कारण जो बीमारियां होती हैं या फिर जो तकलीफें होती हैं उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस नमी के कारण शरीर में यदि आर्थराइटिस की शुरुआत हो रही है या पहले से आर्थराइटिस है तब तकलीफें ज्यादा बढ़ती हैं, और यदि आपने अच्छे से अपने जोड़ों का, अपनी हड्डियों का ध्यान नहीं रखा तब हो सकता है कि आर्थराइटिस की शुरुआत आपको भी हो सके। साथियों, यदि जोड़ों में किसी प्रकार की जलन होती है या फिर जोड़ों में दर्द होता है या जोड़ों में सूजन आती है तब इसे कभी भी सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए। ये आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, और खासकर यदि किसी विशेष कारण के चलते जोड़ों में दर्द होता है, जैसे ज्यादा समय तक खड़े रहने के कारण या फिर ज्यादा पैदल चलने के कारण। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ विशेष भोजन कर लेने के बाद जोड़ों में सूजन आ जाती है। साथियों, यही कारण होता है कि हमें देख लेना चाहिए कि शरीर में किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है। यदि हम ये जान पा रहे हैं कि जोड़ों में दर्द या फिर जोड़ों में सूजन किसी विशेष कारण के चलते बार बार हो रहा है तब इसकी डॉक्टरी जांच करवाई जानी जरूरी है। और यदि हम आर्थराइटिस की बात करें जिसमें जोड़ों के दर्द से ही इस रोग की शुरुआत होती है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर आर्थराइटिस कैसे होता है। साथियों, हमारी हड्डियों को उपास्थियां या फिर कार्टिलेज, इनसे सुरक्षा मिलती है जिससे वे बिना किसी रुकावट के सामान्य हलचल कर सकती हैं। लेकिन जब ये कार्टिलेज टूटने लगती है तब हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं, और ऐसा होने से बहुत ज्यादा सूजन और असहनीय दर्द होता है। और यही कारण है कि जिन उम्रदराज व्यक्तियों को घुटनों में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है उसके कारण वे एक ही स्थान पर सीमित होकर रह जाते हैं, और सामान्य रूप से ये कहा जाता है और ये मान भी लिया जाता है कि ये उम्र का असर है। लेकिन यदि हम ये जान ले कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो हमें ज्यादा मदद मिल सकती है। साथियों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर की हड्डियां एक दूसरे से उनके जोड़ों की मदद से जुड़ी होती है और इन्हें सुरक्षा देती हैं उपास्थियां या कार्टिलेज। ये दरअसल शरीर के प्राकृतिक शॉकअप्स के समान होते हैं। हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती हैं ये, और होता यह है कि जब इन कार्टिलेज पर किसी प्रकार की मार पड़ती है, जैसे कोई दुर्घटना हो जाए या फिर व्यक्ति गिर जाए, ऐसे में कार्टिलेज में होती है टूट फूट, और तब से व्यक्ति को जोड़ों में जलन होने लगती है और व्यक्ति और उसके जोड़ आर्थराइटिस के शिकार हो जाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाए या फिर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसे जोड़ों में दर्द होना या फिर किसी विशेष जोड़ में सूजन बने रहना ये चीज लंबे समय तक चलती है। ऐसे में ये समझना चाहिए कि उसकी हड्डियों के ऊपर जो कार्टिलेज की परत थी जिसके चलते हड्डियों को सुरक्षा मिला करती थी वो प्रभावित हो चुकी है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक प्रकार की जोड़ों की बीमारी होती है, और ये आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं वाकई बहुत दर्द से भरी होती है, बहुत असहनीय होती है, और कहा यह जाता है कि आर्थराइटिस असाध्य बीमारी होती है, अर्थात इसका कोई इलाज नहीं होता। साथियों, हड्डियों से जुड़ी कोई भी बीमारी हो वो अपने साथ दर्द तो लाती ही है,
और फिर जब बारिश के मौसम में हवा में नमी ज्यादा होती है, ऐसे में इस बीमारी के कारण होने वाली तकलीफ भी सामान्य से ज्यादा होती है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आखिर आर्थराइटिस कितने प्रकार की होती है। साथियों, आर्थराइटिस के अनेक प्रकार होते हैं जिसमें उनके लक्षण अलग अलग होते हैं, उसमें होने वाली तकलीफें अलग अलग होती हैं और उनके इलाज भी अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा जो आर्थराइटिस सामने आता है वो होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस का सबसे सामान्य प्रकार होता है और इसमें प्रमुख रूप से घुटने के जोड़, कूल्हे, हाथ, उंगलियां, मेरुदंड और कई बार रोगी के कंधों पर भी, मतलब वहां के जोड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। साथियों, इस बीमारी में सामान्य रूप से कार्टिलेज में समस्या होने के कारण ही दर्द होने लगता है या फिर इसके लक्षण सामने आने लगते हैं, लेकिन इसमें आपस में हड्डियां भी रगड़ खाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जो दर्द होता है साथियों, उसके चलते रोजाना का काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और दैनिक जीवन के सभी कामों को ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। ये देखा गया है कि यदि रोगी का वजन ज्यादा है और खासकर ज्यादा वजन लंबे समय तक बना रहता है, जीवन शैली में यदि व्यायाम को जरा भी महत्व नहीं दिया जाता है और आराम तलब जीवन शैली होती है, तब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है और कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस आनुवांशिक भी देखा गया है। ज्यादा वजन के कारण हड्डियों को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है और ये उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। साथियों, जोड़ों के दर्द या फिर आर्थराइटिस की बात करें तो जोड़ों का कमजोर हो जाना, खासकर उनमें बार बार दर्द होना, इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यदि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तब इसकी जांच करने के लिए हड्डियों के घनत्व की जांच की जाती है और उस घनत्व की जांच को करने के साथ ही हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं। इस दौरान यदि इलाज की जरूरत पड़े तो ज्वाइंट एस्पायरेशन भी किया जा सकता है, जिसमें चिकित्सकों द्वारा जोड़ों के आसपास जो श्लेषक द्रव होता है उसे निकालकर उसकी जांच की जाती है। साथियों, हम सभी की ये सोच होती है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती रहती है वैसे वैसे छोटी छोटी बीमारियां तो लगी ही रहती है, ऐसे में इनकी जांच करवानी जरूरी नहीं है और यही कारण है कि हम अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते रहते हैं और ये आगे चलकर आर्थराइटिस जैसे गंभीर स्वरूप को लेकर हमारे सामने आ जाता है। हम सभी को चाहिए कि इस प्रकार के लक्षण यदि लंबे समय तक बने रहते हैं तो उनकी अनदेखी कभी नहीं की जानी चाहिए। साथियों, यदि हम चाहते हैं कि हम आर्थराइटिस से बचे रहें या फिर आर्थराइटिस हो जाने के बाद भी दर्द और परेशानी से दूर रहें, तो इसके लिए जोड़ों को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाने वाला व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक वैकल्पिक चिकित्साएं भी होती हैं, जैसे पैराफिन मोम का इलाज या फिर ठंडे पैक लगाया जाना। आर्थराइटिस की गंभीरता के आधार पर शल्यक्रिया या सर्जरी का निर्णय भी लिया जा सकता है, लेकिन सर्जरी या शल्यक्रिया की नौबत आने दे, इससे ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम अपने आप को सही और स्वस्थ स्थिति में रखें। साथियों, स्वस्थ होने के बावजूद यदि जोड़ों के दर्द के कारण हमें अकर्मण्य हो जाना पड़े तो वाकई सारी सक्रियता समाप्त हो जाती है, व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा होने लगता है। अब हम एक और प्रकार के आर्थराइटिस की बात करते हैं, ये भी काफी सामान्य और जाना पहचाना नाम है, जिसे कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। दरअसल प्रतिरोधक बीमारी के कारण जोड़ों में जब दर्द होता है, अर्थात शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र द्वारा ही शरीर के ऊतकों पर जब प्रहार किया जाता है, तब इसे रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। साथियों, इस बीमारी का सबसे गंभीर पहलू ये होता है कि इसमें दर्द केवल जोड़ों पर ही नहीं होता, लेकिन उससे जुड़े हुए अन्य अंगों जैसे टेंडोम, लिगामेंट्स और पेशियों पर भी होता है। यदि इसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो अनेक प्रकार की विकृतियां सामने आ सकती हैं। साथियों, जैसा कि हमने अभी देखा कि आर्थराइटिस में प्रभाव सिर्फ जोड़ों पर ही नहीं संबंधित अंगों पर भी होता है और यही कारण है कि हमें इसके बारे में जानकारी और लक्षणों के मालूम होने के चलते इससे बचना आसान हो जाता है।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पहचान दर्द और जोड़ों पर सूजन के प्रकार, मरीज का चिकित्सकीय इतिहास और रक्त की जांच के आधार पर किया जाता है, जिसमें ब्लड रूमेटॉइड कारक और सिट्रुलाइन एंटीबॉडी के उपस्थित होने पर इसे सही माना जाता है। इसके लिए एक्सरे भी किया जाता है, जिसमें रूमेटॉइड नोड्यूल्स के होने का पता चल सकता है। साथियों, यदि हम इलाज की बात करें तो दुर्भाग्य से इन मरीजों के लिए कोई ज्ञात चिकित्सा मौजूद नहीं है। इसमें दर्द और सूजन को कम करने का उपाय किया जाता है। इस बीमारी के लिए चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली कुछ दवाओं में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं। आराम करना, दवाइयां और फिजियोथेरेपी के जरिए जोड़ों को मजबूत करने के व्यायाम से मरीज को सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सकती है। इस दौरान मरीज के साथ सामान्य व्यवहार किया जाना जरूरी है, क्योंकि शारीरिक परिस्थिति के चलते ये संभव है कि मरीज किसी पर आश्रित रहे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। मित्रों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप मेरे साथ यानी कि आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वरदास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी और प्रेरक लगी। क्या आप नहीं सुनना चाहोगे? चलो, वक्त न जाया करते हुए मैं आपको सुनाती हूँ। एक किसान के पास एक बूढ़ा गधा था। एक दिन किसान का गधा कुएं में गिर गया। वह गधा घंटों जोर जोर से रोता रहा। किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि गधा काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था, इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही गधे की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह गधा एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और उसके ऊपर चढ़ाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह गधा कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाए और मदद के सारे रास्ते बंद हो जाए, तो उस वक्त हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए और स्वयं पर भरोसा रखते हुए ठंडे दिमाग से उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। दोस्तों, अब एक कहानी सुनकर आपको एक और कहानी सुनने का मन तो कर ही रहा होगा ना? तो साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत और कहानी का शीर्षक है दोस्तों का फर्ज और प्रस्तुत करता है मर्लेन जेकब।

दोस्ती का फर्ज। करीम और किशन पड़ोसी थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। करीम के अब्बा की कपड़ों की दुकान थी और उसकी माँ गृहिणी थी। किशन के मम्मी पापा दोनों अच्छे पदों में कार्यरत थे। उसके पापा इंस्पेक्टर थे और मम्मी बैंक में काम करती थी, इसीलिए किशन दिन में घर पर अकेला होता था। उसके मम्मी पापा दोनों शाम को ही घर आते थे। करीम अक्सर दोपहर में स्कूल से आने के बाद किशन के घर चला जाता था। वहाँ पर वे दोनों तरह तरह के खेल खेलते और बैठकर बातें किया करते। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी गप्पे सुनाते थे। करीम किशन के घर से अच्छी तरह परिचित था। किशन के पापा के पास एक पिस्तौल थी जो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ली हुई थी। वे उस पिस्तौल को अपने बेडरूम के एक मेज के ड्रॉस पर रखते थे। अक्सर किशन और करीम घर में चोर पुलिस का खेल खेलते थे। एक दिन जब किशन दोपहर में घर पर अकेला था, तभी कुछ बदमाश उसके घर में घुस आए। किशन डर के मारे बेड के नीचे छिप गया। संयोग वंश करीम की मम्मी ने उसे बाजार से कुछ सामान लेने को कहा। करीम जब किशन के घर के सामने से होकर गुजर रहा था तो उसे वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वह किशन के घर की तरफ मुड़ गया। उसने खिड़की से अंदर झाँक कर देखा तो बंदूकधारी बदमाश किशन के घर में लूटपाट कर रहे थे। उसने किशन की मदद करने का निश्चय किया। करीम ने सूझबूझ से काम लेते हुए किशन के घर के पीछे दरवाजे से उसके घर में प्रवेश किया। वह बदमाशों से नजर बचाते हुए किशन के पापा के बेडरूम में गया और उसने ड्रॉज में रखी उनकी पिस्तौल निकाली। करीम को देखकर किशन को थोड़ी हिम्मत बंधी। वह बेड के नीचे से बाहर निकल आया। वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। डर के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे ढांढस बंधाते हुए करीम बोला, किशन डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम पीछे के दरवाजे से निकलकर पास में ही स्थित कोतवाली में जाकर पुलिस को खबर कर दो। जब तक मैं इन दोनों बदमाशों को रोके रखूंगा। मेरे रहते कोई मेरे दोस्त का बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब तुम जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। किशन पीछे के दरवाजे से निकल गया। करीम हाथों में पिस्तौल थामे दरवाजे की आड़ लेकर बदमाशों पर गोली चलाने लगा। इस अचानक हुए हमले से बदमाश सकपका गए। उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन ले ली और करीम पर चिल्लाते हुए बोले, ए छोकरे, यह पिस्तौल चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे हमारी तरफ फेंक दो। करीम बोला, मुझे पिस्तौल चलाना अच्छी तरह आता है, मैंने एनसीसी में बंदूक चलानी सीखी है, समझे? अब तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। यह कहकर उसने एक और गोली चला दी। जवाब में दोनों बदमाशों ने भी गोलियां चला दी। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। करीम की एक गोली एक बदमाश के पैर पर जा लगी। इससे दोनों बदमाश गुस्से में बेकाबू हो गए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली करीम के बाह में जा लगी, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। हालांकि उसके पिस्तौल की गोलियां खत्म हो गई थी, पर उसने पिस्तौल को थामे रखा ताकि बदमाशों को बेवकूफ बनाया जा सके। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। किशन ने कोतवाली से अपने पापा को भी सूचित कर दी, अतः वे भी घर पहुंच गए थे। उन्होंने करीम को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे तुरंत अस्पताल ले गए। करीम गोली लगने से बेहोश हो गया था। किशन करीम की यह दशा देखकर फफक फफक कर रो पड़ा। उसके पापा ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, बेटा करीम को कुछ नहीं होगा, बस तुम थोड़ा हिम्मत रखो। डॉक्टर ने करीम की बाह से गोली निकाल दी। कुछ देर बाद करीम होश में आया तो किशन दौड़कर उसे गले से लिपट गया। वह बोला, दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रिया किन शब्दों से अदा करूं? यदि तुम न होते
तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारे जैसे दोस्त, कहते कहते उसके आंसू बह निकले। करीम बोला, अरे किश्नु, तू रोता क्यों है रे? तू मेरा दोस्त है और एक दोस्त की हिफाजत करना दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। हाँ बेटा, करीम सही कह रहा है, करीम के अब्बा ने कहा। यह घटना जिसने भी सुनी वह उनकी दोस्ती की प्रशंसा किए बिना न रह सका।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत और कहानी का शीर्षक था दोस्तों का फर्ज और प्रस्तुतकर्ता थी मर्लिन जेकब। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक बाल गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, वक्त की सुइयां अब इशारा कर रही है और हमें संकेत दे रही है कि वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। मिलती हूँ कुछ समय बाद कुछ नए कार्यक्रमों के साथ। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अब एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: आपने वादा किया था मुखिया जी कि बिहार के किसान किस तरह से नोट की चोट से जख्मी हो रहे हैं, उसके बारे में आपने कहा था कि इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मौसम धान की कटनी और रबी की बुआई का है।
1: यहाँ की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है।
0: अच्छा अच्छा।
1: नोटबंदी के कारण धान की कटनी और रबी की खेती की तैयारी में जुटे किसानों का समय बैंकों के चक्कर लगाने में बीत रहा है।
0: जी जी।
1: छोटे नोटों की कमी के कारण धान की कटनी के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बड़े नोट खाद और बीज के दुकानदार ले नहीं रहे। किसान छोटे नोटों के अभाव में आलू के बीज नहीं खरीद पा रहे हैं। यही तो हाल है।
0: जी जी। बिहार के किसानों को कितनी मात्रा में उर्वरक की जरूरत पड़ती है और अभी तक कितनी उर्वरक की बिक्री संभव हो पाई है? खासकर इसका पता चलेगा कि नोटबंदी की मार हमारे किसान भाइयों पर किस कदर से हावी है।
1: बिहार के किसानों को 3,00,000 टन यूरिया और डीएपी खाद चाहिए।
0: जी।
1: और अभी तक 48,000 टन यूरिया और 20,000 टन डीएपी की बिक्री हो पाई है।
0: जी जी।
1: अब इसी से अनुमान लगा लीजिए।
0: जी।
1: इस महीने में 30 टन आलू के बीज सड़ने के कगार पर हैं, क्योंकि आलू अनुसंधान केंद्रों में कोई खरीददार आ ही नहीं रहे।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, क्योंकि किसान भाई तो अधिकांशतः बीज जो खरीदते हैं वो खुद ही बाजार से ही खरीदते हैं, और बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को जानकारी भी नहीं है कि वे जाकर के कृषि विश्वविद्यालयों से जाकर के आलू के बीज या किसी अन्य फसल के बीज की खरीदारी कर सकें। सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड की स्थिति जो है वो भी काफी नाजुक बनी हुई है।
1: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सहकारी समितियां कर्ज नहीं दे रही हैं। पिछले एक हफ्ते में बीज और कीटनाशक की खरीद में 45% तक की गिरावट आई है। अभी तक मात्र 10% ही आलू की बुआई हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हुई है।
0: जी जी।
1: 50% असर पड़ा है मटर और सरसों की बुआई में। 15 दिसंबर तक अगर हालात में सुधार नहीं हुए तो उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
0: ऐसा कहा जा रहा है कि नोटबंदी के कारण उत्तराखंड के किसानों की हालत बहुत खराब है मुखिया जी। वहां के किसानों की मुख्य समस्या

0: सहकारिता मंत्री ने कहा है कि खरीफ मौसम 2016-17 में पारदर्शी प्रक्रिया से धान की खरीद होगी।
1: अच्छा,
0: इसके लिए सभी किसानों का निबंधन किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय ने धान की खरीद के लिए किसानों के ऑनलाइन निबंधन हेतु सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है।
1: किस तरह से निबंधन की व्यवस्था की गई है? क्या सभी किसानों को निबंधन करने की योजना है या फिर वैसे किसानों का निबंधन किया जाएगा जो अपनी ही जमीन पर खेती करते हैं?
0: अब मंत्री महोदय ने तो बताया है कि ये सॉफ्टवेयर बिहार सरकार की सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, जिला स्तरीय वेबसाइट पर मौजूद रहेगा।
1: अच्छा,
0: इसमें बड़े किसानों के लिए और छोटे, लघु और सीमांत किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं उनके अलग अलग निबंधन की व्यवस्था की गई है।
1: अच्छा,
0: सामान्य किसानों से 150 क्विंटल प्रति किसान तथा बटाईदार और सीमांत किसानों से 50 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से खरीद होगी।
1: इसकी प्रक्रिया क्या होगी? कहने का मतलब है कि ये इसके लिए किसानों को क्या करना होगा?
0: सामान्य किसानों को ऑनलाइन निबंधन के लिए उनका फोटो, मोबाइल नंबर, आधार नंबर या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं जमीन की विवरणी देनी होगी।
1: जी,
0: वहीं बटाईदार किसानों को मात्र स्वघोषणा पत्र और फोटोयुक्त पहचान पत्र ही देना होगा।
1: अच्छा,
0: इस सॉफ्टवेयर को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने विकसित किया है।
1: जी,
0: किसान अपने क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय स्थित किसान निबंधन केंद्र से भी ये काम करा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा सीधे आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। इस मौके पर सहकारिता विभाग के निबंधक एवं अन्य सभी पदाधिकारी मौजूद थे।
1: बहुत इलाकों से ऐसी शिकायतें आ रही है कि धान खखड़ी हो गई है।
0: हाँ,
1: वैसे किसान जिनकी धान खखड़ी हो गई है उनको किस तरह की राहत देने की बात चल रही है?
0: देखिए वीरेंद्र जी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है,
1: हाँ हाँ,
0: कि कुछ प्रखंड के किसानों के खेत में लगी हाईब्रिड धान की फसल 90% खखड़ी निकलने के बाद पदाधिकारी इसकी जांच करने पहुंचे हैं।
1: अच्छा,
0: फसल को उन्होंने देखा और कुछ नमूने भी अपने साथ ले गए। आगे की कार्रवाई अब क्या होगी, किसानों की नजर इसी पर लगी हुई है।
1: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि खरीफ विपणन मौसम 2016-17 के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार के द्वारा कितना निर्धारित किया गया है?
0: धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 1470 रूपये प्रति क्विंटल, यानी 1470 रूपये प्रति क्विंटल, और ए ग्रेड धान के लिए 1510 रूपये प्रति क्विंटल, यानी 1510 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
1: जी,
0: धान की अधिप्राप्ति राज्य के पैक्स व्यापार मंडलों के द्वारा किया जाएगा। धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम को पूर्ण पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु किसानों के ऑनलाइन निबंधन की व्यवस्था की गई है।
1: क्या सभी किसानों को निबंधन की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा मुखिया जी? क्या ऐसी बात है?
0: स्वयं की भूमि अथवा दूसरे की भूमि पर धान की खेती करने वाले राज्य के सभी किसानों को ऑनलाइन निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
1: अच्छा,
0: तभी उनके धान की अधिप्राप्ति होगी।
1: जी,
0: कृषकों को ऑनलाइन निबंधन की सुविधा सहकारिता विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्रेशन लिंक कर क्लिक कर विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्म में अपनी विवरणी भर सकते हैं।
1: मान लिया जाए कि जो किसान स्वयं अपनी भूमि पर खेती करते हैं या फिर जो किसान दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं,
0: हाँ,
1: उन दोनों के लिए निबंधन की प्रक्रिया क्या एक समान होगी?
0: सबसे पहली बात यह है कि सभी किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर या अन्य फोटोयुक्त पहचान कार्ड, बैंक लेखा विवरण एवं जमीन की विवरणी देना अनिवार्य होगा।
1: जी,
0: अगर किसान अपनी भूमि पर खेती कर रहे हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक कागजात जो देने होंगे वो तो है अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र, LPC, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, जमीन की रसीद की फोटोकॉपी तथा बैंक का पासबुक, ये सब देना होगा।
1: अगर जो किसान दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी? उनको कागजात के तौर पर क्या कुछ देना होगा?
0: अगर किसान दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक कागजात जो देने होंगे वो है अपना फोटो,

0: पहचान पत्र, आधार कार्ड या अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक, धान उत्पादन में उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा, उसका क्षेत्रफल से संबंधित स्व घोषणा पत्र, इस घोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत के किसान सलाहकार की अनुशंसा, ये अनिवार्य होंगे।
1: अच्छा अच्छा, जो किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको सरकार की ओर से क्या कुछ सबूत के तौर पर कोई रसीद वगैरह भी दिए जाएंगे मुखिया जी?
0: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही ढंग से भरने के उपरांत सफलतापूर्वक पंजीकृत होने संबंधी पावती रसीद पोर्टल से प्राप्त होगी।
1: अच्छा।
0: जिसे प्रिंट कर सुरक्षित अपने पास रखें। ये पंजीकरण संख्या आवेदक द्वारा दिए गए मोबाइल पर भी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी।
1: जी।
0: अधिप्राप्ति कार्य में वांछित सहयोग एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियां एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
1: जी।
0: संबंधित सभी पदाधिकारी का संपर्क संख्या सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी नंबर।
1: जी।
0: साथ ही मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या पर भी संपर्क किया जा सकता है।
1: तो क्या ऐसा माना जाए मुखिया जी कि किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाने हेतु हमारी बिहार सरकार जो है वो काफी दृढ़ संकल्पित दिखती है?
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा मान सकते हैं
1: मुखिया जी। अगले कार्यक्रम में फिर खेती किसानी से संबंध में आपसे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे और खास करके आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी और निःशुल्क वितरण जो है और उस पर जो अनुदान देने की प्रक्रिया चल रही है वो किस तरह की योजना है सरकार की ओर से और उसका कितना लाभ हमारे पशुपालकों को मिलने वाला है। तो अभी हम लोग चलते हैं मुखिया जी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। साथियों आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, आपका भी
2: और अपने श्रोताओं का भी।
0: श्याम जी, अक्सर हाँ ऐसा देखा जाता है कि बिना दोष साबित हुए ही किसी को भी अपराधी मान लिया जाता है। कानून की नजर में जब तक आरोप साबित न हो किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता, लेकिन समाज की सोच अक्सर ऐसी नहीं होती, जिसका अंजाम कभी कभी बहुत बुरा होता है। जैसा कि पूर्व आईएएस बीके बंसल साहब के आत्महत्या के मामले में हुआ है।
2: देखिए, पूर्व आईएएस बीके बंसल ने आत्महत्या क्यों की ये तो अभी हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते।
0: जी जी।
2: लेकिन ये इतना छोटा विषय भी नहीं है कि इसे यूं ही दरकिनार कर दिया जाए।
0: जी,
2: यहाँ सिर्फ एक आरोपित पूर्व आईएएस की आत्महत्या का मामला नहीं है, ये एक भरे पूरे परिवार के असमय और अनायास खत्म हो जाने का मामला भी है।
0: जी बिल्कुल।
2: इस मामले को कोरे अवसाद में की गई आत्महत्या से अलग करके देखने की जरूरत है।
0: इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके बहाने उन हालात की भी पड़ताल करने की जरूरत है जो ऐसी आत्महत्याओं की जमीन तैयार करते हैं। बंसल साहब और उनके पुत्र योगेश बंसल की आत्महत्या की इस ताजा घटना के साथ 2 माह पूर्व घूस लेने के आरोप में बंसल साहब की गिरफ्तारी हुई थी और इसके ठीक बाद पत्नी सत्यबाला और पुत्री नेहा की आत्महत्या के मामले को भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। कपूर साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: देखिए वीरेंद्र जी, आत्महत्या का संबंध सीधे तौर पर हमारी सामाजिक जटिलताओं से है।
0: जी,
1: समाज की असहिष्णुता और उपेक्षा से उपजे भय व सुरक्षा बोध से है। कई शोध कहते हैं कि आत्महत्या कभी किसी तरह के पक्षपात से उपजे हालात की परिणति होती है तो कभी अपने अंदर के हीनता बोध से, कई बार तो विशिष्टता बोध से भी। दरअसल हीनता बोध की चरम परिणति ही है।
0: तो क्या इसके पीछे के कानूनी मसलों को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए? एक ईमानदार अफसर पर इस तरह का दोषारोपण किया जाता है, वो भी बिना किसी सही जांच पड़ताल किए बिना।
2: इस संदर्भ में रघुवीर सहाय की बहुचर्चित कविता आत्महत्या के विरुद्ध की एक पंक्ति है, हर दिन मनुष्य से एक दर्जा नीचे रहने का दर्द।
0: अच्छा,
2: यह अकेली पंक्ति आत्महत्या के पीछे के तमाम कारकों की व्याख्या कर देती है। ये अनायास नहीं है कि जिन हालात में और जिस तरीके से एक पूरा परिवार खत्म हुआ उससे सहानुभूति और संवेदना विदा हो गए, इस परिवार की ओर मुड़ गए। यहाँ हमारा आशय बंसल साहब को आरोप मुक्त करना या उन्हें कोई प्रमाण पत्र देना नहीं है, उन जटिल हालात पर चर्चा करना जरूरी है जो कुछ लोगों पर इस तरह का दबाव बना देते हैं।
0: हमारे समाज का समूचा ताना बाना कुछ ऐसा ही है कपूर साहब
1: जी,
0: कि किसी पर एक छींटा पड़ा नहीं कि पूरे समाज को वह कीचड़ से सराबोर हुआ सना हुआ दिखाई देने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: एक ही पल में जीवन भर की कमाई और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, और कई बार यह सच भी होता है और कई बार यह सच नहीं भी होता है।
1: देखिए वीरेंद्र जी, हम समाज में जिस धैर्य की अपेक्षा करते हैं अक्सर नहीं दिखाई देता। जिस तरह पत्नी और बेटी ने बंसल की गिरफ्तारी के चंद घंटों के अंदर बहुत बड़े अपमान का नोट लिखकर आत्महत्या की, वो बड़े सामाजिक संकट की ओर इशारा करती है।
0: जी जी।
1: एक अहम बात हमारी पुलिस प्रणाली, जांच प्रक्रिया और न्याय प्रणाली पर भी गौर करने की है। क्या ये उचित नहीं होगा कि ऐसे मामलों में जांच प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाए?
0: जी बिल्कुल।
1: ऐसे तमाम मामले आते रहते हैं जब किसी शिकायत पर पुलिस किसी को उठा लेती है, प्रताड़ित करती है और अदालत उसे जेल भेज देती है। बाद में वो निर्दोष साबित होता है और व्यवस्था से जुड़े लोग शर्मिंदगी तक महसूस नहीं करते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है कपूर साहब
1: जी।
0: ऐसे मामले में क्या पुलिस प्रणाली और न्याय व्यवस्था में आप सुधार की गुंजाइश नहीं देखते हैं श्याम जी? क्या हमारी धीमी मंथर गति से घटित होने वाली ये न्याय प्रणाली का यह एक हिस्सा नहीं है?
2: देखिए वीरेंद्र भाई, बिल्कुल ऐसे में हमारी न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रणाली दोनों में सुधार की जरूरत है।
0: जी बिल्कुल,
2: जरूरत तो ये भी है कि ऐसे किसी मामले में बिना पुख्ता जांच के गिरफ्तारी ही न हो
0: जी,
2: और गिरफ्तार होने की स्थिति में मुकदमा इतनी तेजी से चले कि बरी होने के हालात में जीवन भर कलंक ढोने के बाद बरी होने का दंश न झेलना पड़े
0: जी।
2: क्योंकि हमारा कानून भी यही मानता है कि हर वो व्यक्ति जिस पर कोई आरोप है वो अपराधी नहीं होता
0: जी।
2: लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा समाज इस बात को दूसरे नजरिए से देखता है और यही विडम्बना कई लोगों पर भारी पड़ती है।
0: न्यायालय की भी अपनी मजबूरी है कपूर साहब, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखिए ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अब तक अशोभनीय तकरार जो है वो बरकरार है। एक तरफ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी है तो दूसरी तरफ वाद विवाद का दौर जारी है, कोई सार्थक पहल तक नहीं की जा रही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला किसी के अहंकार और प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बात को तो मैं साफ तौर पर मानता हूँ कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जारी तकरार हमारे लोकतंत्र के लिए अपशकुन है
0: जी।
1: इस तकरार के लिए जिम्मेदार कौन है? स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की प्राण वायु है। न्यायपालिका को स्वतंत्र और जीवंत बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही न्यायपालिका को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।
0: अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत
1: जी
0: विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कुछ न्यायाधीशों का नाम का जो लिस्ट है वो सरकार के पास भेजा था
1: जी।
0: उसका क्या हुआ श्याम जी?
2: उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम में जिन उच्च न्यायाधीशों के नाम थे
0: जी,
2: उनकी नियुक्ति के लिए 77 नामों की एक सूची थी
0: जी।
2: केंद्र सरकार को वो सूची भेजी गई थी। सरकार ने इसमें 43 नामों को अपनी टिप्पणियों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया
0: जी। जी
2: कॉलेजियम ने एक सप्ताह के अंदर सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए उन सभी नामों की दोबारा पुष्टि कर दी। एक निर्वाचित सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता।
0: सवाल यह भी उठता है कपूर जी कि जजों की नियुक्ति का अधिकार किसका है, कार्यपालिका का या फिर न्यायपालिका का? मूल विवाद इसी बात को लेकर है।
1: देखिए, उच्चतम न्यायालय ने 1993 में सेकंड जजेस केस में व्याख्या के जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका से छीन लिया था।
0: अच्छा,
1: इस निर्णय की वैधता पर बड़े बड़े विधिवेताओं ने सवाल उठाया है। इसके अलावा कॉलेजियम के कामकाजी पर स्वयं कई न्यायाधीशों ने सवाल खड़े किए हैं। अभी न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने यह कहकर कॉलेजियम की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया कि इसके काम में पारदर्शिता नहीं है।
0: अच्छा,
1: हाल में सेवामुक्त हुए न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह ने भी ऐसा आरोप लगाया। सेकेंड जजेस मामले में निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति जे एस वर्मा ने स्वयं बाद में कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की सलाह दी।
0: तो क्या ऐसा माना जाए श्याम जी कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति का जो अधिकार
1: जी
0: जब से अपने हाथ में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने
1: जी,
0: तभी से इस तरह का टकराव शुरू हुआ है श्याम जी?
2: ये बात बिल्कुल सही है कि जब से उच्चतम न्यायालय ने नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में लिया है तभी से सरकार के अंदर इसको लेकर असंतोष है।
0: अच्छा,
2: मगर 2014 में पहली बार सरकार ने संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान कर इसे बदलने का प्रयास किया
0: जी। जी
2: लेकिन उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से इस संविधान संशोधन को खारिज कर दिया।
0: अच्छा,
2: हालांकि प्रस्तावित आयोग के 6 सदस्यों में से 3 उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और बाकी में एक विधि मंत्री और 2 विशिष्ट व्यक्ति।
0: इसको खारिज करने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का क्या कहना था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को आखिर क्यों खारिज किया गया? कुछ तो रहा होगा ना कपूर साहब?
1: जी, न्यायालय का तर्क है कि विधि मंत्री किसी एक विशिष्ट सदस्य की मदद से न्यायाधीशों के सुझाए किसी नाम को रोक सकता है। यहाँ ये सवाल है कि क्या संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ जजों की है? बेशक उच्चतम न्यायालय संविधान का मुख है, पर विधायक, सांसद और मंत्री भी जज की तरह एक शपथ लेते हैं। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही है जितनी जजों की।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, ये भी सही है कि जजों की नियुक्ति का एक मापदंड होता है, लेकिन संसद में जो चुन कर आते हैं उनका मापदंड बिल्कुल सीमित है। यहाँ पर उनकी शैक्षणिक योग्यता को मापदंड के रूप में न के बराबर रखा गया है।
0: कपूर साहब और श्याम जी, इस बात की आशा की जानी चाहिए कि दोनों पक्षों में टकराव के माहौल हैं, उसे जल्दी से जल्दी आपसी सहमति के आधार पर दूर कर दिया जाए।
2: हाँ।
0: ताकि देश की जनता को न्याय सुनिश्चित करने में अधिक विलम्ब का सामना न करना पड़े। अब प्रश्नों का रुख हम दूसरी तरफ मोड़ना चाहेंगे और यह मुद्दा भी काफी दिनों से लंबित है, काफी दिनों से चलता आ रहा है, और वह है जंगलों पर अधिकार से दूर होते आदिवासी। परियोजना निर्माण के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैं बात कर रहा हूं खासकर छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के बारे में।
2: देखिए, झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति दिए जाने का विरोध थम नहीं रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही इन संशोधनों के तहत सरकार को आदिवासियों के जमीन के अधिग्रहण का अधिकार मिल जाएगा।
0: जी जी।
2: और आदिवासियों की कृषि योग्य भूमि का औद्योगिक इस्तेमाल संभव हो जाएगा।
0: नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आंकड़ों में किस बात का खुलासा किया गया है कपूर साहब? क्या यह एक्ट उनके दिनचर्या को प्रभावित कर देगा या फिर उनकी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान को क्षति पहुंचाएगा? किस बात की ओर इशारा किया गया है?
1: देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति समूह लगभग 32% की भागीदारी निभाते हैं।
0: जी।
1: जिनकी सभ्यता व प्रथाओं से राज्य की विशेष सांस्कृतिक पहचान भी बनी है। वैसे झारखंड ही नहीं वरन अन्य कई राज्य हैं जहां आदिवासियों का अस्तित्व संकट में है।
0: जी।
1: दिन प्रतिदिन इनकी कम होती आबादी इस तथ्य को मजबूत करती है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जनजाति विशेष के लिए बनाई गई नीति और कार्यक्रमों से इनका कायाकल्प नहीं हो पाया है।
0: हमारे यहाँ पहले जो फॉरेस्ट एक्ट 1865
1: जी
0: और 1878 था
1: जी,
0: उसमें किस तरह के प्रावधान थे और अभी जो आदिवासियों का वन संपदाओं पर अधिकार की जो बात की जा रही है
1: जी,
0: वह उस एक्ट में था या नहीं? श्याम जी,
2: फॉरेस्ट एक्ट 1865 और 1878 के तहत बिना अनुमति के जनजातियों द्वारा वन उत्पादों के उपयोग तथा उपभोग को गैरकानूनी बनाया गया था।
0: अच्छा अच्छा।
2: विभिन्न स्तरों पर लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद आदिवासियों के अधिकारों की बात पर चर्चा संभव हो पाई।
0: जी जी।
2: वर्ष 2006 में अनुसूचित जनजाति और वनों में रहने वाले अन्य परंपरागत निवासियों से जुड़ा कानून संसद द्वारा पारित किया गया। वन अधिकार कानून के लागू होने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों में निवास करने वाले परिवारों को मूलभूत आजीविका का आधार प्राप्त हुआ।
0: इस कानून के बन जाने के बाद उनके जीवन स्तर में किस तरह के बदलाव आने की संभावना नजर आती है कपूर साहब?
1: इस कानून के बाद स्थानीय निवासियों को मालिकाना हक जैसे अधिकार प्राप्त करने का अवसर भी मिला।
0: जी।
1: अब तक 25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा ऐसी जमीन का मालिकाना हक जैसे आवंटित किया जा चुका है। ऐसे कदमों से जनजाति समूहों में सरकार के प्रति विश्वास का संचार तो जरूर हुआ, लेकिन ये एक्ट भी आदिवासियों के अधिकारों को पूरी तरह से संरक्षित कर पाने में नाकामयाब रहा। ये व्यवस्था भूमि अधिग्रहण कानून के अधीन है जो आदिवासियों को भूमि का मालिकाना हक मात्र रखने देता है।
0: कपूर साहब और श्याम जी, इस एक्ट के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, फिर मुलाकात होगी तो आदिवासियों से संबंधित यह जो महत्वपूर्ण विधेयक है इस पर चर्चा जारी रहेगी। इस जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपको भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: स्वामी।
1: साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। वार्ता के संकलनकर्ता स्वर्गीय इंदु संतोष और प्रस्तुतकर्ता है संतोष जोशी।

व्यक्ति विशिष्ट के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता पंडित गोविंद वल्लभ पंत, संकलनकर्ता इंदु संतोष, प्रस्तुतकर्ता संतोष जोशी। पंत जी के संबंध में नेहरू जी ने कहा था, वो काफी ऊंचे आदमी थे, अर्थात वो साधारण भीड़ में से नहीं थे। उनमें धैर्य बहुत था और वो प्रायः गुस्से में कभी नहीं आते थे। यदि कभी आते भी तो पता ही नहीं चलता था। ये ताकत की निशानी है, गुस्से में न बहना, सोच समझकर बात करना, ये बहुत ही बड़ा गुण है जो हर किसी में नहीं होता। पंत जी का दिमाग बहुत तेज था, वो बहुत कल्चर्ड थे। एक बार उन्हें कोई थोड़ी अप्रिय घटना के संबंध में कोई कठोर बात कहनी थी तो उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी को वहां से हटा दिया और बोले, भाई तुम्हारी ये बात ठीक नहीं। वैसे किसी व्यक्ति ने पंत जी को कुमाऊं का चीता भी कहा था। बात यह है कि जब आजादी से पहले विभिन्न प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने थे तो पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब उससे पहले वकालत के दिनों में वो जहां तक वश चलता अंग्रेज अफसरों की नहीं चलने देते थे। वे तीक्ष्ण बुद्धि के धनी और चीते की तरह साहसी थे। वो तो अपनी भव्य काया, सुडौल शरीर, प्रसन्न चेहरे से कुछ ही क्षणों में दूसरे का मन मोह लेते थे। पंत जी के पुरखे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, पर बद्रीनाथ की यात्रा के समय उनकी विद्वत्ता और सूझबूझ से प्रभावित होकर अल्मोड़ा के राजा ने उन्हें अपने पास बसने को कहा और वो वहां चले गए। पहले वो अल्मोड़ा के खूंट नामक स्थान पर बसे, पर बाद में तो सारा कुमाऊं प्रदेश उनकी नैतिकता और पवित्र आचरण के कारण उन्हीं का हो गया। पंत जी के पिता मनोरथ पंत राजस्व विभाग में काम करते थे, इसलिए वो प्रदेश में घूमते रहते थे। इसी वजह से पंत जी को नाना बद्री प्रसाद जोशी के पास ही रहने का अधिक अवसर मिला। 10 दिसंबर 1887 को पंत जी का जन्म हुआ। उन्हें बचपन से ही राजनीति में रुचि थी। वो बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए राय बहादुर बद्रीदास अपने नाती का बड़ा ध्यान रखते थे। पंत जी मैट्रिक के बाद इलाहाबाद के सेंट्रल म्योर कॉलेज में दाखिल हुए। विद्यार्थी काल से ही विद्रोही स्वभाव के थे वे। भारत के अनेक हिस्सों में निर्धन लोगों से बेगार लेने की प्रथा प्रचलित थी। पहाड़ी प्रदेशों में गरीब मजदूरों से जबरदस्ती बेगार कराई जाती थी। पंत जी का नाम वकालत में खूब चमक रहा था और उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु वो इस बेगार प्रथा के विरुद्ध थे और उन्होंने इसके लिए विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और इसे बंद करवाकर ही दम लिया। 1920 और 21 के असहयोग आंदोलन में अनेक भारतीय नेताओं की जीवनधारा ने एक नया मोड़ ले लिया था। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे और वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया था। पंत जी ने भी वकालत छोड़ दी और पूरी तरह राजनीति में भाग लेने लगे। 1935 में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए तो पंत जी उत्तर प्रदेश असेंबली में कांग्रेस दल के नेता चुने गए। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, परंतु इन दिनों असली सत्ता गोरे अधिकारियों के हाथ में थी। परंतु पंत जी जैसे चतुर व्यक्तियों ने इस स्थिति को बदल दिया।
पंत जी गोरे सरकारी अधिकारियों से भी उसी प्रकार काम लेते थे और उन्हें वही दर्जा देते थे जो अपने भारतीय सरकारी अधिकारियों को। नेहरू जी द्वारा पंत जी का सम्मान करने का लोग एक कारण और भी बताते हैं। 1928 में स्वराज्य की मांग को खटाई में डालने के लिए अंग्रेजों ने साइमन कमीशन नाम का एक ढोंग रचाया। इससे सारे भारत में उग्र प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। उस समय देश के विभिन्न स्थानों में ब्रिटिश सरकार ने बर्बर अत्याचार किए। लाहौर में ऐसे ही एक जुलूस में लाला लाजपत राय घायल हुए। लखनऊ में एक भारी प्रदर्शन किया गया। जब पुलिस लाठी चलाती हुई जवाहरलाल जी के पास पहुंची तो 6 फुट ऊंचे और हट्टे कट्टे पंत जी ने नेहरू जी की रक्षा की। वे उन पर लेट गए और उन्हें भयंकर मार से बचा लिया। उस लाठी चार्ज में पंत जी पर जो प्रहार पड़े उसे उन्होंने संभाल तो लिया और उनकी बौद्धिक शक्ति में कोई कमी नहीं आई, वो वैसी की वैसी ही बनी रही। नेहरू जी के रक्षण में उन्होंने बड़ी देर तक अपनी पीठ और पैरों पर भारी प्रहार सहे। उन्हें जिंदगी भर ये तकलीफ झेलनी पड़ी क्योंकि बूढ़ी हड्डियां इसे कैसे सहती। नेहरू जी इस बात पर पंत जी की बहुत तारीफ की। उन्होंने उसे उनकी भारी कुर्बानी बताया। आजादी के बाद पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कुल मिलाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, मालगुजारी बंद हुई और सबसे पहले हिंदी को सरकारी राजभाषा बनने का गौरव उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश ने भारत को अनेक महान नेता दिए हैं। पंत जी उसी की एक कड़ी थे। पंत जी को प्रारंभ से ही 12 से 14 घंटे काम करने की आदत थी। उत्तर प्रदेश में भी वो 7-8 बजे शाम को कार्यालय से निकलते। कोई भी समय उनका ऐसा नहीं था जब वो किसी न किसी काम में लगे न रहते थे। उन्हें हर समय किसी न किसी महत्वपूर्ण फाइल को देखते हुए लोगों ने पाया। पंत जी की आदत थी कि वो प्रायः अपने सहयोगियों के काम में दखल नहीं देते थे। वो स्वयं कभी कभी तो 18 से 20 घंटे काम करते थे, परंतु किसी दूसरे को उन्होंने नहीं टोका। इसका यह असर होता था कि उनके साथ काम करने वाले उनसे प्रेरणा लेकर दिन भर काम में जुटे रहते थे। 1959 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दी, परंतु उन्होंने इसे नहीं माना क्योंकि वो कहते थे कि काम ही सच्चा आराम है। 1957 में भारत सरकार ने अपना कर्तव्य समझकर उन्हें भारत रत्न के सम्मान से विभूषित किया। 1961 में वो बीमार पड़े और 7 मार्च 1961 को ये महान धैर्यशाली भारत माता का सच्चा सपूत हमसे सदा के लिए बिछड़ गया।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। वार्ता के संकलनकर्ता स्वर्गीय इंदु संतोष जी और प्रस्तुतकर्ता थे संतोष जोशी। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है अधूरी शिक्षा। इसकी लेखिका एवं निर्देशिका है अंतरा करवड़े। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: अरे शकुन
1: अरे
0: जरा इस ब्राउन शर्ट पर देखो, इस शर्ट पर और अलमारी में से कोई बढ़िया सी टाई निकाल कर दो ना।
1: अरे अब अभी नमिता से बोलिए, मैं इस्त्री कर रही हूँ।
0: अभी इस्त्री कर रही हो?
1: लेकिन
0: मेरे कपड़े तो तैयार है ना। नमिता भी तैयार हो चुकी है। आज तुम्हें कहीं बाहर जाना है क्या? किसके कपड़े इस्त्री कर रही हो?
1: कितनी बातें पूछते हैं, कपड़े नहीं ये कपड़ों के अंदर के भीगे हुए नोट इस्त्री कर रही हूँ मैं। आपसे कितनी बार कहा है कि सारे जेब चेक करके फिर कपड़े धुलाई में डालिए, लेकिन इस घर में कोई मेरी सुने तब ना, जाने कहाँ ध्यान रहता है। आपका बस चले ना तो आप हमेशा मेरे
2: उपर... लो लो हो गई सुबह, आप दोनों की सुबह हो गई। जब देखो तब किसी न किसी बात पर बहस करते रहते हैं दोनों।
0: बस बस बस नमिता, चलो हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं, वरना तुम्हारी मम्मी फिर से यही कहेगी, समय पर नाश्ता नहीं किया क्या।
2: हाँ, और फिर कहेंगी कि मैं इतनी सुबह से उठकर काम करती हूँ और तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है।
1: क्या नकलें उतारी जा रही है मेरी? एक तो मैं इतनी सुबह से उठकर काम करती हूँ और तुम्हें इसकी कोई फिक्र ही नहीं है।
0: देखा, मैंने कहा था ना।
2: बिल्कुल पापा।
1: ठीक है, इतनी ही बुरी लगती हूँ ना मैं। जाओ, नहीं करूँगी कल से तुम्हारा एक भी काम। फिर ढूंढते रहना अपने ब्राउन शर्ट पर टाई और तुम अपनी स्कर्ट से मैचिंग हेयर बैंड।
2: अरे मम्मी मम्मी, आप तो बुरा मान गई। देखो मम्मी, ऐसा है कि जब तक मैं और पापा आपकी थोड़ी सी डांट नहीं खा लेते ना, तब तक हमारा दिन ही अच्छे से नहीं गुजरता।
0: और तुम्हारी डांट एक बार शुरू हुई कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सही तरीके से चल रहा है।
1: ठीक है ठीक है, बातें मत बनाओ। तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा काम किए बिना मुझे खुद को भी चैन नहीं मिलने वाला। और ये क्या? अरे नमिता, इतनी जल्दी हो गया तुम्हारा नाश्ता?
0: तुम भी शकुन, अब कॉलेज जाते जाते टोको मत उसे, जाने दो।
1: टोक नहीं रही हूँ जी। अरे अब ये नाश्ता तो पूरा कर लेती। आप नहीं जानते उसकी पसंद के छोले बनाए थे मैंने, कल रात से जुटी हूँ मैं। अब मुझे ना यही चीज बड़ी खराब लगती है।
0: ओ अब उसे जाने दो कॉलेज शांति से। देखो कॉलेज के बच्चे हैं, दोस्तों के साथ कोई प्लान होगा बाहर जाकर खाना खाने का, अब हर बात तुम्हें थोड़ी बताएगी वो।
2: बाय मम्मी। बाय पापा।
0: बाय बाय
2: मम्मी, शाम को थोड़ा सा लेट हो जाएगा।
0: बाय बेटे, और सुनो गाड़ी ध्यान से चलाना।
2: बाय पापा।
1: मुझे तो इस लड़की की बड़ी चिंता होती है कभी कभी, इसका हर काम अधूरा है, बिल्कुल तुम पर गई है तुम पर।
0: अरे मैं मेरा नाश्ता पूरा कर रहा हूँ भाई, मुझे खामोखा अधूरे कामों में मत घसीटो।
1: क्यों ना घसीटूं? शादी को इतने साल हो गए, कभी कोई काम पूरा किया आपने सही तरीके से? घर बनवाया तो पिछवाड़े की प्लास्टरिंग छोड़ दी।
0: अच्छा।
1: शादी की तो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लाए अभी तक। गाड़ी खरीदी है उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया है। अरे एक हो तो गिनाओ, तुम्हारे अधूरे कामों की फहरिस्त तो बड़ी लंबी चौड़ी है जनाब।
0: अरे ठीक है शकुन जी, अब जाने भी दीजिए, वैसे भी हमारा सारा काम कर देने के लिए आप जैसी अदब बीवी जो है हमारे पास।
1: ठीक है, आपके पास मैं हूँ जो सब कुछ समझ लेती है। अरे अपनी लाडली के बारे में सोचा है कभी? अपनी नमिता 20 की हो जाएगी अगले महीने।
0: देखो शकुन, इस उम्र में लड़कियां होती ही ऐसी हैं, अलहड़ चंचल, और मेरा तो ये मानना है कि आगे चलकर उसे भी घर गृहस्थी के कामों में उलझना है। ऐसे में वो आज ही से क्यों दबी घुटी से जीने लगे, उसे जिंदगी का पूरा मजा लेने दो।
1: अब मैं भी उसके दुश्मन नहीं हूँ, माँ हूँ मैं, लेकिन आप जो हर वक्त उसका पक्ष ले लेते हैं ना, वो मुझे तो कुछ समझती ही नहीं है।
0: अब वो समझे या ना समझे, हम तो समझते हैं ना सब कुछ। चलो अब मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, शाम को मिलते हैं। बाय।
1: आराम से जाना। हाँ बाय। अरे अरे सुनो, ये भी ना, फिर अपना टिफिन यहीं भूल गए। अरे अब मैं क्या गलत कहती हूँ इन लोगों से, हर काम अधूरा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक काम अधूरा होते हुए इन्हें दूसरा काम करने की इच्छा कैसे हो जाती है, जब देखो वही बात।
3: पोस्टमैन।
1: किसकी चिट्ठी आई है देखूं जरा? टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। अरे हाँ, यहाँ पर तो एडमिशन के लिए नमिता ने फॉर्म भरा था, पढ़ूं तो जरा क्या लिखते हैं। As you have not given full information for your eligibility, we are sending your form back. Please do the needful and send it again. वाह, फॉर्म ही पूरा भरकर नहीं भेजा। अब मुझे कहने दो, सिर्फ बड़बड़ करती रहती है। पक्का सबूत है मेरे हाथ में कि ये लड़की अधूरा काम करती है। कैसे होगा इसका आगे भगवान ही जाने। हेलो, हाँ नमिता बोलो। क्या टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एग्जाम कार्ड? अरे नहीं बेटे, एग्जाम कार्ड नहीं आया, लेटर तो आया है लेकिन उसमें लिखा है कि तुमने फॉर्म ही पूरा नहीं भरा, उसे जल्दी से भरकर भेजना होगा। हाँ हाँ अभी आया है लेटर। बेटे मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि ये फॉर्म बड़े पेचीदा होते हैं, इन्हें सही तरीके से भरा करो, लेकिन तुम सुनो तब ना। अब सुनो। क्या दोपहर को ही आ रही हो? लेकिन कॉलेज की क्लासेस छोड़ दोगी? हे भगवान, ठीक है आ जाओ दोपहर में। अब एक अधूरा काम पूरा करने के लिए दूसरा काम अधूरा छोड़ेगी, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या याद आया आपको? टिफिन? हाँ जनाब यही भूले हैं आप, सुबह सुबह मुझसे झगड़ा करेंगे ना तो यही होने वाला है। ठीक है भेज दीजिए किसी को, रखती हूँ। अब क्या कहा जाए इन लोगों से, हर काम अधूरा, पता नहीं ऑफिस में कैसे काम करते हैं।

0: आती हूँ।
1: नमिता ही होगी, अब दोपहर को बैठकर फॉर्म पूरा करती रहेगी। मैं कुछ कहूँगी तो सुनेगी नहीं।
0: अरे सुधीर भाई साहब, आप आइए आइए।
2: अरे क्या बात है भाभी, किसका गुस्सा उतार रही थी हम पर? कौन है जो आपकी बात नहीं सुनता?
0: अरे अब आपसे क्या छुपा है भाई साहब, ये आपके दोस्त और उनकी बिटिया बैठी है, अब इनकी आदतें छुपी है क्या आपसे?
2: अब भाभी ऐसा है कि आप इतना ख्याल रखती हैं दोनों का कि वे अपना ख्याल ही नहीं रख पाते।
0: खैर छोड़िए, मैं पानी लाती हूँ। और ये हमारी सीमा नहीं आई आपके साथ?
2: अरे भाभी अब क्या बताओ, ये सर्दी का मौसम क्या शुरू होता है, हमारी श्रीमती जी को ऊन के गोले खरीदने का शौक चर्राने लगता है। वे खड़ी है आपके पिछवाड़े की दुकान पर शेड्स को मैच करती हुई, अब स्काई ब्लू, कहीं रेड, कहीं लाइलैक, पर्पल वॉयलेट। ये सब मुझसे सहन नहीं होता भाभी, सो मैंने उन्हें छोड़ा वहीं और चला आया एक कप चाय पीने।
0: क्यों नहीं, और वैसे भी आपकी लाडली नमिता भी आती होगी अभी।
2: नमिता का कॉलेज तो शाम को 5 पर छूटता है ना? आज कोई विशेष बात है क्या?
0: अरे भाई साहब, उसी बात पर तो मैं बड़बड़ा रही थी आपके आने पर। दरअसल नमिता ने अगले साल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन टेस्ट का फॉर्म भरा था।
2: हाँ, अब हमारी बिटिया है भी होनहार, आप क्यों चिंता करती हैं? अरे देख लेना, टॉप प्रोफेशनल बनकर दिखाएगी वो।
0: अरे वो तो ठीक है भैया, भगवान की दया से उसकी पढ़ाई को लेकर मुझे कभी कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन ये देखिए, इंस्टीट्यूट से लेटर आया है कि आपने फॉर्म ही अधूरा भरा है। अब ये भी कोई बात हुई भला, कॉलेज का काम अधूरा छोड़कर इस काम को करने के लिए आने वाली है वो।
2: अरे अब इस उम्र में हो जाते हैं ऐसे काम, आप भी ज्यादा तवज्जो ना दीजिए भाभी जी, जब अकेली हॉस्टल में पढ़ने जाएगी ना, तब देखिए कैसी जिम्मेदार बन जाएगी हमारी नमिता बेटी।
3: थैंक यू सुधीर अंकल, जो आपने मेरा पक्ष लिया, वरना मम्मी को तो हमेशा से ही गैर जिम्मेदार लड़की लगती हूँ मैं।
0: बस आते से हो गई शुरू तू। चल तू सुधीर भाई साहब के साथ बैठकर बातें कर, मैं चाय पकौड़े बना रही हूँ।
2: हाँ बैठो बैठो। वाह भाभी वाह वाह वाह, ये हुई ना बात।
3: मम्मी हो तो ऐसी, कॉलेज से आते ही चाय पकौड़े बनाने वाली।
0: अब बस भी कर, पल में तोला पल में माशा।
2: और नमिता, नमिता कैसी चल रही है पढ़ाई?
3: बस अंकल ठीक ठाक चल रही है। और आप वो अपनी वाली बात भूल गए क्या?
2: अरे वो कैसे भूल सकता हूँ मैं, इसीलिए तो जब सुबह तुम्हारा फोन आया ना, तो शाम के बजाय अभी आने का प्रोग्राम बना लिया।
3: अरे वाह, कल मम्मी का बर्थडे है, उन्हें वाकई अच्छा सरप्राइज मिलेगा, है ना अंकल?
2: तुमने विश्वास को बताया?
3: नहीं अभी तक तो नहीं बताया, सोचती हूँ कि उन्हें भी सरप्राइज मिले।
2: नो नो बेटे, तुम्हें पापा से नहीं छुपाना चाहिए ये बात।
0: अरे मैं भी तो इससे यही कहती हूँ, अब आ गया है फॉर्म वापस, तो पापा के साथ बैठकर अच्छे से भर ले, लेकिन सुनती नहीं है बिल्कुल।
3: मम्मी हम कुछ और बात कर रहे हैं, आप भी ना मुझे डांटने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। और पकौड़ों के साथ सॉस? अच्छा आप बैठो, मैं ले आती हूँ अंदर से।
0: नहीं नहीं तू बैठ, मैं लाती हूँ, चाय भी तो रखी है चूल्हे पर।
2: ये लो नमिता, तुम्हारी मम्मी का गिफ्ट, संभाल कर रखना। और तुमने पत्र लिखकर रखा है क्या?
3: हाँ अंकल, ये देखिए ये देखिए।
2: अरे वाह कितना अच्छा लिखा है तुमने।
0: क्या बात है सुधीर भैया, आपकी आंखें लाल हो रही है। अरे सीमा से इतनी सी भी दूरी नहीं सही जाती क्या?
2: अरे नहीं भाभी, वो पहला ही पकौड़ा मिर्च का आ गया था ना। नमिता जरा पानी तो देना।
0: रुकिए मैं कुछ मिठाई भी ले आती हूँ।
2: नमिता बेटे वाकई बड़ा अच्छा लिखा है तुमने, ये साफ संभाल कर रखो। और हाँ रात में अपने पापा को बताना नहीं भूलना।
3: ठीक है अंकल, जैसा आप बोले।
0: ये लीजिए भैया रसगुल्ले खाइए।
2: वाकई भाभी पकौड़े बनाना तो कोई आपसे सीखे।
0: और बहाने बनाना कोई आपसे।

0: नमिता नमिता उठो बेटे, 6 बज गए हैं।
1: हैं? अरे ये तो पहले से उठ गई है, बात क्या है?
2: हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: थैंक यू, मुझे तो याद ही नहीं रहा। थैंक यू सो मच बेटा। अरे ये सब क्या है?
2: ये है आपका बर्थडे केक।
3: और ये है इस नाचीज की ओर से छोटी सी गिफ्ट।
0: अरे वाह, बालूचेरी सिल्क की साड़ी। अब इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की क्या जरूरत थी?
2: अब ऐसा है पापा कि मम्मी को मन ही मन साड़ी तो बड़ी पसंद आई है, लेकिन फॉर्मेलिटी कर रही हैं। इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की क्या जरूरत थी?
0: चुप भी कर, मेरे सामने मेरी नकल करने से शर्म भी नहीं आती।
3: और आज आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है, आपकी स्पेशल बेटी की ओर से।
0: ये क्या है नमिता?
2: खोल कर देखिए, उसमें आपके लिए कुछ मैसेज भी है और करने के लिए कुछ काम भी।
0: क्या है ये? अरे MA हिंदी लिटरेचर फाइनल ईयर का फॉर्म और ये चिट्ठी। देखिए इसमें क्या लिखा है।
2: प्यारी मम्मी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। आप हमेशा से ही मेरे और पापा के कामों को आसान बनाती आई हैं। आपने ही अपनी मेहनत से मुझे इतना काबिल बनाया है। खासकर मेरी पढ़ाई को लेकर आपने जो भी मेहनत की है उसके लिए शायद थैंक यू कहना बहुत कम होगा। मुझे कुछ दिनों पहले ही मालूम हुआ कि आप बहुत अच्छी कविताएं और कहानियां लिखा करती थीं। आप हिंदी लेखन के क्षेत्र में अपना स्थान बनाना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर पाई। आपने हिंदी लिटरेचर में तो MA का पहला साल 100% अंकों के साथ पूरा किया था, लेकिन दूसरे साल की परीक्षा के समय मेरे जन्म लेने के कारण आप परीक्षा नहीं दे पाई। मम्मा, आप हमेशा हमसे कहती हैं ना कि हम अपना काम पूरा नहीं करते, अधूरा छोड़ देते हैं। अब मेरी आपसे विनती है मम्मा कि मेरे कारण आपकी जो अधूरी छूटी हुई पढ़ाई है उसे आप पहले पूरा करें। मैंने सुधीर अंकल से ये फॉर्म मंगवाया है। 2 महीनों के बाद मैं भी हॉस्टल में चली जाऊंगी, तब आप अपनी हिंदी की पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगी। मैं चाहती हूं कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस जन्मदिन पर इससे अच्छा कोई उपहार मुझे नहीं सूझा। आशा है अगले साल हम एक बेहतर लेखिका से मिलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, आपकी नमिता।
0: ये सब क्या है नमिता, कितना सोचती हो तुम मुझे लेकर।
3: और तुम हो कि बार बार मेरी बेटी को डांटती हो।
0: अच्छा तो आप भी शामिल थे इस प्लान में, और इसीलिए नमिता की कल सुधीर भाई साहब से छुप छुप कर बातें चल रही थी।
2: मम्मी वो ऐसा है ना कि अगले सेशन से मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। अब आप बार बार फोन पर यही पूछेंगी नमिता पढ़ाई ठीक से कर रही हो या नहीं, तब मैं भी तो आपसे पूछ सकूंगी ना, मम्मी आपकी MA की पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं। बस हिसाब बराबर।
0: बदमाश कहीं की।
3: और हाँ शकुन, इस फॉर्म को भरने में कुछ अधूरा मत छोड़ देना।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था अधूरी शिक्षा। इसकी लेखिका एवं निर्देशिका थी अंतरा करवड़े। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो वरिता से श्यागी हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। स्वीकार करिए आपकी रेडियो दोस्त ज्योति का प्यार भरा और दुआओं से भरा अभिनंदन। दोस्तों, सभा 4 से 5 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात और युवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम युवा विकास और अंत में युग संचार। और इस कार्यक्रम में तकनीकियों और संचारों के बारे में आप सबको ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाएगी। साथियों, कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मानव जीवन का उद्देश्य है कि अपने मन वचन और काया से औरों की मदद करना। हमेशा यह देखा गया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कम तनाव रहता है, मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। वे अपनी आत्मा से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं और उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। अभी की सभा में आपकी चहेती नुपुर दीक्षित इंदौर के डॉक्टर अमीर प्रहारे जी से मुलाकात कराएगी और अभी की सभा में एक गहन विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, आइए सुनते हैं और जानते हैं उनके अनुभवों और कार्यशैली के बारे में।

0: एक मुलाकात कार्यक्रम के श्रोताओं को नूपुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुना आपने, कुछ लोगों की आवाज में, उनकी बातों में, उनके शब्दों में एक ऐसा जादू होता है कि जब वो बातें करते हैं तो शायद पत्थरों को, दीवारों को और निर्जीव चीजों को भी उनसे बातें करने की इच्छा होती है। तो आज एक ऐसे ही शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है इंदौर के डॉक्टर अमीय पहारी जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे तो डॉक्टर अमीय पहारे होलकर विज्ञान महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक हैं, लेकिन एक प्राध्यापक होने के अलावा सैकड़ों उपलब्धियां उनके नाम पर दर्ज हैं। क्विज शो के बेहतर एंकर, विविध कार्यक्रमों के सूत्रधार, व्यक्तित्व विकास के गुरु और पूरे सही लफ्जों में कहें तो आज के जमाने के मैनेजमेंट गुरु के रूप में प्रसिद्ध श्री अमीय पहारे जी आज हमारे बीच हैं। सर, सबसे पहला सवाल, इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे काम, इन सबको आप किस तरह से संतुलित कर पाते हैं?
1: सबसे पहले सत्य स्वर के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जो काम करने में हमें थकावट नहीं लगती, जिसमें हमारी रुचि हो, तो यदि उसको करते जाएं तो फिर हम थकते भी नहीं और उसके लिए हम समय भी निकाल लेते हैं।
0: बहुत खूब कहा सर आपने। वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर आप थे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी ख्याति जो है वो जनरल नॉलेज के टीचर के रूप में विख्यात है। आपने सैकड़ों बच्चों को जनरल नॉलेज पढ़ाया, आईएएस के बच्चों को भी पढ़ाया, एमबीए की तैयारी करने वाले बच्चों को भी पढ़ाया और फिलहाल भी कई बच्चे आपसे जीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से फील्ड में बदलाव, विषय में बदलाव कैसे हुआ?
1: जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमको एक पीरियड होता था सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान के पीरियड में सबसे ज्यादा जवाब मैं दिया करता था, क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ने का शौक था। स्कूल के जमाने से तो अखबार भी नियमित पढ़ता था। उन दिनों रेडियो होता था, और केवल रेडियो में भी, अगर बाहर की बात करें तो केवल बीबीसी होता था। तो रेडियो में समाचार सुनना, अखबार पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, ये शौक होने के कारण सामान्य ज्ञान में अच्छा था। और उस कारण हमारे टीचर, जब मैं कॉलेज में आया तो उन्होंने मुझे आकाशवाणी के जिज्ञासा कार्यक्रम में एक प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित किया
0: जी।
1: और जब मैं पढ़कर बाहर आया तो आर्मी में सिलेक्शन हुआ, तो वहां भी मेरा सामान्य ज्ञान के कारण मेरी भारत में पहली पोजीशन बनी अलाहाबाद एसएसबी से। और उन दिनों मेरी मदर करीब साल भर तक अस्पताल में भर्ती थी, तो इस वजह से फिर मुझे ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी नहीं मिलने से छोड़ना पड़ा वो मौका। तो शायद मुझे

0: कुछ एक शब्द है बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन एक भेड़ चाल के कारण पेरेंट्स पालक बच्चों पर एक प्रकार की अपेक्षाओं का बोझ लाद देते हैं कि देखो बेटा मेरा इतना लंबा चौड़ा अस्पताल है, मेरी इतनी चौड़ी प्रैक्टिस है, तो इसको अब तुम्हें ही संभालना है। चाहे उस बच्चे को डॉक्टर नहीं बनकर एक अच्छा इंजीनियर बनने की इच्छा है और उसमें वो क्षमता भी है, वो काबिलियत भी है, लेकिन इसके बावजूद हम जिसे कहते हैं कि अंग्रेजी में पीयर प्रेशर या माता पिता का दबाव या अत्यधिक अपेक्षाएं या बड़े भाई बड़े बहन या दोस्तों का दबाव, तो इसको लेकर बच्चे जो है, मेरा ऐसा मानना है कि छठी सातवीं से हमको थोड़ा सा हमारे जो हमारा प्राकृतिक रुझान है उसकी तरफ देखना है। और मेरा पेरेंट्स या माता पिता से भी अनुरोध रहता है हमेशा कि बच्चों में जो नैसर्गिक उनमें जो गुण है उनको आप विकसित होने दें स्वाभाविक रूप से। हम उनको हमारी इच्छा के अनुरूप ढालने का प्रयास न करें, वो जो स्वयं बनना चाहते हैं उनको उसमें निखरने में मदद करें, उनके जो प्राकृतिक उनमें जो गुण है कुदरत से मिला है उसको निखारें।
1: सर मैंने महसूस किया है कि कभी कभी खुद बच्चे भी द्वंद में उलझ जाते हैं।
0: हाँ।
1: वो खुद चुनाव नहीं कर पाते कि कौन सा विषय उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है और कौन सा कम। तो जब अगर कोई बच्चा इस तरह के द्वंद में फंसे तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह खुद को द्वंद से बाहर निकालना चाहिए?
0: उसके लिए जो मेरे स्तर पर मुझे अच्छा लगा जो तरीका, हम स्कूलों में जाते हैं और वर्कशॉप में बच्चों को करियर के सारे ऑप्शंस बताते हैं कि मीडिया में ये है, ग्लैमर में ये है, चिकित्सा में ये है, हॉस्पिटलिटी में या प्रबंधन में ये उपलब्धियां हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी लेकर केवल डॉक्टर बनने के अलावा बहुत सारे विकल्प हैं
1: जी,
0: इंजीनियरिंग में बहुत सारे विकल्प हैं, 47 ऐसे विषय हैं जिनमें आप आमतौर पर नहीं, तो लोग कहते हैं सिविल मैकेनिकल आईटी या कंप्यूटर, लेकिन बहुत सारे हैं। तो हमको उनको ये सारे विकल्प बताने हैं जिससे कि उनको लगे कि हाँ इस लाइन में भी करियर बन सकता है। और मैं मतलब ऐसा नहीं है आप कल्पना चावला के जैसा भी मशहूर हो सकते हैं, और उसी तरीके से अगर आपको जाना है तो आप सुनीता नारायण जैसे भी पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, वंदना शिवा जैसे, और नहीं तो आप स्पोर्ट्स में
1: हमारी
0: साइना नेहवाल को देखें, कोनेरू हम्पी। मैं थोड़ा सा क्रिकेट की बात इसलिए कम करता हूं कि क्रिकेट में सब जानकारी है, लेकिन हमारे देश के जिन खिलाड़ियों ने हमारे देश को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है, पर वो कहीं गुमनामी में खो जाते हैं, हमारे आम दर्शक आम श्रोता उनको नहीं जान पाते। जैसे बैडमिंटन की विश्व चैंपियन भारत की साइना नेहवाल है, वो कम जानी जाती है, जबकि सानिया मिर्जा अगर आप 100वें पायदान पर भी आई है तो ज्यादा चर्चाओं में रहती है। इसलिए मैं थोड़ी क्रिकेट की बात कम करता हूं और अन्य खेल जिनको कम लोग जानते हैं वो अवेयरनेस या लोगों को जागरूक बनाने के लिए मैं उनके बारे में ज्यादा बात करता हूं।
1: दरअसल मैंने जो महसूस किया है सर वो ये देखा है कि हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खाई सी बन गई है, यानी देश में बच्चों का या कहें कि छात्रों का एक वर्ग ऐसा है जिनके पास शिक्षा के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, किताबों से लेकर अच्छे शिक्षकों तक सब कुछ, वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जहां शिक्षक नहीं होते कक्षा में या
0: वो साधन सुविधा विहीन
1: जी,
0: जो है बड़ा बड़ा तबका है,
1: बड़ा तबका
0: 70% तबका मैं कह सकता हूं कि हमारे देश का ऐसा ही है, जिनकी पाठशाला में पहले वो उनको कीचड़ साफ करना है, फर्श साफ करना है, टपकती छत होगी, पीने का साफ पानी नहीं होगा, बोर्ड होगा तो टूटा होगा, चौक होंगे तो टुकड़े होंगे, मतलब एक कमरे में तीसरी और पांचवी के बच्चे साथ बैठ के एक टीचर से पढ़ रहे हैं, तो ऐसी तमाम हम ये कहें कि इस प्रकार
1: विसंगतियां
0: की विसंगतियां और असुविधाओं के बीच में भी कुछ बच्चे आगे आते हैं। जैसे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब पैदल जाते थे, नदी पार करते थे, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो पायलट नहीं बन पाए लेकिन मिसाइल मैन बन गए भारत के।
1: बिल्कुल सर, इसी संदर्भ में मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहती थी कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी उम्र के 16 या 17 वर्ष इन्हीं तमाम विसंगतियों से जूझते हुए बीत गए, और 17 या 18 साल के होने के बाद उसे समझ में आया कि जिंदगी जो है वो उसके गांव से या उसके जिले से आगे निकलकर बहुत कुछ है, लेकिन तब तक कभी कभी महसूस होता है कि देर बहुत हो गई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी आंखें किसी वजह से थोड़ी देर से खुली है, ऐसे स्टूडेंट्स किस तरह से खुद को वापस से मेन स्ट्रीम में सेटल कर सकते हैं?
0: हमारे देश में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो प्रतिष्ठित पूरे विश्व में है, उनका क्लास मटेरियल, उनका कंटेंट और ऐसे ढेर सारे कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, मीडियम टर्म भी है, मतलब अल्प समय के अल्पकालिक कोर्सेज हैं, तो उससे वो वापस मेन स्ट्रीम में अपनी रुचि का विषय लेकर बैठ सकता है और फिर पुनः मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। तो उनके लिए इग्नू से अच्छा कोई विकल्प नहीं है।
1: बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो शब्दों की जादूगरी है इससे मोहित तो हम सब हो जाते हैं, लेकिन इसे सीखा कैसे जा सकता है, इसे अपनाया कैसे जा सकता है?
0: मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसको हम समग्रता और संपूर्णता से ग्रहण करने का प्रयास करें, और जितना ज्यादा हम जितना अधिक पढ़ेंगे, मैं इसे कहता हूं कि यदि हम स्वयं में जितना अधिक निवेश करेंगे, जैसे किसी एक पेड़ में आप अच्छे समय पर खाद डालेंगे, उसकी निंदाई गुड़ाई करेंगे, खरपतवार निकालेंगे।

0: समय समय पर दवाओं का छिड़काव करेंगे, समय समय पर पानी और खाद देंगे, तो आगे जाके पुष्पित और पल्लवित होगा और हमें सालों तक दूसरी तीसरी पीढ़ी भी उसके फल खाएगी। तो ऐसे हम स्वयं में बचपन से जब निवेश करें, जैसे हम खाना रोज खाते हैं, निद्रा रोज लेते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, हंसते हैं, समाचार क्यों नहीं देखें, अखबार क्यों नहीं पढ़ें, उसे हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो स्वयं में निवेश करेंगे, शब्द सामर्थ्य बढ़ेगा और सामान्य ज्ञान भी बेहतर होगा।
1: इस निवेश के कुछ और गुर सीखना चाहेंगे, जैसे एक गुर तो आपने बताया कि समाचार सुनना, समाचार पढ़ना, किताबें पढ़ना, लेकिन और किस किस तरह से हम अपने आप में निवेश कर सकते हैं?
0: मेरा ऐसा मानना है कि आज जब हम किसी भी तकनीकी डिग्री को लेकर आते हैं, मैं एक जानकारी आपके और मेरे श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। एक सर्वेक्षण किया गया AICTE द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और UGC के द्वारा, कि जो भारत के श्रेष्ठतम संस्थान हैं, वहां से पास होकर निकलने वाले प्रबंधन के छात्र और इंजीनियरिंग के, अभियांत्रिकी के छात्र, उनमें 11 से 19% अधिकतम कंपनियों के द्वारा एम्प्लॉयबल या रोजगार के उपयुक्त पाए जाते हैं।
1: सिर्फ 11 से 19%?
0: ये भी कहां से, जो बहुत अच्छे संस्थान है वहां से निकलने वाले
1: जी।
0: तो ये आंकड़ा हमें डराता है। तो हमारे ध्यान उन बच्चों पर जाएगा जो 80% बच जाते हैं, जो डिग्री तो लेके बाहर आए हैं लेकिन अब उन्हें नौकरी उपयुक्त नहीं मिल रही है। और कारण सिर्फ केवल यही है कि वो एक व्यक्तित्व विकास, सामान्य ज्ञान, तर्क बुद्धि, विश्लेषण की क्षमता, इन सब में कम है। उनको ये नहीं पता कि किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो हमारा व्यक्तित्व तो कैसा हो, या हमारा व्यवहार कैसा हो, उठना बैठना, सलीका कैसा हो, कपड़े कैसे हो, अभिवादन कैसा करें, ये सारी चीजें देखते हैं। तो कोई प्रबंधन का व्यक्ति आता है तो उसे ऑलराउंडर की तलाश होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हमारी, चाहे वो क्रिकेट टीम हो या जिंदगी हो, हर कंपनी, हर व्यक्ति एक ऑलराउंडर को ढूंढना चाहता है। तो हम ऑलराउंडर नहीं बन पाते, हम केवल किताबी कीड़े बन गए, तो हमारा एक समग्र विकास जो व्यक्तित्व का होना है वो नहीं हो पाता।
1: सर, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार विकास की जो परिभाषा है वो हमारे युवा साथी सिर्फ एक कक्षा तक सीमित मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक छोटा सा व्यक्तित्व विकास का कोर्स कर लेने भर से अचानक कुछ हो जाएगा और उनका व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा। क्या ये सही है?
0: मैं आमतौर पर विद्यार्थियों से कहता हूं कि किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी भी गुरु के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो 3 महीने में 2 महीने में 3 सप्ताह में आपको संपूर्ण परिवर्तित कर देगा। ये 24 घंटे और सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं स्वयं को विद्यार्थी मानता हूं और मैं मानता हूं कि हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो ताउम्र हम सीखें तो भी कम पड़ेगा, इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो इसलिए विद्यार्थियों को मेरा ये कहना है कि आप केवल किसी एक कोचिंग संस्थान, किसी एक इंस्टीट्यूट के भरोसे या किसी एक टीचर या एक मेंटोर के भरोसे, मार्गदर्शक के भरोसे ना रहें, सतत और निरंतर स्वयं को निखारने का प्रयास करें तो आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा।
1: एक और प्रवृत्ति मैंने देखी हमारे यहाँ पर, अगर हम देखें तो गांव और छोटे शहरों से जो विद्यार्थी बड़े शहरों में आते हैं, आमतौर पर वो अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाकर पूरा समय सिर्फ अंग्रेजी भाषा को सीखने में दिया करते हैं, है ना? तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि 2 या 3 साल बीतने के बाद जिस मूल लक्ष्य को लेकर वो अपने शहर से या अपने गांव से आए थे, वो लक्ष्य कहीं एक तरफ हो जाता है और पूरे 2 या 3 साल कुछ छोटी छोटी बातें सीखने में निकल जाते हैं। तो क्या लगता है सर आपको कि एक भाषा हमारे लक्ष्य के ऊपर हो सकती है कभी?
0: जमाना ऐसा है कि बहुभाषी व्यक्तियों की आवश्यकता सभी लोगों को है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि सबसे पहले आप अपनी जिस भाषा में आप स्वयं बचपन से बोलते हैं, सबसे पहले उसे निखारें, मातृभाषा हो या हिंदी हो या आपकी जो प्रादेशिक भाषा है, पहले आप उसमें निपुण हो, फिर उसके बाद हम अंग्रेजी की ओर आएं। और अंग्रेजी भी एक बहुत आवश्यक है, आपके व्यक्तित्व का एक अच्छा हिस्सा है, लेकिन जिस भी भाषा को सीखें पहले उसमें संपूर्णता हासिल करें। अगर हम उसमें निपुण हो गए तब हम दूसरी भाषा को सीखने का प्रयास करें और समय का कुछ ऐसा बंटवारा करें कि हमारी जो तकनीकी स्किल है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा तकनीकी कौशल है
1: जी,
0: हमारा जो विषय का जो हम जिसे कहते हैं ना फाउंडेशन, तो हमारा बेसिक कोर कॉम्पिटेंसी हमारे विषय में जो हमारी पकड़ है, पहले उसे मजबूत बनाएं। अतिरिक्त समय में हम भाषाओं के ऊपर काम करें लेकिन वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो।
1: मैं चाहूंगी सर कि आप हमारे जो युवा वर्ग है उनको करियर के कुछ नए विकल्पों के बारे में भी बताएं, जैसे जो बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 18 से 20 साल गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में बिताए हैं, उन्हें उन्हीं के स्थान पर उनके परिवार के साथ रहते हुए जो खासियतें उन्होंने वहां उस दरमियान हासिल की है अपने बचपन से लेकर अपनी किशोर अवस्था में, उन्हीं खासियतों का इस्तेमाल वो करियर मेकिंग में कैसे कर सकते हैं?
0: बहुत लंबा है ये, मतलब अभी से हम हमारे समय सीमा में समेट नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अब क्या हुआ है कि हमारे यहाँ भारत में लोक कलाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी एजेंसी नहीं है जो किसी बुनकर को उसकी श्रेष्ठता का एक प्रमाण पत्र दे, जो उसकी शैक्षणिक योग्यता न होकर उसके हुनर की दक्षता का प्रमाण पत्र हो। कोई शिल्पकार है, कोई नल ठीक करता है, कोई बिजली का काम करता है, कोई पंप फिट करता है, कोई पंप रिपेयर करता है, तो कोई हमारे ट्रैक्टर ठीक कर देता है। तो इन सब के लिए इग्नू अब ऐसे दक्षता के मापदंड को लेकर कुछ कोर्सेज लाने वाली है, जहां इस प्रकार के कारीगरों को तीन श्रेणियों में उनके हुनर के आधार पर बांटा जाएगा। तो सुविधा न होने पर भी अगर आप अपने पैतृक या पुश्तैनी व्यवसाय को इस हुनर के साथ एक आपको एक उसका प्रमाणीकरण मिलता है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो चमड़े के खिलौने बनाना हो, चाहे मोमबत्ती बनाना हो, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने की बात हो, चाहे वो काष्ठ की चीजों को बनाना हो, चाहे वो खेती ही क्यों न हो, या खाद्य का प्रसंस्करण करने की बात हो। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी शेल्फ लाइफ है, उनको बहुत अधिक समय तक हम संरक्षित सुरक्षित नहीं रख सकते, तो फल फूल सब्जियों को भी व्यवसाय और रोजगार में आप उसमें काम करें, जिसको कहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधों की खेती करें अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं, या आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो इस तरह के औषधीय पौधों की जो चीजें मिलती हैं उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कंप्यूटर के माध्यम से या नेट इंटरनेट के माध्यम से आप बेचने का प्रयास करें। और बहुत सारी एजेंसियां और भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो इन सब चीजों को प्रोत्साहन देते हैं, उनके पास पैसा भी है और तकनीकी ज्ञान भी है।
1: चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा श्रोताओं से यही अनुरोध है कि स्वयं को अद्यतन रखें, रोज हमारे आसपास जो समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उसको किसी भी माध्यम से, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो पत्रिकाएं हो, लेकिन स्वयं को अपडेट करते रहें। हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उससे अपने आप को काट कर न रखें, उससे जोड़ कर रखें, जुड़े रहें, क्योंकि ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो पूरा संसार में जो घटित हो रहा है उससे हम अपने आप को अलग नहीं रख सकते, क्योंकि उसका समग्र प्रभाव है।
1: अमीय जी, आपके साथ बातों का सिलसिला थामने की इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन शायद ये वक्त की और हमारी मजबूरी है कि हमें इस मुलाकात को यहाँ रोकना होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आभारी हूँ आपका, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और मेरे श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद कि जो मेरा कार्यक्रम इतने ध्यान से सुन रहे हैं।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात के अंतर्गत वार्ता, जिसमें नुपुर दीक्षित जी ने डॉक्टर अमय प्रहारी जी से मुलाकात कराई। श्रोताओं, जिस तरह आप लोगों के लिए मदद करते हैं, हमेशा जरूरतमंदों के लिए तैयार रहते हैं, मैं भगवान से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहे। दोस्तों, अब हम सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में लोगों के प्रति अपने मन में भावना का भाव रखना चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि हम क्यों दूसरों की मदद करें, तो अगर यही सब सोचने लगे तो जरा आप सोचिए कि आपको किसी भी चीज की बहुत जरूरत हो और वो चीज मांगने पर भी आपकी कोई मदद ना करे, तो उस समय हमें कैसा प्रतीत होगा। श्रोताओं, कुछ पाना है तो पहले देना सीखना चाहिए। शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि लोग हमारी मदद ना करें, क्योंकि आवश्यकता हर इंसान की जरूरत होती है। और क्या पता कब किसको कहा हमें दूसरों की मदद की जरूरत आन पड़े। तो यदि हमें किसी भी चीज को पाना है तो सबसे पहले मदद की भावना भी रखनी चाहिए। और युवा ही ऐसी पीढ़ी होती है जिसे कभी भी दूसरों की मदद के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। साथियों, कार्यक्रम युवा विकास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी की सभा में आपके रेडियो दोस्त स्वतंत्र कुमार ओझा जी आप लोगों से रूबरू होंगे और उनकी वार्ता का शीर्षक है दिशा निर्धारण हमें ही करना होगा। तो आइए सुनते हैं यह वार्ता।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युवा और विकास हमारे युवा साथियों को भी नमस्कार। साथियों, आज का हमने विषय चुना है दिशा निर्धारण हमें ही करना होगा। कौन सी दिशा में हमें जाना है और क्या करना है, इसका निर्णय हमें ही लेना होगा। वास्तव में आज के समय में हमारी रोजाना की दिनचर्या में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया है। सूचना के नवीन माध्यमों ने जैसे एक क्रांति पैदा कर दी है। इसी के अंतर्गत इंटरनेट, एसएमएस, मोबाइल पर और फिर आता है मीडिया, हर विषय पर लगातार बदलाव की सूचनाएं हमें दे रहा है। अब संदेश काफी सीमा तक शायद अपनी सार्थकता खो रहा है और जानकारियों या सूचनाओं का बाजार बहुत बहुत बहुत ऊंचाइयों पर है।

तो श्रोता मित्रों, इसी कारण अब इस सच्चाई को हमें अपने अंतर मन से स्वीकार करना ही होगा कि ये जो समय चल रहा है ये पूरी तरह से व्यवसायिकता का समय है। दुनियादारी बाजारवाद के इशारों पर चल रही है। अब अगर इस बदलाव में धन कमाने के अवसर बेहद ज्यादा बढ़े हैं तो खर्च करने के भी अनेकों रास्ते अपना लिए गए हैं, है ना? सही बात। जाहिर है ऐसी स्थिति में जीवन की महत्ता और गहराई में कोई क्यों जाना चाहेगा। सीधी सी बात है कि भाई खूब कमाओ और खूब खर्चा करो। ये सभी नीतिगत संदेश नीतियों के, अच्छाइयों के जितने भी संदेश हैं, ये लगता है कि जैसे आउटडेटेड हो गए हैं। अब इनका चलन धूमिल हो गया है। अब तो बस आर्थिक फैलाव ही जैसे मानवीय जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है और भूत यानी कि पास्ट तथा भविष्य यानी कि फ्यूचर को हाशिए पर रखकर एक कोने में धकेलकर खारिज कर दिया गया है।

तो साथियों, अब अगर सत्य कुछ है तो वो है केवल आज, यानी कि वर्तमान। अब इस बात का हम क्या मतलब निकालें? क्या ये सही है कि यही सब कुछ हो रहा है? इस पर विचार अगर गौर से करें और प्रतिशत के मान से करें तो ज्यादा प्रतिशत वर्तमान जीवन प्रणाली ही दर्शाता है। अब क्या सही है क्या सही नहीं है, इसका फैसला तो इंसान को खुद ही करना पड़ता है, और इस फैसले को अमल में हमारी युवा पीढ़ी को ही स्वयं ये तय करना होगा कि अपनी प्रगति का ग्राफ और विस्तार अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी जरूरत के मुताबिक करें, और इस तरीके से करें, इस रूप में करें कि वो स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी लाभकारी और उपयोगी सिद्ध हो और एक प्रमाण बने औरों के लिए कि ये काम कितना अच्छा हुआ फलां फलां युवा साथी के द्वारा।

गति, रफ्तार, कैरियर, इन तीनों क्षेत्रों में प्रवेश पाने के पहले एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे युवा वर्ग के सामने रहता है और वो है शिक्षण का क्षेत्र, यानी पढ़ने लिखने के कीमती साल। बहुत कीमती होते हैं ये साल जब आपकी पढ़ाई का कोर्स आप करते रहते हैं। और ये भी सुनने में आता है कि जब भी पढ़ाई की बात चलती है तो कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में एकाग्रता भंग होने की शिकायत करते हैं। कई लोग करते हैं, हमारे युवा साथी जो हैं, कि भाई हमारा ध्यान बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन टूटता है। कुछ हद तक ये समस्या है, जरूर जायज भी है कि पढ़ाई में एकाग्रता कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए और किसी भी तरह की फालतू की बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, लेकिन समस्या तो है। तो चलिए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए इसके कुछ उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं।

देखिए, अपनी पढ़ाई के लिए आप जहां भी रहते हैं, आपका घर तो होगा ही, घर में एक ऐसी जगह अपन फिक्स कर लें जो रेडियो, टीवी और घर में लोगों की आवाजावी से बिल्कुल अलग हो। और हां, जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो उस समय सही मुद्रा में बैठक भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मजे से आराम से पैर फैला के और अपने पैर ऊंचे करके या नीचे करके अपना पढ़ाई काम चल रहा, ऐसा नहीं। सही मुद्रा में बैठ के पढ़ना जरूरी होता है। व्यवधान शोरगुल से बचने के लिए अपनी स्टडी टेबल या बैठक के इर्द गिर्द मोटे मोटे अक्षरों में एक वाक्य लिखकर रख लीजिए। क्या होगा वो वाक्य? जो भी कमरे में आएगा ना, उस वाक्य को पढ़ेगा, मोटे मोटे अक्षर होंगे उस पे, तो उस पे ये लिखा होगा, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, है ना? ये एक तरीका हुआ। अब पढ़ाई का एक निश्चित समय अवश्य ही निर्धारित कर लेना बहुत फायदेमंद होता है। देखेंगे, कर लेंगे, अरे कभी भी, अभी तो बहुत टाइम है। अक्सर ये दो तीन किस्म के विचार अधिकांश के मन में आते जाते रहते हैं और कई इसी रणनीति को फॉलो भी करते हैं, ऐसे ही करते हैं। भाई ये रणनीति कुछ हमारी समझ में नहीं आती, ये तो गोलमोल है, कॉन्क्रीट नहीं है। इसलिए इस प्रकार के विचारों से बचकर निश्चित समय पर पढ़ाई शुरू करने की आदत से आप परीक्षा रूपी महायुद्ध अवश्य जीत सकेंगे। तो ये कुछ सुझाव या कहें कि टिप्स, छोटे छोटे जो हमारी समझ में आए, हमने आपके सामने रखे। ये भी एक तरह की आदत होती है और इस आदत को डालने से शायद हमारे दिमाग को संतुलन और कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता मिल सकेगी। तो युवा दोस्तों, ये तो हुई पढ़ाई लिखाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर एक छोटी सी टिप्पणी। और भाई, हमें तो पूरा विश्वास है कि हमारे सब युवा साथी इन सब बातों का ध्यान रखते ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब परीक्षा शुरू हो गई, पेपर देना आपने शुरू कर दिए, पेपर अच्छे भी हुए और आपने परीक्षा पास कर ली। अब आगे आगे तो नौकरी, कैरियर और फिर उस कैरियर का फैलाव, विस्तार, बढ़ाव, जिसका सपना हर एक देखता ही है और आगे कदम बढ़ाता है। तो कैरियर और नौकरी की बात पर से एक बात सामने उभर कर आती है और वो ये कि इस सिंथेटिक दौर में हम एक जानकारी आप सब तक भी पहुंचाना चाहते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक नवीनता भी है और कैश तो है ही, यानी जी हां, आर्थिक प्रगति। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है डिजिटल एनिमेशन।

तो साथियों, इस विषय पर जरा विस्तार से बातचीत करने से पहले हम इसके बारे में तीन खास बातें आपसे कर लेना चाहते हैं। क्या हैं वो तीन बातें? देखिए, भारत बन रहा है विश्व की एनिमेशन फैक्ट्री नंबर 2। इसके अंतर्गत हर वर्ष 5 से 10 हजार नए पद निर्मित होंगे। और नंबर 3, शुरू में तनख्वाह या वेतन कम से कम 15 हजार, जो अगले 3 सालों बाद 50 हजार रुपए तक पहुंच सकता है। दोस्तों,

तो आपने देखा। अब आप ही सोचिए कि ऐसी नौकरी तो हर एक चाहेगा कि मैं भी कर लूं ये नौकरी, कौन पाना नहीं चाहेगा ऐसी नौकरी। और हमारे भारत की युवा पीढ़ी का ये सपना पूरा करने जा रहा है डिजिटल एनिमेशन का ये क्षेत्र। तो आइए अब इसी क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें। भाई, कहा जा रहा है कि एक दो सालों में ही इस क्षेत्र में इतना डायनेमिक विस्फोटक विकास होने जा रहा है कि इसे आईटी की टक्कर का क्षेत्र माना जाएगा। इसकी आरंभिक शुरुआत में ही इससे जुड़ी युवा प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रही हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वक्त भारत में लगभग 6000 एनिमेटर्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में तो खैर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 3 लाख के आसपास। फिलहाल भारत में इसके केवल 12 स्टूडियो हैं, जबकि दक्षिण कोरिया जैसे छोटे से देश में 15 स्टूडियो हैं। तो शायद यही वजह है कि भारत में भी इस क्षेत्र में बिल्कुल युद्ध स्तर पर विकास के दरवाजे स्थापित किए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी ये काम शुरू किया जा रहा है। और अब अंत में चलते चलते ये एनिमेशन है क्या, इसके बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लें, थोड़ा सा जान लें। ये एनिमेशन का जो क्षेत्र है, ये फिल्म निर्माण का क्षेत्र होता है, और मोटे तौर पर एनिमेटेड फिल्म का मतलब लगाया जाता है कार्टून फिल्म, जबकि ऐसा आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ बरस पहले इसकी विषय वस्तु सीमित थी, लिमिटेड थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो चाहे आधुनिक विज्ञापन फिल्में हों, फीचर फिल्म की स्टंटबाजी के सीन हों, या अन्य कुछ स्पेशल इफेक्ट्स, ध्वनि प्रभाव जिसको हम कहते हैं, ये सब मूलतः एनिमेशन का ही कमाल है। और तो और, अब तो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में भी एनिमेशन का प्रवेश हो चुका है। एक शहर में बैठा हुआ डॉक्टर दूसरे शहर में मौजूद मरीज का ऑपरेशन जिस सच्चाई और सरलता से कर लेता है, वो एनिमेशन का ही कमाल है। इसी आधार पर इंजीनियर्स पेचीदा मशीनों का रहस्य भी जान लेते हैं। तो भाई, एनिमेशन का एक और भी बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र है गेमिंग, जो साइबर कैफे या घरों में एक रोमांच सा बिखेर रहा है। तो प्यारे युवा दोस्तों, ये है आज और आने वाले कल का एक सुनहरा पन्ना। आप भी इसमें अपना भविष्य अवश्य बनाना चाहेंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन है। पढ़ाई लिखाई एकाग्रता से करें, कॉन्सेंट्रेशन से, और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाएं जिसका एक निश्चित उद्देश्य हो। सफलता मिलने के बाद अपने कार्यप्रणाली और क्षेत्र को फैलाव अवश्य दें, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखें कि विस्तार का मूल मंत्र केवल मस्ती और असीमित और फिजूल का खर्च नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए और खुद के लिए भी हितकारी और प्रेरणास्पद होना चाहिए। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था दिशा निर्धारण हमें ही करना होगा, और प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, कार्यक्रम युग संचार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, अभी की सभा में कार्यक्रम युग संचार का शीर्षक है हिंदी में कंप्यूटर और लेखिका एवं प्रस्तुत करता है अंतरा करवड़े।
1: युग और संचार में प्रस्तुत है वार्ता अब हिंदी में कंप्यूटर। श्रोताओं, कुछ ही साल पहले की तो बात है जब कंप्यूटर पर हिंदी बहुत गरीब भाषा मानी जाती थी। ट्रू टाइप फॉन्ट्स पर निर्भरता के चलते इसकी उपस्थिति न के बराबर थी, और जो थोड़ी बहुत थी भी वो केवल अंग्रेजी की बैसाखियों के सहारे थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, धन्यवाद यूनिकोड, जिसके कारण न केवल भाषाई कंप्यूटरीकरण को नई दिशा मिली बल्कि कंप्यूटर में आज हिंदी बड़े पैमाने पर उपयोग की जा रही है, वो भी अंग्रेजी पर बिना किसी निर्भरता के। आज कंप्यूटर जानने के लिए अंग्रेजी जानना कोई अनिवार्य बात नहीं रही। इस नई उपलब्धि से न सिर्फ हिंदी बल्कि सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में कंप्यूटरीकरण का तेजी से विकास तो संभव हुआ ही है, साथ ही इनके लिए मानकीकरण भी स्थापित हुआ है, जिसके चलते अभी तक हमारी भाषाएं विश्व में अपेक्षित पहचान नहीं बना पा रही थी तथा कंप्यूटर के उपयोग में कठिनाई का सबब बन रही थी। चाहे वो इंटरनेट हो या भाषाई सॉफ्टवेयर, यूनिकोड ने सब कुछ आसान कर दिया है। अब बिना कोई फॉन्ट विशेष इंस्टॉल किए आप किसी भी यूनिकोड संगत कंप्यूटर पर हिंदी पढ़ सकते हैं सीधे। अब बात करें हम यूनिकोड की ककहरे को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर केवल दो अंकों 0 तथा 1 की भाषा समझता है। कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा या कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला डेटा भी इन्हीं दो अंकों से मिलकर बना होता है। इनके भिन्न भिन्न संयोजनों से विभिन्न वर्ण आकार लेते हैं। इन वर्णों तथा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाने वाले बाइनरी अंकों का समन्वय करने वाली प्रणाली को इनकोडिंग कहा जाता है। इनकोडिंग तालिका के माध्यम से ही कंप्यूटर ये तय करता है कि किस कोड को स्क्रीन पर किस वर्ण के रूप में दिखाया जाएगा। जैसे हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के ए अक्षर को कंप्यूटर 01000001 के रूप में समझे। दरअसल यूनिकोड एक 16 बिट वाली इनकोडिंग प्रणाली है, जिसमें किसी भी वर्ण को व्यक्त करने के लिए 16 बाइनरी अंकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर हम इसमें विभिन्न प्रकार के 65,536 संयोजन कर सकते हैं, और इतने संयोजनों में विश्व की हर भाषा के सभी वर्ण और संकेत शामिल हो सकते हैं। इसीलिए यूनिकोड कंसोर्शियम ने विश्व की हर भाषा के प्रत्येक वर्ण को एक निश्चित 16 अंकीय कोड देकर यूनिकोड में शामिल कर लिया। यानी कि आप दुनिया के किसी भी भाषा का कोई वर्ण ले ले, यूनिकोड में उसके लिए कोई न कोई अद्वितीय संयोजन जरूर होगा तथा यही संयोजन कंप्यूटर पर उसके सुविधाजनक उपयोग को संभव बनाता है। इस व्यवस्था में हर भाषा को समान स्तर प्राप्त है। यूनिकोड से पहले सैकड़ों एनकोडिंग प्रणालियां प्रचलित थी, जिनके कारण भाषाई कंप्यूटरीकरण का मानकीकरण नहीं हो पा रहा था। हर भाषा की अपनी एनकोडिंग प्रणालियां थी और उसके आगे एक ही भाषा में भी कई प्रकार की प्रणालियां भी प्रचलित थी। साथ ही इनकी अपनी अपनी सीमाएं थी जिनके कारण इनका विस्तार एक से अधिक भाषाओं के लिए एक साथ नहीं किया जा सकता था। यदि हम 7-बिट इनकोडिंग की बात करें तो इसमें किसी भी वर्ण को दर्शाने के लिए 7 बाइनरी अंकों का उपयोग किया जाता था, अर्थात कुल मिलाकर इसमें विभिन्न तरह के 128 संयोजन हो सकते थे जो किसी एक ही भाषा के वर्णों को दर्शा सकते थे। इसीलिए ट्रू टाइप फॉन्ट्स की आवश्यकता होती थी जो इन संयोजनों को विभिन्न भाषाओं में दिखाने का कार्य करते थे। यूनिकोड का जादू मंत्र, यूनिकोड तकनीक का सबसे अधिक लाभ गैर अंग्रेजी लिपि वाली भाषाओं को मिला है। आज हम यूनिकोड का उपयोग करके किसी भी भाषा में लिखे गए टेक्स्ट को दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पर बिना कोई फॉन्ट इंस्टॉल किए देख सकते हैं। बस उस कंप्यूटर को यूनिकोड संगत होना चाहिए। यूनिकोड संगत कंप्यूटर दुनिया की हर भाषा से पहले ही परिचित होते हैं तथा इन्हें दर्शाने के लिए आवश्यक सेटिंग इनमें पहले से ही विद्यमान रहती है। इन भाषाओं में सभी प्रमुख भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। विंडोज XP, विंडोज विस्टा, मैक X10, रेड हैट लिनक्स आदि यूनिकोड संगत ऑपरेटिंग सिस्टमों के कुछ उदाहरण हैं। विंडोज ने अपने 2000 संस्करण में पहली बार यूनिकोड सपोर्ट दिया था। इसका हाल ही में लॉन्च विस्टा संस्करण उड़िया जैसी भारतीय भाषाओं के लिए भी पहली बार सपोर्ट लेकर आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर का यूनिकोड संगत होना भी आवश्यक है। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने से लेकर इंटरनेट तक यूनिकोड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आप कंप्यूटर पर यूनिकोड टेक्स्ट देखने और पढ़ने के अलावा उपयुक्त इनपुट मेथड एडिटर का उपयोग करके यूनिकोड टेक्स्ट लिख भी सकते हैं। इसकी मदद से एक ही फाइल में फॉन्ट सेट किए बिना विभिन्न भाषाओं का टेक्स्ट लिखना भी संभव है। आजकल तो विभिन्न टाइप फेस वाले यूनिकोड फॉन्ट भी उपलब्ध हैं जो आपके टेक्स्ट को सुंदरता प्रदान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्टार ऑफिस तथा ओपन ऑफिस जैसे सूट आजकल यूनिकोड संगत हो गए हैं तथा आपको प्रतिदिन का हर कार्य यूनिकोड में निपटाने की सुविधा देते हैं। इनमें न सिर्फ आप अपनी भाषा में कार्य कर सकते हैं बल्कि फाइल का नाम, मेल मर्ज, हेडर फुटर, कमेंट्स, सॉर्टिंग, वर्तनी जांच आदि भी अपनी भाषा में कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं अब तक केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी। इसके अलावा इंटरनेट पर भी भाषाई वेबसाइट्स में यूनिकोड अपनाने का काम तेजी से चल रहा है। नई भाषाएं साइटें यूनिकोड में ही आ रही हैं और पुरानी साइटों में कन्वर्जन का काम तेजी से चल रहा है। इन वेबसाइट्स को दुनिया में कहीं भी बिना कोई विशेष फॉन्ट डाउनलोड किए देखा जा सकता है। गूगल, याहू, एमेसन, BBC तो भारतीय भाषाओं में अपनी यूनिकोड आधारित वेबसाइट्स लेकर आ भी चुके हैं। यूनिकोड में वेबसाइट बनाने का एक अन्य लाभ ये भी है कि गूगल और याहू जैसे सर्च इंजिन्स द्वारा इन्हें खोजा जा सकता है, चाहे वो टेक्स्ट किसी भी भाषा का क्यों न हो। केवल उस भाषा में खोज टेक्स्ट लिखिए और इच्छित परिणाम आपके सामने होंगे। वेबसाइट्स को अपना व्यवसाय और विजिबिलिटी बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रू टाइप फॉन्ट्स में बनने वाली भाषाई साइटों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवश्यकताएं आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सॉफ्टवेयर यूनिकोड संगत होते हैं। इन्हें यूनिकोड के साथ तुरंत उपयोग किया जा सकता है। यूनिकोड का लाभ वे लोग नहीं उठा पाएंगे जो पुराने कंप्यूटर सिस्टम जैसे 486, विंडोज 98 आदि का उपयोग कर रहे हैं। इस तकनीक का उपयोग करने के लिए उन्हें अपने हार्डवेयर अपग्रेड कराने होंगे। यूनिकोड के साथ उपयोग करने के लिए कंप्यूटर को कम से कम P4 2 GHz होना चाहिए तथा उसमें 40 GB हार्ड डिस्क और 256 MB रैम होना आवश्यक है। माइक्रोसॉफ्ट तो अपने अधिकांश सॉफ्टवेयर को यूनिकोड संगत बना चुका है, लेकिन कई प्रचलित सॉफ्टवेयर जैसे क्वार्क एक्सप्रेस तथा एडोबी के कई सॉफ्टवेयर्स में यूनिकोड सपोर्ट आना बाकी है। उस दिन की कल्पना करें जब सभी सॉफ्टवेयर यूनिकोड संगत होंगे। शायद उस दिन भारतीय भाषाएं कंप्यूटर की दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषाएं होंगी और ये इतिहास हो जाएगा कि जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वे कंप्यूटर नहीं सीख सकते।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हिंदी में कंप्यूटर और लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता थी आपकी रेडियो दोस्त अंतरा करपड़े जी। दोस्तों, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, ठोकर लगी है तो खुद को संभालिए और उठिए और आगे बढ़िए। श्रोताओं, कहते हुए थोड़ी सी मायूस हो जाती हूँ कि अब आप लोगों से दूर जाने का वक्त हो गया है। अनुमति दीजिए मुझे यानी आपकी रेडियो सहेली ज्योति गुजुर को, और सुनते रहिए सत्य स्वर जो है हर पर हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब अगली सभा के लिए आपको नए कार्यक्रमों से रूबरू कराएंगे विवेक जी। दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह सुनिए एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने यह कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है कहीं टूट न जाए सौहार्द के धागे। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता हैं फादर हरमन मंडोड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है कहीं टूट न जाए सौहार्द के धागे। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार। M.N. बुच अपने एक लेख में लिखते हैं कि हमारे देश ने अपनी स्वतंत्रता पर एक स्वप्न देखा था कि भले ही हमारा एक अंग मजहब के आधार पर हमसे अलग हो गया हो लेकिन हम एक पंथ निरपेक्ष बहुभाषी और बहुजातीय समाज में ही रहेंगे। समय आ गया है कि हमारा शासन ऐसे लोगों से दृढ़ता और शक्ति से निपटे जो हमारे इस संकल्प के शत्रु हैं। मित्रों हमारे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी विभेद से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार हर नागरिक को है और अनुच्छेद 325 के तहत धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा और न ही कोई विशेष निर्वाचन नामावली इन कारणों पर बनाई जाएगी। ऐसे में किसी का यह कहना कि अमुक मजहबी समुदाय को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, उसे निर्वाचन या मतदान का हक प्राप्त नहीं होगा या उसे उसके नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा पूर्णतः संविधान के विपरीत है। IPC की धारा 153 क और 153 ख के तहत यह दंडनीय अपराध है। भारत के किसी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूलभूत अधिकारों पर सवाल उठाए क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति IPC की धारा 124 के अधीन अपराधी माना जाता है। मित्रों उपरोक्त विधि और विधान का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि हाल में ही विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने महाराष्ट्र के नांदेड़ व पुणे और मध्य प्रदेश के दमोह में उग्र और उत्तेजक शब्दों में मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध बयान दिए हैं जिनका लबोलुआब यह है कि यदि वे या उनका दल सत्ता में आया तो मुसलमानों के नागरिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, उन्हें मतदान एवं चुनाव के अधिकारों से वंचित किया जाएगा और उन्हें भारत से खदेड़ने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सार्वजनिक पदों से मुसलमानों को हटाया जाएगा। पाकिस्तान के तहरीके तालिबान ने बहुत अनर्थ किया है परंतु कट्टर से कट्टर मुल्ला ने भी वहां के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इतिहास इतिहाद अल मुसलमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया था जिसका विरोध हिंदू समाज ने किया तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जब उसके बड़े भाई असाउद्दीन ओवैसी ने उसकी गिरफ्तारी का विरोध जताया तो सांसद होने के बावजूद उसे भी हिरासत में लिया गया और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई सराहनीय है क्योंकि सांप्रदायिकता किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, परंतु महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शासन ने तोगड़िया को आज तक हथकड़ी नहीं लगाई है। यह खेद है कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन था तब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी यह कहा अवश्य था।

जब संविधान भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जब हर नागरिक के अधिकार और कर्तव्य समान है, जब भारतीय दंड संहिता द्वारा संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने या बयान देने को अपराध माना जाता है, फिर शासन कार्यवाही क्यों नहीं करता है? दो और मिसालें देखिए। कश्मीर में वहां के प्रमुख मुफ्ती ने एक फतवा दिया कि तीन स्कूली छात्राओं द्वारा गठित रॉक बैंड गैर इस्लामिक है और इन बेचारी लड़कियों को यह बैंड छोड़ना पड़ा। लेकिन मुफ्ती साहब ने न केवल संविधान के अनुच्छेद 51 क का उल्लंघन किया, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को अपने फतवे से अपमानित किया, बल्कि उन्होंने इन लड़कियों को धमकाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत भी दंडनीय अपराध किया है। लेकिन मुफ्ती साहब को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी प्रकार दारुल उलूम देवबंद से एक फतवा जारी हुआ था कि 10 वर्ष से अधिक उम्र की कोई भी लड़की स्कूल नहीं भेजी जा सकती। संविधान में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है और किसी को इसका उपयोग करने से रोकना दंडनीय अपराध है। यह फतवा जारी करने पर विधिवत कार्यवाही क्यों नहीं हुई? हिंदू समाज के भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। यदि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अस्पृश्यता छुआछूत पर निषिद्ध है तो उन्हें कहीं भी आने जाने से जाति के आधार पर रोका नहीं जा सकता। तो क्या धर्म के आधार पर अपवित्र बताकर किसी धार्मिक स्थान पर जाने से रोका जा सकता है? अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के संबंध में छूट है और अनुच्छेद 26 के तहत हर संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, परंतु क्या इस स्वतंत्रता का उपयोग इस तरह से करना जिससे छुआछूत को बढ़ावा मिले असंवैधानिक या अवैधानिक नहीं है? इस संबंध में आज भी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय को आज नहीं तो कल इस पर अपना निर्णय देना होगा, परंतु शासन का चुप्पी साधे रहना गलत है और इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है। भारत ने स्वतंत्रता पर एक स्वप्न देखा था कि भले ही हमारा एक अंग मजहब के आधार पर अलग हो गया हो, लेकिन हम तो पंथ निरपेक्ष बहुभाषी बहुजातीय समाज में ही रहेंगे। हमारे इस संकल्प का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत में सभी धर्मों को समान स्तर पर पनपने का अवसर मिले और सार्वजनिक जीवन में हर भारतीय के समान अधिकार व कर्तव्य हो। मित्रों, समय आ गया है कि हमारा शासन व समाज ऐसे लोगों से दृढ़ता और शक्ति से निपटे जो हमारे इस संकल्प के शत्रु हैं। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था कहीं टूट न जाए स्वहर्त के धागे, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है घर की साफ सफाई और नारी, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार।

नारी सशक्तिकरण शीर्षक है घर की साफ सफाई और नारी। नारियों की महिलाओं की जब बात हो रही हो तो साफ सफाई स्वच्छता की बात भला कैसे भूल सकते हैं। महिलाएं और साफ सफाई का संबंध बड़ा गहरा है। सफाई स्वच्छता महिलाओं के व्यक्तित्व को भी निखारती है। घर परिवार से लेकर बाल बच्चों तक, आस पड़ोस से लेकर स्वयं तक सफाई रखने की जरूरत होती है और यही साफ सफाई महिलाओं की स्वच्छता की पहचान है, साथ ही उसके स्वस्थ मानसिकता की भी पहचान है। साथियों, कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ये कहावत काफी पुरानी हो चुकी है लेकिन है बिल्कुल सही, और इसकी पूरी जिम्मेदारी घर की मुखिया यानी घर की गृहिणी यानी घर की कुशल गृहिणी नारी पर निर्भर करती है। एक महिला ही घर के सारे सदस्यों को सफाई की शिक्षा देती है, उसके बारे में बताती है सबों को, तो घर को साफ सुथरा रखती भी है। बच्चा जब छोटा होता है तभी से महिला उसे सफाई के बारे में सिखाती है। उसे छोटे बच्चे को बचपन से ही सफाई की बारीकियों के बारे में बताती है, छोटी छोटी चीजों में सफाई का महत्व बताती है। शरीर की सफाई, कपड़े की सफाई, बिस्तर, कंघे, तौलिए और न जाने किस किस की सफाई, सब कुछ महिला का दायित्व होता है। तो जिस घर में नारी सफाई पसंद होती है साथियों, उस घर के प्रत्येक सदस्य सफाई से रहते हैं। परंतु जिस घर की गृहिणी गंदे संदे ढंग से रहती है, वहां के सदस्य भी गंदे ढंग से रहने की आदत में आ जाते हैं। एक साफ सुथरी महिला का घर चमकता रहता है, पर जिस गृहिणी को सफाई से रहने की आदत नहीं होती, उसका घर भी अस्त व्यस्त और गंदगी से पटा होता है। ऐसे घर में कीड़े मकोड़े, जाले, चूहे, छिपकली का डेरा भी होता है। साफ तौर पर कहा जाए तो साफ सफाई का पूरा दारोमदार महिला पर होता है, उसका पूरा व्यक्तित्व भी इससे प्रभावित होता है। साथियों, सफाई पसंद महिलाओं की बात ही अलग होती है। उनके घर का कोना कोना साफ होता है, ऐसे महिला के घर बार बार जाने की इच्छा होती है। उस महिला द्वारा बनाया गया भोजन खाने को मन करता है, पर इसके ठीक विपरीत ऐसी महिला जो अपने घर को गंदे ढंग से रखती है, उसके घर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। उस घर में खाना आदि खाने की बात ही दूर है। ऐसे ही एक बार मुझे किसी दोस्त के घर जाना पड़ा। अब उस घर में जैसे ही मैं प्रवेश की, मैं बता नहीं सकती उस घर की हालत। 5 मिनट बैठना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। घर में सब तरफ सीलन और कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। जहां भी नजर जाती वहां गंदे गंदे मैले कपड़े दिखते, चादरें, पर्दे, गद्दे, रजाई सब कुछ बहुत ही काले काले और बिल्कुल मैले से थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से नहीं धुले हैं। फिर रसोई घर की ओर निगाह गई, सारे बर्तन गंदे, काले और जंग लगे हुए थे। सारे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे। अब उस घर की महिला पानी लेकर आई, मैंने पानी पीने से मना कर दिया। यह सब देखते हुए मुझसे नहीं पिया गया। वो चाय और खाने के लिए भी बहुत आग्रह कर रही थी, पर मेरे लिए वहां 5 मिनट बैठना भी सजा के समान था। मैं सोच रही थी कैसी महिला है जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है और बहुत अच्छी बातें करती है, प्यार से बातें करती है, पर घर की हालत इतनी गंदी और दयनीय थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी महिलाएं कैसी होती हैं, आलसी होती हैं या गंदगी में इन्हें रहने की आदत होती है। उनके घर में 3 बेटियां थीं। इसके बाद भी घर में चहुं ओर गंदगी और गंदगी ही गंदगी थी, क्योंकि माँ खुद गंदे तरीके से घर रखती आई है, इसलिए उनकी बेटियों ने भी गंदगी में रहना सीख लिया था। देखा जाए साथियों तो यहां भी माँ पर ही सब कुछ टिका हुआ था। माँ को जिस रूप में देखा, बच्चों ने भी वही अमल में किया और वही सीखा। तो दोस्तों,
इसी तरह एक घर में शादी थी। वहां जाने की नौबत आई। हम पूरे परिवार के साथ शादी में शरीक हुए। दिन में सबने खूब मस्ती की, पर अब रात को सोने की बारी थी। क्योंकि दिन को सब थक चुके थे, इसलिए रात को सोने की जल्दी थी। जैसे ही हम बिस्तर पर लेटे, बत्ती बुझी कि कुछ शरीर पर चलने सा आभास हुआ। बत्ती जलाई तो मैंने देखा खटमल, अरे बाप रे, खटमल पूरे बिस्तर पर इधर उधर चल रहे थे। हम सा परिवार बिस्तर से भाग खड़े हुए। हमने पूरी रात बैठकर गप्पे करते हुए बिताई। गंदगी से ही खटमल पनपते हैं। उन्होंने बिस्तर पर साफ चादरें बिछा रखी थीं, मगर हमने चादर उठाकर देखा तो रजाई गद्दे इतने गंदे थे कि आप पूछिए मत। इस तरह से देखा जाए तो गंदगी छुपाई नहीं छुपती, इसलिए सफाई रखना है तो अंदर से बाहर तक की सफाई होनी चाहिए। यह सब कुछ महिला का दायित्व है। पूरे घर की साज संभाल महिला की होती है, जिस पर सारा परिवार आश्रित होता है। साथियों, एक बार घर में पारिवारिक भोजन का आयोजन रखा गया। सारे नाते रिश्तेदार इकट्ठे हुए। एक रिश्तेदार काफी दूर से आया था। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों बच्चे जब देखो तब सिर ही खुजाते रहते थे। बच्चों के बाल खूब गंदे दिख रहे थे। जिस बिस्तर पर माँ बच्चे सोए थे, वहां बिस्तर पर सोने वाले अन्य मेहमानों को अपने सिर पर जूं मिले। बाद में पता चला कि माँ के सिर पर और बच्चों के सिर पर जूं भरे पड़े थे। दूसरे दिन माँ और बच्चों से सारे लोग दूर दूर रहने लगे। कुछ लोग तो माँ से घृणा करने लगे, उन्हें घृणा भाव से देखने लगे। इसीलिए एक महिला ही पूरे परिवार की साफ सफाई की बीड़ा उठा सकती है। महिला के अंदर इतनी विशाल ऊर्जा है कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल वह कहीं भी कर सकती है। साफ सफाई भी महिला के भीतर की आंतरिक प्रेरणा होती है। महिला अगर घर परिवार समाज की गंदगी हटाने का भरसक प्रयत्न करे तो यह असंभव नहीं होगा। साथियों, महिलाएं जानती हैं कि सफाई का जीवन में कितना महत्व है।

बजट में कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था घर की साफ सफाई और नारी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचना भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है मन दर्पण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मन हो शांत शांति विश्वासी। इस वार्ता के लेखक कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुत करता है भवानी कौल।

मन दर्पण के अंतर्गत सुनिए वार्ता। मन हो शांत, शांति विश्वासी। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे। वाचिका भवानी कौल। शांति क्यों नहीं है कहीं? अब शांति को कहां खोजे हम? कविता की ये दो पंक्ति मुझसे कुछ कह सी गई और मैं सोचने लगा था, हम कहीं भी जाएं, चाहे वहां सभा हो, उत्सव हो, कोई गोष्ठी हो, मिलन समारोह हो, वहां कुछ ऐसे स्वर जरूर सुनाई देंगे, अब शांति कहीं नहीं है। यह हमारा समाज कैसा होता जा रहा है? हर कहीं अव्यवस्था, अशांति, हर कहीं असंतोष और भ्रम का वातावरण, पग पग खड़ी की जा रही मुश्किलें, फैलाया जा रहा आतंकी वातावरण, हर कहीं मानवीय मूल्यों का निरंतर हो रहा ह्रास और समाज के हर स्तर पर पैदा किया जा रहा हाहाकार, और इन सब के बीच मानो शांति तिरोहित हो गई, ढूंढो भी तो वह नहीं मिलेगी। हर मानवीय मन अशांत है, कहां मिले शांति? आज हर मन उसी की खोज कर रहा है, ढूंढ रहा है उसे। अब स्थिति तो यह हो गई है दोस्तों, जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहां? इस सोच ने अंतर मन में कई बातें पैदा की। अगर हम गहराई से सोचें तो यह अशांति किसी और ने नहीं, यह स्वयं आज के मानव की ही सृष्टि है, उन्हीं ने इसे पैदा की है। हम भूले नहीं, ईश्वर ने शांतिपूर्ण सृष्टि की रचना की थी, लेकिन मनुष्य ने अपनी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने विकास की गलत अवधारणाओं के कारण जिस चीज को जन्म दिया वह अशांति ही थी। साथियों, मनुष्य जाति की विकट प्रतिस्पर्धा ने इस अशांति के धधकते कुंड में हर बार नई नई संविधाएं डाली, जिससे अशांति की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। इतिहास के इस बिंदु को हम खोजें कि जहां से मनुष्य ने सर्वप्रथम अशांति के बीच बोए, जो आज महावट वृक्ष की भांति पूरी तरह फैलकर अपने नीचे एक घने अंधकार की सृष्टि कर डाली है, जहां हाथ से हाथ नहीं सूझता और उनके नीचे किसी भी तरह की शांति पौध को उगने पनपने की संभावनाएं भी पूरी तरह समाप्त कर दी है। अशांति की इन अद्भुत शाखाओं ने अब हर ओर विस्तार पा लिया है। इससे मनुष्य विकल है, पृथ्वी विकल है, उस पर बसने वाले प्राणी ही नहीं बल्कि कहें वनस्पति जगत तक विकल है। इन सभी विकलताओं के पीछे है तो वह है घनी अशांति। साथियों, मनुष्य जाति ने ही जिस अशांति को जन्म दिया, उसने मात्र मानव मन मस्तिष्क को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि अपने आसपास को, सारे समाज को ही अशांति सौंप दी। आज कहीं किसी को सांत्वना नहीं है, मनुष्य स्वयं अपने कंधों पर अशांति का भारी बोझ ढोने को विवश है। तो मित्रों, आज के अधिकांश संचार माध्यम अशांति की लहरें उगल रहे हैं। यही नहीं, साहित्य भी, जिसकी भूमिका है मनुष्य को विश्वास और आस्था देना, वह भी अशांति और विक्षोभ की स्थिति पैदा करने का अपराध करने लगा है। अन्य संचार माध्यम, सिनेमा, टीवी आदि भी इसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इस खेल को सभी देख और सुन रहे हैं। यह सब अशांति और हिंसा के संदेशवाहक बनते जा रहे हैं। इन स्थितियों के बीच अब सब सोचें, मनुष्य का मन कैसे शांत रह सकता है? वह कहां सुस्थिरता पाएगा? यह अशांति का दौर आज इसलिए है कि मनुष्य समाज के हर बड़े भाग ने जीवन में भौतिकता को अधिक से अधिक स्थान देना शुरू कर दिया है। प्रभु आराधन, जो मनुष्य के मन को शांति, आंतरिक सुख सुखद चिंतन और जीवन में आस्था विश्वास की सृष्टि करता है, लोगों ने उसे भुला देने का सीधे पाप किया है। याद रखें, अगर आप किसी अच्छाई को त्यागते हैं तो निश्चित बुराई प्रवेश करेगी ही। अगर मन में आस्था और भक्ति नहीं है तो निश्चित उस मन में अनास्था होगी, और अनास्था अशांति, क्रोध और असंतोष का कारण बनेगी ही। ईर्ष्या और द्वेष का जन्म होगा ही, मन अनेक विचारों से भरेगा ही।
जैसे कोई तूफान किसी भी जलाशय को, किसी भी वृक्ष को, वन को उद्वेलित करता है, ठीक वैसा ही गति मन की होती है, वह भी उद्वेलित और मथित कर दिया जाता है। फिर उस मन में यह क्षमता नहीं होती कि वह उस अशांति को, उस आवेग को रोके कैसे, हम इससे कैसे मुक्त रहें। अनेक मनीषियों ने, चिंतकों ने और संत जनों ने इसका सही मार्ग भी बताया है। तो इसी संदर्भ में कहा गया है दोस्तों, मनुष्य का मन शुद्ध न हो, अशुद्ध रहे, शांत रहे, ताकि बाहरी अशांति रहते हुए भी मनुष्य उससे मुक्त रह सके, क्योंकि ऐसा करना ही शांति का सच्चा स्रोत है। मित्रों, पश्चिम जगत में एक प्रसिद्ध संत मनीषी हुए हैं। उन्होंने मनुष्य को शांत और अशुद्ध रहने का संदेश दिया है, जो आज के इस अशांत युग में हमारा सहज मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने कहा था, हृदय को शांत रखो, दुनिया की किसी भी चीज से उसे उद्विग्न न होने दो। हर चीज का अंत होता है, सभी परिस्थितियों में, भले ही वह कितनी ही विकट क्यों न हो, हमें विशुद्ध रहने के बजाय आनंदित ही होना चाहिए, ताकि हम उस सर्वाधिक हितकारी चीज आत्मा की शांति और अक्षुब्धता को खो न बैठें। आगे उन्होंने कहा, यदि सारी दुनिया और उसकी सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दी गई हों, तो भी उसके लिए अशांत होना व्यर्थ है, क्योंकि वह अशांति व्यक्ति का हित नहीं अपितु हानि ही अधिक करेगी। तब चीजों को अक्षुब्ध और शांत भाव से सहना, आत्मा को अनेक वरदानों से भरने के अलावा हमें अपनी विपदाओं के बीच भी उनके प्रति सही निर्णय करने और समुचित उपचार करने योग्य बनाता है। क्या ये महिमामय संत वचन आज के यानी वर्तमान अशांत युग में हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं? याद रखें, ऐसे ही चिंतक मनीषी संतजनों के वचनों की दिव्य ज्योति हमें उजाला देती है, जीवन मार्ग को सही रूप में प्रकाशित करती है, ताकि हम अपने सही मार्ग से भटके नहीं। अगर हम अपने सही मार्ग से भटक भी जाएं, तो वे हमें सही मार्ग की सही दिशा में प्रेरित कर ही देंगे। बस आवश्यकता है उन वचनों के अनुपालन की। लेकिन आज का एक सामाजिक सत्य यह भी है दोस्तों, कि इस धरती पर ऐसे भी कुटिल तत्व हैं जो हर कहीं अशांति को जन्म देकर अपने को लाभान्वित पाते हैं। आज यह इसलिए भी संभव है कि दुनिया एक नगर आंगन में परिवर्तित हो गई है। मनुष्य का मन उद्वेलित करने वाली सूचनाएं हर कहीं सहज पहुंच जाती है और उनसे अशांत लहरें उठने लगती हैं। उससे मानव मन सहज उद्वेलित हो उठते हैं, वे सब अपने में अशांति अनुभव करने लगते हैं। एक सच यह भी है कि विज्ञान ने मनुष्य के हित में भूमिका निभाई है, पर कई दुख भी उसने पैदा किए हैं। मानव मन में अशांति पैदा करने की भूमिका का भी उसने निर्वाह किया है। हम इसे भी माने कि कुछ इंसानों के मन ही जैसे अशांत रहने के लिए बने हैं। ऐसे व्यक्ति दूर से ही नजर आते हैं कि वे अपने आप में कितने अशांत, कितने व्यथित हैं। सच तो यह है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति मन को अशांति देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जो अपने आप को हर जगह असमर्थ पाते हैं,

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन हो शांत, शांति विश्वासी, एवं इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है हमारा मॉनसून। लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता बोरेकर।

पर्यावरण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है हमारा मानसून। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता हैं समता बोरेकर। श्रोता साथियों, बारिश की बूंदे हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को संगीत से भर देती है, जिसकी राग और ताल पर हमारी ये दुनिया थिरक उठती है। और न सिर्फ थिरकती है, बल्कि मानसून किसी कुशल चित्रकार की तरह धरती पर खूबसूरत रंगीन नजारों की पेंटिंग भी करता है। मानसून के इस चटकीले रंग ने मानव मन और मस्तिष्क पर अपना जो असर छोड़ा है वो कल्पना से परे है। वैज्ञानिक, लेखक, कवि, चित्रकार, गीतकार या संगीतकार हो, या फिर राजा, रंग, जनता या सरकार, इनमें से ऐसा कोई नहीं जो मानसून के जादू से बचा हो। दोस्तों, यह मानसून भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में कृषि का आधार है। लेकिन दोस्तों, पहले ये तो बताइए कि यह मानसून शब्द आया कहां से। इस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई। अरब के समुद्री व्यापारी समुद्र की ओर या उसके विपरीत चलने वाली हवाओं को मौसम कहा करते थे। यही मौसम आगे चलकर मानसून कहा जाने लगा। श्रोता साथियों, यह मानसून वास्तव में पृथ्वी पर सबसे बड़ी जलवायु संरचना है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भूगोल पर इसका विस्तार लगभग 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। यह मानसून मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण विकसित रूप से मिलता है, लेकिन अमेरिका, मैक्सिको के पश्चिमी भागों तक इसके तार जुड़े हुए हैं। श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हम सभी मानसून पर निर्भर होते हैं। मानसून के कारण ही अच्छी वर्षा और अच्छा कृषि उत्पादन होता है। और तो और, यदि इस मानसून चक्र के आने में जरा सी देरी या जल्दी हो जाए तब भी हम प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे पर्यावरण की उचित और सुचारू गति भी इसी मानसून चक्र से प्रभावित होती है। हमारी प्रकृति और पर्यावरण को लय ताल में बांधने वाले इस मानसून चक्र को आखिर समझा कैसे जाए। दरअसल साथियों, यह मानसून चक्र धरती और समुद्री जल के ऊपर वर्ष भर पड़ने वाली ऊष्मा के फलस्वरूप होने वाले तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, ताप के अंतर पर। इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा दोस्तों कि जलीय एवं स्थलीय भागों में सौर विकिरण को धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। स्थल भाग की तुलना में सूर्य की ऊष्मा समुद्री जल को अधिक देर से गर्म कर पाती है। देखिए दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि बरसात का मौसम गर्मियों के बाद आता है। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में गर्मियों में मानसून का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। जाड़े के पश्चात अप्रैल मई में सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी पाकर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलीय भाग, जहां एक ओर तो खूब गर्म हो जाता है, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर की विशाल जलराशि अपेक्षाकृत ठंडी होती है। अब श्रोता साथियों, होता यह है कि स्थलीय भाग की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण वहां निम्न दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तापमान के अंतर और निम्न दबाव की स्थिति के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और फिर यहां से उच्च दाब वाली शीतल समुद्री हवाएं अपने साथ भारी नमी लिए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर भारत के पश्चिम में सह्याद्री और उत्तर में हिमालय पर्वत जैसी रुकावट के कारण ये मानसूनी हवाएं ऊपर उठती है और फिर वहां की ठंडक के कारण संघनित हो जाती है। संघनित होकर वर्षा की बूंदों में ये हवाएं बदल जाती हैं। दोस्तों, ये मानसूनी हवाएं हवा के बहने की दिशा के अनुसार दो तरह की होती हैं, दक्षिण पूर्वी मानसून और उत्तरी पश्चिमी मानसून। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बनी मानसूनी हवाएं आगे बढ़ने पर केरल के निकट पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत के मेघालय में गारो खासो की पहाड़ियों से टकराकर 2500 मिलीमीटर से भी ज्यादा वर्षा करती है दोस्तों।
और दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी शाखा पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार, भूटान और नेपाल में वर्षा करती है। इसी तरह श्रोता साथियों, दक्षिण पूर्वी मानसून शाखा आगे बढ़कर गंगा के मैदानी हिस्से से नमी लेती है और फिर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में वर्षा करती है। ये दक्षिण पूर्वी मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसकी नमी धीरे धीरे कम होने लगती है और साथ ही साथ साथियों, वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है। सितंबर के लगभग अंत तक यह स्थिति उलट जाती है दोस्तों, और फिर ये हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते समय ये यहां पर फिर से नमी से भर जाती है। उत्तरी पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये मानसूनी हवाएं लौटते समय भारत के तमिलनाडु, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में वर्षा करती है। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसे होती है बारिश। श्रोता साथियों, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही होती है ना, तब इस क्रम में पृथ्वी का एक हिस्सा कुछ समय के लिए सूर्य से कुछ दूर चला जाता है और एक हिस्सा सूर्य के एकदम सामने आ जाता है। इसे ही सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर दो काल्पनिक रेखाएं हैं, पहली है कर्क रेखा और दूसरी है मकर रेखा। सूर्य के उत्तरायण के समय सूर्य कर्क रेखा पर होता है और दक्षिणायन के समय मकर रेखा पर। पृथ्वी पर इसी परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल और शीतकाल का आगमन होता है। आप ये तो जान ही गए होंगे ना दोस्तों कि हवा की दिशा और वायु का दबाव ही मानसून के मुख्य घटक है। ग्रीष्मकाल में 21 मार्च से सूर्य का उत्तरायण होना शुरू होता है और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। दोस्तों, इस कारण मध्य एशिया का भूभाग काफी गर्म हो जाता है और यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, यानी निम्न वायु दाब की स्थिति बन जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरीय भाग पर ठंड के कारण उच्च वायु दाब होता है और फिर यहाँ से हवाएं निम्न दबाव की ओर बहने लगती है। श्रोता साथियों, देखिए हमारी ये प्रकृति और पर्यावरण कितना व्यवस्थित और संतुलित तरीके से कार्य करते हैं। नियत समय पर मौसम बदलते हैं, नियत समय पर बारिश हो जाती है ना? मुझे तो ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको मैं ये बताती हूँ कि मानसून के कारण होने वाली वर्षा भी तीन प्रकार की होती है, चक्रीय मानसूनी वर्षा, पर्वतीय मानसूनी वर्षा और संवहनीय मानसूनी वर्षा। खैर दोस्तों, ये वर्षा भले ही किसी भी प्रकार की हो, लेकिन हमारे पर्यावरण के साथ साथ हमारे मन मयूर को भी तो भिगो देती है ना? बारिश की पहली बूंदों के साथ ही हमारी ये धरती साज श्रृंगार में लग जाती है। नई नई कोपलों, नए अंकुरों का जन्म होता है। गर्मी से तपती धरती पर जब मानसूनी बादलों की छांव पड़ती है तो मयूरों के साथ साथ पेड़ पौधे भी नृत्य करने लगते हैं। ये सारा पर्यावरण ही संगीतमय हो जाता है। बिल्कुल आज के मशहूर शायर गुलजार के इस नज्म की तरह कि मीठा है कोसा है, बारिश का बोसा है ना दोस्तों? तो आइए ना इस बारिश और मानसून का मजा उठाते हैं और गाते हैं कि बरसो रे मेघा मेघा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हमारा मॉनसून। लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता थी समता बोरेकर। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ग्लोरिया गांगले को। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य सेहत। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा ये है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वो सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम के पिछले अंक से आगे चलेंगे जिसका शीर्षक था जीवन में उत्साह। साथियों पिछले स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार से हम कुछ प्रयत्न ऐसे करें जिससे पूरे जीवन भर हमें उत्साह और खुशी ये सारे तत्व मिलते रहें। वाकई इन तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम स्वयं को स्वस्थ रखने में कर सकते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य से हमें वापस खुशी ही मिलती है। तो साथियों ये चक्र चलता रहे इसके लिए हम लोगों ने पिछले अंक में ये भी बातचीत की थी कि यदि हम अपने स्वास्थ्य को सुधारें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने असंतुलित भोजन को संतुलित भोजन की ओर ले आएं और व्यायाम को भी जीवन में सम्मिलित करें। ये सारी चीजें अचानक न करके हम धीरे धीरे करें। इसके अलावा हमें जो ढेर सारा जल सेवन करना चाहिए उससे हमें जो फायदे मिलते हैं वो वाकई हमें शारीरिक ऊर्जा से भर देते हैं। साथ ही वक्त की पाबंदी के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। ये तो सही है साथियों कि हम जीवन में जितने नियमित होते जाते हैं, किसी भी नियम को रोजाना उसका अनुपालन करना, उसके अनुसार चलना, ये हमें आत्मविश्वास से भर देता है। और जब हम स्वयं नियमित होते हैं तब किसी भी अन्य व्यक्ति को इस संबंध में कहते हुए हमारे मन में आत्मविश्वास होता है। यही आत्मविश्वास हमें फिर से एक नई ऊर्जा देता है, नई खुशियां और उत्साह देता है। तो साथियों एक नियमितता यदि आपके जीवन में हो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति, तो उसके कितने सारे फायदे आपको जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर मिलते रहते हैं। अब बात चली है आत्मविश्वास की, तो हम में से कई साथियों को जो कि स्वस्थ होना चाहते हैं, आत्मविश्वासी होना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को लेकर थोड़ी सी हीन भावना होती है। कई बार हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि उनका रंग उतना उजला नहीं है जितना कि सबका है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कद सामान्य से थोड़ा कम है या फिर कद सामान्य से जरा ज्यादा ही ऊंचा है। कई को अपनी शारीरिक यष्टि अच्छी नहीं लगती, वे या तो बेडौल होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं। सामाजिक रूप से उन्हें ऐसा लगता है कि वे स्वीकार्य नहीं हैं, उन्हें सामान्य तरीके से नहीं लिया जाता है। लेकिन साथियों ये भी एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य है कि आप स्वयं को जितने अच्छे तरीके से पसंद करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से समाज आपको पसंद करेगा। आप यदि बार बार सभी के सामने अपने गहरे या दबे हुए रंग की चर्चा करेंगे तो सभी को ये चीज लगने लगेगी कि हाँ वाकई इसका रंग दबा हुआ है और शायद इसके मन में इस चीज को लेकर हीन भावना है। ऐसे में बाकी सभी का व्यवहार आपके प्रति सामान्य नहीं रहेगा और आपके मन में ये धारणा पुख्ता हो जाएगी कि आपका दबा हुआ रंग ही आपकी प्रत्येक असफलता के लिए कारणीभूत है। तो सबसे पहले यदि आप में आत्मविश्वास है तो उसी आत्मविश्वास के साथ ईश्वर ने आपको जो भी दिया है, जैसा भी शरीर दिया है, जैसा भी स्वास्थ्य दिया है, उसे सबसे पहले स्वयं प्रेम से और आत्मविश्वास से स्वीकार करें। मान लें कि आप आत्मविश्वासी हैं, आपको जिस भी प्रकार का रंग मिला है, जैसा भी शरीर मिला है, आप उसे पाकर खुश हैं। आप यदि उसे पाकर खुश हैं तो बाकी और कोई प्रसन्न कैसे नहीं होगा। सबसे पहली बात आपको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। स्वयं को व्यवस्थित रखने से आप सभी के समक्ष आत्मविश्वास से जा सकेंगे। अपने उम्दा वस्त्रों का चयन सही तरीके से करें। इसके साथ ही विशेषज्ञों से ये सलाह लें कि आप किस प्रकार से और ज्यादा अच्छे और ज्यादा सलीकेदार दिख सकते हैं। इसके साथ ही साथियों आत्मविश्वास जब आपका बढ़ता है तब आप स्वयं को सक्रिय भी महसूस करते हैं। कई बार आपका बेडौल शरीर आपको निष्क्रिय कर देता है लेकिन किसी नए काम को करने का उत्साह आप में सक्रियता ले आता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें रोजाना के तनाव की, आप ये कारण बता सकते हैं कि रोजाना के जीवन में इतने काम होते हैं, इतने तनाव होते हैं कि हम इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते, लेकिन रोजाना के तनाव को

हिलना और समय से पहले अपने पूरी ऊर्जा को समाप्त कर देना। इसके स्थान पर रोजाना के काम में से थोड़ा थोड़ा सा समय निकालकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाना, ये ज्यादा सही होता है। इसलिए आपको अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय, वो भी नियमित रूप से, आप चाहें तो इसकी एक दिनचर्या बना सकते हैं, एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बना सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन 2 घंटे आपको स्वयं के लिए रखने हैं। फिर इस दौरान आपको अपने मित्रों से या तो बातचीत कर लेनी है, आपको अपनी पसंद की चीजों की खरीदारी करनी है, अपनी पसंदीदा पुस्तक पढ़नी है, चित्र बनाने हैं, गाना गाना है, कोई वाद्य बजाना है, मूर्तिकला करनी है, जो भी आप करना चाहें, ये सारी चीजें आपको एक नया उत्साह देती हैं। इसके साथ ही यदि जीवन में उत्साह चाहिए तो सकारात्मक सोच तो होनी ही चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं इस तथ्य को कि हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं, कुछ उसी प्रकार का व्यवहार भी हमारा होता जाता है। यदि हमारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है और हम घबरा जाते हैं, तब हमारा स्वभाव हमेशा के लिए यही हो जाता है कि कोई भी विपत्ति हमें डरा सकती है। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचें, तो उस विपत्ति में से भी ढेरों क्षमताएं बाहर लाने की आपकी स्वयं की क्षमता बाहर आती है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे सामने तनाव इतने हैं कि हम आगे इन विपत्तियों का सामना कैसे करेंगे। इसीलिए साथियों, जब तक सकारात्मक सोच आपके साथ में है, आपको कोई भी अपने स्थान से हिला नहीं सकता। आपको रोजाना इस चीज को लेकर स्वयं को विश्वास दिलाना होगा कि आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य आप रोजाना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरा करने वाले हैं। यही तो वो सकारात्मक सोच, यही वो उमंग और यही वो खुशी होती है साथियों, जो आपको एक सही स्वास्थ्य देने में मदद करती है। ऐसा स्वास्थ्य जिसमें ढेर सारी उमंगे और ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा उत्साह छुपा होता है। साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको जीवन में उत्साह चाहिए, तो आपको नहीं कहना होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जी हां, ये सच है कि नहीं या फिर नकार देना, ये भी जीवन में तनाव को घटाने का एक बहुत बड़ा साधन है। हमारी जो महिलाएं बहनें होती हैं, उनमें कई बार ये आदत होती है कि वे काम को ओढ़ लेती हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी वे बिना किसी के दिए हुए स्वयं ही ग्रहण कर लेती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का काम उनका अपना काम हो जाता है और जब तक परिवार के सभी सदस्यों का काम सही तरीके से नहीं होता, वे स्वयं को संपूर्ण नहीं मानती, सफल नहीं मानती या फिर वे संतुष्ट ही नहीं होती। ऐसे में उनका स्वयं का अस्तित्व कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिए आपको किसी को ना कहना भी आना चाहिए। हमेशा ही आपके मन के विरुद्ध कोई कुछ कहता रहे और आप मर्यादावश उसको हाँ कहते रहें, इससे आपके मन के विपरीत बातें होती हैं। आपका मन उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाता और आपके मन में ग्रंथियां बनने लगती हैं। जब भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, तब आपके मन की ग्रंथियां खुलकर आपके सामने आती हैं और आप वास्तव में जो अच्छा और संतुलित व्यवहार करना चाहते हैं, जो कि आपके अस्तित्व का अंश है, वो आप नहीं कर पाते। साथियों, यदि जीवन में उत्साह को बनाए रखना है, तब आपके सामने बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप स्वयं कौन से तरीके को अपनाना चाहते हैं। इसमें से कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि हमने पिछले अंक में भी बातचीत की थी, आपको सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको अपने आसपास के व्यक्तियों का व्यवहार या फिर परिस्थिति यदि पसंद नहीं है, तब सभी को बदलने के स्थान पर छोटे मोटे बदलाव यदि स्वयं में करके देखें, तो शायद आपको बेहतर परिणाम सामने आएंगे और ये चीज दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको रचनात्मक कार्य भी करना चाहिए। जिस भी प्रकार की सृजनात्मक या फिर रचनात्मक कार्य जो आपको खुशी देते हैं, उन्हें करते रहने से जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार रहता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसके चलते आपके जीवन में उत्साह और ऊर्जा का एक भंडार बना रहेगा या फिर आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, उसे कहते हैं अरोमा थेरेपी। साथियों, अरोमा थेरेपी अर्थात सुगंध की मदद से किया जाने वाला इलाज, ये थेरेपी खासकर तनाव को दूर भगाने और आपको ऊर्जा से भर देने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं,
तब आप सचमुच ये जान सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की सुगंध और उनका असर आपके मूड को बदल देता है, आपके तनाव को एकदम कम कर देता है और आप उस तनाव की धुंध से परे बहुत कुछ सोच पाते हैं। अरोमाथेरेपी में कई प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, कई प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। यदि घरेलू इलाज आप इसका करना चाहें तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जब भी आप स्नान का पानी अपने सामने रखें तब उसमें ऑरेंज या लैवेंडर, पेपरमिंट या फिर इसी प्रकार की उत्साह भर देने वाली सुगंध की कुछ बूंदें डाल दें और उस जल से आप स्नान करें। आप ये चीज महसूस करेंगे कि किस प्रकार से उस सुगंध के चलते आपका पूरा तनाव धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। हम सभी ये चीज महसूस करते हैं साथियों कि जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं तब जैसे हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। हमें कई बार नई उत्साह, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग, ये सारी चीजें एक साथ एक स्नान से मिल जाती हैं। तो इसके महत्व को अनदेखा नहीं करें। तनाव दूर भगाने के लिए रोजाना आपको अपने स्वभाव से संबंधित अभ्यास तो करना ही है कि आपको सकारात्मक सोच बनाकर रखना है, आपको स्वयं को सकारात्मक रूप से या धनात्मक रूप से बदलने की कोशिश करनी है, अच्छे तरीके से अपने व्यवहार को रखना है, परिस्थितियों को और लोगों को बदलने के स्थान पर खुद को बदलना है। लेकिन ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि अरोमाथेरेपी, इसमें सुगंध के जरिए आप स्वयं के मूड को बदल सकते हैं। जब आपका मूड बदलेगा तब आपको ये महसूस होगा कि जो तनाव था वो कितना बेकार का तनाव था। वो तनाव आपको सिर्फ तकलीफें दे सकता था, आपकी ऊर्जा को खर्च कर सकता था लेकिन आपको दे कुछ नहीं सकता था। यदि आप नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहते हैं तब ये चीजें आपके स्वभाव में आने लगती हैं। आपको इन चीजों का बोध होने लगता है कि तनाव करने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान होता है हमारे अपने प्रयत्नों से। तो हम जो ऊर्जा तनाव के रूप में खर्च करते हैं उस ऊर्जा को अपने प्रयत्नों में लगाएं तो वाकई तनाव होगा ही नहीं। इसके साथ ही साथियों, यदि आप सही तरीके से नींद लेते हैं, आप सही तरीके से श्वास संबंधी क्रियाओं को पूरा करते हैं तो ये भी आपके तनाव को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथियों, श्वास संबंधी क्रियाएं जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्राणायाम यदि किया जाए, दिन में नियमित एक समय निकाला जाए और उसमें प्राणायाम किया जाए, उसके साथ ही नींद को पूरा स्थान अपने जीवन में दे, थकान को स्वयं पर हावी ना होने दे तो जीवन में उत्साह हमेशा बना रहेगा। तो साथियों, यहीं पर हम संपन्न करते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम के इस अंक को और अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रम के प्रश्न की। तो आज का हमारा कार्यक्रम का प्रश्न है, सुगंध की मदद से किए जाने वाले इलाज को क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार और सुने, सुगंध की मदद से किए जाने वाले इलाज को

साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से rva मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का, आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य सेहत। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा ये है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वो सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों, अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम के पिछले अंक से आगे चलेंगे जिसका शीर्षक था जीवन में उत्साह। साथियों पिछले स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार से हम कुछ प्रयत्न ऐसे करें जिससे पूरे जीवन भर हमें उत्साह और खुशी ये सारे तत्व मिलते रहें। वाकई इन तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम स्वयं को स्वस्थ रखने में कर सकते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य से हमें वापस खुशी ही मिलती है। तो साथियों ये चक्र चलता रहे इसके लिए हम लोगों ने पिछले अंक में ये भी बातचीत की थी कि यदि हम अपने स्वास्थ्य को सुधारें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने असंतुलित भोजन को संतुलित भोजन की ओर ले आएं और व्यायाम को भी जीवन में सम्मिलित करें। ये सारी चीजें अचानक न करके हम धीरे धीरे करें। इसके अलावा हमें जो ढेर सारा जल सेवन करना चाहिए उससे हमें जो फायदे मिलते हैं वो वाकई हमें शारीरिक ऊर्जा से भर देते हैं। साथ ही वक्त की पाबंदी के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। ये तो सही है साथियों कि हम जीवन में जितने नियमित होते जाते हैं, किसी भी नियम को रोजाना उसका अनुपालन करना, उसके अनुसार चलना, ये हमें आत्मविश्वास से भर देता है। और जब हम स्वयं नियमित होते हैं तब किसी भी अन्य व्यक्ति को इस संबंध में कहते हुए हमारे मन में आत्मविश्वास होता है। यही आत्मविश्वास हमें फिर से एक नई ऊर्जा देता है, नई खुशियां और उत्साह देता है। तो साथियों एक नियमितता यदि आपके जीवन में हो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति, तो उसके कितने सारे फायदे आपको जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर मिलते रहते हैं। अब बात चली है आत्मविश्वास की, तो हम में से कई साथियों को जो कि स्वस्थ होना चाहते हैं, आत्मविश्वासी होना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को लेकर थोड़ी सी हीन भावना होती है। कई बार हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि उनका रंग उतना उजला नहीं है जितना कि सबका है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कद सामान्य से थोड़ा कम है या फिर कद सामान्य से जरा ज्यादा ही ऊंचा है। कई को अपनी शारीरिक यष्टि अच्छी नहीं लगती, वे या तो बेडौल होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं। सामाजिक रूप से उन्हें ऐसा लगता है कि वे स्वीकार्य नहीं हैं, उन्हें सामान्य तरीके से नहीं लिया जाता है। लेकिन साथियों ये भी एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य है कि आप स्वयं को जितने अच्छे तरीके से पसंद करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से समाज आपको पसंद करेगा। आप यदि बार बार सभी के सामने अपने गहरे या दबे हुए रंग की चर्चा करेंगे तो सभी को ये चीज लगने लगेगी कि हाँ वाकई इसका रंग दबा हुआ है और शायद इसके मन में इस चीज को लेकर हीन भावना है। ऐसे में बाकी सभी का व्यवहार आपके प्रति सामान्य नहीं रहेगा और आपके मन में ये धारणा पुख्ता हो जाएगी कि आपका दबा हुआ रंग ही आपकी प्रत्येक असफलता के लिए कारणीभूत है। तो सबसे पहले यदि आप में आत्मविश्वास है तो उसी आत्मविश्वास के साथ ईश्वर ने आपको जो भी दिया है, जैसा भी शरीर दिया है, जैसा भी स्वास्थ्य दिया है, उसे सबसे पहले स्वयं प्रेम से और आत्मविश्वास से स्वीकार करें। मान लें कि आप आत्मविश्वासी हैं, आपको जिस भी प्रकार का रंग मिला है, जैसा भी शरीर मिला है, आप उसे पाकर खुश हैं। आप यदि उसे पाकर खुश हैं तो बाकी और कोई प्रसन्न कैसे नहीं होगा। सबसे पहली बात आपको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। स्वयं को व्यवस्थित रखने से आप सभी के समक्ष आत्मविश्वास से जा सकेंगे। अपने उम्दा वस्त्रों का चयन सही तरीके से करें। इसके साथ ही विशेषज्ञों से ये सलाह लें कि आप किस प्रकार से और ज्यादा अच्छे और ज्यादा सलीकेदार दिख सकते हैं। इसके साथ ही साथियों आत्मविश्वास जब आपका बढ़ता है तब आप स्वयं को सक्रिय भी महसूस करते हैं। कई बार आपका बेडौल शरीर आपको निष्क्रिय कर देता है लेकिन किसी नए काम को करने का उत्साह आप में सक्रियता ले आता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें रोजाना के तनाव की, आप ये कारण बता सकते हैं कि रोजाना के जीवन में इतने काम होते हैं, इतने तनाव होते हैं कि हम इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते। लेकिन रोजाना के तनाव को झेलना और समय से पहले अपने पूरी ऊर्जा को समाप्त कर देना, इसके स्थान पर रोजाना के काम में से थोड़ा थोड़ा सा समय निकालकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाना, ये ज्यादा सही होता है। इसलिए आपको अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय, वो भी नियमित रूप से, आप चाहें तो इसकी एक दिनचर्या बना सकते हैं, एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बना सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन 2 घंटे आपको स्वयं के लिए रखने हैं।
फिर इस दौरान आपको अपने मित्रों से या तो बातचीत कर लेनी है, आपको अपनी पसंद की चीजों की खरीदारी करनी है, अपनी पसंदीदा पुस्तक पढ़नी है, चित्र बनाने हैं, गाना गाना है, कोई वाद्य बजाना है, मूर्तिकला करनी है, जो भी आप करना चाहें, ये सारी चीजें आपको एक नया उत्साह देती हैं। इसके साथ ही यदि जीवन में उत्साह चाहिए तो सकारात्मक सोच तो होनी ही चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं इस तथ्य को कि हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं, कुछ उसी प्रकार का व्यवहार भी हमारा होता जाता है। यदि हमारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है और हम घबरा जाते हैं, तब हमारा स्वभाव हमेशा के लिए यही हो जाता है कि कोई भी विपत्ति हमें डरा सकती है। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचें, तो उस विपत्ति में से भी ढेरों क्षमताएं बाहर लाने की आपकी स्वयं की क्षमता बाहर आती है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे सामने तनाव इतने हैं कि हम आगे इन विपत्तियों का सामना कैसे करेंगे। इसीलिए साथियों, जब तक सकारात्मक सोच आपके साथ में है, आपको कोई भी अपने स्थान से हिला नहीं सकता। आपको रोजाना इस चीज को लेकर स्वयं को विश्वास दिलाना होगा कि आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य आप रोजाना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरा करने वाले हैं। यही तो वो सकारात्मक सोच, यही वो उमंग और यही वो खुशी होती है साथियों, जो आपको एक सही स्वास्थ्य देने में मदद करती है। ऐसा स्वास्थ्य जिसमें ढेर सारी उमंगे और ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा उत्साह छुपा होता है। साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको जीवन में उत्साह चाहिए, तो आपको नहीं कहना होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जी हां, ये सच है कि नहीं या फिर नकार देना, ये भी जीवन में तनाव को घटाने का एक बहुत बड़ा साधन है। हमारी जो महिलाएं बहनें होती हैं, उनमें कई बार ये आदत होती है कि वे काम को ओढ़ लेती हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी वे बिना किसी के दिए हुए स्वयं ही ग्रहण कर लेती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का काम उनका अपना काम हो जाता है, और जब तक परिवार के सभी सदस्यों का काम सही तरीके से नहीं होता, वे स्वयं को संपूर्ण नहीं मानती, सफल नहीं मानती, या फिर वे संतुष्ट ही नहीं होती। ऐसे में उनका स्वयं का अस्तित्व कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिए आपको किसी को ना कहना भी आना चाहिए। हमेशा ही आपके मन के विरुद्ध कोई कुछ कहता रहे और आप मर्यादावश उसको हाँ कहते रहें, इससे आपके मन के विपरीत बातें होती हैं। आपका मन उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाता और आपके मन में ग्रंथियां बनने लगती हैं। जब भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, तब आपके मन की ग्रंथियां खुलकर आपके सामने आती हैं और आप वास्तव में जो अच्छा और संतुलित व्यवहार करना चाहते हैं, जो कि आपके अस्तित्व का अंश है, वो आप नहीं कर पाते। साथियों, यदि जीवन में उत्साह को बनाए रखना है, तब आपके सामने बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप स्वयं कौन से तरीके को अपनाना चाहते हैं। इसमें से कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि हमने पिछले अंक में भी बातचीत की थी, आपको सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको अपने आसपास के व्यक्तियों का व्यवहार या फिर परिस्थिति यदि पसंद नहीं है, तब सभी को बदलने के स्थान पर छोटे मोटे बदलाव यदि स्वयं में करके देखें, तो शायद आपको बेहतर परिणाम सामने आएंगे और ये चीज दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको रचनात्मक कार्य भी करना चाहिए। जिस भी प्रकार की सृजनात्मक या फिर रचनात्मक कार्य जो आपको खुशी देते हैं, उन्हें करते रहने से जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार रहता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसके चलते आपके जीवन में उत्साह और ऊर्जा का एक भंडार बना रहेगा या फिर आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, उसे कहते हैं अरोमा थेरेपी। साथियों, अरोमा थेरेपी अर्थात सुगंध की मदद से किया जाने वाला इलाज, ये थेरेपी खासकर तनाव को दूर भगाने और आपको ऊर्जा से भर देने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं, तब आप सचमुच ये जान सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की सुगंध और उनका असर आपके मूड को बदल देता है, आपके तनाव को एकदम कम कर देता है और आप उस तनाव की धुंध से परे बहुत कुछ सोच पाते हैं। अरोमा थेरेपी में कई प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, कई प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। यदि घरेलू इलाज आप इसका करना चाहें,
तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जब भी आप स्नान का पानी अपने सामने रखें तब उसमें ऑरेंज या लैवेंडर, पेपरमिंट या फिर इसी प्रकार की उत्साह भर देने वाली सुगंध की कुछ बूंदें डाल दें और उस जल से आप स्नान करें। आप ये चीज महसूस करेंगे कि किस प्रकार से उस सुगंध के चलते आपका पूरा तनाव धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। हम सभी ये चीज महसूस करते हैं साथियों कि जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं तब जैसे हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। हमें कई बार नई उत्साह, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग, ये सारी चीजें एक साथ एक स्नान से मिल जाती हैं। तो इसके महत्व को अनदेखा नहीं करें। तनाव दूर भगाने के लिए रोजाना आपको अपने स्वभाव से संबंधित अभ्यास तो करना ही है कि आपको सकारात्मक सोच बनाकर रखना है, आपको स्वयं को सकारात्मक रूप से या धनात्मक रूप से बदलने की कोशिश करनी है, अच्छे तरीके से अपने व्यवहार को रखना है, परिस्थितियों को और लोगों को बदलने के स्थान पर खुद को बदलना है। लेकिन ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि अरोमाथेरेपी, इसमें सुगंध के जरिए आप स्वयं के मूड को बदल सकते हैं। जब आपका मूड बदलेगा तब आपको ये महसूस होगा कि जो तनाव था वो कितना बेकार का तनाव था। वो तनाव आपको सिर्फ तकलीफें दे सकता था, आपकी ऊर्जा को खर्च कर सकता था, लेकिन आपको दे कुछ नहीं सकता था। यदि आप नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहते हैं तब ये चीजें आपके स्वभाव में आने लगती हैं। आपको इन चीजों का बोध होने लगता है कि तनाव करने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान होता है हमारे अपने प्रयत्नों से। तो हम जो ऊर्जा तनाव के रूप में खर्च करते हैं उस ऊर्जा को अपने प्रयत्नों में लगाएं तो वाकई तनाव होगा ही नहीं। इसके साथ ही साथियों, यदि आप सही तरीके से नींद लेते हैं, आप सही तरीके से श्वास संबंधी क्रियाओं को पूरा करते हैं तो ये भी आपके तनाव को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथियों, श्वास संबंधी क्रियाएं जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्राणायाम यदि किया जाए, दिन में नियमित एक समय निकाला जाए और उसमें प्राणायाम किया जाए, उसके साथ ही नींद को पूरा स्थान अपने जीवन में दे, थकान को स्वयं पर हावी ना होने दे, तो जीवन में उत्साह हमेशा बना रहेगा। तो साथियों, यहीं पर हम संपन्न करते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम के इस अंक को और अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रम के प्रश्न की। तो आज का हमारा कार्यक्रम का प्रश्न है, सुगंध की मदद से किए जाने वाले इलाज को क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार और सुने, सुगंध की मदद से किए जाने वाले इलाज को।

साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत,

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rvahindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rvahindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rvahindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rvahindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

तहे दिल से धन्यवाद और सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की सभा शुरू करने से पहले मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। होते ही सवेरा चिड़िया चहकी, फूल खिले और कलियां महकी, गुनगुन करता भौरा आया, भौर का उसने गीत सुनाया, पंख फैलाए तितलियां उड़ती, इधर कभी उधर को मुड़ती, नींद में खोई दुनिया जागी, रोज के अपने काम को भागी, देर तलक कुछ लोग है सोते, सुबह का सुंदर दृश्य है खोते, ठंडी ठंडी पवन बहे जो, स्वस्थ रहोगे यही कहे वो, ताजी ताजे सांस भरो तुम, अपना आलस और करो तुम। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो आइए साथियों, हम भी आलस न करते हुए समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला कार्यक्रम है वह है कृषि जगत। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: शायद आपको याद होगा कि ये पिछले कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे थे सरकार के द्वारा किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराई जाएगी, इसके बारे में।
1: हाँ हाँ,
0: यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी होगा मुखिया जी कि एक एकड़ जमीन के लिए कितनी मात्रा में बीज किसानों को दी जाएगी और उस पर कितना अनुदान मिलेगा।
1: देखिए वीरेंद्र जी, एक एकड़ जमीन के लिए 30 किलो चने के बीज के लिए 4850 रुपए खर्च करने होंगे।
0: जी,
1: यानी एक एकड़ जमीन के लिए 30 किलो बीज और उसके लिए खर्च करने होंगे 4850 रुपए।
0: जी जी,
1: इसमें 2680 रुपए का अनुदान मिलेगा।
0: अच्छा,
1: हाँ, यानी कि लगभग आधे पैसे वापस हो जाएंगे
0: जी
1: अकाउंट में। वहीं मसूर के 16 किलो बीज के लिए 3750 रुपए लगेंगे, इनमें किसानों को 2680 रुपए अनुदान मिलेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: यानी कि दो तिहाई अनुदान लगभग
0: जी।
1: इसी प्रकार गेहूं के बीज प्रति एकड़ 40 किलो के लिए 2100 रुपए व्यय करने पर 1980 रुपए वापस मिल जाएंगे
0: जी,
1: यानी ज्यादातर पैसा वापस आ जाएगा।
0: हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी। एक बात यह भी बता ही दीजिए कि क्या किसानों को मौसम के अनुरूप उपचारित बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा, इस तरह की ये कोई योजना है सरकार के पास?
1: हाँ वीरेंद्र भाई, हमारी किसान सलाहकार से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि किसानों को मौसम के अनुरूप उपचारित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। जल जमाव को लेकर टाल में फसलों की बुआई में काफी विलंब हुआ है
0: जी,
1: कई इलाके खेती योग्य नहीं है, ऐसे में गेहूं, चना और मटर की खेती फायदेमंद साबित होगी।
0: खैर कुछ भी हो, सरकार की एक अच्छी पहल इसे कही जाएगी, शायद ऐसा करने से रवि फसल के अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहूलियत होगी और टाल क्षेत्र के किसानों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। आजकल एक बात की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है मुखिया जी, और वह है नोटबंदी की चर्चा, हर तरफ हो रही है।
1: हाँ,
0: कई लोग इसके फायदे गिनने और गिनाने में लगे हुए हैं, तो कई लोग इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं मानते। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने भी इसे नुकसान ही माना है और इससे होने वाले नुकसान की ओर इशारा भी किया है संसद में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका कृषि पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना आपको दिखाई देती है, क्योंकि अभी जैसा देख रहे हैं रवि का मौसम है और किसानों को बीज खाद की खरीदारी भी करनी है।
1: अब देखिए, लंबी लाइन है, थोड़ी परेशानी है, लेकिन नकदी उपलब्ध है। एटीएम से, बैंक की शाखा से आपको इतनी नकदी मिल सकती है कि रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से चलाई जा सके। फिर वे दुकानें भी हैं जहां क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान किया जा सकता है। ऐसे दुकानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान किया जा सकता है, लेकिन ये सारा नजारा शहरों का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हो सकता है कि कई ऐसे कस्बे भी हों जहां लोगों के सामने भुगतान के ये वैकल्पिक तरीके पहुंच चुके हों, लेकिन उसे लेकर समस्या बहुत ज्यादा आड़े न आती हो।
0: मुखिया जी, ये बातें तो बिल्कुल सही है कि जहां तक वैकल्पिक व्यवस्था है वहीं पर रोज मारामारी हो रही है, तो गांव की बात ही दिगर है। कई गांव में तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल, हो सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की बात करना ही बेमानी होगी, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है।
1: तो यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे गांव में ऐसा नहीं हो पाया है। हमारे गांव के लोग अब भी भुगतान के आधुनिक विकल्पों से अनजान हैं
0: जी,
1: वे बैंकिंग व्यवस्था से भी बहुत दूर हैं।
0: बिल्कुल,
1: ज्यादातर गांवों में एटीएम नहीं है और बैंक शाखाएं भी बहुत कम ही संख्या में हैं, और जहां ग्रामीण और सहकारी बैंक हैं वहां अभी तक पुराने नोट बदलने की व्यवस्था ही नहीं पहुंची है।
0: बिल्कुल,
1: वहां अगर किसी के पास 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट हैं तो उन्हें बदलवाने के लिए हो सकता है कि कई मील लंबा सफर तय करना पड़े। इसके अलावा दूसरी मुश्किलें भी हैं।
0: दूसरी बात यह है मुखिया जी कि यह समस्या ऐसे समय में आई है जब खेतों में रवि फसल बोई जानी है और इसके लिए किसानों को बीज, रासायनिक खाद खरीदनी है। इससे चुके तो पूरा सीजन ही हाथ से निकल जाएगा। इसे लेकर चिंता के स्वर पिछले 2 सप्ताह से पूरे देश में सुनाई दे रहा है।
1: हाँ, तो ऐसे में सरकार का एक फैसला आया है जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान अब पुराने नोटों से अपने लिए बीज खरीद सकेंगे।
0: जी
1: जाहिर है कि सरकार को भी ये समझ में आ गई है

0: उम्मीद है कि ये काम जल्द ही होगा। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। बीजों की खरीद पर किए गए इस फैसले को उर्वरकों की खरीद तक ले जाना भी जरूरी है।
1: किसानों की समस्या के बारे में और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही दिक्कत के बारे में या सरकार की इस नीति के बारे में आपका नजरिया किस तरह का है मुखिया जी?
0: देखिए, किसानों की यह समस्या हमारी कृषि और ग्रामीण नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। 8 साल पहले देश में एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी।
1: जी जी।
0: उसका मकसद था किसानों को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और फसल की बुआई के समय उन्हें आसान शर्तों पर उधार उपलब्ध कराना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रिजर्व बैंक और नाबार्ड की मदद से शुरू की गई यह योजना अगर ठीक से लागू हो गई होती तो शायद किसानों के सामने नकदी का यह संकट इस तरह से नहीं आता जैसे कि आज है।
0: बिल्कुल, महानगर के लोगों की तरह ही किसान भी प्लास्टिक मनी से बीज और उर्वरक खरीद रहे होते। इसी तरह मौजूदा सरकार ने 2 साल पहले जन धन खाता शुरू की थी
1: जी।
0: जिसका मकसद देश की लगभग पूरी आबादी को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था।
1: तो क्या ऐसा माना जाए मुखिया जी कि इन योजनाओं से किसानों को वर्तमान समय में लाभ मिलने की उम्मीद है? खाद बीज की खरीद के लिए नोटबंदी जैसी समस्याओं से मुकाबला करने में अब हमारे किसान, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के किसान सक्षम हो गए हैं?
0: बेशक, इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने खाते भी खुलवाए, खासकर किसानों ने, क्योंकि उनकी उर्वरक सब्सिडी सीधे इन्हीं खातों में आनी थी
1: जी।
0: लेकिन मौजूदा संकट बताता है कि ये खाते इसके आगे जाकर किसान को नकदी का भुगतान व्यवस्था से जोड़ने में नाकाम रहे हैं।
1: बिल्कुल, अभी तक तो ये ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि ये सभी के सभी किसान बैंकिंग की प्रणाली जो है आधुनिक प्रणाली उससे जुड़ नहीं पाए हैं। नकद की कमी के कारण फसलों की बुआई पर कितना असर पड़ने की संभावना नजर आती है इन दिनों? किन फसलों पर इसका सीधा सीधा असर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है मुखिया जी।
0: हाँ, ये बात तो सही है कि अचानक बड़े नोट के चलन से बाहर किए जाने का खेतीबाड़ी पर बुरा असर पड़ा है
1: जी।
0: बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड में रबी की फसलों और नकदी फसलों की बुआई काफी धीमी हो गई है। नकदी न होने के कारण किसान खाद बीज नहीं खरीद पा रहे हैं।
1: ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं रहने के कारण झारखंड के क्षेत्र में 50% आलू के दाम गिर गए हैं।
0: हाँ,
1: साथ ही साथ 2000 के नए नोट से खरीदारी जो है बहुत मुश्किल हो गई है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। झारखंड का ही आंकड़ा है कि गेहूं, तरबूज, सरसों, पालक समेत सब्जी के बीजों की बिक्री छोटे नोट की कमी के कारण 70% तक कम हो गई है
1: जी।
0: इसका सबसे अधिक असर नकदी फसलों की खेती पर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि बैंकों से नोट सीमित मात्रा में मिल रहे हैं, पैसा नहीं होने से बीज बाजार में बिक्री गिर गई है।
1: अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ किस फसल पर अधिक मार पड़ने की संभावना है, खास करके नोटबंदी की, और किस तरह से परेशानी वहाँ के किसान झेल रहे हैं?
0: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर गेहूं और आलू की बुआई पर पड़ा है।
1: अच्छा।
0: सहकारी बैंकों में पुराने नोट नहीं बदले जा रहे हैं। 42% क्षेत्रों में ही गेहूं की बुआई हो सकी है और आलू की 80% बुआई हो पाई है, जबकि अब तक इसे पूरा हो जाना चाहिए था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: किसानों के सामने जो मुख्य समस्या है वो ये है कि जुताई के लिए ट्रैक्टर मालिक 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं ले रहे हैं। खाद बीज गोदामों और निजी दुकानों में भी पुराने नोट नहीं लिए जा रहे हैं। बैंकों में लाइन लगाने के बाद भी 1000 रूपये दिए जा रहे हैं। ग्रामीण शाखाओं में नई करेंसी पहुंची ही नहीं है। इसी प्रकार बहुत तरह की दिक्कतें किसानों के सामने आ रही हैं। तो बिहार के किसान किस तरह नोटबंदी से परेशान हैं, इस बात की पर हम आगे भी चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर चर्चा करना बहुत जरूरी है मुखिया जी कि बिहार के किसान किस तरह से नोटबंदी की परेशानी से जूझ रहे हैं और उनकी फसलों का नोटबंदी की समस्या से

0: क्या हाल होगा, किस तरह से वे आगे की खेती कर पाएंगे, इसके बारे में अगले कार्यक्रम में आपसे जरूर हम चर्चा करेंगे। इस सुंदर जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी।
0: पिछले कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे खास करके छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के बारे में। ऐसा श्याम जी, ज्यादातर मामलों में आदिवासियों की जमीनें आखिर कैसे दूसरों की या फिर सरकारी तंत्रों की भेंट चढ़ जाती है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है।
1: देखिए, ज्यादातर मामलों में आदिवासियों की जमीनें अधिग्रहित कर ली जाती हैं और उन्हें इसका पता तब चलता है जब रेंजर अफसर या फॉरेस्ट गार्ड उस पर अपना अधिकार जमाने पहुंचते हैं।
0: जी जी।
1: इस स्थिति में आदिवासी समूहों को विस्थापन, पुनर्स्थापन, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण समेत अन्य कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परियोजना निर्माण के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा है।
0: जी बिल्कुल।
1: दामोदर घाटी परियोजना के दौरान विस्थापित हुई आबादी अभी भी पुनर्वास और मुआवजे की लड़ाई लड़ रही है।
0: एक बात यह बताइए कपूर जी कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले सत्र में जो कैंपा बिल पास किया गया,
2: जी
0: कैंपा बिल, आखिर उसका क्या हुआ, वो किस तरह से आदिवासियों को तबाह करने वाला है?
2: केंद्र सरकार द्वारा पिछले सत्र में कंपनसेटरी ऑफर सेशन एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो कैंपा बिल के नाम से प्रचलित है, पास किया गया। नए कानून का मकसद उद्योग और कारखानों के लिए काटे गए जंगलों के बदले नए पेड़ लगाकर कमजोर होते वनों को स्वस्थ व सघन बनाना है।
0: जी जी।
2: इसके लिए कंपनियों द्वारा वन भूमि के इस्तेमाल के बदले मुआवजे के तौर पर कंपनसेटरी ऑफर सेशन फंड में पैसा जमा किए जाने का प्रावधान है।
0: अजीब बात है श्याम जी, एक तरफ सरकार उद्योगों के लिए वनों की कटाई को प्रोत्साहित कर रही है तो दूसरी ओर नए जंगल बसाने की योजना बना रही है। यह किस तरह की नीति है?
1: लेकिन समस्या यह है कि कानून के लागू हो जाने से वनों की अंधाधुंध कटाई को प्रोत्साहन मिलेगा।
0: जी जी।
1: जिसका प्रतिकूल असर वहां के निवासियों पर पड़ना तय है। इस फंड का 90% हिस्सा राज्यों और 10% केंद्र के पास होगा। इस कोष पर ग्राम सभाओं और स्थानीय प्रतिनिधियों का सीधा असर नहीं होने की वजह से नौकरशाहों व वन विभाग द्वारा धन के दुरुपयोग की आशंका भी बनती है।
0: सुप्रीम कोर्ट का एक और नया फैसला है जो कुछ कुछ इसी से संबंधित है श्याम जी, और वह है सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण रोकने का। कहा जा रहा है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है।
1: हाँ वीरेंद्र जी, मुझे भी ऐसा सुनने को मिला है, लेकिन इससे किस तरह की समस्याओं से हमें निजात मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है।
0: जी जी।
1: कहीं इसका भी हाल छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट जैसा न हो, जैसा इसी बात का डर सता रहा है।
0: अच्छा अच्छा।
1: आज आदिवासी समुदाय अपने ही घर में अपने को बेगाना महसूस कर रहे हैं।
2: नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो शायद हमारे शहरों, कस्बों और गांवों की एक बड़ी समस्या को काफी हद तक हल कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर किसी किस्म के अवैध निर्माण की मंजूरी न दें।
0: प्रश्न यह उठता है श्याम जी कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर में इस तरह के फैसले क्यों लेने पड़े, इसकी खास वजह क्या हो सकती है?
1: ये फैसला केरल सरकार के फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दी।
0: जी।
1: केरल सरकार ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक आइलैंड में किसी नेता की मूर्ति लगाने का फैसला किया था।
0: अच्छा।
1: सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को तो इससे रोक ही दिया, साथ ही सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस तरह की मंजूरी न दें।
0: इस तरह के आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले भी दिए जा चुके हैं कपूर साहब।
2: जी हाँ वीरेंद्र जी, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले सरकारों से कह चुका है कि वे सार्वजनिक स्थानों से धार्मिक स्थलों सहित तमाम अवैध निर्माण हटाएं। इस फैसले पर अमल करना स्थानीय प्रशासन पर निर्भर करेगा।
0: सुप्रीम कोर्ट के इस पहल से किस तरह के परिणाम आने की उम्मीद जगती है श्याम जी?
1: हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इससे काफी सारे अवैध निर्माण रुक सकेंगे।
0: जी।
1: पिछले लंबे दौर में सार्वजनिक स्थानों का बहुत नुकसान हुआ है। सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण कोई नई समस्या नहीं है। लोग अतिक्रमण करने के लिए सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, मूर्ति लगाने के नाम पर हो या किसी और नाम पर।
0: सार्वजनिक स्थानों का अभिप्राय क्या है कपूर साहब? हम किसे सार्वजनिक स्थानों की श्रेणी में रखते हैं?
2: देखिए वीरेंद्र जी, सार्वजनिक स्थान वे होते हैं जिन पर व्यक्ति विशेष की मिल्कियत नहीं होती है और वे सबके लिए उपयोगी होते हैं।
0: जी,
2: ये सार्वजनिक स्थान किसी शहर के लिए फेफड़ों का काम करते हैं तो कभी रक्त वाहिनियों का। दिक्कत ये है कि जिन जगहों की निजी मिल्कियत नहीं होती उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता।
0: तो आखिर इन सार्वजनिक स्थानों पर तो गरीब गुरबा लोग कब्जा नहीं करते, और जो कब्जा जमाते हैं वे कौन लोग हैं और कब्जा जमाने की उनकी तरकीब क्या है?
1: कभी प्रशासन तो कभी रसूखदार स्वार्थी तत्व उन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। कब्जा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी समाज या समूह के भावनात्मक मुद्दे को उससे जोड़ दिया जाए।
0: जी,
1: चाहे वह मुद्दा धार्मिक हो या राजनीतिक। अगर किसी जगह पर कोई धार्मिक स्थल बना दिया जाए या किसी समूह या जाति के नेता की मूर्ति खड़ी कर दी जाए तो फिर उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तब वो उस समूह की भावनाओं या उनकी इज्जत का सवाल हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं श्याम जी। हमारे शहर में सैकड़ों ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जहां पर मंदिर के नाम पर, देवी देवताओं की मूर्ति के नाम पर, नेताओं की मूर्ति के नाम पर अतिक्रमण लगातार होता चला आ रहा है। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की भी तो मिलीभगत होती है ना?
2: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह से कई मैदान और बागीचे गायब हुए और सड़कों के बीच में तमाम नेताओं की मूर्तियां जनता का मार्गदर्शन करने के लिए खड़ी हो गईं।
0: श्याम जी, एक बात जो याद आ रही है वो यह है कि ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे
2: जी
0: की मृत्यु के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका स्मारक बनाने की मांग पिछले दिनों शिवसेना कर रही थी और उस पर काफी वो अड़ भी गई थी।
1: अच्छा हुआ कि न्यायिक हस्तक्षेप व प्रशासनिक सूझबूझ से मुंबई का ये ऐतिहासिक मैदान ठाकरे का स्मारक नहीं बन पाया।
0: जी जी,
1: इस मैदान से कई ऐतिहासिक स्मृतियां जुड़ी हैं। यहां नामी क्रिकेटरों ने क्रिकेट के शुरुआती सबक सीखे हैं।
0: लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि भारत में जिस गति से शहरीकरण का दौर चल रहा है उससे शहरों में धीरे धीरे जमीन का अकाल पड़ता जा रहा है। आखिर इस समस्या से कैसे निपटा जाए यह भी आज के दौर में एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है कपूर साहब।
1: देखिए मैं बताता हूँ, भारत का जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे इन समस्याओं को गंभीरता से देखने की जरूरत है। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब भारत की बहुसंख्यक आबादी शहरों में बसेगी।
0: जी बिल्कुल,
1: मानव सभ्यता की ये स्वाभाविक गति है कि लोग गांवों से आकर शहरों में बसते हैं।
0: तो क्या शहरीकरण से लोगों को फायदा होता है या फिर सिर्फ समस्या ही खड़ी होती है कपूर साहब?
2: देखिए वीरेंद्र जी, शहरीकरण से कई फायदे हैं लेकिन उसके साथ समस्याएं भी खड़ी होंगी। इनमें सार्वजनिक और खुली जगहों की रक्षा भी एक समस्या है। शहरों की खूबसूरती को बढ़ाना जरूरी है और हम मानते भी हैं कि ज्यादातर अवैध निर्माण किसी जगह की खूबसूरती को बिगाड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि बहुत ही भयानक परिणाम इसका भुगतने को सबको मिलता है।
0: सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा की जिम्मेवारी क्या केवल राज्य सरकार या आम पब्लिक का ही कर्तव्य बनता है, या वह इन सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा करे, उसकी देखभाल करे, क्या इसके लिए प्रशासन कहीं से भी जिम्मेवार नहीं है?
1: सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा करना सरकार का तो काम है ही
0: जी,
1: लेकिन समाज को भी उनका सम्मान करना सीखना होगा।
0: बिल्कुल,
1: जैसे जैसे शहर बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे सार्वजनिक स्थलों की जरूरत बढ़ती जा रही है। एक छोटे कस्बे में सड़क पर कोई असुविधा हो तो उससे कुछ दिक्कत होती है, लेकिन किसी महानगर की सड़क पर जरा व्यवधान लाखों का कामकाज बिगाड़ सकता है।
0: जी जी,
1: कानून का पालन करना सरकार जनता सबकी जिम्मेदारी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े ये कोई अच्छी बात नहीं है।
0: सुप्रीम कोर्ट के दूसरे अहम पहल के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कपूर साहब, कि अपराध का विशेषाधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अपराध और सजा के मामले में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के लिए क्या अलग अलग मापदंड होने चाहिए?
2: देखिए दरअसल बात यह है कि जैसे जैसे भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के आचरण और उनके विशेषाधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं।
0: आखिर ऐसा क्यों? जब तक राजनेता या जनप्रतिनिधि इस तरह के गलत कदम उठाते फिरेंगे तो उन पर सवाल खड़े होंगे ही। जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। श्याम जी,
1: ये आम तौर पर एक स्वीकृत तथ्य है कि लोकतंत्र में सभी नागरिक बराबर होते हैं।
0: जी,
1: ऐसे में सामंती जमाने के समान विशेषाधिकारों का क्या मतलब? ये भी देखा गया है कि ऐसे विशेषाधिकार आम नागरिकों के हक के खिलाफ होते हैं, यानी जैसे जैसे विशेषाधिकार बढ़ते हैं वैसे वैसे आम नागरिकों के जायज हक मिलने में दिक्कतें आने लगती हैं।
0: इस सुंदर जानकारी के लिए कपूर साहब और श्याम जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कानूनी सलाह के अगले कार्यक्रम में हम कुछ और कानून की पेचीदगियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
2: जी। आपको भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार डॉक्टर LD सुब्रमण्यम, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट आज का शीर्षक हमने रखा है भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार डॉक्टर एलडी सुब्रमण्यम। इस संदर्भ में हम एक बात कहना चाहेंगे कि पिछले 20 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया था, तो उसी के संदर्भ में आज का हमारा ये आलेख आप सबके लिए। साथियों, संगीत विधा का विकास ग्रामीण अंचलों से होता हुआ जब कस्बों, नगरों और शहरों तक हुआ, मानव जब धीरे धीरे सुसंस्कार और सभ्य बनने लगा, तो शास्त्रीय और सुगम संगीत ने भी विस्तार पाया। आज के आलेख में हम शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में विश्वविख्यात वायलिन वादक डॉक्टर एलडी सुब्रमण्यम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वैसे वायलिन का आगमन भारत में जर्मनी और अन्य कुछ पश्चिम के शहरों से हुआ और इस वाद्य ने उत्तर भारत और खासकर के दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत तथा फिल्म संगीत में भी अपना खास स्थान बना दिया है। साथियों, वायलिन एक छोटा वाद्य होता है जो बो यानी गज से बजाया जाता है। इसी जाति का कुछ बड़ा वाद्य वायोला और लगभग 4 से 5 फीट तक लंबा वाद्य चेलो कहलाता है। इसके तार भी मोटे और बड़ी तांत के होते हैं और इसे हाथ से लय या ताल देने में काम में लाया जाता है। हाँ, तो हम बात करेंगे वायलिन, जिसे बेला भी कहते हैं, उसके अत्यंत प्रतिभाशाली कलाकार डॉक्टर एलबी सुब्रमण्यम की। खास या बेहद खास ये है कि वे कलाकार के साथ मेडिकल डॉक्टर भी हैं। उनके बचपन और किशोर उम्र का कुल जमा किस्सा ये है कि माता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी और पिता वायलिन बजाने की शिक्षा दे रही थी। इसी बीच एक दिन एक जर्मन मित्र उनके घर आए, एलडी को वायलिन पर अभ्यास करते देखा तो एकदम से बोल उठे, भाई इसे तो मैं जर्मनी ले जाऊंगा। मां ने कहा, अभी नहीं, पहले मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करेगा। तो बात वहीं रुक गई। खैर, डॉक्टरी की पढ़ाई पास करने के बाद ही वे कैलिफोर्निया में पश्चिम संगीत में मास्टर्स डिग्री लेने चले गए और तब से साथियों आज तक उनकी उंगलियां वायलिन पर जैसे हम सबको सम्मोहित कर रही हैं, हिप्नोटाइज कर देती हैं, और संगीत से जुड़े अन्य कई उल्लेखनीय काम एलडी कर चुके हैं और कर रहे हैं। पद्म भूषण और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलंकरणों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और विख्यात सिने पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति उनकी जीवन संगिनी है। तो हमने हमारे इस आलेख का शीर्षक शुरू में ये दिया है कि भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार। तो अब सुनिए एलडी के द्वारा संगीत के क्षेत्र में, खास करके भारत और पश्चिम के संगीत में, उन्होंने जो अमूल्य योगदान दिया है उसके बारे में। 150 से भी ज्यादा बैले, जिन्हें नृत्य नाटिका कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा और एकल वायलिन वादन की रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की हैं। सलाम बॉम्बे, मिसिसिपी मसाला, इन फिल्मों का संगीत निर्देशन पीटर ब्रुक के साथ, महाभारत के निर्माण के संगीत सलाहकार, फ्रांस के विख्यात वायलिन वादक स्टीफन ग्रेपली और महान वायलिन वादक यहूदी मेन्युहेन से प्रेरणा लेते रहे हैं। वर्ष 1983 में विश्वविख्यात पश्चिम संगीत कंपोजर बाख और बार्क को आदरांजलि देने के लिए अपने वायलिन के साथ वेस्टर्न बांसुरी की जुगलबंदी की यादगार संगीत सभा में एलडी ने वायलिन बजाई। न्यूयॉर्क
फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा और विश्वविख्यात भारतीय मूल के कंपोजर जुबीन मेहता के साथ एक अनूठी संगीत रचना रिकॉर्ड की। इसका नाम है फैंटेसी ऑन वैदिक चैंट्स। विख्यात किरो बैले ग्रुप के साथ शांतिप्रिय नाम से एक भव्य संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बर्लिन ओपेरा की ग्लोबल सिम्फनी 28 देशों से एक साथ प्रसारित की गई थी और इसमें एलडी सुब्रमण्यम भी थे। तो श्रोताओं, ये है भारत और पश्चिम के संगीत का एक सुरीला सफर, एक सुरीला मिश्रण। भारत में तो एलडी अपने वॉयलिन वादन का जादू बिखेर ही चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वे चमके हैं और निरंतर नूतन संगीत प्रयोग कर रहे हैं। साथियों, ऐसे सभी संगीतीय कार्यक्रमों को आजकल जानते हैं क्या कहते हैं? आजकल कहते हैं इसे फ्यूजन संगीत। अब इस फ्यूजन संगीत के प्रयोग से एक तरह की हलचल शुरू हो गई। शास्त्रीय संगीत की शुद्ध परंपरा और लीक से हटकर क्या इस बदलाव को स्वीकार करना सही है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एलडी ने कहा, सामान्य रूप से यह बदलाव कोई नई बात तो है नहीं। जैसे अपने देश में सितार और सरोद की जुगलबंदी होती है, वैसे ही हम वॉयलिन और अमेरिकन बेंजो, गिटार और ट्रम्पेट की जुगलबंदी करते हैं। अब ऐसे प्रयोग में बात केवल इतनी सी है कि जब जब अलग अलग टोन, स्वर और प्रकृति के वाद्यों और देशों के संगीत को एक साथ बजाया जाता है, तो इस प्रस्तुति में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी की भी छवि बिगड़ने नहीं पाए, उसका मूल स्वरूप बना रहे। वास्तव में जब कोई काम फैशन की तरह कलाकार, जी हाँ, उसको फैशन मानने लगे फ्यूजन संगीत को, तो फैशन की तरह अगर कोई कलाकार सतही अंदाज पर और निम्न स्तर पर जब करने लगता है, लो स्टैंडर्ड, तो फिर वो फ्यूजन संगीत नहीं रहता, बल्कि वो फ्यूजन संगीत जो इतना लोकप्रिय हो रहा है उसको बिगाड़ता ही है। और ये हो रहा है, खास करके कुछ फिल्म संगीत में यही किया जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता पाने और उस आधार पर खूब सारा धन कमाना ही फ्यूजन संगीत को आलोचित कर रहा है। सफल फ्यूजन संगीत के लिए तो ये बेहद जरूरी है कि कलाकार, चाहे वो पश्चिम का हो, चाहे वो भारत का हो या किसी भी देश का हो, उसको भारतीय और अपने देश की संगीत शैलियों की पूरी और बहुत गहरी समझ होनी ही चाहिए। अगर वो समझ नहीं है तो फिर जुगलबंदी नहीं होगी। तो आज के हमारे इस आलेख में, जैसा कि हमने कहा कि भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार मिलकर के आज जो संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च कोटि पर ले जा रहे हैं, उसी में एक हमारे भारत के कलाकार हैं एलडी सुब्रमण्यम। और शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, वॉयलिन पर तो वे लाजवाब बजाते ही हैं, लेकिन वो पश्चिम संगीत के भी जाने माने कलाकार हैं और उन्होंने हमारे भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और अपार लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भविष्य में भी वो यही कर रहे हैं। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था भारत और पश्चिम संगीत के धनी कलाकार डॉक्टर एलडी सुब्रमण्यम, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा। दोस्तों आप सभी ने स्वतंत्र कुमार जी की बातें सुनी और मैं समझता हूँ कि आप सभी को इनकी बातें अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। साथियों हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में, और इसके लेखक और निर्देशक है संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं नाटक।

0: प्रस्तुत है नाटक स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में। इसके लेखक और निर्देशक हैं संदीप दुबे।
1: एक बस पौने एक बजे गुजरती है और दूसरी एक बजे। क्यों बाबा, पहले कोई बस गई?
2: जरूर गई होगी साहब, हमारे सामने नहीं गई, आधे घंटे से बैठे।
1: आ जाएगी, आ जाएगी,
2: जगह गर्म है, टाट बिछा दे।
1: नहीं,
2: बस भी क्या सवारी है साहब, बड़े बड़े बाबू पीछे दौड़ते पर जगह नहीं मिलती। आपको कहाँ जाना है साहब, हम तो लॉर्ड साहब के दफ्तर जा रहे हैं, आप ना जाइए।
1: सुदामा नगर
2: लगते तो वही है, 2 रुपए। सुदामा नगर उतरो, चाहे लॉर्ड साहब के दफ्तर। उस दिन कोई कह रहा था किराए घटने वाले,
1: पता नहीं।
2: बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए। अच्छा अच्छा, पतलून के कारण बैठा नहीं जाता। हाँ साहब, सरकारी पहनावा है।
0: क्यों जी, बस बस चली गई क्या?
1: अभी आने वाली होगी।
0: ओहो शुक्र है, पता है मैं 2 किलोमीटर से दौड़ी आ रही हूँ। अरे शहर में फिर दंगा हो गया है।
1: क्या फिर दंगा हो गया?
2: आजादी जो मिल गई थी आज के दिन, दंगा, ये तो सरेआम बातें हैं।
0: आपको नहीं मालूम? अरे शहर में 2 गुटों में झगड़ा हो गया था, खून खराबा जारी है, और देखते ही देखते सारे के सारे बाजार वीरान हो गए। मैं भी तो बाजार गई थी अपने बच्चे के साथ।
3: मम्मी मम्मी कॉल रिंग।
0: बेटा घर जलकर पीना, तेज हूँ, ऊपर से ये सारा दंगा फसाद, अब बस भी जाने कब आएगी? आप कितनी देर से खड़े हैं?
1: 5-7 मिनट हो गए।
2: हमें भी बैठे आधा घंटा हो गया। क्यों साहब, लाट साहब का दफ्तर कितने बजे बंद होता?
1: डैम ब्लडी,
2: कितने बजे कहा था? सरकारी पुलिस समझ में नहीं आती।
3: मम्मी मम्मी लाल बोतल।
2: लाल बोतल? बच्चा लाल बोतल का मतलब नहीं समझता। मैम साहब, मैम साहब क्या बजा है?
0: इडियट।

0: बेवकूफी की बातें मत करो। ये समय मजाक करने का है क्या?
1: मेरी समझ में नहीं आता कि तू क्यों मोहन का पक्ष लेती है। जब भी शहर में दंगे होते हैं वो घर बैठकर मधुबाला के गीत लिखता है। मैं भी मान लूँ जो तू कविता के पंखों पर बैठकर घर तक पहुँच जाए।
2: मैम साहब, आपके पास घड़ी है?
1: 10:15 है
3: और मेरी घड़ी में 1:10 हुए हैं। ये रेडियो टाइम है।
1: बस तो आज आने में नहीं आती। आप तिलक नगर जाएंगी? हाईकोर्ट, हमें भी वही बस पकड़नी है।
2: क्यों जी, लाट साहब के दफ्तर सब बसें जाती हैं क्या? जाती होंगी, बड़े लाट का दफ्तर है ना।
1: क्यों जी, ये गोली की आवाज है?
4: गोली की आवाज?
1: जरा जरा ध्यान से सुनिए, सारे शहर में दंगा हो रहा है, आपको नहीं मालूम?
4: हमने सुना है, केवल बाजार में ही झगड़ा हुआ है।
1: जी नहीं, शहर में जोर का दंगा हो रहा है। मुझे तो ये गोली की आवाज लगती है, लेकिन लेकिन ये गोली इस तरफ क्यों चल रही है?
4: सरू चल लौट चले।
1: सुनिए सुनिए, शोर भी तो इधर ही आ रहा है
3: और लोग भागते हुए भी आ रहे हैं। चलिए चलिए, पिछली गली में छुप जाते हैं।
4: चल चल पप्पू, जल्दी चल चल, मेरी भी जान लेगा क्या तू?
5: मम्मी मम्मी,
4: अरे क्या है?
5: पैर में जूता कटता है।
4: अरे उतार कर हाथ में ले ले बेटा, जल्दी कर जल्दी।
5: मम्मी, एक जूता तो पीछे ही लग गया।
4: अब क्या करना है सरोज, चल चल गली में हम भी छिप जाए।
0: अरे तू कॉलेज में तो बड़ी एथलीट बनती थी, अब तुल दिल क्यों हो गई?
4: तू दौड़ पहले।
0: ठहर, मैं कार रोकती हूँ, रुक जा।
4: सरोज जल्दी देख, सारी दुनिया भाग रही है।
0: इधर क्या बात है भाई साहब?
1: सरोज,
0: एक और कार आ रही है। भाई साहब, आप हमें घर तक पहुंचा सकते हैं? सुना है दंगा हो रहा है, हम दोनों यहाँ अकेली हैं। अभी तो कोई बस भी नहीं आ रही है यहाँ पर।
6: हाँ, आपको कहाँ जाना है?
4: हाईकोर्ट जाना है।
6: पर हम तो मॉडल टाउन जा रहे हैं।
0: क्या हर्ष है, हम उधर से होकर ही जा सकते हैं, यहाँ हमारी जान को खतरा है।
6: तो आ जाइए, आप आ जाइए।
1: आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना?
6: कोई बात नहीं, इंसान की जान खतरे में छोड़ जाना पाप है। पीछे बैठ जाइए और आप इधर।
1: जी बड़ी मेहरबानी, आ जाए सरोज। हाँ,
2: बाबू जी, क्यों क्या है? हमें लाट साहब के दफ्तर जाना है।
6: सीधी सड़क जाती है, आगे से बाएं मुड़कर पूछ लेना, लाट साहब के दफ्तर।
2: वाह रे दीदी माया, एक चवन्नी उधर है मिया जी। अरे क्या ढूंढ रहे, कहाँ हो रहा दंगा?
6: शहर में कहती है,
2: इधर लोग क्यों सर भाग रहे हैं?
6: कुछ ठीक मालूम नहीं है, पता नहीं भाग रहे।
2: पर आप भी तो भाग रहे हैं।
6: मिया और सब भागने वाले कोई बेवकूफ थोड़ी है, कोई खतरे की बात हुई तभी भाग रहे। अरे भाग लिए
2: मिया जी, उधर से आए कोई कोई बस तो नहीं आ रही है?
6: ये मिया बस की बात कर रहे हो, पीछे आप देख लो।
7: आज तो बड़ी मुश्किल से जाना पड़े।
6: तो आप भी भागने वालों में से ही हैं?
7: जी नहीं, मैं लंच के लिए घर जा रहा था, मेरा घर सुदामा नगर में है।
6: हमें भी वहीं जाना है मिया, यही। अब क्या करें, माल रोड पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, एक काम करते हैं, माल रोड से निकल चलते।
5: मम्मी ये देख चाकू।
4: अरे चल भी पप्पू, आज तू मेरी जान ही लेगा, चल फेंक उसे वहीं पर।
7: अरे घबराइए नहीं, दंगा खत्म हो गया है।
4: गोली तो चल रही थी।
8: ये वह गोली नहीं, मुनादी थी।
4: मुनादी?
8: हाँ।
4: मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे इधर चल बेटा, बस आ रही होगी, चल जल्दी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में, और इसके लेखक और निर्देशक थे संदीप दुबे। दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो विविधता एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन www.hindi.rvirittas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी प्रिय श्रोताओं, स्वीकार करें मेरा सह स्नेह नमस्कार, यानी कि आपकी रेडियो दोस्त ज्योति गुजर का। हो जाइए तैयार और दिन खुशनुमा बनाइए रेडियो वरिदास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन के, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। श्रोताओं, आज है मंगलवार और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आप सबका मंगलमय हो। साथियों, अभी की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। दोस्तों, अभी की सभा को शुरू करने से पहले आइए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें आज इतना सुंदर सा दिन देखने को दिया और हम पर हमेशा अपनी आशीष और कृपा रखते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात के तहत वार्ता। अभी की सभा में नुपुर दीक्षित जी मुलाकात कराएगी प्रोफेसर बेला सचदेव जी से, तो आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम।

0: मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर बीला सचदेव जी, जो अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से समाज के अलग अलग तबकों को बहुत सारा फायदा पहुंचा रही हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी सी कोशिशें बड़े बड़े बदलाव लेकर आती हैं। बेला जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू नूपुर।
0: सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि बेला जी पिछले 13 सालों से दृष्टिहीन छात्राओं के हित में बहुत सा काम कर रही हैं और उनकी कोशिशों की बदौलत आज इस शहर में कई छात्राएं जो देख नहीं सकती उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है, और केवल उच्च शिक्षा हासिल नहीं की, वे आज सब अपना अपना काम कर रही हैं। तो मैम, मैं चाहूंगी कि आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को कि किस तरह से हम उन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करवा सकते हैं जिन्हें प्रकृति ने देखने की शक्ति नहीं दी।
1: नूपुर जी, मैं पहले 13 साल से इन ब्लाइंड लड़कियों के साथ जुड़ी हुई हूँ। पहले तो इनके हॉस्टल्स में जाती थी, इनके साथ मधुर इनके संगीत सुनती थी, और धीरे धीरे फिर जब इनके साथ इंटरेक्शन करो तो इनकी प्रॉब्लम भी समझ में आने लगती है, नीड भी समझ में आने लगती है। तो पहले तो हायर एजुकेशन में, कॉलेज में, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो इनकी एजुकेशन के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। पहले तो हमारे कॉलेज में एक या दो ब्लाइंड लड़कियां एजुकेशन के लिए आती थी। इनके साथ जो एक मुख्य प्रॉब्लम होती है कि इनका मैटर, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चियों के साथ हायर एजुकेशन लेते हैं, इनके लिए अलग से इनके लिए कोई मैटर ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं है। तो ये क्योंकि सामान्य लड़कियों के साथ एजुकेशन लेती है तो इनके मैटर की प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इनके लिए मैटर रिकॉर्डिंग करने की शुरुआत की। दूसरी, एग्जाम में इनके लिए राइटर, क्योंकि ये खुद तो लिख नहीं पाती है, एग्जाम में इनके लिए राइटर की जरूरत होती है। पहले तो क्या होता था, एक दो लड़कियां, ब्लाइंड लड़कियां आती थी तो या तो इनकी सिस्टर्स या कोई परिचित है इनकी हेल्प करती थी, मैं भी कई बार इनका खुद मैटर रिकॉर्ड करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। पहले पिछले साल 16 लड़कियां हमारे कॉलेज में पढ़ती थी ब्लाइंड लड़कियां, इस साल 20 ब्लाइंड लड़कियां हैं, जिसमें से 16 तो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है और 4 लड़कियां पीजी लेवल कर रही हैं। उसमें एक आध दो लड़कियां पॉलिटिकल साइंस में हैं, एक दो लड़कियां हिस्ट्री में एमए कर रही हैं। तो इन लड़कियों के लिए अब, क्योंकि हम इतनी लड़कियों के लिए इतना मैटर रिकॉर्ड नहीं कर पाते, और हर लेवल पर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रीवियस और फाइनल, सब स्तर पर ये लड़कियां हैं
0: जी। तो हम नॉर्मल बच्चियों की तरह ये किताब पढ़कर याद नहीं कर सकते,
1: तो इनके लिए मैटर रिकॉर्डिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इन लड़कियों की रिकॉर्डिंग करने के लिए एक हेल्पलाइन सेल तैयार की हमारे कॉलेज में। ये उसमें काफी 40-50 लड़कियों ने अपना नाम दर्ज करवाया है, और ये लड़कियां इन लड़कियों का मैटर कैसेट्स में रिकॉर्ड करती हैं, ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड करती हैं। फिर ये लड़कियां, जो ब्लाइंड लड़कियां हैं, सुनकर अपना मैटर को याद करती हैं, याद करने के बाद ये अपना मैटर अपने ब्रेल लिपि में नोट्स बनाती हैं और इस तरीके से मैटर को याद करती हैं।
0: ये तो काफी अच्छी शुरुआत की बेला जी आपने, और वाकई में एमए और बीए में पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, राजनीति, इसमें काफी लंबे विषय होते हैं और बहुत सारा पढ़ना होता है। तो इस तरह रिकॉर्डिंग के जरिए एक तरफ छात्राओं को दूसरों की मदद करने का मौका मिल रहा है और दूसरी ओर इन छात्राओं को रिकॉर्डेड कैसेट्स मिल रही हैं। मैम, एक कैसेट का खर्चा शायद 40 रुपए होता होगा, तो इतनी सारी कैसेट्स किस तरह से आप लोग इकट्ठा करते हैं? क्या बच्ची इन छात्राओं के माता पिता स्वयं आपको कैसेट्स देते?
1: नहीं, कुछ तो हमारा क्या है, मैंने हमारे ही स्टाफ से, क्योंकि जनरली जो कैसेट्स होती हैं दोबारा अपन तो रिकॉर्ड करवाते नहीं है, तो कई हमारे स्टाफ के लोगों ने पुरानी कैसेट्स दी हैं जो अच्छी कंडीशन में, तो उस पर दोबारा मैटर रिकॉर्ड हो जाता है। इस साल ही करीबन 70-80 कैसेट्स हमारे स्टाफ ने दी है। दूसरा, कई ऐसे क्लब वाले हैं, जैसे लास्ट प्रेरणा क्लब थे, लाइनस क्लब ऑफ इंदौर सिटी ने इस साल एक टेप रिकॉर्डर भी दिया है और कैसेट्स भी दिए, तो इस तरीके से हम उनका रिकॉर्डिंग करते हैं।
0: यानी कि बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो मदद मिलने लगती है
1: बिल्कुल। और दूसरा, इनको क्योंकि नोट्स बनाने के लिए शीट्स की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा मोटे कागज की जरूरत पड़ती है, और एक 4 रुपए की शायद 6 शीट्स आती हैं, और तो इनके लिए क्योंकि मोटे कागज की जरूरत होती है, और वो शीट्स यदि बाजार से लेना जाए तो 4 रुपए की 6 शीट्स आती हैं, तो ये इनके ऊपर काफी खर्चा भी आता है। तो हमारे यहाँ कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जो साइंस डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, जहाँ मोटी प्रैक्टिकल फाइल भी बनती है और मोटा कागज यूज होता है, कई वहाँ पे पोस्टर्स भी बनवाए जाते हैं, तो ये एक बार एग्जाम के बाद तो ये फालतू हो जाते
0: जी
1: हैं।
0: हाँ, रद्दी में चले जाते हैं।
1: तो इन शीट्स का हम दोबारा इनको देते हैं, काट कर देते हैं हमारी लड़कियां, और इस पर ये नोट्स बनाती हैं।
0: यानी कि
1: तो
0: कागज भी बचा रहे हैं।
1: कागज भी बचाते हैं। साल में काफी सारी शीट्स निकल जाती हैं चारों डिपार्टमेंट से, तो वो शीट्स हम इन लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों। कई बार हमारे आसपास ही छोटी छोटी सी समस्याओं के ढेर सारे समाधान मौजूद होते हैं, पर हम उन समाधानों की तरफ देखते ही नहीं है। अब देखिए इस ब्लाइंड हेल्पलाइन सेल को ही देखिए, एक तरफ बच्चियों की हेल्प हो रही है, दूसरी तरफ लड़कियां सोशल वर्क के लिए आगे आ रही हैं, और तीसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी पहल हो रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: मैडम मैं ये पूछना चाह रही थी कि केवल कॉलेज में पढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में तो प्रोफेसर्स भी हैं मदद करने के लिए या सहपाठी भी हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत सारे दूसरे पहलू होते हैं, जैसे घर से निकलकर कॉलेज तक आने का रास्ता, कॉलेज किस तरह आना है, कॉलेज में अपनी क्लास तक कैसे पहुंचना है, कहां बैठना है, कौन सी क्लास अटेंड करनी, ये सारी चीजों में दृष्टिहीन छात्राएं किस तरह से मैनेज

0: चुनते हैं अपने यहाँ पर नौकरी के लिए?
1: इनके लिए क्या है, सर्विस में तो प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक कि प्राइवेट जो सेक्टर है उनमें तो इनको बिल्कुल भी स्थान नहीं मिलता है, या नौकरी इनके लिए समझिए नगण्य ही है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट में इनको कुछ कुछ एक आध परसेंटेज रिजर्व होती सीट्स होती है इनके लिए, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में है, स्कूली टीचिंग में। हमारी कई यहाँ की जो पढ़ी हुई लड़कियां हैं अब जॉब कर रही हैं, कुछ एक आध कॉलेज में प्रोफेसर है, दो तीन लड़कियां, कई लड़कियां स्कूल्स में टीचर हैं, पढ़ा रही हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में 1% करीबन रिजर्वेशन इनके लिए होता है।
0: मैम, चूंकि हम लोग एक बहुत बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं, जहां हर किस्म की मदद करने के लिए बहुत सारे क्लब, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं मौजूद होती हैं। मान लीजिए दूर दराज के किसी गांव में एक छोटे से सरकारी स्कूल में एक दृष्टिहीन छात्रा पढ़ने आती है, तो ऐसे में कोई शिक्षक यदि दिल से उसका भला करना चाहे तो उस बच्ची को पढ़ाने के लिए शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या वो करे कि वो बच्ची की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके?
1: देखिए, ऐसे समाज कल्याण बोर्ड की तरफ से इंटरनेशनल कई एनजीओज हैं, नेशनल एनजीओज हैं, स्टेट लेवल पर एनजीओज हैं ऐसे, और ऐसे कई गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं जो कि इनकी हेल्प करने के लिए, इनके लिए प्राइवेट स्कूल्स हैं
0: जी।
1: गांव में तो इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन शहरों में काफी हॉस्टल्स भी हैं और फैसिलिटीज भी उनको दी जाती है, ब्रेल मेथड में इनको सिखाया भी जाता है। तो उनके लिए ये कि संदेश है कि उनको मतलब हायर एजुकेशन के लिए, स्कूल इनकी शिक्षा के लिए शहरों में भेजना चाहिए
0: जी। मतलब यदि गांव में सुविधा नहीं हो पा रही है पढ़ाने की, तो थोड़ा सा दिल मजबूत करके
1: शहरों में इनको भेजना चाहिए। शहरों में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं इनके लिए, जैसे अब यहाँ पर भी प्रकाश नगर में बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए महेश दृष्टिहीन, जहाँ पर करीबन 147 गर्ल्स यहाँ पर है, और पूरे एमपी से यहाँ पे गर्ल्स पढ़ने के लिए आती है, और छोटे छोटे गाँव से पढ़ने के लिए आती है, तो अपने यहाँ भेज सकते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे ब्रेल लिपि में सिखाते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं इनको
0: जी। तो आपने कंप्यूटर की बात कही, आजकल जमाना कंप्यूटर के ऊपर दौड़ रहा है, यानी कि यदि आपको कहीं पर भी नौकरी करनी है तो कंप्यूटर आपके लिए एक अनिवार्यता बन जाता है। तो दृष्टिहीन बच्चों को हम किस तरह से कंप्यूटर सिखा सकते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आजकल इनके लिए है ना कंप्यूटर्स है और जॉब्स में सॉफ्टवेयर है
0: जी,
1: स्पोकन सॉफ्टवेयर है जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, मतलब वो कंप्यूटर बोलता है जो भी आप टाइप कर रहे हो, तो वहाँ उसमें ये लड़कियां, हमारी कई लड़कियां कंप्यूटर सीख रही हैं। और मैंने पिछले साल ही इनके लिए ये स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, वहाँ पे तो ब्रेल मेथड में कंप्यूटर भी है, वहाँ पर मैं इनको लेके गई थी और वहाँ 8-10 लड़कियों ने कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम सीखा भी था। और अब हमारी कई ऐसी ब्लाइंड लड़कियां हैं जो कंप्यूटर ऑपरेट कर लेती हैं, अपना रिज्यूम बना लेती हैं, यहाँ तक कि नेट भी ऑपरेट कर लेती हैं आसानी से, सीख हिंदी कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों में टाइप कर लेती है, अपना बायोडाटा फाइल रिज्यूम बनाना नेट देखना सब कर लेती है।
0: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मेरे ख्याल से जिन परिवारों में अभी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं या किशोर हैं जो किसी वजह से देख नहीं सकते, तो उन्हें काफी संबल मिलेगा आपकी बातें सुनकर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात के अंतर्गत वार्ता, जिसमें हमारी आरबीए की शान नुपुर दीक्षित जी ने प्रोफेसर बेला सचदेव जी से मुलाकात कराई। मित्रों, आगे की कुछ और बातें और जानकारी अब हम सुनेंगे अगली सभा में। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, कार्यक्रम युवा विकास में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, कार्यक्रम युवा विकास में रूबरू होंगे माइकल हॉजिस जी और उनकी वार्ता का शीर्षक है आदर्श बाराती।

0: युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है बातचीत आदर्श बाराती। लेखक और प्रस्तुतकर्ता माइकल हॉजिस। बातचीत में भाग ले रहे हैं अपर्णा सिंह और माइकल हॉजिस।
1: युवा श्रोता साथियों को अपर्णा सिंह और
0: माइकल हॉजिस का
1: नमस्कार। तो माइकल जी, अपने युवा साथियों को हम बताते चले कि आज हम उनके लिए किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, ताकि वे हमारी बातचीत को तन्मय होकर सुन सकें। तो अपर्णा जी, सभी को पता है कि सभी लोग अपने त्योहार को खुशी खुशी और उल्लास के साथ मनाने के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। फिर उस त्योहार की खुशी और उल्लास आने वाले अगले त्योहार या अगले वर्ष उसी त्योहार तक उनके मन में एक उमंग जगाए रखते हैं और एक सुखद स्मृति के रूप में अपनी एक क्या कहते हैं, छाप भी छोड़ जाते हैं।
1: लेकिन हमारी एक परंपरा ऐसी भी होती है जिसे व्यक्ति जीवन भर के लिए भूल नहीं पाता है और परंपरा को पूरा करने के उस अवसर को जीवन भर के लिए अपनी सुखद और कभी न भूलने वाली स्मृतियों के रूप में संजोकर रखना चाहता है और संजोकर रखता भी है। माइकल जी,
0: जी अपर्णा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारी उस परंपरा का नाम है विवाह।
1: जी हाँ,
0: विवाह या शादी किसी भी व्यक्ति के जीवन में सचमुच कभी न भूलने वाला एक अवसर ही तो होता है जिसका इंतजार हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रहता है।
1: माइकल जी, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि विवाह संपन्न होने का एक ऐसा अवसर होता है जिसमें आपके जाने बूझे और मिलने वाले लोगों के साथ साथ कुछ नितांत अपरिचित तो कुछ थोड़े बहुत परिचित लोग भी शामिल होते हैं।
0: जी जरूर।
1: और माइकल जी, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे माहौल में कभी कभी सब कुछ शांति से निपट जाता है और कभी तो जरा सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती।
0: जी जी।
1: और ऐसे में पूरा खुशी का माहौल और उल्लास का माहौल कसैला सा हो जाता है।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, इसीलिए विवाह जैसे वातावरण में संयम, समझदारी और एक दूसरे से स्थिति से सामंजस्य जैसे व्यवहारों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, जिस कारण विवाह जैसी क्रिया को निर्विघ्न रूप से यानी बिना किसी रुकावट के हंसी खुशी के माहौल में ही संपन्न किया जा सके।
1: बिल्कुल माइकल जी, इसलिए आज हम अपने युवा साथियों से इसी विषय पर अपनी बातचीत के द्वारा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विवाह जैसे आयोजन में भी युवा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर चाहे वे किसी कार्य में संलग्न हों, किसी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हों या फिर वे किसी बारात में बाराती की भूमिका में ही क्यों न शामिल हो जाएं।
0: जी बिल्कुल। तो जब भी कहीं से किसी विवाह समारोह में आने का निमंत्रण मिले तो सबसे पहले इस बात को निश्चित कर लें कि आपको बारात में भी जाने का निमंत्रण है या फिर केवल विवाह भोज में ही पधारने का निमंत्रण है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कई लोग विवाह भोज के निमंत्रण को ही बारात में जाने का निमंत्रण समझ बैठते हैं और ऐसे में बिन बुलाए बाराती बनकर हंसी का पात्र बन बैठते हैं।
1: माइकल जी, आपने एक अहम बात बताई है। वाकई कुछ लोग ऐसा करते हैं और दूसरों की नजर में अपने आप को मजाक बना लेते हैं और दूसरों को अपने ऊपर हंसने का अवसर दे बैठते हैं ऐसे में।
0: अपर्णा जी, इसके बाद आता है वो अवसर जब वाकई में आपको बारात में जाने के लिए निमंत्रित किया गया हो।
1: जी,
0: इस स्थिति में आप अपनी सुविधा अनुसार बारात में जाने की योजना बनाएं। सुविधा अनुसार का मेरा मतलब ये अपर्णा जी कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं
1: जी हाँ,
0: तो अपने काम और अपनी बाकी बची हुई छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए ही अवकाश के लिए आवेदन करें तो ही ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपका अवकाश आवेदन स्वीकार किया जा रहा हो तो ठीक, अन्यथा आप आवेदन के लिए अपने अधिकारी से बहस या किसी प्रकार का विवाद न करें।
1: जी हाँ।
0: ये आपकी नौकरी में आपके भविष्य के लिए ठीक होगा।
1: और माइकल जी, यदि हमारे युवा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वे अपनी पढ़ाई को विघ्न न पहुंचाते हुए ही बारात में जाने की योजना बनाएं। अपने कार्य से या पढ़ाई से अवकाश इस तरह का लें कि बारात के साथ वापस आने के बाद आप एक दिन भरपूर आराम कर लें और बारात तथा सफर की पूरी थकान उतार सकें, क्योंकि अधिकतर लोगों को बारात में जाने पर थकान हो ही जाती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर आखिर घर होता है और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए।
0: जी हाँ अपर्णा जी, इससे फायदा ये होगा कि आप दूसरे दिन अपने कार्य पर या अपने स्कूल कॉलेज तरोताजा होकर जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: जिससे आप अपना पूरा मन अपने काम और अपनी पढ़ाई में लगा सकेंगे। क्या कहना है अपर्णा जी?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपसे इसीलिए मैं पूरी तरह सहमत मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ माइकल जी, वरना बारात से आते ही कार्य पर या कॉलेज जाने वाले अलसाए से रहते हैं और अपने बारात से आते ही कार्य पर या कॉलेज आने का रोना रोते रहते हैं। और माइकल जी, इसके बाद बारी आती है बारात में जाने की तैयारी करने की।
0: और अपर्णा जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही जरूरी और एक खास बात है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि साधारणता क्या होता है कि लोग सोचते हैं बारात में तो जाना ही है, बस दो जोड़ी कपड़ा रखो और निकल पड़ो।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे ही युवाओं की ऐसी सोच ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल भी ठीक नहीं है माइकल जी, क्योंकि आप कहीं शहर ही में तो जा नहीं रहे हैं अगर बारात में जा रहे हैं तो, बल्कि आप दूसरे और पराए शहर जा रहे हैं जहां आपको अपने घर जैसी सुविधाएं तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं। और इसलिए स्वयं बाराती पूर्व से ही अपनी सुविधा जुटाने का प्रयास कर लें
0: जी,
1: तो मेरे ख्याल से उन्हें बारात में किसी प्रकार से मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: जी हाँ, और इसके लिए पहले तो वे अपने साथ कम अज कम और केवल जरूरी काम आने वाली चीजें ही रखें।
1: जी हाँ,
0: जैसे एक जोड़ी स्लीपर, दो जोड़ कपड़े, एक चादर, और युवा अपना शेविंग सेट, ब्रश, टूथपेस्ट, कंघी तेल वगैरह आदि।
1: जी हाँ,
0: और युवतियों को चाहिए कि अपने मेकअप का सामान आदि भी वे रख लें ताकि उन्हें वहां जाने पर ये चीजें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े,
1: माइकल जी, इसके
0: ना होना पड़े।
1: और इसके अलावा यदि कोई दवाइयां वगैरह, जैसे अगर किसी की तबीयत खराब है वगैरह, तो आप ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अपने साथ इसलिए रखना चाहिए क्योंकि दवाई ले जाने से उसकी जरूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि वहां पर तबीयत भी खराब हो सकती है। जहां आप बाराती बनकर जा रहे हैं वहां आपको ये दवाइयां न मिले, ऐसा भी हो सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़े रखते समय मौसम का भी ध्यान अवश्य रखें और मौसम के अनुरूप ही अपने जरूरी कपड़े आप रखें।
0: हाँ, पन्ना जी, अब जो सबसे जरूरी और सबसे खास बात है वो ये कि बाराती बनकर जाने से पूर्व आगे सामने आने वाली किसी भी अव्यवस्था के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लें।
1: जी
0: हाँ। वरना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भी जरा सी असुविधा से युवा हताश हो जाए।
1: जी हाँ।
0: और आनंद और आमोद प्रमोद का समय तनाव और कुंठा में ही बीत
1: जाए। और अक्सर ऐसा देखा गया है माइकल जी कि बारात में अक्सर ऐसा होता है कि तनाव और कुंठा लोगों में आ जाती है क्योंकि सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती हैं।
0: बिल्कुल, तो इस वजह से वो बारात आपके लिए कड़वी स्मृतियों का एक ढेर मात्र बनकर न रह जाए और भविष्य में आप कहीं भी किसी की भी बारात में बाराती बनकर जाने से तौबा कर लें, ऐसा ना हो।
1: आपने एक बहुत अच्छी बात कही है माइकल जी, क्योंकि बारात जैसे एक बड़े और जिम्मेदार आयोजन में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी या तो रह जाती है या फिर स्थितिवश पैदा हो जाती है। इसलिए जाने से पूर्व अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लेने का लाभ ये होगा कि आप परिस्थितियों के अनुसार अपना उनसे सामंजस्य से बैठा पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और ये कह सकते हैं कि वातावरण का भरपूर आनंद भी उठा पाएंगे।
0: जी अपर्णा जी, और बस के या ट्रेन के तय स्थान और तय समय के अनुसार ही सही जगह पर सही समय पर पहुंचे, वरना आपके देर से पहुंचने पर बारात के निर्धारित समय पर निकलने का कार्यक्रम अव्यवस्थित हो सकता है और उसका दोष अप्रत्याशित रूप से आप पर भी लगाया जा सकता है।
1: और माइकल जी, आपने बिल्कुल ये बात सही कही है, क्योंकि कुछ लोग अपना महत्व जताने और बताने के लिए सही समय पर न पहुंचकर लोगों से अपना इंतजार करवाते हैं। उनकी ये मानसिकता उन्हें लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी बनाती है।
0: जी, और समय पर पहुंचने के बाद आपका ये फर्ज बनता है कि आप आपके लिए निर्धारित किए गए स्थान पर ही अपना आसन जमाएं। अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि हो सकता है आप अपनी मर्जी से जहाँ बैठ जाएं वो जगह किसी और के लिए आरक्षित की गई हो।
1: और माइकल जी, वैसे तो बारात के आयोजकों द्वारा सभी बारातियों का एक दूसरे से सामान्यतः परिचय तो कराया ही जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी कारणवश आप परिचय से वंचित रह जाएं, तो इस बात को अन्यथा न लें आप, क्योंकि स्वयं ही आपको ऐसे में करना चाहिए कि आगे बढ़कर शालीनता से अपना परिचय देकर अन्यों से उनका परिचय प्राप्त करना चाहिए।
0: अपर्णा जी, किसी भी बारात का रास्ता लंबा हो या छोटा, बाराती सारे रास्ते हंसी मजाक करते ही जाते हैं और सभी मजाक के हल्के फुल्के मूड में रहते हैं, विशेषकर युवा। इसलिए युवाओं को ऐसे समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और वातावरण को जीवंत और हल्का फुल्का बनाए रखने में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए, तभी तो वे अपने युवा होने को सार्थक कर पाएंगे।
1: माइकल जी, लेकिन यहाँ भी हमारे युवाओं को एक बात का ध्यान रखना होगा कि वे किसी से भी भरपूर हंसी मजाक करें,
0: जी,
1: जैसा कि आपने कहा, लेकिन शालीनता की सीमा में रहकर।
0: बिल्कुल।
1: और उन्हें इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा, वरना अशालीनता का बाण किसी को भी आहत कर सकता है और सफर का मजा ही नहीं बारात के बाकी का मजा भी किरकिरा कर सकता है।
0: इसके बाद आयोजकों की ओर से चाय नाश्ते या खाने आदि की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन किसी कारण यदि इस व्यवस्था में थोड़ी देर हो जाए या कोई कमी रह जाए तो उस पर हल्ला करने के बजाय शांत रहना चाहिए।
1: ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हल्का फुल्का वातावरण बनाए रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए।
0: उसके लिए ये जरूरी है क्योंकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी और के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था है, हमारा घर नहीं है।
1: और माइकल जी, इसके अलावा नाश्ता खाना आदि के लिए किसी प्रकार की जल्दबाजी भी न तो करना चाहिए और न ही दिखाना चाहिए, वरना इससे लोगों को आपके बारे में आपकी राय कायम करने का मौका मिल जाएगा और आपको देखकर लोग आंखों ही आंखों में आपके बारे में बातें करने लगेंगे।
0: जी अपर्णा जी, बारात के निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद भी युवा अपनी शालीनता को बनाए रखें। यदि बारात आपके मित्र की ही है तो बेवजह उसके सामने अपने स्वागत की या किसी और चीज की कमी का रोना न रोएं, न ही उससे की गई व्यवस्था के प्रति किसी भी तरह से भड़काएं या उकसाएं। लड़की वालों के यहाँ के किसी भी व्यक्ति पर बेवजह अपना रौब कायम करने का प्रयास न करें,
1: जो कि अक्सर देखा गया है कि ऐसा होता है, बाराती ऐसा करते हैं।
0: इससे भले ही आपका रौब जमे या न जमे, किंतु बारात में शामिल लोगों का चरित्र वधू पक्ष के लोगों को जरूर समझ में आ जाए।
1: और माइकल जी, घर में भी आपको जो चीज न मिलती हो ऐसी चीजों की फरमाइश कर वधू पक्ष को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें आप लोगों की व्यवस्था करने के अलावा और भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और अलग काम भी करने रहते हैं, इसलिए उन्हें बेकार ही परेशान करने का किसी भी प्रकार से प्रयास नहीं करना चाहिए युवाओं को।
0: एक बात और अपर्णा जी, वधू पक्ष के सभी लोगों से भी बारातियों का परिचय कराया जाता है। यदि आप इस परिचय से वंचित हो जाते हैं तो मुंह न फुलाएं, क्योंकि विवाह होने से लेकर विदाई तक वैसे भी घराती और बाराती सभी एक दूसरे से परिचित हो ही जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: रही बात मुंह फुलाने की, तो ऐसे मुंह फुलाने वालों से सभी लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा माइकल जी, वैसे भी जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाने वाले को कोई भी नहीं पूछता है, क्योंकि उन्हें भी यही डर लगा रहता है कि न जाने किस बात पर उनसे भी मुंह न फुला ले कोई। वैसे भी ऐसे आयोजन या समारोह में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी को मनाता फिरे।
0: जी बिल्कुल। और अपर्णा जी, इसके उलट हंसी मजाक करने वाले और वातावरण को उल्लासमय बनाने वाले को सभी पूछते हैं।
1: बिल्कुल पूछते
0: सभी
1: हैं।
0: उसका साथ और उसकी निकटता चाहते हैं। विवाह समारोह भी एक हंसी मजाक और आनंद तथा उल्लास भरा कार्यक्रम होता है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए इस कार्यक्रम में जितना हंसी मजाक, जितना आनंद उल्लास होता है, उतनी ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है।
1: माइकल जी, क्योंकि इससे कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्तियों का भरपूर मनोरंजन होता है और यही तो वे क्षण, वे लम्हे होते हैं जब ये प्रत्येक शामिल व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित होकर आजीवन मधुर स्मृतियों में बदल जाते हैं।
0: जी अपर्णा जी, जैसा कि इस कार्यक्रम के आरंभ में भी हम बता चुके हैं कि अव्यवस्थाओं के लिए हमें स्वयं को पूर्व से ही तैयार रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: इससे लाभ ये होता है कि ऐसे में यदि आपको साबुन, पानी, स्नानघर, शौचालय और सोने ठहरने आदि में किसी बात की कमी होती है तो आपको इनसे सामंजस्यता बैठाने में सरलता पेश आती है।
1: जी बिल्कुल। और आप ऐसी अव्यवस्थाओं को मन से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप इन सबके लिए पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे,
0: इसलिए आपको इन सब का सामना करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती क्योंकि इसके लिए आप पहले से तैयार थे।
1: जी बिल्कुल। और आप ऐसे में अव्यवस्थाओं को मन से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप इन सबके लिए पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे, इसलिए आपको इन सब का सामना करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले से तैयार थे इन सब बातों के लिए।
0: अपर्णा जी, विवाह के समय यदि वर और वधु पक्ष के बीच यदि किसी बात पर कोई विवाद हो जाए तो युवाओं को तैश में आने की बजाय चुप रहना और तटस्थ रहना चाहिए। उन्हें बड़े बूढ़ों को बात करने देना चाहिए और जहां तक हो सके दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए।
1: सही कहा माइकल जी आपने, उन्हें किसी भी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल या फिर कुछ ही देर में दोनों पक्षों को सहमत होते देर नहीं लगेगी और ऐसे में आप बेकार ही मध्यस्थ की भूमिका निभाकर बुरे बनकर रह जाएंगे। इसलिए या तो चुप ही रहे ऐसे में या फिर समझौता कराने का प्रयास करते रहे।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, विषय हल्का हो चाहे गंभीर हो, पहले तो तटस्थ रहना चाहिए और यदि बीच में बोलना ही पड़ जाए तो समझौता ही कराने का प्रयास करना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि वधु और वर पक्ष दोनों ही आपकी दूरदर्शिता और समझदारी के कायल होंगे और आपकी समझदारी की प्रतिक्रिया के परिणाम सबको देखने मिलेंगे। दोनों ही पक्ष आपकी तारीफ करेंगे इसीलिए ऐसे समय पर अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन करने के स्थान पर समझदारी से काम लेना चाहिए।
1: बारात के लौटते समय भी माइकल जी हंसी मजाक का ही माहौल होता है
0: जी,
1: और क्योंकि परिवार के एक नए सदस्य के रूप में वधु साथ होती है। और आशा है हमारे युवा साथियों ने हमारी आज की बातचीत को भी ध्यानपूर्वक सुना होगा और वे उस पर अमल भी करेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था आदर्श बाराती, और लेखक व प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजसी। और साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वरिता से एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथ ही वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का और कार्यक्रम युग संचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, भारतीय डाक प्रणाली का जो उन्नत और परिष्कृत स्वरूप आज हमारे सामने है, वह हजारों सालों के लंबे सफर की देन है। अंग्रेजों ने 150 साल पहले अलग अलग हिस्सों में अपने तरीके से चल रही डाक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने की जो पहल की, उसने भारतीय डाक को एक नया रूप और रंग दिया। पर अंग्रेजों की डाक प्रणाली उनके सामरिक और व्यापारिक हितों पर केंद्रित थी। भारत की आजादी के बाद हमारी डाक प्रणाली को आम आदमी की जरूरतों को केंद्र में रखकर विकसित करने का नया दौर शुरू हुआ। नियोजित विकास प्रक्रिया ने ही भारतीय डाक को दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन डाक प्रणाली बनाया है। राष्ट्र निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। आम आदमी डाकघरों और पोस्टमैन पर अगाध भरोसा करता है। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद इतना जन विश्वास कोई और संस्था नहीं अर्जित कर सकी है। यह स्थिति कुछ सालों में नहीं बनी है, इसके पीछे वर्षों का श्रम और सेवा छिपी है। साथियों, आज इसी विषय पर कार्यक्रम युग संचार में आपसे चर्चा करेगी आप सभी की चहेती अंतरा गरबड़े जी, और लेखक है स्वर्ग कृष्णकांत दुबे जी, और उनकी वार्ता का शीर्षक है भारतीय डाक सेवाएं।
1: युग संचार के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता भारतीय डाक सेवाएं। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु। मित्रों, कुछ समय पहले की बात है, एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसे पढ़ सुनकर अच्छा लगा कि भारतीय डाक सेवाओं में उसकी व्यवस्था में शासन द्वारा विशेष सुधार किया जा रहा है। उसे आधुनिक स्वरूप तो दिया ही जाएगा, उसे आकर्षक भी बनाया जाएगा, और ये सब इसलिए कि भारतीय जनमानस ने कभी भारत की शासकीय डाक व्यवस्था के प्रति अपनी असीम आस्थाएं व्यक्त की थी। लेकिन अब उस आस्था में भारी अंतर आ चुका है, उसके प्रति अब उनकी दूसरी ही दृष्टि अपना ली गई है, क्योंकि शासकीय डाक सेवाएं उतनी सक्रिय नहीं रह गई जितनी पहले कभी थी। जनता फिर इस दिशा में आकर्षित हो, वो सेवा फिर चुस्त दुरुस्त बने, अब इसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित ही जनता को खुशी होगी। शासकीय डाकघर फिर चहल पहल के नई गतिविधियों के केंद्र होंगे, और अगर ये होता है तो एक सामान्य जन को प्रसन्नता ही होगी। साथियों, वैसे भारतीय डाक व्यवस्था का अपना एक विशेष इतिहास रहा है, एक विशेष परंपरा और एक विशेष कार्य प्रणाली रही है, जो पहले कभी काफी सराही गई थी। ये डाक व्यवस्था इस धरती पर सदियों सदियों से जारी है, पर हम इस बात को नहीं भुला सकते कि इस व्यवस्था को एक खास रूप विदेशी हुकूमत के समय में ही मिला। पश्चिमी मुल्कों में जो व्यवस्था लागू थी उसे भारत में स्थापित किया गया था, जिसका कि अपना एक विशेष रूप और विशेष व्यवस्था थी। साथियों, उस युग में व्यवस्थित डाकघरों की स्थापनाएं की गईं, डाक लाने ले जाने की व्यवस्था को एक विशेष रूप दिया गया, या यूं कहें कि उसे व्यवस्थित और एक रूपता दी गई तो भी शायद गलत नहीं होगा। आगे जैसे जैसे युग में परिवर्तन आया, उसी के अनुरूप उसे व्यवस्था दी गई और विस्तार दिया गया ताकि वो सुचारू रूप ग्रहण कर सके। साथियों, सब जानते हैं कि प्राचीन युग में भारतीय डाक व्यवस्था का मूल आधार मनुष्यों के कंधे या पशुपीठ थी। उस समय तेज गति से चलने वाले इंसान, जिन्हें हरकारे कहा जाता था, तथा तेज गति से चलने वाले अश्व यानी घोड़े, ऊंट, रथ अथवा घोड़ा गाड़ियां पत्र संदेश, चिट्ठियां और अन्य पत्र आदि लाने ले जाने का काम करते थे, जिन्हें कभी कभी कई कई अवरोधों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन विदेशी हुकूमत के समय उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए डाकघरों का निर्माण, उसके साथ उन्होंने एक व्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत नई व्यवस्थाएं भी बनाई और साथियों हजारों लाखों कर्मचारी उससे जुड़े और काम करने लगे और तब डाक प्रणाली नए रूप में विकास पाने लगी। जी हाँ, इस संदर्भ में एक बात और याद आती है कि डाक सेवाओं में डाक टिकट का आज भी कितना महत्व है। इसे सभी लोग जानते भी हैं और पहचानते भी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में डाक टिकट का प्रचलन आज से कोई 156 वर्ष पूर्व हुआ था और वो समय था सन 1852 का। और साथियों, जो विवरण प्राप्त हैं उनमें ये बताया गया है कि सबसे पहले उस समय के सिंध प्रांत में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी और उसके बाद सन 1854 में सारे भारत में डाक टिकट का प्रचलन हुआ। तब जो दो पैसे, एक आना, दो आना और चार आना मूल्य के डाक टिकट थे, तब भारत में इन सिक्कों का ही प्रचलन था। इसके साथ आप ये भी जान लें कि एक समय ये डाक टिकट सीधे इंग्लैंड से ही छप कर आते थे, लेकिन सन 1931, हाँ साथियों, सन 1931 में ये ही डाक टिकट भारत में छपने लगे और इस तरह उस युग में पोस्ट कार्ड का भी चलन शुरू हुआ। इन व्यवस्थाओं ने कम खर्च लागत में इस डाक व्यवस्था के जरिए सूचना समाचारों का आदान प्रदान करना बहुत आसान बना दिया और साथियों इसके बाद इस सुविधा विस्तार ने बड़े पैमाने पर फैलाव किया और इस डाक व्यवस्था के जरिए रजिस्ट्री के साथ मनी ऑर्डर भी सहजता से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने लगे और इस तरह रुपए पैसों के लेन देन में ही सहजता आने लगी थी। और इसके साथ जब देश में टेलीग्राफ की सुविधा आई तो ये दोनों विभाग कई जगह एक साथ काम करने लगे। इससे इन विभागों का नाम ही डाक तार विभाग हो गया। तब इसका एक विस्तृत संजाल देश में जगह जगह व्याप्त किया गया। इसके साथ ही एक बात और भी हुई, जब देश में रेलवे लाइन्स बढ़ी, विस्तार पाने लगी तो देश के अनेक भाग उससे जुड़े। इसी तरह देश में सड़कें बनी, उन पर मोटर वाहन दौड़ने लगे, डाक व्यवस्था में तेजी भी आने लगी और उसकी सेवाओं में गतिशीलता आने लगी। साथियों, जब हवाई यात्राएं शुरू हुई तो उनसे भी डाक को लाने ले जाने की व्यवस्था हुई और भारत दुनिया से जुड़ गया। लगा कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, मानव विश्व मानवता से जुड़ गया हो। साथियों, जब भारत ने आजादी पाई, देश ने योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया तो उसके तहत डाक तार व्यवस्था का भी खूब विस्तार शहरों में, कस्बों में, गांवों और दूर दराज के अंचलों में डाक तार घर स्थापित हुए और उनकी सेवाएं भी विस्तार पाने लगी। लेकिन वैज्ञानिक विकास ने इसमें कई कई और विधाएं भी जोड़ी जिससे समाचार सूचनाएं तीव्र गति से भेजी जाने लगी। टेलीफोन सेवाएं तो आजादी के पूर्व ही स्थापित हो चुकी थी, लेकिन आजादी के बाद तो उसमें तीव्र गति से विकास हुआ। जगह जगह टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हुए, टेलीफोन सेवाओं से पूरा देश जुड़ गया। उस समय के कई समाचार पत्रों, व्यापारी संस्थाओं तथा कुछ अन्य संस्थानों ने भी टेलीप्रिंटर सेवाएं लेना शुरू की। विगत कुछ दशकों में तो संचार क्षेत्र में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि ने दस्तक दी और जिस गति से इन सब ने विस्तार पाया वो अपने आप में निश्चित ही अद्भुत रहा। साथियों, आकाश में स्थापित उपग्रहों ने संचार क्रांति को जगतव्यापी बना दिया। आज आधी भारतीय आबादी के हाथों में मोबाइल है जो हर कभी टुनटुनाते और संदेश देते लेते रहते हैं। अब तो ये यंत्र अपने में कई कई संभावनाएं समेटे जा रहा है। अलावा इन सब के स्पीड पोस्ट का प्रचलन भी बढ़ा है, उससे संचार व्यवस्था ने खासी गति ग्रहण की है और इसी भांति देश की कई महत्वपूर्ण कंपनियों ने अपनी अपनी कुरियर एजेंसियों को प्रारंभ कर दिया है जो जल्द से जल्द पत्र सूचनाएं आदि भेजने का काम द्रुत गति से अंजाम देती हैं। कहने का मतलब यही है कि मोबाइल, ईमेल और कुरियर की चकाचौंध लगातार बढ़ती जा रही है। और साथियों, इन सब की वजह से देश ने संचार क्रांति में अपने कदम लगातार आगे बढ़ाए हैं, लेकिन शासकीय डाक विभाग कई विसंगतियों से घिरता नजर आ रहा है। यही नहीं, उसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह की छायाएं घिरती जा रही हैं। और अब भारतीय डाक सेवा में एक नई चेतना का संचार दिखाई देगा। ये कुछ हो जाए भली बात, इससे जनसामान्य को कुछ तो सुख होगा ही। इससे भी पहले एटो नाम से एक परियोजना प्रकाश में आई है, उसने इस दिशा में कुछ भली संभावनाएं दी हैं। इसके अंतर्गत देश के कोई 1.5 लाख डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथियों, इस बात को भी नहीं भूला जाना चाहिए कि भारत में 1.5 लाख डाकघर अस्तित्व में हैं, और इनमें से कोई 1,40,000 डाकघर ग्रामीण अंचलों में हैं। सच पूछा जाए तो आज भी गांवों में संचार माध्यमों में इन्हीं डाकघरों का ही महत्वपूर्ण सहारा है और इन्हीं की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंकड़े बताते हैं कि साल भर में इन डाकघरों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए से अधिक के मनी ऑर्डर और कोई 17 करोड़ की बचत योजनाओं का कारोबार होता है। इसलिए इस बात को स्वीकारा जाना चाहिए कि ग्रामीण अंचलों में आज भी डाकघरों की उतनी ही महत्ता बनी हुई है। डाक विभाग में कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, इसलिए उसमें शिथिलता आना स्वाभाविक है। नहीं मालूम क्यों हो रहा है ऐसा। देखें, भारत सरकार आगे अपने डाक विभाग को किस नए रूप से सज्जित करने जा रही है। क्या ऐसा कुछ होगा? ये प्रश्न तो है ही, लेकिन लगता है उत्तर संदेहास्पद ही होगा जब तक कि ये योजना सही आकार न ग्रहण कर ले। और साथियों, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था भारतीय डाक सेवाएं, और जिसके लेखक थे स्वर्गीय कृष्णकांत दुबे जी और प्रस्तुतकर्ता थी अंतरा करपड़े जी। साथ ही आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। और इसी भक्ति गीत के साथ अब आप अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को अनुमति दीजिए, और मैं आमंत्रित करती हूँ विवेक जी को। मिलती हूँ कुछ समय बाद कुछ नए कार्यक्रमों के साथ एक नई सभा में। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है धर्म का वास्ता मानवता से और आतंक का राजनीति से, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर मैनुअल परेरा।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए। सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है धर्म का वास्ता मानवता से और आतंक का राजनीति से। प्रिय श्रोता मित्रों, फादर मैनुअल परेरा का नमस्कार। राम पुनिया जी, जो कि आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित हैं, वे लिखते हैं, दिनांक 13 जुलाई 2011 को मुंबई में हुए आतंकी बम विस्फोटों के बाद से हमारे देश में घृणा फैलाने व समाज को बांटने वाली ताकतें एक बार फिर अपना सिर उठा रही हैं। धार्मिक राष्ट्रवाद के पैरोकार अपना पुराना राग एक बार फिर अलापने लगे हैं। वे धर्म, विशेषकर के इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हिंदुओं को एक होना होगा, हिंदू पार्टी को समर्थन देना होगा, मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना होगा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। स्वामी का कहना है कि आतंकवाद दरअसल हिंदू धर्म पर इस्लामिक हमला है और इस्लाम भारत पर काबिज होना चाहता है। अतः ये जरूरी है कि आम हिंदुओं की मानसिकता हिंदुवादी बनाई जाए, अयोध्या व वाराणसी में भव्य मंदिरों का निर्माण हो, संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द किया जाए और हिंदुओं के दूसरे धर्म को अपनाने पर प्रतिबंध हो। परंतु हिंदू धर्म अपनाने के इच्छुक गैर हिंदुओं पर कोई रोक न हो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना जरूरी है और उतना ही जरूरी है मुसलमानों को मताधिकार से वंचित किया जाना। यह लेख मूलतः आरएसएस के एजेंडे को ही प्रतिबिंबित करता है, यद्यपि इसकी भाषा अत्यंत कटु व आक्रामक है। अपने गठन से लेकर आज तक आरएसएस ने देश में केवल और केवल घृणा फैलाई है। लगभग पिछले 100 सालों से हिंदू धर्म संघ की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार रहा है। लगभग पिछले 100 सालों से हिंदू धर्म संघ की राजनीतिक विचारधारा का मूल धारा रहा है। आरएसएस को अपने इस अभियान में अमरीकी दुष्प्रचार से भी मदद मिल रही है। 9/11 के बाद से अमेरिका ने एक नए शब्द इस्लामिक आतंकवाद को गढ़ा और पूरी दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने का जबरदस्त अभियान चलाया। आतंकवाद सैकड़ों साल पुराना है, परंतु अलकायदा के अस्तित्व में आने के बाद से यह वैश्विक स्तर पर चर्चा और बहस का विषय बन गया है। अलकायदा और तालिबान के लड़कों को अमेरिका द्वारा स्थापित किए गए मदरसों में प्रशिक्षण मिला। पिछली सदी के आखिरी 3 दशकों में पश्चिम एशिया के तेल संसाधनों पर कब्जा अमेरिकी स्मारक रणनीति का महत्वपूर्ण अंग रहा है। अमेरिकी सरकार ने पश्चिम एशिया के देशों पर हमले करने के लिए कई बहाने गढ़े। सच तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इसराइल के निर्माण के बीज बोए ही इसलिए थे ताकि पश्चिम एशिया पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए उसे इस क्षेत्र में एक वफादार पिट्टू उपलब्ध रहे। पश्चिम एशिया में मुसलमानों का बहुमत है। इन देशों में से कुछ के तानाशाहों और शेखों ने अमेरिका से हाथ मिला लिया। कैसी विडंबना है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में से एक के दोस्त पश्चिम एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों पर राज कर रहे निर्दयी तानाशाह हैं। अब अमेरिका हमेशा से ऐसे मौकों की तलाश में रहा जिनका इस्तेमाल वह दुनिया के विभिन्न देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कर सके। तेल उत्पादक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने के लिए ही अमेरिका ने ईरान की प्रजातांत्रिक मुसारिक सरकार का तख्ता पलटा। मुसारिक सरकार तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण करना चाह रही थी और इससे अमेरिका और इंग्लैंड की तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसके कुछ वर्षों बाद सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। रूस के विरुद्ध युद्ध में झोंकने के लिए जुनूनी मुस्लिम युवकों की जरूरत थी और इसलिए पाकिस्तान में मदरसे स्थापित किए गए। इन मदरसों में मुस्लिम युवकों के दिमाग में यह भरा गया कि हर गैर मुस्लिम काफिर है और काफिरों को मारना जिहाद है, जबकि सच यह है कि इस्लाम में काफिर का अर्थ होता है सच को छिपाने वाला
और अपनी पूरी ताकत से किसी लक्ष्य को पाने का यत्न जिहाद कहलाता है। भारत में अंग्रेज शासकों की फूट डालो और राज करो की नीति व इतिहास को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले से ही आपसी शंका व घृणा का भाव था। इस्लाम के बारे में पश्चिमी दुष्प्रचार ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने हिंदू धर्म के नाम पर जो तर्क दिए हैं वे अत्यंत बहुधा और आधारहीन हैं। भारत में किए गए अधिकतर आतंकी हमले किसी एक समुदाय को निशाना बनाकर नहीं किए गए थे। इसके कुछ अपवाद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और असीमानंद द्वारा मस्जिदों या ऐसे स्थानों पर किए गए बम विस्फोट जहां मुसलमान बड़ी संख्या में इकट्ठे थे। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला 11/9/2001 को न्यूयॉर्क में हुआ था और इसमें सभी धर्मों और देशों के नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान में अलकायदा द्वारा मारे गए लोगों की संख्या हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों में जरूर होगी। यह मान्यता मूर्खतापूर्ण है कि मुस्लिम शासकों ने भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए देश पर कब्जा किया था। भारत में सम्राट अशोका को छोड़कर किसी राजा ने धर्म प्रचार नहीं किया, केवल अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वह भी शांतिपूर्ण तरीकों से। भारत में इस्लाम को फैलाई सूफी संतों ने और हिंदू धर्म के निष्ठुर जाति तथा प्रजा के चंगुल से निकालने के लिए दलितों ने बड़ी संख्या में इस्लाम को गले लगाया। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि हिंदुओं को मारकर और ढेर सारे बच्चे पैदा कर मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। पिछले 60 सालों में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों के प्रतिशत में मात्र 0.8 की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में आदिवासियों का प्रतिशत 7.5 से बढ़कर 8.5 हो गया है। इन दोनों समुदायों की आबादी की अपेक्षाकृत अधिक

भारत में आतंकी हमलों में केवल हिंदू मारे जाते हैं। 26/11/2008 के आतंकी हमलों में मारे गए मुसलमानों का प्रतिशत आबादी में उनके प्रतिशत से कहीं अधिक था। हालिया 13/7/11 हमले में भी दोनों समुदायों के लोग मारे गए। यह कहना कि आतंकवाद की समस्या का हल हिंदुओं में एकता स्थापित करना और हिंदू पार्टी को समर्थन देना है, राजनीतिक प्रचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भारत ने अपनी इच्छा से धर्मनिरपेक्ष राज्य बने रहना स्वीकार किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर इस्लामिक या हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों को खारिज किया था। हम यह नहीं भूल सकते कि हेमंत केरकेर की सूक्ष्म जांच के फलस्वरूप प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर असीमानंद से आरएसएस के एक प्रमुख नेता इंद्रेश कुमार के आतंकवादी हमलों में शामिल होने के अकाट्य सबूत सामने आए हैं। इस्लाम के नाम पर लोगों के दिमागों में जहर भरने का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति कर रही है, जिसका लक्ष्य अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति है। हमारे देश में हिंदुत्व की विचारधारा की पोशाक वे शक्तियां हैं जो हमारे देश के बहुवादी एवं प्रजातांत्रिक चरित्र का गला घोंटना चाहती है। बहुवाद व प्रजातंत्र हमारे स्वतंत्रता संग्राम की थाती है। आतंकवादी हमलों का बदला लेने या पाकिस्तान पर हमला करने की बातें शुद्ध पागलपन है, और ऐसा कोई भी कदम भारतीय उपमहाद्वीप को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। किसी एक समुदाय पर आतंकवाद का पोशाक होने का आरोप लगाना गलत है। कुछ असीमानंदों और दयानंदों के कारण पूरा हिंदू समुदाय आतंकवादी नहीं हो जाता। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था धर्म का वास्ता मानवता से और आतंक का राजनीति से। इसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर मैनुअल परेरा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है आइए मेकओवर करें।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता आइए मेकओवर करें। जी हाँ बहनों, चलिए अपना मेकओवर करें। लेकिन आपने क्या सोचा कि मेकओवर करने का अर्थ सिर्फ चेहरे का हुलिया बदलना या फिर अपने पहनावे में कोई फर्क करना, रंगों के चुनाव को बदलना या फिर बालों की स्टाइल को बदलना है? जी नहीं बहनों, मेकओवर करने का अर्थ है अपनी सोच में और अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना, अच्छे विचारों को सिर्फ सोचना नहीं उन्हें अमल में लाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको किसी किस्म के बदलाव की जरूरत है? बहनों, अमूमन बदलाव के विषय में हम तब सोचते हैं जब हमारे मन में कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं या फिर कुछ ऐसे वाक्य हमारे साथ होते हैं जैसे हम किसी की नई सोच को अचानक इसलिए नकारने लगते हैं क्योंकि अब तक हमने वैसा क्यों नहीं सोचा। वाकई यदि आप किसी ढांचे में ढल चुकी हैं या फिर किसी सांचे में आपकी सोच रह गई है, उसके आगे नहीं जाती, तब किसी भी नई प्रकार की सोच यदि कोई व्यक्ति आपके सामने लेकर आता है, उसे समझने या सुनने से पहले ही आप उसे नकारने लगती हैं। तब जरूर सोचिए, आपको आपकी सोच को बदलाव की जरूरत है। दूसरी बात, परिवार में हमारी प्रतिक्रिया सभी को पहले से मालूम होने लगती है। बहनों, कई बार होता है ये कि लंबे समय तक आप परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपने आप में अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं करती, आपके द्वारा किसी भी घटना को, दुर्घटना को, किसी आयोजन को किस प्रकार से लिया जाता है, ये बात परिवारजनों में सभी को मालूम होती है। ऐसे में किसी भी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सभी को मालूम होता है और आपके व्यक्तित्व में कोई नवीनता नहीं रह जाती और कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जिसे आपके व्यक्तित्व की विशेषता कहा जाए। इसके आगे आपको एक समान ही तोहफे हर साल मिलने लगते हैं। बहनों, जब आपका व्यवहार एक समान रहता है, आपकी पसंद सभी को मालूम होती है और सभी के मन में ये विश्वास हो जाता है कि ये महिला इस विषय से अथवा इस सीमा से आगे अपनी सोच में, अपने व्यक्तित्व में या अपने व्यवहार में नहीं जाएगी, ऐसे में आपको लेकर सबकी सोच भी एक प्रकार के सांचे में ढल जाती है। यदि आपको हर साल एक प्रकार के तोहफे मिल रहे हैं, तब ये सोचिए कि सभी आपको एक समान रूप में ही ले रहे हैं और सभी को मालूम है कि आपका व्यक्तित्व एक सांचे में ढल चुका है और अब जरूरत है मेकओवर की। जी हाँ, दिमागी मेकओवर की। बहनों, कभी कभी हम आध्यात्मिक होने लगते हैं और कभी कभी अति सांसारिक। जी हाँ, ये सोच भी खतरनाक है। यदि आप अपने पति, बच्चों, अपने पूरे परिवार के बीच बैठी हैं, तो आपको संसार बड़ा भला लगने लगता है। वहीं यदि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया या आपसे कोई भूल हो गई, तो भूल होना मनुष्य का स्वभाव है, इस प्रकार के आध्यात्मिक विचार आपके मन में आने लगते हैं। इसका अर्थ है कि आपका व्यक्तित्व अपने सही सोच को नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है। ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि आपकी सही सोच क्या है, आपकी सही विचारधारा क्या है, और इस समय भी जरूरत है मेकओवर की। हमारे किसी शौक को समय बिताने का साधन समझा जाने लगता है। अब उदाहरण के लिए, मेरी एक सहेली है, उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और ऐसे में अब उसे समय मिला है कि वो अपने पहले के शौक को, जो संगीत का था, वो सितार बहुत अच्छा बजाया करती थी, उसको वो फिर से लागू करे। उसने अपने घर के पास ही एक सितार वादक के घर जाकर सितार सीखना शुरू किया। अब उसे ये लगा कि सभी की ओर से प्रतिक्रियाएं कुछ इस प्रकार की आएंगी कि अब आप इस कला को अपना रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबने उन्हें ये कहना शुरू किया कि अब तो आपके पास समय ही समय है, आप समय काटने के लिए सितार क्यों न बजाएं या फिर कोई किताब ही क्यों न पढ़ें, क्या फर्क पड़ता है। बहनों, इस प्रकार के विचार सभी के मन में यदि है, ये समय है बदलाव का, ये समय है मेकओवर का। और हम अपनी तुलना जब बार बार सभी से करने लगे, तब ये भी समय है मेकओवर का। बहनों, इसके अलावा भी अनेक कारण हैं जिनके चलते बदलाव की इच्छा भी मन में आना स्वाभाविक होती है। अब सबसे पहले तो होता यह है कि हमारे मन में सबसे पहला विचार ये आता है कि हम बदलना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा वर्तमान स्वरूप सही नहीं है। बस यहीं पर मन में अवसाद घर कर जाता है। बहनों, हम रिश्तों की पड़ताल करेंगे तो उदाहरण स्वरूप ये पाएंगे कि जब घर में नई देवरानी आ जाती है ना, तब जेठानी जरा ज्यादा सजने संवरने लगती है।
इसका मतलब है उसके मन में असुरक्षा की भावना आ जाती है कि जो व्यक्तित्व मेरा अब तक रहा उसी के समान या उससे थोड़ा और ऊंचा व्यक्तित्व यदि घर में आ गया है तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। इस प्रकार की असुरक्षा की भावना आपके मन में होना गलत है। अब हम ये देखें कि हमारी निरीक्षण वृत्ति कितनी सबल होती है। तो बहनों, यदि मेकओवर की बात आपके मन में है, आप अपने विचारों को और अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप अपने मन से इन बातों को निकाल दीजिए कि मेकओवर सिर्फ शारीरिक बदलाव है। जी नहीं, आपको अपने वस्त्रों में, आपकी केश सज्जा में या फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर आप मेकओवर नहीं करेंगे। उससे सिर्फ आपका ऊपरी स्वरूप बदलेगा, आपके मस्तिष्क में जो विचार हैं, जिनके व्यवहारों से आपको जाना जाता है, उन्हें बदलना वाकई मेकओवर है। इससे सभी का ध्यान आपके बदले स्वरूप पर जाएगा और आपके व्यक्तित्व के दोष छुपेंगे। बिल्कुल नहीं बहनों, आपके शरीर पर ध्यान जाएगा जरूर, यदि उसमें बदलाव है तो वो सभी को अच्छे लगेंगे जरूर, लेकिन जो आपके व्यक्तित्व के दोष हैं वो बिल्कुल नहीं छुपेंगे मेकओवर से। इसमें दिमागी कसरत जरा भी नहीं है। जी नहीं, इसमें दिमागी कसरत ही है जिसके चलते आप अपना मेकओवर करेंगी। आप रातों रात प्रसिद्ध हो जाएंगी या ये बोरियत भगाने का तरीका है? जी नहीं बहनों, मेकओवर आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने का तरीका है। ये बहुत सम्माननीय तरीका है जिसे व्यक्तित्व विकास का एक भाग कहा जाता है। दरअसल मेकओवर का प्रचलन विदेशों से आया हुआ माना जाता है, लेकिन इसका चलन हमारी संस्कृति में भी काफी पुराना है। यदि संयुक्त परिवार की ही बात देखें तो जीवन में एक के बाद एक बदलाव आया करते थे जो नारी को संपूर्ण कर दिया करते थे। उसके जन्म के कुछ ही वर्षों के बाद वो किसी की बड़ी दीदी, किसी की मौसी, किसी की छोटी बहन, बेटी, बहन, बुआ और विवाह के बाद तो असीमित रिश्तों को निभाते हुए इतनी व्यस्त और सुखी होती थी कि वर्तमान के मेकओवर प्रकार के लिए उसके पास सोचने का भी समय नहीं रहता था। आजकल के जीवन में व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो जीवन में घटनाओं की कमी है। जन्म लेने के बाद के 20 वर्ष एक छात्रा के रूप में एक स्त्री ढल जाती है। इस दौरान शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। इसके बाद विवाह, नौकरी, संतान का होना, इन घटनाक्रमों के बाद उसका जीवन फिर 25 सालों के लिए ठहर जाता है और इसी के चलते जरूरत महसूस होने लगी है मेकओवर की। तो चलिए आपको ये बताएं बहुत संक्षेप में कि सही सही मेकओवर क्या है और इससे आपको क्या लाभ मिल सकते हैं। बहनों, एक सही मेकओवर का अर्थ है आधुनिक हो जाना, अपने पहनावे के साथ साथ विचारों से भी। मेकओवर के लिए कोई उम्र नहीं होती। पुरातन पंथी सास के साथ रही हुई बहू यदि अपनी प्रौढ़ावस्था में अपनी बहू को सहर्ष नौकरी करने के लिए हाँ कहती है तो ये हुआ सबसे सकारात्मक मेकओवर। बहनों, कहने का अर्थ ये है कि आप भी मेकओवर करें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था आइए मेकओवर करें। सहेलियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी आरवीए कलाकार के द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक लगी होगी और आप इन सभी बातों का लाभ भी लेंगी। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भंवर कुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। आइए मित्रों, अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है क्रोध को अपने पर हावी न होने दे, और इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है स्वर्गीय इंदु संतोष जी।

कार्यक्रम प्रस्तुत है मन दर्पण। इसके अंतर्गत वार्ता सुनिए, क्रोध को अपने पर हावी न होने दें। लेखिका और वाचिका इंदु संतोष। एक व्यक्ति के मकान के ऊपर भी एक मकान था, मतलब डबल मंजिल था। गर्मी के दिन थे और वो व्यक्ति अपने घर में उसका घर ठंडा रहे इसलिए कूलर चलाता था। उसका कूलर बेहद पुराना था और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जब उसको चलाता तो नीचे रहने वाले व्यक्ति और उसके परिवार वाले परेशान हो जाते थे। वो कूलर बहुत शोर करता था। एक दिन नीचे रहने वाले मकान के उस व्यक्ति से कहा कि आपका कूलर रात दिन में इतना शोर करता है कि हमारा आराम करना मुश्किल हो जाता है। बेहतर ये है कि आप उस कूलर को या तो किसी मैकेनिक को बताएं या नया खरीद लें। हम सभी आस पड़ोसी आपके उस कूलर से बहुत परेशान हैं। बस इतना सुनना था कि कूलर वाला व्यक्ति आस पड़ोसी पर भड़क पड़े और झगड़ा करने लगे। क्रोध में आकर न जाने क्या क्या बकबक करते रहे। आस पड़ोसी समझ गए इस व्यक्ति से जीत पाना कठिन है। जीवन में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति में आत्मसंयम का अपना एक ही विशेष महत्व है। आत्मसंयम न होने के कारण नष्ट हुए व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनमें ऊंची महत्वाकांक्षा थी, योग्यता थी, उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी। वे व्यक्ति होनहार थे। सभी को उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता था, लेकिन उनमें अपने को वश में रख पाने की सामर्थ्य न थी, इसलिए उनका जीवन व्यर्थ हो गया। आप प्रतिदिन समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं कि किसी ने क्रोध में आकर किसी को गोली मार दी या चाकू से घायल कर दिया या मार डाला। इतना ही नहीं, कुछ बड़े और नामी गिरामी लोग भी अनायास क्षणिक क्रोध के कारण बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। ऐसे वो क्षणिक आवेश में आत्मसंयम की हीनता के कारण कर बैठते हैं और इस कार्य का उन्हें मूल्य भी चुकाना पड़ता है, बहुत कड़ा और बहुत बड़ा। क्रोध के कारण मनुष्य का खून खौल उठता है। क्रोध का एक झोंका आया और मनुष्य अपने ऊंचे पद से गिरा, या कोई ऊंचा पद मिलने वाला हो और वो अवसर टल गया। क्रोध के आवेशपूर्ण एक क्षण में मनुष्य अपने वर्षों के काम, श्रम या अनुभव के फल को, परिणाम को व्यर्थ कर देता है। वर्षों का श्रम एक पल में बेकार हो जाता है। आप में से कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनका जीवन क्रोधी स्वभाव के कारण बिगड़ गया। क्रोध से उन्हें क्या हानि होगी इसकी वो चिंता नहीं करते। वे अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते और न कहने योग्य बात भी दूसरे व्यक्ति को कहते रहते हैं, क्योंकि वे क्रोध में पागल से हो जाते हैं। क्रोध के आवेश में आप अपनी बात, अपने विचार और अपना मन जबरदस्ती दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर लादना चाहते हैं। एक योग्य व्यापारी था, उसकी सारी साख धीरे धीरे नष्ट हो गई। कारण यही था कि वो अपने ग्राहकों को अपने विचार बताना चाहता था। अपने विचार, अपना मत बताने की झोंक में वो क्रोध में आ जाता था और आगा पीछा सोचे बिना जो मुंह में आ जाता था बक देता था, गालियां तक देने लगता था। बिना किसी कारण
या तर्क के क्रोध में आ जाता था। परिणाम ये हुआ कि उसके ग्राहक टूटने लगे, उसके अपने कर्मचारी तक डरते और उससे दूर रहते। धीरे धीरे उसका काम इतना बिगड़ा कि वो दिवालिया होने की नौबत तक पहुंच गया। सारी की सारी साख जो उसने अपनी मेहनत से बनाई थी उसके क्रोधपूर्ण और अकड़ू व्यवहार के कारण मिट्टी में मिल गई। अनेक व्यक्ति क्रोध में मनुष्य नहीं रह जाते, राक्षस बन जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जब क्रोध में आ जाता था तो उसके सामने जो चीज आ जाती उसे फेंक कर तोड़ देता था। वो प्रायः सभी से गाली गलौज पर उतर आता। जो उसे शांत करना चाहते वे भी उसके क्रोध के शिकार बन जाते। क्रोध के आवेश में उसकी आंखें लाल अंगार से जलने लगती और परिचित व्यक्ति दूर भाग जाते। वैसे वो चेतन मन से किसी पर क्रोध नहीं करना चाहता था। क्रोध का उबाल उतर जाने पर वो निढाल और बेबस हो जाता। हालांकि वो स्वस्थ व्यक्ति था, उसके विचार स्वस्थ थे, वो अच्छा सोचता था, लेकिन कमी थी तो यही कि किसी को पता नहीं चल पाता कि वो कब, किस पर, किस बात पर भड़क उठेगा। यही कारण था कि लोग उससे कतराते थे और यही उसकी अवनति का कारण बन गया। क्रोध की आंधी आने पर मनुष्य पागल हो जाता है, क्रोध रूपी राक्षस के अधीन हो जाता है। एक महिला क्रोध में अपने को संभाल नहीं पाती थी। क्रोध की आंधी गुजर जाने पर उसके शरीर में शक्ति नहीं रहती थी और वो कमजोरी महसूस करने लगती थी। क्रोध के एक झोंके के बाद उसे संभलने में कई दिन लग जाते थे। क्रोध करते रहने से उसका स्वास्थ्य गिरता चला गया। एक समय वो भी आ गया जब उसने बिस्तर पकड़ लिया। जब मस्तिष्क में क्रोध भरता है तो मस्तिष्क के तंतुओं में विषैली प्रतिक्रिया आरंभ होती है। चरित्र का उत्तम निष्कर्ष आत्म संयम है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया वो सबको प्रभावित कर सकता है, सबको वश में भी कर सकता है। मैं एक परिवार को जानती हूँ। परिवार के सभी सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसी क्रोध के कारण उन्होंने अपने घर को नरक बना लिया है। जब क्रोध का दौरा पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक दूसरे को काट खाएंगे। पल भर में उनकी शक्लें बदल जाती हैं। पल में ऐसा दिखता है जैसे राक्षस आपस में लड़ रहे हों। इस प्रकार आपस के लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर आक्षेप चढ़ाना, एक दूसरे की निंदा करना, आरोप लगाना क्रोध के कारण ही होता है। अतः सफलता और सुख समृद्धि के लिए आप अपने क्रोध को त्यागें। क्रोध का बड़े से बड़ा कारण उपस्थित होने पर भी जो व्यक्ति संयम से रहता है, शांत रहता है, वही श्रेष्ठ है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था क्रोध को अपने पर हावी न होने दें, और इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता थी स्वर्गीय इंदु संतोष जी। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक है भूमिगत जल। इस वार्ता की लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता खानचंदानी।

पर्यावरण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है भूमिगत जल। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता खानचंदानी। श्रोता साथियों, गर्मियों का मौसम अपनी वही सारी समस्याओं और परेशानियों को लेकर हाजिर है और हम भी अपनी सारी झुंझलाहटों तनाव के साथ बुझे बुझे से उसकी आगवानी में तत्पर है। पर्यावरण और प्रकृति ने जब हर कदम पे हमारा साथ निभाया है तो फिर ये अब कैसा बैर है जो हमें हमारा ही पर्यावरण एक एक बूंद को तरसा रहा है। दोस्तों, जैसे कि ये पंक्तियां बयां करती है कि बादल इतना बरस रहे हैं, फिर भी पौधे तरस रहे हैं। यही चमन को अचरज भारी, पानी कहाँ चला जाता है? दोस्तों, आखिर कहाँ है पानी? बादल कहाँ चले जाते हैं? गर्मी का पारा बढ़ते बढ़ते कहाँ थमेगा? क्या ये सवाल मात्र सोचकर भूल जाने के लिए है? बस इन सवालों पर विचार करके कुछ देर चिंतित होकर ही हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं क्या? नहीं दोस्तों, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। खैर, इसके पहले आपको पानी की उपलब्धता तो समझनी होगी ना। श्रोताओं, सतह के जल स्रोतों यानी नदियों, तालाबों, झीलों की हालत तो हम अपनी आंखों से देखकर महसूस कर सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, लेकिन ग्लेशियरों से पिघलकर सागर में मिल जाने वाली सरिताओं, तालाबों, झीलों के परे भी पीने योग्य पानी की एक दुनिया है जिसका उपयोग तो हम खूब जमकर करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति से हम परिचित नहीं। ये दुनिया है भूमिगत जल की। दोस्तों, उपयोगिता की दृष्टि से यह भूमिगत जल सतह पर उपलब्ध जल संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के लगभग 80% गांव कृषि एवं पेयजल के लिए भूमिगत जल पर ही निर्भर हैं। और आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि पूरे विश्व में भूमिगत जल अपना अस्तित्व बड़ी तेजी से समेट रहा है। विकासशील देशों में स्थिति तो यह है कि यह जलस्तर लगभग 3 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से कम हो रहा है। और दोस्तों, केंद्रीय भूजल बोर्ड के अन्वेषणों के अनुसार भारत के भूमिगत जल स्तर में 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष औसत की दर से कमी हो रही है, जो कि हमारी भीमकाय जनसंख्या की जरूरतों को देखते हुए बड़ी गहरी चिंता का विषय है। श्रोता साथियों, धरती की ऊपरी सतह जिसे मृदा कहते हैं, उसकी अनेक सतहों के नीचे चट्टानों के छिद्रों या दरारों में छिपा है आज का सबसे कीमती खजाना भूमिगत जल, जिसके सिमटते ही मनुष्य यानी कि हम डायनासोर्स के जैसे विलुप्त हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा सरल करके बताती हूँ। आप यूं कीजिए, एक घड़ा पानी कच्ची जमीन पर उड़ेल दीजिए। क्या हुआ? मिट्टी ने पानी सोख लिया ना। यही सोख लिया जाना ही बारिश के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाने का पहला पड़ाव होता है। बारिश के पानी को मिट्टी अपनी क्षमताओं और गुणों के अनुरूप पहले तो स्वयं सोख लेती है और फिर जब वह तृप्त हो जाती है तो इसी रास्ते पानी उन चट्टानों तक पहुंचने लगता है जो मृदा की परतों के नीचे स्थित होती है। लेकिन दोस्तों, ना तो हर प्रकार की मिट्टी पानी को इन जल ग्रहण करने वाली चट्टानों तक पहुंचाने में समर्थ होती है और ना ही हर प्रकार की चट्टानें पानी को ग्रहण कर पाती हैं। आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा अवसादी चट्टानें जैसे बलुआ चट्टानें अधिक जलधारक होती है। कठोर चट्टानों में जल संग्रहण कर सकने योग्य छिद्र ही नहीं होते। जिन भूमिगत चट्टानों में छिद्र अथवा दरारें होती हैं, उनमें यह पानी न केवल संकलित होता है बल्कि एक छिद्र से दूसरे छिद्र में होते हुए गतिशील भी होता है और ऊंचे से निचले स्थल की ओर प्रवाहित होने जैसा सामान्य नियम भी पालन करता है। मृदा से चट्टानों तक पहुंचने की प्रक्रिया में पानी छोटे बड़े छिद्रों से छनता हुआ संग्रहित होता है, इसीलिए स्वच्छ भी होता चला जाता है। श्रोता साथियों, वर्षा के जल और सतही जल में भी आपसी संबंध होता है। जानना चाहेंगे? चलिए बताती हूँ। नदियों में बहने वाला जल केवल वर्षा से प्राप्त जल अथवा ग्लेशियर से पिघलकर बहता हुआ पानी ही नहीं होता। नदी अपने जल में भूमिगत जल का भी योगदान लेती है और उसे योगदान देती भी है। ताल, झील और बांधों के इर्द गिर्द भूमिगत जल की सहज सुलभता का कारण भी यही है कि ठहरे हुए जल स्रोत आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी इन भूमिगत जल संग्रहालयों को प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार धरती पर पाए जाने वाले जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत एक दूसरे की सहायता पर निर्भर होते हैं। यदि वर्षा का जल संग्रहित करके चट्टानों तक पहुंचाया जाए तो भूमिगत जलाशयों को भरा जा सकता है।
दोस्तों, प्रकृति अपने सामान्य क्रम में यह कार्य खुद ही कर रही है, लेकिन आज जब यह समस्या विकराल है तो दोस्तों हमें भी अभियान बनाकर यह कार्य करना आवश्यक हो गया है। यह समस्या इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि मृदा अपने भौतिक रासायनिक गुणों के अनुरूप ही सतही जल या वर्षा के जल को ग्रहण कर सकती है। दोस्तों, तेजी से बहते हुए जल का थोड़ा सा हिस्सा ही जमीन के भीतर पहुंच पाता है, जबकि ठहरे हुए पानी का बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे भूमिगत जलाशयों तक पहुंच जाता है। श्रोता साथियों, वर्षा का ज्यादातर पानी सतह की सामान्य ढालों से होता हुआ नदियों में मिलकर सागर में होम हो जाता है। वर्षा का यह बहुमूल्य शुद्ध जल यदि भूमि के भीतर पहुंच सके तो बैंकिंग प्रणाली की तरह यह कारगर होता है, यानी कि जमा करने पर ब्याज का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। भूमिगत जल मानसून के बाद भी मृदा की नमी बनाए रखकर अपना ब्याज निरंतर अदा करते रहता है। कुएं और नलकूप जैसे साधनों द्वारा खेती के काम आता रहता है और हमारी प्यास बुझाता है। दोस्तों, क्योंकि खेत प्यासे नहीं रह सकते, जीव जानवर प्यासे नहीं रह सकते, इंसान प्यासे नहीं रह सकते और कल कारखाने भी चलते हैं, इसीलिए भूमिगत जल को बोरिंग जैसे माध्यमों से बाहर निकालकर उपयोग करने की आवश्यकता तो लगातार बनी ही रहती है। लेकिन साथियों, जरा सोचिए, जिस स्रोत का दोहन किया जा रहा हो उस स्रोत को वापस भूमि में पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। वैसे ही जैसे बैंक से पैसा निकालने के लिए पहले उसमें पैसे जमा कराने होते हैं, अगर पैसे जमा ही नहीं करोगे तो फिर निकलेगा क्या? उपलब्धता से अधिक उपयोग की स्थिति में यह स्रोत, जिन्हें तकनीकी भाषा में एक्वीफायर यानी भूमिगत जलाशय कहा जाता है, पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं या इनकी जल संग्रह क्षमता कम हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में अनगिनत फैक्ट्रियों कारखानों के दूषित रसायनों को जमीन पर बहा दिए जाने से, विभिन्न रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को जमीन में दफना दिए जाने से और सफाई व संक्रमण की रोकथाम के लिए कीटनाशकों के प्रयोग से भूमिगत जलाशयों के प्रदूषित होने की समस्या भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, यदि एक बार यह जल प्रदूषित हो गया तो फिर बहुत बड़े जलाशय को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये भूमिगत जलाशय बड़े हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब जब जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो प्रकृति अपने सीमित संसाधनों के बावजूद स्वयं को मिटाकर हमें बचाने में लगी है। तो क्या हमारी भी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने आप के ही लिए, स्वयं के लिए भूमिगत जल संसाधनों को बढ़ाने में हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण का सहयोग करें? जिस जिम्मेदारी की बात मैंने शुरुआत में की थी, उसे निभाने की, पूरा करने की तरकीबें भी मैं आपको बताती हूँ। हम अपने कुछ निजी प्रयासों से भूमिगत जल का संरक्षण कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि सरकार और वैज्ञानिकों ने तो इस दिशा में काफी प्रयोग और प्रयास किए भी हैं, लेकिन हम खुद भी अपने स्तर पर कुछ तो कर ही सकते हैं। जैसे बारिश के मौसम में छत पर गिरे पानी को सीधे जमीन के भीतर पहुंचाने की व्यवस्था बना दी जाए, अपने आंगन को कच्चा रखने की पुरानी परंपराओं का पालन किया जाए और कम से कम एक वृक्ष तो जरूर लगाएं। तो दोस्तों, हम पानी संग्रहण में पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, अंत में एक बेहद जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, और वो बात ये है कि पानी का उपयोग कम से कम करें और बिना वजह नल को खुला ना छोड़ें। अगर आप बस इतना भर ही करने का संकल्प ले लें तो प्रकृति की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था भूमिगत जल और जिसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता थी संता खान चंदानी। साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो विविधता एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rviritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। जी हाँ, एक बार फिर आपकी अपनी ज्योति हाजिर है एक बार फिर कुछ नए कार्यक्रमों के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो वरिता से एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अभी की सभा समय 10 से 11 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है, दूसरों पर दोष लगाने की आदत मत डालो ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों को नापा है। श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक सुनते हैं, और यह प्रस्तुति है सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: छठा दिन है। पिछले 5 दिन प्रभु ने धरती, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, चांद, सितारे, सूरज, जीव जंतु और पक्षी बनाने में लगाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इतनी सुंदरता के बाद भी अभी दुनिया अधूरी थी। कारण ये कि जिसे दुनिया का शासक बनाया जाना था वो अब तक अस्तित्व में ही नहीं आया था। पृथ्वी पर के पेड़ पौधे फलों से भरे थे, मगर उनका आनंद उठाता कौन? जमीन में फसल उगाता कौन? तब प्रभु ने धरती से मिट्टी लेकर मानव को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण फूंक दिए, जिससे वो सजीव हो उठा। प्रभु ने उसे अमर आत्मा दी, उसे नाम दिया आदम।
1: कितनी सुंदर, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, मगर आप कौन हैं?
2: मैं इस दुनिया का रचयिता हूँ।
1: यानी आपने ये सारी दुनिया बनाई है?
2: हाँ।
1: सच बहुत सुंदर है, बहुत खूब। आप हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु हैं?
2: हाँ, मैं प्रभु हूँ।
0: प्रभु आदम की इस खुशी को देख मुस्कुरा पड़े। फिर प्रभु ने पूर्व की ओर अदन में एक बाग बनाया, सब प्रकार के वृक्ष लगाए जो न सिर्फ सुंदर थे, उनके फल भी स्वादिष्ट थे। ईश्वर ने मनुष्य को उस वाटिका में रख दिया, जिससे वो उसका मजा भी लूटे, खेतीबाड़ी भी करे और देखरेख भी। अदन की वाटिका में और वृक्षों के बीच एक वृक्ष और भी था, और वो था जीवन वृक्ष, जो कि भले बुरे का ज्ञान कराता था। प्रभु मनुष्य को लिए अदन बाग में घूम रहे थे। एक पेड़ के फल देखकर आदम कह उठा,
1: कितना सुंदर फल है, आइए प्रभु हम ये फल खाएं।
2: नहीं आदम, ये फल खाने के लिए नहीं है।
1: क्यों?
2: ये जीवन वृक्ष है, भले बुरे का ज्ञान कराता है। जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे,
1: और अगर नहीं खाया
2: तो तुम कभी नहीं मरोगे।
0: प्रभु की ये बातें सुन मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैं सोचता था ये सारे फल खाने के लिए हैं, मगर ये क्या? मैंने तो उसी दिन ठान ली कि मैं उस वृक्ष की ओर देखूंगा भी नहीं। मैं उस वृक्ष के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने देखा प्रभु सारे प्राणियों को लेकर मनुष्य के पास आ रहे हैं कि वो उन्हें नाम दे। मनुष्य ने सारे पक्षियों, घरेलू पशुओं को नाम दिया। प्रभु ने देखा कि एकाएक मनुष्य उदास हो गया है। मनुष्य की उदासी ईश्वर से नहीं देखी गई। वे उसके सामने से उठकर कुछ सोचते हुए से लगे। मैं भी परेशान हो गया, आखिर बात क्या है?

0: दी तो मैं आपसे कुछ पूछूं?
1: हाँ हाँ पूछो, क्या बात है?
0: ये मनुष्य एकाएक उदास क्यों हो गया? क्या आपने इसे उस पेड़ का फल खाने से मना किया था इसलिए?
1: नहीं, इसे अकेला रहना खलता है, इसलिए मैं इसके लिए एक सहयोगी बनाऊंगा जिससे वो उसके साथ अपने दुख सुख बांट सके।

0: तब ईश्वर ने तब मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वो सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाली और उस जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने उस आदमी से निकाली हुई पसली से एक सुंदर स्त्री को गढ़ा और उसे आदमी के पास ले गया।
1: ये तो मेरे समान है, मेरी हड्डियों की हड्डी। प्रभु, इसका नाम क्या है?
2: तुम इसे नाम दो।
1: इसका नाम हेवा रखता हूँ।
2: हेवा, ये आदम है। जाओ, प्रेम से रहो, ये सारी दुनिया तुम्हारी है।
1: आओ हेवा, हम दोनों दूर तक घुमाएं।

0: धरती पर सारी सुंदरता पूर्ण हो चुकी थी। सचमुच सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सुंदर से सुंदर थी, और इन सब में चार चांद लगा देते थे नर और नारी, यानी वे दो पहले इंसान। ईश्वर उन दोनों को देख खुशी से फूले न समाए।
1: फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरण करने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ, वे तुम्हारा भोजन होंगे। मैं सब जंगली जानवरों, आकाश के सब पक्षियों, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए हरियाली देता हूँ। ये मेरा इस पृथ्वी के लिए वरदान है।
0: इस तरह छठा दिन समाप्त हुआ। ईश्वर ने अपनी बनाई सारी सृष्टि पर नजर डाली। उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आकाश और पृथ्वी की एक एक वस्तु अनुपम सुंदरता लिए हुए थी। सातवें दिन ईश्वर ने विश्राम किया और उसे आशीर्वाद देते हुए पवित्र माना। सातवें दिन उनका सृष्टि रचना का एक महान काम समाप्त हुआ था। एक सपना पूरा हुआ था। अपने स्वप्न को हकीकत में बदलकर न सिर्फ वे खुश थे,

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप मेरे साथ यानी कि आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं वक्त के साथ साथ हम भी हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। साथियों, कार्यक्रम स्वास्थ्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है बच्चों में मोटापा या फिर बाल्यकाल स्थूलता। साथियों बाल्यकाल स्थूलता या फिर बच्चों में मोटापा ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में उपस्थित अतिरिक्त वसा बच्चे के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चूंकि प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक वसा के मापन की विधियां कठिन है, मोटापे या फिर स्थूलता का निदान अक्सर बीएमआई पर आधारित होता है। हम सभी देख सकते हैं हमारे आसपास बच्चों में स्थूलता या मोटापे की स्थिति बढ़ती जा रही है और हम ये सभी जानते हैं कि मोटापा वाकई चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में खतरे की घंटी होता है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए आज हम ये देखें कि बच्चों में मोटापा किन कारणों से होता है और आखिर वो कैसे किस प्रकार के निदान हैं जिनके चलते हम बचपन को मोटापे की चपेट से बचा सकते हैं, बचपन को एक हंसता खेलता स्वरूप दे सकते हैं। साथियों हम सभी ने देखा होगा कि यदि हमें अपने आसपास स्थूलता से पीड़ित कोई बच्चा दिखाई देता है तो हम उसे मोटा या स्थूल नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि इसका वजन थोड़ा ज्यादा है या फिर ये ओवरवेट है, क्योंकि ये सुनने में कम बुरा लगता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जो विचार हम बड़े करते हैं वो विचार बच्चों के उनके दोस्त या उनके हमउम्र बिल्कुल नहीं करते। यही कारण होता है कि मोटापे या स्थूलता से ग्रस्त बच्चों में सबसे पहली समस्या ये होती है कि वे आमतौर पर बहुत भावुक होते हैं या फिर वे मनोवैज्ञानिक रूप से समस्याग्रस्त रहते हैं। साथियों होता अक्सर यही है कि एक समूह में खेलते हुए बच्चों में जो काम सारे बच्चे कर सकते हैं, जिस खेल में सारे बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, उस खेल में सामान्य रूप से स्थूलता से ग्रस्त बच्चे हिस्सा नहीं ले पाते। यदि वे हिस्सा लेते भी हैं तो शायद वे अपनी ओर से सामान्य खेलकूद उसका प्रदर्शन नहीं कर पाते। यही वो समय होता है जब बच्चों को एक प्रकार की ग्रंथि उनके मन में पलने लगती है और उन्हें ये लगने लगता है कि वे सामान्य से कुछ अलग हैं और यही कारण उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकता है। इसके चलते बच्चे न केवल समाज से कट जाते हैं, उनके मन में एक हीनता का बोध हमेशा पनपने लगता है। तो चलिए अब हम देखें कि यदि बच्चों में मोटापा है तो उससे उन्हें और क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। साथियों बच्चों में मोटापा जीवन भर के लिए खतरनाक विकार भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, निद्रा रोग, कैंसर और अन्य ढेर सारी संबंधित समस्याएं। इसके अलावा कुछ अन्य विकार भी मोटापे के कारण आते हैं, जैसे यकृत रोग, यौवन का जल्दी आरंभ होना या फिर लड़कियों में मासिक धर्म का जल्दी शुरू होना, आहार के विकार जैसे एनोरेक्सिया और बुलिमिया, त्वचा में संक्रमण और अस्थमा तथा श्वसन से संबंधित अन्य समस्याएं। साथियों अध्ययनों से ये मालूम पड़ा है कि अधिक वजन वाले बच्चों में वयस्क होने पर भी अधिक वजन बने रहने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा भी पाया गया है कि किशोरावस्था के दौरान अधिक स्थूलता के कारण वयस्क अवस्था में मृत्यु की दर ज्यादा होती है। मोटे बच्चों को अक्सर उनके साथी भी चिढ़ाते हैं और कई बार तो ये भी देखा गया है कि यदि परिवार में कोई इस प्रकार का बच्चा है जिसका वजन ज्यादा है तब परिवारजनों द्वारा भी उस बच्चे के साथ सामान्य के स्थान पर भेदभाव भरा व्यवहार किया जाता है। ऐसा करने से उन बच्चों के आत्मविश्वास में तो कमी आती ही है, वे अपने आत्मसम्मान को भी कम महसूस करते हैं और जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जो मोटापे से संबंधित नहीं है वो भी इन बच्चों में आ जाती है, उसे कहते हैं अवसाद। साथियों एक अध्ययन में ये पाया गया है कि स्थूलता से पीड़ित बच्चों में कैरोटिड धमनियां समय से पहले विकसित हो जाती हैं। स्थूलता से पीड़ित बच्चों में कैरोटिड धमनियां समय से पहले इतनी विकसित हो जाती हैं साथियों जितनी कि एक 30 वर्ष के वयस्क की उम्र में विकसित होनी चाहिए और साथ ही उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बहुत असामान्य होता है। साथियों यदि अब हम कारण देखें तो सबसे पहले मोटापे का कारण तो आहार से ही जोड़ा जाता है और बच्चों के साथ में यदि हम खाने की आदतों को लेकर प्रभाव निर्धारित करने चले तो हमें विशेषज्ञों की ओर से राय सुनने को मिलती है
कि बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ यदि आप आहार प्रबंधन करना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में वे मोटापे के कारण होने वाली बीमारियों से कम और आहार प्रबंधन के कारण उन्हें जो पोषण की कमी मिलेगी उसके कारण ज्यादा बीमार पड़ेंगे। लेकिन साथियों, यदि हम आहार संबंधी बात को अपने सामने लाए भी तो ये देख सकते हैं कि बच्चों को मोटापा बढ़ाने वाली चीजें यानी अत्यधिक कैलोरी युक्त पेय और खाद्य पदार्थ बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप ही सोचिए, चीनी से भरी हुई सॉफ्ट ड्रिंक का उपभोग बच्चों में मोटापे में बहुत ज्यादा योगदान देता है। एक अध्ययन के अनुसार यदि हम देखें तो प्रतिदिन यदि एक अतिरिक्त सॉफ्ट ड्रिंक पिया जाए तो स्थूलता की संभावना 1.6 गुना तक बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथियों, बच्चों में स्नैक्स के साथ या फिर फास्ट फूड के साथ जो संबंध होता है या जो प्रेम उन्हें होता है वो तो जग जाहिर है। बहुत सारे कैलोरी से युक्त और तैयार स्नैक्स बच्चों को बहुत आसानी से हर जगह मिल जाते हैं और इसी के चलते बच्चों में स्थूलता भी बढ़ती जा रही है। कई देशों में तो इस प्रकार के कानून बन चुके हैं कि आहार जो कि फास्ट फूड की श्रेणी में आते हैं या फिर स्नैक्स की श्रेणी में आते हैं, जिसमें असंतृप्त और संतृप्त दोनों प्रकार के वसा जो कि शरीर में मोटापे को बढ़ाते हैं, इनकी मात्रा यदि सामान्य से ज्यादा हो तो उनकी बिक्री एक सीमित सीमा तक तय कर दी जाती है। इसके साथ ही साथियों, यदि हम बात करें तो परिवार में एक प्रकार का वातावरण वो भी मोटापे के लिए जिम्मेदार होता है। यदि परिवार की बात करें तो इन दिनों माता और पिता दोनों को ही स्वावलंबी होना जरूरी है। जी हाँ, यही कारण होता है कि माता पिता दोनों मिलकर बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं और यही कारण है कि बच्चों को यदि वे सही समय नहीं दे पाते हैं तो उसकी पूर्ति किसी न किसी प्रकार से उनकी जिद पूरी करने के लिए या फिर उनकी मनचाही चीजें दिलाने को लेकर सप्ताहांत में होती है। हम सभी देख सकते हैं शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन सप्ताहांत के समय अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर फास्ट फूड रेस्तरां में लेकर जाते उनके माता पिता, उनके चेहरे पर एक प्रकार का संतोष होता है और बच्चों के चेहरे पर भी। लेकिन यदि इस चीज के पुनरावृत्ति बार बार होने लगे तो इसका सीधा संबंध होता है वयस्क होने के बाद बच्चे के शरीर में मोटापा होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही वर्तमान में यदि हम प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ में मोटापे को जोड़कर देखें तो ये भी एक कारण हम देख सकते हैं, मान सकते हैं। लंबे समय तक बैठकर टीवी देखना, आजकल हम एक दृश्य प्रत्येक घर में देख सकते हैं कि नन्हा बच्चा यदि खाना खाने में परेशान कर रहा है तो उसे उठाकर टेलीविजन के सामने बिठा दिया जाता है। टेलीविजन के सामने बैठाते बराबर बच्चे का भोजन के साथ और स्वाद के साथ जो संपर्क होना चाहिए वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे सिर्फ अपनी आंखों के सामने चलते हुए कार्टून के चित्र नजर आते हैं और वो यंत्रवत किसी मशीन की भांति भोजन करता है। बच्चों के माता पिता इस चीज को देखकर बड़े खुश होते हैं कि टेलीविजन देखते हुए बच्चा बहुत अच्छे से खाना खा रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी जो स्वाद इंद्रिय है उसका संबंध भोजन के साथ में कहीं से कहीं तक नहीं बन पाता। ऐसे में बच्चा सिर्फ पेट भरने के लिए एक मशीन की भांति खाता जाता है, उसे इस चीज का एहसास तक नहीं होता कि उसका पेट भर चुका है या फिर उसे कोई चीज पसंद आ रही है। उसकी स्वाद ग्रंथियां भी बहुत अच्छे से विकसित नहीं होती। यही कारण होता है कि वही नन्हा 3-4 साल का बच्चा जब 8-9-10-11-12 वर्ष का होता है तब उसे घर का भोजन बिल्कुल भी नहीं सुहाता और तब टीवी के सामने बड़े मान मनोबल से अपने नन्हे बच्चे को लेकर बैठने वाली माताएं परेशान होती हैं और बच्चे जब रेस्तरां में जाकर जंक फूड खाते हैं, बीमार पड़ते हैं पोषण की कमी के कारण, उनकी माता को ये सुनना पड़ता है कि वे बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तब वाकई ये लगता है कि यदि थोड़ी सी मेहनत उन्हें स्वाद के साथ परिचित करवाने में या फिर थोड़ा सा समय उनके पालन पोषण में दिया गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो साथियों, बच्चों में स्थूलता वाकई वर्तमान में एक गंभीर समस्या है और बहुत सारे कारक ऐसे हैं जिन्हें लेकर हमें एक साथ चलना होगा, जिन्हें हमें स्वीकार करना होगा कि इन स्थानों पर हम लोग वाकई गलत हैं। हमें
अपनी जीवन शैली में और अपनी सोच में बदलाव लाना होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संसार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए आपने हमारे कार्यक्रम की वार्ता तो सुनी ही होगी और ऐसे ही सुनते रहिए सत्य स्वर जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, इस समय आप रेडियो वरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। और अब हम सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संसार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे बच्चों, आपका इंतजार करने का समय अब खत्म हुआ और आप सभी लोगों का स्वागत है कार्यक्रम बाल जगत में। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है चोर विद्वान और प्रस्तुत करता है मर्लिन जेकब।

प्यारे बाल मित्रों, आपकी बहन मर्लिन का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है चोर विद्वान। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। एक शहर में पंडित तोताराम जैसा विद्वान रहता था, किंतु दुख की बात यह थी कि उस बेचारे के पास केवल विद्या ही विद्या थी। घर में केवल गरीबी थी। वह दो समय की रोटी के लिए भी चिंतित थे। भूखा भी इंसान कब तक रह सकता है, दुख भी कब तक सह सकता है। मित्र संबंधी उसे देखते ही इसीलिए आंखें फेर लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि यह भूखा उनसे कुछ न कुछ मांगेगा। इतने सारे दुख सहन करने के पश्चात वह करता भी तो क्या करता। अब तो उसके सामने दो रास्ते ही थे, या तो वह आत्महत्या कर ले या फिर चोर बन जाए। मरने से तो चोर बनना ही अच्छा है, क्योंकि आत्महत्या तो वैसा ही पाप है। यही सोचकर वह विद्वान पंडित चोर बन गया। चोरी करना भी पाप है, मगर भूखे मरना तो उससे भी बड़ा पाप है। अब बेचारा पंडित चोरी करके अपना पेट पालने लगा। चोर बनते ही जैसे उसके दिन फिर गए। खूब पेट भरकर खाता, बल्कि उन सबको खिलाता जो भी भूखे नजर आते। साधु संतों को बुलाकर भोजन करवाता। एक बार उस चोर पंडित ने चार ब्राह्मणों को कुछ कीमती चीजें बेचते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा कि इनको कैसे लूटा जाए, कोई ऐसा ढंग निकालूं जिससे यह सब कुछ उसके कब्जे में आ जाए। थोड़ी देर सोचने पश्चात वह उनके पास पहुंचा और बड़े बड़े श्लोक बोलने लगा। उसे इस प्रकार श्लोक बोलते देखकर ब्राह्मण बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, भाई तुम तो बहुत विद्वान ब्राह्मण हो, क्या हमारे साथ नौकरी करोगे? किसी ने ठीक ही कहा है, अत्यंत शर्मिली नारी उल्टा होती है। खारा पानी ठंडा होता है, मीठी बातें करने वाला प्राणी खतरनाक होता है। उन चार ब्राह्मणों ने अपनी कीमती सामान बेचकर और बहुत सा कीमती सामान खरीदा, ताकि उसे दूसरे शहर में जाकर बेचकर वह धन कमाए। वह चोर पंडित उनका नौकर बनकर इन ब्राह्मणों के साथ ही चलने लगा। उसके मन में तो पाप था ही। वह सोच रहा था कि इनका सारा माल कैसे छीन लूं, क्या ना मैं इन्हें जहर देकर मार डालूं और इनका माल लेकर गायब हो जाऊं। मगर जैसे ही वह यह सोच रहा था और वे सब चलते चलते एक गांव के करीब पहुंचे, तो वहां पर बैठे एक नाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आओ आओ, देखो बड़े धनी पंडित आए हैं, इनका माल लूट लो। उस नाई की आवाज सुनते ही बहुत से लोग लाठियां भाले लिए दौड़ आए। सबके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शिकार मोटा है, जाने ना पाए। सब चोरों ने मिलकर इन ब्राह्मणों को घेर लिया। इनमें से एक मोटा सा आकर बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है वह निकाल दो, नहीं तो याद रखो हम तुम्हें आदमी की चमड़ी उधेड़ कर उसके शरीर में से सब कुछ निकाल देते हैं। देखो सरकार, हमारे पास धन नहीं है, तुम चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो, चारों ब्राह्मणों ने कहा। ओ मूर्ख ब्राह्मणों, आज तक तुम्हारी बातें झूठ नहीं निकली। यदि तुम धन निकालकर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देंगे। उनकी यह बात सुनकर पांचवा चोर ब्राह्मण सोचने लगा कि यही मौका है अपने पापों को धोने का। मैं यदि इन ब्राह्मणों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं, तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। मौत तो हर इंसान की आती है। यह सोचकर वह ब्राह्मण उन चोरों से बोला, देखो भाई, यदि तुम्हें संदेह है कि हमारे पास बहुत धन है, तो सबसे पहले मेरे शरीर की तलाशी लो। यदि तुम्हें मेरे पास धन ना मिले तो मेरे शरीर के टुकड़े करके फेंक देना और इन्हें छोड़ देना, क्योंकि फिर तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे। उस ब्राह्मण की बात सुनते ही उन चोरों ने उसकी तलाशी ली।
जब उसकी तलाशी ली तब उसे कुछ न मिला तो उसके शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाले। मगर उसने भी कमाल की कुर्बानी दी कि शरीर के टुकड़े होते समय उफ तक न की। अब तो चोरों को विश्वास हो गया कि इनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो ब्राह्मण अपनी जान नहीं दे सकता था। उस ब्राह्मण ने केवल सच को सिद्ध करने के लिए ही अपनी जान दी है। शेष चारों ब्राह्मणों को इशारा करते हुए डाकुओं का सरदार बोला, जाओ भाई, अब तुम जाओ, हमारी ही भूल थी कि हमने आप पर विश्वास नहीं किया। अब इसकी हत्या करने के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि तुम लोग सच्चे हो। ब्राह्मण तो बचकर चले गए, मगर उस नौकर के त्याग को वे सदा ही याद रखेंगे जिसने अपनी जान गंवाकर उन्हें बचा लिया था।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत, जिसका शीर्षक था चोर विद्वान और प्रस्तुतकर्ता थी मर्लिन जेकब। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? आइए अब हम सुनते हैं एक बाल गीत और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्यारे श्रोताओं और बच्चों, अभी आप सुन रहे थे एक बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। बच्चों, एक कहानी सुन के किसका मन भरता है, आइए अब हम सुनते हैं एक और कहानी जिसका शीर्षक है गलती और प्रस्तुत करता है ईशान खापड़े।

खेलना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि अगले 2-3 महीने में उसके फाइनल पेपर होने वाले थे, लेकिन वह फिर भी पढ़ने के बजाय खेलने में ही मन लगाता था। जो भी बच्चा पढ़ रहा होता वह उसे भी कहता, अरे तुम अभी से क्यों पढ़ रहे हो, अभी तो पेपर होने में 2 महीने बाकी हैं। उसका मानना था कि पेपर से कुछ दिन पहले पढ़कर आसानी से पास हुआ जा सकता है। वह सोचता था कि जब हम स्कूल में पढ़ते ही हैं, तो फिर घर पर पढ़ने की क्या जरूरत है। एक दिन वह शाम के समय अपने दोस्त नीलेश के घर गया। नीलेश उस समय पढ़ाई कर रहा था। गुड्डू बोला, अरे नील, यह क्या तू पढ़ रहा है? मैंने सोचा था कि हम कंप्यूटर पर गेम खेलेंगे, चल खेलते हैं। नहीं गुड्डू, अगले महीने पेपर है, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम भी घर जाकर पढ़ाई करो, पेपर के बाद हम खूब खेलेंगे, नीलेश ने कहा। तू ऐसा बोल रहा है कि जैसे कल ही पेपर हो। तुझे नहीं खेलना तो मत खेल, पर मैं तो खेलूंगा, कहकर गुड्डू वहां से चला गया। गुड्डू इस प्रकार अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता रहा। उसके पेपर शुरू होने में सिर्फ 10 दिन रह गए थे। अब उसने पढ़ना शुरू किया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पढ़ाई कहां से शुरू करे, क्योंकि उसने पहले से कुछ नहीं पढ़ा था। उसने पेपर की चिंता में खाना पीना और यहां तक कि सोना भी छोड़ दिया। खाना रखे रखे ठंडा हो जाता, लेकिन वह अपना पाठ रटता रहा। पेपर की चिंता के मारे उसके दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा था। पेपर शुरू हुए, वह जब पेपर देखता तो उसे लगता कि उसे सब आता है, परंतु जब करने बैठता तो सन रह जाता। वह अपने पेपरों से बहुत निराश हुआ। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। वह फेल हो गया था। वह अपना रिजल्ट लेकर स्कूल के बाहर स्थित पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया और शाम तक वहीं बैठा रहा। शाम के समय जब नीलेश उधर से होकर गुजरा तो अचानक उसकी नजर गुड्डू पर पड़ गई। वह उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, गुड्डू क्या हुआ, तू घर क्यों नहीं गया? मैं फेल हो गया, गुड्डू ने सिसकते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम अगली बार कड़ी मेहनत करना और अच्छे नंबरों से पास होना। तुम्हारा पढ़ाई करने का तरीका गलत था। पेपर के ठीक पहले पढ़ने से हम भ्रमित हो जाते हैं। अब तुम शुरू से मेहनत करना और देखना तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे, नीलेश ने गुड्डू को धीरज बंधाते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो नीलेश, मैंने शुरू से पढ़ाई की होती तो मैं फेल ना होता, गुड्डू सुबकते हुए बोला। अच्छा चल अब घर जा, आंटी अंकल परेशान हो रहे होंगे, नीलेश ने कहा। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मम्मी पापा से क्या कहूंगा, गुड्डू रोते हुए बोला। गुड्डू रो मत, तू उनसे माफी मांग लेना और कहना कि आगे से मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, देखना वे तुझे जरूर माफ कर देंगे, नीलेश ने उसे समझाया। हाँ बेटा हमने तुम्हें माफ किया, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, यही तुम्हारी सजा है, यह गुड्डू के पापा की आवाज थी। पापा को देखकर गुड्डू उनसे लिपटकर रोने लगा। उन्होंने उसे चुप कराया। अंकल आप यहाँ कैसे, नीलेश बोला। बेटा जब गुड्डू घर नहीं आया तो मैं उसे ढूंढने चला आया, इसकी बड़ी फिक्र हो रही थी, गुड्डू के पापा ने बताया। पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे मम्मी और पापा मिले, गुड्डू बोला। सो तो है, तुम्हारे पास अच्छे मम्मी पापा ही नहीं बल्कि नीलेश जैसा अच्छा दोस्त भी है, पापा ने हंसते हुए कहा। हाँ गुड्डू ने नीलेश के गले लगते हुए कहा, फिर वह पापा के साथ घर लौट आया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत, जिसका शीर्षक था गलती और प्रस्तुत करता थे ईशान खापड़े। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। श्रोताओं, अभी कितना समय हो रहा है क्या आपको पता भी है? आपसे बात करके और कार्यक्रमों को सुन के मैं तो समय ही भूल जाती हूँ। अब अनुमति दीजिए मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त ज्योति को, और जाने से पहले सुनिए एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक जी को कि बिना समय व्यर्थ करे जल्दी से आए और ढेर सारे नए कार्यक्रमों से आपको मिलन कराए। साथ ही अब मैं चलती हूँ, स्वीकार करे ढेर सारा प्यार और नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुंबकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: हम लोग बार बार चर्चा करते रहे हैं कि बिहार सरकार कृषि के प्रति सचेत है और इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सुनने को मिल रहा है कि बिहार में कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली अनुदान की राशि में कटौती की गई है। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है मुखिया जी?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, सरकार ने जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि कम की है
0: जी,
1: उनमें ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, लेजर, लेवलर, रोटावेटर और जीरो सीड ड्रिल मशीन शामिल हैं।
0: जी जी।
1: हालांकि पंपसेट और सिंचाई पाइप पर पहले की ही तरह अनुदान मिलता रहेगा।
0: अच्छा।
1: इन पर मिलने वाली अनुदान राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुदान का उद्देश्य ये था कि किसान आधुनिक यंत्रों के उपयोग के प्रति जागरूक हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वे इन्हें चलन में ले लें जिससे खेती सुगम हो और कम खर्च में उत्पादकता भी बढ़े। बजट में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का हिस्सा अलग अलग है।
0: एक अच्छी बात भी सुनने को मिली है मुखिया जी कि बिहार में गाय भैंस के लिए 7 बैंक लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं और वो भी सब्सिडी पर। क्या यह बात सही है मुखिया जी?
1: बिल्कुल सही है। सरकार की मंशा श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने की है।
0: अच्छा अच्छा।
1: इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाने की ओर सरकारें बढ़ रही हैं, साथ ही पशुपालन को भी बढ़ावा देना चाहती है।
0: जी जी।
1: इसी बात को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने 7 बैंकों को चिन्हित किया है जो गाय भैंस खरीदने के लिए लोन देंगे और वाजिब सब्सिडी भी मुहैया कराएंगे।
0: इस वर्ष नवंबर में ही ठंड ने दस्तक दे दी है मुखिया जी।
1: हाँ।
0: और जानकारों का कहना है कि यह खेतिहरों के लिए शुभ संकेत है। किस तरह के बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा है?
1: खरीफ में तो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन इस बार रबी में किसानों के घर भर जाने की उम्मीद है।
0: जी जी।
1: उत्पादन का लक्ष्य पाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार बैठी है, तो किसानों के साथ इस बार मौसम भी दिख रहा है। इसकी वानगी खरीफ मौसम में हथिया नक्षत्र में हुई वर्षा में भी देखने को मिल गई थी।
0: तो क्या यह सब कुछ हथिया नक्षत्र में हुई वर्षा का ही परिणाम है जो रबी के लिए मौसम अनुकूल हुआ है?
1: देखिए, वर्षों बाद हथिया नक्षत्र में 4 दिनों की झपसी से जमीन में काफी नमी आ गई।
0: जी।
1: तभी ये अंदाजा हो गया कि गेहूं की बुआई आसान होगी।
0: अच्छा अच्छा।
1: इधर नवंबर से ही शुरू हुई ठंड ने किसानों के दिल बाग बाग कर दिए हैं।
0: जी।
1: कृषि वैज्ञानिक भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, पर उनके अनुसार दलहनी फसलों को लाही से बचाने के लिए उपाय जरूर करने होंगे।
0: जी हाँ, बिल्कुल। लाही का प्रकोप तो खास करके जब नमी ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा होती है तो ज्यादा पड़ता है, तो उससे तो बचाव करना ही होगा हमारे किसान भाइयों को। सरकार ने इस वर्ष रबी का उत्पादन लक्ष्य क्या निर्धारित किया है मुखिया जी, और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किस तरह के कदम उठाए जाने की योजना बन रही है?
1: सरकार ने इस वर्ष रबी में 80 लाख टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।
0: जी।
1: उत्पादकता बढ़ाकर 3100 किलो प्रति हेक्टेयर करना है। इसके लिए विभाग ने गेहूं बुआई कतार में करने के लिए किसानों को जागरूक किया है। वर्षा की कमी के कारण खरीफ मौसम में इस वर्ष कई जिलों में समय पर रोपनी नहीं हो सकी थी।
0: जी जी।
1: हालांकि बाद में मौसम अनुकूल हुआ तो किसानों ने खेती में जान लगा दी। विभाग ने इसकी भरपाई रबी मौसम में करने की तैयारी की है।
0: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह की तैयारी करने की योजना सरकार बना रही है?
1: सरकार ने 2016-17 के लिए जो लक्ष्य तय किया है,
0: हाँ,
1: उनमें रबी और गर्मा फसलों का उत्पादन 1.32 करोड़ टन कराना है।
0: अच्छा।
1: यानी 1.5 टन से कुछ कम।
0: जी।
1: 1.5 करोड़ टन से।
0: जी।
1: है ना?
0: हाँ।
1: साथ ही सभी योजनाओं में खेतों तक अभियान चलाने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों को भी किसानों की पीठ पर सरकारी योजनाओं के साथ खड़े रहने का निर्देश दिया गया है।
0: जी।
1: गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और कीटनाशक की व्यवस्था के साथ समय पर रबी फसलों की बुआई कराने की जिम्मेदारी विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दी गई है।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि हमारा जो बिहार का मोकामा का टाल क्षेत्र है वो रबी उत्पादन में काफी अग्रणी माना जाता है।
1: हाँ।
0: इस क्षेत्र के लिए इस वर्ष क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है?
1: इस वर्ष मोकामा टाल के किसानों के लिए विदेशी मटर वरदान साबित होगा। मटर की GS10 प्रभेद न्यूजीलैंड से मंगाई गई है।
0: अच्छा,
1: जिसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक है।
0: जी जी।
1: जल जमाव को लेकर टाल के अधिकांश खेतों में दलहनी फसलों की बुआई नहीं हो सकी है।
0: जी बिल्कुल।
1: ऐसे में किसान विकल्प के तौर पर इस प्रभेद को लगा सकते हैं। किसान सलाहकार दीपक कुमार ने जानकारी दी कि मौसम व टाल की स्थिति के अनुरूप ये प्रभेद मंगाया गया है। अच्छी उपज देने वाला GS10 प्रभेद 3 महीने में तैयार होता है। सामान्य मटर की अपेक्षा इसमें 1 महीने का समय अधिक लगता है, लेकिन सामान्य मटर से इसकी उत्पादकता दोगुनी हो जाती है।
0: ये तो अच्छी बात है मुखिया जी कि सामान्य मटर से इसकी उत्पादकता दोगुनी है।
1: हाँ।
0: यह जो बीज विदेश से मंगाया गया है, इसको क्या किसानों को अनुदानित दर पर मुहैया कराए जाने की योजना है?
1: BAO ने बताया कि GS10 प्रभेद अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है। किसान को 1 एकड़ के लिए 32 किलो बीज मिलेंगे।
0: अच्छा, 1 एकड़ के लिए 32 किलो।
1: हाँ, इसके लिए 7,040 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि बाद में किसानों के बैंक खाते में 3,200 रुपए अनुदान की राशि वापस मिल जाएगी।
0: अच्छा अच्छा, एक बात यह भी बताइए कि ये मटर का नया प्रभेद जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, GS10, इसकी विशेष खासियत क्या है?
1: अगर इसके खासियत की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि GS10 प्रभेद का उत्पादन 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ है।
0: अच्छा।
1: इसकी एक फली में 9 से 12 दाने लगते हैं। दाने का आकार भी बड़ा होता है। बाजार में इस प्रभेद की मांग भी अधिक है। किसान इच्छानुसार हरा मटर भी बाजारों में बेच सकते हैं।
0: जी जी।
1: इसकी खेती में किसानों को अधिक मेहनत की भी जरूरत नहीं है, जबकि साधारण मटर की उत्पादन क्षमता अधिकतम 25 क्विंटल तक होती है।
0: अच्छा।
1: वही ये 60 दिनों में भी तैयार हो जाता है, जबकि टाल में एक ही फसल लगाया जा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मुखिया जी, टाल में एक ही फसल लगाया जाता है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोकामा टाल क्षेत्र के किसानों पर इस बार दोहरी मार पड़ रही है। कारण यह है कि दलहन की बुआई गीली मिट्टी में होने से बीज की मात्रा और जुताई की लागत बढ़ गई है।
1: ये बात भी सही है कि टाल की गीली मिट्टी में ही दलहन की बुआई होने से किसानों को दोहरी मार पड़ रही है।
0: जी।
1: इससे बीज की मात्रा के साथ जुताई की लागत भी बढ़ गई है। हालांकि अनुदानित दर पर मिल रहे बीज से किसानों को राहत जरूर मिली है। किसानों का मानना है कि ठंड में थोड़ा इजाफा हुआ तो दलहन लगाना बेकार साबित होगा।
0: अच्छा अच्छा।
1: पहले ही मसूर लगाने की अवधि से 1 माह की देरी हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: अन्य दलहनी फसलों की बुआई का समय भी नहीं बचा है, जबकि ज्यादा नमी की वजह से अधिकांश खेत जुताई के लायक नहीं है। किसान जल्दबाजी के चक्कर में बुआई कर रहे हैं।
0: इस मामले में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं,
1: हाँ।
0: इस मामले में कृषि विभाग के सलाहकारों का या फिर विशेषज्ञों का क्या कहना है? वे लोग इस हालात को किस तरह से देखते हैं? क्या नुकसान होगा या फिर हमारे किसान भाइयों को फायदा होने वाला है?
1: किसान सलाहकारों ने जानकारी दी है कि अधिक नमी से बीजों का अंकुरण प्रभावित हो सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: वहीं खेतों से अवांछित घास भी नष्ट नहीं होंगे। जल्दबाजी के चक्कर में घाटे का सौदा हो सकता है, इसके लिए किसानों को आवश्यक सलाह दी गई है।
0: अच्छा।
1: किसान नेता अरविंद जी ने बताया कि टाल में अधिक समय तक जलजमाव को

0: दिनों में क्या कुछ होता है?
1: देखिए, मोकामा टाल के किसानों को अनुदानित दर पर बीज मिलेगी, ये बात तो तय है
0: जी।
1: प्रखंड कृषि कार्यालय में मसूर, चना और गेहूं का बीज उपलब्ध कराया गया है। किसान सलाहकार बीज वितरण के दौरान किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी भी देंगे। ये जानकारी सरकार की तरफ से मुहैया कराने की बात कही जा रही है। बीज खरीदने के बाद अनुदान की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी
0: जी।
1: किसानों को अनुदान के लिए बैंक पासबुक, पहचान पत्र और राजस्व की रसीद देनी होगी।
0: किसानों को अनुदानित दर पर बीज मुहैया कराने की योजना सरकार की ओर से चल रही है, ये काफी अच्छी बात है मुखिया जी। अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अनुदानित दर पर बीज जो उपलब्ध कराई जाएगी, उसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ करना होगा और उसके एवज में यानी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र के रूप में उनको क्या क्या देना होगा। इस सुंदर जानकारी के लिए मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे तो खेती किसानी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें होगी। अभी हम लोग चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो विरिता एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी धन्यवाद।
0: और पिछले कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्याम जी और कपूर साहब आप दोनों से कि अतिक्रमण का जो मामला है, खास करके शहरीकरण के बढ़ते दौर में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम आया है। सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देनी पड़ रही है। ये सारा जो गड़बड़ झाझा है, इसके लिए आखिर सुप्रीम कोर्ट को सामने क्यों आना पड़ा, कैसे ये बखेड़ा खड़ा हुआ, इसकी पृष्ठभूमि आखिर क्या है?
1: देखिए वीरेंद्र जी, विख्यात संविधान विशेषज्ञ फली एस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट में जन प्रतिनिधियों के एक ऐसे विशेषाधिकार पर सवाल खड़ा किया जो उनके मुताबिक संवैधानिक भावना के खिलाफ है।
0: अच्छा,
1: सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार से जवाब तलब किया है। नरीमन ये इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी नागरिक को ऐसे किसी अपराध में दोषी पाया गया है जिससे 2 साल की सजा का प्रावधान है तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई सांसद या विधायक दोषी करार दिया जाता है, अगर वो फैसले के खिलाफ अपील करता है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती।
0: नरीमन जी ने निहायत एक गंभीर प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा है, क्योंकि संविधान की नजर में भारत के सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या फिर आम नागरिक। श्याम जी,
2: हाँ, नरीमन जी ने जो प्रश्न उठाया है उसमें यह साफ झलकता है कि अपराध और सजा के मामले में एक आम नागरिक के लिए अलग प्रावधान है और सांसदों और विधायकों के लिए अलग।
0: बिल्कुल,
2: किसी भी आरोप में अदालत से दोषी करार दिए जाने पर आम नागरिक को दोषी माना जाएगा, लेकिन एक सांसद और विधायक को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह ऊपरी अदालत में अपील पर है।
0: लेकिन हमको नहीं लगता कपूर जी कि ऐसे मामलों में संसद में कोई सार्थक पहल संभव है, क्योंकि कोई भी अपने पैर पर भदा कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगा?
1: देखिए नरीमन जी का भी यही कहना है कि संसद में इस मामले में कदम उठाने की उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि आधे लोकसभा सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं।
0: जी,
1: ये एक व्यवहारिक दिक्कत है कि इतने जन प्रतिनिधि गंभीर अपराध के आरोपों से घिरे हैं कि अगर उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाए तो संसद और विधानसभाओं का कामकाज ही खतरे में पड़ जाएगा। सरकार का कहना है कि लगभग ऐसे ही तर्क के बूते 2005 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने इस विरोधाभास को जायज बताया था। सवाल ये है कि जिन लोगों पर गंभीर अपराध के आरोप हैं उन्हें कानून बनाने का काम कैसे सौंपा जा सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इस समस्या की छाया संसद व विधानसभाओं में अराजकता, अपशब्द व हिंसा के रूप में देखने को मिलती है।
0: जब हिंसा की बात उठी रही है तो इसी संदर्भ में मैं ये जानना चाहूंगा कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं, चाहे वो यौन हिंसा हो या किसी भी प्रकार की हिंसा, जो घटने के बजाय आए दिन बढ़ती ही जा रही है, जो एक सभ्य समाज के लिए काफी चिंता का विषय है।
2: हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र भाई, कानून के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी न होने से सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। पिछले दिनों यौन हिंसा के खिलाफ जिस तरह से लोगों में आक्रोश देखा गया उसने पूरे जनमानस को झकझोर कर रख दिया। जब तक दोषियों को भयभीत करने वाला कानून हमारे यहाँ नहीं बनता तब तक इस तरह के माहौल बने रहेंगे।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषियों को भयभीत करने वाला दंड देने के लिए पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने का वक्त आ गया है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, कोर्ट का मानना है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन से ही समाज में अपराध कम हो सकता है।
0: फैसलों को आने में भी काफी देरी होती है जिससे मामला उलझ जाता है और बहुत सारे साक्ष्य जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हद तो यहाँ तक हो जाती है कि अपराधी सबूत के अभाव में सीधे बचकर निकल जाते हैं।
1: सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कानून की पेचीदगियों और उलझाऊ प्रक्रियाओं को कठोर दंड देने के रास्ते में बाधा बताया है।
0: जी,
1: ऐसे में निचली अदालतों की स्थिति को सहज ही समझा जा सकता है, जो पहले से ही 2.5 करोड़ मुकदमों के बोझ से दबी है और जिनके पास एक पल भी सोचने का वक्त नहीं है।
0: महिलाओं पर हो रही विभिन्न तरह की हिंसाएं जो है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए हैं कपूर साहब।
1: जी हाँ, आपका कहना सही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2 दिन पूर्व दिए एक फैसले में कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की बिगड़ती स्थिति को काबू करने के लिए देश में कठोर कानून बने हैं, इसके बावजूद विवाहितों को आए दिन जलाया जा रहा है, उन पर क्रूरता हो रही है, आत्महत्या, यौन उत्पीड़न, रेप और विवाहितों द्वारा आत्महत्या के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
0: श्याम जी, इससे तो साफ जाहिर होता है कि लोगों में कानून का भय रहा ही नहीं, लोग बेखौफ हो गए हैं और जब चाहे जहां चाहे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
2: सचमुच इन सब से साफ जाहिर होता है कि लोगों में दंड का भय नहीं रह गया है। ऐसे में एक ही रास्ता है कि पूरे सिस्टम को ओवरहॉल किया जाए, ताकि दोषियों को ऐसा दंड दिया जा सके जिससे उनमें डर पैदा हो।
0: मौजूदा व्यवस्था में अदालतें किस प्रक्रिया के तहत अपना काम करती हैं?
1: देखिए वीरेंद्र जी, मौजूदा व्यवस्था में अदालतें कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पर चलती हैं। कानून में हर अपराध के लिए एक दंड है, जिसे तभी दिया जा सकता है जब पुलिस अपराध को संदेह से परे साबित कर दे। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अदालतों पर लागू हैं, उनका पालन न करने पर अभियुक्त साफ बरी हो जाता है।
0: वो कौन सी प्रक्रिया है श्याम जी, जिसका अगर अदालत पालन नहीं करेंगे तो अभियुक्त साफ बरी हो जाता है? ये जानना खास करके आम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
2: देखिए, सीआरपीसी की धारा 313 का बयान एक ऐसी प्रक्रिया है।
0: अच्छा,
2: ये बयान मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जज स्वयं लेता है। ऐसे सैकड़ों केस हैं जिनमें इस बयान के न लेने पर ऊपर की अदालतों से अभियुक्त बरी हो जाते हैं।
0: हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है वह भी तो कम उबाऊ नहीं है कपूर साहब।
1: जी सही,
0: काफी वक्त जाया होता है तब जाकर न्याय मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है। पूरी प्रक्रिया के बारे में सिलसिलेवार आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, कोई भी घटना होने पर पहले पुलिस में मामला दर्ज होता है।
0: जी,
1: फिर जांच होती है, जरूरी हुआ तो उसकी निगरानी भी की जाती है। उसके बाद कोर्ट में वकील जिरह करते हैं, जिनके आधार पर अदालत फैसला सुनाती है।
0: अभी जो इस तरह की मांग की जा रही है कि यौन हिंसा या महिला हिंसा के खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाए जिससे लोगों में भय हो, हालांकि इस कदम के बारे में पूर्व न्यायाधीश जेएस वर्मा ने काफी कुछ सुझाव सरकार को दिए थे
1: जी।
0: और उस पर सरकार कितना अमल कर पाई है ये तो कहना मुश्किल है। इससे पहले इस तरह की पहल हमारी सरकार के द्वारा की गई या नहीं की गई, और फिर कोर्ट ने क्यों इस तरह के सुझाव दिए हैं, श्याम जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब कोर्ट ने कानून निर्माताओं को आगाह किया है। इससे पूर्व 30 नवंबर को भी अदालत ने संसद से छेड़छाड़ के मामले में कड़ा कानून बनाने को कहा था।
0: जी,
2: कोर्ट का कहना था कि प्रभावी कानून न होने के कारण छेड़छाड़ की शिकायतें आईपीसी की धारा 294 और 509 के तहत दर्ज की जाती हैं, लेकिन इन धाराओं में ये सिद्ध करना मुश्किल होता है कि अभियुक्त ने कब कोई गाना गाया या कोई वस्तु दिखाई या सीटी बजाई या आवाज निकाली या कब वह महिला के निजी क्षेत्र में जबरन आ गया।
0: यह बात भी बार बार उठाई जाती है कि ऐसे मामलों में काफी जटिल होता है बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करना, क्योंकि यह मसला सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ा होता है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या यह सही है कपूर साहब?
1: कानून और सामाजिक समझ या आकांक्षा में अक्सर सामंजस्य नहीं होता। कई बार कानून काफी आगे की सोच लेकर बनते हैं और समाज की तात्कालिक समझ से दूर हो जाते हैं। कई बार कानून पुरानी दकियानुषित सोच से बंधा रहता है, जबकि समाज की समझ काफी आगे बढ़ चुकी होती है। ये टकराहट बिल्कुल अलग अलग तरह से सामने आती हैं।
0: समाज की सोच और कानून की बनावट को आप बलात्कार की घटनाओं से कैसे जोड़कर देखते हैं श्याम जी?
2: हाँ,
0: यह आपने किस बुनियाद पर खड़ी है, ये विशेष रूप से जानना
2: हाँ,
0: जरूरी।
2: वीरेंद्र जी आपने ठीक कहा, अब बलात्कार की घटना को ही लें। इसके लिए बनाए गए प्रावधानों में एक अवधारणा ये थी कि अगर बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर हो गया तो भारतीय परंपरा यानी कुप्रथा के तहत उसे और उसके परिवार को ताउम्र बदनामी का दंश झेलना पड़ेगा।
0: जी जी।
2: न तो उस परिवार में शादियां होंगी और न ही उन्हें सामान्य जीवन में अच्छी नजरों से देखा जाएगा।
0: इसके कोई उदाहरण हमारे सामने रखना चाहेंगे कपूर साहब, जो हमारे देश में घटित हुई हो?
1: देखिए, केरल की एक पीड़ित महिला ने हाल ही में ये बताया कि उसके परिजन उससे मिलने तक नहीं आते, उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है।
0: कुछ वर्ष पहले दिल्ली में जो बलात्कार की घटनाएं हुई उससे भी तो इस तरह का माहौल बना था
1: जी।
0: कि सरकार के विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट के सामने आवाज बुलंद किया जाए कि वह ऐसा कानून बनाए ताकि बलात्कारियों के साथ सख्ती से निपटा जाए। इससे पर आप क्या कहना चाहेंगे श्याम जी?
2: देखिए, हाँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि पिछले महीने दिल्ली में हुए बलात्कार कांड के बाद कुछ लोग बलात्कार पीड़िता की छवि को कलंक से निकालकर वीरांगना के रूप में स्थापित करना चाहते
0: हैं। जी जी, बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाह रहा
2: हूँ। बलात्कार के दोषियों के लिए बन रहे कानून का नामकरण उस लड़की के नाम पर करने की बात को केंद्रीय मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता का नाम उजागर न करने का कानून इसमें मुख्य बाधा है।
0: बिल्कुल, पीड़िता का नाम उजागर करने से समाज की जो ताना बाना है कपूर साहब
1: जी,
0: वह काफी बाधित होता है, क्योंकि हमारा समाज उतना सभ्य नहीं हुआ है
1: जी।
0: परिजन, पदाधिकारी या न्यायाधीश, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो बलात्कार के पीड़ित महिला का नाम उजागर कर सके।
1: भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केवल तीन व्यक्तियों को बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने का अधिकार है।
0: अच्छा।
1: पहला स्वयं पीड़िता को, दूसरा थानेदार या जांच अधिकारी, वो भी तब जब ऐसा करना उसकी सदस्यता के तहत जांच के लिए जरूरी हो, और तीसरा पीड़िता के सबसे नजदीकी रिश्तेदार को।
0: मीडिया का इस मामले में क्या कोई अधिकार नहीं बनता?
2: मीडिया या किसी अन्य को किसी भी कीमत पर नाम उजागर करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली के बलात्कार कांड तथा ऐसे ज्यादातर मामलों में मीडिया ने हमेशा ही इसका ख्याल रखा है।
0: कपूर साहब और श्याम जी, इस विषय पर आगे भी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। इस सुंदर जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपको भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल।

व्यक्ति विशिष्ट वार्ता सुनिए, ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, जिन्हें हिंदी के सुविख्यात ऐतिहासिककार उपन्यासकार के रूप में जाना और पहचाना जाता है। दोस्तों, वर्मा जी ने अनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक सामाजिक उपन्यास, कथा कहानियां, नाटक आदि की भी रचना की है, परंतु इन्हें ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली तो इनके लिखे ऐतिहासिक उपन्यासों के कारण। ऐतिहासिक उपन्यासों के कारण ही वृंदावन लाल वर्मा की तुलना अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार वाल्टर स्कॉट से किया जाता है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। वैसे हमारे देश में अनेक ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार हुए हैं, जैसे कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जिनका उपन्यास है वैशाली की नगरवधु, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा, यशपाल की दिव्या आदि अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। परंतु वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा को इन्होंने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। एक ओर इन्होंने जहां अनेक विस्मृत एवं धुंधलके प्रसंगों को नवजीवन प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर तथ्य एवं कल्पना, ऐतिहासिकता और अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। इसीलिए हिंदी लेखकों में वृंदावन लाल वर्मा काफी मशहूर हैं। साथियों, हिंदी लेखक इनकी ऐतिहासिक रचना से बहुत प्रभावित रहे हैं। ऐसे ख्याति प्राप्त वृंदावन लाल वर्मा का जन्म झांसी के मऊ रानीपुर नामक कस्बे में 9 जनवरी 1889 में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था बाबू अयोध्या प्रसाद, जो झांसी रजिस्ट्रार कानूनगो थे। इनकी माता का नाम था सौरानी देवी, जो एक वैष्णव भक्त थीं। वृंदावन लाल जी के परदादा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ दीवान थे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। बचपन में इनकी दादी रानी लक्ष्मीबाई के रोचक किस्से सुनाया करती थीं। इन्हीं कथा कहानियों को सुन सुनकर वृंदावन लाल वर्मा बड़े हुए। इन सब का उनके बालपन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, तभी तो वे इनके जरिए इतिहास तथा वीर पुरुषों की ओर आकर्षित हुए। यूं कहें दोस्तों कि ऐतिहासिक उपन्यासों की नींव यहीं से पड़ी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ललितपुर में हुई। पढ़ाई के प्रति इनकी रुचि बचपन से थी। नवीं कक्षा तक आते आते इन्होंने बाबू देवकी नंदन की चंद्रकांता संतति उपन्यास पूरी तरह से पढ़ डाली थी। बाद में आगरा आकर बीए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। इसके पश्चात वर्मा जी ने झांसी में वकालत शुरू की। इन्हीं दिनों वकालत के कामों से समय निकालकर साहित्य, इतिहास, पुरातत्व आदि का पठन पाठन करते थे। धीरे धीरे वे साहित्य साधना में लीन होते गए। धीरे धीरे इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। वृंदावन लाल वर्मा कई वर्षों तक झांसी नगर की नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद तो साहित्य साधना में वे इतने मशगूल हो गए कि एक दिन वकालत भी छोड़ दी और पूरी तरह लेखन कार्य में लग गए। दोस्तों, ऐतिहासिक उपन्यास की रचना इतिहास के आधार पर की जाती है। किसी देश प्रदेश के इतिहास के किसी एक काल की घटना एवं पात्रों को लेकर उपन्यास का रूप दिया जाता है। इतिहास में किसी देश, जाति अथवा व्यक्ति आदि की गतिविधियों का कालक्रम अनुसार वर्णन किया जाता है, पर उपन्यासकार प्राप्त तथ्यों से अपनी रुचि एवं दृष्टिकोण के अनुरूप निष्कर्ष निकालते हैं। यही वजह है कि ऐतिहासिक उपन्यास की दृष्टि से उपन्यास की रचना में लेखक का अपना दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्मा की विशेषता रही है कि उनकी उपन्यास कला केवल कथा का अनुसरण मात्र नहीं है, जागरूक विचारक होने के कारण इतिहास की प्रस्तुति उनका अपना दृष्टिकोण भी विशिष्ट बना रहा। दृष्टिकोण का यही अनूठापन उनकी कला की विशेषता रही है। टूटी हुई इतिहास की कड़ियों को वर्मा जी ऐसे जोड़ते हैं कि जोड़ का कड़ी
पता ही नहीं चलता, न इतिहास पर आंच आती है। दोस्तों, बुंदेलखंड उनकी कर्मस्थली रही है और यहीं की संस्कृति एवं उनका इतिहास उनके उपन्यास का आधार बनी। इनकी खासियत यह भी रही है दोस्तों कि इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में वातावरण की सृष्टि अत्यंत संतुलित, स्वाभाविक और प्रभावी बन पड़ी है। इनके कई उपन्यासों में बुंदेलखंड के जनजीवन एवं प्राकृतिक सूक्ष्मा का स्वाभाविक वर्णन मिलता है। वृंदावन लाल वर्मा जी एक विख्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार ही नहीं, वरन वे एक अच्छे निशानेबाज और शिकारी भी थे। उन्हें बुंदेलखंड के जंगलों का चप्पा चप्पा ज्ञात था, तभी तो वे वन की खूबसूरती को अपने उपन्यास में उतार पाए। बुंदेलखंड के ज्ञान एवं अनुभव के दम पर इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों में सजीव वातावरण प्रस्तुत किया है। दोस्तों, यूं तो वर्मा जी शुरू से ही अत्यंत लोकप्रिय जनसेवक और जीवनव्यापी साहित्य साधक रहे हैं। इतिहास के मामलों में इनकी अपनी मान्यताएं रही हैं, इनके अपने सिद्धांत रहे हैं। इन्होंने अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा प्रतिपादित मतों, सिद्धांतों एवं व्याख्यानों को भ्रामक माना है। इतिहास की सच्ची खोज की लालसा एवं इच्छा ने वर्मा जी के सामने एक नई राह प्रस्तुत की। वर्मा जी में सबसे खास एवं महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि वे आम जनता की शक्ति पर विश्वास रखते थे। वृंदावन लाल वर्मा का ये अपना नजरिया था दोस्तों कि वे सोचा करते थे कि आम साधारण जनता ही शक्ति के मुख्य स्रोत हैं। वही एक लेखक की ताकत होते हैं। साधारण जनों के माध्यम से ही उन्होंने अपने पात्रों का चयन किया था जो बिल्कुल स्वाभाविक एवं प्राकृतिक लगते थे। साथ ही यही पात्र अदम्य जीवन शक्ति, स्वाभिमान एवं संघर्ष से सदैव अजय बने रहे। मध्ययुगीन बुंदेलखंड के इतिहास को अंकित करते समय इन्होंने राजा महाराजाओं का स्तुतिगान न कर सामान्य जीवन के विभिन्न चरित्रों की अपराजेय शक्ति का अंकन अधिक गहराई से किया है। दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में उनके साहित्य लेखन में इतना वजन था कि लेखक के अलावा आम जनता भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इनके प्रभावशील लेखन कार्य के लिए इन्हें आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि देकर सम्मानित भी किया। ऐसे विशिष्ट एवं महान लेखक का देहांत 25 फरवरी 1969 को हुआ। वर्मा जी बड़े सशक्त लेखक थे, खासकर इतिहास को उन्होंने अपने तन मन में रचा बसा लिया था। ऐतिहासिक पात्रों के साथ ही साथ अपने कल्पित पात्रों के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक हलचल के साथ तत्कालिक सामाजिक जीवन के ऐसे सशक्त एवं प्रभावी चित्र अंकित किए हैं कि सामाजिक स्थितियां सच्चाई के साथ सामने उभरती नजर आती हैं। वहीं जनमानस की अपराजेय जीवन शक्ति रेखाचित्र की तरह रेखांकित है। उन्होंने अपने उपन्यास में राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक समस्याओं का भी जिक्र किया है। तो दोस्तों, निश्चय ही वृंदावन लाल वर्मा जी यथार्थ एवं कल्पना का सुंदर समन्वय करने में सिद्धहस्त हैं। उनकी इसी विशेषता के कारण उनकी उपन्यास कला संपूर्णता को प्राप्त करती है। आंचलिक एवं स्वाभाविक प्रकृति चित्रण ने वृंदावन लाल वर्मा को उच्च कोटि का कथा शिल्पी बना दिया है। हिंदी जगत के ऐसे सुविख्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा कभी भुलाए नहीं जा सकते अपने कथा साहित्य के जरिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में भाग दो, और इसके लेखक और निर्देशक हैं संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: अरे तुस्ती अब भी ठुमक ठुमक कर चल रही है। जब भी तुझे साथ लेकर निकलता हूँ कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। पिछली बार आंधी आई थी, अब के दंगा हो गया।
1: मैंने कब कहा था जी कि मुझे बाजार दिखाने ले चलो? आप ही कहते थे कि शरीफ आदमी बिना बीवी को साथ लिए नहीं जाता। न चलूं तो गंवार अनपढ़ और चलूं तो मुसीबत।
0: अब चुप भी कर, राह चलते झगड़ने लगती है।
1: ओ, मैं तो कहती थी जी तंगा कर लो, मुनादी वाले कह रहे थे जल्दी से घरों में पहुंच जाओ।
0: तेरे तो कान बोलते हैं, मुनादी वाले कह रहे थे कि भागो नहीं, शहर में अमन होता जा रहा है, कुछ सुना भी है?
2: सरदार जी कहाँ सुनी आपने मुनादी?
0: जी पास से नहीं, दूर से आवाज आ रही थी।
3: आवाज? अरे आपने ठीक से नहीं सुनी, वो कह रहे थे कि मेवा मंडी।
0: ओए मेवा मंडी नहीं, अकबरी मंडी।
3: मियाँ अकबरी मंडी में कई आदमी आग में जल गए, पता है कुछ?
0: ओए आदमी नहीं, कई मकान आग में जल गए।
3: हाँ दोनों बातें होंगी,
2: पर वह ऐसी मुनादी तो कर ही नहीं सकते, यह कानून अपराध है।
0: तो कोई और बात होगी, मुनादी हो जरूर रही थी।
1: आज बस बस कोई नहीं जाएगी, कहीं से तांगा वांगा कर लो।
0: तांगा वाला है कहाँ? इधर सड़क खाली उधर भी।
3: अरे आधे घंटे से कोई तांगा नहीं है।
4: बाबा बाबा वो दो लड़कियाँ कैसे चली गई?
3: मोटर में चढ़कर चली गई।
4: तीन नंबर की बस भी चली गई क्या?
3: बस नहीं, छोटी मोटर आई थी, बाबू उनको बैठा कर ले गए।
4: वो कोई उनकी जान पहचान वाले थे क्या?
3: थे तो नहीं, अब जाते जाते हो गए होंगे।
4: मुझे तो वो लड़कियाँ देखने में ही वैसी लगती थी।
3: हाँ बिल्कुल सही, पढ़े लिखे लोग ही पढ़े लिखे को पहचानते हैं।
0: लो मुरादी सुनो।
5: सुनिए साहबान, बहुकम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर, फतेहपुर रामगढ़ इलाकों में फसादत की वजह से आज दोपहर 2 बजे से कल सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू ऑर्डर जारी रहेगा।
4: आज 12 बजे से?
2: कहिए सुनने तो दीजिए।
5: अंदरून शहर, ग्वाल मंडी और ठंडी रोड, इनके अलावा रामनगर, संत नगर, सुदामा नगर, हाई कोर्ट।
2: सुदामा नगर?
4: हाई कोर्ट में भी लग गया?
3: सुनिए सुनिए मिया,
5: मल्हारगंज और रेड क्रॉस से नीचे माल रोड, इन सब इलाकों में आज 2 बजे से।
4: 2 बजे से?
2: ये तो बिल्कुल अंधेरा है।
1: तो फिर घर कैसे पहुँचोगे? कहती थी तांगा ले लो।
4: गले पड़ गया कमबख्त, ये कह रहा था बाजार देखूंगा, देख ले बाजार और खरीद ले तेरी बोतल।
2: अरे अरे जरा आगे तो सुनिए, आगे सुनने दो।
3: क्यों जी, लाट साहब के दफ्तर तो नहीं?
2: लग गया, लाट साहब का दफ्तर भी लग गया।
4: अब क्या होगा, अब बस नहीं आएगी।
2: अरे वो देखो पुलिस वाला आ रहा है, चलो उसी से कुछ पूछते हैं। अरे अरे दरोगा जी।
3: अरे दरोगा साहब,
6: आप लोग यहाँ क्यों जमा है? पता नहीं कर्फ्यू का समय हो रहा है।
3: अरे जनाब हम लोग बस की राह देख रहे, सब सुदामा नगर की सवारी।
4: नहीं नहीं हमें हाईकोर्ट जाना है।
7: अरे हम यतीम खाने जाएंगे
3: और हम लाट साहब के दफ्तर उतरेंगे।
6: अरे भाई मेरे, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, सर्विस बंद कर दी गई है, मुसीबत में फंस जाओगे, जाओ।
4: क्या? और देख ले बाजार की रौनक।
6: चले जाओ जल्दी, नहीं तो 2 बजे तक गिरफ्तार कर लिए जाओगे।
3: क्यों हुजूर, भिखारियों को भी छूट नहीं?
6: सरकारी कानून है ये, किसी को छूट नहीं है।
3: आवारा जानवर घूम लेते हैं सरकार, हम लोगों का कुछ तो ख्याल होना चाहिए और आजादी।
6: जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से, 4 आदमी से ज्यादा जमा नहीं हो सकते।
3: अरे क्यों मियाँ, क्या करें हम?
2: मैं भी आपसे यही पूछने वाला था, अब तो पैदल भी नहीं पहुँच सकते।
4: ऐसे खतरे में पैदल कैसे जाया जा सकता है? मेरे साथ तो बच्चा भी है और सामान भी है।
8: मम्मी मम्मी।
4: हाँ?
8: सामान मैं उठा लेता हूँ, आप मुझे उठा लो।
2: लीजिए एक टैक्सी आ रही है।
7: ओए आप लोग जाना चाहते हैं? अरे जाना चाहते हैं कि नहीं?
4: हाँ हाँ जाना तो है।
7: हाँ तो पुलिस वाले साहब ने हमको कहकर भेजा है, और जाना हो तो जल्दी कीजिए, जल्दी पीछे बैठो।
2: हाँ जाना है सर। बैठो ना।
3: पहले आप बैठो।
4: बैठिए ना, बैठिए बहन
1: जी, पहले आप लोग बैठिए।
3: अभी बैठने का क्या झगड़ा, अभी पहले बैठे जाते हैं।
7: अरे जल्दी करो भाई, और 25 रुपए किराया एडवांस देना जी।
2: कितने रुपए किलोमीटर?
5: कितने रुपए घंटा?
7: घंटे किलोमीटर का हिसाब नहीं है, वो चढ़ना हो तो चलो, वक्त हो रहा है जी।
2: हाँ, एक 45 तो हो भी गया।
5: ये आप रुपए लाए क्या? मेरी जेब में तो 2 रुपए आए भैया।
3: मेरा बटुआ तो कोर्ट में ही रह गया।
2: भाभी जी आपके पास?
1: जी मैं अपना किराया दे सकती हूँ।
5: ये कुल कितने रुपए हुए भैया?
7: 2 और 2, 5 और 8 रुपए। 8 रुपए? ओए उतर जाओ जी। ओए बाबा जी उतरो नीचे, 8 रुपए में टैक्सी में जाएंगे।
3: अरे क्यों क्यों उतर जाऊँ?
7: बैठ गए, गांठ में पैसे भी है कि नहीं है?
3: एक सवारी के कितने पैसे?
5: एक सवारी?
7: ओए एक सवारी 2 सवारी नहीं है, 17 रुपए और चाहिए। तो आप बस का इंतजार करो, थोड़ी देर में पुलिस की लॉरी आकर ले जाएगी। उतरो उतरो, गाड़ी खाली करो, उतरो।
3: अरे अरे आप तो डर लिए आज। ठहर अरे ठहर भैया, देख मैंने,
5: अरे देख तो भैया।
3: अरे अरे आंटी के सब धरा लिए, जितनी भीख मांग मांग कर इकट्ठा किए था सब धरा लिए। अरे अरे इस भिखारी पर तो बड़े नोट है।
2: वाह छोटे सिक्के, अरे बेशुमार है।
3: हो जाएंगे भाई, पैसे की चिंता न कर, तू तो गाड़ी चला। देखा तभी तो इस आर्थिक मंदी में भी हम शान से डटे रहे, गिरे नहीं।
2: अरे सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो,
9: हटा लिया गया है, अब कर्फ्यू सिर्फ परेड मैदान क्षेत्र में ही जारी रहेगा।
2: अरे भाई सुनो, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? फिर कोई बवाल हो गया क्या?
5: हालात नियंत्रण में होते देख शहर के 5 क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, अब कर्फ्यू सिर्फ परेड मैदान क्षेत्र में ही जारी रहेगा।
10: अरे क्या कहते हो मियाँ, बस का इंतजार और कर ले।

स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में। अभी हमने सुना ये नाटक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे संदीप दुबे, सुमित मालवीय, अपर्णा सिंह, अंतरा करवड़े, सिरिल जमरे और मास्टर संकल्प।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में भाग दो और इसके लेखक और निर्देशक थे संदीप दुबे। साथियों अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों आप हमारे सभी कार्यक्रम को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित और उनके साथ ही इंदौर के प्रसिद्ध इंटरनेशनल फोटोग्राफर और कलाकार श्री भालू मोंडे साहब। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात नुपुर दीक्षित के साथ।

0: एक मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में रंग, कला, विविधता, परिवर्तन, विकास, हर चीज के अपने मायने हैं। तो आज इस एक मुलाकात कार्यक्रम में मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनके जीवन में इन सब का बहुत सुंदर संयोजन है। उन्होंने समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश की, कला को नए आयाम दिए, विदेशी धरती पर भारत का नाम रोशन किया और इतना सब कुछ करने के बावजूद वे आज भी अपनी जमीन से उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे हम और आप जुड़े रहते हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ इंदौर के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर और कलाकार श्री भालू मोंडे साहब से। मोंडे साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर, आपकी ख्याति तो पूरे विश्व में एक फोटोग्राफर के रूप में है, लेकिन फिलहाल मैं इस बातचीत की शुरुआत आपकी एक दूसरी गतिविधि से करना चाहूंगी। हमारे शहर का एक बहुत जाना माना तालाब था जिसकी बहुत दुर्गति हो गई थी, कुछ मानवीय गतिविधियों के चलते, कुछ असामाजिक तत्वों के चलते, और आप लोगों ने उस तालाब को आज प्रदेश के सबसे खूबसूरत तालाब के रूप में विकसित किया है। तो इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सके आप लोग?
1: मेरे बचपन से मेरे को लगाव था झाड़ों, पेड़ और थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ। आई कांट से, बट मैं ये कह सकता हूँ कि आसपास जो जनजीवन था और वाइल्ड लाइफ था उसके लगाव था। तो जब हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आए तो पिकनिक के नाम से हम सिरपुर, पिपलापाला और सब तालाब पे जाते थे, ईश्वर सागर, मांडू, आजू बाजू सब। उस टाइम में सिरपुर पे उस जमाने में भी हमने हिरन देखे है।
0: 1950
1: में मैंने मेरे आंखों से हिरन देखे हैं,
0: मतलब शहर की सीमा के भीतर।
1: सीमा के भीतर आज जो सीमा है वो तालाब सीमा के अंदर है
0: जी।
1: तो उस टाइम में हिरन देखे। अच्छा, फिर जाने जाते जाते हम कॉलेज में गए वगैरह, और मैंने 1964 में इंडिया के इंग्लैंड से, मैं इंग्लैंड गया 64 में, तो तब तक तो मैं इंदौर से लगाव था। 64 के बाद कंटिन्यूअसली 10 साल नहीं आया, और उसके बाद मैंने इंग्लैंड में मेरा काम किया, और उसके 10 साल में मैं 4-5 बार आया। तो जब जब आया तो मेरे को उधर का भी थोड़ा सा आ गया था लुकआउट, डिफरेंट माइंड बन गया था,
0: दृष्टिकोण मिल जाता है,
1: मेरा बन गया, और डेफिनेट इंदौर क्या है अब और मैं कहाँ फिट हूँ उसमें
0: जी।
1: और उस टाइम में भी तालाब अच्छा बिल्कुल फल फूल रहा था। उस टाइम में नगर निगम इंदौर के लिए पानी भी यूज करता था
0: जी,
1: पर वो सब ठीक है। उसके बाद फिर कुछ साल ऐसे ही गए, इधर उधर गए, हम भी बिजी हो गए। पर जब तालाब को बहुत ज्यादा क्राउड और ये जो कॉलोनियां बसी 20 या 25 साल पहले की बात करो आज, तो जब शुरुआत हुई,
0: यानी कि तालाब में प्रदूषण बढ़ने की जब शुरुआत हुई,
1: प्रदूषण बढ़ने की, फिर कॉलोनी एक फैलाव बढ़ने लगा इंदौर का, वो है 25 साल का पीरियड है। तब जो शुरुआत हुआ तो उसमें एकदम तालाब को घिरने की एकदम एक शंका पैदा हुई, और लोगों को गंदी वाड़ा करने का और फिशिंग, मतलब एक लोगों की मनचाहे जो वृत्ति एकदम बाहर आ गई
0: जी,
1: उससे तालाब के प्रदूषण करने की। और ये वो हम सब, मैं फोटोग्राफर तो हो गया था तब तक, और फॉरेन का भी ट्रेनिंग आ गया था, मैं 75-76 में वापस आ गया। तब से जो चालू किया मैंने जाना रेगुलर, तो मैंने सरकार जो थी, जो भी सरकार उस जमाने की और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हमेशा उस तरह से मैंने रिपोर्टिंग की कि ये झाड़ कट रहे, पेड़ कट रहे, तब से कर रहा हूं मैं। एनीवे, हमारा फिर हमने सोचा कि हम एनजीओ करेंगे, तो ये हमारा गए 10 साल से हमने फिर रियली एक्शन प्लान किया कि इसको ये सिर्फ बोल के तो हो नहीं रहा है कुछ। प्रदूषण बढ़ते गया, पॉपुलेशन बाहर से लोग आते गए,
0: पहले आपने बहुत शिकायतें की,
1: अवेयरनेस थोड़ा सा लाने की कोशिश की।
0: हाँ,
1: पर उसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो फिर हमने हमारे दोस्तों को भी बताया, फोटोग्राफ्स बताया, ये वो सब बताया और पोजीशन बताई, क्यों सरकार में भी थोड़ी हमारी पहचान हो गई
0: जी,
1: और एनवायरमेंट वाले लोग थोड़े से हमसे बातचीत करने लगे, जुड़ गए। तो हमने फिर शुरू किया काम, एनजीओ एस्टेब्लिश किया
0: जी,
1: और फिर प्रॉपरली हमने नगर निगम और इनका नोटिस किया। हमको लगा ये फॉरेस्ट का है उस टाइम में, तो फॉरेस्ट के पास गए तो वो बोले हमारे पास तो जमीन का पट्टा है भी नहीं, हम क्या कर सकेंगे, ये तो शहर में आ रहा है। तब पता पड़ा कि ये नगर निगम का है। बीच में नर्मदा के प्रोजेक्ट्स आए, नर्मदा का पानी इंदौर आने लग गया, तो नेचुरली तालाब का पानी रोक दिया। वो एडवांटेज हमको मिला इनफैक्ट टू गो ऑन मेकिंग आवर प्रोजेक्ट, क्योंकि पानी लेते तो हम बोल नहीं सकते थे कि बर्ड के लिए कुछ करो। अब पानी जब बंद हुआ और तब भी गंदीवाड़ा है, तो फिर हमको रहा नहीं गया। तो हमने कमिश्नर को और कहा तो उन्हें थोड़ा सा नोटिस किया, थोड़ा बहुत करने की कोशिश। वो जब चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश बने, हम इमीडिएटली उनके पास पहुंचे कि अब लास्ट होप है हमारी, अभी आप कुछ कर सके तो करो, उनने तो फिर पता नहीं क्या है, ये गया फिर तो उनने एक्शन ली, उनने सीधी एप्को कमेटी जो है मध्य प्रदेश की एनवायरमेंटल उसको भेज के और हमसे पूरी रिपोर्ट ली। कमेटी आई, उसकी लैब लेबोरेटरी वगैरह सब आई, फोटोग्राफ करके भोपाल गई। 3 महीने में पूरा एक प्रोजेक्ट बना और करीब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट।
0: यानी कि आपकी मेहनत को आखिरकार मंजिल मिली, एक मुकाम मिला।
1: तो फोटोग्राफ करके कमिश्नर कलेक्टर मंत्री तक सब विजिट करवा के भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। उस आदमी ने जो हमारे विजय सिंह चीफ सेक्रेटरी बने तब उनके पास लास्ट पावर थी मध्य प्रदेश की, उनने अपने ऑफिसर को बुला के और उनने कहा कि ये प्रायोरिटी में होना ही है।
0: यानी कि पूरे 10 सालों का संघर्ष किया गया एक जल स्रोत
1: के विल पावर से, आदमी की विल पावर। हमने वो टेस्ट किया है कि गवर्नमेंट में यदि कुर्सी वाला कर सकता है तो वो काम हो सकते हैं आज।
0: बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से आपका जवाब सुनने के बाद हमारे कई सारे श्रोताओं के मन में एक दूसरा सवाल पैदा हो जाएगा। हम लोग कई बार अपने आसपास बहुत सारे जल स्रोत, तालाब, झील, नदी, इनको प्रदूषित होते हुए देखते हैं। हम अंतर महसूस करते हैं कि पहले नदी का पानी इतना साफ था, आज इतना गंदा है, या पहले फला तालाब में इतनी खूबसूरती थी, आज इस तालाब में इतनी गंदगी पसरी है। लेकिन एक मार्गदर्शन के अभाव में हम कोई कदम नहीं उठा पाते। तो अगर कोई अपने आसपास आप ही की तरह किसी तालाब के लिए, किसी झील के लिए कुछ करना चाहे तो शुरुआत कैसे करें?
1: शुरुआत ये है कि जैसे मैंने भी दूसरे दुनिया में जाके दूसरी जगह के सैंपल देखे कि ये इतनी सुंदर झील या तालाब या नदी कैसी हो सकती है, तो उसका बैकवर्ड जैसे अपन रिवाइंड करके अपने को अपना पूरा तस्वीर देखते वैसा हमने किया कि ये कैसी होती है। तो वहां पे स्टडी किया फिर जाके कि ये लोग कौन है, इसके पीछे कैसा है और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे कोऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट में आज वो नहीं है। जैसे नगर निगम नर्मदा से कोई लेन देन नहीं है, फिर उसके लिए पावर चाहिए तो उसका एमपीवी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो टेलीफोन, तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट आते हैं रोड कनेक्शंस, ये कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट में नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्कीम इनकी फेल होती है, टाइम 4 गुना लेते हैं, पैसा खत्म हो जाता है और काम होता है।
0: और यही सामंजस्य, यही कोऑर्डिनेशन अगर बना रहे तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। मैं अब बिल्कुल प्रायोगिक तौर पर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह का ठहरा हुआ पानी सिरपुर तालाब में था, मेरे ख्याल से लगभग वैसा ही पानी कहीं और जगह पर भी होगा जो प्रदूषित हो चुका होगा। तो अगर इस पानी को साफ करने की कोशिश कोई एनजीओ, कोई समुदाय अपने स्तर पर करना चाहे तो क्या बेसिक मेथड्स होते हैं?
1: बेसिक मेथड है कि पहले तो जनता को पानी से खेलने के लिए या जाने के लिए रोकना है, तो मतलब अननेसेसरी यूज या उसको नाना धोना और पिकनिक स्पॉट बनाना, ये इस तरह के प्लानिंग नहीं चाहिए। उसको तो टोटल रोक दो पहले।
0: मतलब तैरना भी प्रतिबंधित करना चाहिए,
1: तैरना, नाव चलाना, मतलब छोटे तालाब की बात, भोपाल जैसा ताल नहीं, पर एक नॉर्मली 2-3 किलोमीटर वाले तालाब जो है घेरे के, उसमें तो पूरा बंद करना चाहिए उसको। फिर प्लांटेशन पूरे पेरीफेरी में करना चाहिए। और जनता को पानी देना है तो उसको पंपिंग से टैंक में लगा के आप 3-4 जगह कर सकते हो ऐसे स्पॉट्स कि जहां से वो पानी ले।
0: जी, लेकिन डायरेक्ट आकर तालाब में कोई बर्तन डुबोकर पानी
1: ले, जानवर घुस रहे और बर्तन साफ हो रहे और पिकनिक वाले मस्ती कर रहे, कचरा ढोल रहे, बिल्कुल बंद चाहिए वहां पे। ये सब हमने यहां पे किया है।
0: विसर्जन भी बंद करवाना,
1: विसर्जन टोटल बंद होना है। ये सब मूर्ति पूजा, दुर्गा, गणेश, वट एवर इट इज, ताजिया, सब तरह के अपने अपने विसर्जन होते हैं, वो सब बंद होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा
1: आपने।
0: और फिर आखिर इसी पानी पर तो हमारी जिंदगी टिकी है ना।
1: एग्जैक्टली, मतलब मैं कह रहा हूँ नर्मदा का तो बॉटल में भी नर्मदा का पानी है, तो इंदौर की अपन रोज नहा रहे नर्मदा से, अब नदी पे जाके विशेष क्या हो रहा है आपको? उसको एक साबुन से गंदा करना और ये करना, वो कोई मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं उसको आप कहीं बाजू में बाल्टी लेके नहा सकते हैं।
0: आप प्रकृति प्रेमी तो है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान एक कलाकार के रूप में है। आप जितने अच्छे चित्रकार हैं उतने ही अच्छी तरह से आप प्रकृति की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते रहे। तो फोटोग्राफी की शुरुआत किस तरह से हुई और कैसे आपका रुझान बढ़ा फोटोग्राफी की ओर?
1: फोटोग्राफी में मेरे अंकल ने 1923 में एस्टेब्लिश किया इंदौर में स्टूडियो। मेरे अंकल थे मोंडे ब्रदर्स नाम से, तो वो एमजी रोड पे तोपखाने में हमारा स्टूडियो था। उसके बाद 55 में मेरे भाई साहब ने ट्रेनिंग ली वहां से, फिर भाई साहब के बाद मैं आया तो मेरा शुरू हुआ फोटोग्राफी। पर फोटोग्राफी हम जब बाहर चले गए इंग्लैंड और जर्मनी, तो वहां से हमने फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमारा ट्रेनिंग किया

0: आप ना केवल दोबारा लौटे लेकिन आप अपने ही शहर में एक मालवा में आप दोबारा लौटे और यहाँ पर आप आज भी महेश्वर के गांवों में नजर आते हैं, आप इंदौर से दूर सिरपुर के जंगलों में नजर आते हैं। तो ये पूरा जो सफर था, पहले ये विदेशों का ग्लैमर और फिर दोबारा जमीन से जुड़ाव, ये कैसा रहा?
1: मेरे को वहां का, मैं वहां पे गया तो वहां पे अडॉप्ट कर लिया मैंने, वहां का जैसा बन गया
0: जी।
1: और वहां पे पंक्चुअलिटी टाइम इसका मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनका तरीका, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वो अच्छा लगा। पर बाकी जो टाइप विद द वर्क है वो थोड़ा ज्यादा है और बहुत रिजिड है काम, मतलब वहां, मतलब पंक्चुअलिटी ह्यूमैनिटी से भी ज्यादा है। पर वो पॉइंट अच्छा है उनका,
0: बट
1: दैट आई वांट टू कंबाइन विद इंडिया। मैं यहाँ पे काफी पंक्चुअल हूँ, मेरे काम में बहुत लॉग नहीं है मेरे काम में, कभी पंक्चुअल हूँ, प्रॉमिस है बिल्कुल, लोगों को दिया हुआ उतना बराबर होता है और टाइम बाउंड करता हूँ मैं। वो ट्रेनिंग मैंने वहां से लिया और यहाँ आके उसको अपन पाया है और मेरे को अच्छा लगता है वो, क्योंकि यहाँ पे जमीन में बिल्कुल सोना गड़ा हुआ है, टेल यू, मतलब भरा हुआ है।
0: लेकिन बस उस सोने को पहचानने के लिए एक जौहरी चाहिए। आपके ऊपर एक कहावत पूरी तरह से लागू होती है कि एक भारतीय भारत से बाहर जाता है लेकिन एक भारतीय के मन से भारत कभी बाहर नहीं जाता।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही।
0: सर आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप पर्यावरणविद रहे, आप पक्षी प्रेमी हैं, इतने सारे रूप आपके व्यक्तित्व के हैं, इन सारे के सारे रूपों में आप एक संतुलन कैसे बना पाते हैं?
1: मैं फ्रीलांस हूँ, मैं जब से, मतलब मेरा 19 साल से मैं बाहर गया तब से मैं फ्रीलांसिंग नौकरी, मतलब सरकार की और पेंशन के लिए नौकरी नहीं की है
0: जी।
1: काम मेरे को जो पसंद आया वही किया और टाइम बाउंड किया और पैकेट काम खत्म करके वापस आ गया अपन।
0: हाँ।
1: फिर फ्री हो गए, इस तरह से मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं गए 30 साल से इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर और टाइम मिलता है, टाइम सबको मिलता है, प्रधानमंत्री के पास भी टाइम है,
0: बिल्कुल
1: मेरे पास तो है ही। ये टाइम मेरा, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द स्क्वायर बॉक्स या टीवी, आई लाइक टू गो इन द फील्ड्स, आई लाइक टू टॉक विद द ट्राइबल। मैं काम ऐसे वर्कआउट करता हूँ कि मेरे को ट्राइबल भेजती सरकार, या आई वर्कआउट माई महेश्वर जैसी ब्यूटीफुल नदी पे मैं जाके बैठता हूँ तो वहां पे दोस्ती बनाई तो वहां पे रहने वहने का इंतजाम हो जाता है और उनके काम भी कर लेता हूँ, मेरा एंजॉयमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है एक साथ। तो चार चार चीज अचीवमेंट करना एक काम में, आई लर्न दैट।
0: यानी कि कुल मिलाकर कहें तो अगर इंसान करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है।
1: सब कुछ होता है बिल्कुल, और आपका डिटर्मिनेशन है करना, आपको है उपदेश बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है
0: जी।
1: आप करे जाओ तो वो सब आपका है,
0: बिल्कुल
1: आप करे जाएंगे आपका होते जाएगा वो।
0: सर एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद किसी एक या दो या तीन व्यक्तियों की इच्छा हो जाए कि वो अपने शहर की या अपने गांव की नदी के लिए कुछ करना चाहता है, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है वो और ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है जिसके मन में इच्छा है एक जल स्रोत को साफ करने की, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे सर एक सुझाव दें कि इस तरह से शुरुआत करो, धीरे धीरे तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि आखिर आपको भी 10 सालों का वक्त लगा।
1: गांव में एक, कोई भी छोटे गांव में ही, छोटा से छोटा गांव ले लो, वहां पे एक अड्डा रहता है झाड़ के नीचे या कहीं तो भी
0: जी,
1: वहां पे उसने जाना है 10-5 गांव के जो बुजुर्ग जवान जो भी है
0: हाँ।
1: उसके साथ दोस्ती करना है और अपनी बात जो देख रहा है उसको वहां पे बोलना है, वहां से उस बात को फैलाव मिलेगा
0: जी।
1: उस बात का नोटिस किया जाएगा, अपने घर में और एक किसी लंगोटियार से बात करे तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जबकि वो गांव के 10 लोग बैठते वहां पे जाके बात करेगा
0: हाँ, जहाँ एक बैठक या चौपाल होती है गांव की,
1: कि दादा तालाब बहुत गंदी वाला हो रहा है यार, बोले क्या करोगे, तो करने की कुछ इच्छा है ऐसा कुछ, बात करने से आगे बढ़ेगी बात
0: जी।
1: और करने का दम चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट चाहिए तो नॉलेज आज खूब जगह मिलेगा आपको, अड़ोस पड़ोस और थोड़ा सा शहर में आ जाए तो एक्सपर्ट मिल जाएंगे, तो इससे चलेगी चीज। वो मेरे को मेरा सराउंडिंग अच्छा करना है, मेरा मैसेज यही है कि यदि आपको सोबर करना है, आपका कमरा साफ होना है, आपके यहाँ डस्टबिन होना है, आपके यहाँ सब कुछ होना है, आवाज नहीं आना है, ये नहीं होना है, तो आपको जागरूक होना है कि आवाज बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा।
0: चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: आपको हर चीज का एनालिसिस करना है, उसके बाद उस पर एक्शन लेने की भी शक्ति आपने अडॉप्ट करना चाहिए कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ सीएम करेगा, पीएम करेगा और नगर निगम के मेयर करेंगे, ये नहीं है। आपको कचरा नहीं फेंकना है तो वो कचरा उठाने की जरूरत नहीं है, फेंकना ही नहीं ना।
0: बहुत सही बात कही कि अगर हम गंदगी को फैलाएंगे नहीं तो किसी को उस गंदगी को साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: दिस इज द मैसेज, मतलब वन हैज टू हैव सच ए स्ट्रांग पर्सनैलिटी डेवलप

0: मुंडे साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके ऊर्जावान व्यक्तित्व का एक प्रसार कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए।
0: तो श्रोताओं, आपसे अगली बार मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। अपनी दोस्त नूपुर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित और उनके साथ थे इंदौर के प्रसिद्ध इंटरनेशनल फोटोग्राफर और कलाकार श्री भालू मुंडे साहब। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरिता सेशा का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसका शीर्षक है राजनीति और युवा शक्ति। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता हैं अंतरा करवड़े एवं आस्था उपमन्यु।

0: साथियों नमस्कार, युवा और विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंतरा करवड़े
1: और मैं हूं आस्था उपमन्यु।
0: आस्था, आज हम हमारे साथियों के साथ जो बात करने वाले हैं वो उनके जिंदगी से जुड़ी हुई है। आज का हमारा विषय है राजनीति और युवा शक्ति।
1: वाकई एक दिलचस्प विषय आज हमने लिया है। चुनावी माहौल है जैसा कि हम सब जानते हैं, और एक बात और है कि इस चुनावी माहौल में विशेषकर छात्र राजनीति जिसे हम कहते हैं उसका काफी महत्व बढ़ चुका है। आपको क्या लगता है?
0: बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आज की तो छात्र राजनीति बिल्कुल एक नवीन पायदान पर है, और यदि हम जनसंख्या की भी बात करें आस्था तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हमारा देश युवा देश है।
1: बिल्कुल।
0: और चाहे राजनीति हो या फिर चाहे किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट, हर किसी का ध्यान आज है युवाओं की ओर।
1: ये बहुत खास अहम बात कही है आपने, कहना होगा, क्योंकि विशेषकर राजनीति को लेकर जब हम बात करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ज्यादातर युवा सांसदों को या युवा विधायकों को चुना जा रहा है, जैसे कि हमने पिछले चुनावों में देखा।
0: हाँ।
1: और हो सकता है आने वाले चुनावों में ये जो
0: मुद्दा है ये बहुत अच्छे से आगे आए, क्योंकि ऐसा है आस्था कि पहले के जमाने में ये माना जाता था कि राजनीति किसी भी अनुभव सिद्ध व्यक्ति के हाथ की ही बपौती है।
1: बिल्कुल।
0: यानी यदि हम देखें तो किसी महत्वपूर्ण पद तक पहुंचना या फिर कोई मंत्री बनना, ये हमेशा जाना जाता था कि उस व्यक्ति का राजनीति में अनुभव कितना है।
1: बिल्कुल।
0: और उसके राजनीतिक अनुभव को लेकर के ही आगे बात की जाती थी।
1: ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज के समय में जो बदलाव आया है उसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि आज का युवा ही एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में सक्षम है या दम रखता है, कह लीजिए, इस तरह की सोच अब बन चुकी है। इसलिए राजनीति में युवाओं को लाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है।
0: बिल्कुल। और आज हम देखें तो दो तरीके से युवा बहुत ज्यादा सामयिक हो चुके हैं। जैसा कि एक आपने कहा कि युवा राजनीति में आ रहे हैं, एक तरुणाई आ रही है राजनीति में, और दूसरा हमारे जो मतदाता हैं उनमें भी युवाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है।
1: सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, आज का युवा जो है वो जागरूक हो रहा है इन मामलों के प्रति।
0: तो
1: आज से कुछ समय पहले हालात ये हुआ करते थे अंतरा जी कि जब युवाओं से बात की जाती थी कि आप राजनीति में अपना आगे बढ़िए या अपना योगदान दीजिए तो एक बार वो सोच में पड़ जाते थे।
0: बिल्कुल सही कहा आस्था आपने कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में युवा पीढ़ी में भी फर्क आया है। आजकल बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपने आप को एक भविष्य के नेता के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार से अपनी पढ़ाई या फिर अपने संबंधों को जोड़ना या फिर किसी भी क्षेत्र में अपने धाक जमाना कह सकते हैं, या फिर हो सकता है इसकी शुरुआत छात्र राजनीति से ही होती हो।
1: अंतरा जी, यहाँ अब हम एक चीज और कहना चाहेंगे, एक चीज का और जिक्र करना चाहेंगे कि जो माध्यम है राजनीति में जोड़ने के लिए युवाओं को, वो आज के समय में काफी वृहद हो चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण युवाओं को इतना ज्यादा जागरूक होने का मौका मिल पा रहा है?
0: बिल्कुल। इसकी बात में हम कुछ और तथ्य भी जोड़ सकते हैं आस्था। वो ये है कि इस दौरान, मतलब पिछले 20 सालों में हमने ऐसे बदलाव देखे हैं जिन्हें आकार में आने में वैसे 200 साल लगते हैं। तकनीक इस कदर से बढ़ी है, लोगों की जीवन शैली, उनकी सोच, उनके सपने, सब कुछ इतनी जल्दी बदले हैं, और सिर्फ बदले नहीं हैं, वो सकारात्मक रूप से आगे जाने की ओर बढ़े हैं। उनमें बदलाव आया है तो वो आधुनिकता की परिभाषा बिल्कुल सही तरीके से खरी उतरी है, और इसका प्रभाव सीधे सीधे युवाओं पर पड़ा है।
1: बिल्कुल। तो यानी कि आप कुल मिला के कहना ये चाह रही हैं कि हमारे युवा पिछले 20 सालों में जो सोच रहे हैं वो कर भी रहे हैं, यानी कि सिर्फ सोचने तक उनकी सीमित नहीं है कि सिर्फ सोच ही हो। खैर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। हम यहाँ बात करेंगे कि आपको नहीं लगता, विशेषकर जो साइबर का चलन बढ़ा है आज के समय में, नेट फ्रेंडली होता जा रहा है आज का युवा, इन सब वजहों से उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है बेहतरीन मुद्दों से जुड़ने का, देश से जुड़े मुद्दे हों चाहे अपने आसपास से जुड़े कोई सामाजिक मुद्दे हों। आपको क्या लगता है?
0: नहीं, बिल्कुल सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब, उनका इसमें मुझे बहुत बड़ा योगदान लगता है, क्योंकि उन्होंने देश के सबसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने युवाओं के जिज्ञासा से भरे ईमेल्स का उत्तर स्वयं दिया है। तो ऐसे में जब हमें ये मालूम पड़ता है कि उम्र से लेकर के साइबर क्रांति का या फिर नेट सेवी होने का या फिर कंप्यूटर से जुड़ने का जब उम्र से कोई संबंध नहीं रह जाता, ऐसे में युवाओं को तो ये उन चीजों से जुड़ना ही चाहिए और जो क्रांति हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमें उपयोगी है, उसका उपयोग तो हमें करना ही चाहिए।
1: बिल्कुल। और यहाँ एक बात और भी है अंतरा जी की, आज के युवाओं की जो ताकत है वो शायद हमारे राजनेता पहचान चुके हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि राजनेताओं की ज्यादातर आज के समय में कोशिश है कि वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा, हाल ही में छात्र राजनीति, ये एक ऐसा विषय उनके बीच में रख दिया गया है कहना चाहिए, कि जिसके कारण वो खुद ब खुद राजनीति की तरफ

0: बढ़ने लगे हैं, वो जानते हैं कि उनके हाथ में, युवाओं के हाथ में कितनी बड़ी ताकत आ गई है।
1: बिल्कुल, बड़ी ताकत आ गई है। और साथियों, जब पहले के हम तुलना यदि करें तो हमारी जो पूर्व पीढ़ी है, वो लोग जब महाविद्यालय में हुआ करते थे, उनके जमाने में जो चुनाव हुआ करते थे, तब आस्था ऐसा नहीं लगता आपको कि उस समय चुनाव लड़ने वाले, राजनीति में भाग लेने वाला एक विद्यार्थियों का धड़ा अलग हुआ करता था।
0: बिल्कुल।
1: और पढ़ाई में ध्यान देने वाले एक विद्यार्थी कुछ अलग ही हुआ करते थे और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना दखल रखने वाले कुछ अलग हुआ करते थे। लेकिन आज हम देखें तो एक युवा राजनीति करने के लिए वो चुनाव में भी खड़ा होता है, वो युवा उत्सव में स्वयं नृत्य करता हुआ भी दिखाई देता है और पढ़ाई में भी वो क्लास में सेकंड थर्ड नंबर पर आ जाता है। इसका मतलब एक ऑल अराउंड जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, वो हमारे
0: मल्टी पर्पज युवा हो चुका है।
1: बिल्कुल,
0: मल्टी टैलेंटेड कहना चाहिए। खैर, एक बात ये भी है अंशा जी कि हमारे जो युवा हैं आज के समय में, वो सभी बातों को इतने अच्छे से कहना चाहिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं कि उन्हें कोई भी बात समझना या उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान,
1: अमल में लाना
0: बहुत आसान हो जाता है। आपको क्या लगता है इस बारे में?
1: नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा एक फर्क हमें जो मालूम पड़ता है वो ये है कि आज से करीब 10 या 12 साल पहले हम लोग जिन आदर्शों की बात करते थे कि हमारे देश के नेता ऐसे होने चाहिए या फिर हमारे देश के जो युवा हैं वो ऐसे होने चाहिए, उन्होंने नशे से दूर होना चाहिए, उन्होंने देश की संस्कृति को हाथ में लेकर के उसका परचम आगे लेकर के बढ़ाना चाहिए, ये वो जितनी भी आदर्शों की बातें होती थी, ऐसा नहीं लगता कि आज वो आदर्श साकार हो रहे हैं।
0: साकार हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही कही। लेकिन यहाँ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि पहले जो समय था, 20 साल पहले की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस वक्त का जो हमारे देश का सिनेरियो था वो कुछ अलग था, लेकिन आज का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल चुका है। आपने जैसे हाल ही में कहा, टेक्नो फ्रेंडली हो चुके हैं आज के युवा जो है, तो उस वजह से बात वही की वही है, सारे आदर्श हमारे वही के वही है, लेकिन उन्हें एक नया रूप मिल गया है, वो एक नए आकार में साकार होने लगे हैं।
1: और मुझे लगता है ये आस्था कि हम अगर राजनीति की भी बात करें ना, तो किसी भी राजनीतिक दल को ये नहीं सोचना चाहिए कि युवा मतदाता को रिझाना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल युवाओं में एक स्वभावगत अंतर भी आप देखेंगी कि अगर दो मित्रों में, पहले ये हुआ करता था अगर उनमें अनबन हो गई है तो जिंदगी भर एक दूसरे से बोलते नहीं थे।
0: बिल्कुल।
1: आज यदि अनबन हो गई है तो दूसरे दिन दूसरा दोस्त उसके पास आ जाता है, अहंकार छोड़ देता है और लेट इट बी, ये उनका एक महावाक्य बन चुका है कि जो हो गया वो हो गया, हमारी जिंदगी आगे और भी है, हम साथ में रहेंगे, या जो भी कहते हैं, स्वभाव में जो अहंकार होता था उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसके कारण जो एक स्वभाव उनका है वो प्रत्येक चीज को बहुत गहराई तक देखने का है। इसके चलते यदि कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें आश्वासनों में अपने तरीके से उनको रिझाना चाहे या फिर कुछ भी बात कहकर घोषणाएं करना चाहे और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहे जबकि उस पार्टी में कोई दम नहीं है, तो आज का युवा उतना बेवकूफ नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: विवेक शक्ति उसकी जागृत है कि वो जान सके कि ये किस आधार पर ये सारी बातें कह रहे हैं।
0: ये बिल्कुल ठीक कहा अंशा जी आपने, हमारे युवा साथी आज के वक्त में ये जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो इतने परिपक्व हो चुके हैं, उनकी सोच इतनी परिपक्व हो चुकी है। खैर, यहाँ हम हमारे युवा साथियों को बताना चाहेंगे कि एक खास बात जो राजनीति में आजकल और हमें देखने को मिल रही है वो ये कि अलग अलग विज्ञापन हो या कोई भी अन्य जरिया हो चुनाव प्रचार का, उसमें युवाओं को, अगर आपने ध्यान दिया हो तो युवाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाता है।
1: बिल्कुल, और सही बात है भी ये आस्था, क्योंकि युवाओं के हाथ में न केवल राजनीति है बल्कि राजनीति की सारी कमान भी युवाओं के हाथ में है। मतलब मंच पर भी युवा है और दर्शक संख्या में भी सबसे ज्यादा युवा है, तो ध्यान तो देना उनकी ओर बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहते हैं ना कि युवाओं में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का सही उपयोग कर लिया जाए, वो ही इस समय, जिसे कहते हैं मानव संसाधन, ये किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है।
0: बिल्कुल,
1: तो अगर उस संसाधन का उपयोग हम एक सही दिशा में उस ऊर्जा को लेकर के जाएंगे तो प्रत्येक का फायदा होगा। तो इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर ले लेने की होड़ सारे राजनीतिक मंचों पर मची है।
0: खैर, राजनीतिज्ञ अपनी तरफ से अपनी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम अब हमारे युवा साथियों पर अगर आए बात करें उनकी, तो आपको नहीं लगता कि अब भी हमारे युवा साथी कहीं ना कहीं चुप बैठे हैं?
1: नहीं, चुप तो बैठे हैं, और वो हमें इसलिए भी लगता है आस्था, क्योंकि हमारे सामने मीडिया के द्वारा जो एक युवा वर्ग की तस्वीर पेश की जाती है वो सही तस्वीर मुझे नहीं लगती, क्योंकि मीडिया जिन युवाओं को ढूंढ पाता है वो खासकर शहरी युवा होते हैं, मेट्रो शहरों में रहने वाले युवा होते हैं, और वो मुश्किल से 10 या 12%

0: ही होते हैं
1: ये अंतरा जी
0: हमारे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रूप मीडिया में दिखाया जा रहा है युवाओं का, वास्तव में हमारी युवा शक्ति वो नहीं है,
0: बिल्कुल
1: उससे बहुत ऊपर निकल चुकी है, चाहे बात हो सोच की, चाहे बात हो किसी भी तरह की क्रिएटिविटी की, जिसको कहते हैं कर्म की।
0: जी,
1: कर्मठ भी है आज का युवा, ऐसा नहीं है कि उसे अगर आलसी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो कार्य नहीं करता।
0: बिल्कुल,
1: शायद किसी और तबका कह लो या वर्ग कह लो, किसी भी उम्र के पड़ाव पर एक, लेकिन अगर युवा है तो उसमें जो शक्ति हमें देखने को मिलती है, जो कर्मठता हमको देखने को मिलती है, या जो लगनशीलता हम देख रहे हैं, उसे वास्तव में आज का मीडिया सामने नहीं ला पा रहा है।
0: बिल्कुल सही है, क्योंकि और इसके पीछे कारण ये है आस्था कि जितने भी मीडिया चैनल हैं उनके कार्यालयों की हम बात करें तो वो मेट्रो शहरों में है, तो उन्हें यदि युवाओं की तस्वीरें दिखानी है तो वो अपने आसपास ही ढूंढेंगे।
1: बिल्कुल,
0: मुझे नहीं लगता कि किसी एक खास कवरेज के लिए किसी एक मीडिया पर्सन को किसी गांव में भेजा जाए कि अब युवाओं की तस्वीर लेकर आओ।
1: गांव में तो दूर, चलिए ठीक है, गांव में अगर उम्मीद कम की जाए, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी एक सोच की बात है, तो आप आसपास के कस्बे में जाइए या किसी छोटे शहर में जाकर देखिए। जरूरी नहीं है कि महानगरों में जो तस्वीर पेश की जा रही है हमारे युवा वही हो। आज आप देखेंगे गांवों की आप कह रही हैं कि मीडिया नहीं पहुंच पा रहा है, अगर मीडिया जाए तो शायद वहां एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी युवाओं की। शायद पढ़ने में हमारे युवा वहां इतने सक्षम नहीं हो या उन्हें उतने साधन नहीं मिल पा रहे हो, लेकिन आप देख पाएंगे कि वहां पर उनका मैनेजमेंट जो है, कृषि में कह लीजिए भले ही या आसपास के कार्यों में कह लीजिए, उनका मैनेजमेंट किसी भी शहरी युवा से बेहतर होगा।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही आस्था। और यदि हम बात करें हमारे ग्रामीण युवाओं के साथ ही अगर शहरी युवाओं की भी हम बात करें तो एक कस्बाई युवा भी छूट जाता है बीच में।
1: बिल्कुल,
0: मतलब तीन प्रकार की श्रेणियां मुझे लगती है। एक तो बिल्कुल महानगरीय युवा है जिसके लिए या तो विदेश जाना ही सबसे दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी बात हो जाती है, या तो फिर वो बहुत धनाढ्य है, उसका खुद का अपना एक व्यापार व्यवसाय सेट है तो फिर उसे दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, पैसे के बल पे वो सब कुछ खरीदता है, या फिर कैसे भी करके महत्वाकांक्षा से सब कुछ पाता है। ग्रामीण युवा ये है कि उसे किसी का ही ध्यान नहीं है, वो उपेक्षित है, वो उपेक्षा का मारा स्वयं को मान लेता है और न उसके पास बहुत ज्यादा साधन है या कुछ। लेकिन जो कस्बाई युवा है, खासकर इसमें वो कस्बाई युवा आते हैं आस्था जो गांव से शहर की ओर आए हैं कुछ साल पहले, या फिर उनकी पहले की पीढ़ी गांव छोड़कर शहर आई हुई है, ऐसे युवाओं की स्थिति बड़ी गंभीर है क्योंकि वो अपनी बराबरी करना चाहते हैं शहरी युवाओं से लेकिन उनकी जड़ें बैठी हुई है गांवों
1: में।
0: तो ऐसे खासकर मुझे ऐसा लगता है ये जो मध्यम वर्ग के जो युवा हैं, जो न ठीक गांव के हैं, जो न ठीक शहरी हैं, उनको सबसे ज्यादा टारगेट बनाया जाता है छात्र राजनीति में, या तो भीड़ बढ़ाने के लिए, या फिर आपका अनुमोदन करने के लिए, या फिर किसी भी पद पर उन्हें मोहरा बना करके अपना काम किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इस विषय में आप क्या कहेंगे?
1: मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि युवाओं को बजाय मोहरा बनाने के, हम जानते हैं कि युवा शक्ति, ऐसा नहीं है कि हमारे युवा समझते नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्क है कि कोई समझाने वाला चाहिए, उन्हें सही राह पर लाने वाला चाहिए। हमारे युवाओं को ये पता होना चाहिए कि भले ही वो कस्बे से आए हो, किसी गांव से शहर की तरफ आए हो, लेकिन वो जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे युवा साथियों के लिए बनती है वो ये कि वो खुद को छोटा समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पहले से शहर में रह रहे युवा हैं तो हम इनके बीच शायद कहीं नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ हम हमारे युवा साथियों को ये बताना चाहेंगे कि किसी भी तरह से अपने आप को कमतर न समझें।
0: बिल्कुल,
1: ये जरूरी है कि आप खुद को उनके समकक्ष रखें। आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आप में अपनी कोई क्वालिटी होगी, आपके अपने गुण हैं जिसकी बदौलत आप आज यहाँ तक पहुंचे।
0: बिल्कुल सही बात है। और जहां तक हम बात करें, यदि राजनीति के अलावा भी हम युवाओं की बात करें, तो किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़ने वाले युवा या फिर किसी भी गिरोह से जुड़ने वाले युवा भी साधारणतः यही होते हैं जिनका अपना कोई आधार नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: वो न ग्राम से है, वो न शहर से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति प्रत्येक स्थान पर हावी है, चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे वो महाविद्यालय की राजनीति हो, चाहे किसी भी नकारात्मक प्रकार के साधन के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध करने वाली राजनीति हो। और ऐसा मुझे लगता है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो भी ये सोचेंगे कि खुद को किसी भी प्रकार से राजनीति का मोहरा नहीं बनने देना।
1: बिल्कुल,
0: अब आज्ञा दीजिए, युवा और विकास कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। अंतरा करवड़े
1: और आस्था उपमन्यु का नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था राजनीति और युवा शक्ति। वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे अंतरा करवड़े एवं आस्था उपमन्यु। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है संचार तकनीक से शिक्षा जगत में क्रांति, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: साथियों, युग और संचार, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे संचार तकनीक से शिक्षा जगत में क्रांति इस विषय पर। साथियों, ये विषय जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो इन दिनों हमारे जीवन में कुछ इस कदर से शामिल हो चुका है कि उसके बिना किसी भी काम के पूरा होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं तकनीक से होने वाली क्रांति की और उस क्रांति से बदलने वाले हमारे जीवन की। अब हमारे रोजाना के जीवन में ही देखें साथियों, तो डाकिये तो केवल बिल और पत्रिकाएं इन्हें ही बांटते हुए नजर आते हैं। हमारा सारा जरूरी संवाद हो जाता है मोबाइल के जरिए या फिर ईमेल लिखकर, है ना? और साथियों, इसके आगे चलें, तो अब न हर काम के लिए बैंक जाना होता है, न ही किसी बिल के भुगतान के लिए घंटों कतार में खड़े होने की मुसीबत। साथियों, तकनीक ने हमें कितनी सारी सुविधाएं दी हैं। समय की बचत, ऊर्जा की बचत, साथ में कम समय में ज्यादा काम करने के चलते हमारी जीवन शैली में सुधार, ये भी तो तकनीकी क्रांति की ही देन है। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में हम तकनीकी क्रांति के शिक्षा जगत पर असर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि हम बात करें आज की शिक्षा प्रणाली की, तो यहाँ पर तो तकनीक अपने पूरे पूरे वजूद को सिद्ध कर ही देती है। यदि आपके नन्हे बच्चों की स्कूल जाने की उम्र हो गई है, तो सबसे पहले देखी जाती है नामी स्कूल्स की वेबसाइट्स, याद है ना आपको? साथियों, पहले तो स्कूल जाने की उम्र ही 5 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन आज तो 5 वर्ष के बच्चे कम से कम 2 साल की प्राथमिक शिक्षा हासिल कर चुके होते हैं। स्कूलों का चुनाव वेबसाइट के जरिए करने से स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं, वहां की शिक्षिकाएं, स्कूल की इमारत और पिछला रिकॉर्ड तक आपको मालूम हो जाता है। तो साथियों, ऐसे में अभिभावकों को बहुत सारे स्कूलों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो भी डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, उसके हिसाब से सर्च करने के पश्चात इनमें से जो 2 या 3 स्कूल सर्वश्रेष्ठ लगते हैं, वहां पर अभिभावक प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं और अपने बच्चे के लिए उपयुक्त स्कूल का चयन हो जाता है। खैर साथियों, तकनीक ने तो हमारा रसोई घर भी बदल दिया है। माइक्रोवेव की बीप के बिना आजकल हर किचन अधूरा सा लगता है। वहीं नए जमाने के वाटर प्यूरिफायर्स ने मटकों का स्थान लेना शुरू कर दिया है, और ये तकनीक का साथ ना हो साथियों, तो हमारी कामकाजी बहनें इतनी जल्दी रसोई से निपट ही ना सके। रसोई हो या पढ़ाई, आजकल तकनीक का बोलबाला हर जगह है। तो चलिए, इसी तकनीक से संवरती जिंदगी की खुशियों को हम अपने जीवन में स्थायी स्थान देते हैं। जब से तकनीक का सारा मामला डिजिटल हुआ है, हमारे आसपास विविध गैजेट्स की भी बाढ़ सी आ गई है। कहा जाता है कि एक आधुनिक युवा के पास मोबाइल, लैपटॉप, आईपॉड, ये सारे गैजेट्स तो होते ही हैं। संगीत सुनना हो या अपना कोर्स डाउनलोड करना हो, अपने मित्रों के साथ चैटिंग का लुत्फ उठाना हो या फिर किसी विदेशी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन देना हो, इंटरनेट के साथ ये सब कुछ बहुत आसान है। और यही इंटरनेट इन दिनों शेयर ट्रेडिंग के जरिए हमारी अनेक बहनों के लिए उनकी घर बैठे की कमाई का जरिया भी बन चुका है। तो साथियों, यदि शिक्षा जगत की बात करें, शिक्षा जगत में हो रही तकनीकी क्रांति की बात करें, तो एक बार जब आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल गया, इसके बाद शुरू होता है सिलसिला असाइनमेंट्स का, प्रोजेक्ट्स का और बहुत सारी अलग अलग प्रतियोगिताओं के दौर का। यदि आपके बच्चे को स्कूल में कोई कविता ही गाकर सुनानी है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसके पाठ्यक्रम में से ना हो, तब आपको कविता की पुस्तकों के लिए किसी पुस्तकालय में जाकर उस पुस्तक के पन्ने पलटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई विशेष वेबसाइट्स पर क्लिक करना है, अपनी पसंदीदा कविता चुननी है, सिखाना है उसे अपने बच्चों को और हो गया आपका काम। तो साथियों, स्कूली पढ़ाई के बाद आगे चले हम तकनीक के साथ शिक्षा की क्रांति, इस विषय पर यदि हमारे युवा साथियों की बात करें तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। अब अपने कमरे में बैठकर किताबों में सर खपाते हुए, स्पेलिंग्स याद करते हुए और नोट्स बनाते हुए युवा विद्यार्थी हमें शायद ही कहीं देखने को मिले। अपने कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट्स बनाते हमारे युवा साथी अपनी प्रॉब्लम्स को चैट रूम्स में सुलझाते हैं। अपने कोर्स के चयन के लिए इनके पास पूरे विश्व में फैले अपने दोस्त होते हैं। साथ ही किसी भी यूनिवर्सिटी में किस तरीके का कोर्स उपलब्ध है, वहाँ के फैकल्टीज ने कितनी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, इन बातों से लेकर पिछले रिकॉर्ड की छानबीन और प्रोस्पेक्टस तक ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है। तो साथियों, एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ाई बड़ी आसान, तकनीकी रूप से समृद्ध और खुशनुमा हो चली है। आजकल प्रोफेसर्स भी तो अपने स्टूडेंट से इंटरनेट पर FTP अपलोडिंग से लगाकर लिंक एक्सचेंज जैसे गुर सीख ही रहे हैं। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का आगाज तो काफी समय पहले तभी हो गया था जब कंप्यूटर शिक्षा ने अपना अस्तित्व बनाया था। अनेक अनेक भाषाओं और प्रोग्राम से समृद्ध ये तकनीक आज हमें सफलता के उस मुहाने पर ले आई है साथियों, जहां पर सब कुछ चमत्कार जैसा लगता है। हमें टाइम टेबल मिलता है ईमेल से। कई स्कूलों में, कॉलेजों में विद्यार्थी और शिक्षक साथ मिलकर प्लाज्मा टीवी या लैपटॉप पर काम करते हैं। इनमें कई इलेक्ट्रॉनिक प्रश्न पत्रों के जरिए कक्षा में ली जाने वाली टेस्ट का परिणाम भी तुरंत बिना किसी भूल चूक के हमारे सामने आ जाता है। साथियों, कई स्कूलों में इस प्रकार के परिणाम और विद्यार्थी की संपूर्ण प्रगति को सीधे उनके पालकों को मेल भी कर दिया जाता है, जिससे शिक्षा में पारदर्शिता बनी रह सके। अब साथियों, यदि हम बात करें एक ऐसी तकनीक की जिसमें स्कूल या कॉलेज जाना ही न पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ श्रोताओं, इन दिनों सिर्फ स्कूल या कॉलेज जाने वाले युवा ही विद्यार्थी नहीं रह गए हैं। अनेक नौकरी पेशा, अफसर और ऊंचे ओहदे वाले युवा साथी भी शिक्षा के जरिए अपना करियर संवार रहे हैं। साथियों, इन दिनों किसी नौकरी पेशा व्यक्ति को भी यदि अपनी पढ़ाई जारी रखनी है तो वो सहारा ले सकता है ऑनलाइन कोर्सेज का। यानी जो पाठ्यक्रम पहले पत्राचार के द्वारा पढ़ाए जाते थे, अब उनकी सारी जानकारी, पूरा पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था भी कंप्यूटर पर ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध है। साथियों, आप में से अधिकांश को ये तो मालूम होगा ही कि भारत की सबसे बड़ी प्रबंधन प्रवेश परीक्षा CAT इन दिनों ऑनलाइन हो चुकी है। तो ऐसे में बिना किसी कक्षा के जब ये सारे के सारे होनहार विद्यार्थी तकनीक को अपना गुरु मानकर शिक्षा क्रांति के जरिए आगे बढ़ेंगे, तब निश्चय ही आने वाला समय सफलता और चमत्कारों से भरा होगा। साथियों, आजकल परीक्षा फल SMS पर उपलब्ध है। संगीत से लगाकर तकनीकी और चित्रकला से लगाकर फैशन डिजाइनिंग जैसे पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में जरूरत है इस नए तरीके को अपनाने की। साथियों, यही व्यवस्था, यही बहस हमेशा से होती आई है जब भी कोई नई तकनीक हमारे सामने सुविधाएं लेकर आती है। हम कई बार पुरानी व्यवस्था से इसलिए भी चिपके रहते हैं क्योंकि हम बदलाव से अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा साथियों कि ये क्रांतिकारी बदलाव तो हम सभी के भले के लिए हैं। ऐसे में साथियों तकनीक का साथ जब शिक्षा जगत में क्रांति कर रहा है तो हमें भी खुले मन से इन नए तरीकों का स्वागत करना चाहिए। आखिर बदलाव ही तो शाश्वत है साथियों। तो चलिए हम तकनीक और शिक्षा के संगम के साथ शिक्षा क्षेत्र में नए आयामों को चुनें।
0: साथियों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक था संचार तकनीक से शिक्षा जगत में क्रांति और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। दोस्तों जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। श्रोता साथियों, स्वागत है आप सभी का समय एक से दो की सभा में। स्वीकार करिए आपकी रेडियो दोस्त ज्योति का दुआओं से भरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस समय आप रेडियो वरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं और प्ले स्टोर पर जाकर RVA ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। तो जल्दी से, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड करिए और सभी से साझा भी करिए। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मंदर्पण और अंत में पर्यावरण। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम सर्वधर्म विचार में हार्दिक अभिनंदन है और अभी समय एक से दो की वार्ता का शीर्षक है अमरनाथ की आग और प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोर जी और यह प्रस्तुति है सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बंडोर एसपीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है अमरनाथ की आग। मित्रों, आतंकी हमले की धमकियों के बीच इस वर्ष पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की गई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे में 3,157 श्रद्धालु शामिल थे। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था 96 छोटी तथा बड़ी गाड़ियों में सवार होकर बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए निकला। पर्यटन मंत्री जीए मीर ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को पारंपरिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मित्रों, उत्तराखंड की मची तबाही और आतंकियों की धमकी के बाद लग रहा था कि अमरनाथ यात्रा प्रभावित होगी, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश को देखते हुए लग रहा है कि इन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। अमरनाथ पर आतंकवाद का साया मंडराता रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले कश्मीर में हुए आतंकी हमले से यात्रा पर भी आतंक के बादल मंडरा रहे थे। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान यात्रा की सुरक्षा में तैनात है। 1,00,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी करीब 55 दिनों तक लखनपुर से लेकर गुफा तक भक्तों की सेवा में लगे रहेंगे। कड़ी सुरक्षा के बावजूद रामबन जिले में गोलीबारी की घटना के बाद कश्मीर घाटी और राज्य के कुछ अन्य इलाकों में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी। गुली इलाके में गोलीबारी की घटना के बाद कश्मीर घाटी के अधिकतर भागों में कर्फ्यू लगाया गया। अमरनाथ यात्रा 2 दिनों तक रुकी रहने के बाद फिर जम्मू से शुरू हो गई। मित्रों, रामपुनियानी जी कहते हैं, अमरनाथ यात्रा कश्मीर घाटी की प्रमुख धार्मिक पर्यटक गतिविधियों में से एक है। इस यात्रा का संचालन स्थानीय नागरिकों, जिनमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे, द्वारा किया जाता था। सन 2001 में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया गया और ठीक ठाक चल रही व्यवस्थाओं को बोर्ड के हवाले कर दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल थे व राज्यपाल के प्रमुख सचिव इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। धीरे धीरे बोर्ड अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने लगा और वे काम भी करने लगा जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल होने से उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बोर्ड ने पहलगाम गोल्फ कोर्स पर निर्माण कर डाला। सन 2005 में नियमों के विपरीत बोर्ड को यात्रियों के उपयोग के लिए वन भूमि के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। मजे की बात तो यह है कि बोर्ड की इस गैरकानूनी मांग को मंजूरी देने वाली वन अधिकारी बोर्ड के CIO की पत्नी थी। इस इजाजत से ही उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसके गंभीर नतीजे आज हमारे सामने हैं। राज्य सरकार ने शुरू में वन विभाग के इस निर्णय को गलत ठहराया, परंतु हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। इसके बाद राज्य सरकार दबाव में आ गई और उसने उक्त भूमि बोर्ड को अंतरित कर दी। बाद में यह अंतरण रद्द कर दिया गया। मित्रों, बिना सोच विचार कर लिए गए निर्णयों की श्रृंखला का नतीजा यह है कि कई दशकों की मेहनत से स्थापित की गई शांति के हिंसा और अव्यवस्था में बदल जाने का खतरा पैदा हो गया है। यह जानना दिलचस्प होगा कि अमरनाथ यात्रा हमारे देश के कई अन्य धार्मिक आयोजनों की तरह भारत की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे मालिक ने सन 1850 के दशक में की थी। इसी के बाद से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। मालिक परिवार के सदस्य सन 2001 तक यात्रा के इंतजाम देखते थे। यात्रा का प्रबंध श्राइन बोर्ड के हाथों में आते ही बोर्ड ने पूरी यात्रा और उसके प्रबंधन को भगवे रंग में रंगना शुरू कर दिया। यात्रा का पूरे देश में जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया और नतीजे में तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी उछाल आया। जहां सन 1989 में अमरनाथ यात्रियों की संख्या 12,000 थी, वहीं सन 2007 में 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लिया। जहां पहले यात्रा साल में केवल 2 सप्ताह में संपन्न की जाती थी, उसकी अवधि बढ़ाकर 10 सप्ताह कर दी गई। इस सबका विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव साफ दिखलाई पड़ रहा है। सैकड़ों टन मानव विष्ठा, प्लास्टिक और पॉलीथीन के कचरे ने निकट के अद्वितीय रूप से सुंदर लिट्ठर नदी को एक गंदे नाले में बदल दिया है। कुछ वर्ष पूर्व पर्यावरण प्रदूषण ही शिवलिंग के पिघलने का कारण भी बना था और उस पर सूखी बर्फ डालकर उसके अस्तित्व को तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए बचाए रखा गया था।
जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित रखने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर यात्रा का आक्रामक ढंग से प्रचार कर यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने में योगदान दे रही है। इस क्षेत्र के पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति होगी। इन सब मुद्दों से बेखबर अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रियों की संख्या बढ़ाने और अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में जुटा हुआ है। राज्यपाल के अध्यक्ष होने का लाभ उठाकर बोर्ड ने पहलगाम विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी खुद ही करना शुरू कर दिया है। श्राइन बोर्ड को जमीन अंतरित करने के सरकार के आदेश से पहले से ही तनाव और आतंकग्रस्त घाटी के मुसलमानों में भय की एक नई लहर फैल गई। उन्हें यह डर था कि इस भूमि पर हिंदुओं को बसाकर घाटी के मुस्लिम बहुल चरित्र को बदलने का प्रयास किया जाएगा। इस भय का एक कारण यह भी था कि कुछ वर्ष पहले तत्कालीन इसराइली विदेश मंत्री शिमोन पेरेस ने भारतीय जनता पार्टी नेता एलके आडवाणी को सार्वजनिक रूप से ऐसा करने की सलाह दी थी। उन दिनों आडवाणी देश के गृहमंत्री थे। घाटी के स्वस्फूर्त विरोध प्रदर्शनों का लाभ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरवादी धड़े के नेताओं ने उठाया। सईद अली शाह गिलानी ने विरोध को अलगाववादी प्रदर्शनों में बदल दिया। मित्रों, यह सचमुच बहुत विडम्बनापूर्ण है कि कश्मीर, जो भारतीय संस्कृति की विविध धाराओं का शानदार संगम है, आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। कश्मीरियत में वेदांत के मूल्य, सूफी संतों की शिक्षाएं और गौतम बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत शामिल हैं। कश्मीर 60 वर्ष पहले भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी हुआ था। इन 60 वर्षों में विलय की संधि की सभी शर्तों का जमकर उल्लंघन हुआ है। हर समस्या का समाधान सेना के जरिए ढूंढने की कोशिश की गई। यह कितना दुखद है कि सेना, जिसका काम हमें बाहरी शत्रुओं से बचाना है, कश्मीर में भारत सरकार की नीतियों को लागू करने का एकमात्र प्रभावी तंत्र है। हमें इस विषय पर गंभीरता से आत्मचिंतन करना होगा। मित्रों, जम्मू के लोगों की समस्याओं को भी वर्षों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि जम्मू के लोग यह मानने लगे हैं कि केंद्र सरकार केवल घाटी की भलाई के बारे में चिंतित रहती है। जम्मू क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयत्न किए जाने चाहिए। अलगाववादी तत्वों की भड़काऊ हरकतें और सांप्रदायिक तत्वों की राजनीति से मुकाबला करने का एकमात्र तरीका यह है कि बंदूक की नहीं, मेल मिलाप की भाषा में बात की जाए। समाज के असंतोष हिस्से के साथ रचनात्मक बातचीत के रास्ते निर्मित किए जाए और शांति वापस लाई जाए। अतीत में हुई गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें स्वीकार किया जाए। देश में कभी भी किसी धार्मिक स्थल को वन भूमि नहीं दी गई और न ही कहीं मंदिरों के ट्रस्टों या दरगाहों के प्रबंधन बोर्डों का राजमंदिर या दरगाहों की सीमाओं के बाहर चलने दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड तो मानो अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग को अपनी जागीर समझने लगा है। मित्रों, कश्मीरियत यदि वापिस आएगी तो अपने साथ शांति, सौहार्द और सामाजिक आर्थिक उन्नति भी लाएगी। कश्मीरियत को वापिस लाने के लिए जो भी जरूरी हो किया जाना चाहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था अमरनाथ की आग, और प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोर जी, और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संसार केंद्र इंदौर की। साथियों, प्रभु की कृपा और आशीष आप सभी पर सदा बनी है और बनी रहेगी, क्योंकि आप हमारे साथ भक्ति गीत सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। तो आइए अब हम सुने एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप सभी का कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण में स्वागत है और आज की वार्ता का शीर्षक बहुत ही रोचक है, जो है सास भी कभी बहू थी, जिसके लेखक है स्वर्गीय माइकल होजेस जी और प्रस्तुत करता है अर्पणा सिंह।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है सास भी कभी बहू थी। लेखक हैं माइकल होजेस, प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। श्रोता साथियों, हमारे समाज में कई एक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिसमें से एक है सास बहू के रिश्ते में सास बहू का आपस में मिलके रहना। देखा जाए तो सास बहू किसी भी विकसित होते हुए घर की नींव होती हैं। यदि नींव में ही एकाग्रता और समानता न हो तो उस नींव पर टिका भवन सुरक्षित और अधिक समय तक टिका नहीं रह सकता। हालांकि पूर्व समय की अपेक्षा आज सास बहू के संबंधों में बहुत हद तक समझदारी आई है और उनके संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि आज संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त प्राय हो सी गई है। आजकल एकल परिवार का चलन बढ़ गया है, जिस वजह से सास ससुर विशेषकर सास के होते हुए भी उसका अस्तित्व नगण्य होकर रह गया है। यदि कहीं पर संयुक्त परिवार अभी भी है तो उनकी संख्या नाम मात्र की है। आज की बहू ने सास के साथ अपने संबंध सहज रखने और उसके साथ रहने की अपेक्षा उससे अलग रहकर उसके अस्तित्व को ही नकार दिया है। बावजूद इसके कुछ बहुएं जब भी अपनी सास से मिलती हैं तो उन्हें अपना पूरा प्रेम और आदर सम्मान देती हैं, तो कुछ बहुएं इसके विपरीत ही आचरण करती हैं। उन्हें लगता है अब जब हम अलग ही रहते हैं तो हमें अपनी सास से क्या लेना देना है, वो अपनी जिंदगी जिए और हम अपनी जिंदगी जिए। जब हम उनकी जिंदगी में किसी प्रकार का दखल नहीं देते हैं तो उन्हें भी हमारी जिंदगी में किसी प्रकार के दखल रखने का अधिकार नहीं है। श्रोता साथियों, जिस जगह और जिस घर में आज भी संयुक्त परिवार निवास करता है और वहां पर यदि सास बहू की आपस में नहीं पटती है तो उन्हें जल्द ही अपने संबंध सुधारने के प्रयास करना चाहिए, अन्यथा घर में फैला तनाव घर की शांति को भंग कर देता है। आइए अब जरा एक नजर इस विषय पर भी डालते चलें कि आखिर सास बहू के रिश्ते में अधिकतर खट्टास क्यों रहती है। यदि इस प्रश्न पर गौर किया जाए तो स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। अधिकतर सास बहू के रिश्ते में अपने वर्चस्व को लेकर कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न होती है। सास ये मानकर चलती है कि उसके घर में उसका वर्चस्व है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है, और बहू ये मानकर चलती है कि उसके घर में उसकी सास का वर्चस्व पुरानी बात हो गई है, उस घर में अब उसका महत्व है और अब उसकी चलेगी। यही वो स्थिति होती है जब सास बहू के संबंधों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। दोनों को ही एक दूसरे की जायज और नाजायज बातें अपने विरुद्ध और अपने ही हित के विरुद्ध मालूम पड़ती है। दोनों को ही एक दूसरे के प्रति ऐसा मालूम होता है जैसे उसके सामने वाली उसकी प्रतिद्वंदी है और इस नाते वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इन तमाम बातों के मूल में जो सबसे अहम बात है वो ये है, बेटे अर्थात पति पर एकाधिकार जमाने की चेष्टा अथवा प्रयास करने की। श्रोता साथियों, शादी के पहले ये होता है कि बेटा बेटा रहने के कारण पूरी तरह से अपनी माँ पर आश्रित और निर्भर रहता है। उसके सुबह उठने, नाश्ता आदि से लेकर अपनी नौकरी या दुकान पर चले जाने तक, दोपहर के खाने से लेकर रात के खाने और फिर सो जाने तक माँ का साया रहता है। इसके अलावा उसके कपड़े आदि धोने से लेकर उसकी बीमारी में देखभाल भी उसकी माँ ही करती है। जाहिर सी बात है, जब बेटा इन सारी चीजों के लिए माँ पर निर्भर है तो माँ भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां खूब समझती है और निभाती है। इसलिए जब बहू का गृह प्रवेश होता है तो कुछ माएं इसके लिए तैयार नहीं होती। अब उन्हें बेटे की जिम्मेदारियों से निजात मिल जाएगी, जबकि कुछ माएं इस स्थिति के लिए तैयार नहीं होती हैं और अपने बेटे की जिम्मेदारी किसी और के सर पर जाते देख उसका ममता भरा मन इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता है। उसे ये लगता है कि अब उसके इस एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बेटे की पत्नी यानी कि बहू भी यही सोचती है कि उसके एकाधिकार पर सास अपना हक जता रही है, उसके एकाधिकार को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है, जबकि दोनों को ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि उन दोनों को ही ये भ्रम है कि सामने वाली उनके एकाधिकार पर डाका डाल रही है। उनके इस भ्रम को तब और भी बढ़ावा मिल जाता है जब कभी बेटा किसी बात पर सास या बहू में से किसी एक का पक्ष लेता है। अब सास और बहू दोनों को ही ये भी समझना चाहिए कि बेटा एक ही समय और एक ही बात पर दोनों का पक्ष एक साथ तो ले नहीं सकता, उसे किसी न किसी एक का पक्ष लेना पड़ेगा।
अपने वर्चस्व की लड़ाई में उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है और वे किसी भी विषय को निष्पक्ष दृष्टि से नहीं देख पाती हैं। श्रोता साथियों, जबकि होना ये चाहिए कि सास को ये सोचना चाहिए कि वो कभी बहू थी, और जब वो भी बहू थी तब अनजाने या नादानी में उसके मन में भी अपनी सास के प्रति ऐसे विचार आए थे जैसे आज उसकी बहू के मन में उसके प्रति आ रहे हैं। सास को इतिहास की पुनरावृत्ति मानते हुए अपनी बहू की क्रिया को नजरअंदाज कर देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि जैसा तुम सोचती हो वैसी कोई बात नहीं है। तुम उसकी पत्नी हो और अपने पति पर तुम्हारा ही अधिकार है और सदा ही रहेगा। तुम्हारे और मेरे अधिकार में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे अधिकार पत्नी के हैं जबकि मेरे अधिकार माँ के हैं। हम दोनों एक दूसरे के एकाधिकार पर कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, और बहू को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। बहू को सोचना चाहिए कि जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म देकर इतना बड़ा किया है, जिससे वो पैदा होने के पहले से जुड़ी हुई है, उससे क्या वो एक ही झटके में अलग हो जाएगी। इस संसार में प्रत्येक विषय अपना समय लेता है और समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक समस्या या विषय को अपना पर्याप्त समय लेना या देना चाहिए। कई बहुएं तो इस विषय को तब समझ पाती हैं जब वे भी सास बन जाती हैं। जिन घरों में और जहां पर सास बहू के रिश्ते सामान्य हैं, वहां पर तो वे दोनों ही प्रशंसा के योग्य हैं और अनुकरणीय हैं। लेकिन जिन सास बहू के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, उन सास बहू को अपने रिश्ते और अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में शीघ्र सोचना चाहिए। देखा गया है कि जिस घर में सास बहू के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, उस घर में अशांति और कलह अपने पैर पसार रही है, और जिस घर में सुख शांति नहीं होती उस घर के लोगों का विकास रुक जाता है। साथ ही अशांति से कई एक समस्याओं का जन्म होता है। यीशु मसीह ने भी कहा है, जिस घर में शांति होती है उस घर में मैं निवास करता हूँ। इसलिए प्यारे श्रोता साथियों, सास बहू के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जिन्हें बहुत साज संभाल की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही से ये टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, और दुनिया इनका टूटना देखकर रह जाती है। इसलिए सास को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह माने और उसे अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार करे, दुलारे। बहू की कही गई बातों का गलत अर्थ निकालकर उसे दिल पर न डाले, और बहू भी अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दे, उनका उचित आदर सम्मान करे और उनकी बात का अन्य अर्थ निकालकर बात का बतंगड़ ना बनाए। जैसे वो अपनी माँ के साथ रहती है वैसे ही सास के साथ भी रहे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था सास भी कभी बहू थी, और जिसके प्रस्तुतकर्ता थी अर्पणा सिंह और लेखक थे स्वर्गीय माइकल हॉजेस जी। दोस्तों, आइए सुनते हैं अब एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोताओं, वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम मन दर्पण का और अभी की सभा की वार्ता का शीर्षक है प्रेम ही जीवन का आधार है और जिसके लेखक व प्रस्तुतकर्ता है स्वतंत्र कुमार ओझा जी। श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम।

हमारे सभी श्रोता मित्रों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। मन दर्पण कार्यक्रम का शीर्षक हमने आज रखा है प्रेम ही जीवन का आधार है। साथियों, अब दिसंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है और इस महीने के पहले हफ्ते से ही छमाही परीक्षा, जिसको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कहते हैं, इसका वक्त आ गया है। और फिर आज के समय में इतने अधिक कैरियर कोर्सेस हो गए हैं कि शिक्षा का मापदंड और स्तर पहले से बहुत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, युवा लड़के लड़कियों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है और इसके कारण क्या हुआ है कि एक गला काट कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है और इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण परिश्रम पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है। अब इधर घर में माता पिता और परिवार के जो अन्य परिजन हैं वो भी इन दिनों में थोड़े से तनाव में इस कारण भी रहते हैं कि बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छी परसेंटेज और रैंक के लिए भी बहुत बहुत बहुत पढ़ाई करनी है। अब इसी कारण क्या होता है कि किसी किसी परिवार के सदस्य जो हैं वो अपने बच्चों पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। कभी बाहर जाएं और आने में देर हो जाए तो फिर थोड़ा सा डांटने लगते हैं। अब देखिए ना, हर कोई तो पढ़ाई में टॉप पर हो ही नहीं सकता, नंबर वन तो हो ही नहीं सकता, और ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ाई और अपने विषय के अलावा उस लड़के या लड़की की अन्य हॉबीज हो सकती हैं, रुचियां हो सकती हैं, जैसे साहित्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इनका रुझान कुछ ज्यादा होता है अपनी पढ़ाई के बावजूद। तो माता पिता को ये भी देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस दिशा में जा रहा है। पढ़ाई तो खैर उसे करना ही है, लेकिन उसके और शौक क्या हैं, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान उन्हें रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई के साथ अपनी उनकी अच्छी रुचियों के लिए उन्हें एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रोताओं, सभी मानते हैं कि पढ़ाई एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक तरीका है, लेकिन इनसे कहीं बढ़कर है कि आपका बच्चा समझदार बने, एक अच्छा इंसान बने। अब मान लें कि परीक्षा डॉक्टरी पास करने की है और उसमें 90% से भी ज्यादा नंबर भी आ गए हैं, लेकिन आगे जाकर अगर वो पेशे से एक स्वार्थी डॉक्टर बन गया तो क्या होगा? तो सभी कहेंगे कि ये कैसा डॉक्टर है, ये तो बस किसी भी तरह कमाई को ही अपना सब कुछ मानता है। तो इस तरह के भी कुछ वाकये, कुछ किस्से सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पढ़ाई के साथ अपने भाई के साथ अखबार बेचते थे, जी हाँ, और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन या गांधी जी विद्यार्थी जीवन में बेहद मामूली स्टूडेंट थे, बहुत मामूली छात्र थे, लेकिन आगे जाकर दोनों ही अपनी शताब्दी के, अपनी सेंचुरी के महानायक कहलाए, महामानव कहलाए। ये उदाहरण है। कहने का मतलब यही है कि शिक्षा, पढ़ाई, ये तो बेहद जरूरी है ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में समझदार बनना। इसमें हमारी हर क्षण सहायता करता है हमारा ये अपना मन, जो हमारे भीतर धड़कता है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर हावी रहता है, जो हमारे हर क्षण पर नजर रखता है। बस यही समझ लेना है कि अपने शुभ अशुभ कार्य और व्यवहार पर समझदारी से अपनी आंख, मन की आंख को खुली रखें और नजर रखें।
और साथियों ऐसे अच्छे उपयोगी संस्कार देने में माता पिता या फिर एक अच्छे गुरु की भूमिका बेहद उपयोगी और असरकारक सिद्ध हो सकती है। अब होता यह है कि किशोर उम्र है, वो थोड़ी सी इमोशनल होती है, भावुक होती है, थोड़ी सी नासमझी भी होती है उनमें। इस उम्र में सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसके विपरीत डांटने फटकारने से किशोर ढीठ बन जाते हैं, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। वो इसलिए कि उनके मन में ये सच्चाई घर कर लेती है कि माता पिता या गुरु क्या कर लेंगे अपना, अरे ज्यादा ज्यादा डांट लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो इस नाजुक मामले में बच्चों या किशोरों के अभिभावकों को खुद समझदारी से काम लेना होगा। इसी विषय पर आइए एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, गुरु की भी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। गर्मियों के दिन थे, एक स्टूडेंट अपने टीचर की अनुमति लेकर एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने गांव गया। गांव पास ही था, पैदल जाना था। चलते चलते थोड़ी थकान हुई और जोरों की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा, बाईं दिशा में एक कुआं देखा। वहां वो खुश हुआ जाकर के, उसने उस कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाई। पानी शीतल और मीठा था। उसने विचार किया, जब वापस छुट्टियों के बाद घर जाऊंगा ना, तो इस कुएं का पानी गुरुजी के लिए भी पानी की थैली में, जिसमें पानी ठंडा और ताजा रहता है ना, उसमें लेकर के जाऊंगा। छुट्टियां खत्म हुई, विद्यार्थी उसी कुएं का पानी लेकर अपने अध्यापक के पास गया। उन्होंने पानी पिया और शिष्य की इतना अच्छा पानी लाने के लिए उसे शाबाशी दी कि वाह भाई, पानी तो बड़ा अच्छा था। वे सबसे इस पानी की तारीफ करने लगे। कुछ दिनों बाद एक दूसरा शिष्य उन्हीं अध्यापक से बोला, गुरुजी, आप हमेशा उस पानी की बहुत तारीफ करते हैं, मैं भी पीना चाहता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये थैली ले जाओ, वो जो कुआ है ना यहां से थोड़ी दूर पर, वहां जाकर खुद ही सच्चाई जान लो, पानी भी पी लेना और थैली भी भर लाना, तो हम भी पी लेंगे। तो वो विद्यार्थी कुएं के पास गया। जैसे ही पानी पीने का उसने घूंट भरा, तुरंत मुंह से कुल्ला करके पानी बाहर निकाल दिया। बड़ा खींच गया वो, खींचता हुआ वापस आया और गुरुजी से कहा, अरे आप तो बेकार ही इस पानी की इतनी तारीफ कर रहे थे इतने दिनों से, न तो ये पानी ठंडा है और न ही इसमें कोई मिठास है। अध्यापक मुस्कुराए, बोले, हाँ हाँ, मुझे भी जब मैंने पिया तो ऐसे ही लगा था जब मैंने इसे पिया था, लेकिन प्रिय, भले ही जल में अच्छाई न हो, लेकिन लाने वाले उस शिष्य ने जब इसे पिया होगा तो उसे मेरी याद आई और मेरे लिए उसके मन में प्रेम उमड़ा, तो इसलिए वो मेरे लिए भी लेकर आया। जल पीकर मुझे भी अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन ऐसा कहकर मैं उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है पानी भरते समय उसने थैली को साफ नहीं किया हो, ऐसी कोई भूल तुमने भी शायद की हो, तो बिना समझदारी के किसी काम को करने का अंजाम दुखदायी हो जाता है। अब यही मार्गदर्शन मैं उसको और तुम सबको देता रहता हूं, अगर गलती हो जाए तो उसे दोबारा नहीं करने की शिक्षा देना, ये मेरा काम है। मैं दो चार दिन में उसे भी यही बात कहूंगा, उस समय कहता तो उसका मन दुख पाता। वो सोचता, ये गुरुजी को देखो, मैं इनके लिए उस कुएं का इतना ठंडा पानी लेके आया और इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो श्रोता मित्रों, कहानी का संदेश यही है कि बड़ों को चाहिए कि वे छोटों से प्रेम करें, उन्हें प्रोत्साहन दें, उनमें जो भी अच्छी आदत है उसे आगे बढ़ाएं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था प्रेम ही जीवन का आधार है, और जिसके लेखक व प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। साथियों, वाकई प्रेम ही जीवन का आधार है, और इस धरा पर यदि कोई उत्तम पुष्प खिल सकता है तो वो है प्रेम का पुष्प। एक खूबसूरत सुगंधित फूल किसी छोटे से पौधे पर भी खिल सकता है। उसी प्रकार प्रेम मानव हृदय में प्रस्फुटित होता और फलता फूलता है, और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए और प्रभु के प्रेम और भक्ति में झूमते रहना चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, घड़ी की टिक टिक करती सुइयां अब इशारा कर रही है और अब वक्त नजाया करते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। हमारा अगला कार्यक्रम है पर्यावरण, जिसका शीर्षक है जल संसाधन के स्रोत एवं संरक्षण और जिसके लेखक एवं प्रस्तुत करता है स्वर्गीय माइकल होजेस जी।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता जल संसाधन के स्रोत एवं संरक्षण। श्रोता साथियों, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल के बिना इंसान 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे में जल की महत्ता स्वयं ही ज्ञात हो जाती है। जल का हमारे जीवन में इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण स्थान है, तो आइए हम उसके स्रोत के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते चलें। श्रोता साथियों, जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला भूपृष्ठीय जल, दूसरा भूमि जल, तीसरा वायुमंडलीय जल और चौथा महासागरीय जल। हम पहले बात करते हैं भूपृष्ठीय जल की। भूमि की सतह पर मौजूद रहने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहा जाता है, जैसे नदियों का बहता हुआ जल, झीलों और तालाबों का जल। हमारे देश में नदियां और उनकी सहायक नदियां हर क्षेत्र में पाई जाती हैं। देश की प्रमुख नदियों सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में भारत की कुल जल संपदा का लगभग 60% भाग बहता है। यह तीनों नदियां ही संसार की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। इनकी विशालता का कारण है इनका हिमालय से उद्गम। इसी कारण से यह नदियां सूखती नहीं, निरंतर प्रवाहित रहती हैं और अपनी विशालता बनाए रखती हैं। इसी क्रम में देश के अनेक भागों में बड़ी बड़ी झीलें भी पाई जाती हैं। जल का दूसरा स्रोत है भौम जल, यानी कि भूमि की सतह के नीचे इकट्ठा हुआ जल। वर्षा का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, यानी कि वर्षा का जो जल होता है उसका कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। इसमें से कुछ भाग धरती की ऊपरी सतह द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ भाग धरातल के नीचे चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। यह एकत्र हुआ जल ही भौम जल कहलाता है। इस भौम जल को प्रयोग में लाने के लिए कुओं और बोरिंग का सहारा लिया जाता है, जिसका उपयोग पीने, सिंचाई और उद्योगों आदि के लिए किया जाता है। हमारे देश में भौम जल का वितरण बहुत असमान है, इसलिए धरती के नीचे भौम जल का संतुलन भी असमान ही है। तीसरा जल स्रोत है वायुमंडलीय जल। यह भाप के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है और वर्षा के जल के रूप में धरती पर प्राप्त होता है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। और चौथा जल स्रोत है महासागरीय जल। हमारा देश 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है। इस खारे जल का उपयोग जल परिवहन के रूप में किया जाता है। श्रोता साथियों, जैसा कि वार्ता के आरंभ में ही कहा जा चुका है कि जल हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता है, प्रकृति द्वारा उपलब्ध जल का उपयोग इस तरह से होना चाहिए कि भविष्य में भी जल की उपलब्धि इसी तरह से बनी रहे। इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि इस अनमोल जल का सावधानी पूर्वक, मितव्ययता पूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग किया जाए। इसके साथ साथ भू जल स्तर बढ़ाने के लिए जल पुनर्भरण भी अधिक से अधिक हो, ऐसे प्रयास भी किए जाने चाहिए। उपलब्ध जल को अधिक से अधिक प्रदूषण मुक्त रखा जाए, वास्तव में यही वास्तविक जल संरक्षण है। श्रोता साथियों, निम्न बातों के द्वारा सहजता से जल संरक्षण किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस बात पर गौर किया जाए कि पूरी दुनिया में जल की उपलब्धि एक जैसी नहीं है, देशों में भी इस तरह की स्थिति नहीं है। इसलिए समुचित जल वितरण के लिए ऐसी पद्धति अपनाई जाए कि जल का वितरण भी समान हो और उसका सदुपयोग भी हो, साथ ही साथ उसका प्रदूषित होना भी बचाया जा सके। उद्योगों द्वारा निकाला गया अपशिष्ट जल हो या कोई प्रदूषित जल हो,
प्रदूषित और अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण करके उसे उपयोग में आने लायक बनाया जा सकता है। ऐसे जल का उपयोग खेतों, कारखानों और अन्य छिड़काव जैसे कार्यों में किया जा सकता है। जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक जल की उपलब्धि है, उतना ही आवश्यक है उपलब्ध जल को शुद्ध रखना और उसे प्रदूषित होने से बचाना। वर्तमान में हालत यह है कि प्रदूषित जल मानव, पशु पक्षी और पेड़ पौधों आदि के विनाश के लिए एक खतरा बन गया है। यही कारण है कि उपलब्ध जल को प्रदूषण मुक्त रखना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए विभिन्न भौतिक और रासायनिक जो भी विधि संभव हो उसे अवश्य अपनाना चाहिए। वर्षा ऋतु की अपार जल राशि व्यर्थ बह जाती है, साथ ही वर्षा काल में नदी और नाले बाढ़ से उफनने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर गर्मी के मौसम में आमजन पानी के लिए तरसने लगते हैं। भूमि जल स्तर वैसे ही काफी नीचे चला गया है। इस प्रकार से दिनों दिन जब जल संकट बढ़ता ही जा रहा है, तब व्यक्ति को पानी बचाने के साधनों की याद आने लगी है। इसलिए आज वर्षा के जल का संग्रहण आवश्यक हो गया है। वर्षा के जल के तालाबों को गहरा कर तथा छोटी छोटी डबरियों में इकट्ठा किया जाना चाहिए। छोटे छोटे नालों पर भी बांध बनाकर वर्षा के जल को रोका और एकत्र किया जा सकता है। श्रोता साथियों, जल के संरक्षण और उसके प्रबंधन के और अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कचरे को नदी में न बहाया जाए, जहरीले रसायनों को भी नदी में बहाना नहीं चाहिए और न ही शवों को नदी में बहाना चाहिए। जल प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जल संरक्षण अभियान द्वारा गांव-गांव में तालाब, कुओं और नदियों का गहरीकरण करना और स्टॉप डैम बनाकर जल रोकने के उपाय करने चाहिए। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के उपाय करना, परंपरागत जल स्रोतों को पुनः उपयोगी बनाना, शिक्षा द्वारा जल की फिजूल खर्ची को रोकना, वन क्षेत्र को सुरक्षित रखना, क्योंकि वनों से ही वर्षा होती है, इसलिए वन क्षेत्रों में कुओं का जलस्तर हमेशा ऊंचा रहता है। वन ही नदी के बहाव को निरंतर संभव बनाते हैं। श्रोता साथियों, जल संरक्षण के साथ साथ हमें जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी करना चाहिए, वरना प्रदूषित जल हमारे किस काम का। इसके लिए कुछ इस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। वे रासायनिक उद्योग जल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन्हें जलाशयों और नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए या ऐसे जल को शुद्ध करके दोबारा सिंचाई के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है जो प्रदूषित जल होता है। सड़कों और कारखानों के किनारे या आसपास के स्थानों पर पौधारोपण किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण युक्त जल की प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी करते रहना चाहिए। जल प्रबंधन के लिए वर्षा के जल को भूमि के अंदर ही संग्रहित करना चाहिए, इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। घरों की छतों के पानी को पाइप के द्वारा नीचे भूमि में लाया जाए, इससे हैंडपंप और कुएं के जल स्तर में सुधार होता है। जिन नदियों में अक्सर बाढ़ आती है, उस नदी की दिशा मोड़कर उसके दोनों किनारों पर कुएं बनवाकर उसमें जल को डाला जा सकता है।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था जल संसाधन के स्रोत एवं संरक्षण, और जिसके लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे स्वर्गीय माइकल हॉजेस जी। दोस्तों, अंत में कविता के माध्यम से अभी की सभा को समाप्त करना चाहूंगी, और इस कविता के लेखक है डॉक्टर राम निवासी, और उनकी कविता का शीर्षक है पानी न होता। श्रोता, वे लिखते हैं कि पानी न होता यदि धरा पर, बोलो हम फिर क्या पीते, और बिन पानी के भैया पल भर भी कैसे जीते। क्या बिन पानी पौधे उगते, फसलें लगती हरी भरी, खिलते फूल या रंग बिरंगे, क्या फलों की लगती झड़ी। कैसे बिजली बादल बनते, कैसे फिर वर्षा होती, कैसे नदियां निर्जर बहते, सागर देता क्यों मोती। बर्फ ना होती, दूध ना होता, बनती लस्सी फिर कैसे, घर के बर्तन फिल्टर कूलर लगते खाली सब जैसे। बिन पानी जग सूना लगता, नीरस हो जाता जीवन, अतः बचाएं हम पानी को, पानी ही है सच्चा धन। तो श्रोताओं, पानी बचाएं, क्योंकि पानी अमूल्य है। और अब आपकी रेडियो दोस्त ज्योति कुजूर का आपसे विदा लेने का समय हो गया है। इजाजत दीजिए, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक जी को। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल जगत से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े, और उनकी कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला।

बात है। मछुआरों की बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब दंपति रहता था। मछुआरा प्रतिदिन समुद्र से मछलियां पकड़कर लाता था और पत्नी घर का कामकाज देखती। दोनों बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन जब उसने समुद्र में जाल डाला तो उसे वह बहुत ही भारी महसूस हुआ। उसे लगा कि जाल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हैं। मछुआरे ने बड़ी कठिनाई से जाल को खींचकर बाहर निकाला। यह देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि जाल में सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली ही फंसी थी। उसने जैसे ही उसे पकड़ना चाहा, नन्ही मछली बोली, मुझे मत मारना, कृपा करके मुझे समुद्र में डाल दो, बदले में जो भी इच्छा करोगे पूरी करूंगी। मछुआरे ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने उसे छोड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम आजाद हो। जब मछुआरा वह खाली जाल लेकर घर लौटा तो उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी नाराज होकर बोली, तुम सुबह से मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे और पूरे दिन बीतने के बाद लौटे हो, क्या तुम्हें इतने बड़े समुद्र में एक भी मछली नहीं मिली? मछुआरा बोला, मुझे आज एक सुनहरी मछली मिली थी और मैं उसे घर लाना चाहता था, पर मछली ने कहा कि मुझे छोड़ दो और जो चाहे मांग लो, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा। यह सुनकर मछुआरे की पत्नी और भड़क उठी। वह बोली, तुम भी अजीब इंसान हो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और सुनहरी मछली ने तुमसे कुछ मांगने के लिए कहा था तो तुम चुप क्यों रह गए? कम से कम थोड़ी रोटी ही मांग लेते। यह सुनकर मछुआरे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दोबारा समुद्र तट पर गया और बोला, सुनहरी मछली जरा बाहर आना। मछली जब बाहर आई तो उसने कहा, मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, उसका कहना है कि मुझे तुम थोड़ी सी रोटी मांगनी चाहिए थी। मछली ने उत्तर दिया, चिंता मत करो और घर जाओ। घर पहुंचकर मछुआरे ने पत्नी से पूछा, बताओ अब क्या हमारे पास काफी रोटी है या नहीं? पत्नी ने उत्तर दिया, हमारे पास खाने के लिए अब काफी रोटी है, पर एक और समस्या उत्पन्न हो गई है। मछुआरे ने पूछा, अब क्या हुआ? पत्नी बोली, हमारी झोपड़ी काफी टूट फूट गई है, इसीलिए छत और दीवारों से पानी रिसने लगा है। इसलिए तुम सुनहरी मछली के पास जाकर कहो कि वह हमारे लिए एक नया और बड़ा घर बना दे। मछुआरा फिर से समुद्र तट पर गया और उसने सुनहरी मछली को आवाज दी, सुनहरी मछली बाहर आओ। मछली तैर कर बाहर आ गई और उसने मछुआरे से पूछा, कहो क्या कहते हो? मछुआरा थोड़ा संकोच के साथ बोला, मेरी पत्नी पुरानी झोपड़ी में नहीं रहना चाहती, इसलिए कृपा करके हमारे लिए एक नया और बड़ा घर बना दो। चिंता मत करो, घर जाओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह कहकर मछली वापस समुद्र में चली गई। मछुआरे ने घर जाकर देखा तो उसकी पुरानी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर और बड़ा घर बना हुआ था। उसने चैन की सांस ली कि अब पत्नी खुश होगी क्योंकि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। इसलिए अब वह मुझे सुनहरी मछली से कुछ मांगने के लिए नहीं भेजेगी। किंतु अगले ही दिन पत्नी दोबारा मछुआरे से बोली, सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मैं अब एक मछुआरे की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि इस द्वीप की रानी बनकर रहना चाहती हूँ। मछुआरा फिर से समुद्र तट पर गया और सुनहरी मछली को बुलाकर अपनी पति की इच्छा उसे बताई। सुनहरी मछली ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। वहाँ से जब मछुआरा अपने घर के समीप पहुँचा तो उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर आलीशान महल है जिसके द्वार पर पहरेदार खड़े हैं। जब वह अंदर पहुँचा तो वहाँ का नजारा अलग था। उसकी पत्नी रानी बनकर सिंहासन पर बैठी थी। उसने जब उसे पास जाकर पुकारा तो वह नाराज हो गई कि उसने रानी क्यों नहीं कहा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, इस बूढ़े मछुआरे को पकड़कर जेल में डाल दो और इसकी अच्छी तरह पिटाई करो। सिपाहियों ने रानी की आज्ञा का तुरंत पालन किया।
उन्होंने मछुआरे की इतनी पिटाई की कि वह अपनी टांगों पर चलने के योग्य भी नहीं रहा। थोड़े दिनों तक मछुआरे की पत्नी रानी बनकर काफी खुश रही, पर जल्द ही फिर से उसका मन भटकने लगा। उसने सिपाही को आदेश दिया, मछुआरे को कैद से निकालकर मेरे सामने पेश करो। जब मछुआरा लड़खड़ाता हुआ रानी के पास पहुंचा, तो वह बोली, इसी वक्त समुद्र तट पर जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि मैं इस छोटे से द्वीप की रानी बनकर संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरे राज्य की महारानी बन जाऊँ। मछुआरे ने पहले तो सुनहरी मछली के पास जाने से मना कर दिया, पर जब रानी ने उसे जान से मारने की धमकी दी तो उसे जाना ही पड़ा। समुद्र तट पर जाकर उसने सुनहरी मछली को पुकारा, पर वह बाहर नहीं निकली। दो तीन बार पुकारने के बाद समुद्र में जोर का तूफान आया और दिन में ही अंधेरा छा गया। सुनहरी मछली ने समुद्र तट पर आके पूछा, कहो अब तुम क्या चाहते हो? मछुआरा बोला, मेरी पत्नी बुरी तरह से पागल हो गई है, इसलिए अब वह रानी बनकर संतुष्ट नहीं है, वरन अब पूरे राज्य की महारानी बनना चाहती है। सुनहरी मछली ने कोई उत्तर नहीं दिया और तैरकर समुद्र के नीचे चली गई। मछुआरा भी घर की ओर लौटने लगा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल का कोई नामो निशान नहीं था और उसकी जगह छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर उसकी पत्नी फटी और पुरानी साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। जीवन फिर से पुराने ढर्रे पर चलने लगा। काश मछुआरे की पत्नी ने अधिक लालच न किया होता तो वे हमेशा सुख से रह रहे होते।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े, और उनकी कहानी का शीर्षक था लालच बुरी बला। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक बाल गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

बाल मित्रों, आपकी बहन मर्लिन का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है कुत्ते की दुम। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, पर कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को एक विनोद सूझा। उसने कहा, बात यहाँ पहुँची कि अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता है। जिन सज्जन का यह विचार था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, वह बोले, मेरा विचार है कि अगर ठीक ढंग से प्रयत्न किया जाए तो कुत्ते की दुम भी सीधी की जा सकती है। राजा ने विनोद के आगे बढ़ने की सोची। बोले, ठीक है, आप लोग यह प्रयत्न कर देखिए। राजा ने 10 चुने हुए व्यक्तियों को एक एक कुत्ते का पिल्ला दिलवाया और 6 मास के लिए हर मास 10 स्वर्ण मुद्राएं देने का निश्चय किया। इन सभी लोगों को कुत्ते की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन 10 व्यक्तियों के लिए तेनाली राम भी एक उसमें से था। शेष 9 लोगों ने इस 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिशें की। एक ने पिल्ले की पूंछ के छोर पर भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाल दिया। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज पूंछ की मालिश करवाना शुरू कर दिया। चौथे ने कोई दवा दी। उसका विचार था कि दवा से दुम सीधी हो जाएगी। पांचवे ने एक ब्राह्मण को घर रखा छोड़ा, जो प्रतिदिन पूंछ सीधी हो जाने के लिए इसके लिए पाठ पूजा करता था। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ जाए, जो कई तरह उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम का प्रयत्न जुटा रहा था। सातवें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवाया। आठवां व्यक्ति कुत्ते के सामने बैठकर 6 मास तक प्रतिदिन उसे भाषण देता रहा कि दुम सीधी रखो भाई, सीधी रखो। नवा व्यक्ति पिल्ले को मिठाइयाँ खिलाता रहा, शायद इससे मान जाए और अपने दुम सीधी कर ले। तेनाली राम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से कि वह जीवित रहे। भूखा रह रहकर बेचारा पिल्ला इतना कमजोर हो गया कि उसके शरीर के सारे अंगे निर्जीव हो गए। उसकी पूंछ भी बेजान से लटक गई, जो देखने में सीधी जान पड़ती थी। 6 मास बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने हट्टे कट्टे और स्वास्थ्य पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले की पूंछ पर से वजन हटाया गया तो वह एकदम टेढ़ी होकर ऊपर हो गई। दूसरे की दुम जब नली में से निकाली गई तो वह भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की भी पूंछें टेढ़ी की टेढ़ी निकली। मालिश, दवाओं, पूजा पाठ और मंत्रों का कोई लाभ नहीं हुआ, न ही ऑपरेशन, उपदेश और मिठाइयों से कोई बात बनी। राजा ने तेनाली राम से कहा, तुम्हारा पिल्ला कहाँ है, उसे भी देखें। तेनाली राम ने अपना अधमरा पिल्ला राजा के सामने कर दिखाया और उसे सारे अंग ढीले रहे थे, पूंछ भी निर्जीव सी लटक रही थी। तेनाली राम बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कहीं के, राजा ने कहा, बेचारे निरीह पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई, तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी भी शक्ति नहीं है। महाराज, अगर आपने कहा होता इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने का था।

जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद कर उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव अवश्य मुर्दा बना सकते हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब और उनकी कहानी का शीर्षक था कुत्ते की दुम। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपने समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक से, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: गुरुवर, जंगली बीज का ये दृष्टांत हमें समझा दीजिए।
1: अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लुनने वाला स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। यहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले।
2: ईसा, इस दृष्टांत के माध्यम से दो चीजों को प्रकट कर रहे हैं। पहला ये कि किसी को परखने वाला मात्र ईश्वर है, और दूसरा ये कि अंतिम न्याय भी ईश्वर का ही होगा, जब हरेक को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा।
1: स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वो तो सब बीजों से छोटा है, मगर बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं।
2: किसी भी महान वस्तु की शुरुआत एक छोटे से कण से होती है। छोटे पद से गुजरकर व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। ईसा अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि भले ही वे संख्या में कम हो, उन्हें प्रयत्न जारी रखने हैं, ताकि पृथ्वी तल से हिंसा, बैर, मतभेद व अशांति दूर हो।
1: स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया।
2: ईश्वर का राज्य अदृश्य है, परंतु कार्यशील है। ईश्वरीय शक्ति मनुष्य को सच्चाई की ओर प्रेरित करती है, मनुष्य को अपने उद्देश्य तक ले जाने में सहायक बनती है।
1: स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छुपा देता है। तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है।
2: मनुष्य को कीमती चीजें, उच्च पद आसानी से नहीं मिलता, उसे दिन रात मेहनत करनी होती है। परिश्रम व ईमानदारी व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाती है। स्वर्ग का राज्य कोई अनोखी वस्तु नहीं है, न किसी अन्य विश्व का एक राज्य है, वरन ये हर मानव के भीतर बसी हुई प्रेम, ईमानदारी व सद्भावना का राज्य है, जिसे मानव को अपने व्यवहार तथा कार्यों के आटे में मिलाना है।

जैसा आपने सुना कि स्वर्ग के राज्य को ईसा ने विभिन्न उदाहरणों से समझाया, कहीं वे उसे अच्छे बीज, कहीं राई के नन्हे से दाने, कहीं खमीर, तो कहीं खेत में छिपे हुए खजाने के समान बताते हैं। लेकिन ये समानता सीमित नहीं है। ईसा कहते हैं

स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुआरे उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और बेकार मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे।

मनुष्य अपने दैनिक जीवन के कार्यों और व्यवहार से अपने आसपास के वातावरण को स्वर्गिक बना सकता है, परंतु पहले उसे अपने भीतर से पाप, बुराई और कुकर्म दूर करने होंगे।

ईसा का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वो जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रम को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपने समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम स्वास्थ्य से। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत एक वार्ता जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य और पर्यावरण। इस वार्ता के प्रस्तुत करता है स्वतंत्र कुमार ओझा जी।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था स्वास्थ्य और पर्यावरण। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। दोस्तों, अब आप सभी को स्वतंत्र जी की ये बातें तो समझ आ ही गई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को आप अपने करीबी परिजनों को भी बताएंगे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। दोस्तों नमस्कार और पिता परमेश्वर की जय। इंतजार खत्म हुआ और अब आ गई है आपकी रेडियो दोस्त ज्योति फिर ढेर सारे नए कार्यक्रमों के साथ। दोस्तों अभी की सभा समय 3 से 4 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम नाटक। दोस्तों मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी जो मैंने इंटरनेट में पढ़ी है जो किसान भाइयों के लिए है। सतीश सक्सेना जी लिखते हैं कि बुरे हाल में साथ न छोड़े, देंगे साथ किसानों का। जुड़ा हमारा जीवन गहरा भोजन के रखवालों से, किसी हाल में साथ न छोड़े, देंगे साथ किसानों का। चलो किसानों के संग बैठे, जग चेतना जगाएंगे, सारा देश समझना चाहे कष्ट कीमती जानों का। दोस्तों आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम कृषि जगत।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: एक बात यह बताइए मुखिया जी कि समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना, हाँ, निशुल्क बकरी वितरण एवं अनुदान की क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, उन्नत नस्ल यानी ब्लैक बंगाल के 3 प्रजनन योग्य बकरियों का निशुल्क वितरण करने की योजना है।
0: अच्छा,
1: इसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों का चयन करना है। इस पूरे योजना का संचालन जीविका के माध्यम से किया जाना है।
0: इस योजना के तहत पशुपालकों को किस तरह की रियायत देने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है मुखिया जी, और इसके लिए किस तरह के लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
1: देखिए, 20 बकरी एवं 1 बकरा के फार्म की स्थापना पर 50% यानी अधिकतम 1,00,000 रुपए अनुदान की योजना है।
0: अच्छा,
1: इसके लिए पशुपालकों को उन्नत नस्ल के यानी ब्लैक बंगाल के 20 बकरी एवं 1 बकरा देने की योजना है। राज्य के सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुमानित लागत जो तय किया गया है वो है 2,00,000 रुपए। इसके लिए आवेदक चाहे तो स्वलागत से या बैंक ऋण से बकरी फार्म स्थापित कर सकते हैं।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि स्वलागत अथवा बैंक ऋण दोनों पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई है? अगर ऐसा है तो पशुपालकों को अनुदान की राशि कब प्राप्त होगी?
1: स्वलागत अथवा बैंक ऋण दोनों के लिए योजना लागत का 50% अधिकतम 1,00,000 रुपए प्रति इकाई फार्म स्थापना के बाद अनुदान दिया जाएगा।
0: अच्छा,
1: ऑनलाइन आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर अपने मतदाता पहचान संख्या, आधार संख्या, मोबाइल संख्या से पंजीकरण कराने के पश्चात आवेदन भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज एवं फोटो अपलोड किए जा सकते हैं।
0: जी,
1: फॉर्म समर्पित करने के बाद प्राप्ति रसीद प्रिंट किया जा सकता है।
0: ऑनलाइन जहां तक आवेदन की बात करने की योजना है मुखिया जी, तो कितने दिनों के बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त किया जा सकता है अगर कोई पशुपालक ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो?
1: विभाग के वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन प्रपत्र एवं कार्यान्वयन अनुदेश डाउनलोड किया जा सकता है।
0: जी,
1: विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदक के फोटो के साथ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन के 45 दिनों के अंदर जमा करके प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकती है।
0: 45 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है?
1: हाँ, 1.5 महीने के अंदर।
0: जी,
1: लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए जिला पशुपालक अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
0: वैसे तो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं मुखिया जी, लेकिन फिर भी किसानों की दशा सुधरने का नाम नहीं ले रही।
1: हाँ।
0: वैसा ही एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वायल हेल्थ कार्ड योजना, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए तो अच्छा होगा।
1: भारत सरकार ने किसानों के कल्याण और फसलों की उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया है।
0: जी,
1: फरवरी 2015 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सॉयल हेल्थ कार्ड योजना इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।
0: अच्छा,
1: ये सत्य है कि कृषि उत्पादन के लिए मृदा यानी मिट्टी
0: जी
1: एक बेहद अहम घटक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसकी गुणवत्ता में सुधार करने से ही बेहतर उत्पादन तथा किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
0: इस योजना से किसानों को किस तरह का फायदा होने का अनुमान है और ये जो योजना है उसकी बेहतरी के लिए किस तरह के उपाय किए गए हैं?
1: ये योजना किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।
0: अच्छा,
1: भारत सरकार दृढ़ता के साथ इस योजना को सफल बनाने हेतु प्रयासरत है एवं सरकार ने मार्च 2017 तक सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
0: जी,
1: सॉयल हेल्थ कार्ड योजना भारतीय किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी और उनके लिए फायदेमंद होगी।
0: अच्छा,
1: ये योजना निश्चित रूप से प्राकृतिक संसाधनों से अधिक पैदावार प्राप्त करके किसान की आय में वृद्धि प्रदान करेगी, ऐसा सरकार का मानना है।
0: क्या इस योजना को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से कुछ राशि भी आवंटित की गई है? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी राशि मुहैया कराई गई है मुखिया जी?
1: इस योजना के माध्यम से किसानों को मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
0: अच्छा।
1: एवं देश एक स्वस्थ फसल और स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर होगा, जिससे देश में उन्नति होगी। गत वर्ष के मुकाबले 160% की बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2016-17 के लिए 368.30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
0: जी,
1: यानी 368 करोड़ मान लीजिए इसको।
0: जी,
1: 31 मार्च 2017 तक 2.53 करोड़ मृदा नमूनों के लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर 6, 2016 तक 2.21 करोड़ मृदा नमूने एकत्र किए गए, जिससे 12.10 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं।
0: 2016-2017 में कितना करोड़ मृदा नमूने को एकत्र करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है?
1: 2016-17 के दौरान 0.33 करोड़ मृदा नमूनों को एकत्र किया जा रहा है।
0: अच्छा,
1: है ना, ये यानी मतलब हुआ ये लगभग 33 लाख हुआ, है ना
0: जी।
1: तो इससे 1.82 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड तैयार किए जाएंगे।
0: जी,
1: किसानों के अगर फायदे की बात करें तो मुख्य रूप से किसानों के 2 वर्ष के अंतराल पर सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। सॉयल हेल्थ कार्ड 2 साल पर दिए जाएंगे।
0: जी,
1: यानी मिट्टी का स्वास्थ्य की जानकारी उसमें मिलती है, जिन चीजों की जरूरत है मिट्टी को। तो सॉयल हेल्थ कार्ड से किसानों को वृहद पोषक तत्वों और उर्वरकों का फसलवार विवरण मिल सकता है। ये कार्ड सुरक्षात्मक उपाय की भी सलाह देता है, जिससे किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करके बढ़िया फसल प्राप्त हो सकती है। फार्म यार्ड मेन्योरे, रूरल एवं सिटी कंपोस्ट, टॉर ग्रीन मेन्योरे के उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा।
0: ऐसा भी कहा जा रहा है मुखिया जी कि एक कार्ड अनेक लाभ, इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, यही जिसका आपने अभी जिक्र किया है या इसके इतर भी कुछ है?
1: वो भी है, इसके साथ संतुलित मात्रा में उर्वरकों की जानकारी मिलेगी।
0: जी,
1: खेती की लागत को कम करते हुए अधिक आय पर जोर दिया जाएगा। अच्छी फसल हेतु बेहतर मृदा प्रबंधन पर जोर होगा। उच्चतर पैदावार के लिए फसल विविधीकरण को अपनाया जा सकता है।
0: ऐसा कहा जा रहा है कि जैविक खेती जो है, खास करके इसकी चर्चा हम लोग पिछले कृषि कार्यक्रम में बहुत कर चुके हैं,
1: हाँ।
0: लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि जैविक खेती भारत का ग्रीन ड्रीम है,
1: हाँ।
0: किसान परक भारत सरकार मिट्टी पारिस्थितिक तंत्र को और लोगों तक पहुंचाना चाहती है और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसकी भूमिका को और तराशना चाहती है और इसके लिए यह कार्य जो है काफी तीव्र गति से चल रही है।
1: देखिए वीरेंद्र जी, परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए व्यापक केंद्रीय प्रायोजित योजना की शुरुआत है।
0: जी,
1: इसे प्रत्येक 50 एकड़ यानी 20 हेक्टेयर पर क्लस्टर आधार पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।
0: जी,
1: इसका लक्ष्य 3 वर्षों की अवधि में 2015-16 से 17-18 में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल को शामिल करते हुए 10,000 क्लस्टर्स को बढ़ावा देना है।
0: अच्छा,
1: भारत सरकार मृदा पारिस्थिति तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरे जोर शोर से कार्यरत है। जैविक खेती एक पर्यावरण अनुकूलन प्रणाली है। इसका उद्देश्य रसायन मुक्त उत्पादों और लाभकारी जैविक सामग्री का इस्तेमाल को बढ़ाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इससे उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए मृदा को स्वस्थ और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है।
0: परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किस तरह के कार्य को प्रोत्साहित करने की योजना हमारी सरकार के पास है मुखिया जी?
1: वर्ष 2015-16 में वर्तमान सरकार ने एक क्लस्टर आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें किसानों को गठन समूहों तथा पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया।
0: अच्छा,
1: अगले 3 वर्षों में सरकार ने जैविक खेती के तहत 5,00,000 एकड़ क्षेत्र को कवर करके 10,000 समूहों के गठन का लक्ष्य रखा है।
0: अच्छा,
1: जैविक खेती के लिए चुने गए क्लस्टर की सीमा 50 एकड़ तक होगी। प्रत्येक किसान को बीज, फसलों की कटाई तथा बाजार में उपज की ढुलाई हेतु 3 वर्षों में ₹20,000 प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा।
0: इसके अलावा इस योजना के तहत सरकार किस तरह के कदम उठाने की दिशा में प्रयासरत है मुखिया जी?
1: इसके अलावा इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार पारंपरिक संसाधनों का इस्तेमाल करके पर्यावरण अनुकूल कम लागत की प्रौद्योगिकियों को अपनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देगी।
0: जी,
1: उच्च प्रतिफल प्राप्त करने के लिए जैविक उत्पादों को बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना में घरेलू उत्पादनों तथा किसानों को शामिल करके जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में वृद्धि करने का विचार है।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की भी योजना है, ऐसा सुनने में आ रहा है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ सिक्किम के बारे में।
1: पूर्वी भारत का ये राज्य सिक्किम अब आधिकारिक रूप से एक जैविक राज्य है।
0: अच्छा,
1: सिक्किम फलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है।
0: जी,
1: लगभग 75,000 हेक्टेयर जमीनी क्षेत्र वाले सिक्किम को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार प्रमाणित जैविक खेती के में परिवर्तित कर दिया गया है।
0: आशा की जानी चाहिए मुखिया जी कि ये सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो योजनाएं आने वाली है, उसका भरपूर लाभ हमारे किसान भाई उठा पाएंगे ताकि उनकी खेती

क्या कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिशों की। साथी आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम कानूनी ज्ञान, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी धन्यवाद
2: और अपने श्रोताओं का भी।
0: आज के इस कार्यक्रम में तीन तलाक से संबंधित मुद्दे जो लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है उसी के संदर्भ में आप दोनों से बात करना चाहेंगे।
1: जी
2: बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि लंबे समय से बहस तलब तीन तलाक के मसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सिरा देने की कोशिश की है।
0: जी जी,
2: अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक कहा है। इसे क्रूरता मानते हुए कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
0: आपका कहना है श्याम जी कि अदालत ने कुछ बात साफ की है,
2: हाँ,
0: जिन पर गौर करने की जरूरत है। अदालत ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना अलग रुख बनाकर कोई फैसला नहीं थोपा, बल्कि यह कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं होता।
1: आप एकदम सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी। सवाल ये भी उठाया गया कि जब पवित्र कुरान भी तीन तलाक को अच्छा नहीं मानता, तो फिर मुस्लिम समाज का एक वर्ग इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या क्यों कर रहा है?
0: जी जी,
1: ये फैसला दो अलग अलग याचिकाओं पर आया है। विडंबना ये है कि भारत का मुस्लिम समाज अनेक वर्षों से एक ऐसी बहस में उलझा हुआ है जिसका समाधान कई देश पहले ही निकाल चुके हैं। अब तक ये काम अपने यहाँ भी हो जाना चाहिए था।
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन इस पर एक तो मुस्लिम समाज में ही बहस खत्म नहीं हुई, दूसरे बाकी समाज में भी राजनीति शुरू हो गई।
0: श्याम जी, तीन तलाक पर बहस का सिलसिला कब से शुरू हुआ और उसके बाद किन किन हालातों से यह गुजरा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: देखिए, तीन तलाक पर बहस का यह सिलसिला साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका के बाद तेज हुआ जिसमें उत्तराखंड की शारा बानो ने शादी के बाद 15 साल तक अपने साथ हुए सुलूक और फिर अचानक बिना उसकी जानकारी के शौहर द्वारा तीन तलाक देकर मुक्ति पा लेने का विरोध किया था।
0: जी जी,
2: शायरा ने एक तरफा तीन तलाक को खत्म करने की मांग की थी। इसके बाद से ही कई मुस्लिम संगठन और केंद्र सरकार आमने सामने दिखाई दिए थे।
0: कपूर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तीन तलाक के मुद्दे पर सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये दोनों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया था उस समय?
1: देखिए वीरेंद्र जी, सरकार ने तीन तलाक का विरोध किया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। तीन तलाक खत्म करने के पक्ष में तमाम तर्क हैं।
0: जी,
1: ऐसा मानने वालों का तर्क है कि जब मिश्र ने 1929 में ही तीन तलाक की कुरूति से मुक्ति पा ली है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, कुवैत, इराक, इंडोनेशिया, मलेशिया, अल्जीरिया, ट्यूशिया, ईरान, सीरिया, लीबिया, श्रीलंका और सूडान जैसे देशों में बिना प्रक्रिया पूरी हुई तलाक पूरा नहीं होता, तो फिर भारत जैसे विचारशील देश में अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ?
0: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस विषय पर क्या तर्क है श्याम जी, क्या वह इस तर्क से सहमत है?
2: वीरेंद्र जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे बिल्कुल अलग राय रखता है।
0: अच्छा,
2: बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम विवाह, तलाक और गुजारा भत्ता को कानूनी विवाद का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता।
0: अच्छा,
2: उसकी राय में न अदालत इसमें दखल दे सकती है न ही सरकार।
0: अगर कानून, सरकार और राजनीति से अलग जाकर इस मुद्दे पर गौर किया जाए तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कपूर जी?
1: देखिए वीरेंद्र जी, दरअसल कानून, सरकार और राजनीति की बहस से अलग जाकर भी देखें तो आज के विकसित समाज में महिलाओं को बराबरी का हक देने से किसी को कैसे इनकार हो सकता है?
0: जी बिल्कुल,
1: जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हों तब ये सोचने की बात ही अलग है।

0: उसकी कल्पना से हम लोग परे हैं कि कोई अपनी मर्जी से उत्तेजना में या सोचे समझे तरीके से ही सही सामने से या टेलीफोन से तलाक तलाक तलाक बोल दे और एक पवित्र रिश्ते का अचानक अंत हो जाए। इस्लाम भी रिश्ता तोड़ने के लिए सिर्फ इसी तरीके की बात नहीं करता।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं कपूर जी कि वहां तलाक के कई तरीके हैं। तीन तलाक उनमें से एक है। 3 महीने के अंतराल में तलाक पूरा होने की अहम बात भी है जो टूटते रिश्ते के फिर से जुड़ने की संभावना बनाती है।
2: जी जी,
1: इस्लाम भी रिश्ता बचाने की गुंजाइश रखने वाले तरीकों की ही तरफदारी करता है। मुस्लिम महिलाओं का बड़ा तबका भी 3 तलाक के खिलाफ है। माना जा सकता है कि धार्मिक मामलों में अदालत क्यों दखल दे, लेकिन जब समाज और धार्मिक संगठन हल नहीं निकाल पाते हैं तब अदालतों को सक्रिय होना ही पड़ता है।
2: बिल्कुल, इस बात को तो सभी मानते हैं। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि बिना ठोस कारण तलाक देना गलत है, इसे कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिमों में बहु विवाह और तलाक से जुड़े मामलों की जटिलताओं को सुनते हुए, उसकी सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की।
2: जी,
0: अदालत ने कहा कि यदि पत्नी के व्यवहार या बुरे चरित्र के कारण वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाए या हो गया हो तो पुरुष विवाह विच्छेद कर सकता है और इस्लाम में इसे सही माना भी गया है।
2: लेकिन श्याम जी, बिना कोई ठोस कारण के तलाक को धार्मिक या कानून की निगाहों में सही नहीं ठहराया जा सकता तो फिर इस बात पर बहस क्यों हो रही है?
1: देखिए, बिल्कुल सही है। कई इस्लामिक देशों में पुरुष को कोर्ट में तलाक के कारण बताने पड़ते हैं।
2: जी,
1: तभी तलाक मिल पाता है। ऐसे में 3 तलाक को सही नहीं माना जा सकता।
2: ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया था कपूर साहब,
0: जी,
2: याची पक्ष का तर्क क्या था? क्योंकि यह मसला जो है कई वर्षों से उलझा हुआ है, महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है।
0: देखिए, याची पक्ष का तर्क ये था कि शादी करने वाली महिलाएं बालिग हैं और उन्होंने जिन पुरुषों से शादी की है उन्होंने अपने पूर्व पत्नियों को तलाक दिया है। संविधान अनुच्छेद 21 के तहत स्वेच्छा से किसी के साथ रहने की अनुमति देता है, इसलिए पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए।
2: इसी मसले पर सरकारी वकील की क्या दलील थी श्याम जी, इसको जानना जरूरी है। साथ ही साथ अदालत का इस मामले में क्या रुख रहा था?
1: दोनों मामलों में महिलाओं के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है।
2: जी,
1: इस आधार पर पुलिस जांच और कार्रवाई के लिए उन्हें व उनके साथ रह रहे पुरुष को तलाश रही है। केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की है।
2: अच्छा,
1: केंद्र सरकार ने कहा है कि अदालत ने उसके रुख को सही साबित किया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा।
2: बहुत सारे राजनीतिक दल इस मसले पर सरकार के साथ खड़े नहीं दिखते। वजह चाहे जो भी हो, हो सकता है कि वो वोट की राजनीति के चलते ऐसा कर रहे हैं, या सही में वो महिला अधिकारों के हिमायती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार समान नागरिक संहिता थोपने की कोशिश न करे। इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे कपूर साहब?
0: देखिए वीरेंद्र जी, हर राजनीतिक दलों के अपने अपने वोट बैंक हैं।
2: जी,
0: वे अपने ही हिसाब से इस विषय पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन अदालत की अवमानना न हो इससे हर कोई बचना चाहता है।
2: जी जी,
0: जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हम अदालत की टिप्पणी का सम्मान करते हैं, कोई भी धार्मिक मान्यता संविधान के ऊपर नहीं है।
2: जी,
0: लेकिन हमारा संविधान हमें हमारे धर्म के अनुसार अपने धार्मिक रस्म का पालन करने की अनुमति देता है।
2: जी जी,
0: लेकिन 3 तलाक के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय पर समान नागरिक संहिता नहीं थोपी जाए। वहीं कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति न हो। 3 तलाक का मुद्दा वोट बैंक की राजनीति की वजह से शाहबानो मामले की राह पर नहीं जाना चाहिए।
2: इस पूरे मसले पर मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने किस तरह की उम्मीद जताई है श्याम जी? उन्हें क्या लगता है कि इस तरह मतभेद के कारण उनको न्याय मिल पाएगा।
1: ऑल इंडिया मुस्लिम वुमन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा अनुचित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम महिलाएं संविधान के साथ साथ इस्लामिक कानूनों के आधार पर न्याय पाएंगी।
2: एक बात मैं यहाँ पर आप दोनों से जानना चाहूंगा कि चाहे कोई भी धार्मिक बोर्ड हो, सभी तो संविधान के दायरे में ही आते हैं ना?
0: जी, आपका सवाल सही है वीरेंद्र जी। दारुल उलूम ने कहा कि जब संविधान में ही पर्सनल लॉ बोर्ड को संवैधानिक मान्यता दी गई है तो उसे कैसे संविधान से ऊपर बताया जा सकता है।
2: जी,
0: कानून के जानकारों को पहले कुरान की जानकारी भी करनी चाहिए। उलेमा ए कराम ने कहा कि तलाक एक दो हो या एक साथ तीन, दोनों ही गलत हैं।
2: अच्छा,
0: उलेमा या मुसलमान तीन तलाक की वकालत नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो तीन तलाक शरीयत के मुताबिक लागू होगा, जिसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता।
2: श्याम साहब, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उलेमा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले से वे संतुष्ट नहीं हैं और शायद इसीलिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: तीन तलाक पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद शहर और देहात की मस्जिदों में नमाज के बाद तकरीरें शुरू हो गई हैं।
2: जी जी,
1: बरेलवी मरकज के उलेमाओं में हाई कोर्ट के रुख को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भी एक राय बनाई गई है।
2: अच्छा,
1: दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता मुफ्ती सलीम नूरी ने कहा कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत शरीयत के खिलाफ कोर्ट में रिट दाखिल की।
2: अच्छा,
1: 99% मुसलमान शरीयत पर अमल करते हैं, हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे।
2: कपूर साहब और श्याम जी, ये तो हो गई तीन तलाक का मामला। एक मामला जो अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है लोकसभा में हंगामे के बीच आयकर संशोधन बिल बिना बहस किए पास कर दिया जाना।
0: जी हाँ, हंगामा के बीच लोकसभा ने आयकर कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के कानून की शक्ल लेने के बाद काला धन रखने वाले 50% टैक्स देकर सफेद कर सकते हैं।
2: अच्छा,
0: ऐसा नहीं करने पर अघोषित आय पर 85% तक कर चुकाना होगा।
2: राज्यसभा में इस बिल को पास करने में कोई अड़चन नहीं आएगी श्याम जी, क्योंकि वहां तो सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, ऐसा हमें लगता है।
1: देखिए, राज्यसभा में सरकार ने इस विधेयक को मनी बिल के तौर पर पेश किया है।
2: अच्छा, यानी
1: वित्त विधेयक के तौर पर।
2: जी जी,
1: इसलिए राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद कोई अड़चन नहीं आएगी। यानी कि आप जानते हैं, वित्त विधेयक को राज्यसभा में न भी पास कराया जाए तो पास माना जाएगा।
2: जी बिल्कुल।
1: तो नोटबंदी को लेकर हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने यह विधेयक पेश किया था। आयकर कानून संशोधन विधेयक कार्यसूची में पारित कराने के लिए शामिल था, पर विपक्ष नोटबंदी से पैदा हुई समस्याओं के साथ इस विधेयक पर चर्चा की मांग कर रहा था।
2: अच्छा अच्छा,
1: लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के कई संशोधनों को नामंजूर करते हुए बिना किसी चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया।
2: जल्दबाजी में विधेयक पारित करवाना क्या सरकार की मजबूरी थी या फिर वैसे ही मौके की तलाश में थी कि विधेयक पर चर्चा ही न हो?
0: देखिए, एक बात तो सही है कि नोटबंदी के कारण संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित करनी पड़ रही थी। इसके बीच इस विधेयक को पारित करवाना कहां तक उचित है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा होता इस पर विस्तार पूर्वक अगर चर्चा होती।
2: श्याम जी और कपूर साहब, इसके बारे में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए इंतजार करेंगे हम लोग अगले कार्यक्रम का। इस सुंदर जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपको भी धन्यवाद।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कानून व्यवस्था में केंद्र की भूमिका क्या है? इतना दिमाग में जोर न डालिए, मैं बताती हूँ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अपराध रोकना, पता लगाना, दर्ज करना, जांच पड़ताल करना और अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और खासकर पुलिस को दी गई है। संविधान के मुताबिक ही केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण, अस्त्र शस्त्र, संचार, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो साथियों, अब तो आपको पता चल गया ना कि केंद्र की भूमिका क्या होती है। और आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोताओं, कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम में आप सभी का स्वागत है और अभी की वार्ता का शीर्षक है गांधी जी की चोटी और जिसकी लेखिका व प्रस्तुत करता है भवानी कौल जी और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

व्यक्ति विशिष्ट वार्ता सुनिए, गांधी जी की छोटी छोटी बातें। आज हम जिक्र करेंगे भारत के आन बान और शान महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि व्यक्ति विशिष्ट के रूप में उनसे विशिष्ट भला कौन हो सकता है। बहुत ही खास हैं वो हम भारतवासियों के लिए। वैसे तो दोस्तों, उनके बारे में जितना भी लिखा जाए उतना ही कम है। उनके जीवन की छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी बातें जो निजी जीवन में उतारने लायक है, आज हम इन्हीं छोटी परंतु प्रमुख आदतों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, यह आप सबको पता है। गांधी जी का जीवन कई कई अच्छाइयों एवं महानताओं से भरा पड़ा है। उनकी आदतें व्यावहारिकता से बंधे होते हैं जो जीवन में हमेशा काम आते हैं। पल पल हमें बल प्रदान करते हैं और हिम्मत देते हैं। दोस्तों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हम गांधी जी के बारे में आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे, वह ये है दोस्तों कि बापू नियम के बड़े पक्के थे। वे अनुशासन में जीना पसंद करते थे। यूं कहा जाए कि उनका पूरा जीवन नियमों पर चला और यह उन्हें प्रिय था। गांधी जी रोज शाम को प्रार्थना करते थे, यह उनका रोज का नियम था, बिल्कुल भोजन करने जैसा, क्योंकि उन्हें मालूम था दोस्तों कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। एक बार वे यात्रा पर गए हुए थे, एक शाम को महीन कपड़ा काटने वालों का दंगल देखने गए। देखते देखते उन्हें यह पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया, वे उसमें खो गए और समय भूल गए। थककर घर आए तो बिना प्रार्थना किए ही सो गए। उनके साथी पहले ही आकर सो गए। शाम को प्रार्थना करना वे भी भूल गए। सुबह की प्रार्थना के लिए दूसरे दिन नियम के अनुसार 4 बजे सब उठे और प्रार्थना सभा में सभी शामिल हुए। बापू ने अपने साथियों से पूछा, रात को सोने से पहले आप लोगों ने प्रार्थना की थी? उत्तर मिला, नहीं। जब वहां से लौटे तो थक गए थे, इसलिए बिना प्रार्थना किए ही सो गए। बापू ने कहा, मैं भी सो गया, पर रात को 1 बजे नींद खुली तो याद आया, प्रार्थना नहीं की। इतना खराब लगा कि तब से अब तक जाग रहा हूं। उनके साथियों को गांधी जी के इस कड़े नियम से यही सबक मिली दोस्तों कि भले ही देर हो, समय न मिले, पर सुबह शाम की प्रार्थना जरूरी है। इस घटना के बाद गांधी जी कहीं भी सफर में होते थे, मोटर रोककर प्रार्थना करते, पर करते जरूर थे। रेल में भी वे प्रार्थना करने से नहीं चुकते थे। सवेरे शाम की प्रार्थना उनकी रोज की आदतों में थी। सचमुच में दोस्तों, प्रार्थना में बड़ी प्रबल शक्ति होती है। इससे हमें बल मिलता है, जीने की हिम्मत मिलती है। मुसीबतों एवं परेशानियों के समय ईश्वर से बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वाकई आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बड़े बड़े दुखद परिस्थिति से आप प्रार्थना के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। तो आप प्रार्थना करके देखिए, आपको शांति मिलेगी और दुख से उबरने की हिम्मत भी मिलेगी। दोस्तों, अपने बच्चों को भी प्रार्थना करने को कहें, ताकि ताउम्र यह आदत बनी रहे। यही प्रार्थना आगे चलकर उनके लिए ताकत बन जाएगी। आप ईश्वर को प्रार्थना के द्वारा जितना धन्य लिखें दोस्तों। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण बात गांधी जी के बारे में यह है दोस्तों कि गांधी जी हमेशा अपने कामों एवं नियमों के लिए दूसरों से अलग हैं। उनका दृढ़ निश्चय होना एवं मजबूत इरादे उन्हें महान बनाते हैं। सन 1930 को वे यरवदा जेल में थे। काका कालिलकर गांधी जी के साथ जेल में थे। वे जेल में कताई के लिए पुनी बनाना सीखते थे। गांधी जी काफी कर्मठ व्यक्ति थे। जेल में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण कार्य करना नहीं छोड़ा। वे जहां भी होते थे अपना कार्य करना नहीं भूलते थे। पुनी बनाने के लिए कपास पींचना पड़ता था। उसके लिए पिंजन का तार कई बार खराब हो जाता था।
क्योंकि कपास के रेशे लाए जाते और उन पत्तों से यह तार साफ किया जाता। लगभग 4-5 पत्तों से यह काम हो जाता था। पर काका कालिलकर इस काम के लिए नीम की पूरी शाखा तोड़कर ले आते थे। बापू को यह काम समझ में नहीं आया। उन्होंने काका से कहा, काका यह तो ठीक नहीं है, जितने पत्ते चाहिए उतने ही तोड़कर लाया करो, पूरी शाखा तोड़ने से पेड़ को नुकसान पहुंचता है। एक तरह से पूरी शाखा तोड़ना तो पेड़ के साथ हिंसा करना है, यह फिजूल खर्ची भी है और बहुत ही गलत काम है। बापू की यह तरकीब सुनकर काका कालेलकर को सबक मिल गई। फिर उन्होंने दोबारा कभी ऐसा नहीं किया। जितनी पत्तियों की जरूरत होती थी दोस्तों, उतनी ही तोड़कर लाते थे। ये सबक आप भी अपने जीवन में उतार लें दोस्तों। अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को न काटें, इनकी आवश्यकता जितनी हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि इनमें भी जान होती है। पेड़ पत्तों फूलों को बेकार तोड़ मरोड़ करने से इन्हें तकलीफ होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ पौधों में भी सांसें चलती हैं, उनका भी जीवन चलता है, जीवन को रफ्तार मिलता है। तो आप भी सीख लें, पेड़ पौधों के साथ छेड़छाड़ न करें, उन्हें सहज कर रखें। ये सब हमारे प्राकृतिक धरोहर हैं और इन्हें संभाल कर प्यार से रखना हमारा कर्तव्य है और हमारा फर्ज बनता है। ऐसा ही एक बार बापू 1947 में धर्मपुर में एक मुस्लिम देहाती असगर भुइया के घर ठहरे। उस परिवार ने गांधी जी को एक बड़ा सा पेड़ दिखाया जिसके पत्ते दो तरह के थे। वे दोनों ही पत्ते अलग अलग तरह के थे। उनको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इस तरह के पत्ते एक ही पेड़ में कैसे हो सकते हैं। उसने पूछा, गांधी जी है ना यह आश्चर्य की बात कि एक ही पेड़ में दो तरह के पत्ते लगे हैं। गांधी जी ने हंसते हुए जवाब दिया, भला इसमें क्या अचरज है, खुदा का करिश्मा है। यह भगवान ने हिंदू और मुसलमान एक ही जमीन से पैदा किए हैं और दोनों एक साथ पड़ोसी की तरह बढ़ रहे हैं, तो भला इसमें आश्चर्य की कौन सी बात हो सकती है। जैसे एक पेड़ में दो अलग अलग पत्ते हैं, उसी तरह हिंदू और मुसलमान हमारे देश के एक ही पेड़ के दो पत्ते हैं और दोनों ही एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, एक ही खुदा के रचे हुए हैं। तो हमें पेड़ों से यह सीखना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। गांधी जी की यह विचारधारा से मुस्लिम ग्रामवासियों पर बड़ा असर हुआ। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो गांधी जी की छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है और पहली बात यह है कि गांधी जी अपने जीवन में नियमों के बड़े पक्के थे और वो जो ठान लेते थे वो वही करते थे, उन्हें अनुशासन में रहना पसंद था। तो ये सारी बातें हैं हमें अपने जीवन में उतारने के लिए और हमें इनसे सीख ले लेना चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनसे जाकर पूछिए। बापू जी को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि प्रार्थना आत्मा का मंथन करना है और इससे इंसान को आत्मिक शक्ति मिलती है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है और शांति मिलती है। तो मान गए गांधी जी की महानता को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था गांधी जी की चोटी और जिसकी लेखिका व प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल जी, और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नाटक में, और अभी की सभा समय 4 से 5 में कार्यक्रम नाटक का शीर्षक है मेरी सोच और जिसकी लेखिका है अंतरा करपड़े जी। तो आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत है नाटक मेरी सोच। इसकी लेखिका और निर्देशिका है अंतरा करवड़ी।
1: ये क्या पवन, फिर वही चुप्पी। अरे कुछ तो कहो कि इस तरीके से उठकर क्यों चले आए। सब क्या बोलेंगे, बीच प्रोग्राम में से यूं उठकर आ जाना अच्छा लगता है क्या?
2: लेकिन मुझसे नहीं बैठा गया वहां रितेश था, बंटी था, मुझसे अब और नहीं सहा जाता इन दोनों का साथ।
1: लेकिन उन बातों को तो जमाना बीत चुका है पवन, क्या तुम
2: हाँ
1: क्या
2: मैं अब भी नहीं बाहर निकल पाया हूँ इन बातों से। कैसे हो गए थे पापा मुझे देखकर, क्या सोचा होगा उन्होंने उस घटना के बाद।
1: पवन प्लीज, कितनी मुश्किल से तो आज हमें दिन भर का समय मिल पाया है और उस पर भी फिर वही बातें लेकर मत बैठो। और वैसे भी आज तो तुम पिताजी से बात करने वाले थे ना हमारे बारे में।
2: तुम सही हो मीनाक्षी, आज कितनी मुश्किल से हमें साथ बिताने को समय मिल पाया है। लेकिन पापा ने भी तो कितनी मुश्किल से वो 3 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, कितने सारे अरमान थे उनके। लेकिन मैं पता नहीं कैसे रितेश और बंटी की बातों में आकर उस जुआ घर में जा बैठा, पापा का विश्वास भी खत्म कर दिया और उनके बचाए हुए पैसे भी।
1: लेकिन पवन, पापा तुम्हें माफ कर चुके हैं है ना? तुमने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ कहा हो?
2: कहने को कुछ बचा ही कहां था मीनाक्षी। एक बेटा अपने पिता के पैसे चुराकर जुआ खेलता है, पकड़ा जाता है और वो भी पिता जाकर उसकी जमानत करवाता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद किसी के पास क्या रह जाता है कहने के लिए।
1: मान लिया कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें उस गलती का एहसास तो है ना पवन?
2: सिर्फ एहसास से जिंदगी तो नहीं चला करती मीनाक्षी। आज मैं जिस दौराहे पर खड़ा हूँ सब और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ऐसी जिंदगी की तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी।
1: पता नहीं पवन, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, लेकिन इसमें मुझे मेरी ही गलती नजर आती है।
2: अब तुमसे क्या हो गया?
1: पवन, हम एक दूसरे को पिछले 5 सालों से जानते हैं। तुम्हारे साथ उस समय जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुमने काफी समय लिया था सामान्य होने के लिए। मैं सोचती थी कि अपनी दोस्ती और प्यार से तुम्हारा जीवन बदल कर रख दूंगी, लेकिन शायद मेरे प्रयास कम पड़ रहे हैं। तुम आज भी उसी धुंध में जी रहे हो पवन।
2: लेकिन मीनाक्षी, मैं इस धुंध में से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? मैं वाकई एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मुझे भी पापा के बिजनेस में हाथ बटाना है, मुझे भी मेरे देश के लिए कुछ करना है, तुम्हारे लिए कुछ करना है। लेकिन
1: अब ये लेकिन किस लिए?
2: सिर्फ चाहने भर से मेरे सिर पर लगे हुए कलंक मिट नहीं पाएंगे। पापा से मैं आज भी नजरें नहीं मिला पाता हूँ। परिवार के साथ रह भर रहा हूँ लेकिन किसी तरह का कोई कर्तव्य नहीं निभा पाता। नौकरी भी मिली तो माँ से कहकर पापा तक खबर पहुँचाई।
1: क्या तुमने पापा को खुद कुछ नहीं बताया?
2: किस मुंह से बताता, उन्हें ये कहता कि आपका नालायक बेटा आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। वैसे भी मेरे जैसे बेटे से उन्हें क्या खुशी मिल सकती है भला।
1: लेकिन तुमने अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर कहीं और नौकरी कर ली, इस बात से उन्हें तकलीफ नहीं होगी?
2: मैंने भी ये सोचा था लेकिन उनकी ओर से कोई बात ही नहीं आई। मुझे लगा कि मेरे इस कदम से पापा खुश हैं, उन्हें मेरे जैसे बेटे की दखलंदाजी भला क्यों अच्छी लगेगी।
1: लेकिन एक बार उनसे बात कर लेते
2: मीनाक्षी
1: तो...
2: मैं खुद पापा से शर्मिंदा हूँ, उनके सामने जाकर माफी मांगना चाहता हूँ। मैं वाकई एक अच्छा इंसान हूँ लेकिन क्या करूँ, ये परिस्थिति ऐसी है कि कोई मेरा मन नहीं समझ सकता।
1: पता नहीं पवन, तुम कितना सही सोचते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसी तरीके से पूरी जिंदगी तो बिल्कुल नहीं काटी जा सकती।
2: 2 साल तो कट गए, शायद ऐसे ही जीना लिखा हो मेरी किस्मत में। और तुम चाहो तो किसी अलग रास्ते पर जा सकती हो। मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी को नरक नहीं बना सकता।
1: बस यही सुनना बाकी रह गया था मेरे लिए, वो भी आज के दिन जब तुम अपने पापा से हमारी शादी की बात कहने वाले थे। वाह पवन वाह, कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि मैं कोई अलग राह चुन लूं। इसी दिन के लिए हमने एक दूसरे का साथ दिया था शायद, है ना? पता नहीं तुम अपनी सोच कब बदलोगे।
2: मीनाक्षी मीनाक्षी मेरी बात सुनो, चली गई, ये भी मुझे छोड़कर चली गई, छोड़ दो मुझे अकेला, छोड़ दो सभी, परिवार की नजरों में तो मैं गिर ही चुका हूं। अब मीनाक्षी क्यों, आखिर क्यों जी रहा हूं मैं ऐसे क्यों जी रहा हूं?
3: अरे भाई संभाल कर, अभी रेलिंग से गिर पड़ते जनाब।
2: जी आप?
3: मैं आनंद राव, इस होटल का मैनेजर। देख रहा हूं कि हॉल में चल रही पार्टी में से आप दोनों बड़ी जल्दी बाहर आ गए, कुछ पर्सनल ना हो तो शेयर करेंगे?
2: क्या पर्सनल और क्या पब्लिक है सर, सब कुछ बस चल रहा है, किसी ना किसी तरीके से चल रहा है।
3: अरे तुम्हारी उम्र में ये बातें
2: अच्छी नहीं लगती।
3: अच्छा अब समझा, मैडम गुस्सा हो गई है इसलिए तकलीफ हो रही है।
2: बात ये नहीं है सर, अब छोड़िए, भी सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं।
3: लेकिन आपकी परेशानी मुझे थोड़ी अपनी सी लगने लगी।
2: आपने सुना तो कुछ है नहीं मेरे बारे में। और
3: देखिए मिस्टर पवन जी, अपने आप से गुस्सा आदमी अलग ही नजर आता है। आपकी उम्र में मैं भी ऐसा ही था, माँ बाप से गुस्सा, इस जमाने से गुस्सा, लगता था जैसे मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है।
2: लेकिन इस तरीके की सोच का कोई हल तो होता नहीं।
3: देखो पवन, तुमने अभी इस जीवन को जीना है, कितनी अच्छी दोस्त मिली है तुम्हें, कितने अरमान होंगे उसके मन में तुम्हारे लिए, और तुम अपनी परेशानियों के कारण अपने साथ कितने लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो।
2: लेकिन आनंद जी, मैं अपने आप से यूं ही गुस्सा नहीं हूं, मैंने गलतियां की हैं, मैंने मेरे पापा का दिल दुखाया है, उन्हें धोखा दिया है मैंने।
3: लेकिन जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो फिर ये तकलीफ क्यों?
2: लेकिन पापा ने मुझे कभी माफ नहीं किया, वो हमेशा से ये ही सोचते हैं कि मैं एक नाकारा और बेकार लड़का हूं।
3: क्या उन्होंने कभी तुमसे ऐसा कहा?
2: वो तो मुझसे बात ही नहीं करते।
3: पवन यदि तुम्हें गलत ना लगे तो मुझे बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या था?
2: सर आप इतने अपनेपन से पूछ रहे हैं तो जरूर बताऊंगा। दरअसल मैं मेरे मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूं, पापा की कॉटन मिल्स है, उन्होंने मिल के एक्सपेंशन के लिए कहीं से कुछ पैसों की व्यवस्था कर रखी थी। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ये बात मेरे दोस्तों के बीच निकल गई। उनमें से कुछ दोस्त गलत आदतों के शिकार थे, उन्होंने मुझे बहला फुसलाकर घर से पैसे लाने को कहा और वो पैसे मैं जुए में हार गया। यही नहीं, उसी समय उस जुआ घर में वहां रेड पड़ी और हम सब पकड़े गए। पापा ने ही मेरी जमानत भी करवाई, लेकिन वो दिन है और आज का दिन पापा मुझसे सही तरीके से बात भी नहीं करते।
3: ओह बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, ये बात तो किसी भी पिता के लिए अपने ही मुंह पर तमाचा मार लेने जैसी है।
2: क्या ये क्या कह रहे हैं आप, इसमें पापा की क्या गलती है?
3: देखो पवन, तुम्हें छोटे से बड़ा तो पापा ने किया है, तुम्हारे विचार सोच और सारी बातों में उनकी परवरिश और संस्कार दिखाई देते हैं। अब तुमसे कोई गलती भी होती है तो वे यही मानेंगे ना कि उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई है।
2: हाँ बात तो आपकी सही है।
3: और वैसे भी अभी क्या करते हो तुम, और ये अच्छी खासी पार्टी छोड़कर क्यों चले आए?
2: जी मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूं, और पार्टी छोड़कर इसलिए आना पड़ा कि उस दिन जिन दोस्तों ने मुझे धोखा दिया था वे खुद भी इसी पार्टी में शरीक थे।
3: ओह आई एम सॉरी। लेकिन पवन तुम्हारे पापा को नहीं लगता होगा कि तुम उनकी बिजनेस में हेल्प करो?
2: पता नहीं, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा इस बारे में।
3: देखो पवन, वो तुम्हारी दोस्त वहां अकेली बैठी हुई है, वो देखो, जाओ और उसे मना कर लाओ।
2: क्या कहकर मनाऊं उसे मैं, वो ऐसे आदमी पर भरोसा कर रही है जैसे अपने आप पर ही भरोसा नहीं है।
3: लेकिन तुम अपनी परेशानियों के चलते उसका जीवन क्यों खराब कर रहे हो?
2: दरअसल आज मैंने उससे वादा किया था कि हमारे बारे में पापा से बात करूंगा, और
3: पार्टी में तुम्हें पुराने दोस्त मिल गए, तुम्हारा मूड खराब हो गया और तुमने तुम्हारी दोस्त का मूड खराब कर दिया, सही है?
2: अब मैं और क्या कहूं।
3: देखो पवन, मेरा छोटा भाई बिल्कुल तुम्हारी उम्र का था, उसके साथ भी यही परेशानी थी, उसे उसकी नौकरी में गलत इल्जाम में फंसाया गया था। इस बात पर पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, उसने अपने मन में यही बात सोच ली कि पापा उससे नाराज है, बस वो अपने आप में घुटता गया। कितने दिनों तक घर से गायब रहा। उसे हमने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं बच पाया। पिछले साल उसने आत्महत्या कर ली। और जानते हो, उसने पापा से माफी मांगी थी अपने सुसाइड नोट में। और सही बात तो ये थी कि पापा उससे नाराज कभी थे ही नहीं। उन्होंने सोचा था कि उसके ऑफिस की बात उसके सामने कहने से उसको तकलीफ होगी, इस वजह से वो चुप रहे। लेकिन इस चुप्पी ने हमसे हमारा भाई छीन लिया। ओह, बड़ा बुरा लगा सुनकर। हाँ, जब तुम्हें यहां देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा विशाल ही वापस आ गया है, इसलिए बिना किसी जान पहचान के तुमसे बात करने चला आया। तुमने बुरा तो नहीं माना?
2: कैसी बातें करते हैं सर, आज के जमाने में कौन किसी को अपना कहता है।
3: सच कहा तुमने, आजकल किसी को कोई अपना नहीं मिलता। इसीलिए पवन, मेरी एक बात मानोगे?
2: जी बोलिए।
3: देखो पवन, तुमने जो गलती की है उससे ये तो तय है कि तुम्हारे पापा को दुख हुआ होगा, लेकिन किसी भी पिता के लिए अपने बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि तुमने अपनी गलती के बाद से अपने पिता से माफी भी नहीं मांगी। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि तुम एक बार माफी मांग लो तो वे भी अपने मन की बात तुमसे कह सकें।
2: हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
3: देखो पवन, सबसे पहले तो अपनी दोस्त को मनाओ। वो अगर खुश रहेगी ना तो तुम खुश रहोगे। देखो, कहीं देर ना हो जाए।
2: जी, मैं अभी आया।
1: आनंद जी, नमस्ते।
2: अरे आप तो, आपका गुस्सा ठंडा कर ही दिया हमारे पवन ने, हैं? आखिर क्या जादू चलाया इसने?
1: आपने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है, आपका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया।
1: आनंद जी, मैं पवन को समझा कर हार गई थी। हर वक्त इसके साथ पिछले दिनों की भूल का साया बना रहता था, लेकिन आज आपने उसे सही बात बताई है। हम सभी कई बार बिना कुछ कहे ही ये मान बैठते हैं कि सामने वाला हमसे नाराज है, जबकि वो तो हमसे बात करने की इच्छा रखता है।
2: पवन के पापा के मन की बात को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। पवन को उनसे बात करनी चाहिए।
1: आपको सुनकर वाकई अच्छा लगेगा, पवन इस वक्त अपने घर पर ही बात कर रहा है।
2: क्या सचमुच?
1: हाँ।
2: माँ, मैं घंटे भर में वापस आ रहा हूँ। माँ, पापा कहाँ हैं?
4: बेटा, पापा फैक्ट्री के काम से कहीं गए हैं। तुम ठीक तो हो ना? तुमने पापा के बारे में पूछा?
2: मैं ठीक हूँ माँ, और शायद इतना ठीक मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। मैं आज पापा से बात करके उनसे माफी मांगने वाला हूँ माँ।
4: क्या तुम सचमुच पापा से बात करोगे? इस घर में फिर से वे पुराने दिन आ पाएंगे?
2: हाँ माँ, मुझे लगा कि इतने दिनों तक पापा मुझसे नाराज हैं, लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी इतनी बड़ी गलती पर मैंने तो कभी पापा से माफी मांगी ही नहीं। माँ
4: बोलो पवन।
2: माँ, पापा मुझे माफ तो कर देंगे ना?
4: कैसी बातें करते हो बेटा, वे तो कितने दिनों से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। आज उनका बेटा उन्हें वापस मिलने वाला है।
2: माँ, वो मैं।
4: हाँ पवन, बोलो बेटा।
2: जी वो माँ, मैं।
4: क्या मीनाक्षी भी साथ आ रही है?
2: अरे माँ, क्या आपको मेरे मन की सारी बातें मालूम है?
4: तुम माँ से कुछ नहीं छुपा सकते। तुम और मीनाक्षी एक दूसरे को पसंद करते हो, ये बात मैं और पापा पिछले कई दिनों से जानते हैं। यानी आज मुझे मेरे बेटे के साथ साथ बहू भी मिलने वाली है।
2: जी, अब मैं और क्या कहूँ?
4: पवन, मैं जानती हूँ तुझमें ये बदलाव लाने वाली मीनाक्षी ही है। वो तो मुझे पहली ही नजर में अपनी बहू के रूप में भा गई थी।
2: और माँ, वो आज हम दोनों ये भी कहने वाले थे।
4: बस पवन, अब तू फोन रख। तू तो ठीक है, मेरी बहू पहली बार मेरे घर आ रही है, मुझे तैयारी करने दे।
2: अरे,
4: फोन रख।
2: अरे लेकिन माँ सुनो तो, ये सारी माताओं को पता नहीं बहू का नाम सुनकर क्या हो जाता है, एकदम से बेटे का तो पत्ता ही काट दिया।
3: क्यों, माँ को बहू पसंद आ गई?
2: अरे आनंद जी, आप मीनाक्षी? तुम?
3: हाँ, मीनाक्षी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और वो तुम्हारा खिला हुआ चेहरा देखकर लगता है कि माँ घर में नई बहू के आगमन की तैयारी कर रही है। तो बहू रानी जी जाइए, आपकी सासू माँ पलके बिछाए अपने बेटे बहू का इंतजार कर रही है।
2: आनंद जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं?
3: सिर्फ एक वादा करके।
2: कहिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं।
3: पवन और मीनाक्षी, तुम दोनों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। जितनी खुशी आज तुम अपने माता पिता की आंखों में देख रहे हो, वादा करो कि यही खुशी जिंदगी भर उन्हें देते रहोगे। किसी भी तरीके से कोई भी गलती हो जाए तो अपने माता पिता से कभी दूरी नहीं बनाओगे।
1: हमें आशीर्वाद दीजिए।
2: सदा सुखी रहो।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाटक जिसका शीर्षक था मेरी सोच और जिसकी लेखिका थी अंतरा करवड़े जी। श्रोताओं, वक्त का पता ही नहीं चलता है। सच में अब मेरा आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। इजाजत दीजिए अपनी रेडियो सहेली ज्योति को और अब अगली सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं विवेक जी को बुलाना चाहूंगी। मायूस न होइए, खुश रहिए और सुनते रहिए सत्य स्वर जो है हर पल हर क्षण आपके साथ।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित और उनके साथ हैं मनिंदर सिंह मान साहब, जो आज हमें अधिकार के बारे में बताएंगे। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात नुपुर दीक्षित के साथ।

0: एक मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश के संविधान ने हमें कई सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन जब हम उन अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं, तो उनका उपयोग भी सही ढंग से नहीं कर पाते। तो आज के एक मुलाकात कार्यक्रम को हम ऐसे ही एक अधिकार को जानने के लिए समर्पित करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनिंदर सिंह मान साहब, जो इस वक्त प्रबंधन संस्थान के छात्र हैं। इसके साथ ही हाल ही में इन्होंने सूचना का अधिकार विषय पर एक छोटा सा अभियान चलाया था, जिसकी शहर भर में काफी प्रतिक्रियाएं रही। तो आइए हम बातचीत करते हैं श्री मनिंदर सिंह मान साहब से। मनिंदर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू नूपुर जी, धन्यवाद।
0: मनिंदर जी, जिससे पहले की बातों का दौर शुरू हो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर सूचना का अधिकार होता क्या है?
1: सूचना का अधिकार हमें अधिकार देता है हमारी सूचना लेने को, जो कि सरकारी फाइलों में पड़ी है, लेकिन ये सिर्फ सूचना तक ही सीमित नहीं रहता
0: जी।
1: इस अधिकार के जरिए हम अपने सभी सही काम, जिसके लिए हमें अब तक रिश्वत या घूस देनी पड़ती थी सरकारी ऑफिस में, वो बिना किसी विलंब के और बिना कोई रिश्वत दिए करवा सकते हैं। सो ये एक तरह से सिर्फ सूचना तक नहीं है, ये हर एक आदमी को सशक्त करता है कि वो अपना काम बिना किसी विलंब या बिना किसी घूस दिए करवा सके।
0: यानी कि बिल्कुल साधारण शब्दों में कहें तो एक आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार है ये अधिकार।
1: हाँ जी, आज के दौर में जब एक आम आदमी बहुत मुश्किल फेस करता है, जब वो सरकारी ऑफिस में जाता है, तो ये एक हथियार है जो कि उसको बिना किसी दिक्कत के सरकारी ऑफिस में उसका काम करने में बहुत सशक्त करता है।
0: मैं जानना चाहूंगी कि ये अधिकार भारतीय नागरिकों को कब से प्राप्त हुआ?
1: ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को अक्टूबर 12, 2005 में दिया गया। उससे पहले भी 12 स्टेट्स ने ये अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया था
0: जी।
1: लेकिन एक ही टाइम पे सभी सेंटर और स्टेट के सभी कार्यालयों में ये अधिकार 2005-12 अक्टूबर को मिला।
0: ओके, तो क्या वजह रही कि अचानक सरकार को कोई परिवर्तन करने का विचार आया और उसने देश के 100 करोड़ नागरिकों को इतना बड़ा अधिकार दिया?
1: नूपुर जी, ये एक गणतांत्रिक प्रक्रिया थी। ये एक अभियान चला बहुत बड़ा राजस्थान में, अरुणा जी ने चलाया, जहां पे लोगों ने इस हक की मांग की
0: जी।
1: क्योंकि उनको लगा कि जो वो रोज काम करते हैं सरकारी प्रोजेक्ट पे, उनको सही मुआवजा नहीं मिलता।
0: हाँ।
1: तो ये बहुत बड़ा अभियान चला और उस अभियान के जरिए लोगों की मांग को सरकार ने सुना और तब ये हक लोगों को दिया गया। ये पहल सरकार की तरफ से नहीं हुई, ये गणतांत्रिक प्रक्रिया हुई जिसमें सरकार ने सिर्फ लोगों की मांग को सुना और ये हक दिया।
0: यानी कि लोकतंत्र में आम आदमी की सुनी गई और जनता की मांग को स्वीकार दिया गया।
1: बिल्कुल।
0: क्या भारत के पहले भी ये अधिकार दूसरे देशों के नागरिकों को मिला था?
1: ये अधिकार इस वक्त 72 से ज्यादा देशों में है
0: जी।
1: और अभी हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी ये अधिकार दिया है, लेकिन भारत में ये अधिकार सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और क्यों ना हो, हम सबसे बड़ा गणतंत्र है, तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के कारण सबसे ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी होने का भी हमी को हक है।
0: अगर एक आम आदमी की दृष्टि से देखें तो बहुत छोटा सा काम होता है ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना, है ना? और जब भी हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, बहुत जनरल काम है जिसकी प्रक्रियाएं सुनिश्चित कर दी गई है, लेकिन इस तरह के काम में कई बार ढेर सारी अड़चनें आती हैं जिनके कारण स्पष्ट नहीं हो पाते। तो क्या ऐसे मामलों में भी हम सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं?
1: हाँ जी, ये सूचना अधिकार हर छोटे से बड़े काम के लिए उपयोग हो सकता है। जैसे आपने बताया कि एक छोटा राशन कार्ड बनाना या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाना, तो ये बहुत देर तक फंसा रहता है और जब मांगने जाते हैं कि ये क्यों नहीं काम हो रहा, तो हमें ये भी नहीं बताया जाता कि ये काम में क्या दिक्कत आ रही है।
0: दिक्कत क्या आ रही थी,
1: तो
0: आपका काम इतनी वजह से रुका।
1: सूचना मांग सकते हैं कि आप पहले तो सभी रूल्स बताइए कि ये काम होने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर हमने ये सारे रूल्स फॉलो किए हैं तो ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ, किस ऑफिसर के टेबल पे ये काम रुका हुआ है और ये काम कब तक हो जाएगा। सूचना अधिकार में बहुत जरूरी है कि आप क्या सवाल पूछते हैं। सही सवाल पूछने से ही आपको सही सूचना मिलेगी और आपका काम होगा। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है ये देखने के लिए कि कौन कौन से सवाल पूछने हैं, तो एक परिवर्तन है, एक संस्था जो कि एक हेल्पलाइन नंबर चलाती है
0: जी।
1: अगर आप वो हेल्पलाइन नंबर नोट करना चाहें तो मैं एक बार आपके लिए बोलूंगा।
0: जरूर बताइए।
1: 9718100180।
0: ओके।
1: 9718100180।
0: पूरे भारत में से कहीं से भी इस नंबर को डायल किया जा सकता है?
1: हाँ जी, अगर आप दिल्ली में हैं तो इस नंबर को सीधा डायल कर लीजिए, दिल्ली से बाहर सामने जीरो लगा के इस नंबर को डायल कर देंगे
0: जी।
1: तो वहां पे जो एक्टिविस्ट बैठे हैं वो आपको पूरी आपकी अर्जी लिखवा देंगे बिल्कुल सही सवालों के साथ, जिसके आपका काम हो जाएगा।
0: मैं चाहूंगी कि ये नंबर आप एक बार फिर हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि उन्हें नंबर को नोट करने का वक्त मिल सके।
1: 9 7 1 8 1 0 0 1 8 0,
0: और इसके आगे शून्य लगाना जरूरी है अगर दिल्ली के बाहर से इसे डायल किया जाए।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: मनिंदर जी, आप IIM कॉलेज में पढ़ते हैं जिसे भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज्यादा सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, तो आप लोगों की पढ़ाई और दूसरी व्यस्तताएं इतनी ज्यादा होती है, इन सबके बीच सूचना के अधिकार को लेकर एक अभियान चलाने का ख्याल कैसे आया?
1: जी, IIM में आपने सही कहा कि प्रेशर बहुत रहता है पढ़ाई का, लेकिन IIM में हमें एक्चुअली इनकरेज किया जाता है कि हम और भी गतिविधियों में शामिल हों
0: जी।
1: तो अभी हमारा एक क्लब है जिसे प्रगति के नाम से हमने चलाया है, जो कि समाज के लिए काम करता है, तो हम और भी उसमें काम करते थे, किसी स्वयंसेवी संस्था के लिए उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी मदद करना। तो वहीं प्रगति में हमें लगा कि युवा बहुत बड़े स्केल पे जुड़ा है सूचना अधिकार के साथ
0: जी।
1: और इंदौर में वो अभियान नहीं चल रहा है।
0: हाँ,
1: तो हमें प्रगति में लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस अभियान में पहल करें। तो हमारे 20 से 25 लोग प्रगति के साथ जुड़े थे, जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा काम रहते हैं, तो हर एक टाइम पे दो तिहाई लोग बिजी रहते थे और एक तिहाई थे जो इस अभियान को आगे चलाते थे।
0: हाँ,
1: लेकिन अच्छी बात यह हुई कि बाकी कॉलेजों के बाकी छात्र हमारे साथ आके जुड़े, और हम सिर्फ 25 लोग नहीं रह गए, हम 100 से ऊपर लोग थे जो इस अभियान से जुड़े।
0: यानी कि एक अच्छे काम की शुरुआत की तो फिर लोगों का साथ भी आपको मिलता चला गया।
1: हाँ जी, और साथ के बिना ये नहीं हो सकता था अगर हम देखें तो।
0: जिस दौरान आप अभियान चला रहे थे, एक दिन आप लोगों ने आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए भी रखा था, तो उस दिन किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई?
1: समस्याएं जो हमने पहले सोची भी नहीं थी कि एक कोई शख्स थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए पैसे लिए और सोचा कि प्रोविडेंट फंड के पैसे से वापस कर देंगे, लेकिन 6 साल से उनका प्रोविडेंट फंड ही नहीं निकल रहा है। एक शख्स थे जिनको कंपनसेशन मिलनी थी एक्सीडेंट के बाद
0: जी।
1: उनको कोर्ट ने जजमेंट भी दे दी कि कंपनसेशन दे दीजिए,
0: यानी कि न्यायालय ने ये आदेश जारी किया कि इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।
1: हाँ जी, लेकिन कौन उनको वो मुआवजा दिलाएगा यही नहीं पता लग रहा। कोई कहता है कि वकील दिलाएगा, कोई कहता है न्याय, तो कोई कहता है पुलिस दिलाएगी
0: जी।
1: तो सूचना का अधिकार ऐसे लोगों को बहुत जल्दी मदद कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक अर्जी डालनी है और साथ में 10 रूपये देने हैं, उससे ये साफ पता चल जाएगा ये किसकी जिम्मेदारी है।
0: चलिए हम पहले वाले सवाल की तरफ गौर करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोविडेंट फंड का कोई मामला हो कि 6 साल से आप कोशिश कर रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड का रुपया बाहर निकले लेकिन नहीं निकल पा रहा है, तो इस मामले में हम किस तरह से सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं?
1: बहुत आसान काम है, एक अर्जी लिखनी है, साथ में 10 रूपये लगते हैं सूचना अधिकारी को प्रोविडेंट फंड के, और उनसे ये पूछना है कि हमारा काम इतने दिनों से नहीं हुआ है, हमें डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बताइए, हमारे काम पे रोज रोज क्या क्या कार्रवाई हुई है, ये काम कब तक हो जाएगा, और जिस ऑफिसर ने ये काम नहीं किया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। अब ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल होता है, तो वो आपका काम ही कर देंगे।
0: बहुत सही कहा आपने, वाकई में अब तक हम सोचते थे कि किसी बड़े अफसर से बात कैसे की जाए, उसे अर्जी कैसे दी जाए, लेकिन इस अधिकार ने एक आम आदमी को इतनी शक्ति तो दी कि हम सीधे सवाल डाल सकते हैं कि हमारे काम में देरी क्यों हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा जो मामला आपने बताया मुआवजा राशि वाला, मेरे ख्याल से कई लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की समस्याएं झेली होंगी जहां दुर्घटना या किसी और मामले का मुआवजा अटक गया होगा। मुआवजे की घोषणा बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन जो वास्तव में उसका हकदार है उस तक पहुंचने में कई बार विलंब होता है, तो इस तरह के मामलों में कैसे हम इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं?
1: तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो कि आपने किस डिपार्टमेंट में अर्जी डालनी है
0: जी।
1: अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप इस केस में जैसे हमने कहा था कि आप कोर्ट में अर्जी डाल दीजिए। तो अगर आपने सही डिपार्टमेंट में अर्जी नहीं भी डाली है तो वो उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो सही डिपार्टमेंट तक आपकी अर्जी पहुंचाएगा। और आप अर्जी के नीचे अपना पता और अपना फोन नंबर देते हैं और आपके पते पर सही सूचना पहुंचाना फिर उनका काम हो जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर वो सूचना आप तक पहुंचती है, अगर वो नहीं पहुंचती तो सूचना अधिकारी को प्रतिदिन 250 रूपये का जुर्माना लगता है जो उनकी अपनी तनख्वाह में से जाता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: इसी कारण ये जो अधिकार है ये इतना शक्तिशाली बना है।
0: हाँ, वरना जिस तरह से काम में देरी हो रही है उसी तरह से सूचना में देरी भी हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। अक्सर गांवों में देखने में आता है कि सरकार की तरफ से गांव में एक स्कूल खोल दिया जाता है, शिक्षक को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कई मर्तबा देखने में आता है कि शिक्षक या तो समय पर स्कूल में पहुंचते नहीं है या लंबी छुट्टियों पर होते हैं, तो इन सब के चलते पढ़ाई में बहुत व्यवधान आ जाते हैं। तो क्या ऐसे मामलों में भी सूचना के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, ऐसे मामलों में सूचना का अधिकार का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। सूचना अधिकार में ये लिखा गया है कि हर नागरिक वो सूचना ले सकता है जो कि भारत देश का एक विधायक एमएलए या एमपी ले सकता है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि महीने में वो टीचर या वो डॉक्टर कितने दिन उस स्कूल या अपनी क्लिनिक में आए, लेकिन गांव में होने के कारण आपको पता है कि वो उन दिनों में नहीं आए।
0: जी।
1: तो आप एक तरह से लोगों के जरिए प्रेशर जनरेट कर सकते हैं कि कागजों में लिखा है कि ये महीने में 25 दिन आए, लेकिन ये वास्तव में 5 ही दिन आए।
0: हाँ, हाँ।
1: तो ये आपको सीधी सीधी सूचना मिल जाती है वहां से।
0: यानी कि सरकारी अस्पताल, स्कूल, सरकारी कॉलेज,
1: बिल्कुल,
0: और समस्त सरकारी विभागों में हम इस अधिकार का उपयोग कर
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: आप वो सभी सूचना ले सकते हैं जो कि एक एमएलए या एक एमपी ले सकता है। तो इतनी शक्ति दी गई है एक आम नागरिक को भारत में इस अधिकार के जरिए।
0: मान साहब, मैं यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमारे देश में या विदेशों में ऐसा कोई प्रकरण सामने आया है जहाँ सूचना के अधिकार के चलते एक आम आदमी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो?
1: जी, एक दिल्ली में जैसे एक केस बहुत सुनने में आता है, एक नन्नू थे जिनका कि राशन कार्ड नहीं बन रहा था, तो बहुत सालों से वो सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सूचना अधिकार की अर्जी डाली तो 3 ऑफिसर सरकारी ऑफिस से उनके घर के बाहर आके खड़े हो गए। तो ऐसी शक्ति एक आम आदमी को पहली बार देखने में मिली है,
0: बिल्कुल,
1: जो कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र माना जाता है उसमें। सो ये सही तरीके से गणतंत्र को लेके आया है भारत के समाज में ये अधिकार।
0: जी, वैसे आपने परिवर्तन हेल्पलाइन के बारे में तो बताया, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर हम में से किसी को भी सूचना के अधिकार का उपयोग करना है तो जो आवेदन पत्र हम लिखें वो किस तरह से लिखें?
1: आवेदन पत्र पहले तो लिखा जाता है PIO, जो सूचना अधिकारी है, वो हर विभाग में एक सूचना अधिकारी बैठे जाते हैं जिनको आवेदन पत्र लिखा जाता है।
0: हाँ।
1: उसके बाद आवेदन पत्र, अगर आपका कोई काम रुका है या अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड आवेदन पत्र है जो बना हुआ है, उसमें ये मांगा जाता है कि पहले तो ये काम करवाने के लिए रूल्स क्या है।
0: हाँ।
1: क्या नियम है, उसके बाद ये मेरा काम कितने दिन में होना चाहिए था, उसके बाद प्रतिदिन मेरी अर्जी पे क्या क्या काम हुआ है वो बताइए, किस ऑफिसर के टेबल पे ये फाइल रुकी हुई है वो बताइए, अगर ये काम में देरी हुई है तो उस ऑफिसर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा वो बताइए।
0: तो ये पूरा बना हुआ फॉर्म मिल जाता है?
1: ये सूचना अधिकार में एक बड़ी चीज है कि किसी फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, आप एक खाली कागज पे अर्जी लिख के साथ में 10 रूपये दे देंगे तो आपकी अर्जी वो मानी जाएगी।
0: तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि किसी भी तरह के फॉर्म की जरूरत नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ एक खाली कागज पर हमें अपनी बात को लिखना होता है।

0: पे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। जैसे एक जगह थी जहां पे सड़क बनी दिल्ली में,
1: जी
0: और सड़क बनने के 10 दिन बाद ही टूट गई। तो आप प्रमाण ले सकते हैं उस सड़क का, उस सड़क में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका, और वो सरकारी प्रमाण दिया जाएगा और उसको आप चेक करवा सकते हैं किसी भी लैब में।
1: हाँ हाँ
0: तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है और वो मटेरियल सरकारी स्टैंडर्ड का है या नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप ऐसी अर्जी डालते हैं तो आपकी अर्जी का जवाब देने से पहले पहले वो सड़क भी बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है।
1: तो उम्मीद है कि इस अधिकार के बारे में जागृति धीरे धीरे फैलती जाएगी और हर जगह काम वक्त पर, समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे होंगे।
0: लेकिन ये निर्भर करता है हम पे, भारत के नागरिकों पे, कि हम इस हक का कैसे यूज करते हैं।
1: मनिंदर जी, क्या अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में आपने कभी राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया?
0: जी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जितनी बार भी मैं इसको इस्तेमाल करना चाहा, मैंने सिर्फ नाम ही लिया और नाम लेने से इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, उससे पहले ही काम हो गए। क्योंकि मैंने सिर्फ व्यक्तिगत यूज के लिए इसे करना चाहा था।
1: जी
0: तो इसकी असली शक्ति इसी बात में है कि इसे आधे काम तो इसका नाम लेने से ही हो जाते हैं।
1: मनिंदर जी, अक्सर देखने में आया है कि हमारे यहाँ पर आम नागरिक के पास अधिकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि सामर्थ्यवान के आगे पूरी दुनिया झुकती है, तो कई बार हम अपने अधिकारों का उपयोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि हम जिसके विरुद्ध इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर एक भय मन में आ जाता है कि यदि हमारा नाम उजागर हो गया या हमारे बारे में पता चल गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ दूसरा नुकसान पहुंच जाए।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। कई लोगों पे हमले भी हुए इसके कारण, लेकिन फिर एक बहुत अच्छा तरीका ये इजाद किया गया कि एक अर्जी देने में 10 रुपए ही लगते हैं।
1: जी
0: तो आप भारत की 10 अलग अलग जगह से ये अर्जी भिजवा दीजिए।
1: हाँ हाँ
0: तो कोई कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, वो कन्याकुमारी और कश्मीर दोनों जगह पे तो जा नहीं सकता।
1: बहुत खूब कहा सर आपने। मनिंदर जी, यहाँ आकर हमारे श्रोताओं को ढेर सारी जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद नुपुर जी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित और उनके साथ थे मनिंदर सिंह मान साहब, जिनके द्वारा हमें अधिकार के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आरवीए ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसके लेखक हैं माइकल होजेस और प्रस्तुत करता है माइकल होजेस एवं नलिनी गहलोद। और वार्ता का शीर्षक है सदुपयोग या दुरुपयोग।

0: युवा विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है एक बातचीत, सदुपयोग या दुरुपयोग। इसके लेखक है माइकल हॉजिस और बातचीत में भाग ले रहे हैं नलिनी गहलोत और माइकल हॉजिस।
1: युवा और विकास सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को नलिनी गहलोत
0: और माइकल हॉजिस का
1: नमस्कार। हाँ तो माइकल जी, कहिए आज हम अपने युवा श्रोता साथियों के लिए किस विषय पर और क्या बातचीत करने जा रहे हैं?
0: देखिए नलिनी जी, इसके पहले कि मैं अपने श्रोताओं को यह बताऊं कि आज हम उनके लिए किस विषय पर और क्या बातचीत करने जा रहे हैं, उसके पहले मैं कुछ और बात भी करना चाहूंगा।
1: तो जल्दी से अपनी वो बात भी कह डालिए कि हम अपनी बातचीत शुरू कर सकें।
0: मैं ये कहना चाह रहा था कि वैज्ञानिकों की नित नई खोज ने आज हमारा जीवन कितना आरामदायक और सुखमय बना दिया है, नहीं क्या?
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा माइकल जी, आज वैज्ञानिकों की खोज ने हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल आरामदायक और सुख से भरा हुआ बना दिया है।
0: नलिनी जी, इसका कोई एक उदाहरण देना चाहेंगे आप?
1: इसके लिए एक नहीं माइकल जी, बल्कि कई उदाहरण दिए जा सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे कि अपनी टीवी, वॉशिंग मशीन है ना, ओवन हो गया, मिक्सी रोटी बनाने के लिए मशीन, और कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप तो आम चीज है।
0: अच्छा, जरा ये बताइए कि इन सब में सबसे अधिक जीवन को आरामदायक और सुखमय बनाने वाली कौन सी चीज है?
1: मेरे ख्याल से तो मोबाइल फोन है।
0: बिल्कुल ठीक कहा नलिनी जी। तो आज हम युवाओं द्वारा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली वस्तु या संचार के साधन मोबाइल पर बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे युवा साथी सबसे अधिक मोबाइल का उपयोग करते हैं।
1: जी माइकल जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि हमारे आज के जो युवा हैं वो सबसे अधिक मोबाइल का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो जरूरी या खास बात हो या कि फिर बेवजह की गप्पे ही मारना हो, उनका काम मोबाइल के बिना तो चल ही नहीं सकता।
0: लेकिन नलिनी जी, जहां मोबाइल बहुत काम की वस्तु में गिनी जाती है, जहां वह एक आज की दिनचर्या की एक अहम वस्तु है, वहीं अब आए दिन उसके दुरुपयोग की बातें भी होने लगी हैं।
1: बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं माइकल जी कि जब से मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग वीडियो और कैमरों का समावेश हुआ है ना, तब से मोबाइल का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
0: बिल्कुल, फिर चाहे मोबाइल का दुरुपयोग अश्लील एमएमएस, अश्लील एसएमएस, वीडियो क्लिपिंग या फिर लड़कियों को परेशान करने में या फिर आतंकवादियों द्वारा बम आदि बनाए जाने में क्यों न बढ़ाओ।
1: जी, लेकिन मैं एक समझती हूँ कि जब से हमारी और विशेषकर की युवाओं की जीवन शैली में बदलाव आया है, तब से आज की युवा पीढ़ी में जागरूकता भी बढ़ी है और वे पहले की अपेक्षा और अधिक सजग और जागरूक हुए, आपको ऐसा नहीं लगता?
0: देखिए, उनकी इसी जागरूकता के कारण आज के अभिभावक या माता पिता भी उन पर किसी भी प्रकार की बंदिश लगाने से पहले सोचते हैं और उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
1: जी माइकल जी, हालांकि युवा भले ही जागरूक हो गए हों, अपना बुरा भला समझने लगे हों, लेकिन उनकी जागरूकता और सजगता पर उनकी उम्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा है नलिनी जी, उम्र में परिपक्वता न होने के कारण, अनुशासनहीन होने के कारण ही अक्सर उनके निर्णय भी किसी मुसीबत को आमंत्रित करते हुए देखे जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और इसीलिए आज हालात ये हैं कि युवा या किशोर उम्र की बेटी जो होती है वो घर से निकलकर जब तक बाहर से घर वापस न लौट आए, तब तक माता पिता या अभिभावकों को बेटी की चिंता बनी ही रहती है।
0: जाहिर सी बात है नलिनी जी, जागरूकता और सजगता के बावजूद भी आज के युवाओं के सही और गलत की ठीक तरह से पहचान उनको नहीं है, इसलिए उनके माता पिता और अभिभावक उनके सही सलामत घर लौटने तक जरूर चिंता करते हैं और करेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि वे जानते हैं ना माइकल जी कि न तो वे अभी परिपक्व ही हुए हैं और न ही उन्हें अपनी उम्र का अभी कोई थोड़ा सा भी अनुभव ही है, विशेष करके लड़कियों को।
0: आजकल के बदलते हुए जमाने में नलिनी जी, अब लड़का लड़की की दोस्ती को जमाने ने एक विपरीत लिंग की दोस्ती और महज लड़का लड़की के संबंधों से अलग एक साफ सुथरी और निस्वार्थ मित्रता के रूप में भी देखना शुरू कर दिया है।
1: हाँ,
0: या आप कह सकते हैं कि अपना लिया है।
1: हाँ, ये तो सही है, लेकिन माइकल जी, अब विपरीत लिंग के साथ का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ प्रेम संबंध ही रह गए हैं, बल्कि उसे दोस्ती के मायने के अर्थ के रूप में भी लिया जाने लगा है,
0: स्वच्छ और निस्वार्थ दोस्ती।
1: बिल्कुल, और यह एक बहुत अच्छी बात है समाज के लिए।
0: बिल्कुल नलिनी जी, लेकिन ऐसी मित्रता का सदुपयोग होने के अलावा अब ऐसी विपरीत लिंगों की मित्रता का दुरुपयोग होना भी आम बात होता जा रहा है। यदि ये कहा जाए कि आजकल इस प्रकार की दोस्ती का नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा।
1: हाँ माइकल जी, ये बात तो सही है कि आजकल इस प्रकार की जो मित्रता का दुरुपयोग है
0: जी,
1: वो हमारे समाज में देखने सुनने और पढ़ने को आमतौर पर मिली जा रहा है।
0: नलिनी जी, इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।
1: कैसा?
0: एक कॉलेज पढ़ने वाली लड़की है, उसके साथ लड़के भी पढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है कि अन्य लड़कों की तरह उसकी भी लड़कों लड़कियों से समान रूप से दोस्ती थी।
1: माइकल जी, आजकल के हिसाब से तो ये बिल्कुल होना ही है।
0: जी हाँ, और मैं ये भी बताना चाहूंगा नलिनी जी कि चार लड़के और तीन लड़कियों का उनका अपना एक अलग ही ग्रुप था।
1: अच्छा।
0: एक दिन इन सातों ने कहीं आउटिंग का एक प्रोग्राम बनाया
1: जी,
0: लेकिन दो लड़कों ने आउटिंग जाने के एक दिन पहले शाम को, एक दिन पहले शाम को ही दो लड़कों और एक लड़की को मोबाइल पर यह खबर दे दी कि कल आउटिंग का प्रोग्राम कैंसिल हो गया।
1: ओहो, मतलब कि ये उनके मन में कुछ बुरी योजना चल रही थी, है ना? ताकि मतलब वो जो लड़के हैं वो सिर्फ उन दो लड़कियों के साथ ही जा सकें।
0: बिल्कुल नलिनी जी, तभी तो उन्होंने केवल उन दो लड़कियों को छोड़कर ही बाकी सभी को प्रोग्राम कैंसिल हो जाने की बात कही, क्योंकि वे दोनों लड़के, जैसे कि मैं पहला भी कह चुका हूँ, केवल उन दो लड़कियों के साथ ही आउटिंग पर जाना चाहते थे।
1: इसीलिए ना माइकल जी, उन्होंने उन्हीं दोनों लड़कियों को प्रोग्राम कैंसिल होने की झूठी खबर नहीं दी होगी।
0: हाँ, क्योंकि उनके मन में इन्हीं दो लड़कियों को लेकर कुछ बुरा जो चल रहा था।
1: ओहो, अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ?
0: फिर वही हुआ जो उन दोनों लड़कों ने सोच रखा था।
1: जैसे?
0: वे केवल उन दोनों ही लड़कियों को लेकर आउटिंग पर चले गए।
1: उन लड़कियों ने बाकी साथियों के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था क्या?
0: क्यों नहीं, पूछा था, जरूर पूछा था, लेकिन उन दोनों लड़कों ने ये कहकर उन्हें चुप करा दिया था कि बाकी लोगों ने उन्हें फोन कर न आने की बात कही थी।
1: ओहो, फिर क्या हुआ?
0: फिर क्या था, फिर वे चारों ही आउटिंग पर चले गए और वहाँ पर उन दोनों लड़कों ने वही सब किया जिसका प्रोग्राम बनाकर वे दोनों उन दो लड़कियों को दोस्ती के नाम पर लेकर आए थे।
1: क्या मतलब माइकल जी?
0: मतलब ये नलिनी जी कि उन्होंने एक सुनसान जगह पर उन दोनों लड़कियों को ठंडा यानी कोल्ड ड्रिंक पिलाया जिसमें नशे की गोलियां मिलाई थी उन्होंने।
1: अच्छा अच्छा।
0: और जिससे वो लड़कियां बेसुध हो गई थी।
1: मैं समझ गई माइकल जी, दोनों लड़कियों के बेसुध हो जाने के बाद उन दोनों लड़कों ने उनके साथ बलात्कार ही किया होगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल नलिनी जी, न केवल उनके साथ उन्होंने बलात्कार किया बल्कि उनकी अश्लील वीडियो क्लिपिंग और MMS वगैरह भी बना डाले।
1: बाप रे माइकल जी, ये तो उन दोनों लड़कियों के साथ बहुत बुरा हुआ।
0: ये तो कुछ भी नहीं नलिनी जी, इससे भी बुरा ये हुआ कि उन दोनों लड़कियों को उन दोनों बदमाश लड़कों ने जी भरकर ब्लैकमेल कर उनका खूब शोषण किया, आर्थिक भी और शारीरिक भी। उसके बाद उनके अश्लील वीडियो की CD बनाकर वे बाजार में बेचने लगे ताकि और आर्थिक रूप से कमाई कर सकें, और MMS को डाउनलोड कर यहाँ वहाँ भेजने लगे।
1: तो क्या उन लड़कों को पकड़ा नहीं गया?
0: उन्हें पकड़ा तो एक दिन जाना ही था, सो वे पकड़े भी गए, लेकिन जब उन्हें चाहे कठोर या लंबी सजा ही क्यों न दे दी जाए, मतलब पकड़ने के बाद उनको, लेकिन उससे क्या होने वाला, क्योंकि वो जितना लड़कियों का बुरा कर सकते थे वो तो वो कर चुके थे। और नलिनी जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये अधिकतर उन सभी केसेस में होता है जिनमें किसी भी लड़की या क्या कहना चाहिए फरियादी के साथ अगर किसी किस्म की बदतमीजी या शारीरिक शोषण या कुछ शारीरिक प्रताड़ना की बात होती है तो उसमें बाद में न्यायालय द्वारा वो आरोपी सिद्ध हो जाए या उन्हें सजा भी दे दी जाए तो मेरे ख्याल से वो क्षतिपूर्ति तो किसी भी हालत में नहीं हो पाती है लड़की की, क्योंकि वो सामाजिक रूप से इतनी बदनाम हो चुकी होती है, मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित हो चुकी होती है, मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि दुख उसका पीछा छोड़ता नहीं चाहे आरोपी को भले ही सजा हो जाए।
1: जी हाँ माइकल जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही। और उन दोनों लड़कों को फांसी दे देने के बाद भी क्या उन लड़कियों की इज्जत और आबरू वापस आएगी क्या? वो तो आने से रही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? और उनकी जो बर्बादी हुई, जो उनकी बदनामी हुई, वह भी किसी तरह के यश में तो बदलने से रही?
0: बिल्कुल नहीं रही। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपने भी कहा कि फांसी दे देने से कुछ नहीं होता, यानी कि अगर आरोपी को फांसी की सजा दे दी जाए, उसके प्राण ले लिए जाए, तो उससे पूर्ति तो होती नहीं जो नुकसान लड़की ने उठाया है, लड़की को जो नुकसान हुआ है। और वही जो सामाजिक यश वगैरह की बात मैं कर चुका हूँ, आप भी कर रही हैं, तो वो किसी भी तरह से बदनामी एक यश में तो बदलने से रही, और उन लड़कियों को इस हादसे से दो चार होना पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और विपरीत लिंग की मित्रता के दुरुपयोग के ही कारण।
1: जी बिल्कुल माइकल जी, उन लड़कों ने मित्रता और मोबाइल का सदुपयोग करने की बजाय सचमुच उसका दुरुपयोग ही किया है।
0: जी हाँ नलिनी जी, ऐसी बातें आए दिन हमें सुनने पढ़ने और टीवी पर देखने को मिलती रहती हैं। लड़कियां घर से निकलती हैं तो कई बार वे माता पिता और भाई को बताकर जाती हैं कि वे कहाँ और क्यों जा रही हैं और कब तक वापस आ जाएंगी।
1: बिल्कुल सही।
0: कुछ लड़कियां, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो अपने माता पिता भाई या घर पर ये बताना सोचती हैं कि शायद कोई जरूरी नहीं है, या वो जानबूझकर नहीं बताती कभी कभी। वो बस ये कि हाँ हम आ रहे हैं, हम वहां जा नहीं, बस अब भी गए अब भी आइए, इस तरह से करके बातचीत को टाल के वो घर से निकल जाते।
1: जी बिल्कुल सही। और कई बार तो ऐसा होता है माइकल जी कि वे अपने माता पिता और अपने घर में जो उनके भाई हैं उनसे छिपाकर या फिर झूठ बोलकर भी चली जाती हैं। लेकिन झूठ बोलकर जाते समय वे उन अनजाने खतरों से बिल्कुल ही अनजान रहती हैं जो उनके रास्ते में घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे कि आपने जो भी किस्सा बताया, एक वही उदाहरण ले लीजिए कि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था और वो लोग चले गए थे,
0: और उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या
1: हुआ? बहुत बहुत बुरा भुगतना
0: पड़ा, हादसे का शिकार हो गई।
1: बिल्कुल।
0: और इसके बाद उन्हें भोगनी पड़ती है जीवन भर की एक त्रासदी।
1: सही बात।
0: उस स्थिति में जबकि वो अपने घर पर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करके ना जाएं कि वो कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कब तक आ जाएंगी, और अगर वो स्थिति स्पष्ट नहीं करती, बिना बताए ऐसे ही चुपचाप चली जाती हैं, तो फिर जो हादसे होते हैं उसके बाद उन्हें जीवन भर के लिए त्रासदी का सामना करना पड़ता है, त्रासदी भोगना पड़ती है, जो कभी कभी आत्महत्या जैसे अव्यवहारिक कदम पर भी उसी पर ही समाप्त होती है कभी कभी।
1: बिल्कुल सही।
0: क्योंकि वो लड़की जीवन से इतनी निराश, इतनी परेशान हो जाती है कि फिर उसके सामने आत्महत्या के सिवा और कोई राह सूझती नहीं या दिखाई नहीं पड़ती।
1: इसलिए माइकल जी, हम तो अपने सुनने वाले सभी युवा श्रोता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि आधुनिकता के नाम पर वे अपनी आंखें बंद करके किसी भी विपरीत लिंग से, लड़के या लड़कों से दोस्ती बिल्कुल भी ना करें।
0: हम यह नहीं कहते कि आप किसी युवा से दोस्ती ही ना करें।
1: हाँ, ये भी सही है।
0: बिल्कुल नहीं, दोस्ती करें लेकिन जांच परख कर।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्ती के बाद भी सतर्क और सजग जरूर रहें, यानी कि दोस्ती में एकदम
1: अंधे ना हो जाएं
0: और सामने वाले पे एकदम अटूट विश्वास ना करें, एकदम उस पर भरोसा ना करें। हालांकि सभी लड़के एक जैसे नहीं रहते हैं, लेकिन नलिनी जी ये भी एक बात है ध्यान रखने वाली कि सभी जिस तरह से कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं, उसी तरह से सभी लड़के भी एक तरह से नहीं होते हैं। अगर उनमें कुछ बदमाश है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लड़के अच्छे शरीफ भी हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन अपनी ओर से सावधान रहने और सावधानी बरतने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं।
1: बिल्कुल। और इसी प्रकार से माइकल जी, कई बार लड़कियां जो होती हैं वो मोबाइल से लड़कों के द्वारा अपनी फोटो खिंचवाती हैं, है ना, और ये एक होड़ सी हो गई है ना,
0: गलत फहमी भी रहती है।
1: हाँ, लेकिन यदि फोटो लेने वाला लड़का अगर शरीफ हुआ तब तो ठीक है ना, लेकिन अगर इसके विपरीत अगर यह लड़का अच्छा ना हुआ तो लड़कियों को यह हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा नलिनी जी। आजकल की तकनीक इस कदर बढ़ गई है कि कब किसके शरीर पर किसका चेहरा लगाकर कौन सा चेहरा और किस परिस्थिति का फोटो तैयार कर लिया जाएगा कहना मुश्किल है।
1: बहुत ज्यादा मुश्किल
0: है। किसी भी फोटो के द्वारा आजकल आपको उच्च तकनीक के माध्यम से किसी भी फोटो में आपको वो दिखाया जा सकता है जो कि आप नहीं हैं, या जो आप नहीं कर रहे हैं वो फोटो में आपको दिखाया जा सकता है कि आप ये कर रहे हैं। तो आजकल की उच्च तकनीक का एक दुरुपयोग
1: भी है और सदुपयोग। सही है माइकल जी, ये कहा जा सकता है कि कब नई तकनीक और संबंधों का कब सदुपयोग किया जा सकता है और कब दुरुपयोग किया जा सकता है, यह कहना मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है
0: जी,
1: है ना। और इसीलिए खास करके युवतियों को और विशेषकर महिलाओं को अपनी तस्वीरों के प्रति, जो आजकल वो खिंचवाती हैं या उनको बड़ा मजा आता है जो चीज खिंचवाने के अंदर, उसके प्रति उनको बिल्कुल गंभीर स्वभाव रखना चाहिए।
0: जी मेरे ख्याल से करते ही हैं हमारे युवा श्रोता, अगर हम हमारी बातचीत सुनते हैं तो उसका लाभ तो उठाते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप सभी युवा श्रोताओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए हम कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे।
1: बिल्कुल, और चाहेंगे कि आप आने वाला जो आपका कल है वो आज से और भी अच्छा हो।
0: अब माइकल
1: और नलिनी को
0: इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था सदुपयोग या दुरुपयोग। इस वार्ता के लेखक थे माइकल हॉजेस और प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस एवं नलिनी गहलोत। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है सितारों से आगे जहां और भी है, जिसके प्रस्तुतकर्ता है स्वतंत्र कुमार ओझा जी।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के युग संचार कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है सितारों से आगे जहां और भी है। इस शीर्षक को सुनकर आपको ताज्जुब तो होगा, होना भी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, एक सच्चाई है, एक यथार्थ है कि सितारों से आगे भी एक संसार है, ब्रह्मांड है, और भी इतना विस्तृत और फैला हुआ है कि जिसकी खोज आज भी इंसान कर रहा है। आप और हम सभी देख ही रहे हैं आज, यानी वर्तमान में विज्ञान की गति समय की गति के साथ साथ बड़ी तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया और विज्ञान की पत्र पत्रिकाओं और अखबारों के द्वारा हमें जानकारी मिलती रहती है कि हर रोज प्रतिदिन नए नए आविष्कारों की घोषणाएं होती हैं, और हम एक तरह से महसूस करते हैं कि अच्छा ऐसा भी होगा क्या, और कभी कभी हमें लगता है कि पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, अब जो ये हो रहा है क्या कहीं ये सब कोई चमत्कार तो नहीं है, ये सब क्यों हो रहा है, मनुष्य का ज्ञान और परिश्रम आखिर किस सीमा रेखा को छू रहा है, ये विचार तो आता ही है मन में। भविष्य और कल जो आ रहा है उसमें ये अनुसंधान, ये खोज और कितनी ऊंचाइयों का स्पर्श करेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी विज्ञान के जरिए संचार माध्यम अपने नए नए चेहरे लेकर हमारे सामने मौजूद है, हमारे साथ है, और आगे भी अनेक नए चेहरे लेकर आएगा और हम आश्चर्य से देखेंगे। थोड़ा पीछे मुड़ें, आज से लगभग 25-30 साल पहले तो हमें लगता था जैसे हम अन्य देशों के मुकाबले कितने पीछे हैं। अगर उन दिनों किसी इमरजेंसी में, यानी कि जिसको हम आपातकालीन हालत कहते हैं, उसमें अगर अपने किसी को दूसरे शहर में कोई खबर, कोई सूचना तुरंत देनी होती थी तो टेलीफोन विभाग की बिल्डिंग में जाकर लाइटनिंग कॉल हुआ करते थे उन दिनों में, जो बड़े महंगे होते थे, तो लाइटनिंग कॉल से ही ये काम करना पड़ता था। बहुत महंगा काम था, लेकिन अगर जरूरी खबर है, तुरंत सूचना देनी है, तो करना ही पड़ता था। अब आज संचार के माध्यम कितने बदल गए, उनमें कैसी चमत्कारी सुविधाएं हमें मिल गई हैं, ये सब अच्छी तरह से आप हम सभी जानते हैं। अब आगे और क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा, उनसे और क्या क्या नई नई सुविधाएं हमें मिलेंगी, इसकी कल्पना भी आज तो हम नहीं कर सकते, और न ही इस बारे में किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। पता नहीं टपाक से कोई चीज आ जाए, ऐसी चीज जो कभी देखी ना सुनी। हमें तो बस देखते रहना है कि कल जो आएगा वो क्या लेकर आएगा। तो आज 21वीं सदी में विज्ञान के द्वारा संचार उपकरणों के आश्चर्य करने वाले माध्यमों ने समूचे संसार को समय की तेज गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और दौड़ने के लायक तो बना ही दिया है, बना दिया है, इस बात को हम सभी स्वीकार करते हैं और एक तरह का बड़ा ही अच्छा उपहार है ये, और हम स्वागत करते हैं इस अनोखे उपहार का। चलिए कुछ ऐसी ही अन्य बातों की चर्चा करते हैं। एक समय पहले अखबारों में एक समाचार छपा था, जापान की एक फर्म ने एक रोबोट बनाया। अब ये रोबोट एक अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर का काम करे। सुनकर और पढ़कर ताज्जुब हुआ कि भाई ट्रांसलेशन कैसे करेगा रोबोट। जो भी दो व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलते हैं वे एक दूसरे की भाषा न तो समझते हैं और न ही जानते हैं। अब दोनों के बीच बात या चर्चा या संवाद तभी हो सकता है जब कोई तीसरा व्यक्ति जो दोनों भाषाएं जानता है वो अनुवाद करके एक दूसरे को समझाता जाए। लेकिन जब हमने इस नए आविष्कार के बारे में पढ़ा तो लगा कि इस नए आविष्कार के बाद अब जापान का ये रोबोट दोनों के बीच, जो दो बात कर रहे हैं अलग अलग भाषाओं में उनके बीच, भाषा के माध्यम से अनुवादक का काम करेगा। ये जो जापान ने रोबोट बनाया है अभी शुरू में वो केवल अंग्रेजी से जापानी और जापानी से अंग्रेजी में ही अनुवाद का काम कर रहा है, यानी काम शुरू हो गया है। अब कहने का अर्थ यही है कि एक जापानी व्यक्ति जो न तो अंग्रेजी बोल सकता है और न ही समझ सकता है, और इसी तरह अंग्रेज जापानी बोली न तो समझ सकता है और न बोल सकता है, तो ऐसी हालत में अब किसी व्यक्ति की बजाय यानी बीच में कोई इंसान ट्रांसलेट करके उनको समझाए, ये रोबोट का जो आविष्कार हुआ है ये अनुवादक का काम कर रहा है। और अब ये समाचार भी पुराना हो चुका है मित्रों, लेकिन कहीं न कहीं हमें विज्ञान के अनुसंधान और संचार के माध्यम से इस कथन की प्रामाणिकता अवश्य मिलती है कि जो भी हो रहा है उसकी कुछ सालों पहले तक तो कल्पना भी नहीं थी। इसी प्रसंग में सबसे पहले तो ये कि रोबोट अब ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, ये बात भी अब पुरानी हो गई है। अब इसके बारे में हम जो बात करने जा रहे हैं उसे भी हम क्या कहें, चलिए चमत्कारी कह लेते हैं। जी हाँ, अभी कोई 3 महीने पहले जर्मनी के वैज्ञानिक एच फ्रैंक इंदौर आए थे। विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच उनका भाषण आयोजित किया गया था हमारे इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, और ये विषय था रोबोट की एकदम से चौंका देने वाली खबर। तो इसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा, अपने भाषण को शुरू करते हुए, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब वो दिन दूर नहीं है जब रोबोट भी आम इंसानों की तरह मानवीय संवेदनाएं, उनका दुख दर्द खुशी न केवल व्यक्त कर सकेंगे बल्कि उन्हें प्रदर्शित भी कर सकेंगे। तब एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, विद्वान महोदय, ये कैसे, किस प्रकार होगा मानवीय संवेदनाएं, दुख दर्द खुशी, रोबोट कैसे होगा? तब विद्वान वैज्ञानिक एच फ्रैंक ने कहा, वो इस तरह कि रोबोट का उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान एक अटेंडेंट यानी सहायक के रूप में किया जाने वाला है। बाद में ऐसे प्रयास चल रहे हैं कि रोबोट भविष्य में ऑपरेशन करने में भी सक्षम होंगे और उनमें इस तरह के सेंसर उपकरण लगाए जा रहे हैं जिससे वे मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए उसके अनुसार काम कर सकें, व्यवहार कर सकें। श्रोताओं, इस भाषण से पूरे कक्ष में जैसे एक आश्चर्य से भरा सन्नाटा पसर गया। सभी विद्यार्थी एकदम चुप होकर के बात सुनते रहे और क्या पूछें, क्या बात करें इस बारे में, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि ये ऐसी खबर थी जिसको वास्तव में एक चमत्कार ही माना जा सकता है। तो श्रोताओं, क्यों नहीं हम विज्ञान की इस नई पहल को आज के युग संचार का एक ऐसा उपहार माने जिसकी कल्पना भी कुछ सालों पहले नहीं की जा सकती थी। अभिनंदन है आज के दौर के उन तमाम वैज्ञानिकों का जो वर्षों पहले उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर डॉक्टर इकबाल की इस लाइन को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी है। नमस्कार।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक था, सितारों से आगे जहां और भी हैं। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। हेलो दोस्तों, सर स्नेहा नमस्कार। आपकी रेडियो दोस्तोती फिर उपस्थित है समय 5 से 6 की सभा में नए कार्यक्रमों के साथ। इंतजार अब खत्म हुआ और सुनिए मेरे साथ रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अभी की सभा की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मंदर्पण और अंत में पर्यावरण। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है अंधविश्वास की तिजारत और राजनीति, और जिसके प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोर जी, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्रिय श्रोता मित्रों, फादर हरमन बंडोड़ एसपीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है अंधविश्वास की तिजारत और राजनीति। मित्रों, राम पुन्यानी जी अपने एक लेख में लिखते हैं, जहां एक ओर सेमेल इडामरक्कू नामक तार्किकवादी धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाने के आरोप में कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निर्मल बाबा पर धोखाधड़ी करने के आरोप है। निर्मल बाबा का दावा है कि वे देवीय शक्तियों के स्वामी हैं। उनके कार्यक्रम 40 से अधिक टीवी चैनलों पर प्रसारित होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बाकायदा पैसा भी चुकाया जाता है। निर्मल बाबा के पास आपकी और मेरी हर समस्या का देवीय हल मौजूद है। एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को निर्मल बाबा के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यद्यपि सेमेल इडामरक्कू और निर्मल बाबा के मामले अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, तथापि उनके बीच गहरा रिश्ता है। इडामरक्कू यह साबित करने में सफल रहे कि मुंबई में इरला इलाके में क्रॉस पर टंगे प्रभु ईसा की मूर्ति के पैरों के बीच से निकल रही पानी की धार कोई देवीय चमत्कार नहीं था। दूर दूर से श्रद्धालु इस चमत्कार को देखने और देवीय पानी का सेवन करने उस चर्च में पहुंच रहे थे। इडामरक्कू ने पता लगाया कि दरअसल चर्च के पास में बह रही एक नाली चौक हो गई थी और उसका पानी कैपिलरी एक्शन के जरिए ऊपर चढ़कर मूर्ति के पैरों के बीच से बह रहा था। इडामरक्कू के अपने समुदाय के लोग उनसे बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि इडामरक्कू ने उनकी आस्था को चोट पहुंचाई है। निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला ने अपने जीवन की शुरुआत व्यवसायी के रूप में की। उनका धंधा नहीं चला और सन 1970 के आसपास वे अचानक गायब हो गए। जब वे वापस लौटे तो वे देवीय शक्तियों से लैस थे। पहले उन्होंने पैसे खर्च कर टीवी चैनलों पर समय खरीदा। उनके शो में शामिल श्रोताओं को अपनी समस्याओं के बारे में उनसे प्रश्न पूछने के लिए पैसे दिए जाते थे। जब धंधा चलने लगा तो लोगों से निर्मल दरबार में हिस्सा लेने के लिए पैसे वसूले जाने लगे। निर्मल दरबार में बाबा अपने भक्तों की समस्याओं का हल सुझाते थे और इसके बदले हजारों रुपये लेते थे। कुछ ही सालों में निर्मल बाबा अरबपति बन गए और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। मित्रों, जो लोग प्रभु ईसा मसीह के पैरों से बह रहे नाली के पानी को श्रद्धापूर्वक पीते थे, उन्हें उस पानी का असली स्रोत बताना उनके धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना था। निर्मल बाबा से अपनी समस्याओं का हल चाहने वाले सैकड़ों लोग भी आस्था और विश्वास के कारण ऐसा करते थे। अक्सर विश्वास और अंधविश्वास के बीच की विभाजन रेखा बहुत अस्पष्ट होती है। आस्था और तार्किकता के बीच हमेशा आपसी संघर्ष चलता रहता है। अज्ञान और अदृश्य ताकतों में विश्वास और भविष्य के बारे में चिंता अतार्किक आस्था आने का मुख्य स्रोत है। इस आस्था के केंद्र में है विभिन्न धर्मगुरुओं की तथाकथित देवीय शक्तियां और दर्जनों स्वनियुक्त बाबा और भगवान, महामारियां, सूर्य और चंद्रग्रहण और हमारी पृथ्वी के आकार जैसे मामलों में पिछली कुछ सदियों में आस्था का स्थान तार्किकता ने ले लिया है। आज हम में से अधिकांश जानते हैं और मानते भी हैं कि महामारियां ईश्वरीय प्रकोप से नहीं फैलती और न ही राहु केतु के कारण ग्रहण होते हैं। इसके बावजूद राजनीति सहित ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें आज भी आस्था और विश्वास का बोलबाला है। राम मंदिर आंदोलन आमजनों की आस्था के दोहन का एक उदाहरण है। शरीयत के नाम पर सड़ी गली मान्यताओं और प्रथाओं से चिपके रहना इसका एक अन्य उदाहरण है। गुजरे समय में प्राकृतिक घटनाओं को भी आस्था से जोड़ा जाता रहा है। यह माना जाता था कि धरती चपटी है और इस संसार की रचना ईश्वर ने की है। इस तरह के किसी को हानि न पहुंचाने वाले विश्वास और लोगों की आस्था को सुनियोजित ढंग से एक दिशा में मोड़कर टीवी और मीडिया के एक हिस्से के माध्यम से इसे व्यवसाय बनाकर उससे अरबों रुपए कमाने में बहुत फर्क है। हमें यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज के समाज में आमजन स्वयं को अत्यंत असुरक्षित अनुभव करते हैं और आस्था उन्हें जीवन की कठिनाइयों से जूझने की भावनात्मक ताकत देती है। इस सबके बावजूद हमें कहीं न कहीं एक रेखा खींचनी होगी। हमें यह कोशिश करनी होगी कि वैज्ञानिक सोच, जिसे बढ़ावा देने की बात हमारा संविधान भी करता है, कि समाज में स्वीकार्यता बढ़े।
निर्मल बाबा के मामले में पुलिस और प्रशासन की नींद टूटी है और उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर समाज और राज्य को इडामरक्कू और उनके जैसे अन्य लोगों को कानून के पंजे से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की आस्था को चोट पहुंचाने संबंधी कानून का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए कि भारतीय संविधान की तार्किक सोच को बढ़ावा देने की मंशा भी पूरी हो सके और इडामरक्कू जैसे लोगों को संरक्षण मिले। निर्मल बाबा के मामले में मीडिया को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। आखिरकार निर्मल बाबा को भगवान बनाने में मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कहना गलत होगा कि निर्मल बाबा की गतिविधियां धार्मिक है और इडामरक्कू की धर्म विरोधी। यह मान्यता धर्म की गलत समझ पर आधारित है। हर धर्म में आत्मा है वे नैतिक सिद्धांत जिनका प्रतिपादन पैगम्बरों और अन्य धार्मिक नेताओं ने समय समय पर किया। संस्थागत धर्म और शरीयत व कर्मकांडों को धर्मगुरुओं ने धर्म का हिस्सा बनाया है। इन धर्मगुरुओं के अपने निहित स्वार्थ होते हैं और वे नहीं चाहते कि आमजन तार्किक ढंग से सोचे और धार्मिक मसलों पर बहस करे। हर धर्म में पैगम्बरों ने तत्कालीन समाज में प्रचलित बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। वे न्याय के लिए लड़े। उनके नाम पर जिस संस्थागत धर्म की स्थापना की गई वह बुराई के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, उल्टे वह बुराइयों और यथास्थितिवाद का पोषक है। वह ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है जिससे चंद लोग आनंद करें और बाकी कष्ट में अपना जीवन काटे। मित्रों, इतिहास गवाह है कि वैज्ञानिकों और तार्किक सोच रखने वालों को धर्मगुरुओं के कोप का शिकार होना पड़ा है। गैलीलियो को इसलिए सजा दी गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि धरती गोल है। जिन लोगों ने यह कहने का साहस दिखाया कि महामारियां ईश्वरीय प्रकोप का नतीजा नहीं होती, उन्हें जमकर प्रताड़ित किया गया। हर धर्म का पुरोहित वर्ग तार्किक सोच का घोर विरोधी रहा है क्योंकि इससे उनके विशेषाधिकार प्रभावित होते हैं। जहां यूरोप के समाज ने अंधश्रद्धा के विरुद्ध लड़ाई में लगभग विजय प्राप्त कर ली है, वहीं हम भारतीय आज भी अंधविश्वासों के मकरजाल से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास का कोई भी अध्येता यह जानता है कि ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, पेरिया रामास्वामी नायकर और भगत सिंह जैसे लोग जो सामाजिक परिवर्तन और न्याय के हामी थे में एक बात समान थी, उन सबकी सोच तार्किक थी। इसके विपरीत वे लोग जो सामाजिक रिश्तों को जस का तस बनाए रखना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा धर्म का सहारा लिया। धर्म के नाम पर उन्होंने पहचान आधारित मुद्दों को खोद निकाला और उनका इस्तेमाल अपने प्रभाव को बढ़ाने और अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए किया। हमारे देश के अधिकांश निवासियों की मानसिकता आज भी सामंती है। नई अर्थव्यवस्था के उदय, उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न असुरक्षा के भाव से भी उन्हें जूझना पड़ा है। ऐसी स्थिति में आमजनों, विशेषकर मध्यम और उच्च वर्ग का बाबाओं की शरण में जाना स्वाभाविक है। मित्रों, निर्मल बाबा तो बाबाओं की फौज में मामूली सिपाही है। इस फौज में कई ऐसे बाबा शामिल है जो निर्मल बाबा से कहीं अधिक वाक्पटु, बुद्धिजीवी और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से अपने अनुयायियों की बड़ी बड़ी सेनाएं तैयार कर ली हैं। ये भगवान आस्था के सौदागर हैं। वे आस्था, चमत्कार और आध्यात्मिकता की एक ऐसी चटनी तैयार करते हैं जिसे असुरक्षा और भविष्य के प्रति सशंकित मध्यम वर्गीय लोगों को चटाकर वे अपना उल्लू सीधा कर सके। जाने माने समाज वैज्ञानिक मीरानंद अपनी पुस्तक गॉड मार्केट यानी भगवान का बाजार में लिखती है कि पिछले 3 दशकों में इस बाजार में जबरदस्त उछाल आया है। बाबाओं और भगवानों की भीड़ से घिरा आम आदमी मानो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता ही खो बैठा है। इन भगवान के अनुयायियों में शक्तिशाली राजनेता, शीर्ष अधिकारी, डॉक्टर, जज व अरबपति व्यवसायी शामिल हैं। ये भक्त इन भगवानों को रईस और प्रभावशाली बनाते हैं। इसके विपरीत इडामरक्कू जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। यही दर्शाता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। मित्रों, जो लोग बाबाओं की चरण वंदना करते हैं और जो लोग इडामरक्कू जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर करते हैं, उन्हें परखने की कसौटी यह होनी चाहिए कि उनमें से कितने
अपने अपने धर्म की नैतिक शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनमें से कितनों को समाज में हो रहे अन्याय और अत्याचार को देखकर गुस्सा आता है, उनमें से कितने जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इन सभी मसलों पर बाबा और भगवान कभी अपना मुंह नहीं खोलते। इस बात की महती आवश्यकता है कि हम तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें और निर्मल बाबा जैसे धोखेबाजों के जाल में न फंसे, जिन तथाकथित चमत्कारों की व्याख्या मान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर की जा सकती है, उसे चमत्कार मानने से हम सबको स्पष्ट इनकार कर देना चाहिए। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था अंधविश्वास की तिजारत और राजनीति, और जिसके प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोजी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। और आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सिर्फ प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए अब हम सुनते हैं अभी की सभा में अगला कार्यक्रम जो है हमारी सखियों के लिए। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण में और अभी की सभा का वार्ता का शीर्षक है आप भी कर सकती है और जिसकी लेखिका एवं प्रस्तुत करता है समता बोरेकर जी।

लीजिए प्रस्तुत है नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत आप भी कर सकती हैं। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता बोरेकर। श्रोता साथियों, दुनिया बदल रही है और साथ साथ महिलाओं को लेकर दुनिया की सोच भी बदल रही है। लोगों ने माना है कि बुद्धिमानी का पैमाना किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि वह अमुक व्यक्ति महिला है या कि पुरुष। ICICI में महिला और पुरुष एग्जीक्यूटिव के बीच पदोन्नति की होड़ में प्रायः महिलाओं ने पुरुषों को परास्त किया है। यह न तो संयोग है और न ही पक्षपात। ICICI बैंक के CEO कुंडापुर वामन कामत के अनुसार, द्रुत गति से दौड़ने वाले प्रतिस्पर्धी बिजनेस ग्रुप बुद्धिमान और दूरंदेशी लीडर्स खोजते हैं, महिला या पुरुष को नहीं। यदि इस दौड़ में ICICI बैंक में महिलाएं अव्वल रही तो इसका कारण है उनकी प्रतिभा और प्रतिबद्धता। श्री कामत के अनुसार, महिलाएं पुरुष से अलग सोचती हैं। वे टीम को ज्यादा सलीके से लीड करती हैं। पुरुषों की लॉयल्टी यानी ईमानदारी का आधार होता है प्राप्तियां यानी कि पे पैकेज, जबकि महिलाएं जॉब संतुष्टि को प्राथमिकता देती है। सन 2009 में श्री कामत की सेवानिवृत्ति के बाद ICICI की CEO की पोस्ट संभालने आई चंदा कोचर। दोस्तों, चंदा कोचर किसी जानकारी की मोहताज नहीं है। चंदा कोचर ने ICICI बैंक को देश की दूसरी सबसे बड़ी रिटेल बैंक बनाया है। दोस्तों, 23 साल के अपने अल्पावधि करियर में वे चौंकाने वाली द्रुत गति से दौड़ी। 1984 में उन्होंने ICICI को मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किया था। सन 2004 में वे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। 5 साल बाद वे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी

और अभी वे सीईओ की पोस्ट पर हैं। साथियों, चंदा कोचर की सफलता की कहानी उनकी दूरदर्शिता और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता की कहानी है। आईसीआईसीआई में चंदा कोचर ने प्रोजेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट की शुरुआत की। 32 वर्ष की उम्र में चंदा कोचर आईसीआईसीआई की कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस लॉन्च करने वाली कोर टीम की लीडर बना दी गई। इस दौरान वे अपने कारपोरेट कार्यालय के भव्य कैबिन से उठकर एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां पहले दस्तावेज रखे जाते थे। चंदा कोचर स्वयं कहती है, गैरेज नुमा कैबिन एवं एक जूनियर सहायक के साथ काम करते हुए देखकर मेरे एक पुराने परिचित ग्राहक को लगा था कि मेरी पदावनति हो गई है और यह एक सजा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल बनाया। उनकी सारी रणनीति पर यदि गौर करें तो कह सकते हैं कि कम मार्जिन, हाई वॉल्यूम बिजनेस टेक्नोलॉजी, वित्तीय सेवाओं की क्रॉस सेलिंग अर्थात एक ही ग्राहक को एक से ज्यादा सेवाओं की बिक्री और ग्राहकोन्मुखी उत्पाद जैसे होम लोन्स, व्हीकल लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड आदि पर चंदा ने ध्यान केंद्रित किया। वे कहती हैं, आईसीआईसीआई की चार ताकत है, वित्तयन, तकनीक, मानव संसाधन और गति। हमें सिखाया गया है कि हमेशा बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। जब एटीएम अस्तित्व में आए तो चंदा कोचर की दूरंदेशी का नमूना है आईसीआईसीआई द्वारा ऑफ साइड एटीएम मतलब शाखा परिसर के बाहर एटीएम लगवाना। एटीएम लाने का श्रेय भी आईसीआईसीआई को ही जाता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी आधारित कार्य प्रणाली से आईसीआईसीआई ने ग्राहकों को बैंक ही नहीं एटीएम तक पहुंचने की झंझट से भी मुक्त कर दिया है। देश में टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि की शुरुआत करने के साथ ग्राहकों को इनका अभ्यस्त बनाने का श्रेय भी आईसीआईसीआई को ही जाता है। यह चंदा कोचर का ही करिश्मा है कि आज हम अपने घर बैठे बैठे पर्सनल कंप्यूटर से रेल या हवाई जहाज यात्रा का टिकट बुक करवा सकते हैं, होटल में कमरा बुक करवा सकते हैं। इससे कितना मानवीय श्रम बचता है, यह शोध का मुद्दा है। पर चंदा कोचर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पेपरलेस बैंकिंग ने आईसीआईसीआई का परिचालन व्यय घटाया है और ग्राहकों को सेवा की जेट गति प्रदान की है। आईसीआईसीआई के ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नचिकेतन मोर तो चकित हैं कि जिन ग्रामीण ग्राहकों को हम नादान और नासमझ मानते हैं, उन्होंने भी तकनीक आधारित बैंकिंग सेवाओं को पसंद किया है। वे कहते हैं कि आईसीआईसीआई के 18% ग्रामीण ग्राहक हैं और वे ऑनलाइन लेन देन करने लगे हैं। चंदा कोचर की दूसरी नवोन्मेषी पहल है बैंक के रिटेल ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं की क्रॉस सेलिंग। बैंक ने रिटेल बैंकिंग उत्पादों के साथ साथ ग्राहकों को होम लोन्स, कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड बेचे हैं, जिनसे आईसीआईसीआई का विभिन्न बिजनेस सेगमेंट में कारोबार कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, दिलचस्प व्यक्तित्व की धनी चंदा कोचर अपनी सफलता का श्रेय भारत की परिवार व्यवस्था को देती हैं। वो कहती हैं, हमारे देश के सामाजिक परिवेश व संयुक्त परिवार प्रणाली से मिले समर्थन के बलबूते पर भारतीय महिलाओं ने घरेलू जवाबदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। जिन महिलाओं को मौका मिला है, उन्होंने इस समर्थन का घर के बाहर भी अच्छा दोहन किया है। यह सुविधा दूसरे देश की किसी भी अन्य महिला को उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपने देखा कि यदि महिलाओं को उचित समर्थन और अनुकूल परिस्थितियां मिले तो वह इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को न सिर्फ बराबरी से टक्कर दे सकती हैं, बल्कि उनसे काबिल भी साबित हो सकती हैं। दोस्तों, महिलाओं की सीमाएं अनंत हैं। यदि उन्हें सही दिशा और समर्थन मिल जाए तो वे अभूतपूर्व सफलता अर्जित कर सकती है। चंदा कोचर आज कारपोरेट जगत की जानी मानी हस्ती है। हम किसी भी क्षेत्र को देखें, आज हर कहीं महिलाओं का ही वर्चस्व है। उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभा को जाना और इसे विकसित होने दिया। वे प्रतिभा आप में भी हो सकती है।
बस उसे खोज निकालने की देर है। अपने दिल की आवाज सुनिए। आज हमारे देश में नारी शिक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में निश्चय ही बदलाव आया है और यह बदलाव सच में ही सुकून देने वाला है। साथियों, अपने आसपास, अपने घर परिवार में देखिए, क्या कहीं कोई चंदा कोचर छुपकर तो नहीं बैठी। मेरा मानना है कि महिलाओं को सबसे बड़ी बाधा घर से निकलने की ही होती है, क्योंकि घर से निकलते ही उनका परिवार, समाज, नाते रिश्तेदार और सबसे पहले उनके माता पिता आड़े आ जाते हैं।

व्यवस्था आप भी कर सकती है और जिसकी प्रस्तुतकर्ता एवं लेखिका थी समता भोरेकर जी। सखियों, आपको मैं चंग पंक्तियां कहना चाहूंगी। नारी फूलों की कोमल छाया में, शक्ति का नाम ही नारी है। जब को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। तो सखियों, हिम्मत रखिए और सकारात्मक सोचिए और आप भी कर सकती है। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथ ही इस समय आप आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वरिदास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, कार्यक्रम मन दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी की वार्ता का शीर्षक है आइए अच्छा सोचे अच्छा करे, और लेखक व प्रस्तुत करता है स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी।